0: हारते ही ममता बनर्जी की पार्टी बिखर रही है। एक तरफ अभिषेक पर कानूनी शिकंजा, दूसरी तरफ ममता के ही 20 सांसदों की बगावत पार्टी को कोलकाता से दिल्ली तक मुश्किल के भंवर में डाल चुकी है।
1: हमारे 29 एमपीज जीत करके आए, सब तृणमूल मां माटी मानुष के नाम पर। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं,

0: अब तो ये पार्टी गई, अब इनकी बचत ममता जी का हो सकता है, कांग्रेस को हाथ मजबूत करें उसमें बच सकती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि बचना, जिस तरह से ये पार्टी टूट रही है उतना तेजी से तो शिवसेना नहीं टूटी थी, शिवसेना को टूटने में बहुत टाइम लगा था, लेकिन टीएमसी को टूटने में तो महीने ही लगा।
1: ये हम लोग तो जब सत्ता पे रहे थे ये टीएमसी पार्टी, उस समय हम लोग बराबर ये कहते आ रहे हैं सालों से कि जिस दिन ये सत्ता से बाहर होगी उस दिन टूट जाएगी, खलबली मच जाएगी, तितर बितर हो जाएगी, आज से नहीं सालों से कहते आ रहे हैं। ये हमारा पूर्वाभास ये बहुत पहले हम कर चुके हैं कि सत्ता है तो टीएमसी पार्टी है, सत्ता नहीं है तो टीएमसी पार्टी उब जाएगी, हवा में मिल जाएगी, वैसे हो रहे हैं।
2: पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता ने कांग्रेस से दूरी बनाकर रखी, राहुल ने भी बीजेपी की मजबूती के लिए ममता को ही दोषी ठहराया, लेकिन बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद जिस तरह ममता की चुनौतियां बढ़ी, ममता का इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया और राहुल के साथ एक मेज पर आना, सोनिया गांधी से गले मिलना, उनसे मिलने 10 जनपद जाना, बताता है कि 9 जून 2024 से 9 जून 2026 के बीच देश की सियासत का तापमान, गणित, भूगोल बहुत कुछ बदल चुका है।
3: टीएमसी का कांग्रेस में विलय होगा या नहीं, इसका जवाब तो भविष्य में मिलेगा, लेकिन वर्तमान में ममता बनर्जी की पार्टी और उसके नेता मुश्किलों में जरूर हैं। पूरे बंगाल में एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है जिसमें जनता टीएमसी के नेताओं पर अंडे टमाटरों से हमला कर रही है।
2: पश्चिम बंगाल में भले ही टीएमसी चुनाव हार गई हो, लेकिन उसके नेताओं पर जनता का गुस्सा फूटना कम नहीं हो रहा है। ये तस्वीर पूर्वी मिदनापुर की है, जहां टीएमसी के प्रधान को उठक बैठक करा के भ्रष्टाचार के लिए माफी मंगवाई जा रही है। आम जनता और टीएमसी नेताओं का ये टकराव एयरपोर्ट तक पर दिखने लगा, जहां ममता बनर्जी के करीबी सांसद कल्याण बनर्जी जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोगों से भिड़ जाते हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर कल्याण बनर्जी मीडिया से बात कर रहे थे, इसी दौरान वो एक शख्स पर भड़कते हुए उसे हाथ पकड़ कर खींचने लगते हैं। इसके बाद कल्याण बनर्जी फिर मीडिया से बात करने लगे, इसी दौरान फिर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके जवाब में कल्याण बनर्जी जय बंगाल का नारा लगाते हैं। फिर कल्याण बनर्जी एयरपोर्ट पर खड़े नारा लगाने वालों की तरफ गए, उनसे बहस करने लगे। आखिर में कल्याण बनर्जी अपनी गाड़ी की तरफ गए और नारे के जरिए ये नोकझोंक होती रही। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और जनता के बीच टकराव का ये इकलौता मामला नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर अंडे और टमाटर फेंकने का नया ट्रेंड नई सरकार बनने के बाद से चल रहा है। ये देखिए टीएमसी नेता सव्यसाची दत्ता पर किस कदर अंडे बरसाए जा रहे हैं। रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार सव्यसाची दत्ता को उत्तर 24 परगना की अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी वहां लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। टीएमसी के पूर्व विधायक सव्यसाची पर विरोध कर रहे लोगों ने अंडे टमाटर और गोबर तक फेंकना शुरू कर दिया। कोर्ट परिसर में ही हंगामा बढ़ता गया, सव्यसाची के खिलाफ जमकर नारेबाजी होने लगी। दो दिन पहले टीएमसी पार्षद बापादित्य दास गुप्ता पर भी इसी तरह से अंडे बरसाए जा रहे थे। 6 जून को बापादित्य की गिरफ्तारी हुई थी, 7 जून को जब उन्हें पुलिस थाने से बाहर ले जा रही थी तब ये अटैक हुआ। टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर भी 6 जून को लोगों ने अंडे बरसाए थे। मदन मित्रा पर तो उनके विधानसभा क्षेत्र कमरहाटी में यह हमला हुआ। हावड़ा के श्यामपुर में भ्रष्टाचार और कट मनी के आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, इस दौरान ग्राम प्रधान के सिर पर अंडा फोड़ा गया। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और विधायकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, लोग उन्हें पकड़कर कभी सजा खुद देने लग गए तो अदालत में पेशी के दौरान भी अंडे उनके ऊपर फोड़े जा रहे हैं। बंगाल में होती ये घटनाएं

0: राज्य की राजनीति के चरित्र के साथ ही जुड़ी हुई दिखती है कि जिन हथकंडों के इस्तेमाल के आरोप टीएमसी नेताओं पर जनता को डराने धमकाने के लिए लगते थे, अब वही उनका शिकार हो रहे हैं।
1: लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी विधायक की तरफ से कराई गई रामकथा में पहुंचे। वहां रामायण काल के राक्षसों की तुलना लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद तक से कर डाली। कहते हैं कि खर दूषण मरीच जैसे राक्षस लैंड जिहाद करते थे। सीता के हरण और फिर रावण वध को लव जिहाद के अंत का आदर्श मॉडल मुख्यमंत्री योगी ने बताया।
0: अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ राम कथा से 2027 के सियासी महाभारत का संदेश सुनाते हैं।
2: मारीच है, रावण है, उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं, लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं।
0: जिस अयोध्या का राम मंदिर बनवाकर भी 24 में जाति में वोट बंटने से अयोध्या से जुड़ी लोकसभा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, वहां राम के नाम पर अस्त्र शस्त्र सत्ता और विपक्ष में चलने लगा। पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, लिखा राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज किया। जब लखनऊ में बीजेपी विधायक की तरफ से कराई जाती रामकथा में मुख्यमंत्री पहुंचे तो नया सियासी संदेश सुनाई दिया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं निगेटिव ताकतें रावण काल की तरह से उठाएंगी तो उजाड़ करेंगी।
2: याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे।
0: क्या योगी का निशाना विपक्ष है, जहां पर वो खर दूषण मारीच ताड़का तक की बात करके एक ऐसी राम कथा का जिक्र करते हैं जिसमें चाचा मामा का नाम आते ही तंजनुमा हंसी आती है।
2: जब रावण उसके पास जाता है तो आपने देखा होगा, जब रावण ने कहा कि तुम ऐसा करो तो उसने पहले तो मना कर दिया, रावण को समझाने का प्रयास किया क्योंकि रिश्ते में रावण का मामा भी लगता था। यही होता है, ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं ना तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं। और सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया।
0: इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं, जब दावा हो रहा है कि हिंदू लड़कियों ही नहीं हिंदू लड़के तक को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, तब मुख्यमंत्री योगी लव जिहाद के खिलाफ श्री राम से सीख लेने को कहते हैं।
2: माता जानकी का अपहरण रावण ने किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा प्रयत्न किया, उत्तर और भारत को, उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा, नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है।
0: लव जिहाद ही नहीं बल्कि त्रेता युग में खर दूषण मारीच के जरिए कलयुग में लैंड जिहाद तक का जिक्र योगी आदित्यनाथ करते हैं।
2: आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहाँ लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत की प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते,
3: बहुत अच्छा, बहुत।
2: उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है।
1: इंडिया गठबंधन में सोमवार को दिखाई गई एकता क्या कुछ दिनों में फिर से टूटेगी, ये सवाल इसलिए क्योंकि दावा यह है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 80 सीटें देना चाहती है, जबकि कांग्रेस के खेमे से खबर यह है कि वो 120 सीट यूपी में लड़ने के लिए अखिलेश यादव से चाहते हैं।
0: हिंदुस्तान में विपक्ष का पूर्वी किला ढहने के बाद 2 साल में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो सहयोगी दलों ने कांग्रेस के सामने शिकायतों की पोटली खोल दी। सूत्रों के मुताबिक खड़गे के संबोधन के बाद सबसे पहले अखिलेश यादव को बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने नाराजगी की झड़ी लगा दी। अखिलेश ने पूछा कि आज डीएमके कहा है, आप क्षेत्रीय दलों से तालमेल नहीं बैठा पाते, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मजबूत क्षेत्रीय दलों को सहयोग करना चाहिए।
4: कल इंडिया गठबंधन की बैठक में जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस की कुछ कमियां गिनानी शुरू करी तभी कांग्रेस नेताओं ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुनने का फैसला किया। दरअसल अखिलेश यादव ने तमिलनाडु में डीएमके का बाहर जाना और केरल में पिनरई विजयन सरकार के ऊपर कांग्रेस नेताओं के द्वारा किए गए निजी हमलों को लेकर जिक्र करते हुए कांग्रेस से सफाई मांगी। ना सिर्फ ये, अखिलेश यादव ने कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए जब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है।
5: देखिए, आपस में जिस ढंग से खींचतान है, फ्रस्ट्रेटेड लोगों का समूह है, जनता से नकारे गए लोगों का समूह है, इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। ये एजेंडा विहीन लोकतांत्रिक प्रणाली को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और कहा जाए तो जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं लोकतांत्रिक न होकर के राजतंत्र के आधार पर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से पूछिए कोई अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बताएं जरा। आप तृणमूल का हालत आप देख ही रहे हैं और जो क्षेत्रीय दल हैं इनकी क्या स्थिति है आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस पार्टी स्वयं बताए कि उनका नेता कौन है।
0: बीजेपी को हमले का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि 8 जून की बैठक में सभी 25 दलों के सामने अखिलेश ने कांग्रेस को दो टूक कह दिया कि आपको सीट की जिद नहीं करनी चाहिए, बात सीट की नहीं जीत की है, जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी वही मिलेगी, ज्यादा सीट की जिद न करते हुए जमीनी हकीकत समझना होगा, हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, पूरी मदद मिलेगी। दरअसल अब तक यही तस्वीर दिखती आई कि यूपी में राहुल और अखिलेश एक बार फिर मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले सीट बंटवारे पर पैतरेबाजी शुरू हो चुकी है। खबर है कि कांग्रेस 120 सीटों पर शुरुआती दावा पेश कर सकती है जो 3 कैटेगरी में बटी है। इसमें पहली कैटेगरी करीब 40 ऐसी सीटें जहां 2017 में कांग्रेस एसपी गठबंधन में रहकर 2 नंबर पर रही थी। इसके अलावा करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां 2024 के चुनाव में कांग्रेस 2 नंबर पर रही थी और 30 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस अब खुद को दावेदार समझने लगी।
6: हर पार्टी का अपना अपना बेस है, अपने अपने इश्यूज हैं, तो जब भी कोई समन्वय बैठक होती है तो उसमें कुछ इश्यूज होते हैं जहां कुछ मेल, अगर सारा कुछ एक दूसरे का मिल ही जाता तो एक ही पार्टी हो जाती।
7: हमारा गठबंधन, स्पष्ट कह रहा हूं, सिर्फ 3 लोग तय करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी। किसी चौथे की कोई क्या नाम वो नहीं है कि कोई चौथा इस गठबंधन पर कोई बात करे या कोई सीट शेयरिंग की करे।
8: सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को प्रदेश में 80 सीटें देने के ही मूड में है। खबर है कि अखिलेश यादव ने अपने नेता कार्यकर्ताओं को अपने अपने जिलों में वो एक सीट सुझाने के भी आदेश दे दिए हैं। पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से सपा कैडर में नाराजगी ना हो कि कांग्रेस को कहीं ज्यादा या कहीं ऐसी जगह सीट दे दी गई जहां से सपा का कैंडिडेट जीत सकता था। इस बीच में अखिलेश यादव ने लगातार बैठकों का दौर जारी रखा है और जिलेवार बैठक लेकर अपने भी संभावित प्रत्याशियों को जनसंपर्क बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्र में ग्राउंड स्तर पर तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए हैं।
1: लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU में जांच की जा रही है कि क्या मरीजों को कम स्टेंट लगाए गए और फाइलों में ज्यादा दिखाकर पैसा खाया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत हुए इन इलाजों में गड़बड़ी का किया जो आशंका है, उसके बाद जांच तेज की गई है। जांच में सामने यह आया कि कुछ मरीजों को बार बार भर्ती करके एक से ज्यादा बार स्टेंट्स लगाए गए हैं।
9: एक तरफ तो KGMU में जो कैंसर पेशेंट को इंजेक्शन दिए जाते हैं वो एक इंजेक्शन उनको ना देकर कहीं ना कहीं उसका हेराफेरी की गई। साथ ही साथ कई मरीज ऐसे भी हैं जिनको इंजेक्शन लगाया नहीं गया जबकि उनके नाम पर इंजेक्शन रिलीज कर लिया गया। ये हालात हैं कैंसर पेशेंट्स के जो KGMU में आते हैं, जिसकी एक वृद्ध जांच चल रही है। इससे परे दूसरी जगह जो हार्ट के पेशेंट हैं उसमें स्टेंट डालने के लिए एक ही शख्स को, एक ही मरीज को 5-5 स्टेंट डाल दिए गए।
10: लोगों की जानकारी में आया है कि कुछ आयुष्मान के मरीजों में 5 स्टेंट का प्रश्न उठ रहा है। देखिए, कुछ विशेष परिस्थितियों में 5 स्टेंट भी लगते हैं कुछ समय के भीतर, लेकिन उसकी जांच करना जरूरी है क्योंकि आयुष्मान में 3 स्टेंट से ज्यादा का पैकेज अलाउड नहीं है। तो अगर विशेष परिस्थितियों में कोई चीज करनी होती है तो उसकी एक प्रक्रिया है जो नहीं की गई है। तो ये तो क्लियर है कि 5 स्टेंट जो लगाए गए हैं उनमें वृहद जांच की जरूरत है। जैसे पहला बिंदु यह है कि 5 स्टेंट लगे कि नहीं, अगर 5 स्टेंट लगे हैं तो फिर उनके इंडिकेशंस पूछे जाएंगे, वो एक दूसरा विषय होगा। दूसरा जो जिसकी बात की शंका ज्यादा है कि 5 लगे ही नहीं होंगे, 2 लगे हैं और 5 को दिखा दिया गया है 5 लगे हुए हैं और जो 3 स्टेंट एक्स्ट्रा HRS से आए उसको लोगों ने गायब कर दिया। अगर ऐसा है जिसकी संभावना है तो ये देखना है कि केवल आयुष्मान के लोग मिले हुए थे या विभाग का जो है जो टेक्निकल और फार्मास्यूटिकल स्टाफ था वो मिला था।
1: राजस्थान से मध्य प्रदेश तक ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो डॉक्टर बनने के लायक नहीं है लेकिन 20 से 30 लाख रुपए देकर फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर बन गए और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लगे।
11: 30 लाख दो डॉक्टर बनो, राजस्थान में फेल छात्रों को डॉक्टर बनाकर आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ का रैकेट चलाने वालों आज खबरदार। दीपक यादव कजाकिस्तान से MBBS करने के बाद भारत लौटता है लेकिन भारत में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जरूरी FMGE यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास भी नहीं कर पाता। इसके बाद 24 लाख रुपए देकर डॉक्टरी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाता है और दौसा में इंटर्नशिप शुरू कर देता है। यही काम राजू गुर्जर और नरेश गुर्जर ने किया। राजू गुर्जर 27 लाख रुपए देकर डॉक्टरी करने का लाइसेंस पा गया। नरेश गुर्जर 23 लाख रुपए देकर डॉक्टर बनने का लाइसेंस पा जाता है। डॉक्टरों के इस फर्जी रैकेट का पूरा खुलासा आज तक ही देश के सामने ला चुका है। 1 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत आज तक ने की जब राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री हमने देश को दिखाई। आज तक की रिपोर्ट के बाद ही शुरू हुई जांच में अब और फर्जी डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं।
12: जो विदेश से MBBS करके आते हैं उनको FMGE एग्जाम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम पास करना पड़ता है और वो काफी लोग इसको पास नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग पास नहीं कर पाते हैं तो उन्होंने कोई गैंग है उनको वो पास सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस पे काम करते हुए SOG ने इस गैंग के मुख्य किंगपिन सरगना भानाराम को अरेस्ट किया और भानाराम के अरेस्ट करने पे पूरा केस का खुलासा हुआ।
11: फर्जी डॉक्टर तैयार करने वाला गिरोह कैसे काम करता है सुनिए। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान की जांच के मुताबिक कजाकिस्तान रूस और दूसरे अन्य देशों से लौटे छात्रों को निशाना बनाया जाता है। गिरोह उनसे 20 से 30 लाख रुपए लेता है। फर्जी दस्तावेज के जरिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल से अस्थाई रजिस्ट्रेशन दिलाने का इंतजाम करता है। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड भानाराम माली है जिसे SOG पहले गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में आज तक की ही रिपोर्ट के बाद राजस्थान मेडिकल काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा समेत 28 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं।
13: हमें कुछ दिन पहले SOG की तरफ से कुछ लिस्ट मिली थी, हमने उनको लिस्ट को सारे के सारे डॉक्यूमेंट उनको बता दिए और जो जो भी हमसे सहायता मांग रही है SOG उनको डॉक्यूमेंट के इनके एड्रेस वगैरह के बारे में उनको पूरी जानकारी दे रहे हैं। कोई बीच में कोई बंद जना था उसने ये सारा का सारा नेटवर्क करके और ये पूरा का पूरा कार्य को अंजाम दिया।
11: SOG अब इस घोटाले की परत दर परत खोल रही है। जांच एजेंसी के रडार पर 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर शक है कि ये फर्जी तरीके से डॉक्टरी का प्रमाण पत्र लेकर इलाज आम लोगों का कर रहे हैं यानी उनकी जिंदगी से खेल रहे हैं।
14: पकड़े गए तीनों डॉक्टर डॉक्टरी बनने की परीक्षा नहीं पास कर पाए तो घूस देकर राजस्थान मेडिकल काउंसिल से मरीज देखने का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया और फिर फर्जी डॉक्टर बन गए, मरीज देखने लगे। राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री का खुलासा आज तक ने अक्टूबर 2024 में किया था। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ और जांच अब भी जारी है। अब तक 18 फर्जी डॉक्टरों समेत 28 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और SOG का कहना है 100 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर अभी रडार पर हैं जो पकड़े जाने हैं।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
16: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffeehouse. And more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.

0: वो रत्न जो आपकी त्वचा को बहुत अच्छा बना सकता है? कौन सा है वो रत्न जो आपके डिप्रेशन को दूर कर सकता है? और कौन सा है वो रत्न जो आपकी बुद्धि को तेज कर सकता है? कौन सा है वो चमत्कारी रत्न? किस ग्रह से है उसका संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर भड़की कांग्रेस, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना, बीजेपी पर सीट चोरी का आरोप, विजयवर्गीय ने कहा पार्टी में छिपा है भेदिया। फर्जी हस्ताक्षर मामले में ममता पर सीआईडी का शिकंजा, घर दफ्तर में घंटों तक चली जांच, अभिषेक के दफ्तर में भी दबिश, आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई।

कामकाज का रिपोर्ट कार्ड, भविष्य के रोडमैप पर बात, देश भर के मंदिरों में हवन पूजन का प्लान। पीओजेके में मुनीर की बर्बरता पर भारत ने लगाई फटकार, इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को ठहराया जवाबदेह, 7 गर्भवती महिलाओं समेत 27 की मौत।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। ईरान और अमेरिका की खबर के साथ करेंगे शुरुआत, क्योंकि वहां चल रही शांति वार्ता के बीच होर्मुज पर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप पर हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, सिरिक और साथ ही होर्मुज़गंज के पूर्वी इलाकों में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के दक्षिणी तट पर होर्मुज़ स्ट्रेट के पास ईरान के कई एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने ओमान तट पर अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। ईरान पर यह एक्शन उसी हमले के जवाब में है, जबकि ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमले में तेहरान का हाथ नहीं है। अब्बास अराग्ची ने अमेरिका को इसके लिए सीधी चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा है कि युद्ध में हार के बावजूद अमेरिका लगातार ईरान के संकल्प की परीक्षा ले रहा है। वो अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं, ईरान के इलाके को खाली कर दें। ईरान और अमेरिका में एक तरफ शांति वार्ता की बात चल रही थी, उस बीच होर्मुज पर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। ईरान के दक्षिणी द्वीप पर तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप पर हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, सिरिक और होर्मुज़गंज के पूर्वी इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई है। और इसमें अमेरिका का साफ तौर पर यह कहना है कि ईरान ने जो ओमान तट पर अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमला किया था, ये उसी के जवाब में हमला किया गया है। ईरान के दक्षिणी तट पर अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिका का जवाब सामने आया, उन्होंने कहा कि एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया है। केशम द्वीप, सिरिक, बंदर अब्बास में धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। तो वही ईरान ने अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया था इससे पहले, और उसी के जवाब में अमेरिका ने ये जवाब दिया है। ईरान को जवाब देना बहुत जरूरी है। ट्रंप का ये जवाब सामने आया है, उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर हमले में तेहरान का हाथ नहीं है। ईरान का ये दावा है कि तेहरान का हाथ उस हेलीकॉप्टर हमले में नहीं है, जिसके जवाब में अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। ईरान के दक्षिणी तट पर हमला हुआ और एयर डिफेंस और रडार सिस्टम ध्वस्त कर दिए गए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर पर जो हमले थे, उसमें तेहरान का हाथ नहीं है। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। सुमित, एक तरफ शांति वार्ता की बात चल रही थी और ऐसे में अब अमेरिका ने ये कड़ा जवाब दिया है ईरान को, और होर्मुज पर एक बार फिर से अब खतरा मंडरा रहा है।
1: देखिए, बिल्कुल, होर्मुज को लेकर हमेशा से लगातार स्थिति जो बहुत ज्यादा ठीक नहीं रही। आपको याद होगा कि इसराइल के बाद भी लगातार ये माना जा रहा था कि इसराइल के ईरान की तरफ से ये स्पेसिफिक तौर पर कहा गया था कि स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर उनकी तैनाती या फिर उनकी जो सिचुएशन है वो यथायत बनी रहेगी। अभी ताजा हालात में, जब से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर गिरा था, तब भी ये कहा जा रहा था इससे पहले कि देखिए किस वजह से गिरा है, क्यों गिरा है। उसके बाद अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि इस जो अपाचे हेलीकॉप्टर था वो ईरान के ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन के टकराने के बाद गिरा है, यानी इसके पीछे का कारण सिर्फ ईरान था। और तभी ये आकलन लगाया जा रहा था कि एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास के इलाकों पे अमेरिका दोबारा से अटैक करेगा, और हुआ वही। अमेरिका ने फिर ताबड़तोड़ अटैक करने शुरू किया, और ये इसलिए कहा जा रहा, अमेरिका की तरफ से कहा गया कि क्योंकि ये इंटेंशन थी ईरान की कि सीधे तौर पर वो अमेरिकी सोल्जर्स को मारना चाहता था, नुकसान पहुंचाना चाहता था, और ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ अपने सोल्जर्स के लिए की गई है। लेकिन हुआ वही कि एक बार फिर से 100 दिन की संघर्ष के बाद, लगातार इन चीजों के बाद, एक बार फिर से आमने सामने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। पहले इसराइल के साथ 24 घंटे 48 घंटे पहले हमने संघर्ष देखा, और अब अमेरिका और ईरान एक बार फिर से बैठ गए हैं। और ये माना जा रहा है कि शायद अब ईरान भी बड़े जवाब देने की कोशिश कर रहा है। ईरान भी लगातार अमेरिका के कई बेसिस पे जो मिडिल ईस्ट पे मौजूद है उन पर अटैक कर सकता है।
0: सुमित, अभी जो आपने जिक्र किया, अभी हाल ही में जो इसराइल और ईरान के बीच भीषण हमला हुआ, उसमें अमेरिका का रुख साफ था कि इसराइल रिटेलिएट ना करे ईरान के हमले के बाद। ऐसे में अब अमेरिका ने जवाब दिया है, ये तो दोहरी बात लग रही है।
1: देखिए, दोहरी बात, अगर आपको याद होगा कि इस संघर्ष के दौरान भी, यानी जब 40 दिन का संघर्ष हुआ, उसके बाद जो लगातार 60 दिन का युद्ध विराम का दौर चल रहा था, उस दौरान भी अमेरिका ने कई बार ईरान के अलग अलग इलाकों में, खासतौर पर बंदर अब्बास में, सिरी के इलाकों में, यहां तक कि इस्फान के आसपास भी कहा जा रहा था कि देखिए इस तरीके के अटैक अमेरिका की तरफ से किए गए। और किस जगह पर अटैक किए गए, अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हमने उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को, उनके मिसाइल लॉन्चर्स को और उनके जो साइलोज हैं, मिसाइल साइलोज या ड्रोन साइलोज, उनको अटैक किया। और शायद एक बार फिर से उन्हीं जगहों को टारगेट करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की गई है। देखिए जब भी अमेरिका अटैक करता है नतांज पर, इस्फहान पर, या फिर आप कह सकते हैं कि फोर्दो के आसपास के इलाकों में, तेहरान के आउटस्कर्ट्स में, तब अमेरिका का स्पेसिफिक तौर पर कहना होता ये होता है कि हमने उनकी इनरिच साइट्स के ऊपर, यूक्रेन जो यूरेनियम की इनरिच साइट्स है उन पर अटैक किया। लेकिन जब भी सीरी के अंदर अटैक होता है, जब भी बंदर अब्बास के इलाकों में अटैक होता है, तब अमेरिका ये दावा करता है कि ये वो दोनों लोकेशन है जहां पर ईरान ने अपने साइलोस डेवलप किए हुए हैं, और यहां पर इन साइलोस पर सीधे तौर पर यहीं से इनिशिएट अटैक किए जा रहे थे अमेरिका या फिर इजराइल की तरफ से। हमने ये अटैक करना हमारे लिए जरूरी था, और अभी भी उन्हीं दोनों स्पेसिफिक जगहों के ऊपर अटैक किए गए हैं। पूजा,
0: सुमित, देखिए दोनों ही देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो शांति वार्ता की बात चल रही है वो कहीं दिखती नजर नहीं आ रही। सबका सवाल ये है कि आखिर ये युद्ध खत्म कब होगा, क्योंकि अब ईरान भी इसका जवाब तो देने वाला है।
1: देखिए इस पूरे संघर्ष में बातचीत भले ही चल रही हो, युद्ध विराम की कोशिशें जरूर ही चल रही हो, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि दोनों तरफ से किसी भी युद्ध को रोका गया हो या फिर छटपट घटनाएं ना हुई हो। शायद ये इस युद्ध का एक नया न्यू नॉर्मल है। नया न्यू नॉर्मल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए एक तरफ तो सभी के तमाम जो पार्टियां हैं या फिर तमाम देश हैं वो युद्ध विराम की बात करते हैं, वो लगातार शांति वार्ता की बात करते हैं, वो बातचीत की बात कहते हैं, शर्तों की बात कहते हैं और मीटिंग भी करते हैं। उनके प्रतिनिधि लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर मुलाकात करते हैं, लेकिन उसी दौरान एक दूसरे पर इस तरीके के अटैक भी किए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये अटैक ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, ये अमेरिका की तरफ से भी किए जाते हैं, ये इसराइल की तरफ से भी किए जाते हैं। और अब जो प्री कंडीशंस लगातार जिस कड़ाई से अपनी प्री कंडीशंस को लेकर ईरान अग्रेसिव हो रहा है, वो निश्चित तौर पर ये जरूर दिखाता है कि बातचीत शायद उतनी ज्यादा सीरियस लेवल पर आगे नहीं जा रही जिस लेवल पर दुनिया इसको एक्सपेक्ट कर रही थी।
0: ईरान तो सुमित काफी अग्रेसिव हो रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से, ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहना है कि ईरान के संकल्प की परीक्षा ले रहे हैं, तो लगातार बड़े बड़े बयान ईरान की तरफ से सामने आ रहे हैं। ऐसे में इसका जवाब ईरान देने वाला है। एक और रुक करते, एक और बड़ी खबर का आगे बढ़ते हुए, ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का रुक करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने 24 घंटे के अंदर जिस तरह से सोनिया गांधी से दूसरी बार मुलाकात की है, उसके बाद अटकलें तो टीएमसी के कांग्रेस में विलय तक की उठने लगी है।
2: यूं तो राजनीति में हफ्ता भर भी लंबा वक्त होता है, इस लिहाज से 2 साल तो बहुत ज्यादा है। 24 महीनों के अंदर नरेंद्र मोदी ने देश की सियासत को पलट दिया है। 2024 याद करिए, बीजेपी 240 सीटों पर अटकी, एनडीए की ताकत 293 पर ठहर गई। लेकिन अब 2 साल में टीएमसी के बागियों के समर्थन के बाद एनडीए एक बार फिर 300 के पार पहुंच जाता है। राज्यसभा में भी एनडीए की शक्ति सामान्य बहुमत से आगे निकलकर 137 के करीब पहुंच जाती, जो 2/3 से सिर्फ 26 सांसद कम है। सवाल है कि बीजेपी की इसी राजनीतिक शक्ति ने क्या सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच की दूरियों को कम कर दिया, जिसके चलते इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी ममता बनर्जी को गले लगाती और फिर ममता 10 जनपद उनसे मिलने पहुंचती, जहां 29 साल पहले कांग्रेस ने उन्हें निकाला था। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर साल 1998 में टीएमसी बनाई और बंगाल से कांग्रेस को ही साफ कर दिया, लेकिन 28 साल बाद ममता को कांग्रेस की तरफ देखना पड़ रहा है। करीब 60 विधायकों की बगावत के बाद 20 लोकसभा सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया। सवाल अब टीएमसी के राज्यसभा सांसदों की तरफ उठने लगा है। वहीं सीआईडी और सेंट्रल एजेंसियों के निशाने पर अभिषेक और टीएमसी, तो कट मनी और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर टीएमसी नेताओं को जनता खबरदार कर रही है। ममता जिस वक्त सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचती, उसी दौरान सीआईडी की टीम ममता बनर्जी के घर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को नोटिस देने पहुंचती।
3: 30 भी हरीश चटर्जी स्ट्रीट के साथ साथ कोलकाता के किमैक स्ट्रीट में अभिषेक बैनर्जी के दफ्तर में भी इस समय सीआईडी की टीम पहुंच चुकी है और वहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो एंट्री है वो पूरी तरीके से बंद रखा गया, बैरिकेड को रखा गया है और एक टीम सीआईडी की वो अंदर प्रवेश कर चुका है और जो कहा जा रहा है कि पहले इस टीम को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी लेकिन बातचीत करने के बाद टीम आखिरकार अंदर जाकर पहुंची है। कुछ दस्तावेजों के तलाश में ये टीम यहां पर पहुंची है। ये कहा जा रहा है कि जो रेजोल्यूशन की कॉपी थी जो स्पीकर के पास भेजा गया था उस रेजोल्यूशन की कॉपी के तलाश में टीम दोनों जगह पे इस समय रेड कर रही है। हालांकि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी दोनों ही इस समय शहर में नहीं है।
2: चुनाव हारते ही ममता बनर्जी की पार्टी बिखर रही है। एक तरफ अभिषेक पर कानूनी शिकंजा, दूसरी तरफ ममता के ही 20 सांसदों की बगावत पार्टी को कोलकाता से दिल्ली तक मुश्किल के भंवर में डाल चुकी है।
4: हमारे 29 MPs जीत करके आए, सब तृणमूल मां माटी मानुष के नाम पर। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया।
5: यूसुफ पठान हमको बोला जो अमित शाह ने कॉल किया है उनको, हाँ उन्होंने होम मिनिस्टर के साथ भेंट करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं तो अमित शाह एट द बैक ये काम कर रहे हैं पार्टी को तोड़ने के लिए,
4: वही कर रहा है
5: और अमित शाह इज द पर्सन।
2: ममता जानती है केंद्रीय सत्ता के पूर्ण प्रभाव के सामने क्षत्रप के तौर पर अकेले टिक पाना नामुमकिन है। कांग्रेस के लिए भी ममता से दोस्ती पश्चिम बंगाल में लेफ्ट से ज्यादा व्यावहारिक है। ये सियासी दोस्ती बंगाल की अल्पसंख्यक वोट को भी बिखरने से रोकती है लेकिन एक सवाल ममता के अपने मूल में लौटने को लेकर भी है।
6: तब टूट हो गई तो हो गई, उसको मानना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई शक शुबा है ही नहीं। अब तो ये पार्टी गई, अब इनकी बचत ममता जी का हो सकता है, कांग्रेस को हाथ मजबूत करें उसमें बच सकती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि बचना, जिस तरह से ये पार्टी टूट रही है उतना तेजी से तो शिवसेना नहीं टूटी थी। शिवसेना को टूटने में बहुत टाइम लगा था, देखिए टीएमसी को टूटने में तो महीने ही लगा।
7: ये हम लोग तो जब सत्ता पे रहे थे ये टीएमसी पार्टी उस समय हम लोग बराबर ये कहते आ रहे हैं सालों से कि जिस दिन ये सत्ता से बाहर होगी उस दिन टूट जाएगी, खलबली मच जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। आज से नहीं, सालों से कहते आ रहे हैं। ये हमारा पूर्वाभास ये बहुत पहले हम कर चुके हैं कि सत्ता है तो टीएमसी पार्टी है, सत्ता नहीं है तो टीएमसी पार्टी उब जाएगी, हवा में मिल जाएगी, वैसे हो रहे हैं।
2: पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता ने कांग्रेस से दूरी बनाकर रखी। राहुल ने भी बीजेपी की मजबूती के लिए ममता को ही दोषी ठहराया लेकिन बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद जिस तरह ममता की चुनौतियां बढ़ी, ममता का इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया और राहुल के साथ एक मेज पर आना, सोनिया गांधी से गले मिलना, उनसे मिलने 10 जनपद जाना बताता है कि 9 जून 2024 से 9 जून 2026 के बीच देश की सियासत का तापमान, गणित, भूगोल बहुत कुछ बदल चुका है।
0: तो टीएमसी का कांग्रेस में विलय होगा या नहीं इसका जवाब तो भविष्य में है लेकिन वर्तमान में ममता बनर्जी की पार्टी और उसके नेता मुश्किल में हैं। पूरे बंगाल में एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है जिसमें जनता टीएमसी के नेताओं पर अंडे टमाटर से हमला कर रही है।
2: पश्चिम बंगाल में भले ही टीएमसी चुनाव हार गई हो लेकिन उसके नेताओं पर जनता का गुस्सा फूटना कम नहीं हो रहा है। ये तस्वीर पूर्वी मिदनापुर की है जहां टीएमसी के प्रधान को उठक बैठक करा के भ्रष्टाचार के लिए माफी मंगवाई जा रही है। आम जनता और टीएमसी नेताओं का ये टकराव एयरपोर्ट तक पर दिखने लगा जहां ममता बनर्जी के करीबी सांसद कल्याण बनर्जी जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोगों से भिड़ जाते हैं।
8: Come to the place.
2: कोलकाता एयरपोर्ट पर कल्याण बनर्जी मीडिया से बात कर रहे थे, इसी दौरान वो एक शख्स पर भड़कते हुए उसे हाथ पकड़कर खींचने लगते हैं। इसके बाद कल्याण बनर्जी फिर मीडिया से बात करने लगे, इसी दौरान फिर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके जवाब में कल्याण बनर्जी जय बंगाल का नारा लगाते हैं। फिर कल्याण बनर्जी एयरपोर्ट पर खड़े नारा लगाने वालों की तरफ गए, उनसे बहस करने लगे। आखिर में कल्याण बनर्जी अपनी गाड़ी की तरफ गए और नारे के जरिए ये नोकझोंक होती रही। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और जनता के बीच टकराव का ये इकलौता मामला नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर अंडे और टमाटर फेंकने का नया ट्रेंड नई सरकार बनने के बाद से चल रहा है। ये देखिए टीएमसी नेता सव्यसाची दत्ता पर किस कदर अंडे बरसाए जा रहे हैं। रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार सव्यसाची दत्ता को उत्तर 24 परगना की अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी वहां लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। टीएमसी के पूर्व विधायक सव्यसाची पर विरोध कर रहे लोगों ने अंडे टमाटर और गोबर तक फेंकना शुरू कर दिया। कोर्ट परिसर में ही हंगामा बढ़ता गया, सव्यसाची के खिलाफ जमकर नारेबाजी होने लगी। दो दिन पहले टीएमसी पार्षद बापादित्य दास गुप्ता पर भी इसी तरह से अंडे बरसाए जा रहे थे। 6 जून को बापादित्य की गिरफ्तारी हुई थी, 7 जून को जब उन्हें पुलिस थाने से बाहर ले जा रही थी तब ये अटैक हुआ। टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर भी 6 जून को लोगों ने अंडे बरसाए थे। मदन मित्रा पर तो उनके विधानसभा क्षेत्र कमरहाटी में यह हमला हुआ। हावड़ा के श्यामपुर में भ्रष्टाचार और कट मनी के आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, इस दौरान ग्राम प्रधान के सिर पर अंडा फोड़ा गया। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और विधायकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, लोग उन्हें पकड़कर कभी सजा खुद देने लग गए तो अदालत में पेशी के दौरान भी अंडे उनके ऊपर फोड़े जा रहे हैं। बंगाल में होती ये घटनाएं राज्य की राजनीति के चरित्र के साथ ही जुड़ी हुई दिखती हैं कि जिन हथकंडों के इस्तेमाल के आरोप टीएमसी नेताओं पर जनता को डराने धमकाने के लिए लगते थे, अब वही उनका शिकार हो रहे हैं।
0: तो वही लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी विधायक की तरफ से कराई गई रामकथा में पहुंचे। वहां पर रामायण काल के राक्षसों की तुलना लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद तक करते नजर आए। कहते हैं कि खर, दूषण, मारीच जैसे राक्षस लैंड जिहाद करते थे और सीता के हरण और फिर रावण वध को लव जिहाद के अंत का आदर्श मॉडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया।
2: अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ राम कथा से 2027 की सियासी महाभारत का संदेश सुनाते हैं।
8: मारीच है, रावण है, उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं।
2: जिस अयोध्या का राम मंदिर बनवाकर भी 24 में जाति में वोट बंटने से अयोध्या से जुड़ी लोकसभा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, वहां राम के नाम पर अस्त्र शस्त्र सत्ता और विपक्ष में चलने लगा। पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, लिखा राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज किया। जब लखनऊ में बीजेपी विधायक की तरफ से कराई जाती रामकथा में मुख्यमंत्री पहुंचे तो नया सियासी संदेश सुनाई दिया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं निगेटिव ताकतें रावण काल की तरह सिर उठाएंगी तो उजाड़ करेंगी।
8: याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे।
2: क्या योगी का निशाना विपक्ष है, जहां पर वो खर, दूषण, मारीच, ताड़का तक की बात करके एक ऐसी राम कथा का जिक्र करते हैं जिसमें चाचा मामा का नाम आते ही तंजनुमा हंसी आती है।
8: जब रावण उसके पास जाता है तो आपने देखा होगा जब रावण ने कहा कि तुम ऐसा करो तो उसने पहले तो मना कर दिया, रावण को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि रिश्ते में रावण का मामा भी लगता था। यही होता है, ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं ना तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं। उस सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया।
2: इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं, जब दावा हो रहा है कि हिंदू लड़कियों ही नहीं हिंदू लड़के तक को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, तब मुख्यमंत्री योगी लव जिहाद के खिलाफ श्री राम से सीख लेने को कहते हैं।
8: माता जानकी का अपहरण रावण ने किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा प्रयत्न किया, उत्तर और भारत को, उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा, नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है, याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है।
0: यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
9: कौन सा है वो रत्न जो आपकी त्वचा को बहुत अच्छा बना सकता है? कौन सा है वो रत्न जो आपके डिप्रेशन को दूर कर सकता है? और कौन सा है वो रत्न जो आपकी बुद्धि को तेज कर सकता है? कौन सा है वो चमत्कारी रत्न, किस ग्रह से है उसका संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से
11: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
12: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
11: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
13: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
14: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल,
15: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी?
14: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल,
15: सीबीएसई के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
14: छात्रों को दिया मंच,
15: उजमा हमारे साथ कोटा से और अदिति मुंगेर से हैं और तानिया कोटा से हैं और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं, तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
16: नहीं, देखिए इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
17: आईआईटी मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
14: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर,
15: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक, और अब सरकार की तरफ से सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
14: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें।

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Are you wondering how you can fit a teaching degree into a busy lifestyle? WGU's Bachelor of Arts in Elementary Education degree program is designed for working adults. With our competency-based curriculum model, you can progress through courses as soon as you prove mastery of the material. No rigid seat or class times. No endless waiting for your teaching dream to begin. Just a degree that fits your schedule. Get classroom ready on your time. Learn more at wgu.edu.
3: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
4: सर एक पार्टी 15 साल सत्ता में रहती है लेकिन 15 हफ्तों के अंदर ही उसके जो 20 सांसद हैं वो बताया जा रहा है वो बागी हो गए हैं, उन्होंने अपना गुट बना लिया है, वो बीजेपी के नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। आपको अंदेशा था कि ऐसा कुछ होगा?
5: ये हम लोग तो जब सत्ता पे रहे थे, ये टीएमसी पार्टी, उस समय हम लोग बराबर ये कहते आ रहे हैं सालों से कि जिस दिन ये सत्ता से बाहर होगी उस दिन टूट जाएगी, खलबली मच जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। आज से नहीं, सालों से कहते आ रहे हैं। ये हमारा पूर्वाभास, ये बहुत पहले हम कर चुके हैं कि सत्ता है तो टीएमसी पार्टी है, सत्ता नहीं है तो टीएमसी पार्टी उब जाएगी, हवा में मिल जाएगी, वैसे हो रहे हैं।
4: आपने भी एक अपील जारी करी कि तमाम जो सेकुलर फोर्सेस हैं, तमाम जो लोग हैं वो साथ में आए।
5: मैंने ये कहा कि बंगाल में इतने सारे लोग टीएमसी को तो वोट डाले हैं, कोई अच्छा इनकी सोच थी, और वो देखे आप क्या हो रहे हैं, तो इसको मद्देनजर जो ईमानदार बचे कुचे जो टीएमसी पार्टी की कार्यकर्ता है, ये समर्थक है, उसके सामने कांग्रेस पार्टी है, वो अगर चाहे कि राजनीति करना है तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन हम कोई मंत्री पद देंगे, कोई मेयर पद देंगे ये नहीं कह सकते, कि नोट की बंडिल देंगे ये मैं नहीं कह सकते। ऐसे खुले मन अगर आए तो कांग्रेस पार्टी में जगह मिलेगा, लेकिन वो चोट चकोरे के लिए नहीं, ये ईमानदार जो बचे कुछ समर्थकों है कार्यकर्ता उनके लिए।
6: Therefore, those who are making the allegations against the party and want to see differently, they must follow the pathway of Sukhendu Sekhar Rai. They must show their political morality by resigning as member of parliament. I do not know how many persons are there at all, signed this. But fact is this, such an important document has not come in public domain. Creates a suspicion about the letter, author, and the signature of the persons. If you are so honest, why did you not publish the document? I could have understand they are discussing in a separate place, not with the any BJP people. I could have appreciated their intention, but they have changed their leader from Mamata Banerjee to Narendra Modi. I will invite each and every MP, go to the constituency.
7: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: Therefore, those who are making the allegations against the party and want to see differently, they दे मस्ट फॉलो द पाथवे ऑफ शुकेंदु शेखर राय. दे मस्ट शो देयर पॉलिटिकल मोरालिटी बाय रिजाइनिंग एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. आई डू नॉट नो हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर एट ऑल साइन दिस, बट फैक्ट इज दिस, सच ए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैज नॉट कम इन पब्लिक डोमेन. Creates a suspicion about the letter, author, and the signature of the persons. If you are so honest, why did you not publish the document? I could have understood they are discussing in a separate place, not with the any BJP people. I could have appreciated their intention, but they have changed their leader. They have changed their leader from Mamata Banerjee to Narendra Modi. I will invite each and every MP, go to the constituency, sit with the Trinamool Congress workers, face them.
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर भड़की कांग्रेस, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना, बीजेपी पर सीट चोरी का आरोप, विजयवर्गीय ने कहा पार्टी में छिपा है भेदिया। फर्जी हस्ताक्षर मामले में ममता पर सीआईडी का शिकंजा, घर दफ्तर में घंटों तक चली जांच, अभिषेक के दफ्तर में भी दबिश, आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई।

कामकाज का रिपोर्ट कार्ड, भविष्य के रोडमैप पर बात, देश भर के मंदिरों में हवन पूजन का प्लान। पीओजेके में मुनीर की बर्बरता पर भारत ने लगाई फटकार, इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को ठहराया जवाबदेह, 7 गर्भवती महिलाओं समेत 27 की मौत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। ईरान और अमेरिका में

0: जब ऐसे वक्त के अंदर जहां पर बातचीत की दौर चल रहा है, जहां से अमेरिका की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि बातचीत एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, एक फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है, ऐसे दौर के अंदर एक दूसरे पर अटैक करना इस तरीके से दिखाता है कि अभी ये बातचीत बहुत ज्यादा कच्ची है या अधपकी, आप इसे कह सकते हैं कि अब भी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रही हैं, और ऐसे में एक दूसरे पर अटैक करना बदस्तूर जारी है।
1: बिल्कुल सुमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास पहुंचेंगे। तो जैसा कि हमारे सहयोगी सुमित ने भी बताया कि अभी भी चीजें नॉर्मल नहीं है, वहीं ईरानी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान के जास्क इलाके में भी हमला किया गया है, ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। जास्क में सुनी गई है धमाकों की आवाज, और अब ऐसे में ईरान भी सबका जवाब देगा, ईरानी मीडिया के हवाले से यह दावा किया जा रहा है। ईरान के एवाज इलाके में भी धमाके किए गए हैं। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, ये कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने हमला किया है?
0: देखिए, बंदर अब्बास के इलाके में, सिरकी के इलाके में कहा जा रहा था, एक कई द्वीपों के आसपास इलाके में अटैक किए गए हैं। इसके अलावा जो सदर्न इलाके हैं, यानी जो कोस्टल इलाके हैं ईरान के, जो बंदर अब्बास से मिलते हैं, वहां पर मल्टीपल जगहों के ऊपर ये अटैक इनिशिएट किए गए। मैं आपको बता दूं पूजा, कि अब तक ये दावा नहीं किया गया कि तेहरान या तेहरान के आसपास किसी तरीके का अटैक्स को इनिशिएट किया गया, लेकिन स्पेसिफिक बंदर अब्बास के इलाकों के आसपास, सिरकी के इलाकों में, मिनाब के आसपास अटैक इनिशिएट किए गए हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर जो उनकी नेवल, आप कह सकते हैं जो आईआरजीसी की नेवल विंग रहती हैं, उसके डिफेंस सिस्टम्स, या फिर आप कह सकते हैं उनका जो नेवल डिफेंस विंग्स हैं, उनको डिप्लॉय किया हुआ है। और ये जवाबी कार्रवाई अमेरिका द्वारा इसलिए कही की गई है क्योंकि अमेरिका का मानना है कि जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास उनका टारगेट किया गया था, जिसमें दोनों पायलट बताए जा रहे हैं कि सेफ है, लेकिन ये अटैक्स ईरान की तरफ से किए गए थे, ये दावा अमेरिका का है। और ये इसी अटैक्स के बाद अमेरिका ने डिफेंसिव ऑपरेशन की शुरुआत की गई, सेंट्रल कमांड की तरफ से बताया गया कि देखिए सारे के सारे ऑपरेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म के तहत लिए गए हैं।
1: जी
0: हालांकि ईरान इन्हें स्पेसिफिक तौर पर एक भड़काने वाली एक जवाबी कार्रवाई बता रहा है, जिसके मुताबिक ईरान भी अब लगातार अमेरिका
1: चलिए
0: के
1: ठीक है,
0: बेसिस
1: ठीक है
0: को
1: सुमित,
0: मिडिल ईस्ट
1: आपके
0: में
1: पास
0: अटैक करेगा।
1: लौटेंगे। वहीं ईरान का एक और बयान सामने आया है, एक और बड़ी खबर अमेरिकी हमले को लेकर। ईरान ने बड़ा बयान दिया है, टेलीकम्युनिकेशन टावर को भी नुकसान पहुंचा है। आईआरजीसी के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका के साथ झड़पें अभी भी जारी है, आईआरजीसी ने कहा है, एक और बड़ा बयान। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, हमले अभी भी जारी हैं, कड़ा जवाब दिया जा रहा है ऐसा आईआरजीसी कह रहा है, और कह रहा है कि टेलीकम्युनिकेशन टावर को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है।
0: बिल्कुल, और आईआरजीसी की तरफ से यह भी कहा गया है कि देखिए सिरकी के इलाकों के अंदर, वहां पर उन्होंने दो वाटर टैंकर्स को अमेरिका ने अटैक किया है, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको भी नुकसान पहुंचाया गया है, जिससे वहां पर पानी की जो सुविधाएं हैं या पानी का जो आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि टेलीकम्युनिकेशन सेंटर्स को और उनके कुछ सिविलियन टारगेट्स को अटैक किया गया है अमेरिका द्वारा। हालांकि अमेरिका स्पेसिफिक तौर पर इसे सिर्फ और सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई बता रहा है। अमेरिका के द्वारा कहा गया कि हमने उनके जो साइलोस थे उनको अटैक किया, उनके जो मिसाइल अटैक लॉन्चर्स थे उनको अटैक किया, और हमारा ऑब्जेक्टिव सीधे तौर पर उस इलाके में बढ़ते ईरान के जो अग्रेसिव पोस्चर है उनको न्यूट्रलाइज करने का था। तो अभी दोनों तरफ से एक एक बातें अपनी कही जा रही है, लेकिन ये जरूर है पूजा कि जिस तरीके की कार्रवाई अमेरिका द्वारा की गई है, ये जरूर दिखाएगी कि अब ईरान बातचीत के लिए राजी होगा नहीं होगा, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका है वो एक बार फिर से बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक एक, एक, एक तरीके का आप कह सकते हैं कि एक कन्फ्लिक्ट जोन में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, कि कोशिश हमारे ईरान की तरफ से की जाएगी कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा अब अपनी पकड़ को और मजबूत किया जा सके।
1: बिल्कुल, ईरान तो सुमित लगातार कह रहा है कि अब इसका जवाब ईरान जरूर देगा। वहीं जंग को लेकर इजरायली मीडिया का भी दावा है, एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली मीडिया ने कहा है कि ईरान पर अगले हमले के लिए इसराइल तैयार है। ईरान पर हमले को लेकर इजरायली मीडिया का दावा, जंग को लेकर कि अगला हमला, और ऐसे में ईरान पर अगले हमले के लिए इजरायल पूरी तरह से तैयार है। जहां एक तरफ शांति वार्ता की बात चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ और इजरायली मीडिया ने जंग का दावा किया है, जंग को लेकर कहा है कि ईरान पर हमले के लिए इजरायल पूरी तरह से तैयार है। वहीं ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी सेना का भी बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि ईरान पर आत्मरक्षा के लिए हमले किए गए हैं। अमेरिकी सेना का बयान, आत्मरक्षा के लिए ईरान पर हमले किए गए हैं। वहीं इसराइल का कहना है कि ईरान पर हमले के लिए इसराइल पूरी तरह से तैयार है।

0: और सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, अब देखिए इजराइल का भी बड़ा बयान सामने आया है, एक बार फिर से हमले की बात की जा रही है, जहां एक तरफ शांति वार्ता की चर्चा चल रही थी, 100 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और अब एक बार फिर से हमले की बात सामने आ रही है।
1: देखिए बिल्कुल हमले की बातें सामने नहीं आ रही, हमले की कार्रवाई भी देखी गई है और ये कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से कि एक तरीके का इन अपने अपने अटैक्स को जस्टिफाई किया जा सके। अमेरिका इन अटैक को डिफेंसिव स्ट्राइक्स कह रहा है, डिफेंसिव ऑपरेशंस कह रहा है, वहीं ईरान इसको कह रहा है कि देखिए हमारे इलाकों के अंदर, क्योंकि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के अटैक होने के बाद, अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर पर अटैक किए जाने के बाद ये पूरा मामला बहुत ज्यादा गर्मा है। ईरान का कहना है कि वो हेलीकॉप्टर जो था वो हमारे इलाकों के अंदर लगातार पेट्रोलिंग कर रहा था, ना कि वो पेट्रोलिंग कर रहा था खासतौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर्स में, इंटरनेशनल वाटरवेज के अंदर। तो ये दोनों तरफ से बातें कही जा रही हैं पूजा, लेकिन सबसे गंभीर बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बातचीत के दौरान ही इस तरीके के पोस्टर्स एक तरीके से दिखाते हैं कि बातचीत अभी कुछ ऐसे निर्णायक मोड पर नहीं पहुंचे जहां पर सहमति दोनों देशों के बीच में बनी हो। अब से 24-48 घंटे पहले हमने देखा कि इसराइल ने भी ईरान पर अटैक किए थे, फिर ईरान ने इसराइल पर अटैक किए और इस बदस्तूर जारी रहा। दोनों की तरफ से कोशिश की गई कि वो एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके और 24-48 घंटे के बाद एक बार फिर से अमेरिका ने भी अटैक करने शुरू कर दिए ईरान के अलग अलग इलाकों के अंदर। तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि भले ही 100 दिन बीत चुके हों, बातचीत की टेबल सज चुकी हो, बातचीत की कोशिश की जा रही हो, लेकिन बातचीत किसी मोड़ पर नहीं पहुंची। अब भी ये पूरी परिस्थितियां, ये संघर्ष ऐसे मोड़ पर है, ऐसे नाजुक दौर में है जहां पर किसी भी बड़े युद्ध का आगाज कभी भी हो सकता है।
0: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट में चाकूबाजी की घटना के बाद हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे। प्रदर्शनकारियों ने एक बस को आग के हवाले कर दिया है, जबकि कई जगहों पर सड़कें जाम करने के लिए आगजनी की गई। मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीम तैनात की गई है। ये विरोध उस समय शुरू हुआ जब पुलिस ने एक नागरिक को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया। चाकूबाजी में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। हालात को काबू में करने के लिए सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहा है। तो वहीं रूस के दागेस्तान क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर काकेशस के किजल युर्त शहर में गैस पाइपलाइन पर एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं। धमाकों के बाद इलाके में भीषण आग लग गई, जिसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही है। रूसी क्षेत्रीय आपातकालीन मंत्रालय ने घटना की पुष्टि की। स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी वीडियो में आग का विशाल गुबार आसमान में उठता नजर आया। फिलहाल धमाकों के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है और राहत और बचाव दल मौके पर तैनात है। किसी के हताहत होने की तत्काल जानकारी भी नहीं मिली है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आग का धुएं का गुबार साफ तौर पर यहां दिखाई दे रहा है। रूस के दागेस्तान की बड़ी खबर है ये, और धमाकों के बाद इलाके में भीषण आग लग गई है, जिसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं। आग की लपटें धू-धू कर उठ रही है। रूस के उत्तर काकेग्रस के गैस पाइपलाइन में ये धमाका हुआ है। काफी नुकसान यहां पर हुआ, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर सामने अभी तक नहीं आई है। तो वहीं हरियाणा के रोहतक की डी पार्क मार्केट में भीषण अग्निकांड से हड़कंप मच गया। जूते के एक शोरूम में लगी आग ने तेजी से फैलकर करीब 10 से 12 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है। हादसे में 3 लोगों के जले हुए शव बरामद हुए, जबकि करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान है। आग बुझाने के लिए 3 जिलों की 40 फायर गाड़ियां और एनडीआरएफ की टीम मौके पर जुटी रही और 6 घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की जांच फिलहाल जारी है। वहीं प्रशासनिक लापरवाही और फायर ब्रिगेड की देरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। रोहतक के डी पार्क बाजार में ये भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिससे आग को बुझाने का पूरा प्रयास किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा रही है, क्योंकि आग की लपटें काफी तेजी से उठ रही थी, काफी नुकसान यहां पर हुआ। भयावह तस्वीरें ये भीषण आग की आप देख रहे हैं, जिसको लगातार बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब सवाल उसमें ये भी उठ रहे हैं कि प्रशासनिक लापरवाही हुई है, फायर ब्रिगेड काफी देरी से पहुंची है। तो वही उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट यूनिट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच पहुंच गया। आग की सूचना मिलते ही कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और आग लगने के कारण की अभी भी जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आग को पूरी तरह बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। दमकल विभाग की गाड़ी अभी फिलहाल मौके पर मौजूद है और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। दूर दूर तक आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी है। उत्तर प्रदेश का यह मामला मुरादाबाद के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट यूनिट में भीषण आग लगी है। किस कारण से यह आग लगी अभी तक इसकी जांच जारी है। मुरादाबाद के हैंडीक्राफ्ट शोरूम की तस्वीर आप देख रहे थे। वहीं वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: कौन सा है वो रत्न जो आपकी त्वचा को बहुत अच्छा बना सकता है? कौन सा है वो रत्न जो आपके डिप्रेशन को दूर कर सकता है? और कौन सा है वो रत्न जो आपकी बुद्धि को तेज कर सकता है? कौन सा है वो चमत्कारी रत्न? किस ग्रह से है उसका संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
4: वेलकम बैक टू दैट्स अ पेपर थिंग। First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Aww. Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
5: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
4: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!
6: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffeehouse. And more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.

0: Porta di lì.
1: Cane dopo.
2: क्या टीएमसी के कुछ और सांसद बागी गुट में शामिल हो सकते हैं? क्या ममता के खिलाफ कुछ और सांसद एनडीए के खेमे में जाने की तैयारी में हैं? क्या अभी कुछ और ऐसे नाम सामने आने बाकी हैं जिन्होंने टीएमसी से बगावत की तैयारी कर ली है? ममता की पार्टी में मची उठापटक के बीच ये भी एक बड़ा सवाल सियासी हलकों में गूंज रहा है। अब तक न ही ममता ने अपनी पार्टी से मिले सांसदों की बगावत पर कोई जवाब दिया है, न ही इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। कोलकाता से दिल्ली तक बिखरती पार्टी को लेकर ममता बनर्जी तो चुप हैं, लेकिन उनकी सांसद महुआ मोइत्रा बोल रही हैं। महुआ मोइत्रा ने बगावत करने वाले सांसदों को कहा कि हिम्मत है तो वो सब इस्तीफा देकर दोबारा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर दिखाएं। इसके साथ महुआ मोइत्रा ने यूसुफ पठान पर भी निशाना साधा है। दरअसल पिछले दिनों खबर आई थी कि यूसुफ को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था ताकि ममता उस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सके, लेकिन यूसुफ ने इनकार कर दिया। ममता की पार्टी में संकट है तो ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर इसकी वजह क्या है। एक दिन पहले सुखेंदु रॉय ने अपने इस्तीफे के बाद मीडिया से कहा था कि पार्टी को कई लोग मनमाने तरीके से चला रहे हैं। इस बगावत ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब बागी सांसद शर्मिला सरकार ने एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की, साथ ही वो लोकसभा अध्यक्ष को बताने वाली हैं कि वही असली टीएमसी हैं। तृणमूल कांग्रेस में विद्रोह का आलम यह है कि जो नेता कल तक ममता बनर्जी को दीदी कहकर संबोधित करते थे वो अब खुलेआम उनका नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं। इसे ममता बनर्जी के सियासी कद में आई कमी के तौर पर देखा जा रहा है। हर दिन बीतने के बाद ममता बनर्जी का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

दुनिया का बाजार खुला है तो मुकाबला भी खुला है। जहाँ सामान सस्ता मिलता है, खरीदार अक्सर उसी तरफ खिंच जाता है। लेकिन जब सस्ते माल की भरमार किसी देश की फैक्ट्रियों और नौकरियों पर दबाव डालने लगे तो सरकारों की चिंता बढ़ना तय है। यूरोप में इन दिनों ऐसी ही बहस तेज हो गई है। चीन से आने वाले कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स ने कई देशों की इंडस्ट्री के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे में यूरोपीय यूनियन के कई बड़े सदस्य देश सस्ते आयात पर ज्यादा सख्त रुख अपनाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसके तहत स्पेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड और लिथुआनिया ने मिलकर कड़े कदमों की वकालत की है और इंडस्ट्रियल ओवर कैपेसिटी के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रणनीति की मांग की है। कई यूरोपीय देश मानते हैं कि सस्ते आयात से स्थानीय उद्योगों पर दबाव बढ़ रहा है। यूरोप की चिंता है कि बड़ी उत्पादन क्षमता वाले देशों से आने वाला सस्ता माल स्थानीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा को कमजोर कर सकता है। यही वजह है कि चर्चा अब किसी एक प्रोडक्ट तक सीमित नहीं रही है और व्यापक व्यापारिक सुरक्षा उपायों की बात होने लगी है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त सामने आया है जब यूरोपीय आयोग चीन को लेकर अपनी रणनीति पर अहम चर्चा करने जा रहा है। कई देशों का मानना है कि मौजूदा एंटी डंपिंग नियम हर चुनौती का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और व्यापार सुरक्षा के लिए नए टूल्स की जरूरत है। ऐसे में ईयू में सेक्टर आधारित सुरक्षा उपायों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। मौजूदा प्रोडक्ट आधारित एंटी डंपिंग मामलों से आगे बढ़ने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके साथ ही घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार को बचाने पर फोकस बढ़ रहा है। इस बहस का सबसे बड़ा असर उन सेक्टर्स पर पड़ सकता है जहां चीन की मौजूदगी तेजी से बढ़ी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और कई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को लेकर यूरोप पहले से सतर्क नजर आ रहा है। दिलचस्प बात है कि ये मामला केवल यूरोप और चीन तक सीमित नहीं है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपने उद्योगों को सुरक्षित रखने और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने पर लगातार जोर दे रही हैं। ऐसे में ग्लोबल ट्रेड का माहौल पहले के मुकाबले ज्यादा प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है। आने वाले दिनों में यूरोप का रुख वैश्विक व्यापार के लिए अहम संकेत दे सकता है। अगर सस्ते आयात पर नई बंदिशें लगती हैं, तो कई उद्योगों की कारोबारी रणनीति बदल सकती है। साथ ही ये भी तय होगा कि दुनिया का बाजार पूरी तरह खुला रहेगा या घरेलू उद्योगों की सुरक्षा को ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। आदित्य के राणा आज तक।

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर भड़की कांग्रेस, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना, बीजेपी पर सीट चोरी का आरोप, विजयवर्गीय ने कहा पार्टी में छिपा है भेदिया। फर्जी हस्ताक्षर मामले में ममता पर सीआईडी का शिकंजा, घर दफ्तर में घंटों तक चली जांच, अभिषेक के दफ्तर में भी दबिश, आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई।

कामकाज का रिपोर्ट कार्ड, भविष्य के रोडमैप पर बात, देश भर के मंदिरों में हवन पूजन का प्लान। पीओजेके में मुनीर की बर्बरता पर भारत ने लगाई फटकार, इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को ठहराया जवाबदेह, 7 गर्भवती महिलाओं समेत 27 की मौत।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे बुद्ध के रत्न के बारे में जिसका नाम है पन्ना। बुद्ध के रत्न की विशेषताएं क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं और इसको पहनने के तरीके क्या हैं, इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन बुधवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा।

में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बुध के रत्न की बात कर रहे हैं और बुध का रत्न है पन्ना यानी एमराल्ड। बुध के रत्न पन्ने की विशेषताएं क्या हैं, खूबियां क्या हैं? देखिए, पन्ना नव रत्नों में एक असरदार और कोमल प्रभाव का रत्न है। पन्ना मुख्य रूप से बैरूज वर्ग का यानी बेरियल ग्रुप का स्टोन है। कुछ मात्रा में पन्ने के अंदर ऑक्सीजन और जल भी पाया जाता है। पन्ना कहीं भी मिले, इसको काटेंगे, तराशेंगे तो ये षटकोणीय तरीके से ही तराशा जाएगा। सामान्यतः पन्ना बिना जाल के नहीं हो सकता। 90% स्थितियों में पन्ने में जाल होता है और कोई ना कोई छोटा या बहुत माइनर सा दोष भी पन्ने में पाया जाता है। बिना दोष के पन्ना मिल पाना बहुत कठिन है। मिल तो जाता है लेकिन बड़ी कठिनाई के बाद। पन्ने पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का

राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, नए नए दायित्व बढ़ेंगे, धन के निवेश में सावधानी रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, किसी प्रियजन से मुलाकात होगी, अनाज का दान कर दें आज तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, ऑफिस में प्रशंसा मिलेगी, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आपने अगर पन्ना पहना और आपको पन्ना सूट कर रहा है, पन्ना आपको लाभ दे रहा है, तो इसके क्या क्या फायदे होंगे? पन्ना बुद्धि को प्रखर और एकाग्र कर देता है, आपके दिमाग को शार्प कर देगा, तेज कर देगा अगर पन्ना सूट करे तो। पन्ना पहनने से मन की चिंताएं दूर होती हैं, बेवजह के थॉट्स बंद होते हैं, मन चिंता मुक्त होता है। पन्ना धारण करें और आपको सूट करे तो वाणी की शक्ति बढ़ जाती है, आप बहुत अच्छा बड़ा प्रभावशाली बोलने लगते हैं या प्रेजेंट करने लगते हैं। आम तौर पर पन्ना अगर सूट करे तो कारोबार के मामले में, बिजनेस के मामले में और आर्थिक स्थिति के मामले में आपको लाभ पहुंचाएगा। पन्ना अगर सूट करे, आपको लाभ दे, तो इससे आपका व्यक्तित्व चमकदार और प्रभावशाली हो जाएगा। दो बीमारियों के मामले में पन्ना पहनने से बहुत लाभ होता है। एक, ये त्वचा के रोगों में बहुत लाभ पहुंचाता है, और दूसरा, पन्ना अगर सूट करे तो डिप्रेशन की जो शिकायत है, मानसिक बीमारी की जो शिकायत है, वो शिकायत दूर हो जाती है। पन्ना पहनने पर अगर नुकसान करे तो कैसे जानेंगे कि नुकसान कर रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रोजगार के प्रयास सफल होंगे, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान आज बनाए रखिएगा।
भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में तनाव से बचाव करें, बड़े निर्णयों में आज सावधानी रखेंगे। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कारोबार की समस्या हल होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न शिखा ने हमें लिखा है और शिखा हमें हैदराबाद से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 अक्टूबर 1992, जन्म का समय शाम के 7:10, जन्म का स्थान है लखनऊ उत्तर प्रदेश। शिखा कह रही हैं कि मेरी शादी अभी थोड़ी देर में हुई है, 2 साल पहले, और संतान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन संतान के योग नहीं बन पा रहे। तो संतान के योग कब तक बन जाएंगे, क्या उपाय करना चाहिए? शिखा, आपकी कुंडली में विलंब से संतान की संभावना बनती है लेकिन अभी आपके कंसीव करने का समय चल रहा है, जून से लेके अक्टूबर तक के समय के बीच में पूरी कोशिश करें, आप कंसीव कर जाएंगी। हार्मोन्स अपनी जांच करा लीजिए, हार्मोन्स की समस्या आपको हो सकती है। तो संतान की प्राप्ति आपको आसानी से हो जाए इसके लिए रोज सुबह 1 बार गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें और एक ओपल 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करिए, आपको लाभ होगा। अब आपने बिना सोचे विचारे पन्ना पहन लिया, बिना किसी से परामर्श लिए हुए पन्ना पहन लिया तो पन्ना आपको नुकसान करेगा और पन्ना अगर नुकसान करे तो कैसी कैसी समस्या आ जाएगी जीवन में। पन्ना अगर नुकसान कर जाए आपको तो ये आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा और आपके मन को परेशान कर सकता है। पन्ना अगर आपको नुकसान करे तो गलत पैसा इन्वेस्ट करने के कारण या गलत पैसे के लेन देन के चक्कर में आपको जबरदस्त आर्थिक नुकसान हो सकता है। पन्ना अगर आपको नुकसान करे तो ये आपको त्वचा में स्किन में प्रॉब्लम दे सकता है, स्किन में ड्राइनेस, छोटी छोटी खुजली और इरिटेशन पैदा हो सकता है। पन्ना अगर नुकसान करे तो ये आत्मविश्वास को गड़बड़ भी कर सकता है। पन्ना आपको नुकसान कर रहा है उसकी 2 लक्षण बड़े प्रोमिनेंट होते हैं, हालांकि थोड़ा टाइम लगता है असर आने में, लेकिन एक तो ये कि आपको त्वचा में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी
और दूसरा आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, आप सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। किन लोगों को पन्ना धारण करना चाहिए, किनको नहीं पहनना चाहिए, इस विषय पर आगे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और जिज्ञासा में बताएंगे एक ऐसे रत्न के बारे में जिसको धारण करने से नशे की आदत छूट सकती है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा

राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

जाएगी। व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। हरे फल का अगर आज दान कर दें तो दिन थोड़ा सा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आपको बताने की कोशिश करते हैं सामान्य तरीके से कि किनके लिए पन्ना धारण करना शुभ होता है और किनके लिए पन्ना धारण करना शुभ नहीं होता है। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए पन्ना लाभकारी होता है आम तौर पर। सिंह लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न में विशेष दशाओं में पन्ना पहन सकते हैं। मेष लग्न, कर्क लग्न और वृश्चिक लग्न में पन्ना भूल कर भी धारण नहीं करना चाहिए। हालांकि देखिए, ऐसा निर्णय केवल लग्न के आधार पर नहीं लिया जा सकता। कुंडली के तत्व, आपकी जरूरत और आपकी समस्या को देखते हुए भी पन्ना पहनाया जा सकता है। जो लोग वाणी संबंधी क्षेत्र में हैं, बोलने का या समझाने सलाह देने का काम करते हैं, उनको पन्ना जरूर पहनना चाहिए। जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर में हैं, शेयर बाजार में हैं, फाइनेंस के मार्केट में हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, सलाह लेकर इनको भी पन्ना पहनना चाहिए। तो पन्ना सामान्यतः कौन पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता है, ये आपने जाना। अब ये जानिए कि पन्ना धारण करने के नियम क्या हैं। जब भी आप पन्ना खरीदते हैं, पन्ना जितना ज्यादा हरा होगा उतना ही ज्यादा लाभकारी होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। पन्ने को चांदी में पहनना ज्यादा अच्छा है, लेकिन आप चाहें तो सोने में भी पहन सकते हैं। तो पन्ने को चांदी या सोने में कनिष्ठिका अंगुली में सबसे छोटी उंगली में धारण करना चाहिए। पन्ने को आप बुधवार को सुबह भी पहन सकते हैं और सूर्यास्त हो रहा हो उस समय भी, संध्या काल को भी पन्ना पहन सकते हैं। जब आप पन्ना पहनते हैं तो पन्ने के साथ मूंगा और मोती धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप पन्ना पहनते हैं तो पन्ने के साथ अगर आप हीरा पहने या अगर आप ओपल पहने तो आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा। अगर पन्ना महंगा है, महंगा पन्ना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो पन्ने के स्थान पे हरित तुरमली, ग्रीन टर्मोलिन, मरगज या पेरी डॉट पहन सकते हैं। इसको पहनने से भी ये पन्ने के समान प्रभावशाली फल आपको जीवन में प्रदान करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।

प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

योग हैं। घर में शुभ कार्य हो सकता है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

आपके योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, उस शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आज की जिज्ञासा ये है कि क्या कोई ऐसा रत्न भी है जिसको धारण करने से नशे की आदत छूट जाती है या कंट्रोल में आ जाती है। देखिए, वैसे तो अलग अलग कुंडलियों पर अलग अलग रत्नों का प्रभाव नशा कम करवा सकता है, लेकिन अगर एक ही रत्न की बात करें तो वो रत्न है एमिथिस्ट, हिंदी में कहते हैं जमुनिया, पर्पल कलर का, जामुनी रंग का रत्न है। अगर आप नशे की आदत से छुटकारा चाहते हैं तो सलाह लेकर मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में अगर आप जमुनिया धारण करें तो आप

योग हैं, नंबर 3 यात्रा के योग बन रहे हैं, नंबर 4 स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नंबर 5 धन लाभ के योग हैं, नंबर 6 खान पान में सावधानी रखें, नंबर 7 वाहन सावधानी से चलाएं, नंबर 8 स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नंबर 9 धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज के शुभ समय को जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से

किए हुए काम निश्चित रूप से पूरे होंगे। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म

अगला प्रश्न जलज ने हमें लिखा है और जलज हमें मेल लिखते हैं बड़ौदा गुजरात से। इनकी जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1994। जन्म का समय सुबह के 10 बजे। जन्म का स्थान है लखनऊ। जलज कह रहे हैं कि मैं अभी गुजरात में पोस्टेड हूं, बैंकिंग की नौकरी करता हूं। मैं नौकरी बदल करके प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता हूं। क्या मुझे नौकरी बदलनी चाहिए और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? जलज, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको नौकरी बदलने की मैं सलाह नहीं दूंगा। अगले साल आपका प्रमोशन और ट्रांसफर दोनों होगा। आप अपने घर के निकटवर्ती इलाके में पहुंच जाएंगे और इस नौकरी में आपकी तरक्की बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, तो बेवजह नौकरी ना बदलें, वही आपके लिए बेहतर होगा। आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। मन की चिंताओं को, तनाव को दूर करने के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेके जाइएगा, काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है चिकित्सा या इलाज के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, वस्त्र, आभूषण, तो क्या उपाय करेंगे? हरा रुमाल साथ में रख के जाएंगे, लाभ।

मीन राशि वालों के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। मिथुन राशि वालों के लिए करियर में लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। और आज सावधान रहना होगा धनु राशि के लोगों को, बेवजह स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चोट चपेट लग सकती है। कार्यक्रम के अंत में आइए आपको बताते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। इस समय अधिक मास चल रहा है तो किसी भी नए काम की शुरुआत मत करिए। आज जल और फल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिएगा, आपके लिए शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

अमेरिका में चल रही शांति वार्ता के बीच हॉर्मूज पर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप पर हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास सिरे को हॉर्मूजगंज के पूर्वी इलाकों में भी धमाकों की आवाज सुनाएगी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के दक्षिणी तट पर हॉर्मूज स्ट्रेट के पास ईरान के कई एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमेरिका का दावा कि ईरान ने ओमान तट पर अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया, ईरान पर रिएक्शन उसी हमले का जवाब है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हेलीकॉप्टर पर हमले में तेहरान का हाथ नहीं। युद्ध में हार के बावजूद अमेरिका लगातार ईरान के संकल्प की परीक्षा ले रहा है। वो अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो ईरान के इलाके को खाली कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया नया कीर्तिमान। सबसे ज्यादा समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बने मोदी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़ा पीछे। मोदी के 12 साल पूरे होने पर दिल्ली में विशेष कार्यक्रम। एनडीए के सभी मुख्यमंत्री होंगे शामिल। पीएम मोदी का संबोधन आज। एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक। पीएम मोदी बैठक को करेंगे संबोधित। असम और बंगाल में जीत के बाद एनडीए की पहली बैठक। दोपहर 3 बजे भारत मंडपम में होगी मुख्यमंत्रियों की बैठक। मोदी सरकार के 12 साल पर कार्यक्रम। 16 से 17 जून को G7 समिट में पीएम मोदी और ट्रंप की हो सकती है मुलाकात। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट की कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द। बीजेपी ने की थी शिकायत। बीजेपी ने शिकायत में लगाया था आरोप। नामांकन पत्र में नटराजन ने छिपाई तेलंगाना के हैदराबाद कोर्ट में लंबित केस की जानकारी। बीजेपी की शिकायत पर रिटर्निंग ऑफिसर ने लिया फैसला। अब एमपी में राज्यसभा की तीनों सीटों पर बीजेपी निर्विरोध। नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट और भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे चुनाव आयोग। सिर्फ दो नेताओं को मिलने की परमिशन पर हंगामा। चुनाव आयोग ने आज फिर से बुलाया। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी में खुशी की लहर। मनाया जोरदार जश्न। रांची में राज्यसभा सीट के लिए चुनाव में एनडीए समर्थित उम्मीदवार के नामांकन पर भी गहराया संकट। कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी के नाम पर जताई आपत्ति। कहा नामांकन पत्र में अलग अलग लिखा है नाम। कांग्रेस विधायक नमन बिक्सल ने नामांकन पत्र के कुछ कॉलम पर जताई आपत्ति। कहा अपराध वाला कॉलम खाली छोड़ा। परिमल नथवानी के नामांकन पत्र को फिलहाल किया गया है होल्ड। अंतिम फैसला करेगा चुनाव आयोग। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज 11 बजे बुलाई गई है एक अहम बैठक। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। फर्जी हस्ताक्षर मामले में आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई। अभिषेक की याचिका पर सुनवाई। फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी के घर जांच के लिए पहुंची सीआईडी।

सजल घोष का बयान, चोरों के घर गई सीआईडी टीएमसी और दीदी अब फिनिश। कोलकाता एयरपोर्ट पर कल्याण बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी, नारेबाजी कर रहे लोगों से भिड़े कल्याण बनर्जी। टीएमसी नेता जहांगीर को 5 दिन की पुलिस रिमांड, पुलिस ने मांगी थी 14 दिन की हिरासत। जहांगीर खान को रविवार को नेपाल बॉर्डर से किया गया था गिरफ्तार। हत्या के प्रयास, दंगा भड़काने, अवैध वसूली समेत कई गंभीर मामले के आरोपी। कोर्ट ले जाते समय टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता पर फेंके गए अंडे और टमाटर, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी नेता के घर के बाहर लोगों का विरोध प्रदर्शन, वादा खिलाफी का आरोप। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की, 10 जनपद पर करीब 1 घंटे गुजारा। योगी आदित्यनाथ ने उठाया फिर से लव जिहाद का मुद्दा, बोले डेमोग्राफी बदलने की बड़ी साजिश। योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद रोकने के लिए रामायण का जिक्र किया, कहा भगवान राम से प्रेरणा लेने की जरूरत। योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, बोले योगी प्यार नहीं नफरत फैला रहे हैं। लखनऊ के पीजीआई में आया लव जिहाद का मामला, पीड़िता के लापता होने का केस। पीड़िता के परिवार ने पीजीआई के डॉक्टर पर लगाया धर्मांतरण की साजिश का आरोप, बोले सीरिया भेजने की मिल रही है धमकी। आज नीट पेपर लीक को लेकर एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति के सामने पेशी, नीट को लेकर सरकार की बड़ी बैठक, धर्मेंद्र प्रधान और जेपी नड्डा हुए शामिल। नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर एनटीए के साथ समीक्षा बैठक, छात्रों को शिक्षा मंत्री ने दिया गड़बड़ी ना होने का भरोसा। फायरिंग मामले में खान सर को राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। कोचिंग को लेकर बिहार सरकार की सख्ती, प्रशासन को देनी होगी छात्रों की जानकारी। बिहार सीएम ने शिक्षा विभाग को दिया निर्देश, स्कूल कॉलेज के समय पर नहीं चलेगी कोचिंग। मिशन पंजाब के लिए बीजेपी ने कसी कमर, राज्य की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला। पंजाब में अमित शाह ने संभाली तैयारियों की कमान, अकाली दल के साथ बीजेपी नहीं करेगी गठबंधन। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत, जेपी नड्डा हुए शामिल। जेपी नड्डा ने जारी किया विशेष डाक टिकट, योजना की गिनाई उपलब्धियां। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम हेमंत सोरेन को झटका, पीएमएलए कोर्ट ने खारिज की याचिका। राजूपाल हत्याकांड के दोषी आबिद को राहत, हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन, 29 लाख अभ्यर्थी शामिल, 30,000 सीसीटीवी से कड़ी निगरानी परीक्षा। नकलविहीन परीक्षा पर जोर, यूपी पुलिस भर्ती में बायोमेट्रिक सत्यापन और कंट्रोल रूम से रियल टाइम मॉनिटरिंग जारी। समाजवादी पार्टी ने रिलीज किया सॉन्ग, गर्मी की छुट्टी गीत के जरिए बीजेपी राज्य में बिजली कटौती को लेकर साधा निशाना। निर्वाचन आयोग के गेट पर कांग्रेस ने दिया धरना, निर्वाचन आयोग में ताला डला होने के बाद धरने पर बैठे कांग्रेस नेता। आयोग के गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ता ने जमकर नारेबाजी की, रामधुन गाकर कांग्रेस के नामांकन रद्द होने पर जताया विरोध। कांग्रेस ने कहा ये लोकतंत्र की हत्या। सूरत नगर निगम के 100 से अधिक मकानों के अवैध डिमोलिशन को लेकर कांग्रेस और पीड़ितों ने किया कमिश्नर के बंगले का घेरा, पुलिस ने जबरन हटाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में अग्निकांड के बाद गया में अग्निशमन विभाग एक्शन में, बिना फायर सेफ्टी और फायर एनओसी के बिना चल रहे 42 होटल और हॉस्पिटल को दिया गया नोटिस। दरभंगा में कुम्हार समाज के लोगों का डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन, मिट्टी के बने बर्तन के साथ पोस्टर लेकर पहुंचे डीएम दफ्तर। गर्मी की तपिश झेल रहे राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए राहत वाली न्यूज, दिल्ली साउथ एवेन्यू इलाके में हुई बारिश, बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। साउथ ईस्ट दिल्ली में भी बदला मौसम, धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में भी बारिश हुई, आसमान में बिजली कड़कने के साथ बूंदाबांदी ने गर्मी से दिलाई राहत। दिल्ली एयरपोर्ट के इलाके में भी दिखा मौसम में बदलाव, मौसम बदलने से गिरा तापमान। मुंबई में भी बरसी राहत की फुहारें, मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और कुर्ला इलाके से आई बारिश की तस्वीरें। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 4 जून को केरल में दस्तक दे चुका है, लेकिन उत्तर भारत पहुंचने में अभी समय लगेगा। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में मानसून की एंट्री, 25 से 30 जून के बीच होने की संभावना। केरल के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बड़े हिस्से तक पहुंचा मानसून, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी दस्तक दे चुका है मानसून। देश के पहाड़ी राज्यों को फिर से गर्मी से मिलेगी राहत, 11 जून से सक्रिय होगा नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पहाड़ों और मैदान में दिखेगा असर। हैदराबाद में हुआ मूसलाधार बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत, मौसम हुआ सुहावना। उत्तराखंड में मानसून को लेकर सरकार अलर्ट, सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ मानसून की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। राजस्थान में बढ़ी गर्मी, श्रीगंगानगर बना देश का सबसे गर्म शहर, 45.6 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। राजस्थान के 5 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में सबसे ज्यादा असर अनुमान। हरियाणा में भी बदला मौसम, रेवाड़ी में तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, साथ ही कई जगह पेड़ और पोल भी गिरे। आगरा में भी बदला मौसम, तेज आंधी के साथ हुई बारिश, तेज आंधी की वजह से कई जगह पेड़, होर्डिंग और टिन शेड गिरे। आगरा में पुलिस और दमकल विभाग की तत्परता और कोशिशों ने बचाई महिला की जान, गहरे कुएं में गिरी महिला का किया गया सफल रेस्क्यू। गोरखपुर में खाली दिखा परीक्षा स्पेशल ट्रेन, स्पेशल ट्रेन के लिए छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी को धन्यवाद दिया। संत बाबा नीम करौली के आश्रम में लगने वाला है आस्था का महामेला, कैथवी धाम के

स्थापना दिवस पर 15 जून को बड़ी संख्या में नैनीताल पहुंचेंगे श्रद्धालु। 15 जून को कैचवी धाम में भव्य स्थापना दिवस मनाने की तैयारी। उत्तराखंड में आस्था और भक्ति का संगम, चारों धामों में इस साल अब तक पहुंचे श्रद्धालुओं की तादाद 32 लाख के पार पहुंची। केदारनाथ धाम में उमड़ रही श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़, अब तक 11 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। बद्रीनाथ धाम पहुंचे 22,635 श्रद्धालु, अब तक 9,97,000 से ज्यादा भक्त कर चुके हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भी यात्रियों से गुलजार, अब तक 11 लाख से ज्यादा भक्तों ने लिया मां गंगा और यमुना का आशीर्वाद। चमोली में सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में आज 6,020 यात्री पहुंचे, इस साल अब तक 69,860 श्रद्धालु पवित्र गुरुद्वारे में टेक चुके हैं मत्था। देवरिया मेडफिक सिपाही पर बस कंडक्टर ने मारपीट का आरोप लगाया, पुलिस कंडक्टर को खींचकर ले जाता दिखा, सिपाही को किया लाइन हासिल। रामपुर में प्रेमिका से शादी की जिद में नेटवर्क टावर पर चढ़ा युवक, आश्वासन मिलने पर नीचे उतरा। मुजफ्फरपुर में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश, रंगे हाथों पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद हामिद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जामनगर में एसीबी टीम ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते 2 आरोपियों को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। गोरखपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा की सुरक्षा को सेंध, मोबाइल के साथ पकड़ा गया युवक, लापरवाही करने पर 2 दरोगा निलंबित और 6 पुलिसकर्मी लाइन हासिल। दिल्ली के बकौली इलाके में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का दावा, मिलने वाले 12 गैस सिलेंडर अब घटकर 4 रह गए, जबकि कुछ परिवारों को 1 भी सिलेंडर नहीं मिला। विदेश में नौकरी का सपना दिखाकर गुजरात के आणंद में 32 से ज्यादा युवाओं से 78 लाख रुपए की ठगी का मामला, रूस भेजे 20 युवाओं के खराब हालत, आरोपी एजेंट गिरफ्तार। अररिया में करीब 12 करोड़ के मोबाइल फोन से भरे ट्रक की संदिग्ध लूट, ड्राइवर फरार, घटना में जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में घर से निकली नाबालिग लड़की से 2 युवकों ने गैंगरेप किया, एफआईआर दर्ज, आरोपी की तलाश जारी। बागपत में भतीजी संग प्रेमी को देखकर भड़के चाचा, नाराज प्रेमी ने चाचा को मारकर बस्ती में फेंकी लाश।

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Employers don't hire diplomas, they hire skills. That's why every WGU technology degree is built to prove what you can do. You'll earn industry-recognized certifications at no extra cost, work through hands-on projects mapped to real roles, and build a portfolio that shows your ability. Flexible pacing means you can move through coursework as soon as you show you've mastered it. And when you finish, you'll have a degree plus credentials employers recognize. Because in tech, ability matters, and WGU helps you show it. Learn more at wgu.edu.
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
4: आगे आगे
5: अरे उधर
4: उधर किधर
5: करेक्ट करेक्ट
6: मिल गया।
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स, ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
10: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
9: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
11: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
0: हिंट, बड़े आराम से
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
0: विमल, बोलो जुबां केसरी।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूँ जहाँ पर ये आग लगी।
4: मैं आपको टॉप एंगल से एक तस्वीर दिखाता हूँ और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी।
5: यहाँ पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था?
6: ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है।
4: 20 लोगों की जान चली गई। और देखिए, जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके, तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहां से नहीं दिखाएंगे।

ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। एक ट्रक तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। अचानक ट्रक अनियंत्रित होता है और ट्रक का पिछला हिस्सा करीब 10 फीट हवा में उड़ता है और अपने दाहिनी साइड घूम जाता है। ठीक तभी एक कार सामने से आती है। कार ट्रक के नीचे से गुजर जाती है। गनीमत रही कि ट्रक का हिस्सा कार के ऊपर नहीं गिरा और पुल से टकरा गया। ये भयानक तस्वीरें यूपी में चित्रकूट के झांसी प्रयागराज नेशनल हाईवे 35 के लालापुर वाल्मीकि नदी पुल की हैं। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये महाराष्ट्र में बारामती की तस्वीरें हैं। नशे में धुत ट्रक ड्राइवर स्टंट कर रहा है। अचानक ट्रक अनियंत्रित हुआ और सड़क पर गेंद की तरह लुढ़कता चला गया। वो तो शुक्र था कि आसपास चलने वाले लोग सावधान थे, इसलिए बड़ा हादसा नहीं हुआ। अलबत्ता ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। दोनों हादसों में लोगों की जान बाल बाल बची। बारामती से वसंत मोरे के साथ अखिलेश कुमार, चित्रकूट आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
5: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

हिंदुस्तान में विपक्ष का पूर्वी किला ढहने के बाद 2 साल में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो सहयोगी दलों ने कांग्रेस के सामने शिकायतों की पोटली खोल दी। सूत्रों के मुताबिक खड़गे के संबोधन के बाद सबसे पहले अखिलेश यादव को बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने नाराजगी की झड़ी लगा दी। अखिलेश ने पूछा कि आज डीएमके कहा है आप क्षेत्रीय दलों से तालमेल नहीं बैठा पाते, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मजबूत क्षेत्रीय दलों को सहयोग करना चाहिए। अखिलेश ने शुरुआत क्या की, कांग्रेस के रवैये से दुखी सभी क्षेत्रीय दलों ने अपना अपना दुख सामने रखना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के नेता राज्यों में सहयोगियों पर ही हमले करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में भी चुनाव में कांग्रेस मनमाने तरीके से फैसले लेते रही। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उम्मीदवारों पर बात तक नहीं की जाती है। वीसीके ने कहा कि डीएमके टीएमसी सीपीएम सबको चुनाव में कमजोर किया गया। लेफ्ट ने कहा कि केरल में राहुल और प्रियंका ने हमारे ऊपर ही बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा दिया था। उद्धव ने कहा कि बिना संयोजक के ऐसे काम नहीं चलेगा, एक चेहरा तो तय करें। बैठक से बाहर निकले लेफ्ट नेताओं ने कहा कि सोनिया और राहुल ने सप्रेम शिकायतें सुनी और कबूल की, लेकिन उनकी सफाई लेफ्ट को कबूल नहीं। बीजेपी को हमले का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि 8 जून की बैठक में सभी 25 दलों के सामने ही अखिलेश ने कांग्रेस को दो टूक कह दिया कि आपको सीट की जिद नहीं करनी चाहिए, बात सीट की नहीं जीत की है, जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी वही मिलेगी, ज्यादा सीट की जिद न करते हुए जमीनी हकीकत समझना होगा, हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, पूरी मदद मिलेगी। दरअसल अब तक यही तस्वीर दिखती आई कि यूपी में राहुल और अखिलेश एक बार फिर मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले सीट बंटवारे पर पैतरेबाजी शुरू हो चुकी है। खबर है कि कांग्रेस 120 सीटों पर शुरुआती दावा पेश कर सकती है जो 3 कैटेगरी में बटी है। इसमें पहली कैटेगरी करीब 40 ऐसी सीटें जहां 2017 में कांग्रेस एसपी गठबंधन में रहकर 2 नंबर पर रही थी। इसके अलावा करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां 2024 के चुनाव में कांग्रेस 2 नंबर पर रही थी और 30 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस अब खुद को दावेदार समझने लगी। वैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग की तारीख कुछ ऐसी है कि 2017 में जब गठबंधन हुआ तो अखिलेश को सीट बंटवारे में 298 सीट मिली, लेकिन 311 सीटों पर लड़ गए। समाजवादी पार्टी 47 सीटें जीती और दर रही 15.11%। इसी तरह कांग्रेस को हिस्सों में 105 सीटें मिली थी लेकिन 114 पर लड़ी थी। कांग्रेस पार्टी ने 7 सीटें जीती और स्ट्राइक रेट था तब 6.14, लेकिन जब 2022 के चुनाव आए तो दोनों दलों में बात नहीं बन पाई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े, दोनों ही दलों का प्रदर्शन खराब हुआ था और कांग्रेस की बुरी हालत हो गई थी। 2022 में समाजवादी पार्टी 346 सीटों पर लड़कर 111 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 32.08%। कांग्रेस 399 सीटों पर लड़कर 2 सीट केवल जीत पाई और स्ट्राइक रेट गिरकर 0.50% रह गया। इससे साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में राहुल और अखिलेश का साथ आना ही एक दूसरे के बेहतर प्रदर्शन की गारंटी है। इसी का अंदाजा लगाते हुए 2024 में दोनों दल फिर साथ आए और जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ गठबंधन में, तब समाजवादी पार्टी ने 62 सीटों पर लड़कर 37 सीटें जीती, दर रही 59.68%। कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ी, 7 सीटें जीती, 41.17% की दर पहुंची थी। अखिलेश का विधानसभा में कांग्रेस के मुकाबले 2 गुना से अधिक का स्ट्राइक रेट रहा है, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक रहा है, इसी आधार पर वो ज्यादा सीटें मांग सकती है। दिल्ली से राहुल गौतम के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: के बीच सीधी जंग, अमेरिका की भयंकर एयर स्ट्राइक, तीन ठिकानों पर बमबारी और मिसाइल अटैक। ट्रंप ने कहा हेलीकॉप्टर पर हमले का करारा जवाब दिया। यूएस हमलों पर ईरान का जोरदार जवाब, अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से अंधाधुंध अटैक। बहरीन, कुवैत, कतर समेत कई ठिकानों पर ड्रोन से बरसा बारूद। जॉर्डन में बड़े नुकसान का दावा। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने से भड़की कांग्रेस। आज चुनाव आयोग के दफ्तर जाएगा प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी पर सीट चोरी का आरोप। विजयवर्गीय ने कहा अंदर ही है भेदिया। पीएम मोदी ने बनाया सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड। आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, 12 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड, भविष्य के रोडमैप पर बात। देश भर के मंदिरों में हवन पूजन का प्लान। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मुनीर की बर्बरता पर भारत ने लगाई फटकार। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाक को जवाबदेह ठहराने को कहा। मुनीर आर्मी ने ली 7 गर्भवती समेत 27 की जान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: सभी का आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। सीधा रुख करते इस वक्त की बड़ी खबर का। अमेरिका और ईरान में एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। सीज़फ़ायर टूटने के बाद ईरान का केशम द्वीप अमेरिकी हमलों से दहल उठा है। दरअसल अमेरिकी एयर स्ट्राइक में होर्मुज़ के आसपास के इलाकों में भारी बमबारी की गई। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने का दावा किया गया। वहीं ट्रंप ने इसे अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर हमले का बदला बताया। तो वहीं ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने उसके धैर्य की परीक्षा ली है और ईरान इसका जवाब जरूर देगा। ईरान में तीन जगहों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक की गई। अमेरिका का कहना है कि जो अपाचे हेलीकॉप्टर पर ईरान का हमला किया गया, जो अमेरिका दावा कर रहा है, उसके जवाब में अमेरिका ने यह हमला किया। अमेरिकी हमले के बाद धमाकों से केशम द्वीप दहल गया। केशम द्वीप, सिरिक और बंदर अब्बास में कई धमाके हुए हैं। अमेरिकी हमलों से दहल उठा है केशम द्वीप। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में होर्मुज के आसपास के इलाकों में भारी बमबारी की गई। तो देखिए कैसे और क्यों होर्मुज में भीषण बमबारी हुई है, ये आपको बताएंगे सुपर 8 में। आज जिक्र होर्मुज के आसपास अमेरिकी सुरक्षा घेरे का भी करेंगे। वही खबर बहरीन से भी होगी जहां पर ईरान ने मिसाइल हमला किया। साथ ही खबर जॉर्डन तक लड़ाई तेज है, उसकी अपडेट भी आपको देंगे। आपको बताएंगे कि कैसे ईरान ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। और खबर आयरलैंड की भी आपको दिखाएंगे जहां जबरदस्त हिंसा भड़की है। बात पीओके की भी करेंगे जहां पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की फायरिंग को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो तीन तस्वीरें आप देखिए, यूएस हेलीकॉप्टर और को लेकर जवाब दिया गया। अपाचे हेलीकॉप्टर पर जो ईरान ने हमला किया, उसके जवाब में अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। एक रिपोर्ट देखिए।
2: फारस की खाड़ी धमाकों से दहल उठी है। ईरान के दक्षिणी तट पर अमेरिकी सेना ने एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। केशम द्वीप, बंदर अब्बास, सिरिक और होर्मुज़गंज के पूर्वी इलाके बमबारी और मिसाइल हमले से थर्रा उठे हैं। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने ओमान तट पर अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। हमले से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया है। उन्होंने ईरान को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। हालांकि ईरान का कहना था कि हेलीकॉप्टर पर हमले में तेहरान का हाथ नहीं है। ट्रंप की चेतावनी के कुछ ही घंटों में फारस की खाड़ी में अमेरिकी सेना एक्शन में आ गई और ईरान और केशम द्वीप में बमबारी शुरू हो गई। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि ईरान पर यह हमला अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर किए गए अटैक का जवाब है। तो ईरान ने भी फारस की खाड़ी को इतिहास बताया और अमेरिकी सेना को वापस लौटने की धमकी दे डाली। अब्बास अराग्ची का कहना है कि युद्ध में हार के बावजूद अमेरिका लगातार ईरान के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। ईरानी सेनाएं भी मुंहतोड़ जवाबी हमले के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इस हमले से दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है और शांति वार्ता की संभावनाओं पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो ईरान और अमेरिका जंग को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने कई मिसाइलें दागी। ईरान के मरकजी के खुमने से 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। IRGC ने दावा करते हुए कहा है कि उसने पश्चिम एशिया में अमेरिकी और सहयोगी देशों के कुल 21 एयर और नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का वीडियो भी एक सामने आया है। ईरान ने मरकजी से 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। जो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया अपाचे हेलीकॉप्टर के जवाब में, उसके बाद ईरान लगातार कड़ा जवाब देते हुए अब ईरान की तरफ से कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। ईरान के मरकजी के खुमने से 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई है। IRGC ने दावा किया है कि उसने पश्चिम एशिया में अमेरिका और सहयोगी देशों के कुल 21 एयर डिफेंस पर हमला किया है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुमित और अशरफ वानी। अशरफ, पहले तो अपडेट दीजिएगा कि कहां कहां पर निशाना बनाया गया ईरान द्वारा।
3: ईरान द्वारा अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं एक चीज तो अब साबित करने लगी है, ईरान की जो आखिरी शॉट होगा वो उनकी ही तरफ से होगा। जो ये अमेरिका की तरफ से जो कार्रवाई हुई थी रात में ईरान के खिलाफ, उसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने अब दायरा जो है इस युद्ध का बढ़ाया है। अभी तक हम देख रहे थे कि बहरीन, कुवैत पर जो है US बेसिस पर हमला कर रहा था ईरान, लेकिन अब की बार करीब 2 महीने बाद, जब पहले युद्ध हुआ था तब जॉर्डन को निशाना बनाया गया था, जॉर्डन की अमेरिकन एयरबेस को, अब दोबारा जो है अमेरिकन बेस को जॉर्डन में निशाना बनाया गया है। और अगर हम सूत्रों की माने तो वहां पर भारी क्षति जो है अमेरिका के F-35 जहाजों को पहुंची है जो वहां पर खड़े थे। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी तक फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ईरान साफ दर्शाना चाहता है कि जो वो कहता है वो करता है, वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान नहीं बदलता है। उनका बयान जो है वो सुप्रीम लीडर का बयान है। उन्होंने 2 दिन पहले जब इसराइल के साथ युद्ध हुआ था 2 दिन का, उसमें साफ किया था कि जो भी उन पर हमला करेगा वो उसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे, और ऐसी जवाबी कार्रवाई करेंगे जो दुश्मन को जो है कहीं ना कहीं गहरी चोट पहुंचाएगा।
0: चलिए ठीक है अशरफ, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास लौटेंगे। देखिए, ईरान अमेरिका जंग को लेकर एक और बड़ी खबर। ईरान ने जॉर्डन में F-35 हैंगर तबाह करने का भी दावा किया है। IRGC के बयान के मुताबिक जॉर्डन में 4 बड़े सैन्य ठिकानों पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला किया गया। ईरान ने दावा किया है कि जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर मौजूद F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर नष्ट कर दिए गए हैं। साथ ही ईरान ने यह भी दावा किया है कि जॉर्डन में मौजूद एक अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। जॉर्डन में 4 बड़े सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। IRGC दावा कर रहा है कि मिसाइलों से सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। सुमित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुमित, अब देखिए ईरान अमेरिका को कड़ा जवाब दे रहा है, ऐसे में जो शांति वार्ता की बात चल रही थी उस पर अब कितना असर पड़ेगा इस सबके बाद, क्या लग रहा है आगे?
4: देखिए, वैसे तो शांति वार्ता की जब आप बात करते हैं कि 40 दिन के युद्ध के बाद करीबन 60 दिन तक वो प्रोसेस चला, उन 60 दिनों के अंदर ऐसा कभी मौका नहीं रहा हो कि एक दूसरे पर वार पलटवार नहीं किए गए हो। अभी हमने 24-48 घंटे पहले इसराइल द्वारा ईरान पर और फिर ईरान द्वारा इसराइल पर अटैक करने की भी हमने खबरें और लगातार तस्वीरें देखी, और एक बार फिर से ईरान और अमेरिका में भी इसी तरीके की वार पलटवार की कार्रवाई हम देख रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी आप कह सकते हैं ऐसे नाजुक दौर के अंदर भी लगातार जो कोशिश की जा रही है वो ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को के साथ साथ उसके दूसरे इलाकों में अटैक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अमेरिकी दावों के बावजूद ईरान भी पलटवार कर रहा है। ना सिर्फ जॉर्डन के अंदर कई विमान गिराने का दावा IRGC की तरफ से किया गया, बल्कि बुशहर के इलाके में भी एक MQ ड्रोन जो है उसको मार गिराने का दावा खास तौर पे ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ईरान कह रहा है कि देखिए, ना सिर्फ
0: स्टेट ऑफ लॉटिंग, एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी मीडिया के हवाले से खबर है कि IRGC ने जॉर्डन में हमले के लिए अपने खैबर शेकर मिसाइल का इस्तेमाल किया है। जॉर्डन में ईरानी हमला किया गया। IRGC दावा कर रहा है कि खैबर शेकन मिसाइल का इस्तेमाल इस हमले में किया गया है। सुमित, खैबर शेकन मिसाइल का इस्तेमाल करने के बाद ईरानी हमले को लेकर दावा किया जा रहा है।
4: देखिए बिल्कुल, और ये वो मिसाइलें हैं जिनकी रेंज करीबन 2-3 हजार किलोमीटर तक की है। और आपको बता दूं कि खैबर शेक की बात कर लीजिए या फिर आप कह सकते हैं कि और दूसरी मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया जा रहा है, और ये वो मिसाइलें हैं जिनको नष्ट करने का दावा अमेरिका और इसराइल द्वारा किया गया था। अमेरिका बार बार ये कहता है कि हमने ईरान की क्षमताओं को, मिसाइल साइलोज को, उनके ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, उनकी क्षमताएं लगभग 90% तक हमने खत्म कर दिए। लेकिन फिर भी ईरान की तरफ से जब इस तरीके के अटैक किए जा जाते हैं, तो ये दिखाता है कि अमेरिकी दावे कितने खोखले हैं, या फिर अमेरिका की जो बातें हैं वो अभी भी जमीन से या फिर अब रियलिटी से कितनी दूर है। अभी के ताजा हमलों के अंदर ईरान लगातार इसराइल और अमेरिका को जवाब दे रहा है, और यही सारी चीजें हैं जो इस विवाद को, इस संघर्ष को बहुत ज्यादा गंभीर मोड़ पर ले जाती जा रही
0: पहले
4: है।
0: ही
4: क्योंकि
0: दिन से
4: अगर ये
0: सुमित ईरान
4: बातचीत
0: कहीं भी पीछे हटता नजर नहीं आ रहा, पूरे तरीके से जवाब दे रहा है दोनों देशों को। चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिडिल ईस्ट तनाव को लेकर एक और बड़ी खबर, अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने फिर से पलटवार किया, बहरीन पर ईरान ने हमला किया, बहरीन में अमेरिका की 5वीं फ्लीट पर ड्रोन से अटैक किया गया है ईरान द्वारा। ड्रोन अटैक के बाद कई जगहों पर धमाके की आवाज सुनाई गई, बहरीन पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, कहां कहां ड्रोन अटैक के बाद धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है?
3: जैसे आपने कहा पूजा की 21 जगहों पर 21 बेसिस जो खाड़ी के सभी देशों में हैं, अलग अलग देशों में हैं अमेरिका की, उन पर जो है दावा किया है ईरान और आईजीसी ने हमले की। लेकिन उन्होंने इस बात को लेकर चेतावनी पहले ही जारी की थी कि अगर उन पर हमला होता है बातचीत के बीच में, चाहे इसराइल की तरफ से हो या अमेरिका की तरफ से हो, तो उनका की जो जवाबी कार्रवाई होगी वो काफी खतरनाक होगी और उसमें उन हथियारों का इस्तेमाल होगा जो हथियार अभी तक अमेरिका और इसराइल के कल्पना से बाहर है। कुछ ऐसा ही जॉर्डन में खास तौर पे देखा, जब ये युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को, मैं जॉर्डन भी गया था। जॉर्डन में बहुत ज्यादा जो है बड़ी बेस अमेरिका की है, और जॉर्डन जो है इसराइल के साथ वो सीमा उसकी शेयर होती है वेस्ट बैंक के साथ जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन है, तो जाहिर है कि वहां पर जो है ये हमला करके ईरान ने साफ दर्शाया अमेरिका को भी और इसराइल को भी कि उनके पास हर तरह की क्षमता है और वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो अभी फिलहाल जो इसमें नुकसान हुआ है अमेरिकी बेसिस पे उसका विवरण नहीं हुआ, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ लगता है, चाहे बहरीन की बात करें चाहे जॉर्डन की बात करें, काफी नुकसान जो है ईरानी मिसाइलों से इन अमेरिकी बेसिस को पहुंचा है।
0: चलिए ठीक है अशरफ, आप हमारे साथ बने रहेगा। देखिए अमेरिकी हमले को लेकर ईरान ने भी बड़ा दावा किया है। ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को गिराने का दावा किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद अमेरिकी ड्रोन MQ-9 को गिराने का दावा किया गया। IRGC ने कहा है कि बुशर के पास अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया है। अमेरिकी हमले को लेकर ईरान बड़ा दावा कर रहा है, अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। बुशर के पास अमेरिकी ड्रोन और उसको IRGC ये दावा कर रहा है कि उसको मार गिराया गया। MQ-9 ड्रोन को गिराने का दावा किया गया है। साउथ बुशर के ऊपर जो ड्रोन दिख रहा है, ये तस्वीर आप देखिए, उसको मार गिराने का दावा IRGC ने किया है। ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को गिराने का दावा किया। तो ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरानी सेना ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका की ओर से कोई नई सैन्य कार्रवाई की जाती है तो उसका जवाब और अधिक ताकत से दिया जाएगा। IRGC ने अपने बयान में कहा है कि क्षेत्र में तनाव बढ़ने की स्थिति में उसके परिणामों के लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। सीधी चेतावनी अमेरिका को ईरान द्वारा दी जा रही है कि जवाब इसका ईरान देगा, हर हमले का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा और दिया भी जा रहा है। और साथ ही अपने बयान में यह भी कहा गया है कि क्षेत्र में तनाव बढ़ने की स्थिति में उसके परिणामों के लिए सिर्फ अमेरिका जिम्मेदार है। अमेरिकी हमले को लेकर ईरान का बड़ा बयान, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का कहना है कि अमेरिकी हमलों से सिरिक में टेलीकम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा, पानी की दो टंकियां नष्ट हो गई है। ईरान के IRGC का कहना है कि झड़पें जारी है और चेतावनी दी गई है कि अगर अमेरिका की दुश्मनी जारी रही तो और भी कड़े जवाब दिए जाएंगे, ईरानी मीडिया द्वारा कहा गया है। अमेरिका के साथ झड़पें अभी भी जारी हैं। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, कितना नुकसान अभी तक पहुंचा है? कहा जा रहा है कि अमेरिकी हमलों से सिरिक में टेलीकम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा।
4: बिल्कुल, और सिरी के अलावा अब ये भी कहा गया वहां की लोकल गवर्नर की तरफ से कि देखिए वहां पर दो जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि देखिए अमेरिका का दावा यही था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने डिफेंसिव ऑपरेशंस चलाए थे जिसमें उन्होंने ईरान के मिसाइल साइलोस को, उनके ड्रोन साइलोस को टारगेट किया है। हालांकि ईरान ये कहता है कि देखिए नहीं, हमारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे पानी के ऑयल, हमारे वाटर टैंकर्स को, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है। तो ये तमाम दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन बंदर अब्बास के अलावा केशम का इलाका हो, आप कह सकते बुशर का इलाका हो, हॉर्मूज का इलाका हो, इन तमाम जगहों पर यानी जो सदर्न इलाका है पूरे तेहरान का, उन जगहों पर स्पेसिफिक टारगेट अटैक किए गए हैं अमेरिका द्वारा। और अमेरिका का कहना है कि इन्हीं जगहों से लगातार उनके जो आपके अपाचे हेलीकॉप्टर्स हो या फिर उनके जो वहां पर जो पेट्रोलिंग करते हुए एयरक्राफ्ट हैं उन पर ईरान अटैक इन्हीं इलाकों से करता आया है।
0: चलिए ठीक है सुमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और बड़ी खबर का सीधा रुख करते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के हमलों के बीच बहरीन जॉर्डन के बाद कुवैत पर भी हमला किया गया है, कुवैत को भी निशाना बनाया गया। बहरीन और जॉर्डन के बाद ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइल से कुवैत पर अटैक किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ ड्रोन से भी कुवैत पर अटैक किया गया, 4 मिसाइलें दागी गई हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ ड्रोन से भी अटैक किया गया, ईरान पूरी तरीके से जवाब दे रहा है। अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया है और IRGC भी ये दावा कर रहा है कि अमेरिकी हमलों का जवाब कड़े तरीके से दिया जाएगा। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, अब आगे क्या लग रहा है, ईरान का रुख और क्या होगा? देखिए एक बार फिर से अब हमले की शुरुआत ईरान की तरफ से हो गई है और इस सब में क्या अभी तक इजराइल ने क्या कुछ कहा है? सुमित
4: देखिए, इसराइल अब तक सिर्फ और सिर्फ अपने स्पेसिफिक टारगेट्स यानी साउथ लेबनन के ऊपर अटैक कर रहा है। और आपको बता दूं कि उसको लेकर भी ईरान ने ये स्पेसिफिक कहा था कि देखिए अटैक अभी बंद नहीं होंगे, अगर इसराइल का रुख यही रहा, वो साउथ लेबनन के अंदर अटैक करता रहा तो एक बार फिर से वो उस नॉर्दर्न इसराइल के कई इलाकों में अटैक करेगा और उसकी उसके उसके ऊपर बड़े आप कह सकते हैं कि कार्रवाई भी करेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये सारा मामला और ज्यादा गंभीर हो गया जब कल लगातार ये कहा गया कि अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर जो था, जो एक कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर्स है, उसको मार गिराया गया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसके पीछे ईरान का हाथ है, ईरान इसे मना करता रहा और फिर स्थितियां और ज्यादा गंभीर होती चली गई क्योंकि आज अमेरिका ने भी इसको लेकर रिस्पॉन्ड किया। आप बहरीन कह लीजिए, कतर कह लीजिए, मिडिल ईस्ट के दूसरे जॉर्डन कह लीजिए, इन तमाम देशों के ऊपर लगातार अब ईरान भी अटैक कर रहा है। ईरान की तरफ से कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई है, हालांकि वहां पर डिफेंस सिस्टम पहले से अलर्ट कर दिए गए थे। अमेरिका को अंदेशा था कि अगर वो इस तरीके के रिटेलिएशन करेगा तो निश्चित तौर पर ईरान का भी पलटवार आएगा। तो अभी क्या वहां की स्थिति है, क्या परिस्थितियां हैं, क्या किस तरीके से असेसमेंट किया जाएगा उन डैमेजेस का, वो अभी सामने आएगा। लेकिन हाँ, ईरान भी लगातार बड़े अटैक्स अब इनिशिएट कर रहा है मिडिल ईस्ट के उन तमाम बेसिस पे जहां पर अमेरिका की मौजूदगी है।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब आपको बता देते हैं कि अमेरिका ने ईरान के किन हमलों में हमले किए हैं, किन इलाकों में हमले किए। जवाबी कार्रवाई का हवाला देते हुए अमेरिकी फौज ने ईरान के बंदर अब्बास, केशम द्वीप और साथ ही पूर्वी भूमध्य सागर, लाल सागर, उत्तरी अरब सागर, अरब सागर और यहाँ पर कई इलाकों पर मिसाइल दागी हैं। किस तरह से ईरान और हॉर्मुज को अमेरिकी सेना ने घेर रखा है, खाड़ी में अमेरिकी के दो बड़े युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन, USS जॉर्ज डब्ल्यू बुश तैनात हैं और 20,000 अमेरिकी जवान, 2 एयरक्राफ्ट, 18 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, साथ ही 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट और एक दर्जन से ज्यादा एयर स्क्वाड्रन किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है। आपको बता दें कि अमेरिकी नौसेना ने पूर्वी भूमध्य सागर, लाल सागर, उत्तरी अरब सागर और अरब सागर को पूरी तरह से घेर रखा है। ये जगह है जिसको पूरी तरह से घेरा हुआ है। अब अगली खबर का रुख करते हैं रूस की। रूस के दागिस्तान में गैस पाइपलाइन में 3 धमाके हुए। समाचार एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को यह धमाका हुआ। क्षेत्रीय आपातकालीन मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि रूस के दागिस्तान क्षेत्र के एक शहर में गैस पाइपलाइन में 3 विस्फोट हुए, जिसके बाद वहां आसमान में शोले उठते दिखे। गैस पाइपलाइन ये धमाके कैसे हुए अब तक ये साफ यहां पर नहीं हो पाया है। गैस पाइपलाइन में धमाके की तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी तक 3 धमाकों की वजह साफ नहीं हो पाई है। धमाका काफी भीषण था, आग की लपटें साफ तौर पर तेजी से उठती नजर आ रही है, जिसकी वजह से काफी नुकसान भी यहां पर पहुंचा है। और अब खबर आयरलैंड की, जहां पर बेलफास्ट में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, वहां से उग्र विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक शख्स ने हत्या की कोशिश की है और इसी को लेकर यह बवाल हुआ। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में जबरदस्त हिंसा मची। राजधानी बेलफास्ट सुलग रहा है, बसों में आग लगा दी गई, कई कारें फूंक दी गई, एक एक कर
2: कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी दहक उठी। यह हिंसा तब भड़की जब सोमवार को वहां चाकू वाले हमलावर ने एक शख्स का सिर काटने की कोशिश की। आरोप एक सुडानी शरणार्थी पर है। उसी वारदात के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मंगलवार को उत्तरी आयरलैंड में इमिग्रेशन विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए। बड़े पैमाने पर हिंसा फैल गई। सुरक्षा बलों से टकराव के दौरान उग्र प्रदर्शनकारियों ने बस और कई अन्य गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कुछ इलाकों में घरों को निशाना बनाया, खिड़कियां तोड़ी और दरवाजे तोड़ दिए गए। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों से टकराते रहे। नकाबपोश युवक हमले करते रहे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस हमले की निंदा की है। आज तक ब्यूरो। तो वही पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसक प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की फायरिंग में बड़ी संख्या में लोगों की मौत को लेकर लोगों में गुस्सा है और अब भारत सरकार ने भी मामले को लेकर चिंता जताई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठे हैं।
5: पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में जुल्म की इंतहा हो रही है। बेगुनाह लोगों पर गोलियों की बौछार की जा रही है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। पीओके में लोग काफी वक्त से बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हैं। वहां लोगों ने तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन की तैयारी की। जेएएसी यानी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले 9 जून को बंद का ऐलान किया गया, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने 5 जून को ही जेएएसी पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही पूरे पीओजेके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। अगले ही दिन बड़े पैमाने पर नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसे एक्शन के विरोध में 7 जून से उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए। पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी सेना को इन लोगों पर खुलेआम गोलियां बरसाने को कहा। फायरिंग में 27 लोगों की मौत हो गई। पीओजेके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ऐसी कार्रवाई को लेकर भारत ने गंभीर चिंता जताई है। साथ ही यूरोप स्थित मानवाधिकार संगठन ECHRD ने भी सवाल उठाए हैं और मांग की है कि इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विशेष बैठक बुलाई जाए। आज तक ब्यूरो।
0: अब आगे बढ़ते वक्त हो गया है सुपर 8 में फटाफट का। हिमाचल प्रदेश के चंबा में जंगलों की आग, अलग अलग जगहों पर हालात बेकाबू, करोड़ों की वन संपदा और जंगली जीव खतरे। जयपुर में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, देखते ही देखते फैली आग, मरने वालों की संख्या 8। हरियाणा के रोहतक के डी पार्क मार्केट में भीषण अग्निकांड से मचा हड़कंप। जूते के शोरूम में लगी आग ने तेजी से फैलकर करीब 10 से 12 दुकानों को अपनी चपेट में लिया, 3 की मौत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट यूनिट में भीषण आग लगने से हड़कंप, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। ग्रेटर नोएडा की एक्सोटिका ड्रीम वैली सोसाइटी की 13वीं मंजिल पर लगी आग, दमकल कर्मी मौके पर मौजूद, कोई जनहानि की खबर नहीं। आगरा में 100 फीट गहरे कुएं में गिरे महिला, पुलिस और फायर टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला, तस्वीर आई सामने। यूपी के नोएडा में चलती कार में अचानक से लगी आग, फायर ब्रिगेड ने मौके पर आग बुझाई, फायर ब्रिगेड की तत्परता से टला बड़ा हादसा। सूरत में एक कपड़े के शोरूम में आग लगी, 5 मंजिला इमारत में मची अफरा तफरी, बच्चों सहित 10 से अधिक लोगों की बचाई गई जान। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: To right field, and it will leave.
0: From the first pitch of the season to the stretch run,
1: and that's the ball game.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है। कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
3: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
4: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स, ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
5: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
4: सिंह जैसी
6: शक्ति मुझ में।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
5: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
9: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
10: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
8: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
11: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
9: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
8: जहां खबर वहां खबरदार।
12: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
13: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
14: वैभव इंडिया खेलेंगे ये सबको पता था, इतनी जल्दी खेलेंगे ये नहीं पता था।
15: हाँ सर, बहुत खुशी, बहुत खुश है सर, और आपको भी प्रणाम करते हैं सर। वैभव के लिए आप जो बोलते हैं का स्पोर्ट्स तक की क्या पर्स, हम पूरा सर आपका देखते रहते हैं, तो आपका भी सर आशीर्वाद वैभव को लगा और हम लोग बहुत खुश है सर। इसी के लिए इतना मेहनत बच्चा किया था सर।

माता जानकी का अपहरण रावण ने किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा प्रयत्न किया, उत्तर और भारत को, उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा। नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है, याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। हमें आश्चर्य होता है, उच्च न्यायालय केरला ने 2009 और 2011 में इस पे चिंता व्यक्त की, रिलीजियस डेमोक्रेसी को चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन तब भी हम उस पर ध्यान नहीं दिए। हमने 2020 में उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए सख्त कानून बनाया, तब भी इसके लिए व्यापक जन जागरूकता किए जाने की आवश्यकता है। हमें सचेत रहना होगा, याद रखना, नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी, लेकिन समाज मिलकर के तैयार होना होगा। और यही स्थिति हम सबको उस लैंड जिहाद से जुड़े हुए लोगों पड़ेगा, जो भगवान राम ने आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देगा, उसमें अपना तंबू गाड़ दिया,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.
3: ईरान और अमेरिका में चल रही शांति वार्ता के बीच हॉर्मुज पर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप पर हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास सिरे को हॉर्मुजगंज के पूर्वी इलाकों में भी धमाकों की आवाज सुनी गई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के दक्षिणी तट पर हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के कई एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमेरिका का दावा कि ईरान ने ओमान तट पर अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। ईरान पर यह एक्शन उसी हमले का जवाब। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हेलीकॉप्टर पर हमले में तेहरान का हाथ नहीं। युद्ध में हार के बावजूद अमेरिका लगातार ईरान के संकल्प की परीक्षा ले रहा। वो अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो ईरान के इलाके को खाली कर दें। ईरान के होमेन शहर में 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने का दावा। क्षेत्र में बड़ी हलचल। मरकजी प्रांत के होमेन से मिसाइल लॉन्च होने की खबर। अज्ञात दिशा में दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलें। होमेन से बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण का दावा। जॉर्डन की राजधानी अम्मान के आसमान में दिखी ईरानी मिसाइल। क्षेत्र में बड़ी हलचल। ईरान ने जॉर्डन में F-35 हैंगर तबाह करने का दावा किया। सुरक्षा स्थिति पर नजर। ईरानी मिसाइल खतरे के बीच अल अजराक स्थित अमेरिकी बेस अलर्ट पर। मिसाइल रोकने की कार्रवाई का दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया नया कीर्तिमान। सबसे ज्यादा समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बने मोदी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़ा पीछे। मोदी के 12 साल पूरे होने पर दिल्ली में विशेष कार्यक्रम। एनडीए के सभी मुख्यमंत्री होंगे शामिल। पीएम मोदी का संबोधन। आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक। पीएम मोदी बैठक को करेंगे संबोधित। असम और बंगाल में जीत के बाद एनडीए की पहली बैठक। दोपहर 3 बजे भारत मंडपम में होगी मुख्यमंत्रियों की बैठक। मोदी सरकार के 12 साल पर कार्यक्रम। 16 से 17 जून को G7 समिट में पीएम मोदी और ट्रंप की हो सकती है मुलाकात। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी में खुशी की लहर। मनाया जोरदार जश्न। रांची में राज्यसभा सीट के लिए चुनाव में एनडीए समर्थित उम्मीदवार के नामांकन पर भी गहराया संकट। कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी के नाम पर जुताई आपत्ति। कहा नामांकन पत्र में अलग अलग लिखा है नाम। कांग्रेस विधायक नमन बिकसल ने नामांकन पत्र के कुछ कॉलम पर जुताई आपत्ति। कहा अपराध वाला कॉलम खाली छोड़ा। परिमल नथवानी के नामांकन पत्र को फिलहाल किया गया होल्ड। अंतिम फैसला करेगा चुनाव आयोग। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज 11 बजे बुलाई गई अहम बैठक। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। फर्जी हस्ताक्षर मामले में आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई। अभिषेक की याचिका पर सुनवाई। फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी के घर जांच के लिए पहुंची सीआईडी। घर के बाहर जोरदार हंगामा। सीआईडी ने पूछताछ के लिए अभिषेक को दिया था नोटिस। अभिषेक ने सीआईडी से मांगा था वक्त। टीएमसी ने कुणाल घोष से सीआईडी की कार्रवाई पर जताई नाराजगी। बोले अभिषेक की गैर मौजूदगी में जांच गैज। बीजेपी विधायक सजल घोष का बयान। चोरों के घर गई सीआईडी टीएमसी और दीदी अब फिनिश। कोलकाता एयरपोर्ट पर कल्याण बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी। नारेबाजी कर रहे लोगों से भिड़े कल्याण बनर्जी। टीएमसी नेता जहांगीर को 5 दिन की पुलिस रिमांड। पुलिस से मांगी थी 14 दिन की हिरासत। जहांगीर खान को रविवार को नेपाल बॉर्डर से किया गया था गिरफ्तार। हत्या के प्रयास, दंगा भड़काने, अवैध वसूली समेत कई गंभीर मामले में आरोपी। कोर्ट ले जाते समय टीएमसी नेता सब्यसाची दत्त पर फेंके गए अंडे और टमाटर। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी नेता के घर के बाहर लोगों का विरोध प्रदर्शन। वादा खिलाफी का आरोप। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। 10 जनपद पर करीब 1 घंटे गुजारा। योगी आदित्यनाथ ने उठाया फिर से लव जिहाद का मुद्दा। बोले डेमोग्राफी बदलने की बड़ी साजिश। योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद रोकने के लिए रामायण का जिक्र किया। कहा भगवान राम से प्रेरणा लेने की जरूरत। योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। बोले योगी प्यार नहीं नफरत फैला रहे। लखनऊ के पीजीआई में आया लव जिहाद का मामला। पीड़िता के लापता होने का केस। पीड़िता के परिवार ने पीजीआई के डॉक्टर पर लगाया धर्मांतरण की साजिश का आरोप। बोले सीरिया भेजने की मिल रही है धमकी। आज नीट पेपर लीक को लेकर एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति के सामने पेश। नीट को लेकर सरकार की बड़ी बैठक। धर्मेंद्र प्रधान और जेपी नड्डा हुए शामिल। नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर एनटीए के साथ समीक्षा बैठक। छात्रों को शिक्षा मंत्री ने दिया गड़बड़ी ना होने का भरोसा। फायरिंग मामले में खान सर को राहत। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। कोचिंग को लेकर बिहार सरकार की सख्ती। प्रशासन को देनी होगी छात्रों की जानकारी। बिहार सीएम ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया।

सरकार अलर्ट, सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ मॉनसून की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। राजस्थान में बढ़ी गर्मी, श्रीगंगानगर बना देश का सबसे गर्म शहर, 45.6 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। राजस्थान के 5 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में सबसे ज्यादा असर। हरियाणा में भी बदला मौसम, रेवाड़ी में तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, साथ ही कई जगह पेड़ और पोल भी गिरे। आगरा में भी बदला मौसम, तेज आंधी के साथ हुई बारिश, तेज आंधी की वजह से कई जगह पेड़, होर्डिंग और टिनशेड गिरे। आगरा में पुलिस और दमकल विभाग की तत्परता और कोशिशों ने बचाई महिला की जान, गहरे कुएं में गिरी महिला का किया गया सफल रेस्क्यू। गोरखपुर में खाली दिखी परीक्षा स्पेशल ट्रेन, स्पेशल ट्रेन के लिए छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी को दिया धन्यवाद। संत बाबा नीम करोली के आश्रम में लगने वाला है आस्था का महामेला, कैची धाम के स्थापना दिवस पर 15 जून को बड़ी संख्या में नैनीताल पहुंचेंगे श्रद्धालु। 15 जून को कैची धाम में भव्य स्थापना दिवस मनाने की तैयारी, 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच सकते हैं धाम। 14-15 जून को कैची धाम इलाके में गाड़ियों की एंट्री बंद। उत्तराखंड में आस्था और भक्ति का संगम, चारों धामों में इस साल अब तक पहुंचे श्रद्धालुओं की तादाद 32 लाख के पार पहुंची। केदारनाथ धाम में उमड़ रही श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़, अब तक 11 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। बद्रीनाथ धाम पहुंचे 22,635 श्रद्धालु, अब तक 9,97,000 से ज्यादा भक्त कर चुके हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम भी यात्रियों से गुलजार, अब तक 11 लाख से ज्यादा भक्तों ने लिया माई गंगा और यमुना का आशीर्वाद। चमोली में सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में आज 4,020 यात्री पहुंचे, इस साल अब तक 69,860 श्रद्धालु पवित्र गुरुद्वारे में टेक चुके हैं मत्था। देवरिया मेट्रिक सिपाही पर बस कंडक्टर ने मारपीट का आरोप लगाया, पुलिस कंडक्टर को खींच कर ले जाता दिखा, सिपाही को किया गया लाइन हाजिर। रामपुर में प्रेमिका से शादी की जिद में नेटवर्क टावर पर चढ़ा युवक, आश्वासन मिलने पर नीचे उतरा। मुजफ्फरपुर में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश, रंगे हाथों पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद हामिद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जामनगर में एसीबी टीम ने 5 लाख रूपये की रिश्वत लेते हुए 2 आरोपियों को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। गोरखपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा की सुरक्षा को सेंध, मोबाइल के साथ पकड़ा गया युवक, लापरवाही करने पर 2 दरोगा निलंबित और 6 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। दिल्ली के बकौली इलाके में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का दावा, मिलने वाले 12 गैस सिलेंडर अब घटकर 4 रह गए, जबकि कुछ परिवारों को 1 भी सिलेंडर नहीं मिला। विदेश में नौकरी का सपना दिखाकर गुजरात के आनंद में 32 से ज्यादा युवाओं से 78 लाख रूपये की ठगी का मामला, रूस भेजे 20 युवाओं की खराब हालत, आरोपी एजेंट गिरफ्तार। अररिया में करीब 12 करोड़ के मोबाइल फोन से भरे ट्रक की संदिग्ध लूट, ड्राइवर फरार, घटना ने जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में घर से निकली नाबालिग लड़की से 2 युवकों ने किया गैंगरेप, FIR दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी। बागपत में भतीजी संग प्रेमी को देखकर भड़के चाचा, नाराज प्रेमी ने चाचा को मारकर बस्ती में फेंकी लाश। आज जारी होगा फिल्म अल्फा का टीजर, एक्शन अवतार में दिखेंगे आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ, सिनेमाघरों में 3 जुलाई को लगेगी फिल्म। कल आएगा फिल्म वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर, मुंबई में ग्रैंड इवेंट में लॉन्च किया जाएगा ट्रेलर, अक्षय कुमार समेत मूवी की पूरी स्टार कास्ट रहेगी मौजूद। अजय देवगन स्टार फिल्म धमाल 4 के 4 नए पोस्टर जारी, पोस्टर में मजेदार अंदाज में दिखी फिल्म की पूरी गैंग, 10 जुलाई को होगी रिलीज। सनी देओल स्टार फिल्म बंटवारा 1947 का पहला मोशन पोस्टर जारी, 14 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म, राजकुमार संतोषी ने किया निर्देशन। इमरान हाशमी स्टार फिल्म आवारापन 2 से होगा फिल्म बंटवारा 1947 का मुकाबला, 2007 की हिट फिल्म आवारापन का सीक्वल है आवारापन 2।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, नए नए दायित्व बढ़ेंगे, धन के निवेश में सावधानी रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, किसी प्रियजन से मुलाकात होगी। अनाज का दान कर दें आज तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

जीवन में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रोजगार के प्रयास सफल होंगे, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान आज बनाए रखिएगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में तनाव से बचाव करें, बड़े निर्णयों में आज सावधानी रखेंगे। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कारोबार की समस्या हल होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के

कि रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

समस्याएं समाप्त होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

हो सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, हरे फल का अगर आज दान कर दें तो दिन थोड़ा सा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। कुंभ राशि, करियर में सफलता के योग हैं, घर में शुभ कार्य हो सकता है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा

आपके योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, उस शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: जब पार्टी में अपने साथ छोड़ रहे हैं तब कुछ यूं ममता बैनर्जी दिल्ली में सोनिया गांधी से करीबी दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिशों में दिखी। लेकिन बागी सांसदों से आर पार की नौबत ऐसी है कि टीएमसी ने उन्हें चुनौती दी है कि वे अपने दम पर चुनाव जीत कर दिखाएं। टीएमसी ने सांसद यूसुफ पठान का नाम लेकर पार्टी के संकट के पीछे अमित शाह पर आरोप लगा दिया है। साथ ही ये दावा भी किया कि यही लोग ममता बनर्जी की तारीफें किया करते थे। इस बीच 20 सांसदों के साथ का दावा कर चुका बागी गुट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। वहीं बागी गुट की अहम चेहरा काकोली घोष का दावा है कि उनका ये रुख सत्ता के लिए नहीं सिद्धांतों के लिए है। फिरहाद हाकिम जैसे ममता बैनर्जी के बेहद करीबी रहे नेता भी ममता के साथ नहीं दिख रहे। सोमवार को फिरहाद की रितव्रत बैनर्जी के साथ मुलाकात हुई। ममता बैनर्जी की दिक्कतें नेता विपक्ष तय करने में विधायकों के फर्जी दस्तखत के आरोपों से भी बढ़ सकती है। मंगलवार को कोलकाता में ममता बैनर्जी के कालीघाट के घर पर सीआईडी की टीम पहुंची। ममता बैनर्जी का घर टीएमसी का सेंट्रल दफ्तर है, इसलिए उनकी भूमिका भी जांच के घेरे में आ सकती है। आज तक ब्यूरो।
5: जिस वक्त ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटी थी, ठीक उसी वक्त उन्हीं की पार्टी के सांसद बगावत की नई कहानी लिख रहे थे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर टीएमसी सांसद इकट्ठा हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी टीएमसी नेताओं से मुलाकात की और विक्टर साइन के साथ बैठक से बाहर निकले।
6: इनको बताना चाहिए ना कि वो 20 एमपी कौन से हैं, उनके सिग्नेचर कौन से 20 लोग हैं जो अलग हो गए।
7: एक सांसद जिसने कहा कि 13 है या 14 है, तो मेरा प्रश्न उनसे है कि वो तो थे नहीं वहाँ, वो तो हमारे साथ सिग्नेचर भी नहीं किया, हमारे मीटिंग में भी थे नहीं, तो वो ज्योतिष है।
5: लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इससे पहले 3 जून को बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं।
8: 9 को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना। आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा।
5: सुखेंदु शेखर राय ने पहले ही प्राथमिक सदस्यता और सांसद का पद छोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार, महिला विरोध नीति और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में नाकाम रहने की वजह से लोगों ने टीएमसी को नकार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

हिंदुस्तान का गौरव है चोटिला टनल। ये वो सुरंग है जो संस्कृतियों को जोड़ने जा रही है। ये सुरंग जो देश की सामरिक क्षमता को बढ़ाने जा रही है। ये वही सुरंग है जिसकी बदौलत मौसमी संकट में भी देश के उत्तरी हिस्से आपस में जुड़े रहेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सुरंग की अंतिम बाधा को ट्रिगर किया और एक धमाके के साथ सुरंग में आर पार का रास्ता तैयार हो गया।

0: आज हुए आखिरी धमाके के साथ ही अब सुरंग के दोनों छोर एक दूसरे से मिल गए हैं। इस धमाके के बाद सुरंग के अंदर खुदाई का काम एक तरह से पूरा हो रहा है। इस सुरंग का निर्माण 11,578 फीट यानी 3,550 मीटर की ऊंचाई पर किया जा रहा है। इस टनल की लंबाई करीब 13 किलोमीटर है, मतलब ये कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनी सुरंग है। ये कामयाबी अब हिंदुस्तान के नाम है। 1 अक्टूबर 2020 को इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ था और करीब 6 साल बाद अब आखिरी ब्रेक थ्रू भी सफलतापूर्वक पूरा कर दिया गया है। देश को समर्पित किए जाने से पहले आखिरी ब्रेक थ्रू काफी अहम है। सुरंग की पूरी तरह शुरू हो जाने के बाद श्रीनगर और लद्दाख के बीच द्रास, कारगिल, लेह और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच बेहतर हो जाएगी। आवागमन, लॉजिस्टिक्स और सामरिक पहुंच को भी मजबूती मिलने वाली है। मीर फरीद के साथ आशुतोष मिश्रा, लद्दाख आज तक।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
1: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

0: समेत कई ठिकानों पर ड्रोन से बरसा बारूद, जॉर्डन ने बड़े नुकसान की दावा। नेशनल ट्राइजन का नामांकन रद्द होने से भड़की कांग्रेस, आज चुनाव आयोग के दफ्तर जाएगा प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी पर सीट चोरी का आरोप, विजय वर्गीय ने कहा अंदर ही है बेदिया। पीएम मोदी ने बनाया सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड, आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। 12 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड, भविष्य के रोड मैप पर बात, देश भर के मंदिरों में हवन पूजन का प्लान। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मुनीर की बर्बरता पर भारत ने लगाई फटकार, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाक को जवाबदेह ठहराने को कहा। मुनीर आर्मी ने ली 7 गर्भवती समेत 27 की जान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से भी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर डील पर मोहर लगते लगते अमेरिका ईरान में क्यों छिड़ गया है युद्ध, क्यों शुरू हो गया है वार पलटवार, क्यों चलने लगे हैं बस बारूद मिसाइल। साथ ही रुख करेंगे पीओके का, जहां मुनीर के कत्लेआम से दहल उठा है पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। बात होगी कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने की, क्यों दिल्ली तक इसे लेकर उबाल है, खुद मीनाक्षी नटराजन से जानेंगे आखिर कहां चूक हो गई। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं जंग की खबर के साथ।

में फिर से जंग शुरू हो गई है। ट्रंप ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिरने का ठीकरा ईरान पर फोड़ा और हमले की बौछार कर दी। अमेरिका का दावा है कि 20 ईरानी ठिकानों पर बमबारी हुई और उसके पास के कई इलाके तबाह हुए हैं। ईरानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। तो वह ईरान से जवाबी कार्रवाई करते हुए मध्य पूर्व देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। सबसे बड़ा हमला जॉर्डन के अमेरिकी बेस पर हुआ। दावा है कि अमेरिका के F-35 हैंगर तबाह हो गए हैं। जॉर्डन के अलावा बहरीन, कुवैत, कतर और UAE पर मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान का दावा है कि 21 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हेलीकॉप्टर गिरने से भारी तबाही हुई है। ईरान के 20 ठिकानों पर अमेरिका की यह बमबारी और इसे लेकर अब ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से युद्ध शुरू हो चुका है। तो ट्रंप का गुस्सा भड़क गया है। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर से खतरनाक मोड़ ले लिया है। अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी इलाकों में स्ट्राइक की है और दावा यह है कि यह हमला उसके अपाचे हेलीकॉप्टर पर हुए अटैक का जवाब है।

ईरान अमेरिका में फिर से जंग की शुरुआत हो गई, फिर से बम बरसने लगे, फिर मिसाइलें गरजने लगी, फिर से तबाही का मंजर दिखने लगा। नए टकराव की शुरुआत एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर की घटना से हुई। अमेरिका का दावा है कि ओमान तट के पास उसके AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरानी हमले में गिराया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं, लेकिन अमेरिका इसका जवाब देगा। ईरान ने हालांकि इस घटना में अपनी भूमिका से इनकार किया और कहा कि तेहरान को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

इसके कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। एक के बाद एक कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने केशम द्वीप और सिरिक इलाके में धमाकों की खबर दी, जबकि बंदर अब्बास के आसपास भी विस्फोटों की बात सामने आई। ईरान के तट से लगे इलाके केशम द्वीप, बंदर अब्बास, सिरिक और हॉर्मोजगंज प्रांत के कई हिस्से धमाकों से गूंज उठे। अमेरिकी दावे के मुताबिक इन हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार ठिकानों को निशाना बनाया गया।

वहीं ईरान ने अमेरिका हमले में नुकसान को मामूली बताया और मध्य पूर्व के अमेरिकी बेस पर हमले की बौछार कर दी। जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। सबसे बड़ा हमला जॉर्डन पर हुआ। F-35 हैंगर तबाह करने का भी दावा किया। IRGC के बयान के मुताबिक जॉर्डन में चार बड़े सैन्य ठिकानों पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला किया गया। ईरान ने दावा किया कि जॉर्डन के अल अज़राक एयरबेस पर मौजूद F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर नष्ट कर दिए गए हैं। ईरान ने यह भी दावा किया है कि जॉर्डन में मौजूद एक अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने अपना मिशन पूरा कर दिया है, लेकिन तेहरान ने भी साफ संकेत दिए हैं कि अगर हमले जारी रहे तो जवाब दिया जाएगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान अपनी सुरक्षा के लिए जवाब देने में सक्षम है। तो सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका ने कितना बड़ा हमला किया, सवाल यह है कि हॉर्मुज में शुरू हुआ यह तनाव क्या सिर्फ जवाबी कार्रवाई तक सीमित रहेगा या फिर फारस की खाड़ी एक बड़े युद्ध का नया मोर्चा बनने जा रही है।

0: आज तक यूरोप।
1: और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान अमेरिका जंग को लेकर अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने दागी हैं कई मिसाइलें। ईरान के मरकजी के खोमने से 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। आईजीसी ने दावा किया है कि उसने पश्चिम एशिया में अमेरिकी और सहयोगी देशों के कुल 21 एयर और 9 सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइल दागने का वीडियो भी सामने आया है। सुमित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, अश्रवानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुमित, आपका रुख करते हुए, दोनों तरफ से हमला किया जा रहा है, कितना नुकसान अमेरिका और ईरान को, और कहां कहां पर ईरान के ठिकानों को टारगेट किया गया है अमेरिका द्वारा?
2: देखिए बिल्कुल, और ये सब चीजें नेहत ऐसे समय पर हो रही है जब हमारी की राष्ट्रपति हो, उनके उपराष्ट्रपति हो, ये बात लगातार कहते आए हैं कि देखिए जो नेगोशिएशंस हैं, जो बातचीत है, वो अपने फाइनल स्टेज में पहुंच गई और उसका ऐलान कभी भी किया जा सकता है। हालांकि 24 घंटे पहले ये पूरा घटनाक्रम एक बार फिर से बदल गया जब अमेरिका के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर पर अटैक की खबरें आई और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार माना। अभी ईरान के कई इलाकों में, खासतौर पर जो उसके सदर्न इलाके हैं, यानी जो साउथ का इलाका है, जो कोस्टल एरिया है, चाहे वो बुशहर का इलाका हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास बंदर अब्बास का इलाका हो, सिरजी का इलाका, और इसके अलावा कई और इलाके, मिनाब का इलाका हो, इन तमाम इलाकों के अंदर अमेरिका की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हमने उन सभी साइलोज को, उन सभी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को अटैक किया है जहां से लगातार हम पर निगरानी या फिर हम पर अटैक करने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही थी, और अमेरिका ने इसको डिफेंसिव ऑपरेशन का नाम दिया, यानी वो ऑपरेशन जो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका को करने पड़े। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा, ईरान ने कुछ ही देर में लगातार अपनी कई बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिका के बेसिस पे बहरे के अंदर, कतर के अंदर, जॉर्डन के अंदर दागने का दावा किया। हालांकि ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि उसने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया बुशहर के अंदर, और ये तमाम दावों के बीच में ये परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं जहां पर अंदेशा लगाया जा रहा है कि एक नए फेज ऑफ वॉर के अंदर ये तमाम देश आगे बढ़ रहे हैं। नेगोशिएशंस के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हां, नए फेज ऑफ ऑपरेशंस के लिए, नए फेज ऑफ वॉर के लिए जरूर चीजें बहुत ज्यादा विजिबल नजर आ रही हैं। नेहा,
1: अशरफ वानी भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, कुछ दिन पहले तक तो हालात ये थे, लौटेंगे अशरफ के पास। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान अमेरिका जंग को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने जॉर्डन में F-35 हैंडगन तबाह करने का दावा किया है। आईजीसी बयान के मुताबिक जॉर्डन में 4 बड़े सैन्य ठिकानों पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया है। ईरान ने दावा किया कि जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर मौजूद F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर नष्ट कर दिए गए। वहीं जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने 5 ईरानी मिसाइल्स को गिराने का दावा किया है। जॉर्डन में F-35 हैंगर को तबाह करने का दावा ईरान द्वारा किया गया है। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, वीडियोस के साथ इन्हें सपोर्ट किया गया है, किस तरीके से ईरान ये दावा कर रहा है, और ये कितनी बड़ी नुकसान, कितना बड़ा माना जाए अमेरिका के लिए?
3: अमेरिका के लिए निश्चित तौर पर नुकसान है, क्योंकि जो दावे थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के कि हमने पूरी शक्ति जो है ईरान की खत्म कर दी है, तबाह कर दी है, उनके पास अब मिसाइल नहीं बचे हैं, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बचा है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है, जो अब समझ बात आई है कि ईरान जो कहता है वो करता है। उन्होंने पहले ही जो है वार्निंग दी थी अमेरिका और इसराइल को कि यदि उन पर कोई भी और कहीं पर भी हमला होता है वो उसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे। पहले इसराइल के खिलाफ उन्होंने जवाबी कार्रवाई की लेबनान में जो है बमबारी को लेकर, और अब अमेरिका ने जब स्टेट ऑफ हामूस के आसपास आईजीसी के ठिकानों को निशाना बनाया, उसकी जवाबी कार्रवाई की तीव्रता भी बढ़ाई ईरान ने और लक्ष्य भी बड़ा कर दिया। अभी तक हमने देखा कि पिछले 2 महीने के दौरान जॉर्डन में जो बड़ा बेस है अमेरिका का, उस पर कोई हमला नहीं किया था ईरान ने, लेकिन अब जॉर्डन में भी जाकर जो है अमरीकी बेस पर हमला करना और वहां पर ये दावा करना कि वहां पर F-35 के हैंगर जो है वो नष्ट कर दिए गए हैं, और सूत्रों के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि भारी नुकसान जो है अमेरिका के बेसिस को जॉर्डन में पहुंचा है, तो जाहिर एक साफ दर्शाता है कि ईरान जो है वो अब ये इस युद्ध में सुनिश्चित करना चाहता है कि अगर पहला फायर उन पर होगा, जो आखिरी फायर है वो ईरान की तरफ से होगा। तो अब काफी महत्वपूर्ण ये होगा कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 2 दिन पहले 3 दिन के भीतर ईरान के साथ डील की बात कर रहे थे, उनका अगला बयान क्या होता है, क्या वो जंग को और एस्केलेट करने की कोशिश करेंगे या करेंगे, या फिर उसको रोकने को लेकर जिस अंदाज से इसराइल को लेकर उन्होंने कहा था कि मैं दोनों देशों को कहता हूं कि वो सीज फायर करें, तो क्या वो अपने सैनिकों को रोकते हैं या फिर जो ईरान की तरफ से हमले हुए यूएस बेसिस पर जो 21 का दावा हो रहा है उसकी जवाबी कार्रवाई करते हैं।
1: ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट ना को लेकर यह खबर आ रही है कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने फिर पलटवार किया। बेरेन पर ईरान ने हमला किया है और बेरेन में अमेरिका की पांचवी फ्लीट पर ईरान के ड्रोन द्वारा अटैक किया गया है। ड्रोन अटैक के बाद से कई जगहों पर धमाके की आवाज सुनी गई। तो बेरेन पर ईरान का ये अटैक जिसे काफी शक्तिशाली माना जा रहा है, इस अटैक के बाद कई आवाजें सुनी गई वहां पर, ड्रोन से दरअसल ये अटैक किए गए। सुमित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमित, अमेरिका द्वारा तो ये दावा किया जा रहा था कि ईरान के पास अब सैन्य क्षमता नहीं बची है, उनके पास हथियार नहीं है, ड्रोन नहीं है, मिसाइल नहीं है, काफी कम आंक लिया था लगता है अमेरिका ने ईरान को।
2: और देखिए अभी भी नया कम ही आंका जा रहा है, क्योंकि अमेरिका द्वारा और इसराइल द्वारा तो ये कहा जा रहा था कि रिजिम चेंज के साथ साथ हमने उनकी 70-80% जो उनकी मिसाइल्स हैं, उनके जो साइलोज हैं, उनके ड्रोन्स क्षमताओं को खत्म कर दिया। लेकिन हो क्या रहा है कि उससे भी ज्यादा बड़े अटैक्स लगातार ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं और कंटिन्यूस अटैक। अभी भी जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई है, आपने बहरेन का जिक्र किया, फिफ्थ फ्लीट जो है नेवल की वो वहां पर मौजूद है और फिर भी ईरान वहां पर अटैक कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। और इस तमाम सारी चीजें ऐसे समय पर हो रही है जब पिछले 100 दिनों के इससे ज्यादा वक्त में लगातार ईरान को कॉर्डन किया हुआ है, लगातार उसको ब्लॉकेट के अंदर एक तरीके से आपको कॉर्डन किया हुआ है और आपके पास ना तो सैन्य क्षमताओं को पहुंचाने के लिए कोई रूट है, आपके पास ना ही आपके खाद्य पदार्थों को या फिर आपके नेचुरल चीजों को पहुंचाने के लिए कोई रूट है। और इन तमाम चीजों के बावजूद ईरान रिटेलिएट कर रहा है और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है मिडिल ईस्ट के उन तमाम बेसिस पर जहां पर अमेरिका की मौजूदगी है। नेहा,
1: ठीक है, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर यह खबर आ रही है कि बहरीन और जॉर्डन के साथ साथ कुवैत पर भी ईरान का हमला हुआ है। ईरान ने कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है। कुवैत में अमेरिकी बेसिस को ईरान ने निशाना बनाया है। बहरीन, जॉर्डन इस वक्त ईरान के निशाने पर, वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ ड्रोन से भी अटैक ईरान ने किया है। अमेरिकी ठिकानों पर यह अटैक किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर एक खबर है कि अमेरिकी हमले को लेकर ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी ड्रोन उन्होंने गिरा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बाद अमेरिकी ड्रोन MQ-9 को ईरान ने गिरा दिया है। IRGC ने कहा कि बुशहर के पास अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया। सुमित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमित, अब तो बातचीत कोसों दूर दिखाई दे रही है, अब तो ये फुल थ्रॉटल अटैक शुरू हो गया है, एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर दावे किए जा रहे हैं, IRGC द्वारा दावा किया जा रहा है, अमेरिका द्वारा दावा किया जा रहा है, तो अब बातचीत तो खटाई में।
2: बिल्कुल, और ये शायद कुछ नया न्यू नॉर्मल है इस समय वॉर सिनारियो का, जहां पर देखिए एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक भी जारी होते हैं लेकिन इसी बीच सीज फायर को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं। और आप मान के चलेगा कि अगले 24 घंटे में दोबारा से अमेरिका द्वारा कोई जरूर बयान आएगा, स्टेटमेंट आएगा, जिसमें कहा जाएगा कि बातचीत एक फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है और बहुत जल्दी तमाम देशों के बीच में सहमति बन जाएगी। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो रियलिटी है, वो इस कदर है कि एक दूसरे पर अब भी अटैक किए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही है और कभी भी जो परिस्थितियां हैं, संघर्ष है, किसी बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है। क्योंकि देखिए ईरान अपनी शर्तों से, अपनी प्रीकंडीशन से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका चाहता तो निकलना है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब उसकी साख का सवाल बन गया, क्योंकि अब उसके साथ साथ उसके मिडिल ईस्ट में तमाम बेसिस को पर बड़ा खतरा मंडराने लगा, जहां पर लगातार जो ईरान के निशाने पर है। तो इन तमाम परिस्थितियों में तो ऐसा कहा जा सकता है कि अभी शांति वार्ता होती भी नहीं दिख रही है, लेकिन तमाम कोशिशें जारी है। हो सकता है कि अमेरिका कोशिश करे अपने ब्लॉकेट को हटाने की, लगातार ईरान को मनाने की।
1: ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की फायरिंग में बड़ी संख्या में लोगों की मौत को लेकर लोगों में गुस्सा है और अब भारत सरकार ने भी मामले को लेकर चिंता जताई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठाए गए हैं कि इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग क्यों की गई, कई मौत को लेकर पूरे इलाके में तनाव है। पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लोगों का यह प्रदर्शन हो रहा है।
0: पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में जुल्म की इंतहा हो रही है। पूरा इलाका सुलग रहा है। वहां बेगुनाह लोगों पर गोलियों की बौछार की जा रही है। पाकिस्तानी मुल्क की सरकार के खिलाफ विद्रोह को ऐसे ताकत के जोर पर दबाने की कोशिश की जा रही है। गोलियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और ऐसे जुल्म के खिलाफ वहां लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। हजारों हजार की भीड़ पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। दरअसल ये बवाल तब शुरू हुआ जब पीओजे के मेन लोग काफी वक्त से बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हैं। जेएएसी यानी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले 9 जून को बंद का ऐलान किया गया और उससे पहले सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पाकिस्तान सरकार ने 5 जून को जेएएसी पर प्रतिबंध लगा दिया, साथ ही पूरे पीओजे के में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। अगले ही दिन बड़े पैमाने पर नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसे एक्शन के विरोध में 7 जून से उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए। रावलकोट के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर झड़पें हुई। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों और शोक सभा में शामिल लोगों पर फायरिंग कर दी। पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी सेना को इन लोगों पर खुलेआम गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि रावलकोट में शोक सभा में शामिल 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हो गए।
4: कैंपों में जलील करते हो, यहाँ गलियों में मोहल्लों में जलील करते हो, यहाँ जो बेरोजगारी में जलील करते हो, यहाँ लाकानूनियत में जलील करते हो, तो लाओ एक एटम बम का गोला हम पे मार दो, बात खत्म हो जाएगी। वरना एक भी जिंदा रहेगा तो हक के मलकियत, हक के आजादी, हक के इख्तियार की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह।
0: पाकिस्तानी फौज की जुल्म के खिलाफ रावलकोट में मस्जिदों से अपील की गई कि लोग लॉन्ग मार्च में शामिल हों।
5: ये देख सकते हैं आप,
6: जम्मू कश्मीर की धरती पर बिरानी फोर्सेज की तरफ से हमला किया गया है। तमाम रहते वतन कश्मीरियों से गुजारिश है कि मुकम्मल लॉकडाउन और लॉन्ग मार्च में शिरकत करके कौमी गैरत का सबूत।
0: पीओजे के मेन पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ऐसी कार्रवाई को लेकर भारत ने गंभीर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमें पाकिस्तान से लगातार फर्जी खबरें और वीडियो देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छुपाने और मानवाधिकारों के हनन से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में पुलिस की बर्बरता की खबरें आ रही हैं, जिनमें कई प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। आशा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को इसके लिए जवाबदेह ठहराएगा। उधर पीओजे के में हिंसा को लेकर यूरोप स्थित मानवाधिकार संगठन ECHRD ने भी सवाल उठाए हैं और मांग की है कि इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विशेष बैठक बुलाई जाए, संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत मामले की जांच करें, स्वतंत्र जांच कराई जाए, इंटरनेट पर लगी रोक तत्काल खत्म की जाए और ये भी कि गिरफ्तार JAAC कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए। आज तक ब्यूरो।
1: और अब खबर आयरलैंड से, जहां पर बेलफास्ट में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। वहां से उग्र विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। बताया जा रहा है कि एक शख्स ने किसी की हत्या की कोशिश की, इसी को लेकर वहां पर बवाल मच गया, आगजनी की गई, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। ये उत्तरी आयरलैंड का बेलफास्ट है जहां पर जबरदस्त हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चाकू से हमले की वारदात के बाद ये उग्र प्रदर्शन किया गया।
7: राजधानी बेलफास्ट सुलग रहा है, बसों में आग लगा दी गई, कई कारें फूंक दी गई, एक एक कर कर कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी दहक उठी। ये हिंसा तब भड़की जब सोमवार को वहां चाकू वाले हमलावर ने एक शख्स का सिर काटने की कोशिश की। आरोप एक सूडानी शरणार्थी पर है। उसी वारदात के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मंगलवार को उत्तरी आयरलैंड में इमिग्रेशन विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए। बड़े पैमाने पर हिंसा फैल गई।

सुरक्षा बलों से टकराव के दौरान उग्र प्रदर्शनकारियों ने बस और कई अन्य गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कुछ इलाकों में घरों को निशाना बनाया, खिड़कियां तोड़ी और दरवाजे तोड़ दिए गए।

0: सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों से टकराते रहे, नकाबपोश युवक हमले करते रहे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस हमले की निंदा की है। आज तक ब्यूरो। और अब बात रूस की करेंगे, जहां पर दागिस्तान में गैस पाइपलाइन में तीन धमाके हुए। समाचार एजेंसी टास के मुताबिक मंगलवार को ये धमाके हुए। क्षेत्रीय आपातकालीन मंत्रालय की ओर से बताया गया कि रूस के दागिस्तान क्षेत्र के किजिल्यूट शहर में एक गैस पाइपलाइन में तीन विस्फोट हुए और बाद में वहां पर आसमान में शोले उठते दिखाई दिए। गैस पाइपलाइन के धमाके कैसे हुए ये अब तक वजह साफ नहीं है। बड़े इलाके में गैस सप्लाई से प्रभावित हो सकती है। और अब बात मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव की, जहां पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पहले चुनाव आयोग ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया और फिर मेमोरेंडम को लेकर मिलने पहुंचे कांग्रेस नेताओं को गेट पर ही रोक दिया गया, जिस पर बवाल है। अब चुनाव आयोग ने मुलाकात के लिए आज 12 बजे का वक्त दिया है। तो एमपी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। ये कहा गया कि कुछ डिटेल्स उन्होंने ठीक से नहीं भरी है अपने नामांकन पत्र में, जिसके चलते नामांकन रद्द कर दिया गया। इसी को लेकर अब कांग्रेस में गुस्सा है, चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं और आज 12 बजे का वक्त दिया गया है। इसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं बीजेपी ने नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद जश्न मनाया। अब नॉमिनेशन रद्द हुआ है तो स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि आखिरकार इसे रद्द क्यों किया गया।
1: लक्ष्मी जी, पहली प्रतिक्रिया आप
2: देखिए, जब उन्होंने ये देखा कि इनका पूरा हाउस यूनाइटेड है, पहली बात तो यह है कि उनका तीसरा कैंडिडेट भरने का तो मामला अपने आप में, उनकी राजनीतिक शुचिता कहाँ आज ठहर गई है जाकर, किस तरह से दलदल में फंसी हुई है उसको दिखाता है। उन्होंने सोचा कि वो खरीद फरोख्त की राजनीति करके स्कोर सेटल करेंगे। जब उनको दिखा कि ऑर्गेनिकली तीन दिन से हमारे सारे MLA अपने आप यहाँ आ रहे हैं और साथ में है, जब पूरा हाउस यूनाइटेड है, तो उन्होंने उसको पूरा करने के लिए एक बिल्कुल फर्जी बात पेश की, जो एक लीगल नोटिस है जिसका कोई अभी तक कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है। ये प्री कॉग्निशन स्टेज में था और उससे कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ, कोई केस नहीं है, तो उसको उन्होंने आधार बनाया। और उसके बाद जब उन्होंने फाइनल ऑर्डर्स दिए, उन फाइनल ऑर्डर्स में हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हमारे वकीलों ने, उसका उसमें कोई जिक्र तक नहीं किया, जिससे ये बहुत स्पष्ट है कि ये कहां से मोटिवेटेड था, किस तरह से ये फैसला हुआ। दिस वॉज नॉट अ लीगल बैटल विच वी लॉस्ट, दिस इज अ बैटल विच वी लॉस्ट अगेंस्ट पॉलिटिकल विल। ये जो लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश है, जो वोट चोरी से चालू हुई, अब वो सीट चोरी तक पहुंच गई है और ये उसका साफ प्रमाण है।
1: बीजेपी कह रही है कि आप सांसद भी रह चुकी हैं, बावजूद इसके आपने उसे छुपाया, ये उनका कहना है, जबकि छुपाना नहीं
2: छुपाया। अगर कोई लीगल केस है, यदि कोर्ट ने कॉग्निसेंस लिया है, मेरे पे ऊपर कोई चार्जेस फाइल हो गए हैं, उसको अगर मैं नहीं लिखती हूँ तो सही बात है कि हमने कुछ छुपाया। लेकिन जब कोई केस ही नहीं है जिसका कोर्ट ऑफ लॉ ने संज्ञान ही नहीं लिया है, तो उसको कैसे कहेंगे कि वो छुपाया है। ये तो ब्लेटेंट एरर है और ये कोई लीगल बात नहीं है, बहुत स्पष्टता से वहां दिखाई दे रहा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉम्प्रोमाइज्ड।
0: अमित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, मीनाक्षी तो सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन इज कॉम्प्रोमाइज, यानी कि जिस तरीके से उनका नामांकन रद्द किया गया है वो गलत है, तमाम आरोप वो लगा रही हैं, कह रही हैं कोई लीगल केस है ही नहीं, तो उसका मेंशन होगा क्यों?
3: नेहा देखिए, कांग्रेस की कहानी मध्य प्रदेश में अपने विधायक दल को इंटैक्ट रखने से शुरू हुई, बाड़े बंदी की तैयारी थी, लेकिन कहा जिनके लिए सब तैयारियां हो रही थी उनका नामांकन ही कैंसिल हो गया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कोई केस में जब तक मामला कन्वर्ट ना हो तब तक आप उसके बेसिस पे नॉमिनेशन कैसे कैंसिल कर सकते हैं, और यही वजह है कि जहां मैं खड़ा हूं इलेक्शन कमीशन के बाहर कल देर रात तक एक तरह से हंगामा चलता रहा। कांग्रेस के जो नेता थे यहां पर आकर इकट्ठा हो गए, विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जो एनएसयूआई है स्टूडेंट विंग उसने भी प्रदर्शन में अपनी भागीदारी दी, और इन सब के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कांग्रेस के डेलीगेशन को आज दिन 12 बजे का समय दिया है कि वो आए इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी बात रखें, और जो आपत्ति उनको है नॉमिनेशन कैंसिल होने को लेकर उसको भी अब जो है इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। अब देखना यह है कि क्या ईसीआई कांग्रेस के ग्रीवांसेस पर हामी भरते हुए इस कैंसिलेशन पर स्टे डालेगा या फिर जो मध्य प्रदेश में घटित हुआ है वही।
0: और आज 12 बजे इलेक्शन कमीशन पहुंचना है, कांग्रेस ने अपनी आपत्ति जो दर्ज कराई है उसको लेकर बातचीत होगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। पीएम मोदी ने सबसे लंबे समय के कार्यकाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, और इस मौके पर आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन होगा। भारत मंडप में बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और संगठन के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस बैठक को संबोधित करने वाले हैं। असम और बंगाल में जीत के बाद एनडीए की ये पहली बैठक है। सबसे लंबे कार्यकाल में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शुमार हो गया है, ये रिकॉर्ड उन्होंने स्थापित कर लिया है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू के नाम ये रिकॉर्ड था, पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री ने तोड़ दिया है। भारत मंडपम में आज एक खास कार्यक्रम होगा जिसमें एनडीए का शक्ति प्रदर्शन होगा। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, बड़े नेता इसमें शिरकत करेंगे और प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। तो बंगाल में अपना वर्चस्व स्थापित करने के बाद और एक बड़ी जीत के बाद ये पहली एनडीए की बैठक है। अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, तमाम मंत्री अब मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की आप तस्वीर देख रहे हैं जो इस वक्त पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही जेपी नड्डा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। एक लंबा वक्त, एक लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जाहिर तौर पर ये उत्सव का मौका एनडीए और तमाम घटक दलों के लिए, क्योंकि सभी के सहयोग और योगदान से एक बड़ा कार्यकाल, एक लंबा कार्यकाल जिसमें जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम आज सुबह 10 बजे श्वेता सिंह के साथ।

फिर शुरू हो गई ईरान यूएस के बीच सीधी जंग। अमेरिका की भयंकर एयर स्ट्राइक, 20 ठिकानों पर बमबारी और मिसाइल अटैक। ट्रंप ने कहा हेलीकॉप्टर पर हमले का करारा जवाब दिया। यूएस हमलों पर ईरान का जोरदार जवाब, अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से अंधाधुंध अटैक। बहरीन, कुवैत, कतर समेत कई ठिकानों पर ड्रोन से बरसा बारूद। जॉर्डन में बड़े नुकसान का दावा। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने से भड़की कांग्रेस, आज चुनाव आयोग के दफ्तर जाएगा प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी पर सीट चोरी का आरोप, विजयवर्गीय ने कहा अंदर ही है बेदिया। पीएम मोदी ने बनाया सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड, आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। 12 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड, भविष्य के रोडमैप पर बात। देश भर के मंदिरों में मंत्रियों ने और नेताओं ने की पूजा अर्चना। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मुनीर की बर्बरता पर भारत ने लगाई फटकार। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाक को जवाबदेह ठहराने को कहा। मुनीर आदमी ने ली 7 करवती समेत 27 की जान।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया नया कीर्तिमान। सबसे ज्यादा समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बने मोदी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़ा पीछे। मोदी के 12 साल पूरे होने पर दिल्ली में विशेष कार्यक्रम। एनडीए के सभी मुख्यमंत्री होंगे शामिल। पीएम मोदी का संबोधन होगा आज। एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक। पीएम मोदी बैठक को करेंगे संबोधित। असम और बंगाल में जीत के बाद एनडीए की पहली बैठक है। दोपहर 3 बजे भारत मंडपम में होगी मुख्यमंत्रियों की बैठक। मोदी सरकार के 12 साल पर हो रहा है कार्यक्रम। 16 और 17 जून को G7 समिट में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हो सकती है मुलाकात। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट की कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द। बीजेपी ने की थी शिकायत। बीजेपी ने शिकायत लगाया था आरोप। नामांकन पत्र में नटराजन ने छिपाई तेलंगाना के हैदराबाद कोर्ट में लंबित केस की जानकारी। बीजेपी की शिकायत पर रिटर्निंग ऑफिसर ने लिया फैसला। अब एमपी में राज्यसभा की 3 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध है। नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट और भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे चुनाव आयोग। सिर्फ 2 नेताओं को मिलने पर परमिशन पर हंगामा। चुनाव आयोग ने आज फिर बुलाया। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी में खुशी की लहर। मनाया गया जोरदार जश्न। रांची में राज्यसभा सीट के चुनाव में एनडीए समर्थित उम्मीदवार के नामांकन पर संकट गहराया। कांग्रेस लगाए हैं गंभीर आरोप। कांग्रेस एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी के नाम पर जता रही आपत्ति। नामांकन पत्र में अलग अलग नाम लिखा है। कांग्रेस विधायक नमन बिक्सल ने नामांकन पत्र के कुछ कॉलम्स पर जताई आपत्ति। का अपराध वाला कॉलम खाली छोड़ा। परिमल नथवानी के नामांकन पत्र को फिलहाल किया गया होल्ड। अंतिम फैसला करेगा चुनाव आयोग। फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बैनर्जी के घर जांच के लिए पहुंची सीआईडी की टीम। घर के बाहर जोरदार हंगामा। सीआईडी ने पूछताछ के लिए अभिषेक को दिया था नोटिस। अभिषेक ने सीआईडी से मांगा था वक्त। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सीआईडी की कार्रवाई पर जताई नाराजगी। बोले अभिषेक की गैर मौजूदगी में जांच गैर वाजिब है। बीजेपी विधायक सजल घोष का बयान। चोरों के घर गई सीआईडी। टीएमसी और दीदी अब फिनिश। कोलकाता एयरपोर्ट पर कल्याण बैनर्जी के खिलाफ नारेबाजी। लोगों से भिड़े कल्याण बैनर्जी। टीएमसी नेता जहांगीर को 5 दिन की पुलिस रिमांड। पुलिस ने मांगी थी 14 दिन की न्यायिक हिरासत। जहांगीर खान को रविवार को नेपाल बॉर्डर से किया गया था गिरफ्तार। हत्या के प्रयास, दंगा भड़काने, अवैध वसूली समेत कई गंभीर मामले हैं दर्ज। कोर्ट ले जाते वक्त टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता पर फेंके गए अंडे और टमाटर। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। 9/24 परगना में टीएमसी नेता के घर के बाहर लोगों का विरोध। वादा खिलाफी का आरोप। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। 10 जनपद पर करीब 1 घंटे गुजारा वक्त। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर मंथन। दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक में जुटेंगे बीजेपी के नेता। दिल्ली में एनडीए की रणनीतिक बैठक में सीएम योगी, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी करेंगे शिरकत। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव जिलावार बैठकों के जरिए साध रहे संगठन। हापुड़ और बुलंदशहर पर समाजवादी पार्टी का फोकस। संभावित प्रत्याशियों और चुनाव रणनीति पर मंथन। अखिलेश यादव का दावा, 2027 चुनाव से पहले बीजेपी 225 विधायकों के टिकट काट सकती है। लोकसभा नतीजों से जोड़ा फैसला। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। 43 हारी सीटों और करीबी मुकाबलों वाले क्षेत्रों में प्रत्याशी बदलने की तैयारी। समाजवादी पार्टी सांसद का दावा, बीजेपी डरी हुई है 2027 से पीडीए की सरकार बनेगी। 22 जून को फैजाबाद में बीएसपी की बड़ी रैली। 23 जून को कई विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा संभव। विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। बीएसपी 100 सीटों पर प्रभारी नियुक्त करने और प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी में। गठबंधन की अटकलों पर बीएसपी का विराम। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल बोले जनता ही पार्टी की असली सहयोगी है। पासी किला यात्रा पर सियासत तेज। शिव मंदिर की मांग को लेकर अभियान शुरू।

हेलीकॉप्टर पर हमले में तेहरान का हाथ नहीं, युद्ध में हार के बावजूद अमेरिका लगातार ईरान के संकल्प की परीक्षा ले रहा है। ईरान के खोमेन शहर से 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने का दावा, क्षेत्र में बड़ी हलचल। मरकजी प्रांत के खोमेन से मिसाइल लॉन्च होने की खबर, अज्ञात दिशा में दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल, खोमेन से बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण का दावा। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आसमान में दिखी रानी मिसाइल, क्षेत्र में बढ़ी हलचल। ईरान ने जॉर्डन में F-35 हैंगर तबाह करने का दावा किया, सुरक्षा स्थिति पर नजर। ईरानी मिसाइल खतरे के बीच अल अज़राक स्थित अमेरिकी बेस अलर्ट पर, मिसाइल रोकने की कार्रवाई का दावा। निर्वाचन आयोग के गेट पर कांग्रेस ने दिया धरना, निर्वाचन आयोग में ताला डला होने के बावजूद धरने पर बैठे कांग्रेस नेता। आयोग के गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ता की जमकर नारेबाजी, राम धुन गाकर कांग्रेस के नामांकन रद्द होने का जताया विरोध। सूरत नगर निगम के 100 से अधिक मकानों के अवैध रिमोल्यूशन को लेकर कांग्रेस और पीड़ितों ने किया कमिश्नर के बंगले का घेराव, पुलिस ने जबरन हटाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में अग्निकांड के बाद गया में अग्निशमन विभाग एक्शन में, बिना फायर सेफ्टी और फायर एनओसी के बिना चल रहे 42 होटल्स और हॉस्पिटल को नोटिस दिया गया। दरभंगा में कुमार समाज के लोग डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन, मिट्टी के बने बर्तन के साथ पोस्टर लेकर पहुंचे डीएम के दफ्तर। गर्मी की तपे झेल रहे राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए राहत वाली न्यूज, दिल्ली साउथ एवेन्यू इलाके में हुई बारिश, बारिश लोगों को गर्मी से मिली राहत। साउथ ईस्ट दिल्ली में बदला मौसम, धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी, लोगों को मिली गर्मी से राहत। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में बारिश, आसमान में बिजली कड़कने के साथ हुई बूंदाबांदी में गर्मी से दिलाई राहत। दिल्ली एयरपोर्ट के इलाके में दिखा मौसम बदलाव, मौसम बदलने से गिरा तापमान। मुंबई में बरसी राहत की फुहारें, मुंबई की ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और कुर्ला इलाके से आई बारिश की तस्वीरें। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 4 जून को केरल में दस्तक देगा, लेकिन उत्तर भारत अभी उसमें समय लगेगा। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में मानसून की एंट्री 25 से 30 जून के बीच हो सकती है। केरल के बाद कर्नाटक, तमिलनाडु के बड़े हिस्से तक पहुंचा मानसून, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में दस्तक दे चुका है मानसून। देश के पहाड़ी राज्यों में फिर मिलेगी गर्मी से राहत, 11 जून से सक्रिय होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। हैदराबाद में हुआ मूसलाधार बारिश से गर्मी से राहत मिली लोगों को, मौसम हुआ सुहाना। उत्तराखंड में मॉनसून को लेकर सरकार का अलर्ट, सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ मॉनसून की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की है। राजस्थान में बड़ी गर्मी, श्रीगंगानगर बना देश का सबसे गर्म शहर, 45.6 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। राजस्थान के 5 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में सबसे ज्यादा नुकसान का अनुमान। हरियाणा में भी बदला मौसम, रेवाड़ी में तेज बारिश के साथ लोगों को गर्मी से मिली राहत। आगरा में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी के साथ हुई बारिश, तेज आंधी की वजह से कई जगह पेड़, होर्डिंग और टिन के शेड गिरे। उत्तराखंड में आस्था भक्ति का संगम, चारों धाम में इस साल अब तक पहुंचे श्रद्धालुओं की तादाद 32 लाख के पार। केदारनाथ धाम में उमड़ रही श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़, 11 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। बद्रीनाथ धाम पहुंचे 22,635 श्रद्धालु, अब तक 9,97,000 से ज्यादा भक्त कर चुके हैं भगवान बद्री पर विशाल के दर्शन। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम भी यात्रियों से गुलजार, अब तक 11 लाख से ज्यादा भक्तों ने लिया माँ गंगा और यमुना का आशीर्वाद। चमोली में सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में 4,020 यात्री पहुंचे, 69,860 श्रद्धालु पवित्र गुरुद्वारे में टेक चुके हैं मत्था। देवरिया में ट्रैफिक सिपाही पर बस कंडक्टर से मारपीट का आरोप, पुलिस कंडक्टर को खींचकर जाता दिखा, सिपाही को किया गया लाइन हाजिर। रामपुर में प्रेमिका से शादी की जिद में नेटवर्क टावर पर चढ़ा युवक, आश्वासन मिलने पर नीचे उतरा। मुजफ्फरपुर में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश, रंगे हाथ पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद हामिद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जामनगर में एसीबी टीम ने 5 लाख रूपये की रिश्वत लेते 2 आरोपियों को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। गोरखपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा की सुरक्षा में सेन, मोबाइल के साथ पकड़ा गया युवक, लापरवाही करने पर 2 दरोगा निलंबित, 6 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। दिल्ली के बकौली इलाके में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का दावा, मिलने वाले 12 गैस सिलेंडर अब घटकर 4 रह गए हैं, कुछ परिवारों को एक भी सिलेंडर नहीं मिला है। विदेश में नौकरी का सपना दिखाकर गुजरात के आणंद में 32 से ज्यादा युवाओं से 78 लाख रूपये की ठगी का मामला, रूस भेजे 20 युवाओं की हालत खराब। अररिया में करीब 12 करोड़ के मोबाइल फोन से भरे ट्रक की संदिग्ध लूट, ड्राइवर फरार, घटना ने जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में घर से निकली नाबालिग लड़की से 2 युवकों ने किया गैंगरेप, FIR दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी। बागपत में भतीजी संग प्रेमी को देख भड़के चाचा नाराज, प्रेमी ने चाचा को मारकर बस्ती में फेंकी लाश।

अफगानिस्तान की हवाई सीमा का उल्लंघन करते हुए रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हमले पूरी तरह नागरिक क्षेत्रों पर किए गए। मुजाहिद ने बताया कि मृतकों में 11 बच्चे, एक महिला, एक बुजुर्ग शामिल हैं। तालिबान सरकार के अनुसार पिछले एक साल में पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। मार्च में काबुल स्थित एक पुनर्वास केंद्र पर हुए हमले में 269 लोगों की मौत का दावा किया गया। रुकेंगे यहां छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।

इस बीच बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां पर एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमला हुआ है। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में 13 लोगों की जान गई है, 14 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तालिबानी सरकार के मुताबिक मरने वालों में 11 बच्चे शामिल हैं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: उधर गया।
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
6: AU सोच बदलो और बैंक भी।
7: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
10: लाइन डेसर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेसर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
11: लाइन डेसर्ट किंग डेट्स
10: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
12: इन एसोसिएशन विद
13: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
12: हिंट, बड़े आराम से
13: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
12: विमल बोलो जुबां केसरी।
14: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
15: मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूँ जहाँ पर ये आग लगी।
16: मैं आपको टॉप एंगल से एक तस्वीर दिखाता हूँ और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी है।
17: यहाँ पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था?
18: ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है।
16: 20 लोगों की जान चली गई। और देखिए जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहां से नहीं दिखाएंगे।

ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। एक ट्रक तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। अचानक ट्रक अनियंत्रित होता है और ट्रक का पिछला हिस्सा करीब 10 फीट हवा में उड़ता है और अपने दाहिनी साइड घूम जाता है। ठीक तभी एक कार सामने से आती है। कार ट्रक के नीचे से गुजर जाती है। गनीमत रही कि ट्रक का हिस्सा कार के ऊपर नहीं गिरा और पुल से टकरा गया। ये भयानक तस्वीरें यूपी में चित्रकूट के झांसी प्रयागराज नेशनल हाईवे 35 के लालापुर वाल्मीकि नदी पुल की हैं। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये महाराष्ट्र में बारामती की तस्वीरें हैं। नशे में धुत ट्रक ड्राइवर स्टंट कर रहा है। अचानक ट्रक अनियंत्रित हुआ और सड़क पर गेंद की तरह लुढ़कता चला गया। वो तो शुक्र था कि आसपास चलने वाले लोग सावधान थे, इसलिए बड़ा हादसा नहीं हुआ। अलबत्ता ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। दोनों हादसों में लोगों की जान बाल बाल बची। बारामती से वसंत मोरे के साथ अखिलेश कुमार, चित्रकूट आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: हिंदुस्तान में विपक्ष का पूर्वी किला ढहने के बाद दो साल में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो सहयोगी दलों ने कांग्रेस के सामने शिकायतों की पोटली खोल दी। सूत्रों के मुताबिक खड़गे के संबोधन के बाद सबसे पहले अखिलेश यादव को बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने नाराजगी की झड़ी लगा दी। अखिलेश ने पूछा कि आज डीएमके कहा है आप क्षेत्रीय दलों से तालमेल नहीं बैठा पाते, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मजबूत क्षेत्रीय दलों को सहयोग करना चाहिए। अखिलेश ने शुरुआत क्या की, कांग्रेस के रवैये से दुखी सभी क्षेत्रीय दलों ने अपना अपना दुख सामने रखना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के नेता राज्यों में सहयोगियों पर ही हमले करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में भी चुनाव में कांग्रेस मनमाने तरीके से फैसले लेते रही। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उम्मीदवारों पर बात तक नहीं की जाती है। वीसीके ने कहा कि डीएमके टीएमसी सीपीएम सबको चुनाव में कमजोर किया गया। लेफ्ट ने कहा कि केरल में राहुल और प्रियंका ने हमारे ऊपर ही बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा दिया था। उद्धव ने कहा कि बिना संयोजक के ऐसे काम नहीं चलेगा, एक चेहरा तो तय करें। बैठक से बाहर निकले लेफ्ट नेताओं ने कहा कि सोनिया और राहुल ने सप्रेम शिकायतें सुनी और कबूल की लेकिन उनकी सफाई लेफ्ट को कबूल नहीं। बीजेपी को हमले का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि 8 जून की बैठक में सभी 25 दलों के सामने अखिलेश ने कांग्रेस को दो टूक कह दिया कि आपको सीट की जिद नहीं करनी चाहिए, बात सीट की नहीं जीत की है, जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी वही मिलेगी, ज्यादा सीट की जिद न करते हुए जमीनी हकीकत समझना होगा, हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, पूरी मदद मिलेगी। दरअसल अब तक यही तस्वीर दिखती आई कि यूपी में राहुल और अखिलेश एक बार फिर मिलकर लड़ सकते हैं लेकिन इससे पहले सीट बंटवारे पर पैतरेबाजी शुरू हो चुकी है। खबर है कि कांग्रेस 120 सीटों पर शुरुआती दावा पेश कर सकती है जो 3 कैटेगरी में बटी है। इसमें पहली कैटेगरी करीब 40 ऐसी सीटें जहां 2017 में कांग्रेस एसपी गठबंधन में रहकर 2 नंबर पर रही थी। इसके अलावा करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां 2024 के चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी और 30 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस अब खुद को दावेदार समझने लगी। वैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग की तारीख कुछ ऐसी है कि 2017 में जब गठबंधन हुआ तो अखिलेश को सीट बंटवारे में 298 सीट मिली लेकिन 311 सीटों पर लड़ गए। समाजवादी पार्टी 47 सीटें जीती और दर रही 15.11%। इसी तरह कांग्रेस को हिस्सों में 105 सीटें मिली थी लेकिन 114 पर लड़ी थी। कांग्रेस पार्टी ने 7 सीटें जीती और स्ट्राइक रेट था तब 6.14। लेकिन जब 2022 के चुनाव आए तो दोनों दलों में बात नहीं बन पाई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े, दोनों ही दलों का प्रदर्शन खराब हुआ था और कांग्रेस की बुरी हालत हो गई थी। 2022 में समाजवादी पार्टी 346 सीटों पर लड़कर 111 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 32.08%। कांग्रेस 399 सीटों पर लड़कर 2 सीट केवल जीत पाई और स्ट्राइक रेट गिरकर 0.50% रह गया। इससे साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में राहुल और अखिलेश का साथ आना ही एक दूसरे के बेहतर प्रदर्शन की गारंटी है। इसी का अंदाजा लगाते हुए 2024 में दोनों दल फिर साथ आए और जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ गठबंधन में तब समाजवादी पार्टी ने 62 सीटों पर लड़कर 37 सीटें जीती, दर रही 59.68%। कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ी, 7 सीटें जीती, 41.17% की दर पहुंची थी। अखिलेश का विधानसभा में कांग्रेस के मुकाबले 2 गुना से अधिक का स्ट्राइक रेट रहा है लेकिन लोकसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक रहा है, इसी आधार पर वो ज्यादा सीटें मांग सकती है। दिल्ली से राहुल गौतम के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया.

0: बीच सीधी जंग, अमेरिका की भयंकर एयर स्ट्राइक, 20 ठिकानों पर बमबारी और मिसाइल अटैक। ट्रंप ने कहा हेलीकॉप्टर पर हमले का करारा जवाब दिया। यूएस हमलों पर ईरान का जोरदार जवाब, अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से अंधाधुंध अटैक। बहरेन, कुवैत, कतर समेत कई ठिकानों पर ड्रोन से बरसा बारूद, जॉर्डन में बड़े नुकसान का दावा। पीएम मोदी ने बनाया सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड, आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। 12 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड, भविष्य के रोड मैप पर बात। देश भर के मंदिरों में मंत्रियों और नेताओं ने की पूजा पाठ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। राजनीति में जो इतिहास रचते हैं वो विलक्षण कहलाते हैं, जो जनगण का मन जीतते हैं वो जननायक कहलाते हैं, और जो देश का भावनात्मक विश्वास हासिल करते हैं वो कर्मयोगी कहलाते हैं। और जो ये तीनों उपाधियां हासिल कर ले वो राजनीति का मुकम्मल दौर बन जाता है। भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे ही दौर है जो इन तीनों कसौटियों पर खरे उतर रहे हैं, और वो केंद्र की राजनीति में अपने 12 वर्ष पूरे कर रहे हैं।

0: हजारों साल की महान संस्कृति परंपरा वो ही मेरा सामर्थ्य। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं तो मोदी नहीं जाता। हजारों साल की वेद से विवेकानंद की महान परंपरा को 140 करोड़ लोग उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता हूं।
1: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि गरीबों के आशीर्वाद से ही आज मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला है। देश के कोटि कोटि जनों ने भी मुझे आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी।
0: सामर्थ्य मोदी का नहीं है, सामर्थ्य भारत का है।

0: जैसे जल की मिशन के लिए पैदा हुआ।
1: 12 वर्ष के राजनीतिक सफर में कई नारे गूंजे।
2: भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन,
3: मोदी है तो मुमकिन है।
1: कई नारे जन आंदोलन बन गए।
4: आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है।
1: कई नारों ने देश की राजनीति का रुख पलट कर रख दिया।
5: मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी।
1: लेकिन जो कभी नहीं बदला तो वो है दो शब्दों का एक नाम जो नारा बन गया। शासन के 12 साल एक ऐसी उपलब्धि लेकर आए जो भारतीय राजनीति में मोदी को पीएम नंबर वन बनाती है। मोदी बने पीएम नंबर वन, पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा पीएम मोदी ने, मोदी सबसे लंबे समय तक रहने वाले निर्वाचित पीएम, नेहरू 4398 दिन निर्वाचित पीएम रहे। 4399 दिनों के साथ पीएम मोदी ने तोड़ा रिकॉर्ड। समर्थक 12 वर्षों से निरंतर समर्थन को विकास का युग कहते हैं।
6: नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला है, फैसला लेने
7: कई प्रधानमंत्री आए, कई प्रधानमंत्री गए, मगर धारा 370 को छूने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता।
8: वो जो सोचते हैं देश के लिए परफेक्ट सोचते हैं,
1: विरोधी अंतहीन चुनौतियों का समय मानते हैं।
9: पहला एक्शन लिया है जो प्रधानमंत्री के लायक एक्शन।
10: भारतीय जनता पार्टी को बातों में कोई नहीं हरा सकता है।
1: सरकार नए भारत का उदय कहती है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसे सेवा का वो संकल्प मानते हैं जो असंभव को भी संभव बनाने का मादा रखता है। और धीरे धीरे भगवा होता देश का नक्शा।
5: हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास का है। हमारा मॉडल गुड गवर्नेंस का है। इसलिए हर राज्य में जनता बीजेपी को दूसरी बार तीसरी बार फिर से सेवा करने का अवसर देती है।
1: संख्या शास्त्र में 12 गणित का एक अंक होता है, लेकिन जीवन शास्त्र में ये 12-12 में विभाजित समय, आस्था के 12 ज्योतिर्लिंग और 12वें महीने में साल के अंत और प्रारंभ का प्रतीक होता है। राजनीति शास्त्र में मोदी शासन के 12 वर्ष लोकप्रियता और चुनौतियों का संतुलन बनाते हुए निरंतरता कायम रखे।
5: आपके इस आशीर्वाद की शक्ति से मैं दिन रात देशवासियों की सेवा में जुटा रहा हूं। इन वर्षों में देश ने वो फैसले लिए जो अकल्पनीय थे। बीजेपी ने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर देखा है।

अलग अलग संस्कृतियों और मान्यताओं वाले देश में एक चेहरे की स्वीकार्यता कभी आसान नहीं रही, लेकिन गंगा से गंगा सागर तक राज्यों में जीत इस मिथक को तोड़ती है। बीते 12 वर्षों में अंग बंग कलिंग तक की विजय ने बड़े सियासी संदेश दिए हैं।

0: 12 साल में राजनीति कैसे बदली है ये दो तस्वीरों से स्पष्ट होता है।
1: आज हमने जो कुछ भी पाया है वो पांच पांच पीढ़ी खप गई है तब आया है। दीवारों पर दिया जलाते जलाते खपे हुए अनेक परिवार हैं।
2: बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है।
3: सिलीगुड़ी निवासी श्री माखनलाल सरकार।
0: कितने ही कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी उम्र दे दी।
3: पूरी प्रतीक्षा मुद दीर्घ प्रतीक्षा। भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
0: कितने ही लोगों के प्राण चले गए। बीजेपी के वैचारिक संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर स्वप्न दृष्टा अटल बिहारी वाजपेयी तक कितनी ही पीढ़ियां पश्चिम बंगाल में पार्टी का सूरज उगाने का ख्वाब लेकर संसार से विदा ले गए।
4: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल, पंजाब और आसाम के अधिकाधिक हिस्सों को भारत का अंग रखने के लिए अभियान किया और उसमें काफी दूर तक सफलता पाई।
2: भाजपा का तो जन्म ही डॉक्टर मुखर्जी के आशीर्वाद से हुआ है। वे भारत के औद्योगिक विकास के जनक रहे हैं।
0: खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12 साल पहले जो संभावनाओं का सरोवर तैयार किया था उसमें अब जाकर कमल खिले।
2: बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज माँ गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है।
0: आसान नहीं था एक दशक में 2 से 77 और फिर 207 तक का सफर तय करना। आसान नहीं था वामपंथ और तृणमूल के किले को ध्वस्त करके जीत का झंडा उठाना।
2: बीजेपी बंगाल में ऐसा भय मुक्त वातावरण बनाकर दिखाएगी ये मोदी की गारंटी है। बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टिकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है।
0: पर नीति, रणनीति और राजनीति का अथक प्रयास ऐसा कि बीजेपी को वो हासिल हो गया जो सभी राजनीतिक विश्लेषकों को असंभव लगता है। उत्तर से पूर्वोत्तर तक देश का राजनीतिक नक्शा बदल चुका है। इस समय 22 राज्यों में बीजेपी की अकेले या सहयोगियों के साथ सरकार है। देश के 72% भूभाग और 76% आबादी पर बीजेपी या एनडीए का शासन

0: पश्चिम बंगाल भारतीय राजनीति में मोदी मैजिक का सबसे नया अध्याय है, लेकिन इसके साथ देश का चुनावी नक्शा जिस तरह बदला वो बीजेपी के लिए भी अकल्पनीय था।
1: पश्चिम बंगाल की पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन।
0: बंगाल की जीत सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं है, बल्कि मोदी शासन के 12 साल की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानी जा सकती है।
1: जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज
0: बंगाल में पार्टी का विस्तार बीजेपी की लंबे समय से चली आ रही महत्वाकांक्षा थी। साल पहले 2014 में नरेंद्र मोदी जब केंद्र की सत्ता में स्थापित हुए, तब बीजेपी और उसके सहयोगियों की सिर्फ 7 राज्यों में सरकारें थी, बीजेपी सिर्फ 5 राज्यों में और शेष 2 पर एनडीए के साथ। बीजेपी और एनडीए का शासन सिर्फ देश की 26% आबादी पर ही था, जबकि 14 राज्यों में कांग्रेस या दूसरे दलों की सरकारें थी और देश की 37% आबादी पर गैर बीजेपी शासन था। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जिस तरह देश के कमजोर तबके को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई, उसने राज्यों की राजनीति पर भी असर डालना शुरू कर दिया। शौचालय, पानी, बिजली, गैस जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को अपने साथ भावनात्मक रूप से जोड़ लिया।
2: मैं गरीबी का जीवन जीकर आया हूं, मैंने गरीबी को जिया है। गरीब की जिंदगी कितनी तकलीफ वाली होती है ना, उससे मैं गुजरते गुजरते यहां आया हूं। इसलिए गरीब कल्याण की हर योजना की प्रेरणा मेरे अपने जीवन के अनुभव से जन्म लिया है।
0: 2014 से 2018 यानी सिर्फ 4 साल में देश के राजनीतिक मानचित्र पर मोदी फैक्टर का असर ऐतिहासिक रूप से दिखने लगा। 2018 तक बीजेपी या एनडीए की 21 राज्यों में सरकारें हो गईं। देश की 71% आबादी पर बीजेपी और सहयोगियों का शासन हो गया। ये बीजेपी और एनडीए का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। कांग्रेस सिर्फ 4 राज्यों में सिमट गई।
2: कांग्रेस के पास भविष्य की सोच ही नहीं बची है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। अब कांग्रेस में ना देखने का सामर्थ्य बचा है, न देश हित को समझने का।
0: आंदोलनों और विपक्ष के आक्रामक विरोध के कारण 2023 तक एक समय ऐसा भी आया जब बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकारें सिर्फ 16 राज्यों में रह गईं। ब्रांड मोदी की चमक पर सवाल उठने लगे। इसी बीच हुआ 2024 का लोकसभा चुनाव। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 240 पर सिमट गई। तब विपक्ष को लगा अब मोदी मैजिक खत्म हुआ।
3: बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया, एक सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा और एक सेकंड में खत्म।
4: जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है, तो उस दिशा में जनता का मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाने का काम किया।
0: लेकिन इसी समय प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी आने वाली राजनीति का भी संकेत दे दिया।
2: तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है।
0: इसके बाद जो हुआ वो देश के राजनीतिक इतिहास में एक अलग ही कहानी है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी ने 7 में जीत दर्ज की। हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी ने अब तक की सबसे शानदार जीत हासिल की। 27 साल बाद दिल्ली जीत ली और 2025 में बिहार चुनाव में तो ऐतिहासिक जीत हासिल करके गर्दा ही उड़ा दिया।

0: हर जाति, हर समुदाय, हर क्षेत्र ने एनडीए को अपना विश्वास, अपना आशीर्वाद दिया है और लगातार अपना आशीर्वाद दे रहे हैं।
1: असम और पुडुचेरी की शानदार जीत अपनी जगह,
2: आमीन शुभेंदु अधिकारी,
1: लेकिन मोदी नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की जीत ने वो कर दिखाया जिसकी भविष्यवाणी कभी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व किया करता था।
3: मैं भविष्यवाणी करने का साहस करता हूँ, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा।

0: बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। एकमात्र झारखंड के अपवाद को छोड़ दें, जहां जहां पीएम मोदी के नेतृत्व में कमल खिला वहां से फिर मुरझाया नहीं। रिपीट जीत से लेकर बीजेपी सरकारों की जीत की हैट्रिकों से राजनीति शास्त्र के पन्ने भर गए।
1: बीजेपी अपने विचार, विजन और विकास के विश्वास पर खरा उतरकर देश की पसंद बन रही है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद प्राप्त कर रही है।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी,
1: भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टिकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है।
3: 9 मई को प्रधानमंत्री मोदी 9वें ऐसे राज्य में अपनी पार्टी का इकबाल बुलंद होते देख रहे थे, जहां पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ ले रहा था।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी,
3: याद आया होगा वो वक्त भी जब पूरे देश में बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर थी, आज 22 राज्यों में है और उनमें भी 9 राज्यों में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री है।
2: निष्ठा और अनुगत पोषण करिबो।
1: आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। जनता साफ देख रही है, जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस, जहां भाजपा वहां विकास।
3: समर्थक इसे प्रधानमंत्री मोदी के शासन में बीजेपी का स्वर्णिम काल कहते हैं। गुजरात में 1995 से बीजेपी की निरंतर सरकार है। 2003 से मध्य प्रदेश में बीच के 15 महीने छोड़ दें तो 2 दशक से अधिक समय से बीजेपी की सरकार है। गोवा में 2012 के बाद से बीजेपी का मुख्यमंत्री है। बीजेपी के विचार पुरुषों ने सरकारों के स्थायित्व की जो परिपाटी डाली थी, नरेंद्र मोदी उसे बुलंदियों के छोर तक ले गए और न सिर्फ स्थायी सरकारों के रिकॉर्ड का विस्तार किया बल्कि असंभव राज्यों में भी सरकारें बनाकर राजनीति का स्थायी परिवर्तन संभव किया। जहां बीजेपी कभी थी ही नहीं वहां भी उसका मुख्यमंत्री हुआ। 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। अविभाजित शिवसेना के साथ पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। 2014 में ही हरियाणा की जीत के बाद पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल खट्टर ने शपथ ली। बीजेपी यहां जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। 2016 में पहली बार बीजेपी असम में जीती और पूर्वोत्तर में मोदी युग शुरू हुआ। सर्वानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने। यहाँ भी बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। बीजेपी ने 2016 में पहली बार अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाई और पेमा खांडू मुख्यमंत्री बने। 2017 में बीजेपी ने मणिपुर में गठबंधन सरकार बनाई और पहली बार बीजेपी के एन वीरेन सिंह मुख्यमंत्री बने। सीमावर्ती राज्य में ये बीजेपी की पहली सरकार थी। 2018 में वाम दलों के सबसे मजबूत समझे जाने वाले गढ़ त्रिपुरा में बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की और अब तक लगातार 2 बार से वहां बीजेपी की सरकार है। 2024 में नवीन पटनायक के 24 वर्षों के शासन को खत्म करके पहली बार बीजेपी ने बहुमत से सरकार बनाई। 2026 में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ ली। 2026 में पश्चिम बंगाल में भी पहली बार बीजेपी का राज स्थापित हो चुका है और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं।

0: भारतीय राजनीति का सूचकांक मानो मोदी की मौजूदगी से तय होता है। उनकी एक रैली, एक बयान, एक रणनीति, एक फैसला राजनीतिक तापमान को बदल देते हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, चुनावी गणित हो या राजनीतिक विमर्श, नरेंद्र मोदी विरोधियों को अपनी पिच पर खेलने को मजबूर कर देते हैं। किसने सोचा था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वर्चस्व वाले उत्तर प्रदेश में 14 वर्ष से सत्ता का वनवास भोग रही बीजेपी बहुमत से लौट सकेगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये भी संभव हुआ। बीजेपी 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश में सत्ता में बनी हुई है और इस बार 2027 में तीसरी बार जीत के लिए तैयारियों में जुटी है।
1: उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है, मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं।
2: मैं विष्णु देव साय ईश्वर की।
0: छत्तीसगढ़ में फिर से बीजेपी है, राजस्थान में फिर से बीजेपी है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार ढाई दशक बाद बनी है, आंध्र प्रदेश में बीजेपी विजयी गठबंधन का हिस्सा है, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी लगातार दस्तक दे रही है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नीति, नियत और नेतृत्व के 25 साल का वो सफर जो एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड है देश की राजनीति में, देखते रहिए आज।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
8: Sokudo.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
5: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स, ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
6: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
5: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
7: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
8: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
11: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
12: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
13: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
11: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
14: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
12: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
11: जहां खबर वहां खबरदार।
15: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
2: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams come. Steely Dan, go back, Jack, do it again. Loggins and Messina, even though we ain't got money. And much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.

0: प्रधानमंत्री मोदी पिछले 12 वर्षों में विपक्षी राजनीति के लिए लगातार शत्रुंजय साबित हुए। 2014 में उन्होंने कांग्रेस के लंबे दौर को समाप्त कर विकास, मजबूत नेतृत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, राष्ट्रीय सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के सहारे पहले से भी बड़ा जनादेश हासिल किया। 2024 में कड़ी चुनौतियां थी, संपूर्ण विपक्षी एकजुटता थी, लेकिन उसके बावजूद तीसरी बार सत्ता में लौटकर नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीतिक पकड़ और जन स्वीकृति को फिर साबित किया। दो हजार 2014 को बीते 12 वर्ष हो गए, लेकिन राजनीति के विश्लेषक अब भी उस दौर की समीक्षाओं में जुटे हैं। जब पहली बार राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में गूंजा,
1: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
0: कई कयास थे कि जो कभी सांसद भी नहीं बना वो प्रधानमंत्री के पदभार को कैसे संभालेगा, जिसने इससे पहले कभी दिल्ली की राजनीति में कदम भी नहीं रखा था, वो दिल्ली की राजनीति में कामयाब कैसे होगा।
1: मैं पहली बार यहाँ आया, शायद मेरे जीवन में हर बार ऐसा ही हुआ है। शरीर का प्रत्येक कण, समय का प्रत्येक पल, पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसके लिए पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है।
0: प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने दीर्घकालिक लक्ष्य तय किए। उनकी नजरें आम जनजीवन की बुनियादी सुविधाओं,
2: गैस कनेक्शन पे परेशानी खत्म, घर वाले बहुत खुश हैं,
0: देश के विकास में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सांस्कृतिक आकांक्षाओं पर रही तो उनका राजनीतिक दर्शन ये भी स्पष्ट करता था कि राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में कैसा होगा।
3: शिलान्यास का अवसर मिला था, ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा।
0: जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ होगी तो देश का ढांचा कैसा होना चाहिए।
4: साथियों, हम आज की नहीं बल्कि अगले 25-50 साल की जरूरतों के मुताबिक देश को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे ना, विकसित भारत बना के रहना है दोस्तों, आपके लिए बनाना है, आपके बच्चों के लिए बनाना है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए बनाना है।
0: पीएम मोदी ने सार्वजनिक जीवन की छोटी बातों से बड़े अभियान शुरू किए। राष्ट्रहित के फैसलों में बेबाकी रखी, दुनिया के सामने देश की नीति स्पष्ट रखी।
5: न हम झुकेंगे, हम परिश्रम की पराकाष्ठा करते रहेंगे और अपनी आंखों के सामने 2047 में विकसित भारत बना करके रहेंगे।
0: नरेंद्र मोदी ने राजनीति का कठेरा वर्षों तक संगठन के लिए काम करके सीखा था। वर्षों वो आम लोगों के बीच रहे थे, प्रधानमंत्री बने तो ये अनुभव बहुत काम आया। पारंपरिक वोट बैंक की राजनीति से इतर उन्होंने नया वोट वर्ग तैयार कर लिया।
6: मैं देश की महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को विशेष रूप से नमन करता।
0: राजनीति तो परीक्षा ले ही रही थी, लेकिन राष्ट्र नीति में प्रधानमंत्री मोदी के सब्र की परीक्षा का समय भी आया। 18 सितंबर 2016 उरी में पाकिस्तानी हमले में जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। देश ये जानना चाहता था कि इसका जवाब कैसे दिया जाएगा, और जवाब मिला भी।
7: आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है।
4: भारत को किसी ने छोड़ा तो वो छोड़ता भी नहीं।
0: 29 सितंबर की रात दुनिया ने देखा कि शांति के कबूतर उड़ाने वाला भारत कैसे बाज बन गया। सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरी बलिदान का बदला ले लिया गया। पाकिस्तान पर ऐसी कार्रवाई हुई कि अब तक का भारत पाकिस्तान इतिहास के सारी समीकरण ही बदल गए।
1: जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता।
0: शासन के 5 वर्ष बीते तो समर्थकों ने सेवा के तौर पर मनाया, और विपक्ष ने अपनी वापसी की उम्मीदों के तौर पर देखना शुरू किया। अगले टर्म के चुनावों की तैयारी में देश जुटा था। कयास ये लगाए जा रहे थे कि अब की बार क्या फिर नरेंद्र मोदी सरकार। लेकिन फिर एक बार राष्ट्रनीति की परीक्षा की घड़ी आ गई। 14 फरवरी 2019 में पाकिस्तान की शह पर पुलवामा अटैक हो गया। 40 जवान शहीद हो गए। पूरा देश दुख और गुस्से में था।
8: इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है।
1: हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं,

0: उसका तहफ्फुज़ मांगते हैं, बल्कि अपनी इज्जत और आन का भी तहफ्फुज़ मांगते हैं।
1: पूरे विश्व को ये संदेश गया कि ये नया भारत है जो घर में घुस कर मारता है। लेकिन यही वो समय भी था जब देश की राजनीति में 2019 के आम चुनावों का गणित बिठाया जा रहा था। 2019 के चुनाव के चुनाव इस मुद्दे पर थे कि क्या 2014 की मोदी जीत एक चुनावी टुक्का थी या वाकई देश का जनादेश उनके साथ था। विपक्ष के आरोप तीखे थे तो जवाब भी पूरे जोर से दिया गया।
2: नोट से वोट खरीदने का ये पाप इनकी राजनीतिक संस्कृति रही है। अब बताइए भैया, वो पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं चौकीदार चोर है, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? लेकिन नोटे कहां से निकलती है, नोटों के बंडल कहां से निकल रहे हैं, असली चोर कौन है?
1: नतीजा आया तो ब्रांड मोदी पर जनता ने विश्वास की मुहर और मजबूती से लगा दी। बीजेपी को 303 सीटों का महाबहुमत मिला। राष्ट्रपति भवन में फिर एक बार वही आवाज गूंजी,
3: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं।
1: प्रचंड बहुमत ने साबित कर दिया कि 2014 की जीत तुक्का नहीं थी, 2019 की जीत बता रही थी कि मोदी एक ऐसे ब्रांड है जिन पर देश के बहुवर्ग को भरोसा है। दूसरी बार सरकार वही थी लेकिन मोदी के तेवर इस बार अलग थे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 का नासूर जो दशकों से देश की राजनीति को प्रभावित कर रहा था उसे उखाड़ फेंका।
4: एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो, जान दे देंगे इसके लिए।
1: 3 तलाक कानून बना और देश की राजनीतिक धारा ही बदल गई।
5: सशक्तिकरण की दिशा से, नारी गरिमा और सम्मान की दिशा से 3 तलाक विधेयक का संसद में पारित होना भारत की संसदीय इतिहास का एक गौरवशाली दिन है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी का नारी गरिमा के प्रति इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण कदम उठाना, इसके लिए अभिनंदन करते हैं और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि नारी सशक्तिकरण की इस दिशा में इस बहुत बड़े कदम को हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे।
1: कोविड के रूप में वैश्विक रूप से परीक्षा का समय आया तो राष्ट्र मोदी की एक अपील के पीछे खड़ा हो गया।
2: पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है।
1: इस बीच चीन ने गलवान में दुस्साहस किया तो जवाब सेना ने दिया, लेकिन चीन के करीब सीमा पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह चीन को ललकारा उसने ये स्पष्ट कर दिया कि नए भारत के तेवर भी नए हैं।
2: अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है।
1: मोदी शासन का एक दशक खत्म होते होते देश सांस्कृतिक रूप से भी वैभवशाली हो चुका था। काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर,
2: बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा, मां गंगा की जय हो। हर हर महादेव।
1: और अयोध्या में श्रीराम मंदिर इसकी गवाही दे रहा था। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष की घेराबंदी भारी पड़ गई। बीजेपी 240 पर सिमट गई। बीजेपी 240 पर

0: सिमटी जरूर थी, लेकिन एनडीए को बहुमत प्राप्त था। एनडीए ने फिर नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना और 2024 में तीसरी बार वही आवाज राष्ट्रपति भवन में गूंजी।
1: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
0: 400 पार के नारे को विपक्ष ने बहुत भुनाया था। पीएम मोदी ने इस नारे की कहानी के पीछे की रणनीति भी समझाई।
2: आपका यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आना ये साफ साफ संदेश दे रहा है, कई बार एनडीए सरकार 400 पार।
0: इसके बाद देश के राजनीतिक इतिहास नया अध्याय शुरू होता है। जहाँ बीजेपी कमजोर थी, हर उस राज्य में पीएम मोदी ने कमान संभाली और 2024 के आम चुनावों में बहुमत से पीछे रह जाने की कसक पूरी कर ली। एक के बाद एक विधानसभा चुनावों में बीजेपी इतिहास रचती चली गई। कई जगह विपक्ष सम्मानजनक स्थितियों तक में नहीं रहा। अगला लोकसभा चुनाव 2029 में होना है, जो अभी दूर है, लेकिन चर्चाएं अभी से चल रही हैं कि क्या तब मोदी का विजय रथ रुक पाएगा। पीएम मोदी भारतीय राजनीति के उन विरले नेताओं में शामिल हैं जिनकी राजनीतिक यात्रा लगातार सत्ता और प्रभाव के केंद्र में रही है। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, यानी प्रधानमंत्री के तौर पर भी 12 साल पूरे उनके हो गए। मोदी कभी सत्ता से दूर नहीं हुए। इस दौरान ढाई दशक से अधिक समय तक लगातार शीर्ष नेतृत्व में बने रहना भारतीय राजनीति में असाधारण उदाहरण है।
3: जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, उपलब्धियों की दृष्टि से सबसे स्वर्णिम काल के रूप में मोदी जी की क्रिटिक एनालिसिस करने वालों ने भी नोट करना पड़ेगा।
4: 24 फरवरी 2002 को जीवन में पहली बार एमएलए बना, 27 फरवरी पहली बार में असेंबली में गया। दायित्व तो आया है तो मैं निभा रहा हूँ, उसे अच्छे ढंग से करना ही मेरा मकसद रहता।
0: मार्च 2026 की तारीख जैसे ही बीती, पीएम मोदी ने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8930 दिनों के सबसे लंबे सरकार के प्रमुख के कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये रिकॉर्ड एक मील का पत्थर जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का पूरा सेवा काल ऐसे रिकॉर्ड्स की किताब तैयार कर चुका है। 2001 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने और इसके पहले वो एक पार्षद तक नहीं थे, यानी सीधे मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने गुजरात में सरकार की हैट्रिक लगाई। 2014 में वो प्रधानमंत्री बने तो उसके पहले वो संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं थे, वो सीधे चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बने और यहाँ भी सरकार की हैट्रिक का इतिहास दोहराया।
5: मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, शायद मेरे जीवन में हर बार ऐसा ही हुआ है। मुख्यमंत्री बना उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री की चैम्बर देखी थी, मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने विधानसभा गृह देखा था। आज भी ऐसा ही एक अवसर आया है।
0: अद्भुत है ये रिकॉर्ड कि 25 वर्षों से नरेंद्र मोदी सरकार के प्रमुख बनने के बाद एक भी दिन बिना पावर के नहीं रहे। 25 जुलाई 2025 को नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 4077 दिन के लगातार प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड को पार कर लिया था। जवाहरलाल नेहरू के नाम सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड था। नेहरू ने 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और वो 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। पंडित नेहरू ने कुल 12 साल 14 दिन तक शासन किया, यानी वो कुल 4398 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार शपथ ली और वो निरंतर तीसरे कार्यकाल के साथ अब भी प्रधानमंत्री हैं। 9 जून को नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 12 साल 15 दिन का हो गया, यानी कुल 4,399 दिन, और इसी के साथ सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो गया।
5: इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है, न मोदी का वो मकसद है, और मैं नहीं चाहता हूं मोदी को लोग उन 125 करोड़ देशवासियों की तरह ही एक माने, उससे ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है।
0: 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में पीएम मोदी एक भी छुट्टी न लेने का दावा करते हैं, लेकिन देश की राजनीति में वो अभी तक ऐसे असंभव लक्ष्य बनकर सामने आए हैं जिसका जवाब विपक्ष के पास फिलहाल नहीं दिखता। प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा राजनीतिक विश्लेषकों के लिए रिसर्च का एक विषय है। 75 वर्ष की उम्र में भी वो नए प्रयोगों से पीछे नहीं हटते। वैश्विक पटल पर वर्ल्ड लीडर की छवि में वो मजबूत दिखते हैं। विदेशी सम्मान पाने वाले नेताओं में वो दुनिया में पहले नंबर पर आते हैं। नरेंद्र मोदी को अब तक 33 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से अधिकतर कई देशों के सर्वोच्च सम्मान हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने भविष्य की चर्चाओं को हंसकर टाल देते हैं, लेकिन 2047 तक विकसित भारत का रोडमैप तैयार करने में जुटे हैं। तीसरे कार्यकाल के 2 वर्ष बीत गए, मोदी आजादी के 100 वर्ष का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।
1: हम आज की नहीं बल्कि अगले 25-50 साल की जरूरतों के मुताबिक देश को तैयार कर रहे हैं।
0: 75 वर्ष के हो चुके प्रधानमंत्री मोदी का फोकस पीछे क्या छूट गया या कितना क्या बीत गया पर नहीं रहता। वो अब भी बात करते हैं उन लक्ष्यों की जो उन्होंने पहले से तय कर रखे हैं।
1: विकसित भारत 2047 इस तरफ भाषण के शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। देश के कोटि कोटि जनों के सुझाव लिए जा रहे हैं।
0: पीएम मोदी का शासन 1.5 दशक की सीमाओं को छूने लगा है। अब तक विपक्ष के लिए वो अजेय रहे। कई छत्रपों के नक्षत्र सियासी आसमान से लुप्त हो गए। कई मोदी नेतृत्व के परिवर्तन का सपना संजोए हाशिए पर चले गए, लेकिन विपक्ष की कोशिशें अब भी जारी हैं।
6: मोदी की गारंटी झूठी है, मोदी की गारंटी फर्जी है, मोदी की गारंटी नकली है। आगे कभी जिंदगी में मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना।
7: बांग्लाई जो आगुन लगन आसाम नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड उड़ीसा और दिल्ली थेमे थाकबे ना, अपना चेयरटा आमरा टलमल करे देबो।
0: समर्थकों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी पहले से अधिक ऊर्जा के साथ चल रहे हैं।
8: आमतौर पर पॉलिटिशियन का पहला स्वभाव होता है कि जो कहा है लोग जल्द से जल्द भूल जाए। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैंने जो कहा है वो लोग याद रखें और मैं भी उसको न भूलूं, कि मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा, कि मैं बद इरादे से कोई काम नहीं करूंगा, मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई काम नहीं करूंगा।

उनका दावा आज भी फेंके हुए पत्थरों से सीढ़ियां बना लेने का रहता है। वो आज भी सत्ता को सेवा के संकल्प से जोड़ते हैं। वो आज भी जनता की उम्मीदों का भारत बनाने की बातें करते हैं। वो बस चल रहे हैं और साथ साथ चल रही है देश की राजनीति। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
2: To kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
3: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
4: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
6: सोच बदलो और बैंक भी.
7: जब पार्टी में अपने साथ छोड़ रहे हैं तब कुछ यूं ममता बैनर्जी दिल्ली में सोनिया गांधी से करीबी दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिशों में दिखी. लेकिन बागी सांसदों से आर पार की नौबत ऐसी है कि टीएमसी ने उन्हें चुनौती दी है कि वे अपने दम पर चुनाव जीत कर दिखाएं. टीएमसी ने सांसद यूसुफ पठान का नाम लेकर पार्टी के संकट के पीछे अमित शाह पर आरोप लगा दिया है. साथ ही ये दावा भी किया कि यही लोग ममता बनर्जी की तारीफें किया करते थे. इस बीच 20 सांसदों के साथ का दावा कर चुका बागी गुट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अगले कदम का इंतजार कर रहा है. वहीं बागी गुट की अहम चेहरा काकोली घोष का दावा है कि उनका ये रुख सत्ता के लिए नहीं सिद्धांतों के लिए है. फिरहाद हाकिम जैसे ममता बैनर्जी के बेहद करीबी रहे नेता भी ममता के साथ नहीं दिख रहे. सोमवार को फिरहाद की रितव्रत बैनर्जी के साथ मुलाकात हुई. ममता बैनर्जी की दिक्कतें नेता विपक्ष तय करने में विधायकों के फर्जी दस्तखत के आरोपों से भी बढ़ सकती है. मंगलवार को कोलकाता में ममता बैनर्जी के कालीघाट के घर पर सीआईडी की टीम पहुंची. ममता बैनर्जी का घर टीएमसी का सेंट्रल दफ्तर है, इसलिए उनकी भूमिका भी जांच के घेरे में आ सकती है. आज तक ब्यूरो

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया
2: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search today's Global Hits to start listening now.
3: जिस वक्त ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटी थी, ठीक उसी वक्त उन्हीं की पार्टी के सांसद बगावत की नई कहानी लिख रहे थे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर टीएमसी सांसद इकट्ठा हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी टीएमसी नेताओं से मुलाकात की और विक्टर साइन के साथ बैठक से बाहर निकले।
4: इनको बताना चाहिए ना कि वो 20 एमपी कौन से हैं, उनके सिग्नेचर कौन से 20 लोग हैं जो अलग हो गए।
5: एक सांसद जिसने कहा कि 13 है या 14 है, तो मेरा प्रश्न उनसे है कि वो तो थे नहीं वहाँ, वो तो हमारे साथ सिग्नेचर भी नहीं किया, हमारे मीटिंग में भी थे नहीं, तो वो ज्योतिष है।
3: लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इससे पहले 3 जून को बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं।
6: 9 को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना, आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा।
3: सुखेंदु शेखर राय ने पहले ही प्राथमिक सदस्यता और सांसद का पद छोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार, महिला विरोध नीति और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में नाकाम रहने की वजह से लोगों ने टीएमसी को नकार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health.
1: फिर शुरू हो गई ईरान यूएस के बीच सीधी जंग। अमेरिका की भयंकर एयर स्ट्राइक, 20 ठिकानों पर बमबारी और मिसाइल अटैक। ट्रंप ने कहा हेलीकॉप्टर पर हमले का करारा जवाब दिया।
2: यूएस हमलों पर ईरान का जोरदार जवाब। अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से अंधाधुंध अटैक। बहरीन, कुवैत, कतर समेत कई ठिकानों पर ड्रोन से हमला। जॉर्डन में भी बड़े नुकसान का दावा।
1: पीएम मोदी ने बनाया सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड। आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। 12 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड। भविष्य के रोड मैप पर चर्चा। देश भर के मंदिरों में मंत्रियों और नेताओं ने की पूजा पाठ।
2: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने से भड़की कांग्रेस। आज चुनाव आयोग के दफ्तर पर जाएगा प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी पर सीट चोरी का लगाया आरोप। विजय वर्गीय ने कहा अंदर ही है भेदिया।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर मुनीर की बर्बरता पर भारत लगाई फटकार। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाक को जवाबदेह ठहराने को कहा। मुनीर आदमी ली 7 गर्भवती समेत 27 की जान।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज। एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाठो।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव डोंडियाल। अगले एक घंटे खबरें रफ्तार से, खबरें विस्तार से आपको दिखाए जाएंगे। और शुरुआत करते हैं शतक आज तक के साथ। उज्जैन में पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल पूरे होने पर बाबा महाकाल मंदिर में विशेष पूजा, महिलाओं ने दी बधाई। पीएम मोदी का देश का सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर, जगन्नाथ मंदिर में भी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की पूजा। दिल्ली के मंदिर में जेपी नड्डा ने की विशेष पूजा, पीएम के लिए मांगी दुआ। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पीएम मोदी को देश में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर हनुमान मंदिर में पूजा पाठ किया, भगवान शिव का लिया आशीर्वाद। जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल पूरे होने पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में की पूजा। दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे, बांसुरी स्वराज ने पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल पूरे होने पर विशेष पूजा की, मंदिर में हवन यज्ञ। दिल्ली में पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल पूरे होने पर सीएम रेखा गुप्ता ने पूजा पाठ किया और प्रधानमंत्री मोदी के लिए आशीर्वाद मांगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल पूरा होने पर हनुमान मंदिर में की पूजा, भगवान का लिया आशीर्वाद। जयपुर में सीएम भजन लाल शर्मा ने पीएम मोदी के कार्यकाल पूरे होने पर विशेष पूजा की।
0: पुरी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पीएम मोदी को देश में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया नया कीर्तिमान, सबसे ज्यादा समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बने मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ा। मोदी के 12 साल पूरे होने पर दिल्ली में विशेष कार्यक्रम, एनडीए के सभी मुख्यमंत्री होंगे शामिल, पीएम मोदी का संबोधन। आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक, पीएम मोदी बैठक को करेंगे संबोधित, असम और बंगाल में जीत के बाद एनडीए की पहली बैठक। दोपहर 3 बजे भारत मंडपम में होगी मुख्यमंत्रियों की बैठक, मोदी सरकार के 12 साल पर कार्यक्रम। 16-17 जून को G7 समिट में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हो सकती है मुलाकात। मध्य प्रदेश विधानसभा सीट की कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, बीजेपी ने की थी शिकायत। बीजेपी ने शिकायत में लगाया था आरोप, नामांकन पत्र में नटराजन ने छिपाई तेलंगाना के हैदराबाद कोर्ट में लंबित केस की जानकारी। बीजेपी की शिकायत पर रिटर्निंग ऑफिसर ने लिया फैसला, एमपी में राज्यसभा की 3 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध। नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट और भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे चुनाव आयोग, सिर्फ 2 नेताओं को परमिशन मिलने पर हंगामा, चुनाव आयोग ने आज फिर बुलाया।
1: मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद से बीजेपी में खुशी की लहर, मनाया जोरदार जश्न। रांची में राज्यसभा सीट के लिए चुनाव में एनडीए समर्थित उम्मीदवार के नामांकन पर भी गहरा संकट, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी के नाम पर आपत्ति जता रहे, कहा कि नामांकन पत्र में अलग अलग नाम लिखा है। कांग्रेस विधायक नमन बिक्सल ने भी नामांकन पत्र के कुछ कॉलम पर आपत्ति जताई, कहा कि अपराध वाला कॉलम खाली छोड़ा गया। परिमल नथवानी के नामांकन पत्र को फिलहाल होल्ड किया गया, अंतिम फैसला चुनाव आयोग ही करेगा। फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बैनर्जी के घर पर पहुंची सीआईडी, घर के बाहर जोरदार हंगामा भी दिखा। सीआईडी ने पूछताछ के लिए अभिषेक बैनर्जी को नोटिस दिया था और अभिषेक बैनर्जी ने सीआईडी से समय मांगा था। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सीआईडी की कार्रवाई पर जताई नाराजगी, बोले अभिषेक की गैर मौजूदगी में यह जांच गैर वाजिब है। बीजेपी विधायक सचल घोष का बयान कि चोरों के घर पर गई सीआईडी, टीएमसी और दीदी अब फिनिश। कोलकाता एयरपोर्ट पर कल्याण बैनर्जी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे लोगों से भिड़े कल्याण बैनर्जी।
0: मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर मंथन, दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक में जुटेंगे दिग्गज बीजेपी के नेता। दिल्ली में एनडीए की रणनीतिक बैठक में सीएम योगी, केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक करेंगे शिरकत। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जिलावार बैठकों के जरिए साथ रहे संगठन। हापुड़ और बुलंदशहर पर समाजवादी पार्टी का फोकस, संभावित प्रत्याशियों और चुनावी रणनीति पर मंथन। अखिलेश यादव का दावा, 2027 चुनाव से पहले बीजेपी 225 विधायकों के टिकट काट सकती है, लोकसभा नतीजों से जोड़ा फैसला। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सारा निशाना,

0: पासी किला यात्रा पर सियासत तेज, शिव मंदिर की मांग को लेकर अभियान शुरू। कसमंडी पासी किला विवाद गरमाया, 71 जिलों की यात्रा के खिलाफ AIMIM और धर्मगुरुओं ने उठाए सवाल। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का अंतिम चरण संपन्न, अभ्यर्थियों में दिखा उत्साह, उम्मीदवारों ने साझा किए परीक्षा तैयारी के अनुभव। आज तक की रिपोर्ट के बाद PGI धर्मांतरण मामले में पुलिस सक्रिय, महिला की तलाश के लिए 3 टीमें गठित। आरोपी इरशाद की गिरफ्तारी के लिए सर्विलांस और छापेमारी तेज, जांच का दायरा डॉक्टर तक पहुंचा, हिंदू महासभा ने घेराव की चेतावनी दी।
1: 2027 में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी बीजेपी, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी संगठन मजबूत करने पर दे रहे हैं जोर। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर बोले पंकज चौधरी, जांच में जो दोषी मिलेगा उस पर होगी कार्रवाई। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते दिखे ओबीसी प्रतिनिधिमंडल, और 2027 में बेहतर प्रदर्शन का बीजेपी का दावा। रामलला भूख प्रसाद को मिला FSSAI का गुणवत्ता और स्वच्छता प्रमाणन, मंदिर की रसोइयों के ऑडिट के बाद से रसोई के ऑडिट हुआ फिर ये सर्टिफिकेट हुआ जा रही। आज नीट पेपर लीक को लेकर NTA अधिकारियों की संसदीय समिति के सामने पेशी होनी है। नीट को लेकर सरकार की बड़ी बैठक है, धर्मेंद्र प्रधान और JP नड्डा भी इसमें शामिल। नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर NTA के साथ समीक्षा बैठक, छात्रों को शिक्षा मंत्री ने गड़बड़ी न होने का भरोसा दिया। फायरिंग मामले में फैजल खान को राहत मिली है, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। कोचिंग को लेकर बिहार सरकार ने अब सख्ती, प्रशासन को देनी होगी छात्रों की जानकारी।
0: कोटा में प्रसूताओं की मौत नकली ऑक्सीटोसिन से हुई, जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा। सिजेरियन डिलीवरी के बाद रक्तस्राव न रुकने से 5 महिलाओं की मौत, इंजेक्शन में पानी मिलने की पुष्टि। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह खिमरसर बोले इंजेक्शन में पानी होने से नहीं रुकी ब्लीडिंग, जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। गाजियाबाद की फर्नीचर फैक्ट्री में आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट के कमरे की छत पर भरभराकर गिरा प्लास्टर, बाल बाल बची बुजुर्ग की जान, वीडियो वायरल। देवरिया में ट्रैफिक सिपाही पर बस कंडक्टर से मारपीट का आरोप, पुलिस कंडक्टर को खींचकर ले जाता दिखा, सिपाही को किया गया लाइन हाजिर। रामपुर में प्रेमिका से शादी की जिद में नेटवर्क टावर पर चढ़ा प्रेमी युवक, आश्वासन मिलने पर नीचे उतरा। मुजफ्फरपुर में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म का प्रयास, रंगे हाथ पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद हामिद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जामनगर में ACB टीम ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेकर 2 आरोपियों को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। गोरखपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा की सुरक्षा में सेन, मोबाइल के साथ पकड़ा गया युवक, लापरवाही करने पर 2 दारोगा निलंबित, 6 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर।
1: दिल्ली के बकौली इलाके में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का दावा कि मिलने वाले 12 गैस सिलेंडर अब घटकर 4 हो गए हैं, जबकि कुछ परिवारों को एक भी सिलेंडर नहीं मिला। विदेश में नौकरी का सपना दिखाकर गुजरात के आणंद में 32 से ज्यादा युवाओं से 78 लाख रुपए की ठगी का मामला, रूस भेजे 20 युवाओं की तो हालत खराब, आरोपी एजेंट गिरफ्तार। अररिया में लगभग 12 करोड़ के मोबाइल फोन से भरे हुए ट्रक की संदिग्ध लूट, ड्राइवर फरार, घटना की जांच कर रही पुलिस। गोपालगंज में घर से निकली नाबालिग लड़की से 2 युवकों ने गैंगरेप किया, FIR दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी। बागपत में भतीजे संग प्रेमी को देखकर चाचा भड़क उठे, नाराज प्रेमी ने चाचा को मारकर बस्ती में लाश फेंकी। गर्मी की तपिश झेल रहे राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर, दिल्ली साउथ एवेन्यू इलाके में बारिश भी हुई है, गर्मी से लोगों को राहत। साउथ ईस्ट दिल्ली में भी बदला मौसम, धूल भरी आंधी भी चली, बूंदाबांदी भी हुई, गर्मी से राहत। दिल्ली के बसंत विहार इलाके में भी बारिश, आसमान में बिजली कड़कने के साथ बूंदाबांदी। दिल्ली एयरपोर्ट के कई इलाकों में मौसम का बदलाव दिखाई दिया, टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट है। मुंबई में भी बरसी राहत की फुहारें, मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और कुर्ला इलाके में बारिश।
0: IMD के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून 4 जून को केरल में दस्तक दे चुका है, लेकिन उत्तर भारत पहुंचने में अभी समय लग सकता है। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में मॉनसून की एंट्री 25 से 30 जून के बीच। केरल के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बड़े हिस्से तक पहुंचा मॉनसून, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में दस्तक दे चुका है मॉनसून। देश के पहाड़ी राज्यों में फिर मिलेगी गर्मी से राहत, 11 जून को सक्रिय होगा नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। हैदराबाद में हुआ मूसलाधार बारिश, गर्मी से लोगों को राहत, मौसम हुआ सुहाना। उत्तराखंड में आस्था भक्ति का संगम, चारों धाम में इस साल अब तक पहुंचे 32 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। केदारनाथ धाम में उमड़ रही श्रद्धालु की सबसे ज्यादा भीड़, 11 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। बद्रीनाथ धाम पहुंचे 22,635 श्रद्धालु, अब तक 9,97,000 से ज्यादा भक्त कर चुके हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम भी यात्रियों से गुलजार, अब तक 11 लाख से ज्यादा भक्तों ने लिया मां गंगा और यमुना का आशीर्वाद। चमोली में सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में आज 4020 यात्री पहुंचे।
1: आज जारी होगा फिल्म अल्फा का टीजर। एक्शन अवतार में देखेंगे आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ। सिनेमा घरों में 3 जुलाई को आएगी फिल्म। कल आएगा फिल्म वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर। मुंबई में ग्रैंड इवेंट में लॉन्च किया जाएगा ट्रेलर। अक्षय कुमार समेत मूवी की पूरी स्टार कास्ट भी होगी। अजय देवगन सारा फिल्म धमाल 4 के नए पोस्टर जारी। पोस्टर में मजेदार अंदाज में फिल्म की पूरी गैंग दिखी। 10 जुलाई को रिलीज हो रही फिल्म। सनी देओल स्टारर फिल्म बंटवारा 1947 का पहला मोशन पोस्टर जारी। 14 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। आमिर खान प्रोडक्शन की है फिल्म। राजकुमार संतोषी ने निर्देशन किया है। इमरान हाशमी स्टारर फिल्म आवारापन 2 का होगा फिल्म बंटवारा 1947 से मुकाबला। 2007 की हिट फिल्म आवारापन का सीक्वल है आवारापन 2। ईरान और अमेरिका में चल रही शांतिवार्ता के बीच में हॉर्मुज पर एक बार फिर से बढ़ा तनाव। अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप पर हमला किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर आवाज सिरिक और हॉर्मुजगंज में कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दी गई। अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के दक्षिणी तट पर हॉर्मुज स्ट्रेट के पास में ईरान के कई एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने ओमान तट पर अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। ईरान पर यह एक्शन उसी का जवाब है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हेलीकॉप्टर पर हमले में तेहरान का हाथ ही नहीं, युद्ध में हार के बावजूद अमेरिका लगातार ईरान के संकल्प की परीक्षा ले रहा है।
0: ईरान के खोमेन शहर के में 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने का दावा। क्षेत्र में बड़ी हलचल। मरकजी प्रांत के खोमेन से मिसाइल लॉन्च होने की खबर। अज्ञात दिशा में दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल। जॉर्डन की राजधानी अम्मान के आसमान में दिखी ईरानी मिसाइल। क्षेत्र में बड़ी हलचल। ईरान ने जॉर्डन में F-35 हैंगर तबाह करने का दावा किया। सुरक्षित स्थिति पर नजर। ईरानी मिसाइल खतरे के बीच अल अजराक स्थित अमेरिकी बेस अलर्ट पर। मिसाइल रोकने की कार्रवाई का दावा।

0: पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ममता भांजी को एक और झटका लगा है। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने भी इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा सांसद पद से सुष्मिता देव का इस्तीफा आ गया है। पार्टी में टूट के बाद सुष्मिता देव ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले बागी गुट के साथ टीएमसी करीब 20 लोकसभा सांसद मौजूद है।
1: तृणमूल कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें कल्याण बैनर्जी, इसमें कीर्ति आसादी ताना भी मारते हुए सुनाई दे रहे थे कि नैतिकता का आधार नैतिकता दिखाओ और अगर आपको दिक्कत है तो आप पार्टी छोड़ दो, आप इस्तीफा दे दो। और अब सुष्मिता देव इसी कड़ी में एक दूसरा नाम, इससे पहले सुखेंद्र रॉय, उन्होंने इस्तीफा दिया था राज्यसभा पद से भी, फिर उसके बाद टीएमसी से भी। अब सुष्मिता देव ने भी इस्तीफा दे दिया है। तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं और पार्टी में टूट के बाद सुष्मिता देव ने भी टीएमसी छोड़ दी है। वो भी एक बार फिर से हुई लीडरशिप से नाराजगी उनकी थी ममता बैनर्जी अभिषेक बैनर्जी से।
0: अनुपम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, अब जिस तरीके से सुष्मिता ने इस्तीफा दिया है, जाहिर तौर पर जो अन्य बागी हैं वो क्या यही रूट फॉलो कर सकते हैं या फिर वो बिना इस्तीफा दिए बागी हो गए?
2: जी देखिए, एक तो बात साफ है कि लोकसभा के बाद अब धीरे धीरे राज्यसभा के जो टीएमसी के सांसद हैं उसमें भी अब दरार और टूट देखने को मिल रही है और सुष्मिता देव का इस्तीफा उसमें से काफ़ी अहम माना जा रहा है। और ऐसे में देखिए, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई थी, शुकेंदु शेखर रॉय के बाद अब सुष्मिता देव, तो ये जो टीएमसी के लिए बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ा चैलेंज अब होता जा रहा है कि इतनी ज़्यादा सांसदों की संख्या होने के बावजूद धीरे धीरे सब बिखर रहे हैं। तो जिस तरीके से जो ट्रेंड अभी पिछले 5-6 दिनों में हम देखने को मिल रहा है, पहले विधायक टूटे, इसके बाद लोकसभा सांसद टूटे और अब राज्यसभा सांसद भी धीरे धीरे टूट रहे हैं। समझाएं
1: कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? अगर वो नाराज थी तो बाकी सांसदों के साथ रह सकती थी और उनके साथ ही आगे की राजनीति कर सकती थी, लेकिन इस्तीफा ही क्यों?
2: देखिए, अभी पूरी वजह मालूम नहीं है कि इस्तीफा क्यों दिया है। हालांकि सुष्मिता देव शुरू से ही ममता बनर्जी के पक्ष में रही थी और ममता बनर्जी के साथ खड़ी थी, यहां तक कि कुछ दिनों पहले तक ममता बनर्जी के पक्ष में वो बातें करती दिख रही थी। तो ऐसे में अचानक से उनका इस्तीफा और उसकी खास वजह क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी तक वो साफ वजह क्या है, वो खास वजह क्या है, इसकी चर्चा अभी तक, इसकी बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है सुष्मिता देव से। हम कोशिश कर रहे हैं लगातार सुष्मिता देव से संपर्क साधने की, तो लेकिन ये जिस समय में हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी को किस तरह से वो बिखरने से बचा सकती हैं, जो अभी लगातार टूट रही है, बिखर रही है। और इसमें कोई भी मतलब ऐसा कोई दौर नहीं आ रहा है जो ममता बनर्जी के लिए थोड़ा सा राहत भरा हो, लगातार मुश्किलें उनकी बढ़ती जा रही हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त ममता बनर्जी के लिए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग तेज हो गई है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिरने के बाद ट्रंप ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अमेरिकी सेना ने करीब 20 ईरानी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें जास्क, केश द्वीप, मिनाब, बंदर अब्बास और सिरिक समेत कई इलाकों में हवाई हमला हुआ है। ईरान से जवाबी कार्रवाई करते हुए मिडल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले हुए। ईरान ने दावा करते हुए 21 ठिकानों को निशाना बनाया है। जॉर्डन, बहरेन, कुवैत, कतर और यूएई में मिसाइलें और ड्रोन से हमला हुआ है।
1: तो एक बार फिर से चिंताजनक खबरें लगातार आने लगी हैं। अमेरिका ने ईरान पर आत्मरक्षा में हमले का दावा भी किया है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक दिन पहले अमेरिकी सेना का अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराए जाने के जवाब में ये बात भी कही थी। और अब ये चिंताजनक, क्योंकि जंग फिर से तेज हो गई, सीज फायर जरूर था लेकिन उस सीज फायर के बीच में भी ये हमले होना चिंताजनक, क्योंकि पहले ही ग्लोबल सप्लाई चेन पर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ा हुआ है और हेलीकॉप्टर गिराने का दावा भी किया और उसके बाद से अब अमेरिका आत्मरक्षा में हमलों का दावा कर रहा है और ईरान के 20 ठिकानों पर अमेरिका ने ये हमले किए हैं।
0: इस बीच ईरान अमेरिका जंग को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने कई मिसाइलें ईरान के मरकजी खोमने में दागी हैं। 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। आईजीसी ने दावा किया है कि उसने पश्चिम एशिया में अमेरिकी और सहयोगी देशों के कुल 21 एयर और नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाया है। बैलिस्टिक मिसाइल दागने का वीडियो भी सामने आ चुका है। ईरान ने भी जवाबी हमला किया है। ईरान का पलटवार लगातार जारी है। कई सैन्य ठिकानों को अमेरिका के निशाना बनाया गया है, सहयोगी देशों के भी।
1: तो ये
0: केंद्रों को निशाना बनाया जा रहा है।
1: ईरान ने ये मरकजी से 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। ईरान भी लगातार ये कह रहा था कि अगर हमें छेड़ा जाएगा तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, हम ऐसा जवाब देंगे कि जिससे दुनिया हैरान हो जाएगी, और वो लगातार मिसाइलें दाग रहा है।
0: रुकेंगे एक्चुअली से ब्रेक के लिए फौरन। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान अमेरिका जंग को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने जॉर्डन में F-35 हैंगर तबाह करने का दावा किया। IDC के बयान के मुताबिक जॉर्डन में 4 बड़े सैन्य ठिकानों पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया है। ईरान ने दावा किया कि जॉर्डन के अल अज़राक एयरबेस पर मौजूद F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर नष्ट कर दिए गए। ईरान का कहना है कि कार्रवाई अमेरिका की जास्क केशम द्वीप मिनाब बंदर अब्बास और सरीक समेत कई इलाकों में किए गए हवाई हमलों के जवाब में की गई।
1: जॉर्डन के 4 बड़े सैन्य ठिकानों पर IRGC का दावा है कि हमने हमला किया है और तबाही भी किया है, यह भी दावा किया जा रहा है। और अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: Ugh, I have had no luck lately. Wait, Lady Luck?
6: Britsky, I got you. I've had so much luck on SpinQuest.com. They have all of my favorite games, slot games, live blackjack, craps, and bubble craps. You can even get a $30 coin pack for just $10.
5: $10 for 30? I'm headed over to SpinQuest.com right now.
7: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
8: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
9: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
5: AU सोच बदलो और बैंक भी।
6: आगे आगे,
7: अरे उधर
6: उधर,
7: करेक्ट करेक्ट,
8: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: इन एसोसिएशन विद
10: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
9: हिंट, बड़े आराम से
10: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
9: विमल बोलो जुबा केसरी।
11: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
12: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
13: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
5: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
6: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
7: EU सोच बदलो और बैंक भी।
8: आगे आगे
9: अरे उधर
8: उधर
9: करेक्ट करेक्ट
10: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: सर, एक पार्टी 15 साल सत्ता में रहती है, लेकिन 15 हफ्तों के अंदर ही उसके जो 20 सांसद हैं वो बताया जा रहा है वो बागी हो गए हैं, उन्होंने अपना गुट बना लिया है, वो बीजेपी के नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। आपको अंदेशा था कि ऐसा कुछ होगा?
12: ये हम लोग तो जब सत्ता पे रहे थे, ये TMC पार्टी, उस समय भी हम लोग बराबर ये कहते आ रहे हैं सालों से कि जिस दिन ये सत्ता से बाहर होगी उस दिन टूट जाएगी, खलबली मच जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। आज से नहीं, सालों से कहते आ रहे हैं। ये हमारा पूर्वाभास, ये बहुत पहले हम कर चुके हैं कि सत्ता है तो TMC पार्टी है, सत्ता नहीं है तो TMC पार्टी उब जाएगी, हवा में मिल जाएगी, वैसे हो रहे हैं।
11: आपने भी एक अपील जारी करी कि तमाम जो सेकुलर फोर्सेस हैं, तमाम जो लोग हैं वो साथ में आए।
12: मैंने ये कहा कि बंगाल में इतने सारे लोग TMC को तो वोट डाले हैं, कोई अच्छा इनकी सोच थी, और वो देखे आप क्या हो रहे हैं, तो इसको मद्देनजर जो ईमानदार बचे कुचे जो TMC पार्टी की कार्यकर्ता है, ये समर्थक है, उसके सामने कांग्रेस पार्टी है, वो अगर चाहे कि राजनीति कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हम कोई मंत्री पद देंगे, कोई मेयर पद देंगे ये नहीं कह सकते, कि नोट की बंडिल देंगे ये मैं नहीं कह सकते। ऐसे खुले मन अगर आए तो कांग्रेस पार्टी में जगह मिलेगा, लेकिन वो चोट चकोरे के लिए नहीं, ये ईमानदार जो बचे कुछ समर्थकों है कार्यकर्ता उनके लिए।
13: देयरफॉर दोज हु आर मेकिंग द एलिगेशंस अगेंस्ट द पार्टी एंड वांट टू सी डिफरेंटली, दे मस्ट फॉलो द पाथवे ऑफ सुकेंदु सिपरवाई, दे मस्ट शो देयर पॉलिटिकल मोरालिटी बाय रिजाइनिंग एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। I do not know how many persons are there at all signed this, but fact is this, such a important document has not come in public domain, creates a suspicion about the letter, author and the signature of the persons. If you are so honest, why did you not publish the document? I could have understand they are discussing in a separate place, not with the any BJP people. I could have appreciated their intention, but they have changed their leader. They have changed their leader from Mamata Banerjee to Narendra Modi. I will invite each and every MP, go to the constituency, sit with the Trinamool Congress workers.
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: पार्टी में नहीं रुक रही बगावत। राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने दिया इस्तीफा। लोकसभा के 20 सांसदों के बाद राज्यसभा से दूसरी बगावत। राहुल से मिले अभिषेक बैनर्जी।
1: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने से भड़की कांग्रेस। थोड़ी देर में चुनाव आयोग के दफ्तर जाएगा प्रतिनिधि मंडल। सीट चोरी कर लगाया आरोप। बीजेपी ने कहा अंदर ही है भेदिया।
0: पीएम मोदी ने बनाया सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड। आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। 12 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड। भविष्य के रोड मैप पर बात। देश भर के मंदिरों में मंत्रियों और नेताओं ने की पूजा पाठ।
1: फिर शुरू हो गई ईरान यूएस के बीच में सीधी जंग। अमेरिका की भयंकर एयर स्ट्राइक। 20 ठिकानों पर बमबारी और मिसाइल अटैक। ट्रंप ने कहा हेलीकॉप्टर पर हमले का करारा जवाब दिया है।
0: यूएस हमलों पर ईरान का जोरदार जवाब। अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से अंधाधुंध अटैक। बहरीन, कुवैत, कतर समेत कई ठिकानों पर ड्रोन से बरसा बारूद। जॉर्डन में बड़े नुकसान का दावा।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माह।
0: आज तक की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। कोटा में महिलाओं की मौत नकली ऑक्सीटोसिन से ही हुई थी। अब ये बात जांच रिपोर्ट में सामने आ गई है और साबित हो गई है। इस केस में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन की जगह पानी भरा हुआ था और इसी वजह से सर्जरी के दौरान दवा का कोई असर ही नहीं हुआ।
1: अब जरा सोचिए कि दवा की जगह अगर पानी चढ़ा दिया जाए तो उसका क्या ही असर होगा। कोटा में यही हुआ है। नकली दवा की वजह से ब्लीडिंग नहीं रुकी और 5 महिलाओं की मौत हो गई। सरकार इस मामले में पहले नानुकुर करती रही लेकिन आखिरकार सच सामने आ गया। आज तक ने जब सवाल पूछे, आज तक ने प्रश्न खड़े किए, सरकारी खरीद पर सीधा सीधा सवाल था और अब इसे स्वीकारना पड़ा है खुद सरकार सिस्टम को।
0: नकली ऑक्सीटोसिन का यह मामला नहीं बल्कि पूरा ऑक्सीटोसिन ही दरअसल पानी था। जब यह पानी चढ़ाया गया तो इसका कोई असर इन महिलाओं पर नहीं हुआ। इनकी ब्लीडिंग के चलते जान चली गई। 5 महिलाओं की मौत मामले में अब आज तक की खबर का असर हुआ है।
3: ऐसा है कि 3-4 चीजें। एक तो वो एक टाइम सब नहीं आई। एक तो 15 मई से आई, उसको वो वेंटिलेटर पे अभी तक है। जो बाकी की जो आई है जिनमें जो 2 बिल्कुल स्थिर है, 2 थोड़ी सी सीरियस है और ये अलग अलग दिन में आई और इनके अलग अलग सिम्टम्स पाए गए। और कोटा में तो क्या था कि सब जो डेथ हुई थी सिजेरियन थी। इसमें आधी सिजेरियन है और आधी इसमें नॉर्मल डिलीवरीज है। 2 बजे तक 3 बजे तक मुझे और भी डिटेल में कितने बजे आई, क्या सिम्टम्स थे, क्या ब्लड प्रेशर था, क्या वो रिपोर्ट 2 बजे तक मुझे मिल जाएगी।
1: तो दवा की जगह पानी चढ़ा दिया गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता शरद भी इस खबर पर जुड़ गए हैं। शरद, प्रमुखता से आप भी इस खबर को उठाने में रहे, चुपते हुए सरकार से सवाल पूछते रहे और अब पता चला कि ऑक्सीटोसिन तो था ही नहीं, पानी चढ़ा दिया गया।
4: आप बिल्कुल राजीव जी, ये डिस्टर्ब करने वाली खबर है, परेशान करने वाली खबर है कि किस तरह से सरकारी अस्पताल में महिलाएं जाती है प्रसव के लिए, बच्चा, छोटा बच्चा बच जाता है और उसकी मां मर जाती है। एक नहीं, 5 माएं मरी हैं और जब एम्स के डॉक्टर आते हैं पता नहीं लग पाता है कि ये मौत कैसे हुई है। उन्होंने, एम्स के डॉक्टरों ने कहा कि जो जो दवाइयां आपने दी है सबकी जांच कराइए। सबकी जांच में पता चला कि ये जो दवा अमृतसर के फैक्ट्री में बनाई गई थी वो नकली दवा थी। उसके बाद ये प्रारंभिक रिपोर्ट आई तो सरकार ने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ऑक्सीटोसिन से कोई मरता है क्या। फिर इसके कोलकाता जांच के लिए भेजी गई। कल रात को कोलकाता के सेंट्रल लेबोरेटरी से रिपोर्ट आई है, तब जाके सरकार ने माना है कि जो सिजेरियन डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लीडिंग रोकने के लिए इंजेक्शन लगाया जा रहा था, ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी और महिलाओं की मौत हो गई। अब कंपनी को सील कर दिया गया, ड्रग लाइसेंस रद्द कर दिया गया, गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। मगर बड़ा सवाल है कि वो उन 5 महिलाओं की जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। आखिर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी माएँ कहाँ से वापस मिल पाएगी। सरकारी अस्पताल में इस तरह की बड़ी लापरवाही कैसे हो जाती है कि आप इंजेक्शन सप्लाई नहीं करते हो और इमरजेंसी के नाम पर ऐसे किसी कंपनी का इंजेक्शन खरीद कर स्थानीय स्तर पर अस्पताल ले आता है जो नकली है, पहले भी पता चल रहा है कि
0: अब इसमें सीधे तौर पर कौन जिम्मेदार है? जो फैक्ट्री है जहां पर ये दवा बनी, जहां पर ये नकली ऑक्सीटोसिन सप्लाई की गई, वो तो जिम्मेदार है, लेकिन सरकारी स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर और अस्पताल जहां जहां इसका इस्तेमाल हुआ वहां पर कौन से लोग चिन्हित किए गए हैं जो 5 मौत के जिम्मेदार है?
4: देखिए, वो जो चिन्हित किए गए थे शुरू में जिन्होंने सिजेरियन ऑपरेशन किया था उन्हें सस्पेंड किया गया और जो दवा लोकल स्तर पर जहां से खरीदी गई थी उसे सील करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, ये तो है। लेकिन सवाल बड़ा सवाल है कि आखिर जब सरकारी अस्पताल में सरकारी सप्लाई दवाओं की होती है तो क्यों नहीं हो रही थी? क्या स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार था जिसकी वजह से इस तरह की अनलिस्टेड कंपनी की दवा खरीदी गई? जब आज तक ने खबर दिखाई उस दिन जाकर मीटिंग हुई है कि कोई भी अस्पताल दवा इस तरह से बाजार से नहीं खरीदेगा, उसके लिए एसओपी बनाई गई। अब इतने दिनों से ये काम जारी था, घटना होने के बाद एसओपी बन रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर भी बड़ी लापरवाही है नेहा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब खबर बंगाल से, जहां टीएमसी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। टीएमसी से राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने भी संसद की सदस्यता छोड़ दी है।

0: मीटिंग अटेंड करी थी और उसको लेकर भी तमाम कयास यही लगाए जा रहे थे कि अब वो विपक्षी पार्टियों का साथ चाहती हैं। दिल्ली में लगातार बैठक कर रहे हैं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, यानी कि अपने पार्टी को और मजबूत करने की कोशिश और कवायद है।
1: तो गठबंधन इंडिया में यूं तो ममता बनर्जी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने अकेले ही पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा, लेकिन अब वो कांग्रेस के दिग्गजों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
0: और बात मध्यप्रदेश की, जहां पर राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव में कांग्रेस के लिए कांटे ही कांटे दिख रहे हैं। क्रॉस वोटिंग का डर पहले से ही सता रहा था, अब तो इकलौती उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के चुनाव लड़ने पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।
1: चुनाव आयोग ने मीनाक्षी नटराजन के पर्चे में गंभीर खामी पाई है और कुछ अहम जानकारियां छिपाई गई हैं, ऐसा पाया गया है। और इसके बाद नटराजन का पर्चा रद्द कर दिया गया, जिस पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है।
2: एकजुट है संविधान,
3: एकजुट
4: चार्टर एयरक्राफ्ट से जा रहे हैं। मैंने कहा चलो देखिए अपनी कहाँ जा रहे हैं,
5: दूसरे किसी राज्य में ले जाया जा रहा है, हमारे हाई कमान तय करेंगे जहाँ तक तेलंगाना या कर्नाटक हमको ले जाया जा रहा है।
6: तैयारी पूरी थी, बैग पैक हो चुके थे, सूटकेस तैयार थे, कांग्रेस के विधायक हवाई अड्डा कूच कर चुके थे, रनवे पर विशेष विमान उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन तभी रंग में भंग पड़ गया। दिल्ली से आई एक खबर ने कांग्रेस की रणनीति पर पूरी तरह पानी फेर दिया। विशेष विमान को उड़ान भरने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि दिल्ली में चुनाव आयोग ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया। बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर आपत्ति जताई थी, आरोप लगाया कि तेलंगाना के एक लंबित मामले की जानकारी हलफनामे में नहीं दी गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने इसे गंभीर त्रुटि मानते हुए नामांकन रद्द कर दिया।
7: अगर कोई लीगल केस है, यदि कोर्ट ने कॉग्निसेंस लिया है, मेरे पे ऊपर कोई चार्जेस फाइल हो गए हैं, उसको अगर मैं नहीं लिखती हूँ तो सही बात है कि हमने कुछ छुपाया, लेकिन जब कोई केस ही नहीं है जिसका कोर्ट ऑफ लॉ ने संज्ञान ही नहीं लिया है, तो उसको कैसे कहेंगे कि वो छुपाया है। ये तो ब्लेटेंट एरर है और ये कोई लीगल बात नहीं है, बहुत स्पष्टता से वहां दिखाई दे रहा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉम्प्रोमाइज्ड। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉम्प्रोमाइज्ड।
6: राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाया था, संख्या बल के हिसाब से मीनाक्षी की जीत तय थी, लेकिन बीजेपी ने खेल कर दिया। 2 की जगह 3 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, 2 की जीत तो पक्की थी, तीसरे के मैदान में उतरने से कांग्रेस में खलबली मच गई। पार्टी ने सारे विधायकों को तेलंगाना बेंगलुरु भेजने की तैयारी कर ली, लेकिन बीच में चुनाव आयोग का फैसला आ गया।
8: निर्वाचन आयोग किस प्रकार से सो रहा है, कुंभकर्ण की नींद, इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। तो अगर कुंभकर्ण अगर निर्वाचन आयोग बन जाएगा तो कौन सुनेगा देश के अंदर लोकतंत्र की बात को। हम न्याय के लिए आए निर्वाचन आयोग के पास।
6: ये तो साफ है कि कांग्रेस तमाम तरीकों से चुनाव आयोग के फैसले का विरोध करेगी, लेकिन सवाल है कि क्या मौजूदा हालात में बीजेपी अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताने में कामयाब होगी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 228 विधायक मतदान करेंगे, यानी बीजेपी को 2 सीटों के लिए 116 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी के पास इस वक्त 164 विधायक है, यानी 2 सीट से 48 विधायक अधिक। सवाल ये है कि क्या बीजेपी 10 और विधायकों का इंतजाम कर पाएगी। कांग्रेस को अब दोहरी मुसीबत का सामना करना है, एक तरफ मीनाक्षी नटराजन का नामांकन बचाना है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो विधायकों की क्रॉस वोटिंग को रोकना है। तो बात अब यहां तक आ पहुंची है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: खुद मीनाक्षी नटराजन ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि पूरा फैसला राजनीति से प्रेरित है।
7: देखिए, जब उन्होंने ये देखा कि इनका पूरा हाउस यूनाइटेड है, पहली बात तो ये है कि उनका तीसरा कैंडिडेट भरने का तो मामला अपने आप में, उनकी राजनीतिक शुचिता कहाँ आज ठहर गई है जाकर, किस तरह से दलदल में फंसी हुई है उसको दिखाता है। उन्होंने सोचा कि वो खरीद फरोख्त की राजनीति करके स्कोर सेटल करेंगे। जब उनको दिखा कि ऑर्गेनिकली 3 दिन से हमारे सारे MLA अपने आप यहाँ आ रहे हैं और साथ में हैं, जब पूरा हाउस यूनाइटेड है, तो उन्होंने उसको पूरा करने के लिए एक बिल्कुल फर्जी बात पेश की। जो एक लीगल नोटिस है

0: जिसका कोई अभी तक कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है, ये प्री कॉग्निसेंस स्टेज में था और उससे कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ, कोई केस नहीं है, तो उसको उन्होंने आधार बनाया। और उसके बाद जब उन्होंने फाइनल ऑर्डर्स दिए, उन फाइनल ऑर्डर्स में हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हमारे वकीलों ने, उसका उसमें कोई जिक्र तक नहीं किया, जिससे ये बहुत स्पष्ट है कि ये कहां से मोटिवेटेड था, किस तरह से ये फैसला हुआ। दिस वॉज नॉट अ लीगल बैटल विच वी लॉस्ट, दिस इज अ बैटल विच वी लॉस्ट अगेंस्ट पॉलिटिकल विल। ये जो लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश है, जो वोट चोरी से चालू हुई, अब वो सीट चोरी तक पहुंच गई है और ये उसका साफ प्रमाण है।
1: एक बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं। सुष्मिता देव, जिन्होंने राज्यसभा पद से टीएमसी से इस्तीफा दिया था, वो हिमंता बिस्वा सरमा से मिल रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात, चर्चाएं फिर से प्रबल। हिमंता बिस्वा सरमा से सुष्मिता देव की मुलाकात, शुरुआत में ये कहा गया कि ये तो उन लोगों में से है, ये वो आवाज है जो ममता और अभिषेक की समर्थक है, लेकिन यहां तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है।
2: सबसे कुछ ही देर पहले अपने इंटरव्यू में कह रही थी कि पहले जब वो सत्ता में थी तब उनकी आवाज नहीं सुनी जाती थी, अब इस बार जब हार का सामना करना पड़ा है तब राज्यसभा पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दूसरी ऐसी राज्यसभा की मेंबर है जिन्होंने इस्तीफा दिया है, तो जाहिर तौर पर असंतोष सिर्फ दरअसल पहले से नहीं बल्कि इस हार के बाद हो सकता है राजीव, इतना ज्यादा कि अब बीजेपी के हेमंत बिस्वा सरमा से मिलने पहुंचे।
1: हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, अब हिमंता के साथ तस्वीर क्या क्लियर माने कि अब उनकी राह आगे बीजेपी के साथ है?
3: देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है उसके बाद अब ये हो गया है कि वो जब राज्यसभा के लिए बाय इलेक्शन होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो उम्मीदवार होंगी। लेकिन इतना जरूर है, एक के बाद एक जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर रेजिग्नेशन हो रहे हैं, पहले सुखेंदु शेखर रॉय का इस्तीफा हुआ और अब जो है वो सुष्मिता देव का इस्तीफा हुआ। सुष्मिता देव जो है पहले कांग्रेस के अंदर थी, कांग्रेस से चुनाव हारी और उसके बाद वो टीएमसी में आई और टीएमसी ने उन्हें दो बार राज्यसभा में भेजा और अब फिर जो है सुष्मिता देव ने रिजाइन किया है और वो हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात कर रही है। इसका साफ मतलब है कि हिमंता बिस्वा सरमा क्योंकि वो आसाम से आती हैं और हिमंता बिस्वा सरमा से अगर मुलाकात करें तो इस चीज को इंश्योर कर लिया गया है रेजिग्नेशन उनका होने के बाद कि जब बाय इलेक्शन होंगे राज्यसभा के तो उसमें वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो उम्मीदवार होंगे।
2: इसके अलावा दो राज्यसभा मेंबर हो गए टीएमसी के जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे का मतलब तो यही माने कि पार्टी ज्वाइन कर रही है।
3: देखिए बिल्कुल, इसके अंदर बिल्कुल दो खेमे हैं और लगातार लोकसभा में जो है एक अलग गुट बनेगा लेकिन राज्यसभा में एक एक करके जो सीटें हैं वो होंगे और जो सीटें होंगे जब बंगाल में राज्यसभा के लिए उपचुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो उम्मीदवार हो सकते हैं।
1: और इस्तीफा दिलवाया फिर उसके बाद अब बीजेपी ज्वाइन करेंगे और बीजेपी की तरफ से ही राज्यसभा की कैंडिडेट होंगी, ये आरोप लगेगा बीजेपी पर कि आप अपनी राज्यसभा में नंबर्स बढ़ाने के लिए इस तरह से इस्तीफे दिलवा रहे हैं और उसके बाद से अपने ही कैंडिडेट बनवा रहे हैं उनको।
3: देखिए इसमें इस तरीके से अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बीजेडी में भी इस तरीके से तीन सांसद ने इस्तीफा दिया और उसके बाद तीनों ही सांसदों को जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है उम्मीदवार बनाया गया था।
2: बीजेपी में शामिल हो सकती है सुष्मिता देव, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब से कुछ ही देर पहले उनकी मुलाकात असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा से हुई, यानी कि पार्टी ज्वाइन करने की अटकलें तेज हैं। बीजेपी खेमे में शामिल हो सकती है सुष्मिता।
1: हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, अब ऐसे अगर मतलब अब सुष्मिता के आने से भी अब तो लगभग आप बता रहे हैं कि फाइनली है उनका आना, बीजेपी क्या अपनी स्थिति और मजबूत करना चाह रहे हैं सिंपली राज्यसभा में? लगता है उनसे संपर्क टूट गया, दोबारा रुक करेंगे। लेकिन सुष्मिता के साथ जो ये तस्वीर है हिमंता बिस्वा सरमा की और इफ एंड बट की गुंजाइश भी अब शायद नहीं रही और वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी खबर है। तस्वीर भी आ गई क्योंकि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मिल चुके हैं, वो खुद आती भी असम से हैं और उन्होंने ये मुलाकात की है और ये बताया जा रहा है कि अब वो राज्यसभा वापस जाएंगे लेकिन इस बार सिंबल और पार्टी अलग होगी। पहले तृणमूल कांग्रेस से थी, इस्तीफा दे दिया और अब जाएंगी राज्यसभा ही लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह के साथ।
2: दरअसल टूट का ये सिलसिला विधायकों से शुरू हुआ, उसके बाद जो लोकसभा के सांसद थे वो बीजेपी के खेमे में शामिल होते चले गए। हालांकि सबने इस्तीफा नहीं दिया है पार्टी से लेकिन राज्यसभा के दो मेंबर टीएमसी के अब इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसमें सुष्मिता जाहिर तौर पर जरूर शामिल होंगी। इस पर मोहर लग गई है इस तस्वीर के साथ। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, राज्यसभा में भी जाहिर तौर पर अब नंबर्स बढ़ जाएंगे बीजेपी के?
4: देखिए, नंबर भी बढ़ेंगे और मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, बीजेडी के सांसदों ने इस्तीफा दिया, उनको भारतीय जनता पार्टी ने फिर उपचुनाव में जो है टिकट भी दी। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो अब टीएमसी में ये दौर शुरू हुआ है। चंद्रशेखर रॉय हो, सुष्मिता देव हो, या अन्य अभी आने वाले दिनों में और राज्यसभा के जो टीएमसी के सांसद है वो रिजाइन कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव शामिल हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें जो भी उपचुनाव हो उसमें उम्मीदवार बना सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरीके की कोशिश कर रही है राज्यसभा में उनके पास जो है वो बहुमत आ जाए।
1: लेकिन साथ साथ में हिमांशु, एक आरोप ये भी कि आप तो अब तृणमूल को तोड़ने में खुद ही लग गए हैं और अब तो क्लियरली दिख रहा, आप एक तरफ कह रहे थे कि टीएमसी के जो ये नेता हैं हमारे पास इनके लिए कोई जगह नहीं है, हम जगह नहीं देंगे, लेकिन एक एक करके वो अब आपके पास आ रहे हैं।
4: देखिए बिल्कुल एक चीज देखनी होगी, राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल ये जरूर चाहता है कि उसकी ताकत बढ़े और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। लोकसभा के अंदर वो ये नहीं चाह रहे हैं कि लोकसभा के सांसद जो है वो आए, इसीलिए वो एक अलग गुट बनेगा, उसको एक अलग मान्यता मिलेगी। लेकिन राज्यसभा में जिस तरीके से लगातार इस्तीफे हो, ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप देखें इससे पहले बीजेडी ने या समाजवादी पार्टी से लोग कांग्रेस से छोड़ छोड़ कर आए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव जब भी हुए उन सीटों पर उनको ही उम्मीदवार बनाया है। तो एक तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी अपनी तरीके की राजनीति करती है और राजनीति में यही कहा जाता है कि राजनीति में जो कहा जाता है वो होता नहीं है, जो नहीं कहा जाता वही होता है। तो ये राजनीति के कुछ पैरामीटर्स हैं, इसलिए ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी समय समय पर करती
2: है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के आपका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला, टिकते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: To kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
8: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
9: Sokudo.
10: क्या टीएमसी के कुछ और सांसद बागी गुट में शामिल हो सकते हैं? क्या ममता के खिलाफ कुछ और सांसद एनडीए के खेमे में जाने की तैयारी में हैं? क्या अभी कुछ और ऐसे नाम सामने आने बाकी हैं जिन्होंने टीएमसी से बगावत की तैयारी कर ली है? ममता की पार्टी में मची उठा पटक के बीच ये भी एक बड़ा सवाल सियासी हलकों में गूंज रहा है। अब तक ना ही ममता ने अपनी पार्टी से मिले सांसदों की बगावत पर कोई जवाब दिया है, ना ही इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। कोलकाता से दिल्ली तक बिखरती पार्टी को लेकर ममता बनर्जी तो चुप हैं, लेकिन उनकी सांसद महुआ मोइत्रा बोल रही हैं। महुआ मोइत्रा ने बगावत करने वाले सांसदों को कहा कि हिम्मत है तो वो सब इस्तीफा देकर दोबारा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर दिखाएं। इसके साथ महुआ मोइत्रा ने यूसुफ पठान पर भी निशाना साधा है। दरअसल पिछले दिनों खबर आई थी कि यूसुफ को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था ताकि ममता उस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सके, लेकिन यूसुफ ने इनकार कर दिया। ममता की पार्टी में संकट है तो ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर इसकी वजह क्या है। एक दिन पहले सुखेंदु रॉय ने अपने इस्तीफे के बाद मीडिया से कहा था कि पार्टी को कई लोग मनमाने तरीके से चला रहे हैं। इस बगावत ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब बागी सांसद शर्मिला सरकार ने एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की। साथ ही वो लोकसभा अध्यक्ष को बताने वाली हैं कि वही असली टीएमसी हैं। तृणमूल कांग्रेस में विद्रोह का आलम यह है कि जो नेता कल तक ममता बनर्जी को दीदी कहकर संबोधित करते थे, वो अब खुलेआम उनका नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं। इसे ममता बनर्जी के सियासी कद में आई कमी के तौर पर देखा जा रहा है। हर दिन बीतने के बाद ममता बनर्जी का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।

हिंदुस्तान में विपक्ष का पूर्वी किला ढहने के बाद 2 साल में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की ये तस्वीर गठबंधन की एकता की सुनहरी मिसाल पेश करती दिखी। ममता को भले ही सोनिया की सहानुभूति का आलिंगन मिला हो, लेकिन इस बैठक में राहुल के साथ की कुर्सी पर लगे अखिलेश के आसन ने यूपी चुनाव की अहमियत साबित कर दी। और जब मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष के संबोधन के बाद सबसे पहले अखिलेश को बोलने का मौका दिया गया तो अखिलेश ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। बैठक में मौजूद सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने नाराजगी का पिटारा खोल दिया। अखिलेश ने पूछा, आज डीएमके कहाँ है? आप क्षेत्रीय दलों से तालमेल नहीं बिठा पाते, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मजबूत क्षेत्रीय दलों का सहयोग करना चाहिए। और आखिरकार अखिलेश यूपी के मसले पर आए और कांग्रेस को दो टूक कह दिया कि आपको सीट की जिद नहीं करनी चाहिए, बात सीट की नहीं जीत की है, जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी वही मिलेगी, ज्यादा सीट की जिद न करते हुए जमीनी हकीकत को समझना होगा, हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, पूरी मदद मिलेगी। दरअसल अभी तक यही तस्वीर दिख रही है कि यूपी में राहुल और अखिलेश एक बार फिर मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले सीट बंटवारे पर पैंतरेबाजी शुरू हो चुकी है। खबर है कि कांग्रेस 120 सीटों पर शुरुआती दावा पेश कर सकती है जो 3 कैटेगरी में बटी है। इसमें पहली कैटेगरी करीब 40 ऐसी सीटें हैं जहां 2017 में कांग्रेस एसपी गठबंधन में लड़कर 2 नंबर पर रही थी। इसके अलावा करीब 50 सीट ऐसी है जहां 2024 के चुनाव में कांग्रेस 2 नंबर पर रही थी और 30 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस खुद को दावेदार समझने लगी है। 2027 की लड़ाई अखिलेश यादव पूरी ताकत से लड़ने की योजना बना चुके हैं। खासकर टिकट बंटवारे को लेकर अखिलेश बेहद संजीदा है और खबर है कि अखिलेश ने संभावित उम्मीदवारों के लिए सर्वे भी शुरू करा दिया है और स्थानीय पार्टी नेताओं के फीडबैक के आधार पर सूची बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन इस सर्वे टीम की अगुवाई कर रहे हैं। इस टीम में लखनऊ यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर, 2 रिसर्च स्कॉलर भी शामिल हैं और इसी टीम ने कांग्रेस को 70 से 75 सीटें देने की रिपोर्ट दी है। इन 75 सीटों में से 71 सीटें वैसी हैं जहां समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। यानी अखिलेश अपनी छांटी हुई सीटें कांग्रेस को ऑफर करने का मन बना रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस को ऐसी मुश्किल सीटें मंजूर होंगी। दिल्ली से राहुल गौतम के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

अध्यक्ष सुष्मिता देव सीधे हेमंता से मिलने पहुंची, बीजेपी में शामिल होने के साफ संकेत, राज्यसभा से ये दूसरी बगावत। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने से भड़की कांग्रेस, थोड़ी देर में चुनाव आयोग के दफ्तर जाएगा प्रतिनिधि मंडल, सीट चोरी का लगाया आरोप, बीजेपी ने कहा अंदर ही है भेदिया। पीएम मोदी ने बनाया सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड, आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, मंदिरों में मंत्रियों का पूजा पाठ, राष्ट्रपति ने दी शुभकामनाएं, देश विदेश से बधाइयों का तांता। फिर शुरू हो गई ईरान यूएस के बीच सीधी जंग, अमेरिका की भयंकर एयर स्ट्राइक, 20 ठिकानों पर बमबारी और मिसाइल अटैक, ट्रंप ने कहा हेलीकॉप्टर पर हमले का करारा जवाब दिया। यूएस हमलों पर ईरान का जोरदार जवाब, अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से अंधाधुंध अटैक, बहरीन, कुवैत, कतर समेत कई ठिकानों पर ड्रोन से अटैक, जॉर्डन में भी बड़े नुकसान का दावा।

0: स्वागत है, मैं हूं राजीव ढौंडियाल। इस सिलसिले की शुरुआत आज एक बहुत बड़ी खबर से करेंगे, बंगाल से बड़ी खबर। टीएमसी की मुश्किलें जहां कम नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक विधायक और सांसद टूटते जा रहे हैं, और इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है। टीएमसी से राज्यसभा सांसद नहीं, अब सुष्मिता देव ने संसद की सदस्यता छोड़ दी है। राज्यसभा से सुखेंदु शेखर रॉय, उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, टीएमसी भी छोड़ी, और इसी कड़ी में अब एक और नाम सुष्मिता देव का। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि इस्तीफा देने के बाद उनकी ये मुलाकात जिसमें वो हिमंता बिस्व शर्मा से मिलती दिख रही हैं, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, वो उनसे मिली है। ऐसे में उनकी राह आगे की कहां होगी, किस दल से होगी, वो भी क्लियर माना जा रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी की राज्यसभा की कैंडिडेट हो सकती हैं, संभावित कैंडिडेट। यानी कि टीएमसी से इस्तीफा देने के बाद सीट खाली और वही राज्यसभा पहुंचेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल जुड़ी हैं। ऐश्वर्या, वाकई टीएमसी से नाराजगी थी इसलिए टीएमसी छोड़ी, या बीजेपी की प्लानिंग का हिस्सा?
1: देखिए, आप दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टीएमसी से जो नाराजगी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम देख रहे हैं कैसे एक के बाद एक जैसे ताश के पत्तों का घर बिखरता है, उस तरीके से टीएमसी का घर आपको बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है वो चल रही है सुष्मिता देव और हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बीच। आखिरकार एग्जैक्टली ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसका ध्यान रखा जाएगा और किस तरीके से जो विलय है ये होगी, इन सब चीजों का हम देखेंगे कि अगले 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर स्पष्टि जो है वो होगी। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हमें समझ आता है इस समय वो ये है कि कई सारे और टीएमसी के एमपी जो है, चाहे वो राज्यसभा हो या चाहे वो लोकसभा हो, वो लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी से बातचीत कर रहे हैं और कोशिश ये हो रही है कि अपना रेजिग्नेशन दें, क्या एक अलग सा गुट बनाया जाएगा। इन सब चीजों पर अभी भी चर्चा चल रही है। टीएमसी के कई सारे सांसद हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि क्या वो एक अलग सा गुट बनाएं और एनडीए को समर्थन दें, या फिर एक साथ रिजाइन करें और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाएं। तो अभी इन चीजों के ऊपर हम देख रहे हैं किस तरीके से मंथन चल रहा है। राज्यसभा के अंदर एक के बाद एक इस्तीफे होते जा रहे हैं और अंदर की जो टसल है टीएमसी की, वो भी इस समय आपको सामने देखने को मिल रही है। राजीव
0: जी, ऐश्वर्य बने रहे हमारे साथ, हिमांशु भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये वो नेता है जो कल तक बीजेपी को पानी पी पी कर कोस रहे थे, और टीएमसी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी के साथ उनकी तस्वीर मतलब कुछ ही मिनटों में सामने आ गए।
2: देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राजनीति में ऐसा होता है। मैंने पहले भी कहा था कि नेता जो कहते हैं वो करते नहीं, जो कहते नहीं वही करते हैं, और यही कारण है कि अगर आप देखें तो लगातार टीएमसी जिस दिन से विधानसभा चुनाव हारी है, और टीएमसी के चाहे वो विधायक हो, उन्होंने एक अलग गुट बनाया, सांसद हो, उन्होंने अलग गुट बनाया, राज्यसभा के जो सांसद हैं वो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, सुखेंदु शेखर राय के बाद अब सुष्मिता देव ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है, और ये दोनों ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन भी करेंगे जल्दी ही, और उसके बाद जब इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होगा पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीटों पर, तो ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। सुष्मिता देव जो है वो सिलचर से आसाम की सीट से लोकसभा में रही हैं कांग्रेस के अंदर रहते हुए, उसके बाद उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की थी, और अब टीएमसी के बाद वो सीधा भारतीय जनता पार्टी में आई, और आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उनसे वो मुलाकात कर रही हैं इस वक्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बड़ा रोल अगर देखा जाए तो हेमंत बिस्व शर्मा जब से भारतीय जनता पार्टी में आए तो लगातार कई कांग्रेस के नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर शामिल होते रहे हैं, ना सिर्फ आसाम के बल्कि अन्य राज्यों के भी कांग्रेस के नेताओं को लाने का काम जो है हेमंत बिस्व शर्मा ने।
0: और आप बता रहे कि पद छोड़ने का गिफ्ट भी पद मिलने के रूप में बीजेपी जो है दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। अब एक और बड़ी खबर आपको देते हैं, ये खबर भी टीएमसी से, इस वक्त बड़ी खबर, अभिषेक बैनर्जी और राहुल गांधी की मुलाकात दिल्ली में समय चल रही है। अभिषेक बैनर्जी 10 जनपद पहुंचे हैं, एक दिन पहले ममता बैनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और आज अभिषेक राहुल से मिल रहे हैं। ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, टीएमसी टूट रही है धीरे धीरे, सांसद विधायक टूट रहे हैं, दूसरा दल बनी जो एक गुट अलग बन चुका है जो ज्यादा प्रभावशाली ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। इस कड़ी में 10 जनपद की इस बैठक में कलह के बाद कुछ विलय की भी चर्चाएं चल, बंगाल की सियासत की बात चल रही है। ममता बैनर्जी और अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें जहां कम होने का नाम नहीं ले रही। एक दिन पहले ममता बैनर्जी के आवास पर सीआईडी की टीम तलाशी करने के लिए पहुंची थी, तलाशी ली, और दूसरी तरफ अभिषेक बैनर्जी के दफ्तर पर भी सीआईडी की दूसरी टीम गई, वहां भी जांच की गई, और अब अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ 2018 के एक मामले को लेकर थाने में शिकायत की गई है। अभिषेक बैनर्जी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर यह है कि कोलकाता हाई कोर्ट में उनकी याचिका पर आज नहीं बल्कि अब कल सुनवाई होगी।
3: ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए पिछले एक महीनों से मुसीबतों का एक तरह से पहाड़ टूट पड़ा है। खासतौर पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लगातार मामले हो रहे हैं। पहले अमित शाह के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया था उसका मामला हुआ, कोलकाता हाईकोर्ट से रक्षा कवच मिला। इसके बाद सीआईडी ने जांच शुरू कर दी। जो फर्जी हस्ताक्षर का मामला था उनके घर पर भी, ममता बनर्जी के घर पर भी सीआईडी टीम पहुंच गई। जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और अब एक नया मामला सामने आ गया है, 2018 का ही मामला बताया जा रहा है, जहां पर दक्षिण 24 परगना के बीजेपी नेता अभिजीत दास और बॉबी ने उनके खिलाफ एक कंप्लेंट दायर कर दी है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप है। तो ऐसे में जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में लगातार मामले हो रहे हैं, ये अभिषेक बनर्जी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बनते जा रहे हैं। फिलहाल अभिषेक बनर्जी दिल्ली में हैं, लेकिन उनके खिलाफ लगातार जो शिकंजा है, खासतौर पर जांच और पुलिस का शिकंजा, वो लगातार कसता जा रहा है।
0: 12:12 रिपोर्टर में खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वहां मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस गुस्से में है और इस मामले को लेकर सियासत तेज है। बीती रात भोपाल से दिल्ली तक कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। अब इलेक्शन कमीशन से शिकायत की तैयारियां हैं। तो बीजेपी आरोप लगा रही कि कांग्रेस ने तो जानबूझकर हार के डर से प्रत्याशी के फॉर्म में गलती की।
4: कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के पर्चा खारिज होने के बाद कांग्रेस पार्टी गुस्से में है और एक लंबी लड़ाई की तैयारी कर रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि पहले बीजेपी वोट चोरी करती थी और अब सीट चोरी कर रही है। कल भी हमने देखा एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ इलेक्शन कमीशन के बाहर, और बताया जा रहा है कि आज दोपहर को भी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता, जिसमें केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, मीनाक्षी नटराजन स्वयं, ये तमाम लोग इलेक्शन कमीशन जाएंगे और मांग करेंगे कि रिटर्निंग ऑफिसर ने इस मामले में जो फैसला दिया है उसको बदला जाए। हालांकि बताया जा रहा है कि ऐसे मामलों में रिटर्निंग ऑफिसर का ही फाइनल से होता है, ऐसे में राहत मिलने की कम उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का यह साफ तौर पर आरोप है कि कांग्रेस के अंदर ही भीतरघात हुआ है मीनाक्षी नटराजन के साथ, और ऐसे में बीजेपी को इसमें दोष देने की जरूरत नहीं है।
0: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस को घेरा, निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर हार के डर से प्रत्याशी के फॉर्म में गलती की है।
5: कांग्रेस ने जान करते हार के डर से षड्यंत्र पूर्वक उनके प्रत्याशी के फार्म में गलती रखी, क्योंकि ये सीट पर कई सारे कांग्रेसियों की नज़र थी। जब कांग्रेस के अंदर वर्तमान के जो हालात है कि जो अपने प्रत्याशी का फार्म नहीं भरा पाए, जो अपने विधायकों को एकजुट नहीं कर पाए, जो अपने नेतृत्व की छाप और धाक उनकी पार्टी में अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो बीजेपी क्या करेगी।
0: नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है और अब सबसे लंबे समय तक पद संभालने वाले निर्वाचित पीएम हैं। इस मौके पर आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी होने वाला है। भारत मंडपम में बड़ी बैठक होने जा रही है। इसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संगठन के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी इस बैठक को संबोधित भी करने वाले हैं।
6: पीएम मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार चुने हुए प्रधानमंत्री रहने के 4398 दिन के रिकॉर्ड को आज तोड़ दिया है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 12 साल भी पूरे हो गए हैं और आज एनडीए के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इस एनडीए के बैठक के अंदर जो है वो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे और उसके साथ साथ आज इस एनडीए की बैठक के अंदर आगे किस तरीके से जो है वो रणनीति रहने वाली है, चाहे वो विधानसभा चुनाव में हो या केंद्र सरकार को लेकर या राज्य सरकारों में जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें हैं, उसके साथ साथ आज की इस बैठक में एक प्रस्ताव भी पास किया जाएगा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल में देश की जो विकास की गति है उसने किस तरीके से रफ्तार पकड़ी है और किस तरीके से जन सेवा के कल्याण किए हैं।
0: सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जनसेवा ही सुशासन की कसौटी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी, विनम्रता, समर्पण, कर्तव्य निष्ठता के साथ हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद संभालते मोदी आज 4,399 दिन उन्होंने जो है पूरे कर लिए हैं। बीजेपी इस मौके को बहुत बड़ी कामयाबी बता रही है, पार्टी जश्न मना रही है। कैसे, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पार्टी के तमाम बड़े चेहरे आज मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद दे रहे हैं।
1: तो कहीं गुरुद्वारे में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता नजर आए। सभी लोग पूजा अर्चना करने गए थे। पूजा अर्चना इसीलिए हो रही है क्योंकि एनडीए की सरकार ने 12 साल शासन कर लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के अब सबसे ज्यादा इलेक्टेड गवर्नमेंट में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है सबसे लंबा जिसका टेन्योर रहा है वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। देश भर में कम से कम 22 राज्यों में एनडीए की इस समय सरकार है और सारे के सारे मुख्यमंत्री देश की राजधानी दिल्ली आ चुके हैं। जो पूजा अर्चना की गई है वो इसीलिए की गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि लोगों का आशीर्वाद रहा है और प्रभु का आशीर्वाद रहा है जिसकी वजह से एनडीए ने 12 साल का अपना ये जो टेन्योर है ये कंप्लीट किया है।
0: 12:12 रिपोर्टर में बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने सत्ता में वापसी के लिए रणनीति तेज कर दी है, बना दी है, जिसकी निगरानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं और इस महीने पार्टी की एक अहम बैठक में नशे के खिलाफ अभियान और चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी ने साफ किया है कि वो सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी और इसके लिए गांव-गांव बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जा रहा है। पेज प्रमुख अभियान के तहत कार्यकर्ताओं की नियुक्ति और प्रशिक्षण पर जोर है, साथ ही संगठनात्मक बदलाव और नेताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिशें भी चल रही हैं। पार्टी को पिछले लोकसभा चुनावों में प्रदर्शन के आधार पर बेहतर नतीजों की उम्मीद है।
7: अमित शाह की चाणक्य नीति चलेगी पंजाब में। मिशन 2027 को लेकर अमित शाह की अगुवाई में पूरा बीजेपी काम करेगा। जिस तरह में हमने देखा है कि बंगाल में सफलता मिली है उसी तर्ज पर यहाँ पे काम करने की बात की जा रही है। हमने देखा है कि किस तरह से एक ओवरहॉल किया गया है। केवल ढिलन एक जट सिख फेस को चेहरा बनाया गया है, बीजेपी प्रेसिडेंट बनाया गया है और स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात की गई है। ऐसे कई मुद्दे उठाने की बात की जा रही है और खास तौर पे कानून व्यवस्था, ड्रग्स का मामला हो या फिर हम बात करें चाहे हम रिवर फ्रंट पे बात करें या फिर किसानों के मुद्दों की बात करें, ऐसे कई मुद्दे बीजेपी उठाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, टॉप लीडर्स हैं, अमित शाह खुद हैं, हर जिले में जाके भ्रमण करेंगे, वहां रैली करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, काफी हद तक वहां पर स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी जहां पे सिख और हिंदू यूनिटी को आगे प्रदर्शित किया जाएगा।
0: 12:12 रिपोर्टर में आप बात करेंगे जंग की। अमेरिका ईरान में एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है और इस बार अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर बम बारूद मारे, भारी बमबारी की है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने 20 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। होर्मुज के पास कई इलाकों में बड़ी तबाही बताई जा रही है। अमेरिकी हमले में ईरानी सेना को भी बड़ा नुकसान का दावा किया जा रहा है।
8: अपने एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर को गिराए जाने को आधार बनाते हुए अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। ईरान के नक्शे पर देखें तो बंदर अब्बास जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह से लेकर सिरिक और स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बीच मौजूद कैशम द्वीप को अमेरिका ने निशाना बनाया है। इन तमाम ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की गई है और साथ ही जो सैन्य ठिकाने हैं, रडार स्टेशन हैं, सर्वेलेंस स्टेशन हैं और इसके अलावा मिसाइल लॉन्च पर जो फैसिलिटीज हैं उनको तबाह करने का दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई एक ऐसे दुष्चक्र में फंसती हुई नजर आ रही है जहां से निकलना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए लगातार मुश्किल होता चला जा रहा है। जहां एक तरफ बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिशें हो रही हैं और बातें की जा रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ लगातार अब मिसाइलें, बंदूकें और ड्रोन लगातार चलने लगे हैं।
0: अमेरिका ने होर्मुज इलाके में बड़ा हमला किया है जिसके बाद से तेल संकट और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के एयर डिफेंस, ग्राउंड कंट्रोल, इसके साथ से सर्विलांस रडार को निशाना बनाया गया है। ट्रंप ने कहा कि अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने पर काफी जोरदार जवाब दिया जाना चाहिए।
9: पिछले 100 दिनों से जारी लगातार संघर्ष की हालातों के बीच में एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बातचीत की बात और डील की बात कहते आए हैं, लेकिन इसी बीच अमेरिका ने ईरान के कई इलाकों में जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बंदर अब्बास और उशर जैसे महत्वपूर्ण इलाके हैं और पर अटैक शुरू कर दिए। माना जा रहा है कि सभी अटैक अमेरिका द्वारा तब किए गए जब अमेरिका का एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मार गिराया गया। इसके लिए अमेरिका ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि उसने ये नहीं किया है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने बड़े अटैक्स करने शुरू कर दिए, जिसके बाद अमेरिका ने इस पूरे ऑपरेशन को डिफेंसिव ऑपरेशन का नाम भी दिया है। हालांकि इसके बाद अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने बहुत जल्दी ऑपरेशन बंद करने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन इसके बाद स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर और बहुत ज्यादा चिंताजनक बन गई है, क्योंकि ईरान भी अब अमेरिका के कई बेसिस पर मिडिल ईस्ट पर अटैक कर रहा है, जिसे माना यह जा रहा है कि युद्ध आने वाले वक्त में एक और बड़े संघर्ष, एक और बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है।
0: तो अमेरिका कह रहा है कि उसने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की है। तो ईरान ने ताजा अटैक के बाद से अमेरिका के खिलाफ भी हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने दावा किया कि उसके हमले में अमेरिका का F-35 हैंगर तबाह हो गया है। IRGC का दावा है कि किस ठिकानों को टारगेट किया गया है।
10: 28 फरवरी को जब अमेरिका और इसराइल ने बातचीत के बीच ईरान पर हमला किया था, तब ईरान ने एक बात साफ कर दी थी कि इस युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इसराइल ने मिलकर तो जरूर की है, लेकिन इसका अंत ईरान करेगा। अब 100 दिन से भी ज्यादा समय बीत चुका है। जिस तरह से परिस्थितियां हर रोज बदल रही है, उससे कहीं ना कहीं साफ हो रहा है कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान को आंकने में बहुत बड़ी गलती की। उनका जो अंदाजा था वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। जिस अंदाज से बीती रात अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, उससे साफ नजर आता है कि ना ही ईरान की शक्ति खत्म हुई है और ना ही ईरान के मिसाइल।
0: ईरान ने अमेरिकी हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। ईरान ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो हम तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान की तरफ से बड़ा बयान कि यह हमला आपराधिक है, यह हमला युद्ध को भड़काने वाला है, अगर हम पर हमला होता है तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। यूएस का हमला यूएन चार्टर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है और ईरानी आर्म फोर्स की तरफ से यह पलटवार किया गया। साथ ही साथ उन्होंने कई देशों पर एक साथ अमेरिकी ठिकानों को निशाना भी बनाया। 12:12 रिपोर्टर में अब खबर पाकिस्तान की, जिसने अफगानिस्तान के खोस के स्पीर जिले में हवाई हमले किए हैं और इस हमले में अब तक 19 लोगों की जान चली गई। 19 लोगों को पाकिस्तान ने मार दिया है। मरने वालों में एक महिला और 8 बच्चे शामिल हैं। इन बच्चों की उम्र 7 से 10 साल के बीच बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान कैसे नरसंहार कर रहा है, कैसे आम लोगों को मार रहा है, उसकी एक और तस्वीर आई है। और यह पहला वाकया भी नहीं, इससे पहले भी उसने अफगानिस्तान में इस तरह से हवाई हमले किए और लोगों को मारा।
11: पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान के भीतर निर्दोष लोगों की जान लेने का कायराना काम किया है। पाकिस्तान ने देर रात अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में बमबारी की है। पाकिस्तान के वायुसेना ने यहां एयर स्ट्राइक्स की, जिसमें 19 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। जिन लोगों की जानें गई उसमें एक महिला और 8 बच्चे भी शामिल हैं और इन बच्चों की उम्र 7 साल से 10 साल के बीच है। अफगानिस्तान के स्थानीय सूत्रों और वहां की सरकार के मुताबिक लगातार पाकिस्तान अफगानिस्तान के भीतर इस तरह के स्ट्राइक्स कर रहा है और वहां पर आम नागरिकों और निर्दोषों को अपना निशाना बना रहा है। और इस बार भी पाकिस्तान ने इन एयर स्ट्राइक्स में 19 से ज्यादा लोगों की जानें ले ली हैं। पाकिस्तान लगातार पहले भी इस तरह के एयर स्ट्राइक्स कर चुका है और अब एक बार फिर उसने अफगानिस्तान के भीतर घुसकर इस तरह की बमबारी की है।
0: 12:12 रिपोर्टर में बात अब करेंगे लखनऊ की। लखनऊ के PGI में कथित धर्मांतरण मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने आज तक पर खबर प्रसारित होने के बाद अब जांच तेज कर दी है। मामले में पीड़ित महिलाओं की तलाश के लिए 3 विशेष टीम गठित की गई है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आरोपी इरशाद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने सर्विलांस के जरिए उसके मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश शुरू की है। टीमों को अलग अलग जगहों के लिए रवाना भी किया गया।
12: पीजीआई धर्मांतरण मामले पर आज तक की खबर चलने के बाद लगातार अब कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। पीजीआई पुलिस ने 3 टीमें बनाकर इरशाद की गिरफ्तारी के लिए सारे मोबाइल सर्विलांस पर लगाए हैं। यहां तक पीड़िता को बरामद करने के लिए भी एक स्पेशल टीम लगाई गई है। आरोपी पीजीआई का डॉक्टर जिस तरीके से इस पूरे मामले में संलिप्त पाया गया है, उसको बाहर जाने के लिए पुलिस ने मना कर दिया है। साथ ही साथ जांच में सहयोग की बात कही है, यानी कि पुलिस का शिकंजा अब इरशाद पर कसता जा रहा है। और जैसे ही ये खबर चली है उसके बाद माना जा रहा है कि इरशाद इस धर्मांतरण के आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी।
0: संसद के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधित स्थायी समिति आज दोपहर 3 बजे नीट परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने वाली है। इस बैठक में परीक्षा संचालन, नियामक ढांचा और संस्थागत दक्षता पर चर्चा की जाएगी। इसमें स्वास्थ्य सचिव, उच्च शिक्षा सचिव, एनएमसी और एनटीए के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। समिति परीक्षा की पारदर्शिता, जवाबदेही और विभिन्न मंत्रालय के बीच में समन्वय की समीक्षा करेगी। उधर दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए कार्यालय की समीक्षा बैठक में साइबर सुरक्षा और जांच पर चर्चा की।
13: बीते एक महीने में आज तीसरी बार ऐसा होगा कि एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को किसी संसदीय समिति के सामने पेश होना पड़ेगा। दरअसल आज स्टैंडिंग कमिटी ऑन फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ ने शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ एनटीए के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के भी वरिष्ठ अधिकारियों को पेश होने के लिए कहा गया है। बैठक 3 बजे होनी है और इस बैठक के अंदर जो एनटीए द्वारा यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नीट यूजी की री एग्जामिनेशन कराई जा रही है 21 जून को, उसको लेकर कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं और उसके साथ साथ परीक्षाओं को कराने को लेकर कई सारे तकनीकी सवालों पर भी सवाल जवाब किया जा सकता है। इससे पहले 2 बार एनटीए के वरिष्ठ अधिकारी और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को स्टैंडिंग कमिटी ऑन एजुकेशन ने तलब किया है, तीखे सवाल पूछे हैं। आज 3 बजे ये प्रक्रिया एक बार फिर से संसदीय कमिटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा किया जाएगा।
0: बिहार सरकार कोचिंग संस्थानों पर सख्ती दिखा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में कोचिंग संस्थानों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है और कोचिंग संस्थानों को लेकर बिहार सरकार अब ये सख्ती दिखाती दिख रही है। बाकायदा सरकार ने कहा कि अब छात्रों की जानकारी देना होगा, ये अनिवार्य कर दिया गया।
14: पटना में कोचिंग सेंटर्स के बीच वर्चस्व की लड़ाई की घटना के बाद अब सम्राट सरकार ने कोचिंग संस्थानों के ऊपर नकेल कसने का फैसला किया है। बिहार में कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन जल्द ही सरकार जारी करेगी, इसकी जानकारी खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये बताया है कि अब जो भी कोचिंग संस्थान बिहार में काम करेंगे उनको अपने छात्रों का पूरा विवरण यानी पूरा डेटा जिला प्रशासन को मुहैया कराना होगा। मकसद साफ है कि कोचिंग संस्थान वर्चस्व की लड़ाई की तरफ न बढ़ें और जो गड़बड़ियाँ कोचिंग संस्थानों की तरफ से होती है उस पर सरकार अंकुश लगा सके।
0: तो ये संस्थान जो गैंग की तरह काम कर रहे हैं उन पर निसंदेह इस तरह की सख्ती आवश्यक है भी। 12 बजे 12 रिपोर्टों में अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
16: भारत। What's up, baby? It's Bretzky, and I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack, and guess what? They're gonna give you the coins from a $30 coin pack. That lets you play all your favorite games like Blackjack, Wanted, Dead or Wild, and we're talking real cash prizes, baby. SpinQuest.com.
17: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
18: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
15: Presented by Patanjali Gai Ka Ghee. Lagaye swad aur sehat ka tadka har maa ka bharosa pyar se parosa. In association with
19: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo. Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
20: Tune In's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
21: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune In has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
22: सोच बदलो और बैंक भी।
23: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
24: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
25: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
23: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
26: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
24: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
23: जहां खबर वहां खबरदार।
27: इन एसोसिएशन विद E3HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
23: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल।
28: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी।
23: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल।
28: CBSE के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
23: छात्रों को दिया मंच।
28: उज्मा हमारे साथ कोटा से, और अदिति मुंगेर से हैं, और तानिया कोटा से हैं, और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
29: मैम ये देखिए, इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
30: IIT मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
23: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर।
28: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक, और अब सरकार की तरफ से CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
23: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: आज सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी बैठक में रहेंगे मौजूद। अखिलेश यादव का दावा, 2027 में बीजेपी के 225 विधायकों के टिकट कटेंगे। इलाहाबाद समेत कई सीटों पर प्रत्याशी बदलने का दावा भी। एसपी सूत्र बोले कि अन्य दलों के कई नेता संपर्क में। बीएसपी 100 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की तैयारी में फैजाबाद और अकबरपुर रैली के बाद होगी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, गठबंधन से भी इनकार। बीएसपी 23 जून को अकबरपुर कार्यक्रम में प्रत्याशी सूची कर सकती है जारी और जून के अंत तक कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने के संकेत। लखनऊ में कंसा पासी खिलाफ विवाद में 31 जिलों में यात्रा शुरू और सूरज पासी के नेतृत्व में कंसा शिव मंदिर वापसी की मांग तेज। AIMIM और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने यात्रा पर जताई आपत्ति। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामकथा महोत्सव के समापन कार्यक्रम में की शिरकत। लखनऊ में 9 दिवसीय श्री रामकथा महोत्सव का समापन, धर्म संस्कृति सनातन पर दिया संदेश। यूपी में संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 3 दिनों में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में 6 जिलों के संगठनात्मक बैठकें की। बोले 2027 का चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ेंगे। कांग्रेस एसपी गठबंधन पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी का हमला, जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। पीटीए के जवाब में बीजेपी ने ओबीसी वर्ग के सम्मान का मुद्दा उठाया। चुनाव को लेकर एसपी सांसद बोले बीजेपी डरी हुई है, 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी। एसपी सांसद बोले कि बीजेपी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं। 2024 में जवाब मिला, 27 में भी जवाब। लखनऊ पीजीआई धर्मांतरण मामले में पुलिस की कार्रवाई, 3 टीमें गठित की गई। आरोपी इरशाद की तलाश तेज, 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ, डॉक्टर्स पर भी निगरानी। रामलला भोग प्रसाद को FSSAI की गुणवत्ता और स्वच्छता प्रमाणन मिला है और मंदिर की रसोइयों के ऑडिट के बाद यह सर्टिफिकेट हुआ जा रहे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का तीसरा और अंतिम दिन संपन्न, राजधानी लखनऊ समेत सभी परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षाएं आयोजित। हरदोई में पुलिस भर्ती परीक्षा की नकल की कोशिश, अभ्यर्थी गिरफ्तार, परीक्षा केंद्र पर फर्जीवाड़े का खुलासा, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच जारी। मुजफ्फरनगर में पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया एक फर्जी अभ्यर्थी, बायोमेट्रिक जांच में खुली पोल, नाम बदलकर देने आया था परीक्षा, आरोपी अब गिरफ्तार। गोरखपुर पुलिस भर्ती परीक्षा में मोबाइल के साथ पकड़ा गया युवक, मेटल डिटेक्टर को चकमा देकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचा, लापरवाही पर 2 दरोगा निलंबित, 6 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। मुरादाबाद के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट यूनिट में लगी भीषण आग, हादसों के कारणों की जांच में जुटा प्रशासन। बागपत में हिस्ट्री शीटर वरुण लोहारी गैंग पर फायरिंग का आरोप है, टेंट कारोबारी के परिवार पर जानलेवा हमला। बागपत में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या का खुलासा, भतीजे के चाचा समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने सुलझाई गुत्थी हत्या के बाद शव को सुनसान प्लॉट में फेंका गया था। रामपुर में शोले जैसा हाई वोल्टेज ड्रामा, युवती से शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, पुलिस की समझाइश के बाद सुरक्षित उतरा नीचे। रामपुर कोर्ट का बड़ा फैसला, 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा। 2022 के चर्चित हत्याकांड में 17 गवाहों के बाद आया फैसला। जमीनी विवाद में रमेश बाबू की हत्या के मामले में न्यायालय का सख्त रुख। वाराणसी में काशीवासियों के पीएम मोदी के रिकॉर्ड कार्यकाल पर जश्न, काशी विश्वनाथ धाम में गंगा आरती, नमामि गंगे कार्यक्रम में 12 साल की उपलब्धियों का जिक्र। और एम में पुलिस मुठभेड़, 25,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार, पुलिस पर फायरिंग के जवाब में जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली, तमंचा बाइक बरामद। बरेली में दहेज की मांग को लेकर शादी में बवाल जमकर हुई मारपीट, 2 लाख और बुलेट न मिलने पर दोनों पक्षों में लात घुसे चले, कुर्सी प्लेट से भी हमला। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में छत का प्लास्टर गिरा, बड़ा हादसा टला, कमरे में सो रहे बुजुर्ग, बाल बाल बचे, वीडियो वायरल, फ्लैट्स की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। फिरोजाबाद में आंधी तूफान का कहर, दीवार और लोहे का गेट गिरा, मलबे में दबकर पिता की मौत, बेटी और पत्नी घायल, आसफाबाद में दीवार गिरने से 3 लोग जख्मी।

0: और अब रुख करते हैं बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है और सुबह से पूजा पाठ तो चल ही रही थी, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर ये आपको देते हैं कि कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी गई है। सभी मंत्रियों ने बकायदा ताली बजाकर तालियों से पीएम का स्वागत किया है। सभी मंत्रियों ने खड़े होकर पीएम मोदी के का जो है तालियों के साथ कुछ इस तरह से स्वागत किया। हम उस समय का दृश्य तस्वीर दिखा रहे हैं और पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन भी स्वीकार किया है। मोदी सरकार के 12 साल पीएम मोदी सबसे लंबे समय तक पीएम बने रहने का रिकॉर्ड उन्होंने अब अपने नाम कर लिया है। ऐसे में आज तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, एनडीए के सहयोगी, वो तमाम लोग भारत मंडपम में आज जो है बैठे भी हैं और प्रधानमंत्री का बताया जा रहा है कि संबोधन भी हो सकता है। लेकिन जब पीएम पहुंचे हैं उस समय का एक दृश्य है, उस समय के आप देखिए कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राउंड टेबल है। इस बीच में बड़ी खबर आपको देते हैं, सुष्मिता, उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दिया और वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको सुनाते क्या कहने हैं,
1: नाराज हो रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं।
2: मुझे तो अजीब लगा कि कल्याण बैनर्जी जिनकी बात आप कर रहे हैं मैं नहीं कर रही, उन्हें तो शुकेंदु जी की तारीफ की कि बड़ा अच्छा पदक्षे
3: कांग्रेस में आप सीजन पॉलिटिशियन है मैम, क्या और भी लोग तृणमूल कांग्रेस में अभी हम देख रहे हैं कई रेजिग्नेशन हो रहे हैं बड़ी लोकसभा राज्यसभा की बात की जाए, आने वाले और समय में हम देख सकते हैं मैम? और
2: सी आई एम नॉट प्रिवी टू दिस कि कौन क्या कर रहा है, मैं उस पर प्रिवी नहीं हूँ और फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन बंगाल पॉलिटिक्स, आई एम फ्रॉम आसाम। आज के दिन तो मैं मुक्त हूँ, इंडिपेंडेंट, आई एम अ फ्री वुमन एंड हेमंतदा के साथ मेरा बहुत पुराने दिन से हमने कांग्रेस में एक साथ काम किया, सो आई गेव अ कर्टसी
4: विजिट। शामिल मतलब आने वाले समय में
2: मेरे को दो तीन दिन पारिक रहने, लेट मी बी ऑन अ फ्यू डेज सैबेटिकल, दैट्स ऑल।
3: मैम, यू आर गोइंग टू सबमिट योर रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट?
0: चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर हम आपको देते हैं। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में दिल्ली के लिए निकलने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी लगभग 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। सीएम योगी के अलावा दोनों ही उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम भी आज दिल्ली में मौजूद रहेंगे। दोपहर 1:15 बजे के आसपास सीएम योगी का विमान दिल्ली से, लखनऊ से दिल्ली के लिए उड़ान भी भरने वाला है। हिंदुस्तान में मोदी राज के 12 साल की कामयाबियों और तरक्की की चर्चा के बीच में अब उत्तर प्रदेश में योगी राज के 7 साल के शासन की गाथा पर भी सियासी गदर मचा हुआ है। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भारत वर्ष के सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री बने रहने के उपलक्ष्य में सम्मानित किया जाएगा तो उस मंच पर पूरे भारतवर्ष से आए और मोदी राज के सत्ता में शामिल 35 घटक दलों के लगभग 75 शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे और इन्हीं नेताओं के जमावड़े में एनडीए शासित राज्यों के सभी 22 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इनमें सीएम योगी और दोनों ही डिप्टी सीएम भी मौजूद रहने वाले हैं और इसी मौके पर पीएम मोदी को 12 साल के अखंड राज की उपलब्धियों के लिए सम्मानित भी किया जाने वाला है क्योंकि पीएम मोदी ने अब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,399 दिनों के कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम ये खिताब कर लिया है।
5: खिताब तो

0: कार्ड पेश किया जाएगा तो उन सब पर निगाहें रहेंगे। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की भी निगाह होगी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों के साथ मोदी राज के 12 साल और योगी राज के 9 साल का रिपोर्ट कार्ड भी यहां पेश करेंगे।
1: दिल्ली के भारत मंडपम में जब हिंदुस्तान के सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहने वाले पीएम मोदी के 12 वर्षों के राज की विकास गाथा के गीत गाए जाएंगे,
2: मोदी जी स्वागतम, स्वागतम,
1: तो उसी मंच पर सीएम योगी भी अपने 9 साल के योगी राज में तरक्की की कहानी बताएंगे। योगी सरकार लिस्ट तैयारी करे जा रही है कि यूपी में पिछले 9 साल यूं ही नहीं गुजरे हैं। योगी राज से पहले 13,30,000 करोड़ की GSDP अब 36,00,000 करोड़ को पार कर चुकी है। योगी राज से पहले 54,564 रुपए की प्रति व्यक्ति आय अब 109,844 रुपए हो चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 8.6% से बढ़कर 9.1% हो चुकी है और राज्य की निर्यात पहले के 84,000 करोड़ से बढ़कर 86,00,000 करोड़ पहुंच गई है। एक तरफ सीएम योगी देश के सामने यूपी की तरक्की की ऐसी तमाम कहानियां और आंकड़े पेश करते हैं, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी चुनावी चोहल से बाज नहीं आती।

0: समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बिजली, सड़क, पानी, अस्पताल, स्कूल की तमाम बदहालियों के सवाल उठाती है। योगी सरकार में परेशान आवाम की शिकायतें करती है, लेकिन तरक्की के आंकड़े कुछ और कहते हैं। योगी सरकार का दावा है कि 2017 से पहले सिर्फ दो एक्सप्रेसवे वाले उत्तर प्रदेश में अब 22 एक्सप्रेसवे या तो चालू हैं या बन रहे हैं। 4 से 5 हवाई अड्डों वाले यूपी में अब 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट समेत 24 हवाई अड्डे तैयार हो रहे हैं। सिर्फ 40 मेडिकल कॉलेज वाले यूपी में 80 से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। तीस हजार से अधिक तो रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां हैं, 7,200 से अधिक स्टार्टअप हैं। मानव विकास के हर पैमाने पर उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकास की इस यात्रा में विपक्ष अगर महंगाई और बेरोजगारी जैसे सवाल चुनावी सीजन में उठाता है तो योगी राज के पास उसके आंकड़े कुछ और हैं। दावा है कि 2017 से पहले जिस यूपी में बेरोजगारी दर 17.5% से 19% के बीच हुआ करती थी, वो बेरोजगारी दर घटकर मात्र 2.4% पर आ गई है, क्योंकि अखिलेश राज में जहां कुल 2,05,000 सरकारी नौकरियां दी गई थी, वहीं योगी राज में 9,00,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। और तो और, योगी सरकार पिछले 9 वर्षों में 10,830 से अधिक रोजगार मेलों में 13,45,000 से अधिक निजी क्षेत्र में रोजगार दिए जाने का दावा भी करती है। और सीएम योगी तो पिछले कई दिनों से सार्वजनिक मंचों से कहते सुने जा रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा इसलिए तेजी से जारी है क्योंकि यूपी में अब कानून का डंडा सख्त है। जिस यूपी में पहले 5 साल में 800 से अधिक सांप्रदायिक दंगे होते थे, वहां अब दंगा दर 1% से भी नीचे आ चुकी है और अपराध के आंकड़े बताते हैं कि यूपी में 2017 के मुकाबले राज्य में फिरौती और सामान्य अपहरण 62.8% कम हुआ है। हत्या की दर प्रति 10 लाख आबादी पर घटकर 1.3 रह गई है और महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 8.7% की कमी आई है। और यूपी में महिलाओं के खिलाफ घटते अपराध का जिक्र सीएम योगी रामकथा के मंच से भी करते हैं, लेकिन अलग अंदाज में।
1: नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है, इसका उदाहरण है याद करना लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। हम सबको उस लैंड जिहाद से जुड़े हुए लोगों को केल प्रति भी रखना पड़ेगा जो भगवान राम ने आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहाँ लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे।
2: हमारे मुख्यमंत्री जी भी अजीब हैं, लव से प्यार नहीं उन्हें, लैंड से प्यार है।

0: जब देश में बीजेपी मोदी राज के 12 साल और योगी राज के 9 साल के रिपोर्ट पर चर्चा कर रहा है, तब नेताओं के बीच ये जुबानी जंग बताती है कि चुनावी सियासत में अभी कई रंग बाकी है।
1: जय जय श्री राम।
0: आज तक ब्यूरो।
2: और अब तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 साल के कामकाज का उनकी जो सरकार है वो बखान भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में वो तालियां बजाते हुए पीएम मोदी के इस कार्यकाल पर उनको शुभकामनाएं भी दी गई हैं। जब वो पहुंचे तो तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स ने तालियां बजाए, पीएम ने भी हाथ जोड़कर सबका अभिनंदन किया।

0: तो ओपोजिशन की तरफ से भले ही सवाल हो, लेकिन केंद्र सरकार इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानती है। खासतौर पर जो कैबिनेट मिनिस्टर से आज कुछ इस तरह से दिखाई दिए, सबने सुबह सुबह पहले मंदिर गए, उसके बाद इस बैठक में पहुंचे तो कुछ इस तरह से पीएम का स्वागत हुआ। तो बीजेपी देश में पीएम मोदी के 12 साल के कामकाज का बखान एक तरफ कर रही है, तो यूपी में सीएम योगी के कामकाज का भी जिक्र हो रहा है। और ऐसे ही विकास से जुड़े हुए एक मामले को लेकर योगी सरकार के अंदर ही कार्रवाई पर अब अखिलेश यादव ने भी गंभीर दावे किए। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह योगी सरकार ने अपने एक मंत्री से कार्यभार वापस लिया है, उससे संकेत मिलते हैं कि यूपी में 225 विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं।
1: सुना है कोई मंत्री हटाए गए हैं, हाफ कर दिए गए, कुछ दिनों में साफ हो जाएंगे वो।
2: एक तरफ योगी राज में यूपी की तरक्की की गाथाएं और दूसरी तरफ अखिलेश के सियासी दांव। योगी राज में मंत्री नंद गोपाल नंदी से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का एक विभाग सुचारू प्रशासनिक व्यवस्था बनाए जाने के लिहाज से वापस क्या लिया गया। अखिलेश यादव ने पूरा ख्याली महल तैयार कर लिया।
1: तो अब सरकार को चुनाव में जाना है, उन्हें अभी हाफ किया है, इनके साथ साथ बहुत लोग साफ होंगे, इनकी टिकट ही साफ हो जाएगी।
2: यूपी में मौजूद एक्सप्रेसवे को समाजवादी बनाम योगीराज की एक्सप्रेसवे में बांटने वाले अखिलेश का आरोप है कि नंदी से यूपीडा का विभाग इसलिए छीना गया क्योंकि एक्सप्रेसवे का काम ठीक नहीं हुआ।
1: एक यूपी में गुप्त सूची बनी है और दिल्ली वाले मिला के देखेंगे उस सूची को, तो सोचिए कितने लोगों साफ हो जाएंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगी। और कब हटाया गया बताइए आप, बुंदेलखंड आप अगर गाड़ी रफ्तार से चलाओगे तो कूदते हुए जाओगे, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलोगे तो वो क्या बोलते हैं झूले की तरह आप चलते जाओगे, गंगा एक्सप्रेसवे में सुना है कि अभी उसमें से अगर हाथ चला दो ठीक तरीके से तो उसका विटामिन बाहर आ जा रहा है। तो उसके बाद जब सब कुछ कर लिया उन्होंने, सब कुछ अपना इकट्ठा कर लिया, उसके बाद मंत्री जी हटाए गए बताइए आप।
2: दरअसल अखिलेश का आरोप है कि चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी का इलाज करने के चक्कर में बीजेपी के मौजूदा 225 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं।
3: कुछ ऐसा ही दावा किया है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने और कहा है कि इंडिया गठबंधन के हाथों जो 43 सीटें बीजेपी हारी है, उन सभी लोकसभा सीटों में आने वाली विधानसभा सीटों के विधायकों के टिकट बीजेपी काटने वाली है। इतना ही नहीं, अखिलेश ने यह भी कहा है अन्य 10 सीटें जिन्हें जिनमें सपा को लगता है कि हेरफेर से बीजेपी ने जीती हैं, वहां भी भाजपा के विधायकों के टिकट कटने वाले हैं। कुल मिलाकर दावा है कि 225 विधायकों के टिकट कट जाएंगे।
4: भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा से ज्यादा एमएलए इस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से नाराज है। ये वही पार्टी है जिसके एमएलए ने सदन में धरना दिया था अपनी सरकार के खिलाफ।
5: अपना घर संभल नहीं रहा अखिलेश यादव से, दूसरे के घर में ताकझांक करने का दावा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता 27 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी और समाजवादी पार्टी की साइकिल की तीली तीली बिखर जाएगी।
2: दरअसल अखिलेश यादव अपने अनुमानों से बीजेपी के 225 विधायकों के टिकट काटे जाने का शिगुफा बीजेपी में बगावत सुलगाने की उम्मीद में छोड़ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की नजर ऐसे नाराज नेताओं पर भी है जिसमें बीजेपी से लेकर आरएलडी तक के विधायक हो सकते हैं।
6: कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन था पिछली बार 2024 में जो उन्होंने नैरेटिव सेट किया, एक जनता को गुमराह करने का काम किया, उस चीज को जनता अब समझ चुकी है और पूरी देश की जनता समझ चुकी है। एनडीए अलायंस के पूरे गठबंधन के जो नैरेटिव सेट किया था वो पूरी देश की जनता समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे तो परिवारवाद की राजनीति को और भ्रष्टाचार गुंडागर्दी की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता भी नकारेगी।
2: दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के टिकट तय करने के लिए अखिलेश की रोजाना स्तर पर बैठकें हो रही हैं। 10 जून को बुलंदशहर और हापुड़ जिले की विधानसभाओं के लिए बैठक है। उससे पहले पश्चिमी यूपी के नेताओं से अखिलेश की मुलाकात हो चुकी है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: बीजेपी और समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारियों के बीच खबर है कि बहुजन समाज पार्टी ने भी चुनाव में उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। खबर है कि 22 जून को फैजाबाद में मायावती की पार्टी एक बड़ी रैली के साथ चुनावी कार्यक्रमों का आगाज करने वाली है और इसके बाद 23 जून को अकबरपुर में होने वाले कार्यक्रम में लगभग 100 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है।
7: बहुजन समाज पार्टी की पूरी बहुत मजबूत तैयारी है मान्य बहन जी की गाइडलाइन में। उसी कड़ी में अभी हमारे कार्यक्रम भी कई जगह लगे हैं। अभी जैसे 22 तारीख को एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन अयोध्या जनपद के बीकापुर में होने जा रहा, जहां कई वरिष्ठ नेता ज्वाइन भी करेंगे। फिर 23 तारीख को अम्बेडकर नगर में एक बड़ा कार्यक्रम होगा मान्य बहन जी के निर्देश पर, जहां बहन जी के निर्देश पर हम कुछ प्रभारियों को भी घोषित करने का काम करेंगे।
8: बहुजन समाज पार्टी अब चुनाव की तैयारी में पूरी तरीके से उतर गई है। एक बड़ी मीटिंग फैजाबाद से शुरुआत करेगी, अयोध्या से शुरुआत करेगी और उसके बाद आजमगढ़ होते हुए पूर्वांचल में ये बैठक और रैली होने जा रही है। जिस तरीके से दलितों को नेतृत्व करती है बसपा, उसमें प्रभारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं जो कि कैंडिडेट के रूप में बदल जाएंगे। यानी कि तकरीबन 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जो विधानसभा की लड़ाई लड़ने के लिए बसपा के पूरी तरीके से तैयार कर दिए गए हैं, जिनकी सूची जल्द ही बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती जारी करेंगी। ये तो साफ हो गया है कि सूची जारी करने के मामले में बसपा सबसे पहले पार्टी रहने वाली है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
0: उत्तर प्रदेश में इस बार दलित वोट की राजनीति में कई नए दावेदार भी सामने नजर आने लगे हैं और इसमें से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको देते हैं। लखनऊ के मलिहाबाद में कंसाबासी किले में विवाद तेज हो गया है, तो ये बड़ी खबर, किले की ओर मार्च कर रहे लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। पुलिस ने कहा कि बिना अनुमति के पार्टी के लोग किले की तरफ जा रहे थे, जबकि एलजेपी के नेताओं का कहना है कि वो कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे, सिर्फ किले तक जाना चाहते हैं। और इसी कड़ी में लखनऊ के अंदर एक और विवाद पैदा हुआ है, जिसमें कंसा पासी किले पर इस कब्जे को लेकर दलितों और मुस्लिमों के बीच में सियासी मुद्दा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में अब महिलाबाद के कंसा पासी किला विवाद को खुद जो है पासी समाज का प्रतिनिधि बताने वाले लाखन आर्मी ने 31 जिलों में यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। हरदोई जिले से शुरू हो रही ये पासी स्वाभिमान यात्रा किले में शिव मंदिर को वापस पाने की मांग के साथ की जा रही है।
9: जो हमारे किला था, हमारे किले के धार्मिक स्थान थे, वो भी तो हमको संरक्षित चाहिए, वहाँ भी मजारे बना दी जा रही है, तो चिंता का विषय है। इसलिए आज हम किले को बचाने के लिए, उनके अस्तित्व को बचाने के लिए, उनके इतिहास को बचाने के लिए 31 जिलों में भ्रमण कर रहे हैं और अपने महापुरुष का जन जन में प्रचार करेंगे, उनकी गौरव गाथा बच्चे बूढ़े जवान माताएं बहनों को सबको बताएंगे।
10: एक नया मुद्दा मलिहाबाद तसमंडी में चल रहा है कि अभी अभी अयोध्या का मामला जो है ठंडा नहीं हुआ था, एक अयोध्या के लिए यात्रा निकली थी, राजा कंसा पासी के किले को लेकर के यात्रा निकाली जाएगी। तो ये जो लोग हैं, ये देश के अंदर 2027 के चुनाव को देखते हुए एक नैरेटिव सेट करने के लिए नए नए शगुफे तैयार कर रहे हैं।
0: और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे। हाँ, जरा देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, in association with
12: Bharat ki apni electric sawari Sokudo.
13: Tune in's how to a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
14: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
15: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
16: Money, money, money, money, every month.
17: Soch batlo aur bank bhi.
18: जब पार्टी में अपने साथ छोड़ रहे हैं तब कुछ यूं ममता बैनर्जी दिल्ली में सोनिया गांधी से करीबी दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिशों में दिखी। लेकिन बागी सांसदों से आर पार की नौबत ऐसी है कि टीएमसी ने उन्हें चुनौती दी है कि वे अपने दम पर चुनाव जीत कर दिखाएं। टीएमसी ने सांसद यूसुफ पठान का नाम लेकर पार्टी के संकट के पीछे अमित शाह पर आरोप लगा दिया है। साथ ही ये दावा भी किया कि यही लोग ममता बनर्जी की तारीफें किया करते थे। इस बीच 20 सांसदों के साथ का दावा कर चुका बागी गुट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। वहीं बागी गुट की अहम चेहरा काकोली घोष का दावा है कि उनका ये रुख सत्ता के लिए नहीं सिद्धांतों के लिए है। फिरहाद हाकिम जैसे ममता बैनर्जी के बेहद करीबी रहे नेता भी ममता के साथ नहीं दिख रहे। सोमवार को फिरहाद की रितव्रत बैनर्जी के साथ मुलाकात हुई। ममता बैनर्जी की दिक्कतें नेता विपक्ष तय करने में विधायकों के फर्जी दस्तखत के आरोपों से भी बढ़ सकती है। मंगलवार को कोलकाता में ममता बैनर्जी के कालीघाट के घर पर सीआईडी की टीम पहुंची। ममता बैनर्जी का घर टीएमसी का सेंट्रल दफ्तर है, इसलिए उनकी भूमिका भी जांच के घेरे में आ सकती है। आज तक ब्यूरो।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
20: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
21: जिस वक्त ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटी थी, ठीक उसी वक्त उन्हीं की पार्टी के सांसद बगावत की नई कहानी लिख रहे थे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर टीएमसी सांसद इकट्ठा हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी टीएमसी नेताओं से मुलाकात की और विक्टर साइन के साथ बैठक से बाहर निकले।
22: इनको बताना चाहिए ना कि वो 20 एमपी कौन से हैं, इनके सिग्नेचर कौन से 20 लोग हैं जो अलग हो गए।
23: एक सांसद जिसने कहा कि 13 है या 14 है, तो मेरा प्रश्न उनसे है कि वो तो थे नहीं वहाँ, वो तो हमारे साथ सिग्नेचर भी नहीं किया, हमारे मीटिंग में भी थे नहीं, तो वो ज्योतिष है।
21: लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इससे पहले 3 जून को बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं।
24: 9 को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना, आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा।
21: सुखेंदु शेखर राय ने पहले ही प्राथमिक सदस्यता और सांसद का पद छोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाए कि भ्रष्टाचार, महिला विरोध नीति और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में नाकाम रहने की वजह से लोगों ने टीएमसी को नकार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड। कैबिनेट की बैठक में पीएम का सम्मान, मंत्रियों ने खड़े होकर किया अभिवादन। मंदिरों में मंत्रियों का पूजा पाठ, देश विदेश से बधाइयों का तांता। राज्यसभा सांसद की खुल्लम खुल्ला बगावत, इस्तीफा देकर सुष्मिता देव सीधे हेमंता से मिलने पहुंची। बीजेपी में शामिल होने के साफ संकेत, राज्यसभा से दूसरी बगावत। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने से भड़की कांग्रेस, थोड़ी देर में चुनाव आयोग के दफ्तर जाएगा प्रतिनिधिमंडल। सीट चोरी का आरोप लगाया बीजेपी ने, कहा अंदर ही बेदिया। फिर शुरू हो गई ईरान यूएस के बीच सीधी जंग, अमेरिका की भयंकर एयर स्ट्राइक, 20 ठिकानों पर बमबारी और मिसाइल अटैक। ट्रंप ने कहा हेलीकॉप्टर पर हमले का करारा जवाब दिया। यूएस हमलों पर ईरान का जोरदार जवाब, अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से अंधाधुंध अटैक। बहरीन, कुवैत, कतर समेत कई ठिकानों पर ड्रोन से बरसा बारूद, जॉर्डन में बड़े नुकसान का दावा।

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना में प्रस्ताव पारित किया, लगातार लंबे कार्यकाल पर दी बधाई। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन, सबसे लंबे लगातार निर्वाचित कार्यकाल पर सम्मान व्यक्त। दोपहर 3 बजे भारत मंडपम में होगी मुख्यमंत्रियों की बैठक, मोदी सरकार के 12 साल पर होगा कार्यक्रम। 16-17 जून को G7 समिट में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हो सकती है मुलाकात। उज्जैन में पीएम मोदी के 12 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बाबा महाकाल मंदिर में विशेष पूजा, महिलाओं ने दी बधाई। पीएम मोदी का देश में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर जगन्नाथ मंदिर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की पूजा अर्चना। दिल्ली के मंदिर में जेपी नड्डा ने की विशेष पूजा, पीएम के लिए मांगी दुआएं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को देश में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर हनुमान मंदिर में की पूजा पाठ। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी के 12 साल कार्यकाल पूरे होने पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में बीजेपी अध्यक्ष जितेंद्र नवीन बासु स्वराज ने पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल पूरा होने पर मंदिर में किया हवन। दिल्ली में पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने पर सीएम रेखा ने किया पूजा पाठ, पीएम मोदी के लिए भगवान से मांगी दुआएं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल पर हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान के लिए आशीर्वाद। पूरी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पीएम मोदी को देश में सबसे लंबे कार्यकाल में रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री पर जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। तस जनपद में राहुल गांधी और अभिषेक बैनर्जी की 1.5 घंटे लंबी चली मुलाकात खत्म, बंगाल की सियासत पर हुई चर्चा। कलकत्ता हाईकोर्ट में टीएमसी की याचिका, कालीघाट कार्यालय पर सीआईडी छापेमारी को दी चुनौती, बिना वारंट प्रवेश का आरोप लगाया। ममता बनर्जी की पार्टी में नहीं रुक रही बगावत, राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने दिया इस्तीफा। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव के बीजेपी में शामिल होने की संभावना, सुष्मिता देव सीधे हेमंत शर्मा से मिलने पहुंची, बीजेपी में शामिल होने के साफ संकेत। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर मंथन, दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक में जुटेंगे बीजेपी के नेता। दिल्ली में एनडीए की रणनीति बैठक में सीएम योगी, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक करेंगे शिरकत। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जिलावार बैठकों के जरिए साथ रहे संगठन। हापुड़ और बुलंदशहर पर समाजवादी पार्टी का फोकस, संभावित प्रत्याशियों और चुनावी रणनीति पर मंथन। अखिलेश यादव का दावा, 2027 चुनाव से पहले बीजेपी 225 विधायकों के टिकट काट सकती है, लोकसभा नतीजों से जोड़ा गया फैसला। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सवाल उठाया, 43 हारी सीटों और करीबी मुकाबले वाले क्षेत्रों में प्रत्याशी बदलने की तैयारी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सवाल उठाया, 43 हारी सीटों और करीबी मुकाबलों वाले क्षेत्रों में प्रत्याशी बदलने की तैयारी। समाजवादी पार्टी सांसद का दावा, बीजेपी डरी हुई है, 2027 से पीडीए की सरकार बनेगी। 22 जून को फैजाबाद में बीएसपी की बड़ी रैली, 23 जून को कई विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा संभव। विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, बीएसपी 100 सीटों पर प्रभारी नियुक्त करने और प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी में। गठबंधन की अटकलों पर बीएसपी का विराम, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल बोले, जनता ही पार्टी की असली सहयोगी। पासी किला यात्रा पर सियासत तेज, शिव मंदिर की मांग को लेकर अभियान शुरू। कसबंदी पासी किला विवाद गरमाया, 31 जिलों की यात्रा खिलाफ एआईएमआईएम और धर्मगुरुओं ने उठाए सवाल। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का अंतिम चरण संपन्न, अभ्यर्थियों में दिखा उत्साह, उम्मीदवारों से ने साझा किया परीक्षा और तैयारी के अनुभव। आज तक की रिपोर्ट के बाद पीजीआई धर्मांतर मामले में पुलिस सक्रिय, महिला की तलाश के लिए 3 टीमें गठित। आरोपी इरशाद की गिरफ्तारी के लिए सर्विलांस और छापेमारी तेज, जांच का दायरा डॉक्टर तक पहुंचा। 2027 में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन मजबूत करने पर रहेगा जोर। राम मंदिर से रहा विवाद को बोले पंकज चौधरी, जांच में जो दोषी मिलेगा उसके खिलाफ होगी कार्रवाई। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर साध रहे निशाना, ओबीसी प्रतिनिधित्व और 2027 में बेहतर प्रदर्शन का भाजपा ने किया दावा। रामलला भोग प्रसाद को मिला FSSAI का गुणवत्ता और स्वच्छता प्रमाणन, मंदिर की रसोइयों के ऑडिट के बाद जारी हुआ सर्टिफिकेट। आगे पेपर लीक को लेकर एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति के सामने पेशी। नीट को लेकर सरकार की बड़ी बैठक, धर्मेंद्र प्रधान और जेपी नड्डा हुए शामिल। नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर एनटीए के साथ समीक्षा बैठक, छात्रों को शिक्षा मंत्री ने दिया गड़बड़ी ना होने का भरोसा। फायरिंग मामले में खान सर को राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक।
कोचिंग को लेकर बिहार सरकार की सख्ती, प्रशासन को देनी होगी छात्रों की जानकारी। कोटा में प्रसूताओं की मौत नकली ऑक्सीटोसिन से हुई है, जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा। सिजेरियन डिलीवरी के बाद रक्तस्राव न रुकने से 5 महिलाओं की मौत, इंजेक्शन में पानी मिलने की पुष्टि। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर बोले, इंजेक्शन में पानी होने से नहीं रुकी ब्लीडिंग, जांच रिपोर्ट में है ये खुलासा। गाजियाबाद की फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट के कमरे में छत भरभरा कर गिरी, बाल बाल बची बुजुर्ग की जान, वीडियो वायरल। देवरिया में ट्रैफिक सिपाही पर बस कंडक्टर ने मारपीट का लगाया आरोप, पुलिस कंडक्टर को खींच कर ले जाता दिखा, सिपाही को किया गया लाइन हाजिर। रामपुर में प्रेमिका से शादी गुजर में नेटवर्क टावर पर चढ़ा युवक, आश्वासन मिलने पर नीचे उतरा। मुजफ्फरपुर में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश, रंगे हाथ पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद हामिद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जामनगर में एसीबी टीम ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते 2 आरोपियों को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। गोरखपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा की सुरक्षा में सेंध, मोबाइल के साथ पकड़ा गया युवक। दिल्ली के बकौली इलाके में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का दावा, मिलने वाले 12 गैस सिलेंडर अब घटकर 4 रह गए, जबकि कुछ परिवारों को एक भी सिलेंडर नहीं मिला है। विदेश में नौकरी का सपना दिखाकर गुजरात के आनंद में 32 से ज्यादा युवाओं से 38 लाख रुपए के ठगी का मामला। अररिया में करीब 12 करोड़ के मोबाइल फोन से भरे ट्रक की संदिग्ध लूट, ड्राइवर फरार, घटना में जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में घर से निकली नाबालिग लड़की से 2 युवकों ने किया गैंगरेप, एफआईआर दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी। बागपत में भतीजी संग प्रेमी को देखकर भड़का चाचा, नाराज प्रेमी को ने चाचा को मारकर बस्ती में फेंकी लाश। मसूरी में बड़ा सड़क हादसा, झड़ी पानी मार्ग पर कार खाई में गिरी, 4 लोगों की मौत। कर्नाटक के दावणगेरे में सामूहिक दुष्कर्म मामले में बड़ा खुलासा, 10 गिरफ्तार, जांच जारी। बिजनौर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत। जामनगर में कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, महंगाई का कारावास बनाकर सरकार की नीतियों का विरोध। गर्मी की तपेश झेल रहे राजधानी दिल्ली के लोगों को जल्द राहत, साउथ एवेन्यू इलाके में हुई आंधी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। साउथ ईस्ट दिल्ली में बदला मौसम, धूल भरी आंधी के बाद हुई बूंदाबांदी, गर्मी से राहत। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में हुई बारिश, आसमान में बिजली कड़कने के बाद बूंदाबांदी ने दिलाई राहत। दिल्ली एयरपोर्ट इलाके में दिखा मौसम में बदलाव, मौसम बदलने से गिरा तापमान। मुंबई में बरसी राहत की फुहारें, मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेसवे और कुर्ला इलाके से आई बारिश की तस्वीरें। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 4 जून को केरल में देगा दस्तक, लेकिन उत्तर भारत पहुंचने में अभी समय लगेगा। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में मानसून की एंट्री 25 से 30 जून के बीच हो सकती है। केरल के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बड़े हिस्से तक पहुंचा मानसून, महाराष्ट्र में कुछ हिस्सों में दस्तक दे चुका है मानसून। देश के पहाड़ी राज्यों में फिर मिलेगी गर्मी से राहत, 11 जून से सक्रिय होगा नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पहाड़ों और मैदान में दिखेगा असर। हैदराबाद में हुई मूसलाधार बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। हिमाचल के सोलन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने नक्षत्र वाटिका और स्वरोजगार धाम का किया शिलान्यास। देहरादून में सीएन धामी ने विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा जल्द कई विभागों में होगी बहाली। अहमदाबाद में मेड इन इंडिया ओबेन रॉर ईवो इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च, गुजरात गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने किया उद्घाटन। अखनऊ में जावेद अहमद राणा ने कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला, कई इलाकों के निरीक्षण। मालदा में आम के वैश्विक मंच पर बढ़ावा देने के लिए अमर मालदा आम ब्रांड लॉन्च। आज जारी होगा फिल्म अल्फा का टीजर, एक्शन अवतार में दिखेंगे आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ, सिनेमाघरों में 3 जुलाई को लगेगी फिल्म। कल आएगा फिल्म वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर, मुंबई में ग्रैंड इवेंट में लॉन्च किया जाएगा ट्रेलर। अजय देवगन सारा फिल्म धमाल 4 के 4 नए पोस्टर जारी, पोस्टर में मजेदार अंदाज में दिखी फिल्म की पूरी स्टार कास्ट। सनी देओल सारा फिल्म बंटवारा 1947 का पहला मोशन पोस्टर जारी, 14 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। इमरान हाशमी सारा फिल्म आवारा फन 2 से होगा फिल्म बंटवारा 1947 का मुकाबला। ईरान और अमेरिका में चल रही शांति वार्ता के बीच होर्मुज पर एक बार फिर तनाव बढ़ा, अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप पर हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास सिरिक होर्मुज़गन के पूर्वी इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के दक्षिणी तट पर होर्मुज़ स्ट्रेट के पास ईरान के कई एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को बनाया गया निशाना। अमेरिका का दावा, ईरान के ओमान तट पर अमेरिकी सेना के पांच हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा हेलीकॉप्टर पर हमले में तेहरान का हाथ नहीं, युद्ध में हार के बावजूद अमेरिका लगातार ईरान के संकल्प की परीक्षा ले रहा है। ईरान के खोमेन शहर में 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने का दावा, क्षेत्र में बड़ी हलचल।
मरकजी प्रांत होमेन से मिसाइल लॉन्च होने की खबर, अज्ञात दिशा में दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आसमान में दिखी ईरानी मिसाइल, क्षेत्र में बड़ी हलचल। ईरान के जॉर्डन में F-35 हैंगर तबाह करने का दावा, सुरक्षा स्थिति पर नजर। ईरानी मिसाइल खतरे के बीच अलर्ट रख स्थित अमेरिकी बेस अलर्ट पर, मिसाइल रोकने की कार्रवाई का दावा।

बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया है और अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने हेमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात की है। अब ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि वो जल्द बीजेपी को ज्वाइन कर सकती हैं। ये दूसरी राज्यसभा सांसद है जिन्होंने इस्तीफा दिया है टीएमसी से। इस्तीफे के बाद आज तक पर सुष्मिता देव बोली है, उन्होंने कहा है कि अब मैं पूरी तरह से आजाद हूं। मेरा बंगाल की राजनीति से लेना देना नहीं है, यानी कि अब देश भर की राजनीति में वो सक्रिय रह सकती हैं। राज्यसभा छोड़ने के बाद हेमंता से मिली हैं सुष्मिता देव। बीजेपी में शामिल होने के संकेत और इस्तीफा देकर उन्होंने अपने सभी पदों से मुक्ति पा ली है और यही वजह है कि वो कह रही हैं कि अब मैं स्वतंत्र हूं, आजाद हूं, टीएमसी से मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा बंगाल की भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, सुष्मिता कह रही हैं। और अपने पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी मुलाकात असम के सीएम से हुई। राज्यसभा की वो दूसरी सांसद हैं टीएमसी की जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, अब जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते।

0: हमारे साथ बातचीत करने के लिए है सुष्मिता देव, जो तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे चुकी है और ना सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा पद से बल्कि पार्टी से भी इस्तीफा दे चुकी है। मैम, बड़ा फैसला आपने लिया और पिछले कुछ दिनों में हम ये भी देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के कई लोकसभा सांसद भी नाराज हैं, राज्यसभा सांसद, तो कल सुखेंदु जी ने भी इस्तीफा दिया, आपने भी इस्तीफा दिया, क्या कारण की लगातार जो है तृणमूल कांग्रेस से लोग छोड़ रहे हैं और आपने भी मन बना लिया?
1: देखिए, कारण कुछ व्यक्तिगत है, कुछ राजनीतिक है, बिना कारण के तो कोई कुछ करता नहीं है। मैं किस तरह की राजनीति करूंगी, कहां से करूंगी, ये मेरा निर्णय है और मेरा हक है। क्योंकि राज्यसभा मुझे एक पार्टी से मिला था, हाँ, जहां विधायकों ने वोट दिया था, बंगाल के लोगों ने इनडायरेक्टली दिया था। तो अगर पार्टी से इस्तीफा दिया तो फिर राज्यसभा सीट भी छोड़ना चाहिए, जो आपका नहीं है उस पर क्यों बैठे रहे।
0: अब आप आगे का क्या आप सोच रहे हैं, किस तरह से आप अपनी राजनीति देखते हैं, कहां आप आगे जाएंगे?
1: देखिए, सच्चाई तो ये है कि मेरी राजनीति बंगाल में नहीं है, मेरी राजनीति आसाम में है और मुझे आसाम में ही राजनीति करना है। तो आसाम में जो राजनीतिक परिस्थिति है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मैं आसाम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा से मिल के आई हूँ। और देखिए, अगर मैं किसी पार्टी में जाना चाहती हूँ, वो तो पार्टी का डिसीजन होता है, मेरा डिसीजन तो नहीं होता। सो लेट अस सी, बट आई फील सी आई एम अ लेडी शुड नेवर गिव हर एज, बट आई एम 53, यू कैन गूगल एंड सी। सो अगले 5 साल तो शायद बीजेपी रहेगी आसाम में, हाँ। और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पुश बराक वैली में स्पेशली किया है, क्योंकि मैंने तो राजनीति बराक वैली आसाम में किया है, I have never seen this kind of development in the past. अतीत में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, जो हमारी बहुत बड़ी समस्या, मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो मैं बीजेपी के खिलाफ बोलती थी पर वहां जाके अटक जाती थी जब डेवलपमेंट की बात आती थी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं हैं जिनके साथ में थी, ऑल द बेस्ट।
0: ममता दा का नेतृत्व आसाम में जैसा है, जैसा उन्होंने काम किया है पिछले काफी लंबे, अब तो 15 साल भी उनके पूरे होने वाले, क्योंकि 10 साल तक तो सरकार रही, अब तो तीसरी बार सरकार आ गई, कैसा आपको लगा आसाम में बीजेपी का जो काम अब तक हुआ?
1: सी, हम पॉलिटिक्स में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं कि हेमंत तो ऐसे हैं, मोदी जी ऐसे हैं, ममता दीदी ऐसे हैं। निर्णय कौन लेता है? पब्लिक। मैं कुछ भी बोलती रहूं तो आसाम के पब्लिक ने क्या निर्णय लिया? हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, वो राजनीति में, लोकतंत्र में होता है, बट द फैक्ट इज निर्णय तो जनता लेती है। तो जनता किसके साथ है? इस बार आसाम में आपने मार्जिन्स देखे हैं,
0: 100 पार हो गए।
1: तो इट इज वेरी सिंपल, बंगाल में जो परिस्थिति है इस वक्त, जो चल रहा है, मतलब तृणमूल कांग्रेस का आसाम में क्या होगा मैं कह नहीं सकती। हालांकि हम एक एमएलए सीट जीत के आए हैं, सो इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, इट्स अ पर्सनल डिसीजन। और देखिए, ये बड़ा डिसीजन है, उसको फिर ऑब्जॉर्व करने में भी टाइम लगता है, तो 2-3 दिन बाद फिर से आपसे बात करेंगे।
0: एक आखिरी प्रश्न लूंगा कि आपने असम की बात की, लेकिन बंगाल में तो इस बार जादू हो गया, बीजेपी 200 पार हो गई, लोगों को लग नहीं रहा था कि अभी बीजेपी वहां सरकार बना पाएगी। जिस तरह की स्थिति और जैसा परफॉर्मेंस बीजेपी का बंगाल में रहा, उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे?
1: सी, सच्चाई तो ये है, मैंने सोचा भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीत के आएगी, ये मेरा असेसमेंट था, गलत हो सकता है। पर जब रिजल्ट निकला, जब देखा क्या रिजल्ट है, उसमें कई सारे बातें थी, SIR, ये वो, मेनी थ्योरीज, बट मैंडेट इज अ मैंडेट, अच्छा लगे या बुरा लगे, सो मैंडेट को तो मानना पड़ेगा।
0: आपको क्या लग रहा है, ममता बनर्जी की गलती की वजह से सांसद नाराज है या अभिषेक बनर्जी की गलती की वजह से?
1: सी, देखिए, मैं एक चीज बताती हूँ, मैं इतनी बड़ी लीडर नहीं हूं कि मैं ममता दीदी पे कमेंट करूं, ठीक है? आज मैंने उनको छोड़ा है, कल मैं किसी और पार्टी में जा भी सकती हूं, पर मेरे से तो बहुत ज्यादा तजुर्बा उनको, अनुभव।
0: और अभिषेक बनर्जी का कैसा लीडरशिप आपको लगता है?
1: कि अभिषेक बनर्जी पे कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। मैं आपको ये जरूर कह रही हूं कि ये मेरा राजनीतिक और व्यक्तिगत निर्णय है, और मैं मानती हूं कि अगर डेवलपमेंट की राजनीति मुझे आसाम में करनी है तो रास्ता यही है।
0: तो क्या टीएमसी के साथ रहकर नहीं कर सकते थे?
1: देखिए, मैंने कांग्रेस की भी सरकार देखी है असम में और मैंने बीजेपी की सरकार देखी है। अब टीएमसी की सरकार कभी असम में होगी कि नहीं मैं कह नहीं सकती, बट आई हैव सीन द कंपैरिजन। तुलना करने की तो मैं लायक हूं, इतनी तो मुझे दिख रहा है कि काम में क्या अंतर है और जमीन आसमान का अंतर है, यही सच्चाई है।
0: मैं खत्म करता हूं इंटरव्यू। आपको लगता है पिछले 15 साल में करप्शन, गुंडागर्दी, लूटमार, जिस तरह की बातें बीजेपी कहती थी, वो हुआ बंगाल के अंदर? आपने भी कई टीएमसी नेताओं के साथ काम किया, आपने ममता बनर्जी के साथ में काम किया, आपको लगता है ऐसा
1: गुंडागर्दी हुआ कि नहीं, चोरी हुई कि नहीं, डकैती हुई कि नहीं, ये मैं तो नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकती, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेंगे। मैं कर सकती हूँ क्या? मेरे पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है क्या? तो मैं कैसे टीवी पे बोल दूं कि ये चोर है, ये डकैत है, इसने चोरी की? मैं क्यों बोलूं?
0: मेरा क्या नाराजगी आपकी?
1: देखिए, कुछ भी कारण हो, कुछ तो कारण होगा, जो भी कारण है वो कारण मैं हेमंत दा को बोल चुकी हूँ। अब
2: इसी के साथ यहां रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी
5: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
6: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
7: सवारी
8: आगे आगे
9: उधर
8: करेक्ट करेक्ट
10: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: इन एसोसिएशन विद
7: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
6: हिंट, बड़े आराम से
7: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
6: विमल बोलो जुबा केसरी।
8: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
9: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
10: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
11: मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूँ जहाँ पर ये आग लगी।
12: मैं आपको टॉप एंगल से तस्वीर दिखाता हूँ और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी है।
13: यहाँ पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था।
14: ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है।
12: 20 लोगों की जान चली गई। और देखिए जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहां से नहीं दिखाएंगे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.
3: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Tune In is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
0: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।

पीएम मोदी ने बनाया सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड। कैबिनेट की बैठक में पीएम का सम्मान, मंत्रियों ने खड़े होकर किया अभिवादन। मंदिरों में मंत्रियों की पूजा पाठ, देश विदेश से बधाइयों का तांता। टीएमसी राज्यसभा सांसद की खुल्लम खुल्ला बगावत, इस्तीफा देकर सुष्मिता देव सीधे हेमंत से मिलने पहुंची। बीजेपी में शामिल होने के साफ संकेत, राज्यसभा से दूसरी बगावत। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने से बढ़की कांग्रेस, हो रही देर में चुनाव आयोग के दफ्तर जाएगा प्रतिनिधिमंडल, सीट चोरी का लगाया आरोप, बीजेपी ने कहा अंदर ही है भेदिया। फिर शुरू हो गई ईरान यूएस के बीच सीधी जंग, अमेरिका की भयंकर एयर स्ट्राइक, 20 ठिकानों पर बमबारी और मिसाइल अटैक, ट्रंप ने कहा हेलीकॉप्टर पर हमले का करारा जवाब दिया। यूएस हमलों पर ईरान का जोरदार जवाब, अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से अंधाधुंध अटैक, बहरीन कुवैत कतर समेत कई ठिकानों पर ड्रोन से बरसा बारूद, जॉर्डन में बड़े नुकसान का दावा।

नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं नेहा बाथम। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग तेज हो गई और अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिरने के बाद से ट्रंप ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अमेरिकी सेना ने करीब 20 ईरानी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। जास्प, केश्म द्वीप, मीनाब, बंदर अब्बास और सिरिक समेत कई इलाकों में हवाई हमला हुआ है। तो ईरान से जवाबी कार्रवाई करते हुए मिडल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ईरान ने दावा करते हुए 21 ठिकानों को निशाना बनाया। जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई में मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया गया। मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं वो ठिकाने जहां पर ईरान में अमेरिकी एयर स्ट्राइक्स हुए हैं, जिसमें केशम, बंदर अब्बास, सिरिक और कई अन्य इलाके भी हम आपको दिखा देते हैं जहां पर ये हमले हुए हैं।

इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी हमले को लेकर ईरान का बड़ा आरोप आया है। अमेरिकी हमले में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हुआ है, आत्मरक्षा में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरानी विदेश मंत्रालय का बयान है कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान ने खाड़ी देश के देशों को चेतावनी दी कि वो अपनी जमीन या सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल अमेरिका को ईरान के खिलाफ ना करने दें। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में भी दखल देने और हालात को बिगड़ने देने से रोकने की अपील की है।

0: और ईरान अमेरिका जंग को लेकर एक और खबर आपको बता दें, अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं। ईरान के मरकजी के कौम में से कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। आईजीसी ने दावा करते हुए कहा कि उसने पश्चिम एशिया में अमेरिकी और सहयोगी देशों के कुल 21 एयर और नौ सैनिक ठिकान को निशाना बनाया है। बैलिस्टिक मिसाइल दागने का वीडियो सामने आया, 6 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने मरकजी से दागी है। ये बड़ा अपडेट, युद्ध से जुड़ा हुआ 21 एयर नौ सैनिक ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। आईजीसी ने दावा किया है, प्रणब मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। प्रणब, ये युद्ध में जो मानव अधिकार का उल्लंघन की बात कही जा रही है, दरअसल आत्मरक्षा में उल्लंघन किया गया है, इस बात का स्पष्टीकरण दिया जा रहा है लगातार, लेकिन जाहिर तौर पर इस युद्ध में अमेरिका और इसराइल के दोनों के रोल में कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखाई दिया, और यह अभी से नहीं शुरुआत से दिखाई दिया। क्या इस बार इसराइल की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि अब अमेरिका जब लगातार वार कर रहा है तो इसराइल जाहिर तौर पर साथ दे रहा होगा?
1: देखिए, दोनों रणनीतिक सहयोगी हैं, दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग से लेकर वेपन शेयरिंग तक, इन्हीं हथियारों के लेन देन से बहुत नजदीक की साझेदारी है, और शायद यही वजह है कि चाहे 12 दिनों का पिछले साल हुआ युद्ध हो, जो मई जून के समय में हुआ था, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों के ऊपर वार किया गया था, या इस बार की लड़ाई को आप देखें कि इसराइल की शुरू की हुई लड़ाई के अंदर अमेरिका भी कूदता है, अमेरिका भी उसके अंदर शामिल होता है, लेकिन ये पूरा संघर्ष अब इस समय एक एस्केलेशन ट्रैप में फंस चुका है नेहा, यानी एक ऐसा दुष्चक्र जिससे बाहर निकलना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी, और ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के लिए बेहद पेचीदा, बहुत मुश्किल हो गया है। निश्चित रूप से ईरान ने यह साबित कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो रणनीतिक हथियार के तौर पर न केवल इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए एक चोक पॉइंट भी लगा सकता है। 105 दिन हो चुके हैं इस लड़ाई को, लेकिन अभी तक न तो हथियारों के जरिए किसी तरीके का कोई निर्णय हो पाया है, और न ही कूटनीतिक बातचीत से किसी तरीके का कोई समाधान निकल पाया है। और रह कर ये जो लगातार भूकंप के झटके आते रहते हैं, जैसे आप टकराव का भूकंप कह सकती हैं, तनाव का भूकंप कह सकती हैं, ये लगातार ये बता रहा है कि इसमें समाधान का रास्ता यदि नहीं निकला तो स्थिति और विस्फोटक हो सकती है, क्योंकि ईरान अपना जब एस्केलेशन करता है या जब पलटवार की कार्यवाही करता है तो उसकी जद के अंदर इराक हो, कुवैत हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, या संयुक्त अरब अमीरात हो, ये तमाम देश उसके अंदर आते हैं। जॉर्डन तक आज वार किया गया पलटवार की कार्यवाही में या जवाबी कार्यवाही के अंदर। और वहीं अमेरिका की भी देखें अगर आप, तो अमेरिका ने न्यूक्लियर ब्लॉकेड अभी तक नहीं हटाया है, यानी अमेरिकी नौसेना की भारी तैनाती इस इलाके के अंदर मौजूद है, और आज जिन इलाकों को ठिकाने को निशाना बनाया गया
0: ईरान के। हमारे साथ इस बीच बड़ी खबर ईरान अमेरिका जंग को लेकर, ईरान ने जॉर्डन में F-35 हैंगर तबाह करने का दावा किया है। आईजीसी के बयान के मुताबिक जॉर्डन में 4 बड़े सैन्य ठिकानों पर लंबी दूरी के मिसाइल से हमला हुआ है। ईरान ने दावा किया कि जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर मौजूद F-35 लड़ाकू विमान के हैंगर नष्ट कर दिए गए। ईरान का यह कहना है कि कार्रवाई अमेरिका के जास्क, केशम द्वीप, मीना, बंदर अब्बास और सिरिक समेत कई इलाकों में किया गया है। प्रणय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, ये जो मिसाइल से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, शायद इसी बात को दर्शाता है कि युद्ध में एस्केलेशन का ये ट्रैप है जिसमें एक वार करता है, दूसरा पलटवार करता है और अपर एज पाने की कोशिश होती है।
1: बिल्कुल, दोनों की कोशिश यही है नेहा कि किसी तरीके से एक ऐसी बढ़त हासिल कर ली जाए जिसके बाद, इसके बाद जो समझौता होता है उस समझौते को जो है पब्लिक के सामने उसे बेचा जा सके, यानी उसे कहा जा सके कि एक अच्छा समझौता वो करके लेके आए हैं। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर कि कार्रवाई जो है वो ईरान के दक्षिणी इलाके के अंदर हुई, चाहे बंदर अब्बास पे, सिरिक, या जो है कश्म आइलैंड के अंदर, लेकिन ईरान जब पलटवार करता है तो वो जॉर्डन तक वार करता है, यानी निश्चित रूप से दोनों की कोशिश है कि इसी बहाने ज्यादा दूरी तक ज्यादा बड़े जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा सके, क्योंकि जॉर्डन की यदि आप भौगोलिक स्थिति देखें तो वो किसी तरीके से ईरान के नजदीक में नहीं है, रादर उस जॉर्डन इस जगह पर मौजूद है, ऐसी स्थिति में वो है भौगोलिक रूप से कि वो अमेरिका की वहां पर सैन्य मौजूदगी है और वो इसराइल के लिए एक मिलिट्री बफर की तरह काम करता है, क्योंकि ईरान की तरफ से चलाई गई मिसाइलें जो इसराइल के लिए निशाना बनाते हुए चलती हैं, वो जॉर्डन के ऊपर से जब भी गुजरती हैं तो जॉर्डन में मौजूद पैट्रियट की जो मिसाइल बैटरीज हैं वो उन्हें नष्ट कर पाती हैं। तो इसी बहाने अगर आप देखें कि केवल एक हेलीकॉप्टर गिराने के बहाने अगर अमेरिका ने इसराइल ईरान के कई इलाकों के ऊपर निशाना बनाते हुए वार किया, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी पलटवार के अंदर जॉर्डन तक वार किया जहां पर अमेरिका का बड़ा सैन्य ठिकाना मौजूद है। जी,
0: ठीक है, बने रहे हमारे साथ। इस बीच ईरान के हमले के बाद जॉर्डन की सेना का बयान आया है। जॉर्डन की सेना ने कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान से दागी गई 5 मिसाइल को हवा में नष्ट कर दिया है। सेना के मुताबिक मिसाइलें देश के पूर्वी हिस्से में स्थित अल अजराक क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। इंटरसेप्शन के बाद मिसाइल का मलबा अलग अलग जगहों पर गिरा, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। संपत्ति को नुकसान पहुंचने की भी सूचना नहीं है। जॉर्डन ने बताया कि सैन इंजीनियरिंग टीमें मलबे को सुरक्षित करने और संभावित विस्फोटकों को हटाने के लिए मौके पर भेजी गई हैं। इस बीच बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने फिर से पलटवार किया है। बहरीन पर ईरान ने हमला किया। बहरीन में अमेरिका की 5वीं फ्लीट पर ईरान ने ड्रोन से अटैक किया है। ड्रोन अटैक के बाद कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई। प्रणय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, ये जो जॉर्डन तमाम तरीके के बात कह रहा है कि जो मिसाइल्स हैं उनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, इसकी कोई तस्दीक वीडियोस के जरिए की गई है?
1: देखिए, अभी तक वीडियोस तो जॉर्डन की तरफ से नहीं आए हैं कि उन्होंने किस तरीके से ईरान की तरफ से आ रही मिसाइल्स को नष्ट किया है, लेकिन निश्चित रूप से इन इलाकों के अंदर एक रोबस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। और अगर आप प्रतिशत देखें तो ईरान की तरफ से दागी जाने वाली बहुसंख्यक मिसाइलें, यानी बहुत सारी जो मिसाइलें भी दागी जाती हैं, उनमें से अधिकतर को नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन ईरान ने भी अपना जो मिसाइल पावर है उसको इस तरीके से डेवलप किया है कि वो न केवल क्लस्टर एम्यूनिशन का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा वो काफी बराज ऑफ मिसाइल्स जो है वो उनका इस्तेमाल करते हैं। यानी बहुत सारी मिसाइलें यदि दागी जाएंगी तो वो किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म कर सकती हैं, उसको चकमा दे सकती हैं, और उसके बाद वो उन ठिकानों तक पहुंच सकती हैं जहां ईरान वार करना चाहता है। हमने 40 दिनों के दौरान जो इजराइल के खिलाफ ईरान की लड़ाई थी उसमें भी ये देखा कि किस तरीके से ईरान के इजराइल के अलग अलग इलाकों तक ईरान की वो मिसाइलें पहुंच पा रही थी, क्लस्टर एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अगर आप देखें कि किस तरीके से बीते 24 घंटों के दौरान कुवैत, बहरीन, इसके अलावा जॉर्डन तक अलग अलग इलाकों के अंदर वार किया गया, यानी ईरान की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश है कि जिन जिन जगहों पर अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं, जिन देशों के अंदर अमेरिका के ठिकानों से उस पर वार किया जा रहा है, ईरान की मिसाइलों और ईरान के ड्रोन्स की जद में वो तमाम ठिकाने भी हैं, वो तमाम देश भी हैं। और साथ ही ईरान इस इन हमलों के जरिए ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो बात वो बार बार कह रहा है कि इस पूरे इलाके के अंदर खतरा दरअसल ईरान नहीं बल्कि अमेरिका की सैन्य मौजूदगी है, और इसी सैन्य मौजूदगी को न केवल चुनौती दे रहा है बल्कि ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका की मौजूदगी इस इलाके में अस्थिरता को बढ़ाती है, न कि स्थिरता को।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।

0: बहरीन और जॉर्डन के साथ साथ कुवैत पर भी ईरान का हमला हुआ है। ईरान ने कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है। कुवैत में अमेरिकी बेसिस को ईरान ने निशाना बनाया है। ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, हमले को लेकर ईरान का बड़ा दावा आया है। अमेरिकी ड्रोन को गिराने का दावा किया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बाद अमेरिकी ड्रोन MQ-9 को गिराने का यह दावा है। IGC ने कहा कि बुशहर के पास अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया है। और बात करेंगे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसक प्रदर्शन की। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की फायरिंग, बड़ी संख्या में लोगों की मौत को लेकर लोगों में गुस्सा है। अब भारत सरकार ने मामले को लेकर चिंता जताई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल। बीच बड़ी खबर आपको बता दें, POJK में हिंसा और कई मौत के बाद तनाव बरकरार है। कई मासूम लोगों की इस फायरिंग में जान गई है, जिसको लेकर अब पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है।
1: पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में जुल्म की इंतहा हो रही है। पूरा इलाका सुलग रहा है। वहां बेगुनाह लोगों पर गोलियों की बौछार की जा रही है। पाकिस्तानी मुल्क की सरकार के खिलाफ विद्रोह को ऐसे ताकत के जोर पर दबाने की कोशिश की जा रही है। गोलियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और ऐसे जुल्म के खिलाफ वहां लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। हजारों हजार की भीड़ पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। दरअसल ये बवाल तब शुरू हुआ जब POJ के मेन लोग काफी वक्त से बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हैं। JAAC यानी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले 9 जून को बंद का ऐलान किया गया और उससे पहले सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पाकिस्तान सरकार ने 5 जून को JAAC पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही पूरे POJK में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। अगले ही दिन बड़े पैमाने पर नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसे एक्शन के विरोध में 7 जून से उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए। रावलकोट के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर झड़पें हुई। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों और शोक सभा में शामिल लोगों पर फायरिंग कर दी। पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी सेना को इन लोगों पर खुलेआम गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि रावलकोट में शोक सभा में शामिल 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हो गए।
2: कैंपों में जलील करते हो या गलियों में मोहल्लों में जलील करते हो या जो वो बेरोजगारी में जलील करते हो या लाकानूनियत में जलील करते हो, तो लाओ एक एटम बम का गोला हम पे मार दो, बात खत्म हो जाएगी। वरना एक भी जिंदा रहेगा तो हक के मलकियत, हक की आजादी, हक के इख्तियार की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला।
1: पाकिस्तानी फौज की जुल्म के खिलाफ रावलकोट में मस्जिदों से अपील की गई कि लोग लॉन्ग मार्च में शामिल हों।
3: ये देख सकते हैं आप,
4: जम्मू कश्मीर की धरती पर बिरोनी फोर्सेस की तरफ से हमला किया गया है। तमाम वतन कश्मीरियों से गुजारिश है कि मुकम्मल लॉकडाउन और लॉन्ग मार्च में शिरकत करके कौमी गैरत का सबूत।
1: POJK में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ऐसी कार्रवाई को लेकर भारत ने गंभीर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमें पाकिस्तान से लगातार फर्जी खबरें और वीडियो देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छुपाने और मानवाधिकारों के हनन से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में पुलिस की बर्बरता की खबरें आ रही हैं, जिनमें कई प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। आशा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को इसके लिए जवाबदेह ठहराएगा। उधर POJK में हिंसा को लेकर यूरोप स्थित मानवाधिकार संगठन ECHRT ने भी सवाल उठाए हैं और मांग की है कि इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विशेष बैठक बुलाई जाए, संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत मामले की जांच करें, स्वतंत्र जांच कराई जाए, इंटरनेट पर लगी रोक तत्काल खत्म की जाए और ये भी कि गिरफ्तार JAAC कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए। आज तक ब्यूरो।

0: पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमला किया है। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में 19 लोगों की मौत हुई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तालिबान सरकार के मुताबिक मरने वालों में 11 बच्चे हैं। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने कुनार, खोस्त और आम घरों को निशाना बनाकर बमबारी की। खोस्त में 9 लोगों की मौत हुई, 8 बच्चे और एक महिला इसमें शामिल है। तालिबान सरकार के अनुसार पिछले एक साल में पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाइयों में सैकड़ों लोगों की जान गई है। मार्च में काबुल स्थित एक पुनर्वास केंद्र पर हुए हमले में 269 लोगों की मौत का दावा किया गया था। रुके यहां से ब्रेक के लिए, टिकते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: To kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
4: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
6: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more. Tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
7: Sokudo.

अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ राम कथा से 2027 की सियासी महाभारत का संदेश सुनाते हैं। जिस अयोध्या का राम मंदिर बनवाकर भी 24 में जाति में वोट बंटने से अयोध्या से जुड़ी लोकसभा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, वहां राम के नाम पर अस्त्र शस्त्र सत्ता और विपक्ष में चलने लगा। पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, लिखा राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज किया। जब लखनऊ में बीजेपी विधायक की तरफ से कराई जाती राम कथा में मुख्यमंत्री पहुंचे तो नया सियासी संदेश सुनाई दिया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं निगेटिव ताकतें रावण काल की तरह से उठाएंगी तो उजाड़ करेंगी। क्या योगी का निशाना विपक्ष है, जहां पर वो खर दूषण मारीच ताड़का तक की बात करके एक ऐसी राम कथा का जिक्र करते हैं जिसमें चाचा मामा का नाम आते ही तंजनुमा हंसी आती है। इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं, जब दावा हो रहा है कि हिंदू लड़कियों ही नहीं हिंदू लड़के तक को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, तब मुख्यमंत्री योगी लव जिहाद के खिलाफ श्री राम से सीख लेने को कहते हैं। लव जिहाद ही नहीं बल्कि त्रेता युग में खर दूषण मारीच के जरिए कलयुग में लैंड जिहाद तक का जिक्र योगी आदित्यनाथ करते हैं।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
0: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
1: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
3: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
4: क्या टीएमसी के कुछ और सांसद बागी गुट में शामिल हो सकते हैं? क्या ममता के खिलाफ कुछ और सांसद एनडीए के खेमे में जाने की तैयारी में हैं? क्या अभी कुछ और ऐसे नाम सामने आने बाकी हैं जिन्होंने टीएमसी से बगावत की तैयारी कर ली है? ममता की पार्टी में मची उठा पटक के बीच ये भी एक बड़ा सवाल सियासी हलकों में गूंज रहा है। अब तक न ही ममता ने अपनी पार्टी से मिले सांसदों की बगावत पर कोई जवाब दिया है, न ही इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। कोलकाता से दिल्ली तक बिखरती पार्टी को लेकर ममता बनर्जी तो चुप हैं, लेकिन उनकी सांसद महुआ मोइत्रा बोल रही हैं। महुआ मोइत्रा ने बगावत करने वाले सांसदों को कहा कि हिम्मत है तो वो सब इस्तीफा देकर दोबारा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर दिखाएं। इसके साथ महुआ मोइत्रा ने यूसुफ पठान पर भी निशाना साधा है। दरअसल पिछले दिनों खबर आई थी कि यूसुफ को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था ताकि ममता उस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सके, लेकिन यूसुफ ने इनकार कर दिया। ममता की पार्टी में संकट है तो ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर इसकी वजह क्या है। एक दिन पहले सुखेंदु रॉय ने अपने इस्तीफे के बाद मीडिया से कहा था कि पार्टी को कई लोग मनमाने तरीके से चला रहे हैं। इस बगावत ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब बागी सांसद शर्मिला सरकार ने एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की। साथ ही वो लोकसभा अध्यक्ष को बताने वाली हैं कि वही असली टीएमसी हैं। तृणमूल कांग्रेस में विद्रोह का आलम यह है कि जो नेता कल तक ममता बनर्जी को दीदी कहकर संबोधित करते थे, वो अब खुलेआम उनका नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं। इसे ममता बनर्जी के सियासी कद में आई कमी के तौर पर देखा जा रहा है। हर दिन बीतने के बाद ममता बनर्जी का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
0: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

दुनिया का बाजार खुला है तो मुकाबला भी खुला है। जहां सामान सस्ता मिलता है, खरीदार अक्सर उसी तरफ खिंच जाता है। लेकिन जब सस्ते माल की भरमार किसी देश की फैक्ट्रियों और नौकरियों पर दबाव डालने लगे तो सरकारों की चिंता बढ़ना तय है। यूरोप में इन दिनों ऐसी ही बहस तेज हो गई है। चीन से आने वाले कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स ने कई देशों की इंडस्ट्री के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे में यूरोपीय यूनियन के कई बड़े सदस्य देश सस्ते आयात पर ज्यादा सख्त रुख अपनाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसके तहत स्पेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड और लिथुआनिया ने मिलकर कड़े कदमों की वकालत की है और इंडस्ट्रियल ओवर कैपेसिटी के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रणनीति की मांग की है। कई यूरोपीय देश मानते हैं कि सस्ते आयात से स्थानीय उद्योगों पर दबाव बढ़ रहा है। यूरोप की चिंता है कि बड़ी उत्पादन क्षमता वाले देशों से आने वाला सस्ता माल स्थानीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा को कमजोर कर सकता है। यही वजह है कि चर्चा अब किसी एक प्रोडक्ट तक सीमित नहीं रही है और व्यापक व्यापारिक सुरक्षा उपायों की बात होने लगी है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त सामने आया है जब यूरोपीय आयोग चीन को लेकर अपनी रणनीति पर अहम चर्चा करने जा रहा है। कई देशों का मानना है कि मौजूदा एंटी डंपिंग नियम हर चुनौती का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और व्यापार सुरक्षा के लिए नए टूल्स की जरूरत है। ऐसे में ईयू में सेक्टर आधारित सुरक्षा उपायों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। मौजूदा प्रोडक्ट आधारित एंटी डंपिंग मामलों से आगे बढ़ने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके साथ ही घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार को बचाने पर फोकस बढ़ रहा है। इस बहस का सबसे बड़ा असर उन सेक्टर्स पर पड़ सकता है जहां चीन की मौजूदगी तेजी से बढ़ी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और कई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को लेकर यूरोप पहले से सतर्क नजर आ रहा है। दिलचस्प बात है कि ये मामला केवल यूरोप और चीन तक सीमित नहीं है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपने उद्योगों को सुरक्षित रखने और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने पर लगातार जोर दे रही हैं। ऐसे में ग्लोबल ट्रेड का माहौल पहले के मुकाबले ज्यादा प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है। आने वाले दिनों में यूरोप का रुख वैश्विक व्यापार के लिए अहम संकेत दे सकता है। अगर सस्ते आयात पर नई बंदिशें लगती हैं, तो कई उद्योगों की कारोबारी रणनीति बदल सकती है। साथ ही ये भी तय होगा कि दुनिया का बाजार पूरी तरह खुला रहेगा या घरेलू उद्योगों की सुरक्षा को ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। आदित्य के राणा आज तक।

पीएम मोदी ने बनाया सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड। कैबिनेट की बैठक में पीएम का सम्मान, मंत्रियों ने खड़े होकर किया अभिवादन, मंदिरों में भी मंत्रियों की पूजा पाठ, देश विदेश से बधाइयों का तांता। टीएमसी की राज्यसभा सांसद की खुल्लम खुल्ला बगावत, इस्तीफा देकर सुष्मिता देव सीधे हेमंता से मिलने पहुंची। बीजेपी में शामिल होने के साफ संकेत, राज्यसभा से दूसरी बगावत। साक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने से भड़की कांग्रेस, चुनाव आयोग जाकर प्रतिनिधिमंडल की शिकायत, सीट चोरी का लगाया आरोप। बीजेपी ने कहा अंदर ही है भेदिया। फिर शुरू हो गई ईरान यूएस के बीच सीधी जंग, अमेरिका की भयंकर एयर स्ट्राइक, 20 ठिकानों पर बमबारी और मिसाइल अटैक। ट्रंप ने कहा हेलीकॉप्टर पर हमले का करारा जवाब दिया। यूएस हमलों पर ईरान का जोरदार जवाब, अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से अंधाधुंध अटैक। बहरीन, कुवैत, कतर समेत कई ठिकानों पर ड्रोन से बरसा बारूद, जॉर्डन में बड़े नुकसान का दावा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत।
2: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। दो बजते ही न्यूज रूम से हम आपको बताते हैं वो खबरें जो आज दिन भर चर्चा में। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज न्यूज रूम में वो कौन सी खबर है जिनके बारे में बात होने वाली है। तो सबसे पहले किस खबर के बारे में बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे ऑफकोर्स टीएमसी की बात की जाएगी, क्योंकि टीएमसी के हालात इस कदर बिगड़ते जा रहे हैं कि ममता को समझ नहीं आ रहा कि आखिर करना क्या है। तो सबसे पहले बात यहां पर सुष्मिता देव की जाएगी, क्योंकि एक और राज्यसभा सांसद ने ममता दीदी को टाटा बाय बाय कह दिया है। टीएमसी में एक तरह से सुनामी आ गई है, लेकिन ये कहां तक जाएगी इसका पता नहीं। दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम आपको बता देते हैं जिसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर जो होगी वो दूसरी बड़ी खबर वो भी हम आपको बता देते हैं कि दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे कि क्या होने वाला है, क्योंकि अलग अलग जगह मध्य प्रदेश में भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही है। 2:30 बजे भी हम आपको बताएंगे किस तरह से पाकिस्तान में हालात खराब है, लेकिन टीएमसी को एक के बाद एक झटका मिल रहा है। सबसे पहले वो आपको बता देते हैं, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर ममता बनर्जी से जुड़ी हुई है। ममता बनर्जी से जुड़ी हुई है, क्योंकि टीएमसी में एक और बगावत देखने को मिली और ये तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हुआ है। सुष्मिता देव की बात की जा रही है। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी से अभिषेक बनर्जी मिले हैं। अभिषेक बनर्जी चौतरफा घिरे हुए हैं, कभी आम जनता उन पर घेराव कर देती है तो ईडी का शिकंजा तो कसा हुआ है। अब बागियों की लगातार जो मोर्चाबंदी हो रही है, तो अब ममता बनर्जी करेंगी क्या? सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुकी हैं, अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं, तो ऐसे में क्या कुछ होगा ये सभी की नजर बनी हुई है। लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर आपको ये बता दें, सुष्मिता देव से ही जुड़ी हुई है। खुल्लम खुल्ला बगावत किसे कहते हैं ये सुष्मिता देव ने बता दिया, ममता बनर्जी को बता दिया, क्योंकि अलग होती है और उसके बाद सीधे हेमंत बिस्व शर्मा से मुलाकात करने पहुंच जाती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया है, और इससे पहले ये दूसरा है। इससे पहले टीएमसी के जो राज्यसभा सांसद थे उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया था, सुखेंदु शेखर रॉय, और अब सुष्मिता देव। तो वो कहते हैं ना, बिछड़े बारी बारी, और यही तो होता हुआ जा रहा है कि जो है वो बिछड़ता जा रहा है। पार्षद, विधायक, सांसद, अब राज्यसभा सांसद की भी बात आ रही है। ममता के पास अब ऑप्शन क्या है, क्या करने जा रही है, वो एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
3: यू स्नैच्ड एवरीथिंग फ्रॉम मी बट यू कैन नॉट स्नैच माई मॉरल्स, आई विल नेवर बाउ डाउन माई हेड।
4: तो क्या ममता बनर्जी दिल्ली में बैठकर अपना राजनीतिक वजूद बचाने की जद्दोजहद कर रही है? क्या दिल्ली में कोई नई खिचड़ी पक रही है? ये सवाल फिलहाल दूर की कौड़ी लग सकता है, लेकिन ममता का हर कदम ये संकेत दे रहा है कि वो डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में लगी है, और डैमेज है कि रुक ही नहीं रहा। पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, आज सुष्मिता देव पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता दोनों छोड़ गई।
5: देखिए, कारण कुछ व्यक्तिगत है, कुछ राजनीतिक है, बिना कारण के तो कोई कुछ करता नहीं है। मैं किस तरह की राजनीति करूंगी, कहां से करूंगी, ये मेरा निर्णय है और मेरा हक है। क्योंकि राज्यसभा मुझे एक पार्टी से मिला था
6: जी।
5: हाँ, जहां विधायकों ने वोट दिया था, बंगाल के लोगों ने इनडायरेक्टली दिया था। तो अगर पार्टी से इस्तीफा दिया तो फिर राज्यसभा सीट भी छोड़ना चाहिए।
4: आज सुबह सुबह सुष्मिता देव की असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की तस्वीरें आईं। दोनों असम से हैं, तो लग यही रहा है कि सुष्मिता के इस्तीफे के पीछे हिमंता बिस्वा शर्मा की बड़ी भूमिका है। ये भी तय लग रहा है कि इस्तीफे से खाली सीट पर उपचुनाव में बीजेपी सुष्मिता को उम्मीदवार बनाएगी।
5: सच्चाई तो ये है कि मेरी राजनीति बंगाल में नहीं है, मेरी राजनीति असम में है
6: जी।
5: और मुझे असम में ही राजनीति करना है। तो आसाम में जो राजनीतिक परिस्थिति है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मैं आसाम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा से मिलके आई हूँ। और देखिए, अगर मैं किसी पार्टी में जाना चाहती हूँ वो तो पार्टी का डिसीजन होता है, मेरा डिसीजन तो नहीं होता।
4: लेकिन ममता के सामने बड़ा सवाल ये है कि अब उनका क्या होगा, शायद वो आगे का रास्ता तलाश रही है। खुद ममता बनर्जी की सोनिया गांधी से मुलाकात हो चुकी है, राहुल गांधी से अभिषेक बनर्जी मिल चुके हैं, लेकिन टीएमसी के भीतर बगावत की आग ठंडी करने में ममता बनर्जी अब तक नाकाम रही हैं।
7: दो साल ने
1: काकुली घोष रिश्तेदार 40 साल से है, मैं 17 साल से हूँ। जो लोग अभी इस बार पहली बार जीत कर आए हैं, 1 साल के लिए 2 साल के लिए, उसके लिए 1-2 साल होगा, हम लोग के लिए इतना दिन जीतने के बाद भी बोले थे, बोलने की कोशिश किए थे, वहाँ पे सिस्टम नहीं है बोलने का, बोलने से सब रोकते हैं जो नहीं बोलना है नहीं बोलना है, तो और अगर बोले भी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलते, आप 7 दिन 10 दिन इंतजार करो।
4: तो अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने दिल्ली आई ममता बनर्जी यहां से क्या हासिल कर लौटती हैं, क्योंकि कोलकाता में तो उनके लिए हर दिन भारी साबित हो रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: तो जो छोड़ रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि बोलने से रुका जाता था, लेकिन अभी हम खुलकर बोल रहे हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। कोलकाता से अनुपम मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुपम, सबसे पहले जब आपसे बात हुई थी आपने कहा था कि बहुत बड़ा बिखराव होने वाला है और अब वो सारी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि कैसे बिखराव यहां पर हो रहा है। तो अनुपम ये बताइए अब आगे किसका नंबर है, हर कोई यही जानना चाह रहा है, अभी क्या हो रहा है और कैसे बचेगी इससे ममता
6: जी। देखिए, लोकसभा में तो बिखराव हो चुका है, लगभग 19 से 20 सांसद जो हैं उन्होंने अपना अलग गुट बना लिया है, दावा ठोक दिया है। वहीं अब राज्यसभा में भी बिखराव शुरू हो चुका है, सुखेंदु शेखर रॉय के बाद अब सुष्मिता देव, इसके बाद जो अंदर से अब खबर आ रही है कि 1-2 और राज्यसभा सांसद टूट सकते हैं। तो ऐसे में जो प्रक्रिया शुरू हुई थी विधायकों से, लगभग शुरू में ऋतुव्रत और संदीपन ने जो प्रक्रिया शुरू की थी, उसके बाद 80 में से 60 विधायक अलग हो गए। अब उसके बाद लोकसभा के विधायकों में रिफ्ट आई और उसके बाद अब राज्यसभा के विधायक भी टूट रहे हैं। तो ऐसे में एक बात तो साफ झलक रही है कि ये जो बिखराव है, ये जो टूट है, बहुत जल्दी बहुत तेजी से हो रही है और एक सप्ताह के भीतर, जो तृणमूल के सूत्र बता रहे हैं, जो बागी ग्रुप है उसके सूत्र बता रहे हैं कि एक सप्ताह के भीतर सब कुछ साफ और स्पष्ट हो जाएगा कितने लोग इस तरफ हैं कितने लोग इस तरफ हैं। हालांकि अभी तक जिस तरीके से जो ट्रेंड चल रहा है, जो बागी गुट है उसका पल्ला बहुत भारी लग रहा है।
2: अच्छा, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, इस वक्त दिल्ली कोलकाता कुछ ऐसे ही हो गए, एक तराजू के दो पहलू, जितनी हलचल पश्चिम बंगाल में है उतनी दिल्ली में भी है। सोनिया गांधी से मुलाकात ममता बनर्जी की, उसके बाद राहुल गांधी से मुलाकात हुई अभिषेक बनर्जी की, दिल्ली में क्या हो रहा है?
7: देखिए, जिस तरीके से एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं, जिसका जिक्र अनुपम ने भी किया, पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दिया, उसके बाद जो है सुष्मिता देव ने दिया है। आने वाले दिनों में जो हमारी जानकारी है उसमें एक से दो और राज्यसभा के सांसद जो हैं वो संसद सदस्य से इस्तीफा दे सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब वो ज्वाइन करेंगे, उसके बाद जब भी पश्चिम बंगाल के लिए राज्यसभा के लिए उपचुनाव होंगे, जिन सांसदों ने इस्तीफा दिया है उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी जो है वो उम्मीदवार बनाएगी। ऐसा पहले भी हो चुका है, चाहे आप उड़ीसा में देखिए, बीजेडी के जिन सांसदों ने इस्तीफा दिया था उनको भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में जो है राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। इससे पहले समाजवादी पार्टी में या कांग्रेस से ही जो है भुवनेश्वर कलिता, जब धारा 370 को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, एक बिल लाया गया था राज्यसभा में सबसे पहले, तो भुवनेश्वर कलिता कांग्रेस के जो है वो चीफ विप थे, लेकिन उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। तमाम इस तरीके की चीजें हमने पहले भी देखी हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है के लिए कई सांसद जो है इस तरीके से इस्तीफा देते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें बाद में चुनाव में अपना उम्मीदवार भी बनाती है। तो ये कोई एक नई बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो चाहेगी कि उनका राजनीतिक जो फायदा है उनको मिले संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर। लेकिन एक चीज जरूर है, ममता बनर्जी को अपनी पार्टी बचाने के लिए इस वक्त
2: बताइए कि सुष्मिता देव को लेकर क्या स्पेसिफिक जानकारी अभी तक मिल पा रही है कि क्या आगे उनकी योजना है?
7: देखिए, बिल्कुल, जो उनकी योजना है देखना यही होगा कि रेबल्स जो है वो लोकसभा में अपना अलग गुट बनाएंगे और उसके साथ साथ जो है राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि जितने ज्यादा से ज्यादा टीएमसी के सांसद जो हैं वो इस्तीफा देंगे। और अगर राज्यसभा के जिन दो सांसदों ने दिया, इसके बाद भी जैसी हमारी जानकारी है और सांसद इस्तीफा देंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी अच्छी चीज होगी, जब एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था मार्च के महीने के अंदर, आपको भी ध्यान होगा अप्रैल में, जिसमें ये था तीन दिन के लिए ये सेशन था महिला आरक्षण बिल को 2029 में लागू करना और परिसीमन आयोग को जो है उसके गठन को लेकर। तब सरकार उस बिल को पास नहीं करवा पाई थी क्योंकि 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी। अब जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है टीएमसी,
2: देखिए बड़ी बड़ी खबर तो आपने बता दी कि सुष्मिता देव बड़ा डिसीजन ले सकती है, अभी और बड़े फैसले लेने वाली है। साथ ही आपने ये भी बता दिया कि अभी ये रुका नहीं है, दो राज्यसभा सांसद, अभी तो लिस्ट और लंबी होने वाली है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे वक्त के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं, लंबे कार्यकाल के लिए 12 साल से लंबा ये हो चुका है और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन है और एक बड़े दिन के तौर पर इसको मनाया जा रहा है। अलग अलग जगह गए, पूजा पाठ किए गए, तो बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन है। अब यहां पर देखिए तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब मंदिर मंदिर जा रहे हैं मोदी के मंत्री, अलग अलग जगहों पर, हर राज्यों में जहां पर विशेष मंदिर है वहां पर सभी लोग पहुंचे हैं। बीजेपी के लिए बड़ा मौका है। कैबिनेट की बैठक में भी आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंत्रियों ने खड़े होकर तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। देश भर में बीजेपी के नेता मंत्रियों ने पूजा पाठ की, कैबिनेट में भी शानदार स्वागत हुआ। 12 साल पूरे होने पर कैबिनेट की बधाई के तौर पर वो तस्वीरें आई कि बहुत गर्म जोशी के साथ स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया है। और ये देखिए वो तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कैबिनेट बैठक से पहले ये मेज को अपने हाथों से थपथपाते हुए तालियां बजाते हुए खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, क्योंकि मोदी देश के सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं और ये बीजेपी के लिए बड़ा मौका है, एनडीए के लिए बड़ा मौका है। और उसी के उपलक्ष्य में देखिए सभी मंत्री खड़े होते हैं, तालियां बजाते हैं और उसके बाद सम्मान करते हैं 12 साल। तो देखिए 12 साल हो चुके हैं, 12 साल यानी सबसे लंबा कार्यकाल किसी प्रधानमंत्री का वो रहा, इससे पहले नेहरू थे। अब इसको लेकर बीजेपी ने बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया, जगह जगह सम्मान भी किया गया, तालियां भी बजाई गई, मंदिर भी गए। और क्या खास हुआ आज के दिन वो हम आपको दिखाते हैं।
8: मोदी जी सर्वप्रथम अपना

0: मंदिरों में पूजा आराधना, पीएम मोदी के लिए भगवान से कामना। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर मंदिरों में रौनक है। मोदी कैबिनेट के मंत्री मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं। जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, गिरिराज सिंह, भजनलाल शर्मा, रेखा गुप्ता, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की आज की सुबह मंदिरों में बीत रही है, क्योंकि निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड आज पीएम मोदी के नाम हो गया है। पीएम मोदी ने लंबे कार्यकाल के मामले में पंडित नेहरू को पीछे छोड़ दिया है।
1: आज देश के लिए एक बहुत गौरवपूर्ण दिन है। अब तक देश की सबसे लंबा समय की प्रधानमंत्री की भूमिका में रहकर सेवा करने वाले सौभाग्यवान व्यक्ति माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ के अनन्य भक्त हैं। अब तक उन्होंने 4,369 दिन ये सर्वाधिक सेवा के अवसर देशवासियों ने उनको दिया। हम महाप्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं कि श्री मोदी जी को दीर्घायु दे और लंबे समय तक देश को सेवा करने का अवसर दे। देखिए, देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद किया है। देश की आस्था और विश्वास प्रधानमंत्री जी के साथ है।
0: 4,399 दिन तक सरकार का नेतृत्व करना कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं, ये लंबे वक्त तक कायम रहने वाला रिकॉर्ड है। उपलब्धि बेमिसाल है, तो आज कार्यक्रम भी जोरदार हो रहे हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए की बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में गठबंधन के बड़े नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में अभिनंदन प्रस्ताव पेश करेंगे। प्रस्ताव में मोदी सरकार के 12 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख होगा।
2: इस कार्यकाल में जो काम हुए हैं हमारे देश के लिए, मैं मानता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि भारत इसी समय मोदी जी के कार्यकाल में विकसित भारत की तरफ हमने अपना कदम रखा है।
3: भारत का पथ, भारत का लक्ष्य स्पष्ट है, विकसित भारत 2047, और उसे संपूर्ण करने में एक एक भारतीय का योगदान अनिवार्य है। और उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री जी और एनडीए सरकार संपूर्ण रूप से समर्पित भाव से रात और दिन और दिन और रात कार्य कर रहे हैं।
0: आज जब एनडीए के तमाम बड़े चेहरे साथ बैठेंगे, तो चर्चा मोदी सरकार की मेगा परियोजनाओं पर भी होगी। कौन कितनी कामयाब रही, कहां कोर कसर रह गई, सब पर बात होगी। मंथन 2027 में होने वाले यूपी चुनाव पर भी होगा और 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी। आज तक ब्यूरो।
4: फोकस 2027 पर भी होगा, 2029 पर भी होगा। और ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप समझेंगे कि कितनी लंबी तैयारी यहां पर चल रही है। अब इन तस्वीरों में आप देखिए, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री जो अलग अलग है, अलग अलग जगह पर पहुंचे, प्रहलाद जोशी, जितेंद्र सिंह, रेखा गुप्ता, भजनलाल शर्मा, ये सभी लोग यहां पर मौजूद थे। जो आप तस्वीरें देख रहे थे, इन तस्वीरों में गिरिराज सिंह भी थे, वो भी मंदिर गए, पूजा पाठ किया। उन्होंने किन शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपनी खुशी जाहिर की है, वो आपको सुना देते हैं।
5: नरेंद्र मोदी जी देश के प्रति समर्पित व्यक्ति है। ये किसी के कृपा पात्र से, अंग्रेजों के कृपा पात्र से ये प्रधानमंत्री नहीं बनते, ये किसी बड़े लोगों के कृपा पात्र, ये जनता के कोख से पैदा लिए हैं। कुछ लोग रानी के पेट से पैदा लेते हैं, और नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से गरीबों के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, नरेंद्र मोदी जी 25 करोड़ से ऊपर गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम किया। क्या ये बिना समर्पण का होता है? पक्का मकान दिया, क्या बिना समर्पण का दिया? शौचालय दिया, बिजली दी, पानी दिया, स्वच्छ ईंधन दिया, उज्ज्वला दिया, एक गरीब कल्याण से अन्न दिया, 5 लाख का इलाज दिया, ये बताता है, 5 किलो अनाज दिया, ये बताता है कि गरीबों के प्रति कैसे समर्पण होता है।
4: मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त काफी खींचतान देखने को मिल रही है। मीनाक्षी नटराजन उनका प्रचार रद्द हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कांग्रेस का डेलीगेशन जाता है चुनाव आयोग, वहां पर अपनी बात रखता है। अब बताया जा रहा है कि वो बैठक भी खत्म हो गई, चुनाव आयोग के साथ कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई। मध्य प्रदेश में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी देखने को मिली थी। कल न्यूज रूम लाइव में ही आपको बताया था कि कैसे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, जो अलग अलग राज्यों में वक्त वक्त पर देखने को मिली है। और अब ये खबर आ रही है कि कांग्रेस की जो डेलीगेशन था वो चुनाव आयोग जाता है और वहां पर अपनी बात रखता है। कांग्रेस का तर्क है कि रिटर्निंग अफसर का फैसला आखिरी नहीं माना जा सकता। कांग्रेस के नेता की तरफ से क्या कहा गया वो भी आप सुनिए।
6: मेरे साथ है विवेक तंका। सबसे पहले आपने ट्वीट किया था कि कोई एफआईआर नहीं है, कोई मामला दर्ज नहीं, नोटिस है मात्र, और एक गलत हुआ है जो हुआ है। मीनाक्षी नटराजन
7: बहस भी वही थी हमारी कि ना तो कोई कॉग्निजेंस किसी कोर्ट ने लिया है, ना कोई एफआईआर है। तो मैं बार बार यही प्रश्न किया इलेक्शन कमीशन से कि अगर हम चाहते भी तो डिस्क्लोज कैसे करते, आपके पास कौन सा कॉलम है जो हमको डिस्क्लोज करने का जरिया था। ये तो एक ऐसा अनहोनी फैसला हो गया है जिससे हम लोग स्तब्ध हैं और प्रजातंत्र को भी शॉक में आपने डाल दिया।
6: आप कोर्ट भी जाएंगे, दरवाजा खटखटाए,
7: जरूरत नहीं है। मुझे इलेक्शन कमीशन से उम्मीद है जिस धैर्य के साथ उन्होंने हम लोग को सुना, और खुद भी बड़े जानकार लोग हैं, कानून खुद भी समझते हैं, और उनको भी शायद समझ आ रहा होगा कि जो मध्य प्रदेश में हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है।
6: थैंक यू।
4: देखिए दिलचस्प तो राज्यसभा के चुनाव भी होते हैं। अब मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द हो गया है, लेकिन मीनाक्षी नटराजन का आगे होगा क्या, ये एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं।
8: एकजुट है सब विधायक,
9: एकजुट
10: चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से जा रहे हैं। मैंने कहा चलो देखिए अपने कहाँ जा रहे हैं,
11: दूसरे किसी राज्य में ले जाया जा रहा है, हमारे हाई कमान तय करेंगे जहाँ तक तेलंगाना या कर्नाटक हमको ले जाया जा रहा है।
12: तैयारी पूरी थी, बैग पैक हो चुके थे, सूटकेस तैयार थे, कांग्रेस के विधायक हवाई अड्डा कूच कर चुके थे, रनवे पर विशेष विमान उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन तभी रंग में भंग पड़ गया। दिल्ली से आई एक खबर ने कांग्रेस की रणनीति पर पूरी तरह पानी फेर दिया। विशेष विमान को उड़ान भरने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि दिल्ली में चुनाव आयोग ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया। बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर आपत्ति जताई थी, आरोप लगाया कि तेलंगाना के एक लंबित मामले की जानकारी हल्फनामे में नहीं दी गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने इसे गंभीर त्रुटि मानते हुए नामांकन रद्द कर दिया।
13: अगर कोई लीगल केस है, यदि कोर्ट ने कॉग्निसेंस लिया है, मेरे पे ऊपर कोई चार्जेस फाइल हो गए हैं, उसको अगर मैं नहीं लिखती हूँ तो सही बात है कि हमने कुछ छुपाया, लेकिन जब कोई केस ही नहीं है जिसका कोर्ट ऑफ लॉ ने संज्ञान ही नहीं लिया है, तो उसको कैसे कहेंगे कि वो छुपाया है। ये तो ब्लेटेंट एरर है और ये कोई लीगल बात नहीं है, बहुत स्पष्टता से वहां दिखाई दे रहा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉम्प्रोमाइज्ड। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉम्प्रोमाइज्ड।
12: राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाया था, संख्या बल के हिसाब से मीनाक्षी की जीत तय थी, लेकिन बीजेपी ने खेल कर दिया, 2 की जगह 3 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। 2 की जीत तो पक्की थी, तीसरे के मैदान में उतरने से कांग्रेस में खलबली मच गई। पार्टी ने सारे विधायकों को तेलंगाना बेंगलुरु भेजने की तैयारी कर ली, लेकिन बीच में चुनाव आयोग का फैसला आ गया।
14: निर्वाचन आयोग किस प्रकार से सो रहा है, कुंभकर्ण की नींद, इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। तो अगर कुंभकर्ण अगर निर्वाचन आयोग बन जाएगा तो कौन सुनेगा देश के अंदर लोकतंत्र की बात को। हम न्याय के लिए आए निर्वाचन आयोग के पास।
12: ये तो साफ है कि कांग्रेस तमाम तरीकों से चुनाव आयोग के फैसले का विरोध करेगी, लेकिन सवाल है कि क्या मौजूदा हालात में बीजेपी अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताने में कामयाब होगी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 228 विधायक मतदान करेंगे, यानी बीजेपी को 2 सीटों के लिए 116 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी के पास इस वक्त 164 विधायक है, यानी 2 सीट से 48 विधायक अधिक। सवाल ये है कि क्या बीजेपी 10 और विधायकों का इंतजाम कर पाएगी। कांग्रेस को अब दोहरी मुसीबत का सामना करना है, एक तरफ मीनाक्षी नटराजन का नामांकन बचाना है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो विधायकों की क्रॉस वोटिंग को रोकना है। तो बात अब यहाँ तक आ पहुँची है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
4: और यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद भारत।
15: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। व्हेदर यू वांट टू रिलैक्स, फोकस और टर्न थिंग्स अप, यू विल फाइंड द राइट स्टेशन। हियर फ्रॉम द टॉप स्टेशंस लाइक टुडेस हिट्स, क्लासिक रॉक, Coffee House, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
9: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
6: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
7: AU सोच बदलो और बैंक भी।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
10: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
11: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
9: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
12: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
10: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
9: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
13: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
14: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: Jack FM, now playing what we want, commercial free, on TuneIn Premium.
3: What you got for me, Jack?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
4: EU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
5: EU सोच बदलो और बैंक भी।
6: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
7: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
8: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
6: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
9: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
7: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
6: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
10: In association with
11: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: Monte Carlo, it's the way you make me feel.
13: फारस की खाड़ी धमाकों से दहल उठी है। ईरान के दक्षिणी तट पर अमेरिकी सेना ने एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। केशम द्वीप, बंदर अब्बास, सिरिक और होर्मोजगंज के पूर्वी इलाके बमबारी और मिसाइल हमले से थर्रा उठे हैं। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने ओमान तट पर अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। हमले से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया है। उन्होंने ईरान को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। हालांकि ईरान का कहना था कि हेलीकॉप्टर पर हमले में तेहरान का हाथ नहीं है। ट्रंप की चेतावनी के कुछ ही घंटों में फारस की खाड़ी में अमेरिकी सेना एक्शन में आ गई और ईरान और केशम द्वीप में बमबारी शुरू हो गई। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि ईरान पर यह हमला अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर किए गए अटैक का जवाब है। तो ईरान ने भी फारस की खाड़ी को इतिहास बताया और अमेरिकी सेना को वापस लौटने की धमकी दे डाली। अब्बास अराक्ची का कहना है कि युद्ध में हार के बावजूद अमेरिका लगातार ईरान के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। ईरानी सेनाएं भी मुंहतोड़ जवाबी हमले के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इस हमले से दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है और शांति वार्ता की संभावनाओं पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

पीएम मोदी ने बनाया सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड, कैबिनेट की बैठक में हुआ सम्मान, मंत्रियों ने खड़े होकर किया अभिवादन, मंदिरों में भी पूजा पाठ, देश विदेश में बधाइयों का तांता। टीएमसी की राज्यसभा सांसद की खुल्लम खुल्ला बगावत, इस्तीफा देकर सुष्मिता देव सीधे हेमंता से मिलने पहुंची, बीजेपी में शामिल होने के साफ संकेत, राज्यसभा से दूसरी बगावत। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने से भड़की कांग्रेस, चुनाव आयोग जाकर प्रतिनिधिमंडल ने की शिकायत, सीट चोरी का लगाया आरोप, बीजेपी ने कहा अंदर ही है भेदिया। ईरान पर अमेरिका की भयंकर एयर स्ट्राइक, 20 ठिकानों पर बमबारी और मिसाइल अटैक, तेहरान का जोरदार जवाब, बहरीन कुवैत कतर और जॉर्डन के यूएस बेस पर बरसा ईरानी बारूद। राजस्थान के अस्पताल में हुई महिलाओं की मौत के मामले में आज तक के खुलासे पर लगी मोहर, ऑक्सीटोसिन की जगह महिलाओं को चढ़ाया गया था पानी, ब्लीडिंग से हुई थी 5 मौत।

0: और न्यूज रूम लाइव के सेगमेंट में अब बात करेंगे पाकिस्तान ने किस तरह से कत्लेआम मचाया है, मुनीर की सेना किस तरह से बेगुनाहों का खून बहा रही है, बच्चों का कत्लेआम कर रही है, ना बूढ़े बुजुर्गों की लाज ना महिलाओं को बख्शा जा रहा है, जो आजादी की हुंकार भर रहे हैं उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, और पीओके में अलग अलग जगहों पर मुनीर की सेना का कत्लेआम जारी है, जहां बेगुनाहों पर फायरिंग हो रही है। बगावत पर अब आर पार की स्थिति में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अब तो लोगों के मन में ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या बहुत जल्द पीओके भारत से मिलने वाला है। पाकिस्तान का अब काला सच सबके सामने आने वाला है, क्योंकि भारत के पास और भारत में आज तक में हमारे पास वो डोजियार है जिसमें पता चलता है कि जब इंसाफ की मांग की जाती है, जब बात महंगाई की जाती है, तो उस वक्त पाकिस्तान की मुनीर की सेना क्या करती है, कत्लेआम करती है, लोगों का खून बहाती है, जान लेती है। मुनीर की सेना कत्लेआम करिए, दो तस्वीरें आप देखिए कि कैसे बेगुनाहों पर फायरिंग की जा रही है, और इससे अब लोगों में उबाल है, आक्रोश है, वही चाहती है अब आर पार हो जाए, क्योंकि बहुत हो गया पाकिस्तान में मुनीर की सेना का जुल्म, और इसीलिए वो कहते हैं कि अब उन्हें इंसाफ चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों को मारा जा रहा है, उनकी महिलाओं को मारा जा रहा है, उनके युवाओं और बेरोजगारों को मारा जा रहा है। किस तरह की हालात इस वक्त पीओके में है और पाकिस्तान की सेना कैसे कत्लेआम मचा रही है, क्योंकि महंगाई की बात आम जनता कर रही है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
1: इसे कत्लेआम न कहें तो क्या कहें, इसे नरसंहार न कहें तो क्या कहें, इसे बेगुनाहों पर अटैक न कहें तो क्या कहें। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुकूमत के खिलाफ गुस्सा फूटा तो इस्लामाबाद हिल गया। विद्रोह को दबाने के लिए मुनीर ने बंदूक का मुंह सड़क पर उतरी आवाम की ओर मोड़ दिया। न महिलाओं का ख्याल रहा न ही बच्चों का, बस गोलियां बरसने लगी, खून की धारा फूट पड़ी, मौत की चीख गूंजने लगी। आज तक के पास पाकिस्तानी हुकूमत के नरसंहार का पूरा डोजियर है। 5 जून से 9 जून के बीच मुनीर के सैनिकों ने पीओजेके में बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। प्रदर्शनों को दबाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में करीब 14,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। प्रदर्शनकारियों पर बिना सोचे समझे गोलियां बरसा दी गईं। प्रदर्शनकारियों पर गोली, 19 बच्चों की मौत, 7 गर्भवती महिलाओं को मारा। हद तो तब हो गई जब शोक सभा में शामिल लोगों पर जल्लाद बने पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलियां चलाई। स्थानीय नेताओं को भी नहीं छोड़ा गया, उन्हें या तो हिरासत में ले लिया गया या घरों में नजर बंद कर दिया गया। जिसने सड़कों पर आने की हिमाकत की उन्हें जेलों में ठूस दिया गया। सवाल उठाया गया है कि क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी मशीनरी ने अपने ही लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। कहानी शुरू होती है पीओजेके में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों से। रावलकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली, भीमबर, कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि महंगी बिजली से राहत, आटा, चावल और दालों की कीमतों में कमी और राजनीतिक अधिकार मिले। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जवाब बातचीत नहीं बल्कि बंदूक से दिया गया। पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, पीओजेके में इंटरनेट बंद कर दिया गया और आवाजाही रोक दी गई।
2: तस्वीरों में जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा भयावह है वो सच जो आज तक को मिले गोपनीय डोजियर में दर्ज है। इस डोजियर में साफ पता चल रहा है कि किस तरह पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से पीओके के भीतर नरसंहार मचा रहा है। पीओके में रोटी रोजगार और अधिकारों की मांग कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं और बेगुनाह महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा।
1: पाकिस्तान ने तो हद कर दी है, दुनिया के सामने शांति की बात करता है, युद्ध रोकने के लिए दलाली करता है, कश्मीर पर प्रोपेगेंडा करता है और दूसरी तरफ आम लोगों पर गोलियां बरसाता है, आजादी की आवाज को बेरहमी से कुचल देता है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: देखिए आज तक के पास वो डोजियर है जिसमें पाकिस्तान की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है, वो हम आपको बताते हैं। प्रदर्शनकारियों पर गोली बरसाई जा रही है, किसने दिया आदेश? मुनीर ने दिया। और 19 बच्चों की अभी तक मौत हुई, इनका क्या कसूर था? इनके माँ बाप ने आवाज उठाई, महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई, अपने हक के लिए आवाज उठाई। 7 गर्भवती महिलाओं को मार दिया गया। और ये सिर्फ 7 गर्भवती महिलाएं नहीं, आने वाला भविष्य, इनके बच्चे, उन सबको मार दिया गया कोख में। और अब पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल रही है। शिवानी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ी हुई है, उनसे बात करते हैं। शिवानी, मासूमों का हत्यारा मुनीर अब ये कहा जा रहा है, बच्चों को मार दिया, गर्भवती महिलाओं को मार दिया, और क्यों? क्योंकि हक की आवाज उठा रहे थे पीओके के लोग।
2: देखिए मानशु, बहुत ही शर्मनाक इस तरह का नरसंहार चल रहा है पीओके में, जहां पर इन लोगों को, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। 14,000 पाकिस्तानी रेंजर वहां तैनात कर दिए गए हैं, और जो खुले तौर पर लोगों के ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं, जो तोप के गोले हैं उनसे भी उनको निशाना बनाया जा रहा है, जो आर्टिलरी है, इसके अलावा जो शॉर्ट रेंज गन्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार जो मौत का आंकड़ा है ये बढ़ता जा रहा है हिमांशु। वाकई में ये एक बहुत बड़ा दमन है जो लगातार पिछले कई दशकों से हो रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लोग जो हैं, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है पीओजेके में, और वो अब सड़कों पर हैं, और उनका असंतोष पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ अब चरम पर नजर आ रहा है। तो वाकई में अपने अधिकारों की मांग कर रहे इन लोगों को गोलियों से, गोलियों की बौछारों से दबाया जा रहा है, बेगुनाहों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों, गर्भवती महिलाएं हों, इन सब पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। और लगातार बहुत सारी खबरें खुले तौर पर सामने इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इंटरनेट बंद है। ये जो डॉजियर आज तक के हाथ लगा है, इसमें ऐसी कई डिटेल्स हैं जिनमें ये साफ पता चल रहा है कि कैसे पाकिस्तान के हुक्मरान और खास तौर पर आसिम मुनीर यहां पर लोगों का दमन कर रहे हैं, और लगातार लोग मर रहे हैं पीओके में, और असंतोष चरम पर है। और ये जो आवाज है विद्रोह की, अभी ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत हो सकती है। लोग जो है पाकिस्तान की सरकार से दूरी बनाने की भी बात कर रहे हैं,
0: इस कदर यहाँ बात है, कितना सहेंगे, क्योंकि हर एक साल में ऐसा होता है कि जहां उन लोगों को दबाने की कोशिश पाकिस्तान की मुनीर की सेना करती है, लेकिन वो लोग जवाब देते हैं और फिर पाकिस्तानी रेंजर्स को खदेड़ देते हैं। और पाकिस्तान में कैसे आम लोगों पर गुनाह किया जा रहा है, आम लोगों का शोषण किया जा रहा है, उन्हें जान से मारा जा रहा है, गोलियां बरसा दी जाती हैं, मासूम बच्चों को मार दिया जाता है, महिलाओं को मार दिया जाता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पीओके में इस वक्त कैसा कत्लेआम पाकिस्तान ने मचा रखा है।

0: गर्भवती महिलाओं के मारे जाने के भी आरोप लगाए गए।
1: दशकों से दमन झेल रहे पीओके के लोगों ने एक बेहतर जिंदगी मांगी तो आसिम मुनीर ने इन्हें मौत दी। इस पूरे इलाके में आसिम मुनीर ने 14,000 से ज्यादा सुरक्षा बल डिप्लॉय कर दिए हैं जो लगातार इन आंदोलन करने वाले बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। इन पर गोलियों से और तोप के गोलों से लगातार हमले किए जा रहे हैं। बेगुनाह बच्चे और महिलाओं को भी लगातार आसिम मुनीर की सेना अपना निशाना बना रही है।
0: पाकिस्तानी फौज के जुल्म के खिलाफ रावलकोट में मस्जिदों से अपील की गई कि लोग लॉन्ग मार्च में शामिल हों।
2: जम्मू कश्मीर की धरती पर बिरोनी फोर्सेज की तरफ से हमला किया गया है। तमाम वतन कश्मीरियों से गुजारिश है कि मुकम्मल लॉकडाउन और लॉन्ग मार्च में शिरकत करके कौमी गैरत का सबूत।
0: पीओजेके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ऐसी कार्रवाई को लेकर भारत ने गंभीर चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने कहा है, हमें पाकिस्तान से लगातार फर्जी खबरें और वीडियो देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छुपाने और मानवाधिकारों के हनन से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पुलिस की बर्बरता की खबरें आ रही हैं, जिनमें कई प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। आशा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को इसके लिए जवाबदेह ठहराएगा। पीओजेके में हिंसा को लेकर यूरोप स्थित मानवाधिकार संगठन ECHRD ने भी सवाल उठाए हैं। मांग है कि इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विशेष बैठक बुलाई जाए, संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत मामले की जांच करें, स्वतंत्र जांच कराई जाए, इंटरनेट पर लगी रोक तत्काल खत्म की जाए और ये भी कि गिरफ्तार JAC कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ महंगाई और बिजली का आंदोलन है या जुलाई में होने वाले चुनावों से पहले बड़ा राजनीतिक संकट? पीओजेके में चुनावी माहौल भी बन रहा है और ऐसे वक्त में सड़कों पर उतरा गुस्सा पाकिस्तान की सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: रुक करते हैं, प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रणय, पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान कैसे कत्लेआम मचा रहा है मासूमों का, अब आगे क्या?
4: देखिए, आगे क्या होना है ये तो बहुत कुछ तय करेगा कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सरकार वहां पर क्या करती है और कैसे करती है, और उसके विरोध में जो सड़कों पर उतरी जनता है वो आगे क्या करती है। क्योंकि जो नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान ने भारत से कब्जा है, जिस हिस्से के ऊपर आजादी का टैग चस्पा करके ये दुनिया को बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से वो पाकिस्तान जो है कश्मीर के मुद्दे को उभारना चाहता है, उठाना चाहता है, दुनिया के सामने बताना चाहता है, उसकी असलियत क्या है, वो इन तस्वीरों के साथ सामने आ गई। साथ ही पाकिस्तान उस नारे की भी मौत इन तस्वीरों के साथ हो रही हो गई मांशु, जिसके अंदर कहा जाता था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि ये कश्मीरी जिन्हें वो आजाद कश्मीरी बताने की कोशिश करते हैं, ये पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर है जो उसने गैर कानूनी तरीके से भारत का हिस्सा कब्जाया है, वहां की ये तस्वीर है कि सड़क पर जनता उतरी हुई है, वहां के लोगों के खिलाफ उतरी हुई है। लेकिन इसको लेकर भारत के लिए भी कुछ आगाह करने वाले संकेत हैं, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये वहां पर चाहे जितना विरोध हो रहा हो, चाहे जितने वहां पर बगावत हो रही हो, लेकिन ये आग भारत से दूर ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो अमन है जिसे बड़ी मुश्किल से न केवल कायम किया गया है बल्कि उसको बहाल रखने के लिए भी बड़ी कुर्बानियां दी जाती हैं।
3: बिल्कुल, और ये होता रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान की पोल तो सबके सामने खुल रही है, ये भी सच्चाई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वैसे एक बात और है कि हमारे देश में गृहमंत्री से लेकर कई मंत्री ये बात बहुत स्पष्ट कह चुके हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है और बहुत जल्द भारत में आने वाला है, और ये बयान देखते भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पीओके में आम जनता पाकिस्तान की सेना से त्रस्त हो चुकी है और उनको जवाब दे रही है, क्या ये कह सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं?
5: जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है।
6: पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं।
0: क्या पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है पीओजेके? पीओजेके में उठी बगावत की आवाज, क्या बदल रहा है कश्मीर का समीकरण? पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर, जिसे पाकिस्तान दुनिया के सामने कश्मीर के मुद्दे के तौर पर पेश करता है, आज वही इलाका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन है, सरकार और सेना के खिलाफ नारे और लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या पीओजेके अब पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है? क्या वहाँ की जनता का गुस्सा सिर्फ महंगाई तक सीमित है या इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक असंतोष उभर रहा है? भारत का आधिकारिक रुख रहा है कि पीओजेके भारत का अभिन्न अंग है, जम्मू कश्मीर

0: कश्मीर विधानसभा में बकायदा पीओजेके के लिए सीटें आरक्षित, बार बार संसद में भी पीओजेके के लिए हुंकार उठी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 हटाने के लिए आए प्रस्ताव पर बोलते हुए संसद में साफ किया था कि पीओजेके हमारा हिस्सा है।
1: जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है। कि जब मैं सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को।
0: भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई मौकों पर कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर भारत का रुख साफ है। उन्होंने पिछले साल मई में कहा था कि पूरा कश्मीर एक दिन भारत का होगा।
2: पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे।
0: भारत का आधिकारिक रुख रहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। वहीं पाकिस्तान पीओजेके पर अपना दावा करता है, लेकिन अब पीओजेके के अंदर से उठती आवाजें पाकिस्तान के लिए नई परेशानी बन गई है। रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि ये संदेश है कि जिस इलाके को वो अपने नियंत्रण में बताता है, वहीं लोग अब सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
3: पीओके की सड़कों पर फूट रहा गुस्सा अब महज महंगाई और बेरोजगारी को लेकर नहीं है, बल्कि यहाँ पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ असंतोष चरम पर है। अब लोग अपने आप को इस सरकार से दूर करने की नई आवाज उठा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही एक बयान दे चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि पीओके के लोग पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों से परेशान होकर एक दिन खुद भारत में शामिल होने की इच्छा जाहिर करेंगे, और अब रक्षा मंत्री का ये बयान एक बार फिर चर्चाओं में है।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का इतिहास भी विवादों से भरा रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायतें पुरानी, राजनीतिक अधिकारों की कमी, आर्थिक असमानता और संसाधनों पर नियंत्रण। ऐसे वक्त में जुलाई में होने वाले चुनाव भी अहम हो जाते हैं, क्योंकि चुनावी मैदान में उतरने से पहले सड़क पर जनता का मूड सामने आ रहा है। पीओजेके में उठी आवाजें सिर्फ इस्लामाबाद तक नहीं पहुंच रही, ये सवाल अब पूरी दुनिया सुन रही है। क्या पाकिस्तान जिस कश्मीर की बात करता है, वहीं से उसके खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है? और क्या सच में वो दिन करीब है जब कश्मीर का समीकरण फिर बदलेगा? शिवानी शर्मा, दिल्ली आज तक।
4: देखिए, यही पाकिस्तान है। गाजा और लेबनान के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाता है, लेकिन अब सिर्फ पीओके की जनता को परेशान नहीं कर रहा है, अफगानिस्तान में भी कत्लेआम मचा है पाकिस्तान ने और वहां भी कई लोगों की जान ले ली। ये पाकिस्तान है जो सुधरने का नाम नहीं लेगा। शांति की बात भले ही करे, लेकिन शांति से दूर दूर तक पाकिस्तान का कोई वास्ता है नहीं। अफगानिस्तान के कुनार, पाक्तिका और खोस्त में नागरिक इलाकों पर हवाई हमले करता है। 19 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और मरने वालों में 11 बच्चे, एक महिला, एक बुजुर्ग शामिल है और 14 महिलाएं घायल भी हुई हैं। और ये हमला तब हुआ जब कल पाकिस्तान का आर्मी चीफ रावलपिंडी में बैठकर शांति का ढोंग रच रहा था। और यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन TuneIn. Whether you want to relax, focus or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.

राजधानी बेलफास्ट सुलग रहा है, बसों में आग लगा दी गई, कई कारें फूंक दी गई, एक एक कर कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी दहक उठी। यह हिंसा तब भड़की जब सोमवार को वहां चाकू वाले हमलावर ने एक शख्स का सिर काटने की कोशिश की। आरोप एक सुडानी शरणार्थी पर है। उसी वारदात के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मंगलवार को उत्तरी आयरलैंड में इमिग्रेशन विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए। बड़े पैमाने पर हिंसा फैल गई। सुरक्षा बलों से टकराव के दौरान उग्र प्रदर्शनकारियों ने बस और कई अन्य गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कुछ इलाकों में घरों को निशाना बनाया, खिड़कियां तोड़ी और दरवाजे तोड़ दिए गए। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों से टकराते रहे। नकाबपोश युवक हमले करते रहे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस हमले की निंदा की है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: पीएम मोदी ने आज सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के नाम था। मोदी का पीएम के तौर पर यह लगातार तीसरा कार्यकाल है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने पीएम मोदी के स्वागत में खड़े होकर तालियां बजाए, साथ ही मेज थपथपाकर भी पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके साथ ही पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने मंदिरों में पूजा पाठ कर आशीर्वाद मांगा।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
3: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit-disclosures for fees and details.
5: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
6: जब पार्टी में अपने साथ छोड़ रहे हैं तब कुछ यूं ममता बैनर्जी दिल्ली में सोनिया गांधी से करीबी दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिशों में दिखीं। लेकिन बागी सांसदों से आर पार की नौबत ऐसी है कि टीएमसी ने उन्हें चुनौती दी है कि वे अपने दम पर चुनाव जीत कर दिखाएं। टीएमसी ने सांसद यूसुफ पठान का नाम लेकर पार्टी के संकट के पीछे अमित शाह पर आरोप लगा दिया है। साथ ही ये दावा भी किया कि यही लोग ममता बनर्जी की तारीफें किया करते थे। इस बीच 20 सांसदों के साथ का दावा कर चुका बागी गुट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। वहीं बागी गुट की अहम चेहरा काकोली घोष का दावा है कि उनका ये रुख सत्ता के लिए नहीं सिद्धांतों के लिए है। फिरहाद हाकिम जैसे ममता बैनर्जी के बेहद करीबी रहे नेता भी ममता के साथ नहीं दिख रहे। सोमवार को फिरहाद की रितव्रत बैनर्जी के साथ मुलाकात हुई। ममता बैनर्जी की दिक्कतें नेता विपक्ष तय करने में विधायकों के फर्जी दस्तखत के आरोपों से भी बढ़ सकती है। मंगलवार को कोलकाता में ममता बैनर्जी के कालीघाट के घर पर सीआईडी की टीम पहुंची। ममता बैनर्जी का घर टीएमसी का सेंट्रल दफ्तर है, इसलिए उनकी भूमिका भी जांच के घेरे में आ सकती है। आज तक ब्यूरो

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
5: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया
6: To kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो

0: पीएम मोदी ने बनाया सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड। कैबिनेट की बैठक में हुआ सम्मान, मंत्रियों ने खड़े होकर किया अभिवादन, मंदिरों में भी पूजा पाठ, देश विदेश से बधाइयों का तांता। टीएमसी की राज्यसभा सांसद के खुल्लम खुल्ला बगावत, इस्तीफा देकर सुष्मिता देव सीधे हेमंता से मिलने पहुंची, बीजेपी में शामिल होने के संकेत भी साफ, राज्यसभा से दूसरी बगावत। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने से भड़की कांग्रेस, चुनाव आयोग जाकर प्रतिनिधिमंडल से की शिकायत, सीट चोरी का लगा आरोप, बीजेपी ने कहा अंदर ही है भेदिया। ईरान पर अमेरिका का भीषण एयर स्ट्राइक, 20 ठिकानों पर बमबारी और मिसाइल अटैक, तेहरान का जोरदार जवाब, बेरीन, कुवैत, कतर और जॉर्डन के यूएस बेस पर बरसा ईरानी बारूद। राजस्थान के अस्पताल में हुई महिलाओं की मौत के मामले में आज तक के खुलासे पर लगी मोहर, गर्भवतियों को चढ़ाया गया था नकली इंजेक्शन, ब्लीडिंग से हुए थे 5 की मौत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना से प्रस्ताव किया गया पारित, लगातार लंबे कार्यकाल पर बधाई। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन, लंबे समय तक निर्वाचित कार्यकाल का सम्मान व्यक्त किया गया।

दोपहर 3 बजे भारत मंडपम में मुख्यमंत्रियों की भी बैठक, मोदी सरकार के 12 सालों पर कार्यक्रम। 16-17 जून को G7 समिट में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हो सकती है मुलाकात। उज्जैन में मोदी के 12 साल के कार्यकाल पूरा होने पर बाबा महाकाल में विशेष पूजा, महिलाओं ने भी बधाई दी। पीएम मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर जगन्नाथ मंदिर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की पूजा। पीएम मोदी के नेतृत्व में विशेष पड़ाव पर अब जेपी नड्डा ने दिल्ली में धार्मिक अनुष्ठान में लिया भाग। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक पीएम बने रहने पर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। जयपुर में सीएम भजन लाल शर्मा ने पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल पूरे होने पर गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। 10 जनपद में राहुल गांधी और अभिषेक बैनर्जी की लगभग 1.5 घंटे तक चली लंबी बैठक, खत्म हुई बंगाल की सियासत पर चर्चा। कलकत्ता हाई कोर्ट में टीएमसी की याचिका, कालीघाट कार्यालय पर सीआईडी छापेमारी को चुनौती, बिना वारंट प्रवेश का आरोप। ममता बैनर्जी की पार्टी में बगावत नहीं रुक रही है, राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने दिया इस्तीफा, लोकसभा के 20 सांसदों के बाद अब राज्यसभा में दूसरी बगावत। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, टीएमसी सांसद सुष्मिता देव के बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। सुष्मिता देव सीधे हिमंता बिस्व सरमा से मिलने के लिए पहुंचे, बीजेपी में शामिल होने के संकेत साफ। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर मंथन दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक में जुटेंगे बीजेपी के नेता। दिल्ली में एनडीए की रणनीतिक बैठक पर मुख्यमंत्री योगी, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इसमें शिरकत करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जिलावार बैठकों के जरिए संगठन को साथ रहे। हापुड़ और बुलंदशहर पर समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस, संभावित प्रत्याशियों और चुनावी रणनीति पर मंथन। अखिलेश यादव का दावा, 2027 चुनावों से पहले बीजेपी 225 विधायकों के टिकट काट सकती है, लोकसभा नतीजों से जुड़ा फैसला। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, 43 सारी सीटों और लगभग करीबी मुकाबले वाले क्षेत्रों में प्रत्याशी बदलने की तैयारी। समाजवादी पार्टी के सांसद के अलावा बीजेपी डरी हुई है 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी। 22 जून को फैजाबाद में बीएसपी की बड़ी रैली, 23 जून को कई विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा संभव है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां, 30 बीएसपी 100 सीटों पर प्रभारी नियुक्त करने और प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी में। गठबंधन की अटकलों पर बीएसपी का विराम, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल बोले कि जनता ही पार्टी की असली सहयोगी है।

वापसी की यात्रा पर सियासत तेज, शिव मंदिर की मांग को लेकर अभियान शुरू। कसमंडी पास से किला विवाद गरमाए, 31 जिलों की यात्रा के खिलाफ AIMIM और धर्म गुरुओं की तरफ से सवाल उठे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का अंतिम चरण भी संपन्न, अभ्यर्थियों में दिखा उत्साह, उम्मीदवारों ने साझा किए परीक्षा और तैयारियों के अनुभव। आज तक की रिपोर्ट के बाद PGI धर्मांतरण मामले में पुलिस भी सक्रिय, महिला की तलाश में 3 टीमें गठित। आरोपी इरशाद की गिरफ्तारी के लिए सर्विलांस, छापेमारी भी तेज, जांच का दायरा डॉक्टर्स तक पहुंचा। 2027 में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी बीजेपी, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी संगठन को मजबूत करने पर दे रहे हैं जोर। राम मंदिर चढ़ाव विवाद पर बोले पंकज चौधरी, जांच में जो दोषी मिलेगा कार्रवाई होगी। पंकज चौधरी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधते देखे, ओबीसी प्रतिनिधित्व और 2027 में बेहतर प्रदर्शन का दावा भी। रामलला भोग प्रसाद को FSSAI का गुणवत्ता और स्वच्छता प्रमाणन मिला, मंदिर की रसोइयों के ऑर्डर के बाद से ये सर्टिफिकेट जारी। कोटा में प्रसूताओं की मौत नकली ऑक्सीटोसिन से हुई है, जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ। सिजेरियन डिलीवरी के बाद से रक्तस्राव न रुकने से 5 महिलाओं की मौत, इंजेक्शन में पानी मिलने की पुष्टि। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह किमसर बोले कि इंजेक्शन में पानी होने से नहीं रुकी ब्लीडिंग, जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। गाजियाबाद की फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट के कमरे की छत भर भर आकर प्लास्टिक गिर गया, बाल बाल बचे बुजुर्ग की जान, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बागेश्वर में दर्दनाक सड़क हादसा, पिकअप खाई में जा गिरी, ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत, 4 महिलाएं घायल। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शिकायतकर्ताओं को निशाना बनाने का आरोप, नकाबपोश युवकों ने बाइक में लगाई आग। दिल्ली के मूलचंद मेट्रो स्टेशन के पास में पुलिस की टीम और बदमाश में मुठभेड़, 17 मालों में संलिप्त सोनू नाम का बदमाश गिरफ्तार। देवप्रयागराज नगर मार्ग पर 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी एक बुलेट, SDRF ने 2 युवकों को रेस्क्यू किया। मसूरी में बड़ा सड़क हादसा, गहरी खाई में जा गिरी कार, 4 लोगों की मौत। देवरिया में ट्रैफिक सिपाही पर बस कंडक्टर ने मारपीट का लगाया आरोप, पुलिस कंडक्टर को खींचकर जाता दिखा, सिपाही को लाइन हाजिर किया गया। रामपुर में प्रेमिका से शादी की जिद में नेटवर्क टावर पर चढ़ा युवक, आश्वासन मिलने के बाद उतरा। मुजफ्फरपुर में 4 साल के मासूम से दुष्कर्म की कोशिश, रंगे हाथों पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद हामिद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जामनगर में ECB की टीम ने 5 लाख रुपए की रिश्वत देते 2 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा। गोरखपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा की सुरक्षा में सिर्फ मोबाइल के साथ पकड़ा गया युवक, लापरवाही करने पर 2 दरोगा सस्पेंड, 6 लाइन हाजिर। दिल्ली के बकौली इलाके में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का दावा, मिलने वाले 12 गैस सिलेंडर घटकर अब 4 रह गए, जबकि कुछ परिवारों को 1 भी सिलेंडर नहीं मिला। विदेश में नौकरी का सपना दिखाकर गुजरात के आनंद में 32 से ज्यादा युवाओं के 78 लाख रुपए की ठगी का मामला है, रूस भेजे गए 20 युवाओं की हालत खराब, आरोपी एजेंट गिरफ्तार। अररिया में लगभग 12 करोड़ के मोबाइल फोन से भरे हुए ट्रक की संदिग्ध लूट, ड्राइवर फरार, घटना की जांच कर रही पुलिस। गोपालगंज में घर से निकली नाबालिग लड़की के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप किया, FIR दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी। बागपत में भतीजे संग प्रेमी को देखकर चाचा भड़क गए, नाराज प्रेमी ने चाचा को मारकर बस्ती में फेंका। मसूरी में बड़ा सड़क हादसा हुआ, झड़ीपानी मार्ग पर कार खाई में जा गिरी, 4 लोगों की मौत। कर्नाटक के दावणगेरे में सामूहिक दुष्कर्म मामले में बड़ा खुलासा हुआ, 10 आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी है। बिजनौर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत। जामनगर में कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, महंगाई का कारावास बनाकर सरकार की नीतियों का विरोध। IMD के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 4 जून को केरल में दस्तक दे चुका है, लेकिन उत्तर भारत पहुंचने में लगेगा थोड़ा समय। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद में मानसून की एंट्री 25 से 30 जून के बीच होने की संभावना। केरल के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बड़े हिस्से तक पहुंचा मानसून, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी दस्तक दे चुका है मानसून। देश के पहाड़ी राज्यों को फिर से मिलेगी गर्मी से राहत, 11 जून से सक्रिय होगा नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पहाड़ों और मैदानों में दिखेगा इंपैक्ट। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश और गर्मी से लोगों को मिली राहत। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, बांसुरी स्वराज ने पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल पूरा होने के मौके पर की विशेष पूजा हवन भी।
केरल में पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने के मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने भी पूजा पाठ किया और भगवान का आशीर्वाद लिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल के पूरा होने पर हनुमान मंदिर में विशेष पूजा की। वहीं पुरी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पीएम मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक पीएम बने रहने पर जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। उत्तराखंड में आस्था और भक्ति का संगम, चारों धामों में श्रद्धालुओं का तांता, 32 लाख के ज्यादा आंकड़ा का पार श्रद्धालुओं का। हिमाचल के सोलन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने नक्षत्र वाटिका और स्वरोजगार धाम का किया शिलान्यास, कहा कि विकास की गति बढ़ रही है। देहरादून में सीएम धामी ने विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को बांटा नियुक्ति पत्र, कहा कि जल्द ही विभागों में बहाली होगी। अखनूर में जावद अहमद राणा ने कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला, कई इलाकों का निरीक्षण। मालदा में आमों को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देने के लिए अमर मालदा आम ब्रांड लॉन्च। आज जारी होगा फिल्म अल्फा का टीजर, एक्शन अवतार में दिखाई देंगे आलिया भट्ट और शर्वरी बाग, सिनेमा घरों में 3 जुलाई को आएगी। कल आएगा फिल्म वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर, मुंबई में ग्रैंड इवेंट हुआ और ट्रेलर लॉन्च उसमें किया जाएगा। अक्षय कुमार समेत मूवी की स्टार कास्ट रहेगी फिल्म। अजय देवगन स्टार फिल्म धमाल 4 के 4 नए पोस्टर जारी, पोस्टर में मजेदार अंदाज में फिल्म की पूरी गैंग दिखी, 10 जुलाई को रिलीज होगी। सनी देओल स्टार फिल्म बंटवारा, 1947 का पहला मोशन पोस्टर जारी, 14 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म है, राजकुमार संतोषी डायरेक्टर। इमरान हाशमी स्टार फिल्म आवारापन 2 से होगा फिल्म बंटवारा, 1947 का मुकाबला, 2007 की हिट फिल्म आवारापन का सीक्वल है। ईरान और अमेरिका में चल रही शांति वार्ता के बीच में हुर्मुज पर एक बार फिर से तनाव बढ़ा, अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप पर किया हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास सिरिक हुर्मुज में कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी ईरान के दक्षिणी तट पर हुर्मुज स्ट्रेट के पास में ईरान के कई एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम को टारगेट किया। अमेरिका का दावा, ईरान ने ओमान तट पर अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिरा और ईरान पर ही एक्शन उसी हमले का जवाब है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हेलीकॉप्टर पर हमले में तेहरान का हाथ नहीं है, युद्ध में हार के बावजूद अमेरिका लगातार ईरान के संकल्प की परीक्षा ले रहा है और अगर सुरक्षित रहना चाहता है वो तो इलाका खाली करे। ईरान के खुमैन शहर में 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के दावा, क्षेत्र में हलचल भी बढ़ी। मरकजी प्रांत में खुमैन से मिसाइल लॉन्च होने की खबर है, अज्ञात दिशा में दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल, खुमैन से बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण का दावा। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आसमान में ईरानी मिसाइलें दिखी, क्षेत्र में हलचल भी बढ़ी। ईरान ने जॉर्डन में F-35 हैंगर तबाह करने का दावा, सुरक्षा स्थिति पर भी नजर है। ईरानी मिसाइल खतरे के बीच में अल अजराक स्थित अमेरिकी बेस अलर्ट पर है, मिसाइल हमला रोकने के लिए तमाम तरह के दावे भी।

0: अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की और ये बड़ी खबर भी है जिसको लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल मच गई है। ममता बनर्जी की करीबी रही सुष्मिता देव ने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है, साथ ही टीएमसी पार्टी भी छोड़ दी है। इस्तीफा देने के बाद सुष्मिता की असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा से मुलाकात हुई, उनकी तस्वीरें भी सामने आई और सूत्रों के मुताबिक सुष्मिता देव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। दूसरी तरफ अभिषेक बैनर्जी ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है, ये मुलाकात ममता बैनर्जी के सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद हुई है जिसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सुष्मिता देव ने कहा कि अभी तो मैं थोड़ा फ्री हूं और अभी किसी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन जो मुलाकात हुई इसके बाद फिर स्पष्ट है कि वो बीजेपी में जल्द ही शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी से अभिषेक बैनर्जी की मुलाकात लगभग डेढ़ घंटे तक मंथन चला है। तो क्या ममता गठबंधन की राजनीति में अब कोई नया रास्ता निकालने लगी है, यह बहुत बड़ा सवाल इसमें बना हुआ है क्योंकि कई इंपॉर्टेंट मुलाकातें भी हुई हैं। अब क्या हुआ इन मुलाकातों में, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
1: यू स्नैच्ड एवरीथिंग फ्रॉम मी बट यू कैनॉट स्नैच माई मॉरल्स, आई विल नेवर बाउ डाउन माई हेड।
2: तो क्या ममता बनर्जी दिल्ली में बैठकर अपना राजनीतिक वजूद बचाने की जद्दोजहद कर रही है? क्या दिल्ली में कोई नई खिचड़ी पक रही है? ये सवाल फिलहाल दूर की कौड़ी लग सकता है, लेकिन ममता का हर कदम ये संकेत दे रहा है कि वो डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में लगी है और डैमेज है कि रुक ही नहीं रहा। पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, आज सुष्मिता देव पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता दोनों छोड़ गई।
3: देखिए कारण कुछ व्यक्तिगत है, कुछ राजनीतिक है, बिना कारण के तो कोई कुछ करता नहीं है। मैं किस तरह की राजनीति करूंगी, कहां से करूंगी, ये मेरा निर्णय है और मेरा हक है, क्योंकि राज्यसभा मुझे एक पार्टी से मिला था
4: जी।
3: हाँ, जहां विधायकों ने वोट दिया था, बंगाल के लोगों ने इनडायरेक्टली दिया था, तो अगर पार्टी से इस्तीफा दिया तो फिर राज्यसभा सीट भी छोड़ना चाहिए।
2: आज सुबह सुबह सुष्मिता देव की असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा से मुलाकात की तस्वीरें आई, दोनों असम से हैं, तो लग यही रहा है कि सुष्मिता के इस्तीफे के पीछे हिमंत बिस्व शर्मा की बड़ी भूमिका है। ये भी तय लग रहा है कि इस्तीफे से खाली सीट पर उपचुनाव में बीजेपी सुष्मिता को उम्मीदवार बनाएगी।
3: सच्चाई तो ये है कि मेरी राजनीति बंगाल में नहीं है, मेरी राजनीति आसाम में है और मुझे आसाम में ही राजनीति करना है। तो आसाम में जो राजनीतिक परिस्थिति है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मैं आसाम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा से मिलके आई हूँ। और देखिए अगर मैं किसी पार्टी में जाना चाहती हूँ वो तो पार्टी का डिसीजन होता है, मेरा डिसीजन तो नहीं होता।
2: लेकिन ममता के सामने बड़ा सवाल ये है कि अब उनका क्या होगा, शायद वो आगे का रास्ता तलाश रही हैं। खुद ममता बनर्जी की सोनिया गांधी से मुलाकात हो चुकी है, राहुल गांधी से अभिषेक बनर्जी मिल चुके हैं, लेकिन टीएमसी के भीतर बगावत की आग ठंडी करने में ममता बनर्जी अब तक नाकाम रही हैं।
5: दो साल ने काकुली घोष रिश्तेदार 40 साल से है, मैं 17 साल से हूँ। जो लोग अभी इस बार पहली बार जीत कर आए हैं, 1 साल के लिए 2 साल के लिए, उसके लिए 1-2 साल होगा, हम लोग के लिए इतना दिन जीतने के बाद भी बोले थे, बोलने की कोशिश किए थे, वहाँ पे सिस्टम नहीं है बोलने का, बोलने से सब रोकते हैं, जो नहीं बोलना है नहीं बोलना है, तो और अगर बोले भी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलते, आप 7 दिन 10 दिन इंतजार करो।
2: तो अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने दिल्ली आई ममता बनर्जी यहां से क्या हासिल कर लौटती है, क्योंकि कोलकाता में तो उनके लिए हर दिन भारी साबित हो रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: तो जहां एक तरफ टीएमसी में टूट मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दिल्ली में बने हुए हैं। इस दौरान ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी ने भी कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की है। अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है, ये मुलाकात ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद हुई जिसके बाद से सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द हुआ और उस मामले में कांग्रेस नेताओं की चुनाव आयोग के साथ बैठक भी खत्म हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने अपनी बात चुनाव आयोग के सामने रख दी। कांग्रेस का तर्क है कि रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला आखिरी नहीं माना जा सकता। कांग्रेस इस बात से नाराज है और वो इसे सियासी तौर पर देख रहे हैं। चुनाव आयोग का उनका प्रतिनिधिमंडल ने रुख किया और चुनाव आयोग के सामने उन्होंने यही बात रखी है कि जो रिटर्निंग अधिकारी का फैसला है, यानी कि जिन्होंने पर्चा रद्द किया, वो फैसला अंतिम फैसला नहीं हो सकता।
4: मेरे साथ है विवेक तंका। सबसे पहले आपने ट्वीट किया था कि कोई नोट, कोई एफआईआर नहीं है, कोई मामला दर्ज नहीं, नोटिस है मात्र, और गलत हुआ है जो हुआ है मीनाक्षी नटराजन।
6: बहस भी वही थी हमारी कि ना तो कोई कॉग्निजेंस किसी कोर्ट ने लिया है, ना कोई एफआईआर है। तो मैं बार बार यही प्रश्न किया इलेक्शन कमीशन से कि सर अगर हम चाहते भी तो डिस्क्लोज कैसे करते, आपके पास कौन सा कॉलम है जहां को डिस्क्लोज करने का जरिया था। ये तो एक ऐसा अनहोनी फैसला हो गया है जिससे हम लोग स्तब्ध हैं और प्रजातंत्र को भी शॉक में आपने डाल दिया।
4: आप कोर्ट भी जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे?
6: जरूरत नहीं है, मुझे इलेक्शन कमीशन से उम्मीद है जिस धैर्य के साथ उन्होंने हम लोग को सुना, और खुद भी बड़े जानकार लोग हैं, कानून खुद भी समझते हैं, और उनको भी शायद समझ आ रहा होगा कि जो मध्य प्रदेश में हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है।
7: थैंक यू।
0: चुनाव आयोग ने मीनाक्षी नटराजन के पर्चे में गंभीर खामियां पाई हैं, कुछ अहम जानकारियां छिपाई गई हैं, ऐसा पाया गया, और इसके बाद नटराजन का पर्चा रद्द किया गया है और इस पर अब सियासी बवाल छिड़ा हुआ है।
8: एकजुट है संविधान,
9: एकजुट।
10: चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से जा रहे हैं, मैंने कहा चलो देखिए अपने कहां जा रहे हैं।
11: किसी राज्य में ले जाया जा रहा है, हमारे हाई कमान तय करेंगे जहां तक तेलंगाना या कर्नाटक हमको ले जाया जा रहा है।
2: तैयारी पूरी थी, बैग पैक हो चुके थे, सूटकेस तैयार थे, कांग्रेस के विधायक हवाई अड्डा कूच कर चुके थे, रनवे पर विशेष विमान उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन तभी रंग में भंग पड़ गया। दिल्ली से आई एक खबर ने कांग्रेस की रणनीति पर पूरी तरह पानी फेर दिया। विशेष विमान को उड़ान भरने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि दिल्ली में चुनाव आयोग ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया। बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर आपत्ति जताई थी, आरोप लगाया कि तेलंगाना के एक लंबित मामले की जानकारी हल्फनामे में नहीं दी गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने इसे गंभीर त्रुटि मानते हुए नामांकन रद्द कर दिया।
12: अगर कोई लीगल केस है, यदि कोर्ट ने कॉग्निसेंस लिया है, मेरे पे ऊपर कोई चार्जेस फाइल हो गए हैं, उसको अगर मैं नहीं लिखती हूँ तो सही बात है कि हमने कुछ छुपाया, लेकिन जब कोई केस ही नहीं है जिसका कोर्ट ऑफ लॉ ने संज्ञान ही नहीं लिया है तो उसको कैसे कहेंगे कि वो छुपाया है। ये तो ब्लेटेंट एरर है और ये कोई लीगल बात नहीं है, बहुत स्पष्टता से वहां दिखाई दे रहा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉम्प्रोमाइज्ड। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉम्प्रोमाइज्ड।
2: राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाया था, संख्या बल के हिसाब से मीनाक्षी की जीत तय थी, लेकिन बीजेपी ने खेल कर दिया, दो की जगह तीन उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। दो की जीत तो पक्की थी, तीसरे के मैदान में उतरने से कांग्रेस में खलबली मच गई। पार्टी ने सारे विधायकों को तेलंगाना बेंगलुरु भेजने की तैयारी कर ली, लेकिन बीच में चुनाव आयोग का फैसला आ गया।
13: निर्वाचन आयोग किस प्रकार से सो रहा है कुंभकर्ण की नींद, इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। तो अगर कुंभकर्ण अगर निर्वाचन आयोग बन जाएगा तो कौन सुनेगा देश के अंदर लोकतंत्र की बात को? हम न्याय के लिए आए निर्वाचन आयोग के पास।
2: ये तो साफ है कि कांग्रेस तमाम तरीकों से चुनाव आयोग के फैसले का विरोध करेगी, लेकिन सवाल है कि क्या मौजूदा हालात में बीजेपी अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताने में कामयाब होगी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए 228 विधायक मतदान करेंगे, यानी बीजेपी को दो सीटों के लिए 116 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी के पास इस वक्त 164 विधायक है, यानी दो सीट से 48 विधायक अधिक। सवाल ये है कि क्या बीजेपी 10 और विधायकों का इंतजाम कर पाएगी। कांग्रेस को अब दोहरी मुसीबत का सामना करना है, एक तरफ मीनाक्षी नटराजन का नामांकन बचाना है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो विधायकों की क्रॉस वोटिंग को रोकना है। तो बात अब यहां तक आ पहुंची है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: और अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
15: इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
17: Jack FM, now playing what we want, commercial free, on TuneIn Premium.
18: What about me, Jack? What about me?
19: Woo!
17: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
7: Well played, Jack. Well played.
17: Jack FM, playing what we want.
9: Savari.
15: आगे आगे
18: अरे उधर
15: करेक्ट करेक्ट
19: मिल गया. आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: इन एसोसिएशन विद
5: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
4: हिंट, बड़े आराम से
5: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
4: Vimal, bolo zubaan kesri.
6: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
7: मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूं जहां पर ये आग लगी।
8: मैं आपको टॉप एंगल से एक तस्वीर दिखाता हूं और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी है।
9: यहां पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था।
10: ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है।
8: 20 लोगों की जान चली गई। और देखिए, जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके, तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहां से नहीं दिखाएंगे।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
4: व्हाटएवर यू आर इन द मूड फॉर, ट्यून इन हैज द म्यूजिक टू मैच, फ्रॉम टुडेज हिट्स to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.

0: इन एसोसिएशन विद
1: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
0: हिंट, बड़े आराम से
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
0: विमल, बोलो जुबां केसरी।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: एक तरफ योगी राज में यूपी की तरक्की की गाथाएं और दूसरी तरफ अखिलेश के सियासी दांव। योगी राज में मंत्री नंद गोपाल नंदी से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का एक विभाग सुचारू प्रशासनिक व्यवस्था बनाए जाने के लिहाज से वापस किया लिया गया। अखिलेश यादव ने पूरा ख्याली महल तैयार कर लिया। यूपी में मौजूद एक्सप्रेसवे को समाजवादी बनाम योगी राज की एक्सप्रेसवे में बांटने वाले अखिलेश का आरोप है कि नंदी से यूपीडा का विभाग इसलिए छीना गया क्योंकि एक्सप्रेसवे का काम ठीक नहीं हुआ। दरअसल अखिलेश का आरोप है कि चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी का इलाज करने के चक्कर में बीजेपी के मौजूदा 225 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। दरअसल अखिलेश यादव अपने अनुमानों से बीजेपी के 225 विधायकों के टिकट काटे जाने का शगुफा बीजेपी में बगावत सुलगाने की उम्मीद में छोड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी की नजर ऐसे नाराज नेताओं पर भी है जिसमें बीजेपी से लेकर आरएलडी तक के विधायक हो सकते हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के टिकट तय करने के लिए अखिलेश की रोजाना स्तर पर बैठकें हो रही हैं। 10 जून को बुलंदशहर और हापुड़ जिले की विधानसभाओं के लिए बैठक है। उससे पहले पश्चिमी यूपी के नेताओं से अखिलेश की मुलाकात हो चुकी है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: देश विदेश से बधाइयों का तांता। राज्यसभा सांसद की खुल्लम खुल्ला बगावत, सुष्मिता देव का इस्तीफा मंजूर, हिमंता से मिलने पर बीजेपी में शामिल होने के संकेत, राज्यसभा से दूसरी बगावत। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने से भड़की कांग्रेस, चुनाव आयोग जाकर प्रतिनिधिमंडल ने की शिकायत, सीट चोरी का लगाया आरोप, बीजेपी ने कहा अंदर ही है भेदिया। राजस्थान के अस्पताल में हुई महिलाओं की मौत मामले में आज तक के खुलासे पर लगी मोहर, गर्भवतियों को चढ़ाया गया था नकली इंजेक्शन, ब्लीडिंग से हुई थी 5 की मौत। ईरान पर अमेरिका की भयंकर एयर स्ट्राइक, 20 ठिकानों पर बमबारी और मिसाइल अटैक, तेहरान का जोरदार जवाब, बहरेन, कुवैत, कतर और जॉर्डन के यूएस बेस पर बरसा ईरानी बारूद।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरें असरदार। आपके साथ हूं मैं नेहा पाठक। नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय के प्रधानमंत्री रहने का नया रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी अब सबसे लंबे समय तक पद संभालने वाले निर्वाचित पीएम बन चुके हैं। पीएम मोदी तक देश विदेश की तमाम बड़ी हस्तियों का शुभकामना संदेश पहुंच रहा है। इस मौके पर आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी है। भारत मंडपम में बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और संगठन के तमाम बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं। इस खास अवसर पर एनडीए के नेता भी होंगे और पीएम मोदी इस बैठक को संबोधित भी करेंगे। कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों और पीएमओ के सभी अफसरों ने पीएम मोदी को अपनी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री का पद संभालते ही मोदी के आज 4,399 दिन पूरे हो गए हैं। बीजेपी इस मौके को बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। पार्टी जश्न मना रही है। पार्टी के तमाम बड़े चेहरे मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। कई मंत्रियों के मंदिर से पूजा पाठ की तस्वीरें सामने आई। साथ ही पूरी कैबिनेट ने बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को बधाई दी। खड़े होकर तालियां बजाई गईं।
1: मोदी जी स्वागत है।

0: मंदिरों में पूजा आराधना, पीएम मोदी के लिए भगवान से कामना। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर मंदिरों में रौनक है। मोदी कैबिनेट के मंत्री मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं। जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, गिरिराज सिंह, भजनलाल शर्मा, रेखा गुप्ता, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की आज की सुबह मंदिरों में बीत रही है, क्योंकि निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड आज पीएम मोदी के नाम हो गया है। पीएम मोदी ने लंबे कार्यकाल के मामले में पंडित नेहरू को पीछे छोड़ दिया है।
1: आज देश के लिए एक बहुत गौरवपूर्ण दिन है। अब तक देश की सबसे लंबा समय की प्रधानमंत्री की भूमिका में रहकर सेवा करने वाले सौभाग्यवान व्यक्ति माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ के अनन्य भक्त हैं। अब तक उन्होंने 4,359 दिन ये सर्वाधिक सेवा के अवसर देशवासियों ने उनको दिया। हम महाप्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं कि श्री मोदी जी को दीर्घायु दे और लंबे समय तक देश को सेवा करने का अवसर दे। देखिए, देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद किया है। देश की आस्था और विश्वास प्रधानमंत्री जी के साथ है।
0: 4,399 दिन तक सरकार का नेतृत्व करना कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं, ये लंबे वक्त तक कायम रहने वाला रिकॉर्ड है। उपलब्धि बेमिसाल है, तो आज कार्यक्रम भी जोरदार हो रहे हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए की बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में गठबंधन के बड़े नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में अभिनंदन प्रस्ताव पेश करेंगे। प्रस्ताव में मोदी सरकार के 12 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख होगा।
2: इस कार्यकाल में जो काम हुए हैं हमारे देश के लिए, मैं मानता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि भारत इसी समय मोदी जी के कार्यकाल में विकसित भारत की तरफ हमने अपना कदम रखा है।
3: भारत का पथ, भारत का लक्ष्य स्पष्ट है, विकसित भारत 2047, और उसे संपूर्ण करने में एक एक भारतीय का योगदान अनिवार्य है, और उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री जी और एनडीए सरकार संपूर्ण रूप से समर्पित भाव से रात और दिन और दिन और रात कार्य कर रहे हैं।
0: आज जब एनडीए के तमाम बड़े चेहरे साथ बैठेंगे, तो चर्चा मोदी सरकार की मेगा परियोजनाओं पर भी होगी। कौन कितनी कामयाब रही, कहां कोर कसर रह गई, सब पर बात होगी। मंथन 2027 में होने वाले यूपी चुनाव पर भी होगा, और 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी। आज तक ब्यूरो।
4: हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, ये जो 3 बजे से भारत मंडपम में कार्यक्रम होना है, इसमें कौन कौन शिरकत कर रहा है, इस पर क्या अपडेट मिल रहा है?
5: देखिए नेहा, अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो हैं, इस एनडीए के मुख्यमंत्रियों के कॉन्क्लेव में जो है वो पहुंच गए हैं। और ये सबसे बड़े, अगर आप देखा जाए तो उसका सबसे बड़ा एक प्रदर्शन इसको कह सकते हैं, क्योंकि 12 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र सरकार के अंदर सरकार में रहते हुए, और सबसे ज्यादा लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर जो है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो 4,398 दिन प्रधानमंत्री थे। आज प्रधानमंत्री ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा है, उसको लेकर यहां पर एक प्रस्ताव भी पास किया जाएगा कि 12 साल बेमिसाल, और उसके साथ साथ किस तरीके से गरीब कल्याण योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है उनकी सरकारों ने किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ भविष्य में एनडीए का किस तरीके का स्वरूप रहेगा और किस तरीके से एनडीए एकजुट रहेगा, उसको लेकर भी यहां पर चर्चा होगी। और साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है वह पूरा एनडीए एकजुट दिखाई दे, भले ही मान लीजिए आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका वोट शेयर यहां ना हो यूपी में, लेकिन उनकी पार्टी के लोग जो है, चंद्रबाबू नायडू जो प्रेसिडेंट है या अन्य नेता जो है वो वहां पर चुनाव में दिखाई दे। तो ये एक तरीके के एनडीए की ये एक पावर स्ट्रेंथन मनोरंजन जो है शो है, और इसमें कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देने की बात जरूर है कि एक तरफ इंडिया ब्लॉक जो है वो बिखर रहा है और दूसरी तरफ जो है एनडीए वो एक साथ मजबूती के साथ खड़ा है। और 12 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है के सरकार के कार्यकाल के, जिनमें उन्होंने लगातार जो है चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर आज जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। तो आज कैबिनेट भी उनको जो है बधाई दी गई, एक प्रस्ताव पास किया गया किस तरीके से गरीब कल्याण योजनाओं को आगे लाने का काम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जिससे आम आदमी को फायदा मिले। और इस प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है कैबिनेट में उसका अनुमोदन किया था। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के जितने अधिकारी हैं उन्होंने भी उन्हें बधाई दी थी और उनके लिए संदेश भी दिए। इसके साथ साथ आज क्योंकि एनडीए की बैठक है और इस तरीके की जो बैठक होती है उसमें तमाम इश्यूज के ऊपर चर्चा होती है, केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको धरातल पर कैसे उतारा जाए, किस राज्य की कौन सी स्कीम है, कौन सी ऐसी योजना है जो दूसरे राज्यों में लागू हो सकती है, उन सबको लेकर चर्चा होती है। और उसके साथ साथ ये कि सरकार जो भी काम कर रही है उसमें संगठन की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, इन सबको लेकर जो है एक प्रेजेंटेशन होती है, उस वो प्रेजेंटेशन भी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंत में संबोधन भी होने वाला।
4: ठीक है। इस बीच हिमांशु ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस पूरे खास आयोजन को किस तरीके से एक ऐसे जश्न के तौर पर, एक शक्ति प्रदर्शन कह लें उस तौर पर बीजेपी प्रदर्शित करना चाहती है। सुबह से ही मंत्रियों के मंदिर जाने का सिलसिला शुरू हुआ, तो आज कार्यक्रम कहां जाकर खत्म होगा?
5: देखिए आज क्योंकि ये जो एनडीए के मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव है और एनडीए के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, तो सबसे पहले जो है वो एक प्रस्ताव पास होगा जिसमें प्रधानमंत्री के कार्यकाल के अंदर जो है किस तरीके से जन कल्याण योजनाओं को लाया गया, उनको लागू किया गया, आम आदमी तक फायदा पहुंचाया गया और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किस तरीके से देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ी है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इस पूरे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होगा उसमें ये वो जरूर बताएंगे कि क्या उनकी आने वाले दिनों में उनका विजन है और किस तरीके से भारत को विकसित राष्ट्र जो है बनाने के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया है उसमें एक एक करके जो कदम है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड संबंधित उन सभी कदमों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने, ये उनका नहीं, उनकी सरकार का नहीं बल्कि देश का सपना है, ये उनके भाषण में जरूर देखने।
4: ठीक है, ऐश्वर्या पालीवाल में सहयोगी में जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, जहां पर आपकी मौजूदगी है, क्या जानकारी मिल रही है, आज किस इसको विशेष निमंत्रण गया है और किस तरीके से एक उत्सव के तौर पर इसे बीजेपी या फिर एनडीए देख रही है?
6: देखिये नेगा, 22 सीएम्स जो हैं, 22 सीएम्स जो कि एनडीए के फोल्ड के अंदर आते हैं वो यहाँ पे है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट्स के यहाँ पे हैं। और देखिए एक जो बड़ा लक्ष्य जो ही तय कर चुकी है, बड़ा लक्ष्य क्या है कि हिंदुस्तान को डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन बनना है बाय 2047। तो कहीं ना कहीं कौन से ब्लूप्रिंट की जरूरत है, तो इन सब चीजों के ऊपर आज मंथन

0: स्नेह और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से, हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे एक सधे हुए तरीके से देश को संभाला है और आज विशेष दिन इसलिए है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे।
2: देश का भी सौभाग्य है और हम सब के लिए भी सौभाग्य की बात है। आजादी के बाद गैर सरकारी प्रधानमंत्री के नाते से अभी तक का सर्वाधिक लंबा समय सुशासन के रूप में बिता करके दुनिया में भारत के लोकतंत्र का मान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
3: जिस तरह से 12 साल के अंदर जो परिवर्तन देश के अंदर आया है, चाहे हमारी जनकल्याण की योजनाएं हों, चाहे हमारी विकास की योजनाएं हों, या नक्सलवाद आतंकवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव, हम कह सकते हैं कि 12 साल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य हुआ है।
4: मेरे दो सहयोगी से तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, ऐश्वर्या का रुख करते हैं। ऐश्वर्या, ये अक्सर देखा जाता है कि बीजेपी का कोई बड़ा मौका हो उसमें इस तरह से शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ कुछ ठोस बातें भी होती हैं, तो क्या अगर इतने सीएम और डिप्टी सीएम जुट रहे हैं तो उनके कामकाज का कोई ब्यौरा, कोई प्रेजेंटेशन, इस तरह का भी कार्यक्रम वहां पर है?
5: देखिए नेहा, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिव्यू करना जरूरी है। 2 साल हो चुके हैं मोदी सरकार 3.0 को, तो ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए और ओवरऑल गवर्नेंस के अंदर सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ है, सबसे ज्यादा फायदा हुआ है? ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पे इस समय आपको देखने की जरूरत है कि आप नई स्कीम्स लेके आए, आप नई पॉलिसीज लेके आए? और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, सरकार ये बात जानती है कि लोग नाराज हैं, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है, तो वो कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन सी चीजें और उनको ठीक कैसे किया जा सकता है? किस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये मिलके जो है संतुलन बनाए और आगे की ओर बढ़े, इन सब चीजों के ऊपर मंथन होगा। देखिए, जो बड़ी पिक्चर है वो सबके सामने एकदम साफ है, 2047 जब हिंदुस्तान की आजादी को पूरे 100 साल हो जाएंगे, तब हिंदुस्तान को मूव करना है डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन की तरफ, तो उसके लिए कौन कौन से स्कीम्स की जरूरत होगी, किस तरीके से लोगों तक आप जो स्कीम्स लेके आए हैं उनको पहुंचाना है? और देखिए, एक महत्वपूर्ण बात, इस समय जो युद्ध है वो दोबारा चालू हो चुका है वेस्ट एशिया में, तो किस तरीके से भारत की इकोनॉमी को शील्ड किया जा सके, उन सब चीजों के ऊपर मंथन होगा। और आगे आने वाला जो रास्ता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, चाहे वो अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उनकी बात करें या फिर जो बड़ा चुनाव होगा लोकसभा का, तो उन सब चीजों पर भी मंथन होगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण अगला जो पार्लियामेंट सेशन होगा, किस तरीके से उसमें चीजों को मूव करना है, क्या आंकड़े होंगे एनडीए के अगले कुछ दिनों के अंदर, इन सब चीजों के ऊपर मंथन होगा और एक ब्लूप्रिंट जो है आगे की तरफ उसको भी बनाया जाएगा।
4: हिमांशु मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, अब कार्यक्रम शुरू होने में कितनी देर है, कब प्रधानमंत्री का संबोधन एक्सपेक्टेड है?
6: देखिए, कार्यक्रम जो है वो अब से कुछ देर में शुरू हो ही जाएगा और उस कार्यक्रम की शुरुआत जो है सबसे पहले उस प्रस्ताव को पास कर होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 12 साल का कार्यकाल रहा है उसको लेकर और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो है उनका जो कार्यकाल है जिसको आज उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर, और तमाम उसके बाद जो है तमाम प्रेजेंटेशन होंगी किस तरीके से जो है केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको ग्राउंड पे उतारना है और किन राज्यों की जो योजनाएं हैं वो अच्छी योजनाएं हैं उनको दूसरे राज्यों को भी लेना चाहिए, उसके साथ साथ सरकार और संगठन मिलकर कैसे काम करें ये भी जो है इसको लेकर भी एक प्रेजेंटेशन जो है वो हो सकती है, और उसके साथ जो है उसके सबसे अंत में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और वो जो उनका विजन है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का वो उस भाषण के अंदर समाहित होगा और उसमें वो बताएंगे कि किस
4: मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। इस बीच तमाम मंत्री, डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के जहां पर बीजेपी का शासन है वो इस कार्यक्रम के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन

0: कई ऐसे मंत्री भी हैं जो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी देश के प्रति समर्पित व्यक्ति है, ये किसी के कृपा पात्र से, अंग्रेजों के कृपा पात्र से ये प्रधानमंत्री नहीं बनते, ये किसी बड़े लोगों के कृपा पात्र, ये जनता के कोख से पैदा लिए हैं। कुछ लोग रानी के पेट से पैदा लेते हैं, और नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से गरीबों के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, नरेंद्र मोदी जी 25 करोड़ से ऊपर गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम किया। क्या ये बिना समर्पण का होता है? पक्का मकान दिया, क्या बिना समर्पण का दिया? शौचालय दिया, बिजली दी, पानी दिया, स्वच्छ ईंधन दिया, उज्ज्वला दिया, एक गरीब कल्याण से अन्न दिया, 5 लाख का इलाज दिया, ये बताता है, 5 किलो अनाज दिया, ये बताता है कि गरीबों के प्रति कैसे समर्पण होता है।
0: खबर सरदार मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
5: एक तरफ तो केजीएमयू में जो कैंसर पेशेंट को इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो एक इंजेक्शन उनको ना देकर कहीं ना कहीं उसका हेराफेरी की गई। साथ ही साथ कई मरीज ऐसे भी हैं जिनको इंजेक्शन लगाया नहीं गया, जबकि उनके नाम पर इंजेक्शन रिलीज कर लिया गया। ये हालात हैं कैंसर पेशेंट्स के जो केजीएमयू में आते हैं, जिसकी एक विरुद्ध जांच चल रही है। इससे परे दूसरी जगह जो हार्ट के पेशेंट हैं, उसमें स्टेंट डालने के लिए एक ही शख्स को, एक ही मरीज को 5-5 स्टेंट डाल दिए गए।
6: लोगों की जानकारी में आया है कि कुछ आयुष्मान के मरीजों में 5 स्टेंट का प्रश्न उठ रहा है। देखिए, कुछ विशेष परिस्थितियों में 5 स्टेंट भी लगते हैं कुछ समय के भीतर, लेकिन उसकी जांच करना जरूरी है, क्योंकि आयुष्मान में 3 स्टेंट से ज्यादा का पैकेज अलाउड नहीं है। तो अगर विशेष परिस्थितियों में कोई चीज करनी होती है तो उसकी एक प्रक्रिया है जो नहीं की गई है। तो ये तो क्लियर है कि 5 स्टेंट जो लगाए गए हैं उनमें वृहद जांच की जरूरत है। जैसे पहला बिंदु यह है कि 5 स्टेंट लगे कि नहीं, अगर 5 स्टेंट लगे हैं तो फिर उनके इंडिकेशंस पूछे जाएंगे, वो एक दूसरा विषय होगा। दूसरा जो जिसकी बात की शंका ज्यादा है कि 5 लगे ही नहीं होंगे, 2 लगे हैं और 5 को दिखा दिया गया है 5 लगे हुए हैं, और जो 3 स्टेंट एक्स्ट्रा एचआरएस से आए उसको लोगों ने गायब कर दिया। अगर ऐसा है जिसकी संभावना है तो ये देखना है कि केवल आयुष्मान के लोग मिले हुए थे या विभाग का जो है जो टेक्निकल और फार्मास्यूटिकल स्टाफ था वो मिला था।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at Quo.com/tunein. That's Quo.com/tunein.
3: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
4: To right field, and it will
3: From the first pitch of the season to the stretch run,
4: and that's the ball game.
3: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: बड़ा फैसला आपने लिया और पिछले कुछ दिनों में हम ये भी देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के कई लोकसभा सांसद भी नाराज हैं, राज्यसभा सांसद, तो कल सुखेंदु जी ने भी इस्तीफा दिया, आपने भी इस्तीफा दिया, क्या कारण कि लगातार जो है तृणमूल कांग्रेस से लोग छोड़ रहे हैं और आपने भी मन मना लिया?
6: देखिये, कारण कुछ व्यक्तिगत है, कुछ राजनीतिक है, बिना कारण के तो कोई कुछ करता नहीं है, पर मैं किस तरह की राजनीति करूंगी, कहां से करूंगी, ये मेरा निर्णय है और मेरा हक है, क्योंकि राज्यसभा मुझे एक पार्टी से मिला था
5: जी।
6: हाँ, जहां विधायकों ने वोट दिया था, बंगाल के लोगों ने इनडायरेक्टली दिया था, तो अगर पार्टी से इस्तीफा दिया तो फिर राज्यसभा सीट भी छोड़ना चाहिए, जो आपका नहीं है उस पर क्यों बैठे रहे?
5: अब आप आगे का क्या आप सोच रहे हैं, किस तरह से आप अपनी राजनीति देखते हैं, कहां आप आगे जाएंगे?
6: देखिए, सच्चाई तो ये है कि मेरी राजनीति बंगाल में नहीं है, मेरी राजनीति आसाम में है
5: जी।
6: और मुझे आसाम में ही राजनीति करना है, तो आसाम में जो राजनीतिक परिस्थिति है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मैं आसाम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा से मिलके आई हूँ। और देखिए, अगर मैं किसी पार्टी में जाना चाहती हूँ वो तो पार्टी का डिसीजन होता है, मेरा डिसीजन तो नहीं होता। सो लेट अस सी, बट आई फील सी आई एम अ लेडी शुड नेवर गिव हर एज, बट आई एम 53, यू कैन गूगल एंड सी। सो अगले 5 साल तो शायद बीजेपी रहेगी आसाम में। हाँ, और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पुश बराक वैली में स्पेशली किया है, क्योंकि मैंने तो राजनीति बराक वैली आसाम में किया है, आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन द पास्ट। अतीत में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, जो हमारी बहुत बड़ी समस्या, मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो मैं बीजेपी के खिलाफ बोलती थी पर वहां जाके अटक जाती थी जब डेवलपमेंट की बात आती थी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं हैं जिनके साथ में थी, ऑल द बेस्ट।
5: हेमंत दादा का नेतृत्व आसाम में जैसा है, जैसा उन्होंने काम किया है पिछले काफी लंबे, अब तो 15 साल भी उनके पूरे होने वाले, क्योंकि 10 साल तक तो सरकार रही, अब तो तीसरी बार सरकार आ गई, कैसा आपको लगा आसाम में बीजेपी का जो काम अब तक हुआ?
6: सी, हम पॉलिटिक्स में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं कि हेमंत तो ऐसे हैं, मोदी जी ऐसे हैं, ममता दीदी ऐसे हैं। निर्णय कौन लेता है? पब्लिक। मैं कुछ भी बोलती रहूं तो आसाम के पब्लिक ने क्या निर्णय लिया? हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, वो राजनीति में, लोकतंत्र में होता है, बट द फैक्ट इज निर्णय तो जनता लेती है।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पीएम मोदी ने बनाया सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड, कैबिनेट मीटिंग में सम्मान। दिल्ली में एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक, प्रस्ताव होगा पारित, देश विदेश से बधाइयों का तांता। टीएमसी पर चौतरफा आफत, राज्यसभा से इस्तीफे के बाद बीजेपी में शामिल हो सकती हैं सांसद सुष्मिता देव। वृत्त का दावा, 64 विधायकों ने छोड़ा ममता का साथ। कोलकाता से एक और तृणमूल पार्षद गिरफ्तार। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने से भड़की कांग्रेस, चुनाव आयोग से मिलकर प्रतिनिधिमंडल ने सीट चोरी का लगाया आरोप। बीजेपी बोली अंदर ही अभेदिया। पाक अधिकृत कश्मीर में आज फिर सुलगी विरोध की आग। थोरार इलाके में शहबाज और मुनीर के खिलाफ नारेबाजी, अब तक 27 प्रदर्शनकारियों की मौत। और ईरान पर अमेरिका की भीषण हवाई हमला, 20 ठिकानों पर अटैक। तेहरान ने भी बहरीन, कुवैत, कतर और जॉर्डन के यूएस बेस पर बरसाया बारूद।

0: हेलीकॉप्टर गिरा तो अमेरिका ने मचाया हाहाकार।
1: ईरान पर मिसाइलों बमों से भीषण प्रहार। अमेरिकी हमलों से टहल उठे ईरान के बंदरगाह। फिर शुरू हुआ ईरान का बारूदी पलटवार। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन में बजे तबाही के सायरन। अमेरिकी बेस पर चुन चुन कर मिसाइल ड्रोन से हमले। महासंग्राम की महातबाही से हिल गया मध्यपुर। अमेरिका ने 20 ठिकाने उड़ाए, ईरान ने 21 बेस दहलाए। सुलह की कोशिशों के बीच छिड़ी बारूदी जंग। ईरान की चेतावनी अब और भीषण होगा रण। हर अंजाम के लिए तैयार, ट्रंप तोड़ेंगे परमाणु प्रण।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और आप देख रहे हैं रणभूमि। एक हेलीकॉप्टर पर अमेरिका ने 8 अप्रैल से जो युद्ध विराम चला रहा था उसको भीषण बारूदी तबाही से तोड़ दिया। कल तक इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को रोकने वाले ट्रंप सब्र नहीं रख सके और वो 4 तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे पूरा मध्य पूर्व कल रात बारूदी धमाकों और मिसाइल ड्रोन की गर्जना से दहल गया। अमेरिका ने अपने अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने का दावा किया और इसका माकूल जवाब ईरान को देने का फैसला किया। आधी रात के बाद ईरान के 5 बड़े शहरों में धमाके शुरू हो गए। अमेरिकी युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों से मिसाइलों और बमों की बरसात शुरू हो गई और फिर रुकी नहीं। बंदर अब्बास से लेकर बंदर जस्क, सिरिक, कुह ए मुबारक और केशम द्वीप पर कहर टूटने लगा। अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन कमांड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया तो दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा, पलटवार किया जैसा हमेशा होता आया है। कुछ ही देर में उसने बारूदी गोदाम खोला और मध्य पूर्व के 3 देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों से तबाही मचाना शुरू कर दिया। फिलहाल अमेरिका की तरफ से दूसरा पलटवार नहीं हुआ लेकिन हालात बेहद तनाव भरे हैं। वो कहते हैं ना, बारूद के ढेर पर, बिल्कुल वैसा ही। बारूद के ढेर पर खड़े मध्य पूर्व से किसी भी वक्त कोई बड़ी खबर आ सकती है। और चलिए, बड़ी खबर ईरान के केशम से आ रही है, वो हम आपको बता देते हैं। ईरान की केशम सिटी के पास एक जोरदार धमाका हुआ और ईरान की बेहद न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह धमाका दक्षिणी ईरान की केशम सिटी के पास हुआ है। यह धमाका एयर डिफेंस की मिसाइल का है या केशम सिटी पर फिर से हमला हुआ, यह साफ नहीं है, अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ। आपको बता दें कि बीती रात अमेरिका ने ईरान के जिन इलाकों में हमला किया उनमें से एक केशम भी है और जोरदार धमाका हुआ यहां पर। और इस धमाके के बाद कैसे ईरान का एक शहर दहला वो आप इन तस्वीरों में देखिए। मेहर न्यूज एजेंसी ने इस धमाके की पुष्टि की है और रात में यह जोरदार धमाका हुआ, हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल अचानक। हालांकि धमाके का कारण अब तक साफ नहीं है, यह मेहर न्यूज की तरफ से भी कहा गया है, लेकिन इन्हें हमलों से जोड़कर देखा जा रहा है। और एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। तो अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने जोरदार पलटवार का दावा किया है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ईरान ने दावा किया है कि उसने मध्य पूर्व में अमेरिका के 21 ठिकानों पर हमला बोल दिया है। सबसे बड़ा दावा जो ईरान की तरफ से किया गया है जॉर्डन में F-35 हैंगर को तबाह करने का। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC जिसे कहते हैं IRGC, ये दावा कर रही है कि उसने पश्चिम एशिया में अमेरिकी और सहयोगी देशों के कुल 21 हवाई और नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाया। IRGC के बयान के मुताबिक जॉर्डन में 4 बड़े सैन्य ठिकानों पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला किया गया। ईरान ने दावा किया कि जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर मौजूद F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर नष्ट कर दिए गए हैं। ईरान यहां नहीं रुका, ईरान ने यह भी दावा किया है कि जॉर्डन में मौजूद एक अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। इसके अलावा IRGC का कहना है कि उसने ईरान के जम शहर के ऊपर उड़ रहे एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। ईरानी सेना ने अब चेतावनी भी दी कि अगर अमेरिका की ओर से कोई नई सैन्य कार्रवाई की जाती है तो उसका जवाब और अधिक ताकत से दिया जाएगा। IRGC ने अपने बयान में कहा है कि क्षेत्र में तनाव बढ़ने की स्थिति में उसके परिणामों के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। और चलिए अब हम

आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि ईरान में कहां कहां अमेरिकी हमला हुआ है, अभी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, खबरों के मुताबिक अमेरिकी हमलों में ईरान के हॉर्मुज़गान प्रांत के पूर्वी हिस्सों में बंदरअब्बास, ये आप यहां पर देखिए, ये ईरान की जब बात की जा रही है तो यहां पर कौन से क्षेत्र हैं, बंदरअब्बास, केशम, सिरिक, बंदर जश और कुए मुबारक इलाके को निशाना बनाया गया। लेकिन अब यह भी आप समझिए कि ईरान को कितना नुकसान हुआ, रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, शाहिद ड्रोन कंट्रोल स्टेशन और सिरिक में पानी के दो टैंक तबाह किए। ये किसने किए? ये अमेरिका ने किए। रडार सिस्टम तबाह किया, एयर डिफेंस तबाह किया, शाहिद ड्रोन कंट्रोल स्टेशन, ये अमेरिका के जो प्रिसाइज अटैक है उसने तबाह कर दिया। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यहां पर सिरिक में पानी के दो टैंक तबाह कर दिए। अब इससे परेशानी बढ़ी और जब हम आपको बता रहे हैं कि कहां कहां पर हमला हुआ, तो ये आप देखिए बंदर अब्बास, केशम, सिरिक की बात की जा रही है, ये बंदर अब्बास के थोड़ा और आगे वहां पर सिरिक, बंदर ए जश्क, ये आप देखिए सिरिक के आगे, और कुह ए मुबारक इलाके को निशाना बनाया गया अमेरिका की तरफ से। ये वो क्षेत्र है। अब ये तमाम इलाके ईरान के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ईरान का दक्षिणी क्षेत्र है। इन इलाकों में जबरदस्त धमाके सुने गए, अमेरिका ने धमाके किए और बंदर अब्बास से लेकर जश्क और केशम द्वीप, बंदर अब्बास में एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब सक्रिय हो गया। जैसे ही हमले हुए यहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो सक्रिय हुआ। अब अमेरिका ने ये दावा किया है कि उसके निशाने पर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम और शाहिद ड्रोन का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था। और इसके अलावा ईरानी मीडिया फार्स न्यूज के मुताबिक ईरान के दक्षिणी सिरिक इलाके में, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं ना, ये सिरिक इलाका, यहां पर हमलों में पानी की टंकियां तबाह हो गई। जो हमने आपको यहां पर बताया कि सिरिक में पानी के दो टैंक तबाह हो गए, यह है वो इलाका जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। अब ईरान के पलटवार की बात कर लेते हैं, क्योंकि ईरान तो हमेशा से कहता है ना कि हम यहां पर रुकते नहीं है, पलटवार करते हैं। तो ईरान के पलटवार से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर सीधा हमला किया, यानी वो डायरेक्ट हिट का दावा कर रहा है ईरान। और ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान की मिसाइल ने बहरीन में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। IRIB न्यूज ने वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करते हुए यह दावा भी किया गया है कि ईरान की मिसाइल सीधे अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय पर जाकर गिरी है, धड़ाम एकदम। अब वीडियो के जरिए यह दावा भी किया गया कि इसमें अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल गिरने से ठीक पहले के पल को दिखाया गया है, ठीक पहले के पल को। बहरीन में स्थानीय सूत्रों का यह कहना है कि उन्होंने 16 धमाकों की आवाज सुनी है, एयर डिफेंस एक्टिव था और सायरन बजा दिया गया था। तो नागरिकों और निवासियों से शांत रहने और नजदीकी सुरक्षित स्थान पर जाने का आग्रह किया गया था कि भाई दिक्कत है आने वाले वक्त में, तो आप अपने आप को महफूज करें। तो दूसरी तरफ बहरीन के एयर डिफेंस का दावा है कि उसने ईरान के हमलों को नाकाम कर दिया है। बहरीन के गृह मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि आज एकदम सुबह बहरीन में सायरन बजने लगे, लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने को कहा गया। वहीं ईरान की तरफ से हुए हमलों के बाद इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC जिसे कहते हैं, IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिकी हमलों के जवाब में बहरीन में कहां निशाना बनाया, अमेरिकी 5th Fleet को निशाना बनाया है। अर्ध सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी के एक बयान में भी यह कहा गया है कि IRGC की नौसेना ने बहरीन में अमेरिकी 5th Fleet पर रात के 2:30 बजे ड्रोन से हमला किया, जो ईरान की ताकत कही जाती है, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल। और आइए आपको एक बार फिर बड़ी स्क्रीन लिए चलते हैं, दिखाते हैं हम आपको अच्छे से कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक से बौखला ईरान ने कहां कहां पर घातक पलटवार किया है। अब यह भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की जब बात की जाती है तो IRGC ने अमेरिका के खिलाफ सीधे युद्ध का बिगुल फूंकते हुए मध्य पूर्व के 3 देशों को मिसाइल और ड्रोन से दहला दिया। और गौर करने वाली बात क्या है, गौर करने वाली बात तो यह है कि ईरान ने इस बार किसी अन्य देश को निशाना नहीं बनाया, अन्य देश को नहीं बनाया, बल्कि सिर्फ उन 3 मुल्कों को निशाना बनाया जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद है। कहां? बहरीन, कुवैत और जॉर्डन। ईरान ने आज मुख्य रूप से 3 देशों को, एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं, ये ईरान, यहां बहरीन जो कि अमेरिका के पांचवें बड़े बेड़े का हेडक्वार्टर है, कुवैत, अली अल सलेम एयरबेस और जॉर्डन यानी मुजफ्फर अल साल्टी एयरबेस, अल अजराक एयरबेस, यहां पर निशाना बनाया गया। पहला टारगेट अब आपको और डिटेल में बता देते हैं, ये बहरीन है, यहां टारगेट किया गया। यहां ईरान ने अमेरिका के 5th Fleet के हेडक्वार्टर पर आत्मघाती ड्रोन

0: पे हमला किया, शाहिद ड्रोन जिसे कहा जाता है, यहां हमला किया। अब दूसरा टारगेट थोड़ा सा और आ गया, ये होता है कुवैत। यहां पर अमेरिकी सेना के अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान की मिसाइलें जो उसकी ताकत है और ड्रोन जो उसका काल बनकर टूटे हैं, जिससे कुवैत एयरपोर्ट तक थर्रा उठा, वो ये जगह है कुवैत की। अब हम आपको बता रहे हैं तीसरा निशाना, तीसरा टारगेट है जॉर्डन। सीधे यहां से मिसाइल आती है, यहां पर धमाका करती है। यहां ईरान ने अल अजराक एयरबेस पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, क्योंकि यहां से सबसे लंबी की दूरी जॉर्डन ही। हालांकि जॉर्डन की सेना ने कुछ मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, इंटरसेप्ट किया, लेकिन कुवैत और बहरीन से ये जो आप देख रहे हैं ना, यहां पर भारी नुकसान की खबरें आ रही। और इस नक्शे में यह देखना भी बेहद जरूरी है कि यहां पर सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, इराक जैसे देशों पर आज कोई नया हमला रिपोर्ट नहीं हुआ। यानी ईरान का अगर पूरा फोकस था तो वो कहां था? सिर्फ तीन अमेरिकी सेना को तबाह करने पर, जहां तीन जगह पर अमेरिकी सेना है। स्थिति पल पल बदल रही है और पूरा मिडल ईस्ट इस वक्त, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, ये पूरा जो मिडल ईस्ट आप देख रहे हैं ना, यहां पर और भी कई देश है, ये सब एक बारूद के ढेर पर बैठ चुके हैं। और देखिए, इसी बीच जॉर्डन से एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम आपको बता देते हैं। जॉर्डन की सेना ने कहा है कि उन्होंने ईरान से जॉर्डन के अल अजराक इलाके की तरफ दागी गई पांच मिसाइलों को बीच में ही रोककर मार गिराया, इंटरसेप्ट कर लिया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जॉर्डन की सेना ने आगे बताया है कि मिसाइलों को रोकने की कार्रवाई के दौरान उनका मलबा जॉर्डन की जमीन पर गिरा। जब हवा में किसी मिसाइल को आप इंटरसेप्ट करते हैं, ध्वस्त करते हैं, तो उसके जो कलपुर्जे होते हैं वो नीचे गिरते हैं, लेकिन इससे किसी को चोट नहीं आई है, ये भी कहा गया, और ना ही कोई इससे नुकसान हुआ है। इससे पहले ईरान के IRGC ने दावा किया कि उनकी सेनाओं ने जॉर्डन के मुवाफक अल सॉल्टी एयरबेस पर लंबी दूरी की सॉलिड फ्यूल मिसाइलों से चार अहम ठिकानों पर हमला बोला। अब इन ठिकानों में अमेरिकी वायुसेना के F-35 फाइटर जेट्स वाले एयरक्राफ्ट शेल्टर और बेस पर मौजूद अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल थे। ईरानी मीडिया ने मिलिट्री सूत्रों के हवाले से यह बताया है कि IRGC ने जॉर्डन में F-35 फाइटर जेट्स के शेल्टर पर हमला के लिए खैबर शिकन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का यह भी कहना है कि उन्होंने जॉर्डन में, जो सबसे दूरी का टारगेट था, वहां अमेरिकी अल अजराक बेस पर चार ठिकानों को निशाना बनाया। और इसी बीच ईरानी मीडिया वीडियो में जॉर्डन में मौजूद अमेरिका के अल अजराक बेस का गूगल अर्थ एनिमेशन दिखाया गया है। रॉयटर्स की खबर है कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करके जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक बेस पर चार जगहों को निशाना बनाया। गार्ड्स ने यह बताया कि जिन जगहों को निशाना बनाया गया उनमें F-35 फाइटर जेट के हैंगर और एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि वो अमेरिका के किसी भी हमले का करारा और निर्णायक, यानी फुल एंड फाइनल वाला जवाब देने के लिए हमेशा से तत्पर हैं, हमेशा से तैयार हैं। ये चेतावनी भी दे दी गई। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब दावा कर रहे थे कि उनकी सेना ने ईरान के हौसले पस्त कर दिए, जमीन में मिला दिया, उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन ईरान ने एक बार फिर आज अपनी ताकत दिखाई है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान ने बकायदा वीडियो जारी किया है और मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया। ईरान ने इन हमलों के लिए बड़े पैमाने पर लंबी दूरी की मिसाइलें लॉन्च की हैं। जॉर्डन स्थित अमेरिकी बेस पर हमले के लिए ईरान ने सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिन्हें बहुत कम समय में दागा जा सकता है, बहुत कम समय में। ईरान की मीडिया IRIB की ओर से शेयर किए गए फुटेज में कम से कम 11 लंबी दूरी की मिसाइलों को लॉन्च करते हुए दिखाया गया है। वहीं एक तस्वीर ईरान के खोमेन की भी आई, जहां से लॉन्च की गई ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को आसमान में देखा गया। वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आज तक यहां से कम 6 मिसाइलों को लॉन्च किया गया। और वीडियो में अमेरिकी ठिकानों की ओर लंबी दूरी की कद्र, अमाद और खैबर शेकन मिसाइलों को लॉन्च करते हुए दिखाया गया है। ईरान ने चुन चुन कर अमेरिकी एयरबेस पर वार किया है, तीन जगह पर किया है लेकिन चुन चुन कर किया है, और कई मिसाइलों का, ड्रोन का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। तो अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने का बदला लिया, लेकिन अब ईरान का दावा है कि उसने हॉर्मुज जल डमरूमंद, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। IRGC का कहना है कि हवाई ऑपरेशन के दौरान उसने बुशहर प्रांत के ऊपर UAV यानी अनमैन आर्म्ड व्हीकल को मार गिराया। ईरान के सरकारी मीडिया ने शुरू में दक्षिणी बुशहर प्रांत के आसमान में किसी चीज के नष्ट होने की स्थानीय खबरों का जिक्र किया था। अब बाद में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के जनसंपर्क विभाग ने यह दावा किया कि एक MQ-9 ड्रोन को रोका गया और नष्ट कर दिया गया। अब IRGC के बयान के अनुसार हॉर्मुज जल डबरू मध्य क्षेत्र में चल रही हवाई कार्रवाई के दौरान ड्रोन को निशाना बनाया गया। ईरानी अधिकारियों ने यह दावा किया कि MQ-9 उत्तरी फारस की खाड़ी से युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। कथित तौर पर ईरान की वायु रक्षा सेना ने बुशहर प्रांत के जाम काउंटी के ऊपर इस ड्रोन को मार गिराया, टारगेट किया। अब IRGC ने कहा कि UAV चल रही सैन्य स्थिति में दखल देने और उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। अब यह भी आपको बता दें कि एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत लगभग मान के चलिए $34 मिलियन यानी करीब 280 करोड़ रुपए है, जो कि ध्वस्त कर दिया गया। ईरान ने ध्वस्त किया है इसे, 280 करोड़ रुपए स्वाहा। तो अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद अमेरिका का गुस्सा ईरान पर बारूद बनकर बरसा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के आदेश पर आधी रात को मिडिल ईस्ट में वो महा एक्शन हुआ जिसने ईरान के होश उड़ा दी। अमेरिका ने उन हमलों को सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स कहा है, लेकिन ये हमले कितने सुनियोजित थे, कितने घातक थे, इसको समझने के लिए यहां रणनीतिक मैप का जिक्र कर लेते हैं। अभी हम आपको यहां पर समझाते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ, गौर से देखिए इस नक्शे को। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान को तीन तरफ से घेर कर ऐसा शिकंजा कसा कि तेहरान को संभलने का मौका भी नहीं मिला। अब आप ऐसे समझिए, यहां पर अमेरिका की तरफ से हमले किए गए, ये जोरदार तरीके से हमले किए गए, अब पूरी तरह से यहां पर घेरा गया है और फिर ईरान की तरफ से यहां से हमले किए गए। अमेरिका ने कैसे हमला किया ये हम आपको समझा रहे हैं। फारस की खाड़ी और अरब सागर में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर F/A-18 सुपर हॉर्नेट, अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर कैसे किया गया हमला। कतर के अलुद्दीन एयरबेस से अमेरिकी बम वर्षक उड़े, तो ईरान के सबसे नजदीक मौजूद UAE की जब बात की जा रही है तो अल तफरा एयरबेस से स्टेल्थ फाइटर्स ने उड़ान भरी। वहीं बहरीन में मौजूद अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर से इस पूरे हमले को गाइड किया गया, यहां बहरीन की बात की जा रही है। अमेरिकी जेट्स का मुख्य टारगेट था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान का दक्षिणी तट, जिसकी बात यहां की जा रही है। अमेरिका ने ईरानी सीमा में कदम रखे बिना सैकड़ों किलोमीटर दूर से स्टैंड ऑफ हथियारों से अचूक वार किया, ये देखिए कितनी दूर से प्रहार किया। और इस हमले में ईरान के रडार सिस्टम, एयर डिफेंस मिसाइल, बैटरियां, शाहिद ड्रोन के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस निस्त नाबूद कर दिए गए। अब ईरान का दावा है कि सिरिक शहर में उसके पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बम गिरे, और अब बात उन विनाशकारी हथियारों की भी करते हैं जिन्होंने ईरान के सैन्य ढांचे की रीढ़ तोड़ दी। अब इस ऑपरेशन में सबसे खतरनाक जब विनाशकारी हथियार की बात की जाती है AGM-158 GASSM क्रूज मिसाइल यानी जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल, और स्लैम ER क्रूज मिसाइल जिसको कहा जाता है स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल एक्सपेंडेड रिस्पॉन्स। ऐसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया ताकि अमेरिकी जेट्स को ईरान के एयर डिफेंस के पास जाना ही ना पड़े, और इसके साथ ही आसमान से सटीक तबाही मचाने के लिए JDAM यानी GPS गाइडेड प्रिसीजन बम बरसाए गए। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह से जोरदार हमले किए, और अब ये कहा जा रहा है बाकी बारूद की ढेर पर इस वक्त दोनों देशों के रिश्ते हैं। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद भारत।
2: दिस इज द साउंड ऑफ जैक buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
3: Oh, ouch.
2: However you make money work, we can work with that.
4: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
5: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
6: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
5: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
7: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
5: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
6: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
5: जहां खबर वहां खबरदार।
9: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
10: The action never stops and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
5: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल।
11: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी।
5: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल।
11: CBSE के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
5: छात्रों को दिया मंच।
11: उज्मा हमारे साथ कोटा से और अदिति मुंगेर से हैं और तानिया कोटा से हैं और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
12: नहीं देखिए, इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
13: IIT मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
5: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर।
11: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक। और अब सरकार की तरफ से CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
5: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.
3: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
5: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: क्या पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है पीओजेके? पीओजेके में उठी बगावत की आवाज, क्या बदल रहा है कश्मीर का समीकरण? पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर, जिसे पाकिस्तान दुनिया के सामने कश्मीर के मुद्दे के तौर पर पेश करता है, आज वही इलाका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन है, सरकार और सेना के खिलाफ नारे और लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या पीओजेके अब पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है? क्या वहाँ की जनता का गुस्सा सिर्फ महंगाई तक सीमित है, या इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक असंतोष उभर रहा है? भारत का आधिकारिक रुख रहा है कि पीओजेके भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बकायदा पीओजेके के लिए सीटें आरक्षित है, बार बार संसद में भी पीओजेके के लिए हुंकार उठी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 हटाने के लिए आए प्रस्ताव पर बोलते हुए संसद में साफ किया था कि पीओजेके हमारा हिस्सा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई मौकों पर कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर भारत का रुख साफ है। उन्होंने पिछले साल मई में कहा था कि पूरा कश्मीर एक दिन भारत का होगा। भारत का आधिकारिक रुख रहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। वहीं पाकिस्तान पीओजेके पर अपना दावा करता है, लेकिन अब पीओजेके के अंदर से उठती आवाजें पाकिस्तान के लिए नई परेशानी बन गई है। रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि ये संदेश है कि जिस इलाके को वो अपने नियंत्रण में बताता है, वही लोग अब सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का इतिहास भी विवादों से भरा रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायतें पुरानी, राजनीतिक अधिकारों की कमी, आर्थिक असमानता और संसाधनों पर नियंत्रण। ऐसे वक्त में जुलाई में होने वाले चुनाव भी अहम हो जाते हैं, क्योंकि चुनावी मैदान में उतरने से पहले सड़क पर जनता का मूड सामने आ रहा है। पीओजेके में उठी आवाजें सिर्फ इस्लामाबाद तक नहीं पहुंच रही, ये सवाल अब पूरी दुनिया सुन रही है। क्या पाकिस्तान जिस कश्मीर की बात करता है, वहीं से उसके खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है? और क्या सच में वो दिन करीब है जब कश्मीर का समीकरण फिर बदलेगा? शिवानी शर्मा, दिल्ली आज तक।
7: राजधानी बेलफास्ट सुलग रहा है, बसों में आग लगा दी गई, कई कारें फूंक दी गई, एक एक कर कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी दहक उठी। यह हिंसा तब भड़की जब सोमवार को वहां चाकू वाले हमलावर ने एक शख्स का सिर काटने की कोशिश की। आरोप एक सुडानी शरणार्थी पर है। उसी वारदात के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मंगलवार को उत्तरी आयरलैंड में इमिग्रेशन विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए। बड़े पैमाने पर हिंसा फैल गई। सुरक्षा बलों से टकराव के दौरान उग्र प्रदर्शनकारियों ने बस और कई अन्य गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कुछ इलाकों में घरों को निशाना बनाया, खिड़कियां तोड़ी और दरवाजे तोड़ दिए गए। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों से टकराते रहे, नकाबपोश युवक हमले करते रहे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस हमले की निंदा की है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

पीएम मोदी ने बनाया सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड, कैबिनेट मीटिंग में सम्मान। दिल्ली में एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक, प्रस्ताव होगा पारित तो कांग्रेस ने दागे आरोपों के तीर। टीएमसी पर चौतरफा आफत, राज्यसभा से इस्तीफे के बाद बीजेपी में शामिल हो सकती हैं सांसद सुष्मिता देव। वृद्धव्रत का दावा, 64 विधायकों ने छोड़ा ममता का साथ। कोलकाता से एक और तृणमूल पार्षद गिरफ्तार। दिल्ली में राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की अहम बैठक खत्म। कांग्रेस और टीएमसी में गठबंधन की संभावना पर चर्चा की खबर। बंगाल के हालात पर भी बात। उन्नाव में संत मिलन दास बाबा हत्याकांड में प्रशासन का सख्त एक्शन। मुख्य आरोपित और सभासद अतीक के मकान पर चला बुलडोजर। इसी इमारत में मर्डर होने की जानकारी। और पाक अधिकृत कश्मीर में आज फिर सुलगी विरोध की आग। शाहबाज और मुनीर के खिलाफ नारेबाजी, अब तक 27 प्रदर्शनकारियों की हुई मौत।

तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित, रणभूमि में एक बार फिर स्वागत है। आखिर समुंदर के बीचों बीच अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर पर हुए एक हमले ने कैसे सुपर पावर ट्रंप को पहले बैकफुट पर धकेला और फिर उनके गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। व्हाइट हाउस के बंद कमरों में ऐसी कौन सी खुफिया रिपोर्ट टेबल पर रखी गई जिसने नो बिग डील कहने वाले ट्रंप को चंद घंटों में महायुद्ध के रास्ते पर ला खड़ा किया। वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक मिसाइलों के इस महासंग्राम की यह एक्सक्लूसिव और रोंगटे खड़े कर देने वाली इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाते हैं।

0: आसमान का सिकंदर कहा जाने वाला अमेरिकी सेना का अपाचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर 8 जून की रात क्रैश हो गया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान के घातक शाहिद ड्रोन ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर को सीधी टक्कर मारी। हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट समंदर में कूदे। पहली बार दोनों पायलटों को बचाने के लिए अमेरिका ने मानव रहित समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया। दोनों पायलट अपनी गर्दन के साथ मौजूद उपकरण की मदद से पानी में फ्लोट कर रहे थे। समुद्री ड्रोन के आते ही वो उस पर सवार हो गए और फिर उन्हें एक हेलीकॉप्टर से बेस तक सुरक्षित ले जाया गया। अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर हमला उस वक्त हुआ जब देर रात वो समंदर में ईरान के उन बोट्स को अमेरिकी मालवाहक जहाजों और युद्धपोतों के पास आने से रोकने के मिशन पर थे। ठीक उसी वक्त उस पर हमला हुआ। पायलट डूबते हेलीकॉप्टर से बाहर निकले और फिर सवेरा होने से पहले ही अमेरिका ने एक और हैरत अंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। हालांकि अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर हुए हमले ने मिडिल ईस्ट में नाजुक सीज फायर को तार तार कर दिया। हैरानी की बात यह है कि शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस भीषण घटना को पूरी तरह दबाने की कोशिश की। ट्रंप ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं थी, पायलट पूरी तरह ठीक है। ट्रंप इस हमले को कम करके आंक रहे थे और ईरान के खिलाफ तुरंत किसी भी एक्शन के मूड में नहीं थे। लेकिन व्हाइट हाउस के बंद कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने ट्रंप का पारा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। सुबह की एक हाई लेवल ब्रीफिंग में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और जनरल केन ने ट्रंप के सामने सेना की खुफिया रिपोर्ट रख दी। दोनों ने साफ कहा कि अमेरिकी सैनिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तुरंत सैन्य कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता है। बस फिर क्या था, ट्रंप ने अपना मन बदल लिया। ट्रंप ने हुंकार भरते हुए कहा, अब अमेरिका इस हमले का जबरदस्त जवाब देगा। वहीं हमलों के बाद ट्रंप ने ABC न्यूज से कहा, मेरा मानना है कि जवाब बहुत मजबूत और जबरदस्त होना चाहिए और ये वैसा ही है। सेंट्रल कमांड और पेंटागन ने कहा कि अमेरिका का हमला प्रोपोर्शनल यानी अनुपातिक है। लेकिन ट्रंप ने एक कदम आगे बढ़ते हुए एक वीडियो क्लिप पोस्ट की। वीडियो में दिखाया गया कि अगर अमेरिका पर हमला करोगे, अमेरिका को मारोगे, तो जवाब अनुपातिक नहीं तबाही लाने वाला होगा।
1: Pardon me, Mr. President. Just what else is it?
2: The disproportional response. Let the word ring forth from this time and this place, gentlemen. You kill an American, any American, we don't come back with a proportional response. We come back with total disaster.
0: इसी जज्बे से ट्रंप ने तबाही मचाने वाले हमलों का हुक्म दिया जिसके बाद अमेरिकी मिसाइलें ईरान के सीने पर काल बनकर टूट पड़ी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक दक्षिणी शहर सिरिक में अमेरिकी मिसाइलों ने वहां के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पानी की सप्लाई की रीढ़ को तोड़ कर रख दिया। अमेरिकी अधिकारी से ईरान के लिए सिर्फ एक वार्निंग यानी चेतावनी बता रहे हैं, लेकिन ईरान अब पूरी तरह बौखला गया। पहले तो ईरान इस बात से मुकरता रहा कि उसने अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिराया, लेकिन अमेरिकी हमले के बाद ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने सीधे युद्ध का ऐलान कर दिया। ईरान ने अपनी वीर सेना और IRGC के लड़ाकों को खुला छोड़ दिया जिन्होंने इलाके में मौजूद कई अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइल दाग दिए। IRGC ने कहा, अपराधी अमेरिकी सेना सुन ले, अगर उसने दोबारा कोई हिमाकत की तो इस पूरे इलाके में अमेरिकी ठिकानों पर और भी ज्यादा सख्त और बड़े विनाशकारी हमले किए जाएंगे। तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने सोशल मीडिया पर खुला चैलेंज देते हुए लिख दिया है कि ईरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। साफ है कि ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो युद्ध दोबारा शुरू हो जाएगा और अब वो घड़ी आ चुकी है। क्या ईरान के खिलाफ इस महासंग्राम का न्यूक्लियर अंजाम होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
3: और आइए बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। कंगाल, भिखारी और आतंकी आका पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोके जाने की घड़ी आ चुकी है। पाकिस्तान ने बंदूक के दम पर, जुल्म के दम पर भारत के जिस हिस्से यानी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK पर अवैध कब्जा कर रखा था, आज वहां की साहसी जनता ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हुक्मरानों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कल POJK में पाकिस्तानी फौज और पुलिस की गोलीबारी के बाद प्रदर्शन और उग्र हो गया। अब अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की आवाम पाकिस्तान के हुक्मरानों से खून का हिसाब मांग रही है। पुंछ के थोरार सब डिवीजन में आज समुंदर की तरह जनसैलाब सड़कों पर उतर आया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले पीओजेके की जनता ने पाकिस्तानी फौज की छाती पर चढ़कर वो नारे लगाए हैं जिससे पाकिस्तान का वजूद कांप उठा। वहां गूंज रहे नारों को जरा गौर से सुनिए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की आवाम पाकिस्तानी हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर चिल्ला रही है, जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो। वहां की जनता कह रही है कि जब तक जनता तंग रहेगी जंग रहेगी, जंग रहेगी। ये जंग है पाकिस्तान के उस दशकों पुराने जुल्म के खिलाफ जिसने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को सिर्फ लूटा है, वहां के हकों का कत्ल किया और वहां के नौजवानों को बंदूक की नोक पर दबा कर रखा। लेकिन अब बहुत हो चुका, महीनों से सुलग रही विद्रोह की यह चिंगारी अब एक ऐसी भीषण आग बन चुकी है जिसे बुझाना पाकिस्तान की कायर फौज के बस की बात नहीं है। आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा, बुजुर्ग और नौजवान सड़कों पर खड़ा होकर पाकिस्तान से अपने खून का, अपनी जमीन का, अपनी तबाही का हिसाब मांग रहा है। पाकिस्तान दुनिया भर में कश्मीर का जो फर्जी राग अलापता था, आज उसी कश्मीर के लोग पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों का यह गुस्सा साफ कह रहा है कि वह पाकिस्तान की इस नरक जैसी गुलामी में एक पल भी रहने को तैयार नहीं। आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में आजादी की जो हुंकार गूंजी है उसने रावलपिंडी के GHQ को हिलाकर रख दिया है। तो गाजा और लेबनान के नाम पर दुनिया के सामने घड़ियाली आंसू रोने वाला पाकिस्तान POJK से अफगानिस्तान तक क्रूरता कर रहा है। आसिम मुनीर की फौज का खूनी और घिनौना चेहरा अब बेनकाब हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुनार, पक्तिका और खोस्त में नागरिक इलाकों पर हवाई हमला किया। पाकिस्तान के हमलों में 19 लोगों की मौत हो गई और इन 19 लोगों में ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर महिलाएं हैं। 11 बच्चे हैं मरने वालों में, एक महिला और एक बुजुर्ग भी शामिल है। 14 महिलाएं घायल हुई हैं। और देखिए, यह बताया जा रहा है यह हमला तब हुआ जब कल पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर रावलपिंडी में बैठकर शांति का ढोंग रच रहा था। वो लेबनान के आर्मी चीफ को शांति का पाठ पढ़ा रहा था और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में अपना हक और पाकिस्तानी फौज से आजादी की मांग करने वाले कश्मीरियों पर गोली भी बरसा रहा था। कल रात अफगानिस्तान के खोस्त, कुनार और पक्तिका में हुए हवाई हमलों से तालिबान सरकार अब भड़क गई है।

दुनिया को अमन और शांति का फर्जी ज्ञान बांटने वाले कंगाल पाकिस्तान का अस्त्री और वहशी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान की कायराना फौज ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का सरेआम उल्लंघन किया और आधी रात के अंधेरे में घोष, कुनार और पक्तिका प्रांत के रिहायशी इलाकों पर बारूद की बरसात। पाकिस्तानी हवाई हमलों ने सोते हुए अफगानी नागरिकों के आशियानों को शमशान बना दिया। इस अमानवीय और बर्बर हमले में अब तक कई बेगुनाह नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद मासूम बच्चों और महिलाओं की है। घोष के स्पीड

0: लैंडलॉक्ड यानी चारों तरफ से जमीन से घिरे होने की लाचारी का हथियार की तरह इस्तेमाल किया और हवाई हमले करके सैकड़ों बेगुनाह नागरिकों की जान ले ली।
1: Pakistan's campaign of military airstrikes against Afghanistan is causing huge civilian casualties and sufferings to the Afghan people. We reiterate Secretary General's deep concern at civilian casualties caused by airstrikes, cross-border firing, and targeted killings as detailed in UNAMA reports.
0: चारों तरफ से थू थू होने के बाद अब बौखलाया पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ रोना रो रहा है। वो पाकिस्तान जिसने दुनिया भर में आतंक फैलाया अब अफगानिस्तानियों को आतंक का गढ़ बता रहा है। पाकिस्तान के राजदूत आसिम इफ्तिकार उल्टा अफगानिस्तान पर टीटीपी और पीएलए को पनाह देने का बहाना बना रहे हैं। ऐसे झूठे आरोपों से पाकिस्तान न तो अपनी कायरता छिपा सकता है और न ही आतंकी होने का दाग मिटा सकता है। सच यही है कि जनरल आसिम मुनीर के हाथ बेगुनाह बच्चों और महिलाओं के खून से रंगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। पाकिस्तान अफगानिस्तान में बेगुनाह नागरिकों को मार रहा है लेकिन उसका दावा है कि उसने आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमले की बात कबूल कर ली है लेकिन बच्चों और महिलाओं की हत्या से पल्ला झाड़ने के लिए 26 आतंकियों को मारने का दावा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि मरने वाले 19 लोगों में ज्यादातर महिलाएं, ज्यादातर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। अफगानिस्तान के कुनार में पाकिस्तान के हवाई हमले में एक बच्ची की मौत हो गई और दो बच्चों समेत एक महिला घायल हो गई। यह हमला कल रात शाल्टन जिले के कारबूरो इलाके में हुआ। अब सूत्रों के मुताबिक हमले का शिकार हुए सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। उनमें से किसी का भी दूर दूर तक आतंक से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। और ये बात पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि क्या छोटे बच्चे, महिलाएं ये आतंकी थे जो पाकिस्तान कह रहा है कि 26 आतंकी मारे गए हैं। और चलिए एक बार फिर से आपको ईरान से जुड़ी एक बड़ी खबर, वो हम आपको बता देते हैं। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। ट्रंप ने लिखा है कि ईरान ने डील करने में बहुत लंबा वक्त ले लिया, अगर उन्होंने डील कर ली होती तो अच्छा होता, अब उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। और कीमत चुकाने वाली बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई बार कहते आए हैं और एक बार फिर से कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा वक्त ईरान ने ले लिया, सही वक्त पर अगर दस्तखत कर दिए होते, डील कर ली होती तो अच्छा होता, लेकिन अब उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। और यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बता रहा है कि हालात अभी और ज्यादा मिडिल ईस्ट में बिगड़ने वाले हैं। पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी युवक को भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करते हुए पकड़ लिया। यह कार्रवाई कृष्णा घाटी सेक्टर के सलोत्री इलाके में तैनात भारतीय सेना की सलोत्री बटालियन ने किया। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी के अनुसार पकड़े गए युवक की पहचान जावेद अहमद पुत्र सरफराज अहमद निवासी तेतरी नोट पीओजेके के रूप में हुई है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कंट्री। अब यह भी बताया जा रहा है कि युवक नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था, ये जिसको आप देख रहे हैं, तभी सतर्क सैनिकों ने उसे हिरासत में ले लिया। अब सूत्र बता रहे हैं कि युवक से भारतीय सेना द्वारा गहन पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि युवक भारतीय क्षेत्र में किस उद्देश्य से आया था, उसके पीछे कोई अन्य मकसद या कोई नेटवर्क तो नहीं था। फिलहाल सेना की ओर से उससे विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है ताकि कड़ियों को जोड़कर सच्चाई पता लगाई जा सके। शुरुआती पूछताछ पूरी होने और सभी कानूनी औपचारिकताएं संपन्न होने के बाद युवक को आगे की कार्रवाई के लिए पुंछ पुलिस के हवाले किया जाएगा, लेकिन अभी शुरुआती पूछताछ सेना की तरफ से की जाएगी। तो अभी फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए आज तक।
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach in association with
3: Bharat Ki Apni Electric Sawari.
4: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
5: Oh, ouch.
4: However you

अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ राम कथा से 2027 के सियासी महाभारत का संदेश सुनाते हैं। जिस अयोध्या का राम मंदिर बनवाकर भी 24 में जाति में वोट बंटने से अयोध्या से जुड़ी लोकसभा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, वहां राम के नाम पर अस्त्र शस्त्र सत्ता और विपक्ष में चलने लगा। पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, लिखा राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज किया। जब लखनऊ में बीजेपी विधायक की तरफ से कराई जाती राम कथा में मुख्यमंत्री पहुंचे तो नया सियासी संदेश सुनाई दिया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं निगेटिव ताकतें रावण काल की तरह से उठाएंगी तो उजाड़ करेंगी। क्या योगी का निशाना विपक्ष है, जहां पर वो खर दूषण मारीच ताड़का तक की बात करके एक ऐसी राम कथा का जिक्र करते हैं जिसमें चाचा मामा का नाम आते ही तंजनुमा हंसी आती है। इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में लग जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं, जब दावा हो रहा है कि हिंदू लड़कियों ही नहीं हिंदू लड़के तक को लग जिहाद में फंसाया जा रहा है, तब मुख्यमंत्री योगी लग जिहाद के खिलाफ श्री राम से सीख लेने को कहते हैं। लव जिहाद ही नहीं बल्कि त्रेता युग में खर दूषण मारीच के जरिए कलयुग में लैंड जिहाद तक का जिक्र योगी आदित्यनाथ करते हैं।

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
3: You snatched everything from me, but you cannot sort of snatch my morals. I will never bow down my head.
4: तो क्या ममता बनर्जी दिल्ली में बैठकर अपना राजनीतिक वजूद बचाने की जद्दोजहद कर रही हैं? क्या दिल्ली में कोई नई खिचड़ी पक रही है? ये सवाल फिलहाल दूर की कौड़ी लग सकता है, लेकिन ममता का हर कदम ये संकेत दे रहा है कि वो डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में लगी है, और डैमेज है कि रुक ही नहीं रहा। पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, आज सुष्मिता देव पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता दोनों छोड़ गयी।
5: देखिए, कारण कुछ व्यक्तिगत है, कुछ राजनीतिक है। बिना कारण के तो कोई कुछ करता नहीं है। मैं किस तरह की राजनीति करूंगी, कहां से करूंगी, ये मेरा निर्णय है और मेरा हक है। क्योंकि राज्यसभा मुझे एक पार्टी से मिला था, हाँ, जहां विधायकों ने वोट दिया था, बंगाल के लोगों ने इनडायरेक्टली दिया था। तो अगर पार्टी से इस्तीफा दिया तो फिर राज्यसभा सीट भी छोड़ना चाहिए।
4: आज सुबह सुष्मिता देव की असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात की तस्वीरें आईं। दोनों असम से हैं, तो लग यही रहा है कि सुष्मिता के इस्तीफे के पीछे हिमंता बिस्वा सरमा की बड़ी भूमिका है। ये भी तय लग रहा है कि इस्तीफे से खाली सीट पर उपचुनाव में बीजेपी सुष्मिता को उम्मीदवार बनाएगी।
5: सच्चाई तो ये है कि मेरी राजनीति बंगाल में नहीं है, मेरी राजनीति असम में है, और मुझे असम में ही राजनीति करना है। तो असम में जो राजनीतिक परिस्थिति है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मैं असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा से मिलके आई हूँ, और देखिए, अगर मैं किसी पार्टी में जाना चाहती हूँ, वो तो पार्टी का डिसीजन होता है, मेरा डिसीजन तो नहीं होता।
4: लेकिन ममता के सामने बड़ा सवाल ये है कि अब उनका क्या होगा। शायद वो आगे का रास्ता तलाश रही है। खुद ममता बनर्जी की सोनिया गांधी से मुलाकात हो चुकी है, राहुल गांधी से अभिषेक बनर्जी मिल चुके हैं, लेकिन टीएमसी के भीतर बगावत की आग ठंडी करने में ममता बनर्जी अब तक नाकाम रही हैं।
6: दो साल नहीं, काकुली घोष रिश्तेदार 40 साल से है, मैं 17 साल से हूँ। जो लोग अभी इस बार पहली बार जीत कर आए हैं, एक साल के लिए, दो साल के लिए, उसके लिए एक दो साल होगा, हम लोग के लिए इतना दिन। जीतने के बाद भी बोले थे, बोलने की कोशिश किए थे, वहाँ पे सिस्टम नहीं है बोलने का, बोलने से सब रोकते हैं, जो नहीं बोलना है नहीं बोलना है। तो और अगर बोले भी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलते, आप 7 दिन 10 दिन इंतजार करो।
4: तो अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने दिल्ली आई ममता बनर्जी यहां से क्या हासिल कर लौटती है, क्योंकि कोलकाता में तो उनके लिए हर दिन भारी साबित हो रहा है। आज तक ब्यूरो।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मोदी ने बतौर निर्वाचित पीएम का बनाया रिकॉर्ड, नेहरू को छोड़ा पीछे, कैबिनेट में हुआ स्वागत, एनडीए की बैठक में चंद्राबाबू नायडू ने अभिनंदन का पेश किया प्रस्ताव, कांग्रेस ने उठाए सवाल। टीएमसी पर चौतरफा आफत, राज्यसभा से इस्तीफे के बाद बीजेपी में शामिल हो सकती है सांसद सुष्मिता देव, ऋतव्रत का दावा, 64 विधायकों ने छोड़ा ममता का साथ, कोलकाता से एक और तृणमूल पार्षद गिरफ्तार। दिल्ली में राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की अहम बैठक खत्म, कांग्रेस और टीएमसी में गठबंधन की संभावना पर चर्चा की खबर, बंगाल के हालात पर भी बात। उन्नाव में संत मिलिंदास बाबा हत्याकांड में प्रशासन का सख्त एक्शन, मुख्य आरोपी और सभासद अतीक के मकान पर चला बुलडोजर, इसी इमारत में मर्डर होने की जानकारी। पाक अधिकृत कश्मीर में आज फिर सुलगी विरोध की आग, शहबाज और मुनीर के खिलाफ नारेबाजी, अब तक 27 प्रदर्शनकारियों की मौत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी, दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल मध्य प्रदेश में हो रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रही राजनीति पर होगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी जो अब तक वोट चोरी का आरोप लगाती रही है, उसने आरोप लगाया है कि इस बार उनकी राज्यसभा सीट ही चोरी हो गई। मामला यह है कि एमपी में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव, बीजेपी के पास 2 सीट के लिए जरूरी विधायक है और तीसरी सीट के लिए 10 विधायकों की कमी थी, लेकिन बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार महेश केवट को भी उतार दिया, क्योंकि कांग्रेस के पास 1 सीट के लिए जरूरी 58 वोट से 4 विधायक अधिक थे। 8 जून को नामांकन की आखिरी तारीख थी, कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन कराया और विधायकों की खरीद फरोख्त के डर से उन्हें 9 जून को बेंगलुरु भेजने की तैयारी कर ली थी, लेकिन 9 जून को स्क्रूटनी से पहले बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार महेश केवट ने मीनाक्षी के हलफनामे को चैलेंज कर दिया। जांच में पता चला कि मीनाक्षी ने 2025 में हैदराबाद में हुई एक अदालती शिकायत का ब्यौरा जानबूझकर नहीं दिया है, दोनों ओर से वकीलों और दलीलों हुई लेकिन नामांकन रद्द किया गया। अब बीजेपी की लॉटरी लग गई है, तीनों सीट कब्जे में आती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस ने कोहराम मचा दिया है। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से फर्जी मामले को लेकर नामांकन रद्द कराया गया है, इसे अदालत में चुनौती देंगे। उधर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मीनाक्षी के खिलाफ शिकायत का राज कांग्रेस के नेताओं ने ही बीजेपी को बताया और अंदरूनी खिंचतान से जूझ रही कांग्रेस के नेताओं ने ही मीनाक्षी का नामांकन फॉर्म जानबूझकर गलत भरवाया, यानी घर के भेदी ही कांग्रेस को ढहाने का काम कर रहे हैं। इस तमाम सियासी लड़ाई में कानूनी पक्ष क्या कहता है, संवैधानिक पक्ष किसके साथ में है और लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली में सामान्य नैतिकता क्या कहती है, इन तमाम मुद्दों पर आज के दंगल में हम बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।
3: तरफ मोदी राज के 12 बरस पर उत्सव जैसा माहौल और दूसरी तरफ भोपाल से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता तक सियासी दाव पेच में उलझी कांग्रेस पार्टी। एक तरफ 12 साल के मोदी राज के उपलक्ष में केंद्र के मंत्रियों से लेकर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों तक की तरफ से पूजा प्रार्थना भजन कीर्तन और दर्शन, दूसरी तरफ लोकतंत्र बचाने की लड़ाई के नाम पर कांग्रेस पार्टी का भोपाल से लेकर दिल्ली तक धरना प्रदर्शन, क्योंकि कांग्रेस की माने तो चुनावी धांधली की तोहमतें झेलते चुनाव आयोग की नाक के नीचे इस बार वोट तो नहीं लेकिन सीट ही चोरी हो गई। दरअसल मामला राज्यसभा चुनाव का है, जिसमें 18 जून को देश के 12 राज्यों की कुल 26 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है। इनमें से मध्य प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक, इन 3 राज्यों में कांग्रेस का पेच फंसा और अब मध्य प्रदेश में तो सीट ही छिन गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ खेला हो गया, क्योंकि नामांकन के आखिरी दिन पर्चा भरने वाली कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का पर्चा ही रद्द हो गया।
4: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सत्तारूढ़ दल की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनके काम कर रही है।
5: मुख्य मुद्दा यह है कि कांग्रेस ने स्वयं ने गलत फॉर्म भर के अपना फॉर्म रिजेक्ट कराया।
6: कांग्रेस ने जान करते हार के डर से षड्यंत्र पूर्वक उनके प्रत्याशी के फॉर्म में गलती रखी।
5: उसको मालूम था कि चुनाव होगा तो उनके कम से कम 25 से 30 विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे आत्मा की आवाज पर, इसलिए फेस सेविंग के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस ने स्वयं ने अपना फॉर्म रिजेक्ट कराया है।
6: जो अपने नेतृत्व की छाप और धाक उनकी पार्टी में अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो बीजेपी क्या करेगी।
3: बीजेपी की सियासी बातें और कानूनी पहलू और। दरअसल बीजेपी की तरफ से एमपी में तीसरी राज्यसभा सीट के उम्मीदवार महेश केवट ने रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत की थी कि मीनाक्षी ने हलफनामे में सच छिपाया है। इसके बाद एमपी राज्यसभा चुनाव में रिटर्निंग अफसर और एमपी विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा की जांच में पता चला कि मीनाक्षी नटराजन ने हलफनामे के फॉर्म 26 में अपने खिलाफ एक अदालती मामले की जानकारी नहीं बताई। इसके अलावा हलफनामे के पेज संख्या 5, 6 और 7 पर लगी सत्यापन की मुहरें भी अधूरी और अस्पष्ट थी।
4: जब उन्होंने फाइनल ऑर्डर्स दिए, उन फाइनल ऑर्डर्स में हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हमारे वकीलों ने, उसका उसमें कोई जिक्र तक नहीं किया।
3: मीनाक्षी और पूरी कांग्रेस मानती है कि उनके उम्मीदवार ने ऐसा कुछ नहीं छिपाया जिसे चुनाव आयोग को बताना जरूरी था। और वो मामला कुछ यूं था कि हैदराबाद की एक पूर्व महिला पार्षद ए श्रीलता ने कांग्रेस नेता कुंभम शिवकुमार रेड्डी पर प्रताड़ना और शोषण की शिकायत की थी। अगस्त 2025 में हैदराबाद की फोर्थ एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में 7 कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ दी गई निजी शिकायत में एआईसीसी प्रभारी मीनाक्षी को प्रतिवादी नंबर 4 बनाया गया। मीनाक्षी पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप था। इस पर अदालत ने बीएनएसएस की धारा 223 के तहत मीनाक्षी नटराजन से जवाब मांगा और मीनाक्षी ने 24 अक्टूबर 2025 को जवाब दे दिया, जिसे अदालत ने रिकॉर्ड पर ले लिया। लेकिन पीड़ित महिला का बयान अब तक दर्ज नहीं हो सका है।
4: जो एक लीगल नोटिस है जिसका कोई अभी तक कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है, ये प्री कॉग्निशन स्टेज में था और उससे कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ, कोई केस नहीं है।
3: अब इसे चुनाव आयोग का पक्षपाती रवैया बताते हुए कांग्रेस अदालती लड़ाई लड़ने की बात कहती है। अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर विवेक तनखा तक दलील दे रहे हैं। लेकिन चुनाव नियम 1961 का नियम 4A कहता है कि हर उम्मीदवार को फॉर्म 26 में अपनी संपत्ति, देनदारी, शैक्षणिक योग्यता और किसी भी न्यायालय में लंबित आपराधिक केस या शिकायत की पूरी जानकारी देनी है। सच छिपाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36(2) के तहत नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता है। मुसीबत ये कि रिटर्निंग अफसर के फैसले को चुनौती देने तक चुनाव नहीं रोका जा सकता। चुनाव बाद मीनाक्षी आरपी एक्ट की धारा 80 के तहत हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दे सकती हैं, जिसमें नामांकन गलत तरीके से रद्द पाए जाने पर चुनाव रद्द हो सकता है। मीनाक्षी के नामांकन रद्द होने पर बीजेपी में जो खुशी और कांग्रेसी खेमे में जो मायूसी दिख रही है, उसके पीछे की सियासत है। दरअसल एमपी में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए कुल 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी के पास 2 सीटों के लिए जरूरी विधायकों का मत है, तीसरी सीट के लिए 10 विधायक कम है, जबकि कांग्रेस के पास 1 सीट के लिए जरूरी प्रथम वरीयता के 58 वोटों की जगह 62 वोट मौजूद थे। कांग्रेस को विधायकों की क्रॉस वोटिंग का खतरा था, इसलिए उन्हें बेंगलुरु शिफ्ट किया जा रहा था। 38 विधायक परिवार समेत चार्टर्ड प्लेन में बैठ भी चुके थे, तभी रिटर्निंग अफसर का फैसला आया, विमान रनवे से लौट गया। अब बीजेपी कह रही है कि दिग्विजय सिंह की खाली हो रही सीट पर जिन नेताओं को जगह नहीं मिली, उन्होंने ही मीनाक्षी के खिलाफ बीजेपी को सबूत दिए और कांग्रेस के हाथ से ये सीट हट गई। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: वही दूसरी तरफ झारखंड में परिमल नाथवानी, जो एनडीए बैक कैंडिडेट है, उन्हें समय दिया गया है आज तक का, और उसके बाद आज शाम के 5 बजे के बाद उनके बारे में भी फैसला हो सकता है, क्योंकि उनके नामांकन को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। तो क्या यह दोहरा मापदंड है या कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी कला, इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ प्रदीप भंडारी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, निखत अब्बास कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल हो रही है, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट, रजत सेठी पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये सारे लोग इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी का नामांकन सही कानूनी आधार पर रद्द हुआ है? क्योंकि इसी बात को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर्स का, वर्डिक्ट्स का दावा भी इस पे रखा जा रहा है और उसका भी आधार इसमें लिया जा रहा है। दूसरा सवाल, क्या राज्यसभा चुनाव में बीजेपी दूसरे दलों के विधायकों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा दे रही है? इसी डर से कांग्रेस के विधायक बेंगलुरु शिफ्ट किए जा रहे थे। और तीसरा, क्या मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कराने के पीछे कांग्रेसियों का ही हाथ है? बीजेपी का दावा है कि भाई ये जानकारी हमें मिली कहां से, तेलंगाना की जानकारी हमारे पास कैसे आई? और इस वक्त मीनाक्षी नटराजन मामले में निर्वाचन आयोग से खबर आ रही है कि निर्वाचन आयोग मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी का पर्चा खारिज होने के बाद कांग्रेस की आपत्तियों पर जल्द ही फैसला करेगा। आयोग ने अपने लीगल पुल के वरिष्ठ वकीलों और संविधान और चुनावी प्रक्रिया के विशेषज्ञ विधि वक्ताओं से सलाह मशवरा कर रहा है। उनके मत आजमाए जाएंगे और उसके बाद ही आयोग निर्णय लेगा। वैसे आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक कल नामांकन पत्र वापस लेने का की समय सीमा खत्म हो रही है, कल आखिरी दिन है। इससे पहले आयोग का निर्णय सार्वजनिक हो सकता है। तो कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आज दोपहर को 12 बजे चुनाव आयोग में मुलाकात की थी। संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कल तक फैसला हो सकता है या हो सकता है कि आज रात तक फैसला हो, लेकिन कुछ कानूनी सवाल इस पूरे मामले पर उठाए गए हैं, रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन के सामने रखे गए थे। क्या इसीलिए लीगल एडवाइस लेना इसमें जरूरी है? क्या चुनाव आयोग की इस बारे में कुछ बैठक हुई है और कब तक इसका फैसला आ सकता है? संजय,
7: इसमें निर्वाचन आयोग के उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया है कि जैसे ही कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल मिल के गया है, उसके बाद उन्होंने जो भी दस्तावेजी सबूत दिए हैं, उन सबूतों को लेकर आयोग ने सबसे पहले अपनी जो लीगल एक्सपर्ट टीम है, जो पूल है, उनके वरिष्ठ वकीलों से संपर्क किया है और उनको ये बताया कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। क्योंकि आयोग के पास दो तरह की चीजें हैं। एक तो ये कि जो कानून कहता है वो ये कहता है कि रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय अंतिम होता है, यानी लास्ट वर्ड होता है। लेकिन इसके बावजूद दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग को कुछ विशेष अधिकार भी हैं। उन अधिकारों का प्रयोग यहाँ पर किया जाए या नहीं किया जाए, इसे लेकर निर्वाचन आयोग अपने विधिवेत्ताओं से राय ले रहा है। उनकी राय आने के बाद फिर आयोग इस पर डिसाइड करेगा, यानी फुल कमीशन की मीटिंग में डिसाइड करेगा कि आखिर इस राय को किस तरह से लिया जाए और उसके आगे रिपरकशन क्या होंगे। आयोग ये भी देखेगा कि अगर ऐसा किया जाता है, इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया जाए, तो क्या आगे फ्लडगेट तो नहीं खुल जाएगा? फिर आगे की प्रक्रिया, भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा उनके निर्णय का? इन तमाम चीजों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आयोग, मुझे लग रहा कि देर रात गए तक,
0: क्योंकि चुनाव आयोग जो भी फैसला लेगा मानकर चल रहा है कि भविष्य में भी इस तरीके की स्थितियां हो सकती है। और हम देख रहे हैं कि झारखंड के भीतर तो समय दिया गया आज शाम को 5 बजे तक, भी अभी तक फैसला आया नहीं। हो सकता है कि थोड़ी देर में फैसला आएगा। संजय शर्मा, आप नजर बनाए रखें क्योंकि झारखंड का भी फैसला आ सकता है और चुनाव आयोग की तरफ से भी मीनाक्षी नटराजन के मामले में भी फैसला आ सकता है। दोबारा आपके पास हम आएंगे। लेकिन प्रदीप भंडारी, क्या ये जरूरी था? क्या आज की स्थिति में जिस तरीके की ये पूरा मामला लग रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि सवाल इस पर उठेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि दोहरे मापदंड का सवाल, खास करके जिस तरीके से जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो फैसला ले रहे हैं, झारखंड में अलग फैसला और यहां पर अलग फैसला?
8: देखिए साहिल जी, सच्चाई की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये जो पूरा का पूरा केस है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य का है? नहीं। कौन से शासित राज्य का है? तेलंगाना का है। तो क्या कांग्रेस पार्टी जब ये नॉमिनेशन फॉर्म भर रही थी, तो क्या कांग्रेस पार्टी को ये नहीं पता था कि तेलंगाना के अंदर उनके प्रति जो है एक पेंडिंग क्रिमिनल केस है? कांग्रेस पार्टी को मोरालिटी की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको मोरालिटी की बात डीएमके ने बता दी कि भाई पीठ में तुम छुरा घोंपते हो, और अखिलेश ने बता दी कि आप जो है बड़ा दिल दिखाते हो। तो पहली बात जो कांग्रेस पार्टी ने किया है वो इलीगल एक्ट करा है, और कांग्रेस के लोगों ने ही कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया, ये सच्चाई की बात है। अब मैं लॉ पे आना चाहता हूं, क्योंकि आपने अपने ओपनिंग वक्तव्य में बोला था लॉ क्या कहता है। आप आर्टिकल 80 के अंदर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर सेक्शन 36 में जाइए। सेक्शन 36 कहता है कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास अधिकार है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का अगर एक सब्सटेंशियल डिफेक्ट पाया जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 2013-14 का, पी सताशिवम की बेंच का, रिसर्जेंस इंडिया वर्सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें कहा गया है कि पेंडिंग क्रिमिनल केस को भी राइट टू नो के तहत अंडर एडीआर 2002 केस के अंदर सभी कैंडिडेट्स को बताना पड़ता है। अब अगर सिर्फ ये कांग्रेस के कैंडिडेट से हुआ होता तो समझ में आता। ये 2021 का याद करिए आप, नवंबर 27, 2021 भारतीय जनता पार्टी के नीलगिरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट थे एस गुरुमूर्ति, उनका कैंडिडेचर और नॉमिनेशन भी रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि फॉर्म ए और फॉर्म बी के अंदर गलती पाई गई थी। अभी 2024 के अंदर भीमपुर के बीरभूम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे देवाशीष धार, उनका भी जो है कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि वो नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं बता पाए थे। तो हमने तो जाके रोए नहीं, हमने तो कहा दिक्कत हो चुकी है, ये जो यहां पे हुआ है टेक्निकल गलती नहीं सब्सटेंशियल दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रियंका कैंप और राहुल कैंप आपस में लड़ रहे हैं तो आप हमें क्यों दोष दे रहे हैं? भाई हमको अगर कोई एक सीट मिल रही है तो हम क्या जीतेंगे नहीं? क्या कांग्रेस पार्टी यहां पे क्या एनजीओ बनाने के लिए? वो भी तो जीती तमिलनाडु के अंदर चुनाव, उसने भी जाके अपने पीठ में छुरा घोंप दिया। तो ये मोरालिटी की बात मत करिए, कांग्रेस को देखना चाहिए कांग्रेस
0: दो पहलू इसमें आप यहां पर नजर आते हैं। साफ शब्दों में प्रदीप भंडारी आपने जो ओपनिंग रिमार्क किया है उसमें दो पहलू निकल कर आते हैं। पहले हम लीगल मुद्दे पर बात करेंगे और उसके बाद हम दूसरे पहलू पर भी बात करेंगे। पहला मुद्दा जो होता है वो लीगल का मुद्दा है और इसमें आपने दो सवाल यहां पर उठाए हुए। आपने कहा कि आरपी एक्ट के 33 वा जो सेक्शन है उसके तहत आपने यहां पर मुद्दा उठाया हुआ है। कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ये भी कहते हैं कि भाई आप उस चीज का कॉग्निजेंस लीजिए जिसमें कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए हुए हैं किसी भी अपराधी के खिलाफ या जो कैंडिडेट है उसके खिलाफ अगर कॉग्निजेंस लिया हुआ है, चार्जशीट का कॉग्निजेंस लिया हुआ है, चार्जेस फ्रेम हुए हैं तो उसका कॉग्निजेंस ले सकता है। मनीष सिसोदिया का अलीबे केस है, एफआईआर का जिक्र उनके एफिडेविट में नहीं था लेकिन उसके बावजूद अदालत ने कहा एफआईआर कोई ये बायना नहीं है कि उसके वजह से आप किसी का डोमिनेशन रद्द कर सकते हैं अगर एफआईआर का जिक्र नहीं किया गया है। तो दोनों तरफ से कई सारे मुद्दे उसमें नजर आते हैं। और जो लेटेस्ट मैं आपको कोट करना चाहूंगा, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा हुआ है कि एफआईआर इज रजिस्टर्ड ऑन अ प्राइवेट कंप्लेंट, इवन देन द लॉ इज वेरी क्लियर, 33 आरपी एक्ट रेड विद रूल 4 टेक्स यू टू फॉर्म 2C और उस फॉर्म 2C के तहत देयर इज अ लेसर ऑब्लिगेशन, रिक्वायर्स ओनली डिस्क्लोजर ऑफ केसेस वेयर द कैंडिडेट हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ मोर देन 2 years। तो अगर कन्विक्शन है, कन्विक्शन हो सकता है, कॉग्निजेंस लिया हुआ है तभी आपको यह करना चाहिए। यहां पर तो यह प्राइवेट कंप्लेंट है और वो भी अदालत में, उसका कॉग्निजेंस खुद अदालत ने नहीं लिया हुआ है। आपको भी पता है बीएनएस की धारा 223 के तहत यह तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है, क्या आपको लगता है कि थोड़ी सख्ती बरती गई? और दूसरा सवाल मेरा इसके साथ में यह था कि दोहरे मापदंड का, झारखंड में परिमल नाथवानी ब्लैंक छोड़ देते हैं लेकिन उनको कहा जाता है कि आपको समय दिया जाएगा, शाम को 5 बज चुके हैं अभी तक उनके बारे में फैसला नहीं हुआ है। तो ये दोहरे मापदंड की बात अगर कोई उठा रहा है तो उसमें गलत होगा क्या? पहले लीगल पॉइंट पर बात करेंगे फिर पॉलिटिक्स में भी जाएंगे आप।
8: चलिए मैं लीगल पॉइंट पर जवाब दे देता हूं। आपने पहली बात करी झारखंड की, 2008 के अंदर ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है इनको सबसे पहले जेएमएम ने सपोर्ट करा था और जेएमएम के लोग 2008 में इनके प्रस्तावक बने थे जेएमएम के साथ कांग्रेस पार्टी अलायंस में। दूसरी बार जब ये इंडिपेंडेंट के रूप में राज्यसभा के अंदर आए थे वाईएसआर ने इनका सपोर्ट करा था, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का पूर्व में समर्थन कर चुका है। तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस पार्टी जाने, कांग्रेस पार्टी का राज्य पॉइंट नंबर 1 और वहां के विधायक जो
0: है।
8: अब मैं आ जाता हूं, अरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, मैं कह रहा हूं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है ना, सिर्फ एनडीए बैक थोड़ी है। अगर कांग्रेस पार्टी के जेएमएम को आपत्ति है तो दर्ज कर दे, कांग्रेस पार्टी के जेएमएम अलायंस पार्टनर को आपत्ति है वो दर्ज कर दे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही है। अब मैं आता हूं आपके फॉर्मर आर्ग्यूमेंट पे। इसमें जो लास्ट प्रेसिडेंट केस है साहिल जी वो 2013-14 का सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच का केस है, रिसर्जेंस इंडिया वर्सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सेक्शन 33 नहीं सेक्शन 36 के अंदर डिसाइड होता है जिसमें नॉमिनेशन की स्क्रूटिनी होती है। उस नॉमिनेशन की स्क्रूटिनी के अंदर सब्सटेंशियल डिफेक्ट और टेक्निकल डिफेक्ट की बात है और राइट टू नो के तहत सब्सटेंशियल डिफेक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी पेंडिंग क्रिमिनल केस है उसको आपको बताना है, आप उसको हाइड नहीं कर सकते।
0: मैं आपको और एक लेटेस्ट केस देता हूं, लगता है कि प्रदीप भंडारी और एक लेटेस्ट केस देता हूं लिया है तो निखत के पास जाने के पहले और एक लेटेस्ट केस। आप 2013 की केस की बात कर रहे हैं, नहीं भाई प्रदीप भंडारी मैं आपको लेटेस्ट केस दे देता हूं ना, आप 2013 की बात कर रहे हैं, 2026 जनवरी 2026 दिल्ली हाईकोर्ट डिसमिस द इलेक्शन पिटीशन अगेंस्ट आप लीडर मनीष सिसोदिया फॉर फेलिंग टू डिस्क्लोज 1 FIR अगेंस्ट हिम। The Delhi High Court held it is clear that mere registration of an FIR does not by itself imply that a criminal case is pending against a person for the process. ये भी तो जनवरी 2026 की केस की मैं जिक्र कर रहा हूं दिल्ली हाईकोर्ट के। जी
8: दो दो दो अब मैं आपको, मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। इसमें टेक्निकल डिफरेंस है। इस केस के अंदर पेंडिंग एफआईआर की डिस्क्लोजर की बात है। यहां पे जो कैंडिडेट है मीनाक्षी नटराजन, शी हैज ऑलरेडी कम्युनिकेटेड विद रिस्पेक्ट टू दी पेंडिंग केस विद दी कोर्ट, और उन्होंने जो है ये अपनी तरफ से कम्युनिकेशन किया है। सो शी वॉज कॉग्निजेंट अबाउट दिस, शी विलिंगली डिड नॉट डिस्क्लोज इट। विलिंगली और अनविलिंगली डिस्क्लोजर में फर्क है। अब छोटी सी बात, अगर इनको लगता है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने डिसीजन गलत लिया है, तो भारतीय जनता पार्टी 2021 में कोर्ट में गई थी, जब कोर्ट ने हमारे खिलाफ जो है जजमेंट दिया था, हमने कोर्ट के जजमेंट को स्वीकारा था। हम 2024 के अंदर भी जब हमारी कैंडिडेचर बीबूम का रिजेक्ट हुआ था, तब भी हम कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने हमारे खिलाफ ऑब्जेक्शन दिया था, हमने उसको स्वीकारा था। कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े वकील हैं, वो जा सकते हैं कोर्ट में। इनको आत्मचिंतन इस बात का करना चाहिए, कांग्रेस के अंदर कौन कांग्रेस के अंदर पीठ में छुरा घोंप रहा है। लीगल आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में चैलेंज करिए, फालतू विक्टिम कार्ड मत खेलिए,
0: विक्टिम कार्ड मत खेलिए। निकट अब्बास, अदालत का दरवाजा खुला है, ईसीआई का दरवाजा खुला है, आप तो गई है उनके पास कांग्रेस पार्टी।
9: साहिल जी, मुझे समझ नहीं आ रहा आप इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं कि भंडारी जी को समझ आ जाए, एक टेक्निकल पॉइंट समझ आ जाए। इतना बेसिक पॉइंट है पर वो समझना ही नहीं चाह रहे, आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं। बहुत बेसिक पॉइंट, मैं दोबारा से बोल देती हूँ। एज पर द इंडियन लॉ, अ प्राइवेट कंप्लेन इज नेवर इक्वल्स टू क्रिमिनल केस। दिस इज वेरी बेसिक भंडारी जी। पॉइंट नंबर टू, जो आपने भी साहिल भाई रिपीटेडली बोला कि उम्मीदवार को वही नामांकन में मामले घोषित करने होते हैं जो दो शर्तें जिनमें लागू होती हो। पहली ये कि जो अपराध की वो 2 या 2 साल से अधिक हो, दूसरा ये कि कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दियो। मीनाक्षी नटराजन जी के केस में प्लीज भंडारी जी सुनिए कि चार्जशीट तो बहुत दूर की बात है, कोर्ट ने अभी कॉग्निजेंस नहीं लिया है। अब साहिल भाई, क्या बात आज सिर्फ मीनाक्षी नटराजन जी की है? नहीं साहिल भाई, बात ना उससे ऊपर है। सवाल आज ये उठ रहा है कि क्या लोकतंत्र की हत्या सिर्फ एक दिन में करी जा सकती है? नहीं, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोगों का सिस्टम लगता है और सिस्टम बनता है, और वो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी बना चुकी है कि अब उन्हें चुनाव तो लड़ना नहीं है, सिर्फ चुनाव तो जीतना नहीं है, उनको ये इंश्योर करना है कि पूरा इलेक्टोरल सिस्टम, पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस इनके कब्जे में आ जाए और इनके कंट्रोल में आ जाए। ये कैसी इलेक्शन कमीशन है जो विपक्ष की बात ही नहीं सुनती जब तक कि विपक्ष धरना नहीं दे देता? ये कौन सा संस्थाओं का कंट्रोल कर रही है भारतीय जनता पार्टी? और पैटर्न देखिए साहिल भाई, पैटर्न देखिए कि जब भी इन्हें कभी वोटर को दबाना हो तो एसआईआर करा देते हैं, इन्हें अगर विपक्ष को दबाना हो तो एजेंसीज को भेज देते हैं, इन्हें स्टूडेंट को दबाना हो तो पेपर लीक हो जाता है, और कभी भी साहिल भाई इस सरकार को कोई आईना दिखा दे तो उस व्यक्ति को दबाने के लिए ये राष्ट्र विरोधी कह देते हैं। अरे मैच खेलना है तो फेयर खेलो ना। ये क्या कि बॉल भी आप ही डालोगे, बैट्समैन भी आप ही का है,
0: लेकिन निकट जी, लेकिन निकट जी,
9: अरे मैच खेलना
0: इस पूरे मामले में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, निकट जी एक मिनट, अगर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने कोई ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, निकट जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो उसने अपने तरीके से इस पे फैसला लिया है। ये बात सही है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा हुआ है कि ऐसे चीजों पर नामांकन रद्द नहीं होना चाहिए जिसका असर चुनाव के आउटकम पर नहीं होने वाला था, ये कई बार कहा हुआ है, लेकिन फिर भी वो डिस्क्रिशन रिटर्निंग ऑफिसर का है। क्या आपको क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे? झारखंड में तो आपकी सरकार है, आमतौर पर राज्यसभा के चुनाव में विधानसभा के जो सचिव होते हैं वही रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग किसी को वहां पर अपॉइंट करता है।
9: साहिल भाई, मैं हमेशा कहती हूं,
0: झारखंड में तो आप ही की सरकार चल रही है, वहां पर समय दिया गया है।
9: साहिल भाई मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, और भंडारी जी को पिछली बार भी बोली थी कि हम यहाँ पर अंधभक्ति का चश्मा पहन के मोदी जी से डिग्री लेने तो बैठे नहीं है अंधभक्ति की, पहली बात। दूसरी बात, हम तो टेक्निकल पॉइंट कर रहे हैं पे बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं नामांकन में जो मामले आपको एफिडेविट में बताने होते हैं, क्या उसमें कोई भी एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी आप बात बता सकते हो कि हाँ ये मामला बताने की जरूरत थी जिसमें कोर्ट ने अभी तक कॉग्निजेंस भी नहीं लिया? पहली बात, ये लोकतंत्र के बड़े बड़े ढोल पीटते हैं, इनके ढोल फट चुके हैं, इनके जो लोकतंत्र के झूठे ढोल वो फट चुके हैं, जनता के सामने सच आ चुका है कि किस प्रकार ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं। अरे देखिए बंगाल में क्या कर रहे हैं, देखिए कैसे सांसदों को तोड़ रहे हैं, कैसे देखिए चुपका चुपकी सी मीटिंग, ये शोभा देता है
0: नहीं, देश जरा, के जरा, वो सारी चीजों पर हम बात करेंगे, फिलहाल हम मध्य प्रदेश पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और प्रदीप भंडारी इसका रिबटल देंगे, लेकिन मैं दोबारा निखत जी मेरा सवाल रिपीट करता हूं मध्य प्रदेश के। आपको पता है कि राज्यसभा के चुनाव में उस विधानसभा के जो सचिव होते हैं, विधिमंडल के जो सचिव होते हैं, वही रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में, वहां के विधानसभा के जो सचिव है वो रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर फैसला ले रहे हैं। उसी तरीके से झारखंड में आपकी सरकार है, वहां के रिटर्निंग ऑफिसर समय दे रहे हैं। परिमल नाथवानी को जो एनडीए बैक कैंडिडेट है वो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है लेकिन एनडीए बैक कैंडिडेट है, ये फर्क क्यों हो रहा है? सिर्फ वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके लिए विधिमंडल के सचिव जो है, विधान भवन के सचिव जो है, वो आपको लगता है कि पॉलिटिकल फैसला ले रहे हैं? मेरा सवाल ये है, उसके बाद प्रदीप भंडारी रिपटल देंगे।
9: नहीं, ये दोनों बातें अलग हैं, ये दोनों बातें अलग हैं। और ये मैं पैटर्न देखने को कह रही हूँ कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है और कैसे इलेक्शन कमीशन का मिसयूज किया जा रहा है। ये मैं आपको मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रही हूँ। अभी भी एक भी दफा भंडारी जी एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं कि जो दो शर्तें लागू ही नहीं होती उनको एफिडेविट में दर्ज करने के लिए, उस बात पर आज इलेक्शन कमीशन और ये साठगांठ करके क्यों बैठे हैं। हम तो खुला कह रहे हैं कि जब विपक्ष की बात नहीं सुनी जाएगी, विपक्ष को समय नहीं दिया जाएगा, तब, और जब विपक्ष को धरना करना पड़ेगा, उसके बावजूद अगर आप जवाब नहीं देंगे तो साहिल जी इस तरह की बातें और जनता तक पहुंचेगी और पहुंच भी रही है कि किस प्रकार ये लोग सिर्फ इसी तरह के काम कर रहे हैं।
8: देखिए साहिल जी, साहिल जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल कैंप बनाम प्रियंका कैंप चल रहा है, कांग्रेस बनाम कांग्रेस चल रहा है। इसमें ये बेचारे जो है किसी भी फर्जी विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं, फर्जी जो है डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट की बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक वोट से गिरधर गुमांग को उड़ीसा से बुला के वाजपेयी जी की सरकार गिराई थी और इन्होंने सबसे ज्यादा बार आर्टिकल 356-354 अप्लाई किया। तो ये मोरालिटी की बात ना करें, ये इनकी सच्चाई है। ये पढ़ के नहीं आई, इनको ये नहीं पता है कि ये बात प्राइवेट कंप्लेन नॉन प्राइवेट कंप्लेन की नहीं है। ये बात है कि क्या कैंडिडेट को विलिंगली पता था कि उसके पास उसका केस है, जिसने जिस कैंडिडेट ने अपने एफिडेविट के अंदर वो केस को रोका और इसके केस के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर ने जो यहां पे मीनाक्षी नटराजन ने कम्युनिकेट किया शी को पता था उसके, और तेलंगाना से आया। इनको तो ये सोचना चाहिए वो कांग्रेस के कौन से नेता है तेलंगाना से जो बीजेपी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इनको वो नहीं पड़ी है। पर इनको ये पता है कि, और इनको लग रहा है कि सुप्रीम, अगर इनको लग रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत किया है तो अब ये कोर्ट चले जाए, पर ये कोर्ट नहीं जाएंगी क्योंकि इनको पता है कि कोर्ट के अंदर इनका मामला जो है लंबित हो जाएगा। अब मैं फैक्चुअली बात करना चाहता हूं और एक बिल्कुल सिंपल फैक्ट की बात करना चाहता हूं। मुझे बताइए, ये बड़ी-बड़ी मोरालिटी की बात कर रही है, तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस में विलय करने की बात कौन चला रहा है? ये लोग सोच रहे हैं ना, डीएमके को किसने पीठ में छुरा घोपा? कांग्रेस पार्टी ने घोपा ना। अखिलेश यादव नाराज है, कांग्रेस पार्टी नाराज है ना, कांग्रेस पार्टी को दे रही है ना। तो यहाँ पे
0: हम जरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर बात करते हैं,
8: कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी
0: थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ। पॉलिटिकल मोरालिटी पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को बात नहीं करनी चाहिए, हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर चुनाव का मुद्दा है।
8: कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अंदर जी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अंदर फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। मेरे हिसाब से 2013 का सुप्रीम कोर्ट का 3 जज बेंच का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट स्पष्ट करता है कि कोई भी कैंडिडेट विलिंगली अपनी चीज को डिस्क्लोज अगर नहीं करता है तो उसके केस में सब्सटेंशियल
0: मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी सबक नहीं सीख रही
8: जा सकता है। अगर कांग्रेस को कुछ और लगता है
0: 2019 के बाद, 2014 के बाद हर राज्यसभा चुनाव में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव भी लड़ती है, फिर गुजरात का अहमद पटेल का चुनाव भी रात को 2:30 बजे तक इलेक्शन कमीशन में सबसे पहले लड़ा गया था। एक अगर आप उसमें, क्योंकि इतने बड़े लॉयर्स आपके पास है, अगर उसका मेंशन कर देती तो क्या फर्क पड़ता? उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं। और यहां पर बीजेपी सवाल उठा रही कि हमें पता कैसे चला तेलंगाना का मामला, हमें कैसे पता चला?
9: क्या साहिल जी को मैटर करता है?
0: मध्य प्रदेश के मंत्री बोल रहे हैं हमें तो बताया गया।
9: देखिए, आपसी रंजिशें किसी को किसी से भी हो सकती है। मैं तो जानना चाहती हूँ, ये पूछ रहे कि किसी को पता कैसे चला। अरे पहले तो आप बताइए कि सुवेंदु अधिकारी को जब आप अपनी पार्टी में बुला रहे थे, हिमंत बिस्वा को अपनी पार्टी में बुला रहे थे, तो आपकी बातचीत कैसे?
8: अरे भैया इधर उधर की बातें मत करिए, बताइए कांग्रेस पार्टी ने अगर हमें व्हाट्सएप पे भेजा, कांग्रेस के तेलंगाना के लोगों ने
9: चले जाएंगे, सही बात है, उसके बाद
0: फिर फरोख से हो जाएगी। भाई तो कह रहे हैं, जो मैं कह रही, हमारे एनालिस्ट से पूछते हैं कि वो लोग किस तरीके से देख रहे हैं फाइट को, क्योंकि इस पे ना दो अलग अलग तरीके की लड़ाई देखने को मिल रही है। आशुतोष जी, रजत सेठी, आशुतोष जी, विनोद अग्निहोत्री जी, आप देख रहे हैं पूरी लड़ाई और कल से ये खबरें चल रही है। जरा एक मिनट दोनों, प्लीज जरा एनालिस्ट के पास भी चलते हैं क्योंकि ये लीगल लड़ाई तो चलती रहेगी। चुनाव आयोग जो अभी अभी खबर है आज शाम तक फैसला ले सकता है क्योंकि कल आखिरी दिन है नामांकन वापस लेने का, उससे पहले उनको फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन आशुतोष, कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी छाछ भी फूंक फूंक कर नहीं पी रही है। मैंने इसका जिक्र किया, अहमद पटेल जैसे व्यक्ति को 2:30 बजे तक गुजरात के विधानसभा में बैठकर रहना पड़ा। रात को 2:30 बजे हम सारे लोग गुजरात के विधानसभा के बाहर खड़े थे, चुनाव आयोग में रात तक सुनवाई वहां पर चलती रही, एक वोट के लिए आखिर तक वहां पर लड़ाई होती रही। राज्यसभा के चुनाव भी इस तरीके से लड़े जा रहे हैं, कैसे रिस्क
10: ले? ये साहिल देखिए, ये देश तो कानून से चलेगा, या जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहता है उसके हिसाब से चलेगा, किसी आरओ किसी चुनाव आयोग की अपनी मनमर्जी से तो नहीं चलेगा ये।
0: आशुतोष जी एक मिनट जरा आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि देखिए टीएमसी के बागी सांसदों की सूची जारी हो रही है, कल वहां पर 12 सांसदों की सूची एक तरीके से दिखाई गई थी, अब शत्रुघ्न सिन्हा का नाम उसमें दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे थे कि मैं बागी सांसदों के साथ नहीं जाऊंगा। यूसुफ पठान, काकोली घोष दस्तीदार के भी उसमें नाम है, लेकिन यूसुफ पठान का भी उसमें नाम है, सयोनी घोष का भी उसमें नाम दिखाई दे रहा है। 19 बागी सांसदों की सूची जारी कर दी गई है और इन सूची में उन लोगों के नाम भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं जो ममता बनर्जी के साथ बीजेपी के खिलाफ प्रचार करते हुए दिखाई दिए थे या मोदी सरकार के खिलाफ। बागी सांसदों में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम है जो पहले बीजेपी में थे और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा के जरिए पार्लियामेंट में भेजा था। हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ये अधिकृत सूची जारी मान लिया जाए क्योंकि कीर्ति आजाद का दावा था कि सिर्फ 13 सांसदों के हस्ताक्षर है उसमें, और शत्रुघ्न सिन्हा ये कह रहे थे कि मैं तो बागी लोगों में नहीं जाऊंगा, मेरी आखिरी पारी चल रही है।
11: देखिए, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स में जो है खेल अंत समय तक चलता है और कब बाजी पलट जाए साहिल ये कोई नहीं जानता, और इसीलिए जगदीश चंद्र बासुनिया पूछ बिहार से है, खली उल रहमान है, यूसुफ पठान है, अबू ताहिर खान है, पार्था भौमिक है, बापी हल्दर है, सियोनी घोष है, ये वो सियोनी घोष है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके नेताओं के खिलाफ बोल ही रहे हैं, उन्होंने भी साइन कर दिए हैं। माला रॉय है, मैताली बेग है, दीपक अधिकारी है, कलीपाड़ा सोरेन है, जूने मालिया है, अरूप चक्रवर्ती है, डॉक्टर शर्मिला सरकार है, शत्रुघ्न सिन्हा है आसनसोल से, ये भारतीय जनता पार्टी में थे और उस भारतीय जनता पार्टी के बाद वो कांग्रेस गए, कांग्रेस से टीएमसी आए और आसनसोल से वो दूसरी बार सांसद बने हैं। असित कुमार मल है, उनके साथ साथ शताब्दी रॉय है और रचना बैनर्जी है, ये वो 19 सांसद हैं जिन्होंने अलग गुट की मांग की है स्पीकर को पत्र लिखकर। अब एक ये अलग बात है कि स्पीकर उन्हें कब बुलाएंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है कि जिनके साइन है वो साइन फोर्स तो नहीं है, और इसीलिए स्पीकर जब इन्हें समय देंगे ये 19 के 19 सांसद स्पीकर से मुलाकात कर जो है वो अपना अलग।
0: उसके साथ साथ हिमांशु इस बात का भी जिक्र करना होगा कि स्पीकर को ये बात, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ये बात भी साफ हो चुकी है, अब दो गुट नहीं बैठ सकते एक ही पार्टी के लोकसभा के भीतर, तो या तो उन्हें पार्टी किसी पार्टी में शामिल होना होगा या कुछ इस बारे में स्पीकर को फैसला होना होगा, लेना होगा कि असली तृणमूल कांग्रेस पार्टी कौन है। तो कब ये मुलाकात होगी, क्या ये चिट्ठी दे दी गई है स्पीकर के दफ्तर में और आगे की कार्रवाई किस तरीके से होगी?
11: देखिए, स्पीकर ऑफिस के अंदर जो है हमारे सूत्रों के अनुसार जो है वो चिट्ठी दे दी गई है, लेकिन स्पीकर चंडीगढ़ थे 2 दिन के कार्यक्रम के लिए, आज वो लौटेंगे और चंडीगढ़ से लौटने के बाद जरूर टीएमसी के जिन बागी सांसदों ने, 19 सांसदों ने जिनका नाम मैंने अभी आपको जिक्र किया, उन्होंने उनको वो बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे ये जो लेटर है इसे जो दस्तखत हैं वो उन्हीं के हैं, और उसके बाद उस नए गुट को मान्यता मिल जाएगी। उसके बाद पार्टी की लड़ाई जो है वो पार्टी दोनों ही दलों गुटों के बीच में होगी, उसके बाद वो चाहे चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट जाकर पार्टी के वर्चस्व पे अपना दावा ठोक सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है फिलहाल अभी नए गुट की मांग की है और ये नया गुट जो है वो एनडीए के समर्थन में रहेगा। ये बात खुद जो है टीएमसी के बागी सांसदों ने जो है स्पीकर को लिखकर दी है। 19 सांसद है अभी,
0: बड़ी दिलचस्प बात है कि एक गुट
11: वो अभी बागी सांसद जो है
0: जी, जी, आपकी बात खत्म करिए,
11: सांसदों के संपर्क में जो है साहिल, बागी सांसदों का ये 19 सांसदों का जो गुट है ये अभी 2 सांसदों के और संपर्क में है, ये संख्या बढ़कर जो है वो 21 हो सकती है, और आने वाले दिनों में राज्यसभा के और जो सांसद हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं अपनी राज्यसभा की संसद सदस्यता से। तो एक तरीके से टीएमसी के लिए पार्टी के वर्चस्व को बचाना, चाहे
0: यानी ये संख्या 21 तक जा सकती है। 19 सांसदों ने काकोली घोष दस्तदार को अपना नेता मानते हुए एक जो चिट्ठी जिसका जिक्र हिमांशु कर रहे हैं वो स्पीकर के दफ्तर को दे दी गई है। अनुपम मिश्रा इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं, जरा ये कंफ्यूजन है अनुपम, आपको अगर क्लियर है तो आप मुझे बता दीजिएगा, एक गुट जो विधानसभा के भीतर है वो कहता है कि हम तो विपक्षी पार्टी के तौर पर काम करना चाहते हैं, इसके लिए नेता विपक्ष हम बने रहेंगे, ऋतव्रत बैनर्जी यहां पर कह रहे हैं। दूसरी तरफ उनके सांसदों का गुट है, वो कह रहा है कि हम भी तृणमूल कांग्रेस का एक गुट बना रहे हैं या हम ही तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, हम तो एनडीए को समर्थन देना चाहते हैं। अब कौन तृणमूल कांग्रेस के चार चार तीन धड़े हो गए ये मुझे दिखाई दे रहा है। एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो वहां पर ममता बनर्जी चला रही है, दूसरी तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो ऋतव्रत बनर्जी कह रहे हैं कि हम विपक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं, और तीसरी तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो संसद में कह रही है कि हम तो एनडीए के साथ जाना चाहते हैं। ये कंफ्यूजन जरा दूर कर दीजिएगा, एग्जैक्टली क्या हो रहा है
12: जी? देखिए, ममता बनर्जी का जो गुट है वो अलग हो गया है, और जो रेबल गुट है, बागी गुट है, बागी गुट के दो फैक्शन हैं। एक जो विधायकों का गुट है, जिसमें आज जो दावा किया जा रहा है कि पहले किया गया था कि 60 लोग हैं, अब उनमें 64 हो गए हैं, मतलब ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, ये ऋतव्रतों का दावा है। और ऋतव्रतों के साथ जो सांसद हैं उनकी बातचीत चल रही है, और सांसदों का जो दल है, 19 सांसदों की का गुट बना है, काकुली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में 20वीं माला राय वहां पर बैठी हुई है, तो ये भी गुट की जो संख्या है ये भी बढ़ रही है। तो ऐसे में जो दूसरा गुट है, जो कोलकाता में है विधायकों का गुट और जो दिल्ली में है सांसदों का गुट, ये दोनों गुट लगभग एक साथ हैं, एक दूसरे के साथ संपर्क में है। जबकि ममता का जो गुट है, जो बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है, जिसकी संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है, वो अलग गुट है। तो इसमें दो गुट ही हम कह सकते हैं, एक तो ममता का जो गुट है जिसकी संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है, दूसरा जो बागी गुट है उसके दो अलग अलग जगहों पर लोग हैं। एक जो सांसद हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी उनका मेनली तो पार्लियामेंट में काम है, दूसरा जो विधायक हैं वो असेंबली देख रहे हैं।
0: लेकिन अनुपम, अभी भी मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि दो चीजें अभी तक इसमें क्लियर नहीं है। एक, स्पीकर ने फिलहाल तो ये कह दिया है कि ऋतव्रत बैनर्जी है नेता विपक्ष है तृणमूल कांग्रेस पार्टी से, ठीक है, लेकिन अभी तक उनका ऑर्डर पब्लिक नहीं हुआ है, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अगर उन्होंने ऋतव्रत बैनर्जी को माना है, दो उनके पास दावे आए थे उसमें से एक दावा उन्होंने मान लिया है, कैसे माना है, क्यों माना है, वो कौनसी जुडिशियल अथॉरिटी है, उस तरीके से उनका कोई ऑर्डर ही नहीं है। क्या आपके पास इसका कोई ऑर्डर आया हुआ है कि आखिरकार किस बिना पर उन्होंने ऋतव्रत बैनर्जी को नेता माना है, लीडर ऑफ अपोजिशन माना है? क्योंकि ये बात सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बिल्कुल साफ है कि विधायकों की बहुसंख्या के आधार पर आप किसी को नेता नहीं मान सकते, तो ये ऑर्डर कहां है
12: जी? बिल्कुल क्लैरिटी इस पर बिल्कुल भी नहीं है। जो क्लैरिटी है वो ये कि विधानसभा की ओर से जो नेता विपक्ष का जो चैम्बर होता है असेंबली के भीतर, उसकी चाबी जो बंद पड़ा हुआ था, वो चैम्बर जहां शोभनदेव चट्टोपाध्याय को पहले तृणमूल कांग्रेस ने नामित किया था कि वो नेता प्रतिपक्ष होंगे, वो चाबी नहीं दी जा रही थी, वो अचानक से ऋतव्रतों को दे दी गई। ये स्पीकर की ओर से हुआ है, उनको चाबी दी गई है, लेकिन स्पीकर इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वो अभी हरियाणा में बैठे हुए हैं, कलकत्ता में है नहीं, वो जो कोई दी है उन्होंने क्या किया है, इस पर कोई क्लैरिटी अभी तक लेकिन नहीं है। जो तकनीकी तौर पर जो बातें आप बोल रहे हैं वो जायज हैं, लेकिन उसकी जो क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहां पर कि किस बिना पर ये ऋतव्रतों को दिया गया है नेता प्रतिपक्ष का रूम चैंबर, या उनको माना गया है या चाबी दी गई है, वो क्लियर
0: जल्दी से मुझे इस बात का भी अपडेट दीजिएगा कि ऋतव्रत बैनर्जी इन सांसदों के गुट के बारे में क्या कहते हैं, उनका इनके बारे में क्या कहना है, क्योंकि ये सांसदों का गुट तो कहता है कि हम तो बीजेपी के साथ जाएंगे, हम तो मोदी सरकार के साथ जाएंगे, एनडीए के साथ जाएंगे। ऋतव्रत कह रहे हैं कि हम तो विधानसभा में विपक्ष का काम करेंगे, बीजेपी के सरकार के खिलाफ काम करेंगे। तो उनके बारे में ऋतव्रत बैनर्जी क्या कह रहे हैं, कौन किसका नेता है
12: जी? देखिए, ये शुरुआत तो हुई ऋतव्रतो बैनर्जी से। ऋतव्रतो ने सबसे पहले बात की इस तरह से कि वो अलग होना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद ही हमारी जो बातचीत उनसे होने लगी, जो पब्लिकली बाद में आई, वो ये कि वो सांसदों के साथ भी संपर्क में हैं, और कुछ दिन में सांसद भी टूटेंगे, सांसद भी बागी बनेंगे। तो ये जो लोकसभा के जो सांसद हैं वो लेकिन अलग गुट बना रहे हैं, लेकिन वो एनडीए के साथ कितना तक जाएंगे, क्योंकि मंत्री तो उनको कोई बनाएगा नहीं, उनको कोई पद दिया नहीं जाएगा, बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, तो
0: इनमें से किसी को मंत्री बनाया जाएगा अगर इनको, क्योंकि अभी तक यह बात नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन कानून के तहत अगर दो तिहाई सांसद बाहर निकलते हैं किसी पार्टी से, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के बारे में हमने देखा था, उन्हें मंजूरी दे दी गई कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तो इन सांसदों की मांग क्या होगी, क्योंकि अलग गुट तो नहीं बन सकता। तो आज की स्थिति में हिमांशु,
13: देखिए देखिए देखिए देखिए दो चीजें हैं, आप इसको साहिल थोड़ा सा टेक्निकली समझिए। काकोली घोष ने, दफ्तर ने जो चिट्ठी लिखी है उसको अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एज ए चीफ विप लेटर लिखा है। अभिषेक बनर्जी ने उनको हटाने का लेटर जरूर जारी किया था, लेकिन स्पीकर ऑफिस में जो है काकोली घोष की जगह कल्याण बनर्जी को अपॉइंट करने के लिए पत्र नहीं भेजा था, तो टेक्निकली आधार पर काकोली घोष जो है वो चीफ व्हिप है, और चीफ व्हिप जो है वो अलग गुट की मांग कर रही है। और अगर संख्या बल 2/3 है, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप देखें जब LJP टूटी थी तो चिराग पासवान को हटाकर जब पशुपति पारस 4 सांसदों के साथ अलग गुट बनाया,
14: तृणमूल कांग्रेस ये दावा कर रही है कि काकोली घोष के बगावत के बाद इस तरीके का खत ओम बिरला स्पीकर के दफ्तर को भेजा गया था, लेकिन दूसरी तरफ काकोली घोष कह रही है कि मैं ही अभी भी चीफ व्हिप बनी हुई हूं, तो इस बात को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। लेकिन आशुतोष जो आप बात कर रहे थे, देखिए बार बार पॉलिटिकल सिनेरियो इस तरीके से बदल रहा है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस मामले में भी कांग्रेस पार्टी को थोड़ा फूक फूक कर कदम रखना चाहिए था? उनको मालूम होना चाहिए था कि बीजेपी इस तरीके की चीजें कर सकती है। माफ करिए आपका समय चला गया सभी लोगों का, क्योंकि ये बड़ी खबर इस वक्त आ गई थी। आशुतोष जल्दी से, उसके बाद रजत सेठी।
10: देखिए साहिल, इसमें बहुत स्पष्ट है कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है जो 2019 जनवरी 2026 का फैसला है, और आपने बिल्कुल मनीष सिसोदिया का जिक्र किया था। क्या इस मामले में कोई FIR दर्ज है? क्या इस मामले में किसी तरीके की चार्जशीट दर्ज है? क्या इस मामले में अदालत ने चार्जेस फ्रेम किए हैं? क्या इसमें 2 साल से कम की सजा मिली है? क्या 2 साल से ज्यादा की सजा मिली है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो सिर्फ अदालत का नोटिस आने की वजह से आप किसी की नॉमिनेशन पेपर को खारिज नहीं कर सकते। ये विशुद्ध तौर पर मुझे लगता है कि मैल इंटेंशन के साथ किया गया है, क्योंकि अगर हाईकोर्ट का यह फैसला बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह रहा है आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए उसको डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं था। अब उस पर अगर कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया जाए तो बात बहुत बहुत अलग है। मैं तो अगर कहिए तो मैं पढ़ के सुना सकता हूं,
14: लेकिन एंटीसिपेट करके चुनाव का पर्चा भरते समय आप एंटीसिपेट तो कर ही सकते हैं ना कि ये चीजें हो सकती
10: है। साहिल, मैंने मैंने मैंने खुद चुनाव लड़ा है इसलिए मैं अच्छी तरीके से जानता हूं।
14: मैं तो मॉरलिटी पे जा ही नहीं रहा हूं,
10: क्या क्या बाध्यता होती, क्या बाध्यता नहीं होती, क्या बाध्यता
14: रजत सेठी
10: इसको जानबूझकर चंडीगढ़ में किया गया था।
15: देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इतनी हंगामे की जरूरत नहीं है, नेचुरल जस्टिस का रिस्पेक्ट होना चाहिए, और मुझे लगता है एक सुनवाई का मौका दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं बोल दिया है कि जो भी रिटर्निंग ऑफिसर ने बोला वो अंतिम सत्य है और इसके बाद कोई इसके ऊपर सुनवाई नहीं होगी, और सुनवाई के कई सारे दरवाजे हैं, खटखटाती रहे कांग्रेस पार्टी, अभी कोई निर्णय भी नहीं हो गया। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी भी कोई उत्साह मना रही कि उसका तीसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हो गया है। ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, रिटर्निंग ऑफिसर
14: ऑप्शन अभी भी खुला है विनोद अग्निहोत्री, लेकिन पॉलिटिकल गलती है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं।
16: नहीं, पॉलिटिकल गलती तो मान लिए है, लेकिन सवाल जब स्पष्ट ये है कि FIR दर्ज हो, 2 साल से ज्यादा की सजा हो, कोर्ट कॉग्निजेंस ले चुका हो, उन मामलों की जानकारी देना जरूरी है। तो इस मामले में तो एक खाली नोटिस कोर्ट ने इशू किया था और वो भी अभी उसका कॉग्निजेंस भी नहीं लिया गया है, तो ये हो सकता है कि इसकी जरूरत न समझी गई हो, इसलिए अगर वो मेंशन।
14: ठीक है, इस पर बहस होगी क्योंकि अभी चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर मशक्कत कर रहा है और उम्मीद है कि आज शाम या कल सुबह तक इसके बारे में फैसला आ जाए। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
3: आगे आगे,
4: अरे उधर उधर यार, करेक्ट करेक्ट।
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: इन एसोसिएशन विद
8: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
7: हिंट, बड़े आराम से
8: cool stylish fans enhance home decor with beautiful fans।

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
3: ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े समकूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल हिंट बड़े आराम से कूल स्टाइलिश फैंस एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू
4: विमल बोलो जुबां केसरी
5: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक
6: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
7: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
8: पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में जुल्म की इंतहा हो रही है। बेगुनाह लोगों पर गोलियों की बौछार की जा रही है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। पीओके में लोग काफी वक्त से बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हैं। वहां लोगों ने तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन की तैयारी की। जेएएसी यानी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले 9 जून को बंद का ऐलान किया गया, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने 5 जून को ही जेएएसी पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही पूरे पीओजेके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गयी। अगले ही दिन बड़े पैमाने पर नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसे एक्शन के विरोध में 7 जून से उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए। पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी सेना को इन लोगों पर खुलेआम गोलियां बरसाने को कहा। फायरिंग में 27 लोगों की मौत हो गई। पीओजेके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ऐसी कार्रवाई को लेकर भारत ने गंभीर चिंता जताई है। साथ ही यूरोप स्थित मानवाधिकार संगठन ECHRD ने भी सवाल उठाए हैं और मांग की है कि इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विशेष बैठक बुलाई जाए। आज तक ब्यूरो।
9: बड़ा फैसला आपने लिया और पिछले कुछ दिनों में हम ये भी देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के कई लोकसभा सांसद भी नाराज हैं, राज्यसभा सांसद, तो कल सुखेंदु जी ने भी इस्तीफा दिया, आपने भी इस्तीफा दिया। क्या कारण कि लगातार जो है तृणमूल कांग्रेस से लोग छोड़ रहे हैं और आपने भी मन बना लिया?
10: देखिए, कारण कुछ व्यक्तिगत है, कुछ राजनीतिक है। बिना कारण के तो कोई कुछ करता नहीं है। पर मैं किस तरह की राजनीति करूंगी, कहां से करूंगी, ये मेरा निर्णय है और मेरा हक है। क्योंकि राज्यसभा मुझे एक पार्टी से मिला था
9: जी।
10: हाँ, जहां विधायकों ने वोट दिया था, बंगाल के लोगों ने इनडायरेक्टली दिया था। तो अगर पार्टी से इस्तीफा दिया तो फिर राज्यसभा सीट भी छोड़ना चाहिए। जो आपका नहीं है उस पर क्यों बैठे रहे?
9: अब आप आगे का क्या आप सोच रहे हैं, किस तरह से आप अपनी राजनीति देखते हैं, कहां आप आगे जाएंगे?
10: देखिए, सच्चाई तो ये है कि मेरी राजनीति बंगाल में नहीं है, मेरी राजनीति आसाम में है
9: जी।
10: और मुझे आसाम में ही राजनीति करना है। तो आसाम में जो राजनीतिक परिस्थिति है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मैं आसाम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा से मिलके आई हूँ। और देखिए, अगर मैं किसी पार्टी में जाना चाहती हूँ वो तो पार्टी का डिसीजन होता है, मेरा डिसीजन तो नहीं होता। सो लेट अस सी, बट आई फील

0: see, I'm a lady should never give her age, but I'm 53. You can Google and see. So अगले 5 साल तो शायद बीजेपी रहेगी आसाम में. हाँ, और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पुश बराक वैली में स्पेशली किया है, क्योंकि मैंने तो राजनीति बराक वैली आसाम में किया है. आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन द पास्ट. अतीत में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, जो हमारी बहुत बड़ी समस्या, मैंने पहले कभी नहीं देखा. तो मैं बीजेपी के खिलाफ बोलती थी, पर वहां जाके अटक जाती थी जब डेवलपमेंट की बात आती थी. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. मेरी शुभकामनाएं हैं जिनके साथ में थी. ऑल द बेस्ट.
1: हेमंत दादा का नेतृत्व आसाम में जैसा है, जैसा उन्होंने काम किया है पिछले काफी लंबे, अब तो 15 साल भी उनके पूरे होने वाले, क्योंकि 10 साल तक तो सरकार रही, अब तो तीसरी बार सरकार आ गई. कैसा आपको लगा आसाम में बीजेपी का जो काम अब तक हुआ?
0: सी, हम पॉलिटिक्स में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं कि हेमंत तो ऐसे हैं, मोदी जी ऐसे हैं, ममता दीदी ऐसे हैं. निर्णय कौन लेता है? पब्लिक. मैं कुछ भी बोलती रहूं तो आसाम के पब्लिक ने क्या निर्णय लिया? हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, वो राजनीति में, लोकतंत्र में होता है, बट द फैक्ट इज निर्णय तो जनता लेती है.

0: Hey, Buzz, you hear about the Switch?
1: He's right over there.
0: Not that Switch, our Switch, to APG&E.
1: Well, we can do that?
0: Customers can switch electric suppliers anytime to find a better rate, lock in pricing.
1: I don't want new wires. I'm very attached to ours.
0: Only the part of the bill that covers electricity supply changes.
1: To APG&E?
0: People love their flexible, affordable electricity.
1: Nice.
2: Learn more at APGE.com.
3: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
4: Oh, ouch.
3: However you make money work, we can work with that.
5: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: Jazz fans, rejoice. Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
7: Congress ka page phasa aur ab Madhya Pradesh mein to seat hi chhin gayi. Madhya Pradesh mein Congress ke saath khela ho gaya kyunki namankan ke aakhri din parcha bharne wali कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का पर्चा ही रद्द हो गया। बीजेपी की सियासी बातें और कानूनी पहलू और दरअसल बीजेपी की तरफ से एमपी में तीसरी राज्यसभा सीट के उम्मीदवार महेश केवट ने रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत की थी कि मीनाक्षी ने हलफनामे में सच छिपाया है। इसके बाद एमपी राज्यसभा चुनाव में रिटर्निंग अफसर और एमपी विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा की जांच में पता चला कि मीनाक्षी नटराजन ने हलफनामे के फॉर्म 26 में अपने खिलाफ एक अदालती मामले की जानकारी नहीं बताई। इसके अलावा हलफनामे के पेज संख्या 5, 6 और 7 पर लगी सत्यापन की मुहरें भी अधूरी और अस्पष्ट थी। मीनाक्षी और पूरी कांग्रेस मानती है कि उनके उम्मीदवार ने ऐसा कुछ नहीं छिपाया जिसे चुनाव आयोग को बताना जरूरी था। और वो मामला कुछ यूं था कि हैदराबाद की एक पूर्व महिला पार्षद ए श्रीलता ने कांग्रेस नेता कुंभम शिवकुमार रेड्डी पर प्रताड़ना और शोषण की शिकायत की थी। अगस्त 2025 में हैदराबाद की फोर्थ एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में 7 कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ दी गई निजी शिकायत में AICC प्रभारी मीनाक्षी को प्रतिवादी नंबर 4 बनाया गया। मीनाक्षी पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप था। इस पर अदालत ने BNSS की धारा 223 के तहत मीनाक्षी नटराजन से जवाब मांगा और मीनाक्षी ने 24 अक्टूबर 2025 को जवाब दे दिया जिसे अदालत ने रिकॉर्ड पर ले लिया। चुनाव आयोग का पक्षपाती रवैया बताते हुए कांग्रेस अदालती लड़ाई लड़ने की बात कहती है। अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर विवेक तनखा तक दलील दे रहे हैं, लेकिन चुनाव नियम 1961 का नियम 4A कहता है कि हर उम्मीदवार को फॉर्म 26 में अपनी संपत्ति, देनदारी, शैक्षणिक योग्यता और किसी भी न्यायालय में लंबित आपराधिक केस या शिकायत की पूरी जानकारी देनी है। सच छिपाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36 भाग 2 के तहत नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता है। मुसीबत ये कि रिटर्निंग अफसर के फैसले को चुनौती देने तक चुनाव नहीं रोका जा सकता। चुनाव बाद मीनाक्षी RP Act की धारा 80 के तहत हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दे सकती हैं, जिसमें नामांकन गलत तरीके से रद्द पाए जाने पर चुनाव रद्द हो सकता है। मीनाक्षी के नामांकन रद्द होने पर बीजेपी में जो खुशी और कांग्रेसी खेमे में जो मायूसी दिख रही है उसके पीछे की सियासत है। दरअसल MP में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए कुल 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी के पास 2 सीटों के लिए जरूरी विधायकों का मत है, तीसरी सीट के लिए 10 विधायक कम है, जबकि कांग्रेस के पास 1 सीट के लिए जरूरी प्रथम वरीयता के 58 वोटों की जगह 62 वोट मौजूद थे। कांग्रेस को विधायकों की क्रॉस वोटिंग का खतरा था, इसलिए उन्हें बेंगलुरु शिफ्ट किया जा रहा था। 38 विधायक परिवार समेत चार्टर ट्रेन में बैठ भी चुके थे, तभी रिटर्निंग अफसर का फैसला आया, विमान रनवे से लौट गया। अब बीजेपी कह रही कि दिग्विजय सिंह की खाली हो रही सीट पर जिन नेताओं को जगह नहीं मिली उन्होंने ही मीनाक्षी के खिलाफ बीजेपी को सबूत दिए और कांग्रेस के हाथ से ये सीट हट गई। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: Acajay, the number one Korean skincare brand. Now.
2: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ. आप देखते रहिए आज तक.
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: Acajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: को फिर लगा बड़ा झटका। बागी गुट के 19 सांसदों ने जारी की सूची। शत्रुघ्न सिन्हा और सायोनी घोष का भी नाम, ऋतव्रत का दावा, 64 विधायक भी हमारे साथ। दिल्ली में राहुल गांधी और अभिषेक बैनर्जी की अहम बैठक खत्म। कांग्रेस और टीएमसी में गठबंधन की संभावना पर चर्चा की खबर। बंगाल के हालात पर भी बात। मोदी ने बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे लंबे कार्यकाल का बनाया रिकॉर्ड। एनडीए की बैठक में चंद्रबाबू नायडू ने पेश किया अभिनंदन प्रस्ताव। शुभेंदु ने खिलाई झालमुड़ी। मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी खारिज होने पर जल्द ही फैसला करेगा चुनाव आयोग। कांग्रेस ने की है आपत्ति। कल नामांकन वापस लेने की है अंतिम तारीख। और पाक अधिकृत कश्मीर में आज फिर सुलगी। विरोध किया शाहबाज और मुनीर के खिलाफ नारेबाजी। 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: एकोजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: आज 25 करोड़ परिवार ने अगर गरीबी रेखा से बाहर आया तो मैं मानता हूं कि पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए उसमें सबसे बड़ा विषय है।
1: शौचालय दिया, बिजली दी, पानी दिया, स्वच्छ ईंधन दिया, उज्ज्वला दिया, एक गरीब कल्याण से अन्न दिया, 5 लाख का इलाज दिया, ये बताता है, 5 किलो अनाज दिया, ये बताता है कि गरीबों के प्रति कैसे समर्पण होता है।
2: प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज का भारत बहुत मजबूत गति से विकसित भारत 2047 की के लिए एक प्रशस्ति की आगे बढ़ने की प्रगति की यात्रा कर रहा है।
3: हमारी सरकार देश के विकास को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है और इसलिए देश का भरोसा भाजपा पर है, भाजपा के विकास कार्यों पर है।
4: आर्थिक सुनामी आ रही, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है।

0: नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई उपलब्धि हासिल की। चुने हुए प्रधानमंत्री पद पर सबसे लंबा कार्यकाल हासिल कर लिया है। इस मौके पर भारत मंडपम में एनडीए की बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें वरिष्ठ एनडीए नेताओं के साथ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। बैठक में चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री के लिए अभिनंदन का प्रस्ताव पेश किया। इससे पहले कैबिनेट में भी प्रधानमंत्री के लिए प्रस्ताव पास हुआ और उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। इसलिए आज हल्ला बोल की बहस में 12 साल में भारत में आए बदलाव की बात करेंगे। विपक्ष के उन सवालों को भी उठाएंगे जिसे लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। हल्ला बोल में हम चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले ये रिपोर्ट। रिकॉर्ड से आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई। सबसे लंबे समय तक भारत का निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का पंडित नेहरू का रिकॉर्ड मोदी ने आज तोड़ दिया। मोदी लगातार 4,399 दिनों से प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं। मोदी की इस उपलब्धि पर कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया। पीएमओ के अधिकारियों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है, जबकि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर बीजेपी मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने देश के अलग अलग मंदिरों में पूजा की।
1: आज का जो ये दिन है, हम सब भारतवासियों के लिए गौरवान्वित करने का दिन है। मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी मैं मानता हूँ कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने नेतृत्वकर्ता के आदर्श के रूप में देखता है और कहीं ना कहीं उनके जीवन से जो हम सब के लिए एक धारण है, आदर्श है, हम सबको उसके अनुकरण करने के लिए आगे बढ़ना है। मैं आज पुनः प्रधानमंत्री जी के यशस्वी जीवन की, उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं।
2: नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से गरीबों के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। नरेंद्र मोदी जी 25 करोड़ से ऊपर गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम किया। क्या ये बिना समर्पण का होता है?
0: प्रधानमंत्री मोदी का ये रिकॉर्ड ऐसे समय में बना है जब विपक्ष बीजेपी के मुकाबले चुनावी प्रदर्शनों में तो फिसड्डी है, लेकिन पश्चिम एशिया संकट से बने आर्थिक हालात और टीएमसी में मची उठापटक जैसे मसलों पर सरकार को घेर रहा है। नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के दावे पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्योंकि नेहरू पहले आम चुनाव के बाद पीएम बनने के पहले भी भारत के प्रधानमंत्री थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पोस्ट में लिखा, भारत 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में नहीं आया था। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारी राष्ट्रीय यात्रा 15 अगस्त 1947 को शुरू हुई थी। जयराम रमेश का बयान है, जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक ऐसी असाधारण कैबिनेट का नेतृत्व किया जैसी मिसालें दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती हैं। अगले 5 वर्षों में आधुनिक भारत आकार लेने लगा। इस बीच मंगलवार को मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा उम्मीदवारी का पर्चा खारिज होने को लेकर भी कांग्रेस लोकतंत्र का सवाल उठा रही है।
3: आज जब मोदी जी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कालखंड का, कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार ने तोहफे के तौर पे लोकतंत्र की हत्या करके एक भेंट सौंपी है मोदी जी। ये बदनुमा कलंक लोकतंत्र के इतिहास को दुनिया की नजरों में भारत में लोकतंत्र की हत्या के रूप में जाना जाएगा, प्रजातंत्र की हत्या के रूप में जाना।
0: ऐसे हमलों के बावजूद विपक्ष के कैंप में भगदड़ है। टीएमसी की एक और राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया है। वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से मिलने भी गई।
4: मैं इतनी बड़ी लीडर नहीं हूँ कि मैं ममता दीदी पे कमेंट करूँ, ठीक है? आज मैंने उनको छोड़ा है, कल मैं किसी और पार्टी में जा भी सकती हूँ, पर मेरे से तो बहुत ज्यादा तजुर्बा उनको अनुभव।
5: और अभिषेक बनर्जी का कैसा लीडरशिप आपको लगता है?
4: कि अभिषेक बनर्जी पे कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। इट इज वेरी सिंपल। मैं आपको ये जरूर कह रही हूँ कि ये मेरा राजनीतिक और व्यक्तिगत निर्णय है, और मैं मानती हूँ कि अगर डेवलपमेंट की राजनीति मुझे आसाम में करनी है तो रास्ता यही है।
0: सुष्मिता देव जैसे टीएमसी के बागियों के दांव से विपक्ष बेहद कमजोर नजर आ रहा है। उधर बीजेपी एनडीए नेताओं की बैठक से गठबंधन की मजबूती का संदेश दे रही है। आज तक ब्यूरो। चर्चा के लिए गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए, अखिलेश प्रताप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सत्यप्रकाश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जो शायद बीजेपी को काफी खुश कर रही होगी। प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन 12 साल पर बात होने से पहले टीएमसी के बागियों की बात कर लेते हैं। सूत्रों के जरिए स्पीकर को लिखी गई चिट्ठी पर दस्तखत करने वाले 19 बागी सांसद हैं, और ऐसे ऐसे नाम हैं जो आपको बिल्कुल अचंभित कर देंगे। 19 बागी सांसदों के नाम सामने आए हैं। इनमें सायोनी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे चौंकाने वाले नाम शामिल हैं, यूसुफ पठान, काकोली घोष, ये सब तो पहले से ही खबर आ रही थी, लेकिन सायोनी घोष का उसमें शामिल होना, शत्रुघ्न सिन्हा का उसमें शामिल होना, बल्कि हाल ही में चुनाव को कवर करते हुए पश्चिम बंगाल में मैंने उनका इंटरव्यू किया था, और उनकी बातों से ऐसा कहीं नहीं लग रहा था कि हो सकता है वो आने वाले दिनों में नतीजों के बाद जब विधायक भी छोड़ दे ममता बनर्जी को, तो उन सांसदों में शामिल हो जाएंगे जो अलग रास्ता चुनेंगे ममता बनर्जी से। एक बार आपको एक एक करके वो तमाम चेहरे दिखा देते हैं जो आज ये ऐलान कर रहे हैं। सबसे पहले काकुली घोष, क्योंकि वो लगातार मुखर होकर अभिषेक बनर्जी और सबके खिलाफ बोल रही थी। सायोनी घोष, जो एक तरह से इस चुनाव में चेहरा बन गई थी, क्योंकि उनके कई वीडियोस वायरल हुए थे, खासतौर पर उनका काबा मदीना वाला जो पूरा गाना है वो बड़ा वायरल हुआ था। और फिर शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि बीजेपी को छोड़ने के बाद एक तरह से आप सोचिए कांग्रेस में भी हालांकि वो गए, लेकिन टीएमसी में जाके वो टिक गए ममता बनर्जी के साथ। इधर जगदीश चंद्र बसुनिया जो है वो है, खलीउर रहमान है, यूसुफ पठान है, तो इनमें कई मुस्लिम सांसद भी हैं जो ममता बनर्जी के खिलाफ हो गए हैं, अबू ताहिर खान, पार्था भौमिक, और इसी के साथ बापी हल्दर जो कि मथुरापुर से सांसद है। ये सभी के सभी अगर अलग हो रहे हैं, बागी हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जल्दी से, मतलब सायोनी घोष तो इन चुनावों में ममता बनर्जी से भी ज्यादा उनके वीडियोस वायरल होते थे, काबा मदीना वाला उनका गाना इतना वायरल हो किया और बीजेपी वालों ने ही किया, अब इनका क्या ऐसा मामला था? मतलब ये सबसे ज्यादा तो इन्हीं की चर्चा आज हो रही है कि भाई सायोनी घोष कैसे ममता बनर्जी से अलग हो गई।
6: देखिए बिल्कुल, क्योंकि राजनीति में जो सबसे ज्यादा करीब होता है सबसे पहले वही साथ छोड़ता है, अंजना। ये हम सब ने देखा है समय समय पर, इस तरीके के कई उदाहरण है, सायोनी घोष हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, या आप पार्था भौमिक हो, यूसुफ पठान हो, अर्चना बनर्जी हो, अरूप चक्रवर्ती हो, तमाम ऐसे सांसद हैं जो ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। ये कहते थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन ममता बनर्जी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक हार ऐसी हार जिसमें विधायक अलग हो गए, उन्होंने अपना अलग गुट बनाने की मांग कर दी। ऐसे 19 सांसद 28 में से जिन्होंने अलग गुट के लिए स्पीकर को पत्र लिख रहे हैं, जो स्पीकर से मिलकर जो है जल्दी ये मांग करेंगे कि उनको अलग गुट की मान्यता दी जाए, उसके साथ साथ वो एनडीए का समर्थन करेंगे। दो राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, शिखेंदु शेखर राय और उनके साथ साथ सुष्मिता देव। आने वाले दिनों में जो हमारी जानकारी है उसके अनुरूप जो है 5 और जो है सांसद राज्यसभा के वो इस्तीफा दे सकते हैं। और ये 5 सांसद,
0: दो छोटे छोटे सवाल हैं जो मैं पूछ रही हूँ, छोटा जवाब दीजिएगा। एक तो क्या ये चिट्ठी अब सामने आ गई है जिसमें इनके दस्तखत है, या अभी सोर्सेस के हवाले से ही ये जानकारी है? दूसरा, शत्रुघ्न सिन्हा, ऐसे तमाम नेता जो बीजेपी छोड़ के गए उसमें शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, ये सब बहुत ही मतलब एक एक, एक पूरी लॉबी थी जो पहले बीजेपी के नेता थे, बाद में निकलकर बड़े ही मुखर तरीके से विरोध करते थे, उनका भी ममता बनर्जी के खिलाफ जाना बहुत बड़ी बात होगी।
6: देखिए बिल्कुल, इसमें अभी तक जो ये 19 नाम आए ये हमारे पास सूत्रों के हवाले से नाम आए हैं, और ये बिल्कुल ये कह सकते हैं कि बागी सांसदों का जो गुट है उनके हवाले से हमारे पास ये खबर आई है, ये 19 सांसदों का जो गुट अलग बन रहा है वो नाम है। दूसरी बात, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, ये उन लोगों से नाराज हुए थे भारतीय जनता पार्टी में, कई ऐसे लोग थे जिनसे उनकी नाराजगी थी, जिसमें मुखर तौर पर अगर देखा जाए तो अरुण जेटली जो पूर्व में वित्त मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, उनसे शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा नाराज रहते थे, और यही कारण है कि 2019 में जब उनका टिकट का काटने से पहले वो कांग्रेस के अंदर चले गए थे और कांग्रेस में जाके उन्होंने चुनाव लड़ा पटना साहिब की सीट से, जहां से वो चुनाव हारे। उसके बाद वो टीएमसी गए जब यशवंत सिन्हा जो है उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो है वो बने थे।
0: बिल्कुल, धन्यवाद आपका। उसके बाद हालांकि अभी इंतजार करना होगा, अभी सोर्सेज के हवाले से ही ये 19 नाम आए हैं, जब इन पर मुहर लगती है और कम से कम अब तो एक घंटे से ये नाम चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता इनमें से किसी ने भी आके इसको ओपनली विरोध किया है या फिर इसको आर्ग्यू किया है कि भाई ये गलत लिस्ट है, मेरा नाम क्यों चला रहे हैं, मैं तो ममता जी के साथ हूं। अभी तक कोई भी सामने इन 19 नामों में से नहीं आया है। सौगता रॉय हमारे साथ टीएमसी के एक ऐसे सांसद इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं जो कि ममता बनर्जी के साथ खड़े थे और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अभी भी उनके साथ ही खड़े हैं। सौगता जी, सबसे पहला रिएक्शन आपसे, क्योंकि क्या आप अब तो ये नाम लिस्ट आ गई है सर, एक घंटे हो गए, किसी ने इसके खिलाफ बोला नहीं कि भाई हमारा नाम क्यों इसमें डाल रहे हो, तो ऐसा माना जा सकता है कि इन 19 नामों में ज्यादातर ममता बनर्जी को छोड़ रहे हैं। अब इसमें ये सारे के सारे क्या बीजेपी से डर के छोड़ रहे हैं, या आपको इस बात में मेरिट दिखाई देती है कि इनको लग रहा है कि अब सुष्मिता देव कह रही है विकास की वजह से हम छोड़ रहे हैं, अब हम विकास के काम में लगना चाहते हैं बीजेपी के साथ?
7: नहीं, सवाल क्या है?
0: सवाल यह है कि क्या इस सारे के सारे आप लोग आरोप लगाते हैं ना कि बीजेपी के दबाव में कर रहे हैं, अब ये 19 आपके 60 विधायक 19 सांसद अगर निकलते हैं तो ये सारे के सारे केस में फंसे हैं और बीजेपी से डरे हैं, या ये अपने वैचारिक रूप से अब आपसे अलग होना चाहते हैं?
7: ना ना, कोई
0: क्रिटिसिज्म के आधार पे
7: अगर नहीं है, अगर विचार के कारण पर ये लोग छोड़ रहे हैं तो पहले क्यों नहीं बताए? आज जो कंप्लेन उनका हो रहा है वो पहले नहीं क्यों बताया?
0: दादा थोड़ा सा पीछे हो जाइए, पूरा चेहरा नहीं दिख रहा दादा।
7: मेरा तो एक ही बात कहना है कि मैं 2009 से 2026 तक चार बार तिरुमूल का सिंबल पर जीता और ममता बनर्जी को समर्थन लेके जीता। आज ये ममता बनर्जी को छोड़ने का कोई कारण नहीं है, ये लोग पर बीजेपी ऑपरेशन लोटस चालू किया है। ऑपरेशन लोटस का दो हिस्सा है, एक है पैसा दो नहीं तो डराओ, तो ये इसमें पड़ गिर रहा है। ये कोई सिद्धांतिक विचार नहीं है, ये कोई इलाका के उन्नति करने के लिए नहीं है, सिर्फ एक पैसे के लालच में या डर के कारण ये लोग जा रहे हैं। और तो सिद्धार्थ ले,
0: तो सौगात जी आपकी नजर में कोई भी, आप लोगों को मंथन करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर वो अभिषेक बनर्जी की नेतृत्व क्षमता के खिलाफ बोल रहे हैं या पार्टी में जिस तरह से काम चल रहा था उसके खिलाफ बोल रहे हैं, ये सारे के सारे 19 सांसद 60 विधायक सारे के सारे करप्शन में शामिल थे, इसकी वजह से डर के छोड़ रहे हैं?
7: सारे के सारे अलग अलग करके तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं तो बताया ये बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है। बीजेपी का चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत नहीं था, 240 था, तो संख्या बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। ये एक तो मौका मिला, ये मौका में बीजेपी सब लोग को खींच रहा है कि अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी के खिलाफ इनको कंप्लेन था तो पहले नहीं बोले क्यों, आज बोल रहे हैं क्यों? ये तो उनका शर्म होना चाहिए।
0: ठीक है, हमारी भी कोशिश है कि इनमें से कोई एक सांसद भी हमारे साथ जुड़े तो ये सवाल पूछेंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौगता रॉय सांसद हैं टीएमसी की तरफ से, उनको आप सुन रहे थे। अब दिखा दीजिए तमाम मेहमानों को, गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ये देखिए, और इसी के साथ अखिलेश प्रताप सिंह, अनुराग भदौरिया और सत्यप्रकाश मिश्रा सभी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव भाटिया जी आपके साथ शुरुआत करते हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि आज के ही दिन देखिए ये खबर भी आ रही है, मुझे बताया जा रहा है सायोनी घोष का एक उस समय का बड़ा वायरल वीडियो चलाने के लिए, तो आइए आपको सुना देते हैं। सायोनी घोष ने इस चुनाव में वो एक तरह से फेस बन गई थी, गौरव जी एक बार दिखा दीजिए।

0: तो चूंकि आज बड़ी खबर है तो इसी पर एक रिएक्शन के साथ शुरुआत करेंगे गौरव जी। बड़ा सवाल यह है कि आपने सौगाता राय को सुना, वो अभी भी कह रहे हैं, वो उन सबका कहना है कि बीजेपी के असर में, बीजेपी के डर से, बीजेपी के लालच से ये सभी सांसद जा रहे हैं ममता दी को छोड़कर।
1: अंजना जी, मैं समझता हूं कि आज इतिहास लिखा गया है। प्रधानमंत्री जी आज सबसे लंबे समय के निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं और ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। और मैं आपको पहले इस पे एक टिप्पणी दे के फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। 25 साल बेमिसाल, 12 साल प्रधानमंत्री, 13 साल मुख्यमंत्री, कभी चुनाव नहीं हारा, जनता की सेवा करी। जब प्रधानमंत्री बने तो संसद के सामने नतमस्तक हुए और जनता ने 62 साल बाद सुनिश्चित किया कि कोई व्यक्ति 3 बार लगातार चुन के आए और प्रधानमंत्री बने। ये इतिहास है। दूसरा इतिहास ये भी है, 7 प्रदेशों में हमारी सरकार थी जो अभी आप दिखा रहे थे और 22 प्रदेशों पे अब पहुंच गई। प्रो इनकम्बेंसी का जमाना, पहले एंटी इनकम्बेंसी होती थी। 2014 के बाद एक प्रदेश कांग्रेस का नहीं है अंजना जी जहां पे पुनः चुन के दोबारा कांग्रेस पार्टी आई हो सत्ता में आने के बाद। तीसरी बात, जो असंभव को संभव करे वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हैं। अनुच्छेद 370, आजादी के 70 साल तक कोई छू नहीं पाया, संविधान का हिस्सा था, नरेंद्र मोदी जी ने किया। वन रैंक वन पेंशन, महिला आरक्षण, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण, और सबसे बड़ी बात है एक बदलाव क्या आया, यूपीए के समय में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती थी जवानों के पास, देश रफेल नहीं ला पाया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया बुलेट प्रूफ जैकेट भी आए, रफेल भी आए और देश मजबूत हो और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट। ये बड़ी बात है, ये जो बदलाव है, ये कहना गलत नहीं होगा कि जनता ये मानती है। इतिहास अभी लिखा जा रहा है और अभी पूरी पारी पूरी होगी तो आप देखेंगे नए नए कीर्तिमान बनेंगे, ये मेरा यकीन है हर नागरिक की तरह। अब आपके सवाल का उत्तर देते हैं। देखिए अंजना जी, सबसे पहले हमें यह समझना होगा ये जो टीएमसी में टूट है ये क्या है। जब एक नेत्री अपनी पार्टी में केवल तुष्टिकरण करती है, जब बाकी सांसदों को, विधायकों को इज्जत नहीं मिलती है, वो मुद्दे उठाते हैं लेकिन उनकी आवाज बंद कर दी जाती है, जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे होता है, जब राष्ट्रहित से कोई मतलब नहीं होता है और उसके बाद चुनाव जब हारती है तो पार्टी ऐसे ही टूटती है। आप बताइए, ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई, 80 विधायक हैं, जो खबर आज तक ने दिखाई थी, हमने चर्चा भी करी अंजना जी, 7 विधायक आते हैं, 7 विधायक मतलब 9%, 91% विधायक जो हैं वो नाराज हैं ममता बनर्जी से।
0: ठीक है,
1: सांसद 40 के आसपास है, 2 सांसद वहां प्रदर्शन में आए, क्या दर्शाता है कि ममता बनर्जी की जो राजनीति है, भतीजावाद की जो राजनीति है, उसका अंत पास आ गया है। और मैं एक ही बात कहूंगा, ये हश्र ममता बनर्जी का भी हुआ वंशवाद, यही हश्र उद्धव ठाकरे के यहां हमने देखा
0: जी, जी, जी,
1: और यही बात शरद पवार के साथ भी हुई। ये नया भारत है, नया भारत कहता है योग्यता पे आगे उठो, निष्ठा पे उठो, देश के प्रति समर्पण पे उठो, वंशवाद से काम नहीं चलने
0: जी, वाला। अखिलेश जी, वंशवाद का मुद्दा वो उठा रहे हैं अभिषेक बैनर्जी के जरिए, और ये भी जो आज पूरा प्रकरण चल रहा है, 19 के 19 सांसद ये लोग तो मुखर होकर बोलते थे बीजेपी के खिलाफ, अब हम देख रहे हैं कि उनका नाम सामने आ रहा है, हालांकि उनका खुद आकर कंफर्म करना अभी बाकी है। लेकिन इसी के साथ साथ एक भारत का नक्शा आपको दिखाते हैं जिसमें साल 2011 से लेकर 2026 तक राज्यों में जो सरकारें हैं, देखिए साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तब 7 राज्यों में उनकी सरकार थी, और वहां से देखिए कैसे यह मामला आगे बढ़ता है। और इस मैप पर नजर रखिएगा तो आपको इस वीडियो में बदलाव दिखेंगे, जैसे जैसे साल 2014, अभी साल 2013 आप देख रहे हैं, 2014 में देखिए 7 राज्यों में सरकार थी, उसके बाद से देखिए कैसे यह आगे बढ़ता हुआ पहुंचता है साल 2026 में। पूरा मैप एक बार फुल फ्रेम काट दीजिए, हमारे दर्शकों को ट्रांजिशन दिखेगा, अलग अलग राज्यों में उनकी सरकार बनती है और वहां से होते हुए ये देखिए साल 2016, 2017 होते हुए 2026 में जब हम देखते हैं तो कितने राज्यों में सरकार है। क्या ये आपको नहीं लगता है कि ये एक चैलेंज है ऑपोजिशन की तमाम पार्टियों के लिए कि वो ये देखें और समझें कि कैसे राज्य दर राज्य भी उनके हाथ से, केंद्र में तो लगातार तीसरी बार उनकी सरकार बनी है, राज्यों में देखिए आप क्या हालत हो गई है। क्षेत्रफल जिस पर अब उनके है वो लगभग 72% बीजेपी के शासन में है, 22 में अन्य है, 78% जनसंख्या में, 22% में अन्य। बोले अखिलेश जी, आवाज नहीं आ रही है।
2: 12 साल वो बर्बादियों का।
0: बोलिए बोलिए।
2: मेरी आवाज नहीं आ रही भाई, बताइए।
0: अब आ रही है बोलिए।
2: जी जी, 12 साल वो बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, अपने मित्र का साथ निभाता चला गया। मित्र के लिए सब कुछ है, एनडीए का मतलब ये है, नेशनल डिजास्टर अलायंस। मनमोहन सिंह जी ने बहुत पहले भी कहा था कि यदि मोदी जी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के लिए एक आपदा होगी, और है आपदा। आपने दिखाया है कि कहां कहां सरकारें बन गई, बना लिया होगा। लेकिन जिससे तुलना की जा रही है अंजना जी, आपने स्लोगन लगाया मोदी जी का कमाल सबसे लंबा कार्यकाल। लंबा तो हो सकता है लेकिन नेहरू की ऊंचाई नहीं पा सकते, कभी नहीं पा सकते। एक स्टेट्समैन और एक सेल्समैन में तुलना नहीं हो सकती, एक नेता में और एक विक्रेता में तुलना नहीं हो सकती, एक लीडर में और एक डीलर में तुलना नहीं हो सकती। आप कार्यकाल गिनते रहिए, याद किस रूप में किया जाएगा। आपने नक्शा दिखाया कि इन इन राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई। हम वो देखना चाहते हैं, भारतवासी वो देखना चाहते हैं कि हमारा रुपया कहाँ गया, हमारे नौजवानों को नौकरी पाने के अवसर कहाँ गए, हमारा उद्योग धंधा व्यापार कारोबार कहाँ गया, हमारी दुनिया की साख का क्या हाल है, हमारे पड़ोसी राज्यों से रिश्तों का क्या हाल है, हमारे देश की संपदाएं क्यों सब बेची जा रही हैं, क्यों हमारा नेतृत्व सरेंडर किए बैठा है, कंप्रोमाइज पीएम का लेबल क्यों चिपका है आज के प्रधानमंत्री के ऊपर। ये सब बातें महत्वपूर्ण है। अरे दिन गिन के नेहरू से तुलना कर लेगा कोई? 100 जन्म लेने पड़ेंगे फिर भी नेहरू के कद के बराबर नहीं पहुंच पाएंगे।
1: बातें कर रहे कोई
2: नेहरू नेहरू नेहरू नेहरू। देखिए अंजना जी, बीच में मैंने नहीं बोला था भाई, आपने बहुत लंबा चौड़ा झूठ बोला, बीच में मैंने नहीं बोला था।
1: स्पीड बढ़ाइए ना,
2: छठी इकोनॉमी हो गए हैं खिसक के। प्लीज अंजना जी, मैं किसी के
0: गौरव जी,
2: आप तय करेंगे क्या आज तक पे?
0: अंजना देखिए
2: चार चौथी इकोनॉमी से छठी पे आ गए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी पर चंद्रबाबू नायडू का बयान आया है, मोदी जी आप इस सदी को लीड कर रहे हैं, ये चंद्रबाबू नायडू एनडीए के पार्टनर की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा। जनसेवा का आपका संकल्प अतुलनीय है। ये भारत मंडपम में जो एनडीए की अहम बैठक हो रही है उसमें एनडीए के तमाम साथी मौजूद हैं, जिसमें चंद्रबाबू नायडू से लेकर जेडीयू चिराग पासवान सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। पूरे एनडीए को आप पर गर्व है, ये चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं। अखिलेश जी बात पूरी कीजिए, तो जल्दी बोलिए।
2: देखिए कीर्तन में जो साथ में है उसे कीर्तन तो करना ही है। जो आदरणीय मोदी जी के फ्रेम में कोई नहीं आ सकता, उस फ्रेम में चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो उसके साथ क्या सलूक होता हो, बड़े बड़े नेता कैमरे में नहीं आ सकते, माले में नहीं आ सकते हैं, तो वो गुणगान तो करेगा ही, लेकिन देश क्या कर रहा है। इन आपके अलायंस पार्टनरों के गुणगान से आपका मूल्यांकन नहीं होगा, देश के जनता के द्वारा या लोगों के मन में आपके प्रति क्या है। आप लूट के सत्ता तो बना ले रहे हैं लेकिन देश को बर्बाद करके बेच के आप सत्ता में बैठ रहे हैं। आप रोजाना लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आपको लोकतंत्र पसंद नहीं है, आपको संविधान पसंद नहीं है। आप यही एक मध्य प्रदेश उदाहरण है और झारखंड उदाहरण है। यहीं पे आपकी दोनों लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार से आप अपने ग्रिप में रख के कुचल करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, दो उदाहरण आपके पास यहीं पे हैं।
1: उत्तर दे दूं
2: कैसे? आपने कई राज्य गिनाए, मैं गिनाता हूं उत्तराखंड से लेकर के गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल, मेघालय, कितने राज्य गिनाओ जो लूट के इन्होंने सत्ता परिवर्तित करके महाराष्ट्र, ये सब सत्ता कैसे पाइए? क्या चुनी गई सरकारें पाए या जनता के जनादेश से पाए? लूट के लिया, चुनी हुई सरकारों को लूटा, गिराया, खरीदा, दबाया। आप बंगाल की बात कर रही हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री अभी हैं, उसके बारे में कौन सा वीडियो आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगाते थे? आज बीजेपी का आदर्श कौन है? बिहार का सीएम डिग्री गोपनीय है, तुलना होगी नेहरू से। डिग्री गोपनीय है, तुलना होगी नेहरू से। बिहार के सीएम
0: ठीक है,
2: मानक है। बंगाल के सीएम,
1: आसाम
2: के सीएम,
1: उत्तर देने दी
0: गौरव जी,
2: दिल्ली के सीएम, क्या ये आदर्श है?
1: देखिए,
2: इनके बाद मुझे भी अवसर दीजिएगा जाना।
1: ऐसा है,
0: ठीक है अनुराग जी,
1: मैं तो ये मानता हूँ अंजना जी, पूरा देश ये मानता है, नरेंद्र मोदी जी अपनी कर्मठता से, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से आगे बढ़े हैं। कोई सोने का चम्मच मुंह में नहीं डाला था जैसे जवाहरलाल नेहरू के मुंह में डाला था, ये बात याद रखिएगा पहली बात। और जवाहरलाल नेहरू से तुलना हो ही नहीं सकती है। मैंने उपलब्धियां बताई, गर्व से बताई, छाती ठोक के बताई। जवाहरलाल नेहरू वो है जिन्होंने POK बना दिया क्योंकि भारत के क्षेत्रफल की रक्षा नहीं कर पाए, चीन को भारत का हिस्सा दे दिया, ये है नेहरू। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को सीट मिल रही थी, उन्होंने पत्र लिखा पहले चीन को मिलनी चाहिए फिर भारत को मिलनी चाहिए, हिंदी चीनी भाई भाई। आर्टिकल 370 किसकी उपज थी? जवाहरलाल नेहरू की उपज थी। इसलिए उनसे तुलना करना तो शर्मसार कर देना होगा हर व्यक्ति को। जवाहरलाल नेहरू को केवल एक चीज के लिए याद किया जाता है कि सोने का चम्मच लेके कोई पैदा होता है, उसके बाद भी उसकी जो विरासत है वो खत्म हो जाती है क्योंकि मेहनती लोग भारत में आगे बढ़ते हैं, सोनी के चम्मच के वाले नहीं। दूसरी बात, आपने बताया 7 प्रदेशों में हमारी सरकार थी, मोदी प्रधानमंत्री बने, 22 हो गए। कांग्रेस की 15 ऐसे प्रदेश थे जहां सरकार थी, आज 4 पे रह गए। भस्मासुर राहुल गांधी जहां जा गए कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया, यह भी सच्चाई है। तीसरा, कांग्रेस का युग याद करिए, पॉलिसी पैरालिसिस। सोनिया गांधी की दांत पे अगर मक्खी बैठ जाती थी तो कोई हाथ लगा के हटाएगा तो हटेगी, अपने हाथ से मक्खी नहीं हटाई जाती थी, कोई निर्णय नहीं लिया जाता था। AK एंटनी से राफेल का पूछा, कहते पैसे नहीं है। जब पूछा जाता था बुलेट प्रूफ जैकेट कहाँ है, बताते थे वो आ नहीं सकती है, और VVIP चौपर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए आ सकते थे। चौथी बात, आप मुझे ये बताइए, इकोनॉमी, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री का अपना कार्यकाल पूरा करते हैं तो 11वें नंबर पे थी भारत की, 4th तक पहुंचे, और करेंसी फ्लक्चुएशन होता है, कभी 5वें पे कभी 6ठे, लेकिन पूरे जिम्मेदारी से कहता हूं, मोदी जी ने कहा है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी तो भारत बनेगी और उनके कार्यकाल में बनेगी, आप रोक नहीं पाएंगे, ये भी बात याद रखिएगा।
0: छोटा सा किले जी, फिर अनुराग जी के पास जाओगे।
1: आज अंत, एक लाइन बस, एक लाइन की बात,
0: गौरव जी खत्म कर रहे हैं, एक लाइन।
1: एनडीए की बैठक में नेता का सम्मान क्या होता है आपने देखा, मन से सम्मान हुआ, सब खड़े हो गए, मेज थपथपा रहे थे। उधर इंडी अलायंस में राहुल गांधी जाते हैं तो राहुल गांधी को क्या सम्मान मिलता है, जो नेता भी नहीं मानते, ऐसा इंडी अलायंस घटक दलों का एक गुट है। सारे जुगनू चमकते हैं लेकिन सूरज से ज्यादा रोशनी नहीं दे सकते हैं, ये देश जानता है।
0: ठीक है, चलिए अखिलेश जी अब जवाब दीजिए।
2: अंजना जी मैं शुरुआत करता हूं इनके अंत के प्रबोधन से, जिसमें इन्होंने कहा मोदी जी का सम्मान कितना, और निश्चित रूप से भाई रूस वाले के भी इससे अच्छे इसी तरह होता है, चीन वाले का भी इसी तरह होता है, कोरिया वाले का भी इसी तरह से होता है, उसी से आप अपनी तुलना कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। आपने नेहरू जी का कहा कि सोने की चम्मच लेके पैदा हुए, निश्चित रूप से सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, लेकिन अंग्रेजों की गवाही दलाली में नहीं गए, उन्होंने कुर्बानियां दी, उस परिवार का 3 पीढ़ी होश संभालते जेलों की सलाखों के पीछे जाना पसंद किया, लेकिन अंग्रेजों की चाटुकारिता और देश के साथ गद्दारी करना नहीं पसंद किया। 10 साल जेल काटे, जब तुम लोगों के पुराने पुरखे अंग्रेजों से गवाहियां देके इस देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे और भारत के साथ गद्दारियां कर रहे थे, उन लोगों ने जेल में जाना पसंद किया।
1: सरकार चार क्यों रह गई ये तो बता दो।
2: आप सुन तो लीजिए, सुनिए सुनिए और सुनिए, इन्होंने कहा
1: सरकारें चार क्यों रह गई कांग्रेस की इतनी।
2: सोनिया जी और हमारे कांग्रेस के बारे में बीच में ना बोला करो मेरे भाई, कुछ तो सहूर सीख लो। देखो मैं तुम्हारे बीच में कभी नहीं बोलता, कुछ तो थोड़ा सहूर सीख लो।
1: मैं भी सुन रहा हूँ आपकी बात।
2: कहा तीन तीन चुनाव सोनिया जी के नेतृत्व में लड़ा गया संघ और उनको अवसर मिला, उन्होंने पद को त्याग दिया और जिसके लिए आजीवन प्रधानमंत्री बनाने का कसमें खाते थे उस आडवाणी जी के साथ क्या किया इनके नेता ने, जोशी जी के साथ क्या किया और सबके साथ क्या किया। ये देखिए, ये आज अपने आप को कोई कुछ भी कह ले, तुलना कर रहे हैं ना, तुलना कर रहे हैं, मतलब आप है नहीं वो, आप उनसे अपनी तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब ही होता कि आप वो है नहीं,
0: चलिए
2: ना आप बन पाए हैं।
0: अब एक बार अनुराग जी को दिखा,
2: तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं।
0: नेक्स्ट राउंड में अनुराग जी और सत्यप्रकाश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अनुराग जी, अभी अखिलेश जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि भाई चंद्रबाबू नायडू अगर प्रशंसा कर रहे हैं तो कीर्तन कर रहे हैं। भाई आप लोग भी तो साथी हैं, दो गठबंधन के साथियों का मिलना या एक दूसरे की प्रशंसा करना कीर्तन करना हो गया? मतलब सवाल तो यह है ना कि आप लोग वो मंडली बना ही नहीं पा रहे हैं जिसकी जरूरत है बीजेपी से टकराने के लिए। इंडिया गठबंधन में ही बीते दिन बैठक हुई, आपने देखा कितने लोग आए कितने लोग नहीं आए।
3: देखिए नया भारत है ना, नए भारत में जो एनडीए का नेता गठबंधन है ना, कमजोर दलों का गठबंधन है, नया भारत है ना, तो इंडिया गठबंधन से कंपेयर नहीं कर सकते, वहां मजबूत दलों का गठबंधन है। नया भारत है ना, 2014 में रुपए एक रुपए डॉलर के मुकाबले कितना था, 60 रुपए का, आज क्या हो गया, एक डॉलर खरीदने जाओ तो 95 रुपए से ज्यादा हो गया। नया भारत है भैया, 12 साल में 61% हमारा रुपया गिरा, नया भारत है। 2014 में पेट्रोल की कीमत क्या थी, 72 रुपए, आज क्या है, 102 रुपए, कितना यहाँ 12 सालों में कितनी इसमें गिरावट है, बढ़ोतरी 41%। नया भारत है, डीजल में भी 71% की बढ़ोतरी, माने 55 था 2014 में, आज मिला 95 में। ये नया भारत है, 2 साल में हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नया भारत, आज क्या है, 5 लाख दे पाए, माने 20 करोड़ नौकरियां अभी भी पता नहीं कहाँ है। नया भारत है ना, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, नए भारत में नोएडा के अंदर में गड्ढे में गिर के लोगों की मौत हो जाती है, नया भारत है ना, नए भारत में आग लग जाती है दिल्ली में, यहाँ दमकल को पहुंचने में 1 घंटा लगता है, 21 लोग जल के मर जाते हैं, नया भारत है ना। नए भारत में क्या है, काला धन लाने की बात की 2014 में, काला धन लाएंगे, 41,000 करोड़ रुपए लाने की बात थी, 388 करोड़ ले पाए, नया भारत है। भ्रष्टाचार की बात करेंगे और जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे उन्हें मुख्यमंत्री मंत्री बना देंगे, नया भारत है। नया भारत में ऐसा होता है, जिनको भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे उनको मंत्री बना देंगे, नया भारत है ना। महिला आरक्षण की बात करेंगे, महिला आरक्षण देंगे नहीं, हम कहें 543 सांसद उसमें महिला आरक्षण दे दो, नहीं देंगे, नया भारत है ना। नए भारत में क्या होता है, जो प्रभु राम के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं, चाहे नरेश अग्रवाल क्यों ना हो, नया भारत है। नए भारत में सनातन का जो अपमान करेगा उसको पार्टी में ले लेंगे, चाहे इनके नरेश अग्रवाल हो या संजय निषाद हो, नया भारत है ना। वो प्रभु राम के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, उनको भी मंत्री बना दिया, नया भारत है। नए भारत में क्या होगा, आज की डेट में एक्सपोर्ट हमारा घाटा कितना, व्यापार घाटा कितना है, 280 करोड़। नया भारत है ना, नए भारत में देखिए कमाल का नया भारत है भाई, यहाँ पर्चा लीक हो जाते हैं, यहाँ पे 90 करीब पर्चा लीक हो गए राज्यों और केंद्रों का मिला के, नया भारत है भैया, पर्चा लीक हो जाएगा, 6 करोड़ यहाँ पे छात्र यहाँ अभ्यर्थी यहाँ प्रभावित हुए, नया भारत है। नया भारत में अच्छी बातें बोल रहा हूँ, कोई गलत तो नहीं, नहीं नहीं नहीं मैं
0: जल्दी जल्दी पूरा कीजिए,
3: और 10 सेकंड और दीजिए। नया भारत है ना, मैं तो इतनी जल्दी बोला, इतनी जल्दी में तो आपका कोई प्रवक्ता नहीं बोल पाया था, आए बाएं साएं सब बोल रहे थे, कोई भी, हम तो तथ्य के साथ बोल रहे हैं। 2004-2005 के मुकाबले 2013-2014 में एक्सपोर्ट कितना बढ़ा था पता आपको, 447%, और इनका कितना बढ़ा है, 41% 2014 से 2024 में, वहां पे 52 अरब डॉलर से बढ़ के 313 अरब डॉलर हो गया था, और यहाँ पे 437 हो पाया है, 313 से बढ़ के 437। सोचो ये नया भारत है। और मेक इन इंडिया की बात करते थे कि मेक इन इंडिया होगा, मेक इन इंडिया कहाँ है भैया, डिजिटल भारत फेल, मेक इन इंडिया फेल, जब एक्सपोर्ट इतना, जब आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यहाँ पे व्यापार घाटा हो रहा है, तो फिर कहाँ का नया भारत है। नया भारत में सिर्फ भ्रष्टाचार पे, भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल करना, वंशवाद इनकी पार्टी में है, नया भारत है ना, वंशवाद इनकी पार्टी में,
0: सारे वंशवादी पार्टी को अपने साथ अखिलेश जी और उनकी बातों का फिर मैं जाऊंगी गौरव जी के,
3: चाहे केंद्र में हो राज्य में हो।
4: अरे वो चुप तो, वो चुप तो हो।
0: हाँ बोलिए बोलिए।
4: देखिए अखिलेश जी ने शुरुआत करी है कि नेहरू जी और मोदी जी की तुलना, मैं तुलना नहीं करना चाहता। मोदी जी खुद कहते हैं वो नामदार लोग हैं, हम कामदार लोग हैं। नेहरू जी आजादी के आंदोलन में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाई, सलाम है। लेकिन जब याद करेंगे नेहरू जी को, आलोचनात्मक ढंग से भी याद करेंगे, तो 62 का युद्ध हम भूल नहीं पाते। गहरा दाग है हमारे ऊपर जब अरुण नेहरू की किताब पढ़ते हैं कि कैसे अमेरिका के सामने एकदम नतमस्तक हो गए, मदद मिली नहीं। हम नहीं चाहते आज नेहरू जी को कोसना, हम चाहते हैं कि नया भारत कैसा है। अनुराग भदौरिया जानना चाहते हैं नया भारत कैसा है, तो 13 और 14 में अनुराग भदौरिया जी संसद में नोट लहरा रहे थे, आप ही के सांसद थे, बैकडोर से सब कोई कांग्रेस के एकदम चाटुकारिता में मस्त थे। क्यों? नोट मिला था क्या? वोट के बदले नोट सेलेक्ट कर रहे थे क्या? आपके एक सांसद जेल तक गए थे। रुक जाइए, आपके बीच नहीं बोला मैं, एक मिनट ये बकबक मत करिए, आपके बीच नहीं बोला मैं, मत करिए ये काम अनुराग जी प्लीज, आपके बीच नहीं बोला मैं। आपको बताऊंगा नया भारत कैसा है। नया भारत वो है कि 26/11 में जब हुआ मुंबई पर हमला, तो बस मिमियाते रहे अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाकर के। नया भारत पाकिस्तान के अंदर मार कर आया, नया भारत 370 हटा के आया, और नया भारत में आज करोड़ों लखपति दीदियां हैं। आप तो आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे वाले के साथ गोद में चिपक गए, जिन्होंने इमरजेंसी में इस देश का संविधान ध्वस्त कर दिया, उनके चाटुकारिता में लगे रहे। नया भारत वो है जो सदन पास करेगा उससे देश चलेगा। पूर्वोत्तर के राज्यों में कितनी बार गए थे मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी से पूछकर 70 से ज्यादा बार पूर्वोत्तर राज्य गए, दिवाली मनाई कश्मीरियों के साथ। ये प्रधानमंत्री का नया भारत है। चौथे पायदान पर इकोनॉमी को पहुंचाया और मेक इन इंडिया में सबसे ज्यादा एप्पल आईफोन, इवन टैरिफ लगने के बाद 50% टैरिफ लगने के बाद सप्लाई किया, वो नया भारत है। अटल भी रुक जाइए, फालतू बात नहीं, ये बीच में नहीं, ये बीच में नहीं, ये बीच में नहीं, नहीं ये बीच में नहीं, ये बीच में मिस्टर भदौरिया, ये बीच में नहीं। आपको बिलबिलाना नहीं है, अभी अभी मैं इतना नकाब उतारूंगा आपका, अभी और बिलबिलाएंगे कि नया भारत कहते किसको है। अरे सुनिए, दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी को 32 से ज्यादा सम्मान मिला, ये इस देश के अदम्य साहस और राष्ट्रीय नीति का परिचायक है। आपको नया भारत का निर्माण दिखता नहीं, आपने परिवारवाद का चश्मा पहनकर पूरे लोकतंत्र को देख रहे। बीच में बोलिए मत, मैं आपके पूरे नकाब को उतारूंगा कि नया भारत कहते किसको है। कभी सुना था कि आयुष्मान भारत में लोगों को, इस देश के गरीब लोगों को इलाज मिलेगा? कभी सुना था कि 4 करोड़ लोगों को इस देश में घर मिलेगा? कभी सुना था कि इस देश के गरीबों के घर में सोलर एनर्जी से पावर पहुंचेगा, हर घर नल का जल पहुंचेगा? कभी सुना था कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा? कभी आपने सुना था इस नए भारत के निर्माण में, कभी सुना था इस नए भारत के निर्माण में कि 50 करोड़ गरीबों के पास बैंक में खाता नहीं था, नरेंद्र मोदी आए और दे करके गए? आपके समझ में नहीं आएगा नया भारत का निर्माण। क्यों? क्योंकि आपकी सत्ता तो बस चहूट लो, सीधे सीधे घर में हड़प कर लो, भ्रष्टाचारी व्यवस्था कायम कर दो। अब मैं ये ठीक नहीं है, ये अनुराग भदौरिया जी
0: की आवाज दीजिए, कर दीजिए। मैं अनुराग जी आपसे जवाब तभी लूंगी अगर आप बीच में चुप रहेंगे, क्योंकि देखिए आप जितना बोल रहे हैं वो और उतना ऊंचा बोल रहे हैं, मतलब मामला बहुत ही हाई डेसिबल हो गया है। बारी बारी से प्लीज जल्दी से पूरा कीजिए सत्य प्रकाश।
4: नहीं बोला, उनका सुनता रहा मैं।
0: नहीं ठीक है,
4: मैं देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेहरू जी पर कोई कटाक्ष करके आज अपने रिकॉर्ड को नहीं बताया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने चुनौतियां नेहरू जी के मुकाबले अधिक थी। वो साधारण से घर में पले बढ़े, आगे बढ़े, जो भी शिक्षा दीक्षा उन्होंने अपने प्रयासों से हासिल किया, इस देश का लोकतंत्र महान है, संविधान महान है कि वो जनता में विश्वास हासिल कर तीसरी बार सत्ता में पहुंचे हैं, और उन्होंने सेवा को धर्म बनाया है। वो देश के प्रधान सेवक हैं, वो कहते हैं कि मैं सेवक हूं। ये प्रधानमंत्री ये तो खुद बोल गए, हाँ चांदी के चम्मच पे लेके पले, कहे कि 10 साल जेल रहे नेहरू जी को, कितनी लाठियां पड़ी, आत्मकथा में मिलता नहीं है। मैंने कई बार पढ़ी उनकी आत्मकथा, लाठी का दाग नहीं मिलता है। लेकिन जो लोग इस देश में इमरजेंसी में लाठी खाए, उन लोगों ने इस देश के संविधान को बचाने का काम किया, उसमें नरेंद्र मोदी भी हैं और तमाम समाजवादी हैं। आज समाजवादी तो कांग्रेस के चट्टे बट्टे बन करके बैठ गए, वो बताएंगे नया भारत। मैं आखिरी लाइन बोलूं, ये वो भारत है जो दुनिया में दहाड़ता है, मेक इन इंडिया पे काम करता है, वोकल फॉर लोकल है और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए।
0: अनुराग जी, अनुराग जी, अब आपको मौका दे रही हूँ, छोटा सा रिबटल, फिर मुझे गौरव जी और अखिलेश जी के पास जाना है।
4: मोदी जी का योगदान
0: छोटा सा
5: एकदम।
3: आज का नया भारत यह है कि जेडीयू के नेता अपने जेडीयू के मुख्यमंत्री को हटा दिया गया उसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं जुटाते। यह नया भारत है, ये नया भारत है कि चुने हुए मुख्यमंत्री को राज्यसभा भेज देते हैं, उनके नेता यहाँ।
0: अनुराग जी, एक सवाल है आपसे, एक सेकंड टोक रही हूँ आपको, आप ही से प्रश्न है, छोटा सा जवाब दीजिएगा, ये अखिलेश जी से मैं पूछूंगी। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि इनको हिम्मत नहीं है, इतने डरे हुए हैं, भाई इनके दम में तो केंद्र में सरकार चल रही है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या जेडीयू है, ये तो आपको भी पता होगा, नंबर 240 सीटें बीजेपी की आई, इनके दम पर सरकार चल रही है, फिर भी ये लोग डरे हुए हैं।
3: बिल्कुल, देखिए सवाल ये है,
0: किस
3: सवाल
0: बात से?
3: राष्ट्र के साथ ये लोग नहीं है, सत्ता के साथ है।
0: किस
3: सत्ता
0: बात से डरे हुए?
3: फर्क होता है, देख मेरी बात सुनिए, सत्ता का मतलब ये होता है कि नहीं, मैं वही तो बता रहा हूं ना, इनको सत्ता की लालच दिखाई दे रही है। सत्ता और राष्ट्र में फर्क होता है, राष्ट्र एक ऐसी चीज होती है जिसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, सत्य बोलना पड़ता है और जनता की आवाज उठानी पड़ती है, उसको राष्ट्रवादी बोलते हैं।
0: अखिलेश जी,
2: अंजना जी देखिए, अभी हमारे दो बीजेपी

0: such an ordinary thing to walk home from high school. Her name was Mickey Costanzo, just 16. She didn't have far to go, seemed perfectly safe, until it wasn't. What happened to Mickey? I'm Keith Morrison, and this is 5 Miles from Home, an all-new podcast from Dateline.
1: To listen to the latest episodes each week completely free, search 5 Miles from Home on TuneIn.
2: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
3: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स
2: सिंह जैसी
4: शक्ति मुझ में।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
11: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
12: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
10: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
13: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
11: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
10: जहां खबर वहां खबरदार।
14: इन एसोसिएशन विद
15: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
17: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
10: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल।
18: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी।
10: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल।
18: CBSE के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
10: छात्रों को दिया मंच।
18: उज्मा हमारे साथ कोटा से, और अदिति मुंगेर से हैं, और तानिया कोटा से हैं, और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
19: मैम ये देखिए, इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
20: IIT मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
10: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर।
18: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक, और अब सरकार की तरफ से CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
10: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।
18: रिकॉर्ड से आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई। सबसे लंबे समय तक भारत का निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का पंडित नेहरू का रिकॉर्ड मोदी ने आज तोड़ दिया। मोदी लगातार 4,399 दिनों से प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं। मोदी की इस उपलब्धि पर कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया। PMO के अधिकारियों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है, जबकि BJP अध्यक्ष नितिन

नवीन से लेकर बीजेपी मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने देश के अलग अलग मंदिरों में पूजा की। प्रधानमंत्री मोदी का ये रिकॉर्ड ऐसे समय में बना है जब विपक्ष बीजेपी के मुकाबले चुनावी प्रदर्शनों में तो फिसड्डी है, लेकिन पश्चिम एशिया संकट से बने आर्थिक हालात और टीएमसी में मची उठापटक जैसे मसलों पर सरकार को घेर रहा है। नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के दावे पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्योंकि नेहरू पहले आम चुनाव के बाद पीएम बनने के पहले भी भारत के प्रधानमंत्री थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पोस्ट में लिखा, भारत 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में नहीं आया था। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारी राष्ट्रीय यात्रा 15 अगस्त 1947 को शुरू हुई थी। जयराम रमेश का बयान है, जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक ऐसी असाधारण कैबिनेट का नेतृत्व किया जैसी मिसालें दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती हैं। अगले 5 वर्षों में आधुनिक भारत आकार लेने लगा। इस बीच मंगलवार को मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा उम्मीदवारी का पर्चा खारिज होने को लेकर भी कांग्रेस लोकतंत्र का सवाल उठा रही है। ऐसे हमलों के बावजूद विपक्ष के कैंप में भगदड़ है। टीएमसी की एक और राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया है। वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मिलने भी गयी। सुष्मिता देव जैसे टीएमसी के बागियों के दांव से विपक्ष बेहद कमजोर नजर आ रहा है। उधर बीजेपी एनडीए नेताओं की बैठक से गठबंधन की मजबूती का संदेश दे रही है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया
2: You're listening Uninterrupted with TuneIn Premium. Enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: रिकॉर्ड से आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई। सबसे लंबे समय तक भारत का निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का पंडित नेहरू का रिकॉर्ड मोदी ने आज तोड़ दिया। मोदी लगातार 4,399 दिनों से प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं। मोदी की इस उपलब्धि पर कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया। पीएमओ के अधिकारियों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है, जबकि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर बीजेपी मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने देश के अलग अलग मंदिरों में पूजा की। प्रधानमंत्री मोदी का यह रिकॉर्ड ऐसे समय में बना है जब विपक्ष बीजेपी के मुकाबले चुनावी प्रदर्शनों में तो फिसड्डी है, लेकिन पश्चिम एशिया संकट से बने आर्थिक हालात और टीएमसी में मची उठापटक जैसे मसलों पर सरकार को घेर रहा है। नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के दावे पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्योंकि नेहरू पहले आम चुनाव के बाद पीएम बनने के पहले भी भारत के प्रधानमंत्री थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पोस्ट में लिखा, भारत 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में नहीं आया था। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारी राष्ट्रीय यात्रा 15 अगस्त 1947 को शुरू हुई थी। जयराम रमेश का बयान है, जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक ऐसी असाधारण कैबिनेट का नेतृत्व किया जैसी मिसालें दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती हैं। अगले 5 वर्षों में आधुनिक भारत आकार लेने लगा। इस बीच मंगलवार को मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा उम्मीदवारी का पर्चा खारिज होने को लेकर भी कांग्रेस लोकतंत्र का सवाल उठा रही है। ऐसे हमलों के बावजूद विपक्ष के कैंप में भगदड़ है। टीएमसी की एक और राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया है। वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से मिलने भी गयी। सुष्मिता देव जैसे टीएमसी के बागियों के दांव से विपक्ष बेहद कमजोर नजर आ रहा है। उधर बीजेपी एनडीए नेताओं की बैठक से गठबंधन की मजबूती का संदेश दे रही है। आज तक ब्यूरो।

दुनिया को अमन और शांति का फर्जी ज्ञान बांटने वाले कंगाल पाकिस्तान का असली और वैश्य चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान की कायराना फौज ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का सरेआम उल्लंघन किया और आधी रात के अंधेरे में घोस्त, कुनात और पक्तिका प्रांत के रिहायशी इलाकों पर बारूद की बरसात। पाकिस्तानी हवाई हमलों ने सोते हुए अफगानी नागरिकों के आशियानों को शमशान बना दिया। इस अमानवीय और बर्बर हमले में अब तक कई बेगुनाह नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद मासूम बच्चों और महिलाओं की है। घोस्त के स्पीर जिले के मैना गांव में हुए हमले की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक ही झटके में एक महिला और 7 से 10 साल की उम्र के 8 मासूम बच्चों को मौत की नींद सुला दिया गया। 10 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इस क्रूरता पर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और तालिबान प्रशासन भड़क उठा। करजई ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि इस्लामाबाद अपनी गलती और शत्रुतापूर्ण नीतियों का नतीजा भुगत रहा है और अफगानिस्तान के प्रति युद्ध व विनाश की नीति उसे ले डूबेगी। अब जरा पाकिस्तान के पाखंड का लेवल भी देखिए। ये वही पाकिस्तान है जो फिलिस्तीन और गाजा के नाम पर छाती पीटता है, दुनिया भर में इस्लाम का स्वयंभू ठेकेदार बनता है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कल ही रावलपिंडी में लेबनान के आर्मी चीफ को शांति और सुरक्षा का पाठ पढ़ा रहे थे और उसी रात मुनीर ने अपनी फौज को अफगानिस्तान के मासूम बच्चों पर बम गिराने का हुक्म दे दिया। यही नहीं, उसी दिन मुनीर की कातिल फौज पीओके में अंधाधुंध गोलियां बरसा रही, लाशें गिरा रही थी। वही रात में अफगानिस्तान में मासूमों का कत्ल करने का पाप कर रही थी। यानी एक तरफ शांति का ढोंग और दूसरी तरफ बेकसूरों और मासूमों का कत्लेआम। पाकिस्तानी सेना की इसी दरिंदगी पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बुरी तरह बेनकाब कर दिया। भारत ने यूएनएससी में दहाड़ते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की लैंडलॉक्ड यानी चारों तरफ से जमीन से घिरे होने की लाचारी का हथियार की तरह इस्तेमाल किया और हवाई हमले करके सैकड़ों बेगुनाह नागरिकों की जान ले ली। चारों तरफ से थू थू होने के बाद अब बौखलाया पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ रोना रो रहा है। वो पाकिस्तान जिसने दुनिया भर में आतंक फैलाया, अब अफगानिस्तानियों को आतंक का गढ़ बता रहा है। पाकिस्तान के राजदूत आसिम इफ्तिकार उल्टा अफगानिस्तान पर TTP और PLA को पनाह देने का बहाना बना रहे हैं। ऐसे झूठे आरोपों से पाकिस्तान न तो अपनी कायरता छिपा सकता है और न ही आतंकी होने का दाग मिटा सकता है। सच यही है कि जनरल आसिम मुनीर के हाथ बेगुनाह बच्चों और महिलाओं के खून से रंगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: नमस्कार, मैं नेहा बाथम। शाम के 7 बजने वाले आज तक के इस खास शो में अगले आधे घंटे में दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शामिल होगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मोदी ने बतौर निर्वाचित पीएम सबसे लंबे कार्यकाल का बनाया रिकॉर्ड। एनडीए की बैठक में चंद्रबाबू नायडू ने अभिनंदन प्रस्ताव बताया। सदी के नेता शुभेंदु निकलाई झालमुड़ी। ममता को फिर लगा बड़ा झटका। बागी गुट के 19 लोकसभा सांसदों ने जारी की लिस्ट। शत्रुघ्न सिन्हा और सायुनी घोष का भी नाम। ऋतव्रत का दावा, 64 एमएलए हमारे साथ। दिल्ली में राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की अहम बैठक। कांग्रेस और टीएमसी में गठबंधन की संभावना पर चर्चा की खबर। बंगाल पर भी बात। कांग्रेस को लगी दोहरी चोट। झारखंड में एनडीए समर्थित राज्यसभा प्रत्याशी परिमल नथवानी का पर्चा वैध साबित। एमपी में मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर आयोग जल्द करेगा फैसला। ईरान पर फिर बारूद बरसा सकते हैं ट्रंप। कहा फैसला लेने के बेहद करीब। निशाने पर पावर प्लांट और पुल। तेहरान पर लगाया डील में देरी का आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका। शो की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि टीएमसी के 19 बागी सांसदों की लिस्ट सामने आ गई है। बागी सांसदों में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम है और इसके अलावा यूसुफ पठान और अकाली घोष का भी नाम है। इनमें शताब्दी रॉय, सायुनी घोष, शर्मिला सरकार और अरूप चक्रवर्ती के भी नाम शामिल है। तो बागी सांसदों की लिस्ट आ चुकी है, सांसदों के नाम सामने आ चुके हैं। यूसुफ पठान को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी थी। इनकी सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन इन्हें सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। अब शताब्दी रॉय भी इस लिस्ट में शामिल हो गई हैं, सायुनी घोष का भी इस लिस्ट में नाम है, शर्मिला सरकार भी अब इस बगावती सांसदों की लिस्ट में है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, ये जो 19 सांसदों की सूची है, ये अब पक्की माने जो 4-5 नाम है, इसके अलावा कोई और नाम शुमार है इसमें?
1: देखिए, अभी कुछ और नाम जो है वो जुड़ सकते हैं, जो हमारे सूत्रों के अनुसार हमको खबर मिल रही है। और भी सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं। और स्पीकर आज देर शाम जो है, जब वो दिल्ली लौट कर आ जाएंगे, तो उसके बाद जो है टीएमसी के बागी सांसदों के द्वारा जो है वो समय मांगा जाएगा, जिसमें काकोली घोष दफ्तवार जो है वो स्पीकर से मुलाकात करेंगे और इन बागी सांसदों का जो पत्र है वो उनको सौंपेंगे और अलग गुट बनाने की जो मांग है वो स्पीकर के सामने रखेंगे। और उसके साथ साथ जो है वो ये भी कहेंगे कि वो एनडीए के पास जो है अपनी बेंचेस और अपनी सीटें चाहते हैं, क्योंकि वो एनडीए का समर्थन करना चाहते हैं कई मुद्दों को लेकर। तो कहीं ना कहीं एक चीज जरूर है कि टीएमसी के अंदर जिस तरीके की टूट आपको देखने को मिल रही है, उसका अंदाजा शायद ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी ने कभी नहीं लगाया था कि चुनाव की हार के बाद इस तरीके की टूट होगी। विधानसभा के अंदर 60 विधायक जो है अलग गुट बना लेंगे, उसके बाद लोकसभा में और 2 राज्यसभा सांसद जो है इस्तीफा दे चुके हैं। आने वाले दिनों में जो है और राज्यसभा में इस्तीफे हो सकते हैं, जो हमारे को खबर मिल रही है। उसमें कोयल मलिक जो है राज्यसभा की, वो अगले 102 दिनों के अंदर जो है वो राज्यसभा से इस्तीफा दे सकती हैं।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ममता बनर्जी को झटके पे झटका लग रहा है। राज्यसभा की सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ दी है, राज्यसभा की सदस्यता भी छोड़ दी है। उनसे पहले सुखेंदु रॉय के साथ उन्होंने छोड़ा था पद सत्ता जाने के बाद। अब टीएमसी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है।

0: अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिल रहे हैं। ममता बनर्जी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और केजरीवाल से मिल रही हैं। और मुलाकात का मजमून ये है कि दिल्ली में बैठकर ममता अपना राजनीतिक वजूद बचाने की जद्दोजहद कर रही हैं, लेकिन वो वजूद बचता नहीं दिख रहा। पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, आज सुष्मिता देव पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता दोनों छोड़ गई।
1: मैं किस तरह की राजनीति करूंगी, कहां से करूंगी, ये मेरा निर्णय है और मेरा हक है, क्योंकि राज्यसभा मुझे एक पार्टी से मिला था
2: जी।
1: हाँ, जहां विधायकों ने वोट दिया था, बंगाल के लोगों ने इनडायरेक्टली दिया था। तो अगर पार्टी से इस्तीफा दिया तो फिर राज्यसभा सीट भी छोड़ना चाहिए।
0: आज सुबह सुबह सुष्मिता देव की असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। दोनों असम से हैं तो लग यही रहा है कि सुष्मिता के इस्तीफे के पीछे हिमंता बिस्वा सरमा की बड़ी भूमिका है। ये भी तय लग रहा है कि इस्तीफे से खाली सीट पर उपचुनाव में बीजेपी सुष्मिता को उम्मीदवार बनाएगी।
1: मेरी राजनीति बंगाल में नहीं है, मेरी राजनीति असम में है
2: जी।
1: और मुझे असम में ही राजनीति करना है।
0: लेकिन ममता के सामने बड़ा सवाल ये है कि अब उनका क्या होगा, शायद वो आगे का रास्ता तलाश रही हैं।
3: जीतने के बाद भी बोले थे, बोलने की कोशिश किए थे, वहाँ पे सिस्टम नहीं है बोलने का, बोलने से सब रोकते हैं जो नहीं बोलना है नहीं बोलना है। तो और अगर बोले भी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलते, आप 7 दिन 10 दिन इंतजार करो।
0: तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने दिल्ली आई ममता बनर्जी यहाँ से क्या हासिल कर लौटती है, क्योंकि कोलकाता में तो उनके लिए हर दिन भारी साबित हो रहा है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और मध्यप्रदेश के बाद झारखंड में भी कांग्रेस को करारा झटका लगा है, क्योंकि बड़ी खबर यह आ रही है कि निर्दलीय राज्यसभा सीट के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे परिमल नाथवानी का नामांकन पत्र वैध माना गया है। नाथवानी के नामांकन पत्र पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। अब इस पत्र में नाम को लेकर की गई शिकायत चुनाव आयोग ने नहीं मानी है, नामांकन पत्र को वैध मान लिया है। नामांकन पत्र में नाम को लेकर शिकायत थी, कहीं पर परिमल नाथवानी लिखा था, कहीं पर नाथवानी परिमल लिखा था, इसको लेकर शिकायत की गई थी। लेकिन अब इस नामांकन पत्र को चुनाव आयोग द्वारा वैध माना गया है। सत्यजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्यजीत, अब शिकायत तो बेकार चली गई, अब सीधे मायने में ये समझना होगा कि परिमल नाथवानी एक बड़ी और चुनौती के रूप में उभर कर सामने आएंगे।
5: देखिये, बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती बनेंगे परिमल नाथ मानी, क्योंकि उनके पास 24 एनडीए विधायकों की सपोर्ट है और यहाँ जादुई आंकड़ा जो है वो 28 का है, तो यानी उनको 4 ही विधायक मैनेज करने हैं। और अगर कांग्रेस के दलगत स्थिति को देखा जाए तो उनके पास 16 विधायक हैं, यानी 12 शॉट। तो कांग्रेस शायद ये सोच रही थी, इस परसेप्शन में थी कि अगर उनके शिकायतों को, उनकी आपत्तियों को कंसीड कर लिया जाता है और स्क्रूटनी जब होगी, उस वक्त जो है कुछ कॉलम जो है टेक्निकल एरर था, अगर नॉमिनेशन किसी तरह से रद्द हो जाता है तो मैदान में दो ही उम्मीदवार रह जाते हैं और यहाँ पे दो ही सीटें हैं, तो अनकंटेस्टेड ही कांग्रेस को सीट मिल जाती। ये जरूर जो है कांग्रेस का मंसूबा रहा होगा, जिसपे पानी फिर गया और दोहरा झटका लगा, मध्य प्रदेश में झटका जहां उनके उम्मीदवार की जो नॉमिनेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और यहां एनडीए सपोर्टेड निर्दलीय उम्मीदवार के नॉमिनेशन का रिजेक्शन का मांग हो रहा था तो उनके नॉमिनेशन को वैलिड पाया गया, तो दोहरा झटका लगा। और ये विधानसभा का परिसर जो है, सुबह से यहाँ पे हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता यहाँ ठीक विधानसभा के गेट के बाहर सुबह से ही
4: सत्यजीत नजर बनाए रखी, क्योंकि इस बीच मीनाक्षी नटराजन से जुड़ी खबर भी आ रही है, उनके नामांकन लेकर विरोध जारी है। कांग्रेस ने आज एक दिन का उपवास रखा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा।
6: ये विरोध प्रदर्शन उस फैसले के खिलाफ है जिसमें मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता एक दिन का उपवास करके इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा सीट के लिए प्रत्याशी नहीं रही। बाह में काली पट्टी बांधकर उपवास पर बैठे हैं कांग्रेस के नेता।
7: कांग्रेस के तमाम दूसरे नेता जो हैं, वो राजधानी भोपाल में इकट्ठा हुए हैं और इस उपवास के जरिए मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द हुआ है, न केवल उसका विरोध जता रहे हैं बल्कि साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि कि चुनाव आयोग ने राजनीति से प्रेरित होकर के मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को जानबूझ करके रद्द किया है।
6: उधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इधर दिल्ली में कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन के मामले में चुनाव आयोग में लिखित शिकायत दर्ज की। अब कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग को भी निशाने पर ले रहे हैं।
2: मैं तो बहुत पहले एक बात कही थी कि एक कुर्सी इलेक्शन कमीशन में डाल दीजिए, जो पर्ची बीजेपी ऑफिस से आए उसको सर्टिफिकेट दे दे, तो चुनाव का पैसा तो बचेगा देश का।
8: उस पे कोई FIR नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई सजा नहीं, लेकिन नामांकन रद्द कर दिया क्योंकि वो कांग्रेस की प्रत्याशी।
6: लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर था, इसलिए उसने जानबूझकर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करा दिया।
9: जिस दिन दिग्विजय सिंह जी को टिकट नहीं मिला तो उनके नेताओं ने खुलेआम बोला था कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होगी, और कांग्रेस को मालूम था क्रॉस वोटिंग होगी, और इसीलिए मेरा स्पष्ट आरोप है, मेरा स्पष्ट मानना है कि ये फॉर्म कांग्रेस ने स्वयं ने रिजेक्ट करवाया है।
6: मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद अब MP में तीनों सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट निर्विरोध है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और इस वक्त PM मोदी के सम्मान में भारत मंडपों में NDA का कॉन्क्लेव चल रहा है, जहां PM को लेकर अभिनंदन प्रस्ताव में कैबिनेट के मिनिस्टर और NDA के मुख्यमंत्री PM को लेकर अपने मन की बात कह रहे हैं। NDA के तमाम घटक दल इस कार्यक्रम में शामिल हैं। स्थिरता और निर्णय प्रधानमंत्री की पहचान है, ये अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा। 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान है मोदी, ये एकनाथ शिंदे का कहना है। तो आज इस बड़े कॉन्क्लेव में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और कैबिनेट मंत्री शिरकत कर रहे हैं। NDA नेताओं ने प्रधानमंत्री को सम्मानित भी किया।
10: नरेंद्र मोदी जी इज इक्वल टू एनी लीडर इन द वर्ल्ड, आई कैन से वेरी क्लियरली ऑल सर्वेस आर इंडिकेटिंग who is very popular leader globally, that is our honorable prime minister, that is our pride for the nation, we are very happy for that, sir, really, that is wherever you go, Indians and India is well respected because of you, sir.
11: इस महान नेतृत्व की तपस्या के सफल होने का तप पूर्ति का आज यह गौरवशाली दिन है, इसलिए हम सब लोग खुश हैं। NDA के सभी घटक पिछले 12 वर्ष केवल सत्ता के नहीं थे, बल्कि राष्ट्र सेवा की अखंड और अनवरत तपस्या के थे। 12 वर्षों का चमकदार, बेदाग और निष्कलंक कार्यकाल इतिहास में दुर्लभ ही देखने को मिलता है। एक भी दिन आराम नहीं, एक भी पल खुद के लिए नहीं, हर क्षण हर पल सिर्फ राष्ट्र के लिए समर्पित हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आप NDA के गठबंधन दलों के नेताओं के साथ सिर्फ औपचारिक और राजनीतिक संबंध नहीं रखते, आपका हमारे साथ एक आत्मीय और पारिवारिक रिश्ता भी है।
4: और अब से कुछ देर बाद इस कॉन्क्लेव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने पद संभालते ही आज उनके 4,399 दिन पूरे हो गए हैं। बीजेपी इस मौके को बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है, जिसे लेकर पार्टी अपने अपने स्तर पर और अपने अपने तरीके से जश्न मना रही है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा तो जश्न की अलग अलग तस्वीरों में ये खास तस्वीर भी नजर आई, जहां बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपने हाथों से पीएम के लिए झालमुड़ी बनाई। पीएम के सम्मान में कैबिनेट की बैठक हुई तो वहीं एनडीए के सीएम भी प्रधानमंत्री के सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। आज सुबह से ही पीएम के इस रिकॉर्ड की तस्वीर देखने को मिली। कैबिनेट मंत्री से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तक मंदिरों में पूजा पाठ करते नजर आए।
1: श्री मोदी जी को दीर्घायु दे और लंबे समय तक देश को सेवा करने का अवसर दे।
2: गरीबों के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया है।
3: मोदी जी के कार्यकाल में विकसित भारत की तरफ हमने अपना कदम रखा है
4: और उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री जी और एनडीए सरकार संपूर्ण रूप से समर्पित भाव से रात और दिन और दिन और रात कार्य कर रहे हैं।
0: 4,399 दिन तक सरकार का नेतृत्व करना कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं, ये लंबे वक्त तक कायम रहने वाला रिकॉर्ड है। उपलब्धि बेमिसाल है तो आज कार्यक्रम भी जोरदार हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
5: इस बीच एक तस्वीर 10 जनपद से भी आई, जहां तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। पद संभालने के बाद यह पहली मुलाकात सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री विजय की, और इस मुलाकात की तस्वीरें 10 जनपद से आई। और अब बात लखनऊ की, जहां का कंसा पासी किला विवाद बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। लखनऊ के मलियाबाद स्थित कंसा पासी किला विवाद में पासी समाज का संगठन लाखन आर्मी सड़क पर उतर आया है। लाखन आर्मी ने सूरज पासी की अगुवाई में हरदोई से एक यात्रा शुरू की।
6: पासी स्वाभिमान यात्रा लखनऊ के लिए निकली है। हरदोई में इस यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। देखिए, फूल माला से लदे हैं लाखन आर्मी के मुखिया सूरज पासी। दरअसल लखनऊ के अंदर एक नया विवाद पैदा हुआ है, जिसमें कंसा पासी किले पर कब्जे को लेकर दलितों और मुसलमानों के बीच सियासी मुद्दा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में अब मलिहाबाद के कंसा पासी किला विवाद को लेकर खुद को पासी समाज का प्रतिनिधि बताने वाले लाखन आर्मी ने 31 जिलों में यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। हरदोई जिले से शुरू हो रही ये पासी स्वाभिमान यात्रा किले में शिव मंदिर को वापस पाने की मांग के साथ की जा रही है।
7: तो हमारे किला था, हमारे किले के धार्मिक स्थान थे, वो भी तो हमको संरक्षित चाहिए, तो वहाँ भी मजारे बना दी जा रही है, तो चिंता का विषय है। इसलिए आज हम उनकी किले को बचाने के लिए, उनके अस्तित्व को बचाने के लिए, उनके इतिहास को बचाने के लिए 31 जिलों में भ्रमण कर रहे हैं।
6: सिर्फ लाखन आर्मी ही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता भी यही मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान के दल के नेता आज कंसा पासी किले तक जाना चाहते थे, मगर पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया।
8: लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता आज कंसा पासी को किले को लेकर निकले हुए हैं और साफ तौर से वहां जाना चाहते थे पासी पर, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो पुलिस ने पूरी तरीके से वहां पर रोका हुआ है।
6: एलजेपी रामविलास भी कंसा पासी के सम्मान की बात कर रही है।
9: पासी राजा राजा कंस जी का किला, यह मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, यह पासी पासवान समाज के गौरव और विरासत की का प्रश्न है, उनकी लड़ाई है।
6: अब ओवैसी का दल आरोप लगा रहा है कि 2027 के चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान वाली सियासत को धार दी जा रही है।
10: अयोध्या का मामला जो है ठंडा नहीं हुआ था, एक अयोध्या के लेकर यात्रा निकली थी, राजा कंसा पासी के किले को लेकर यात्रा निकाली जाएगी। तो ये जो लोग हैं, ये देश के अंदर 2027 के चुनाव को देखते हुए एक नैरेटिव सेट करने के लिए नए नए सबूत तैयार कर रहे हैं।
6: उत्तर प्रदेश में इस बार दलित वोट की राजनीति में कई नए दावेदार नजर आने लगे हैं और कंसा पासी का किला उसके केंद्र में है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
5: कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं और बिना सरकारी आदेश के शहर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन गुजरात के सूरत में एक ऐसा अजीबोगरीब वाकया सामने आया जिसने पूरे प्रशासन की नींद उड़ा दी, क्योंकि 100 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया और कोई नहीं जानता कि एक्शन किसके कहने पर हुआ है।
11: सूरत में बुलडोजर गरजा और देखते ही देखते 100 मकान ध्वस्त कर दिए गए। इन मकानों के मालिकों को इतना मौका भी नहीं मिला कि अपना सामान बाहर निकाल सके। तस्वीरें 3 जून की है जब सूरत के कतारगाम इलाके के नासिर नगर में बुलडोजर पहुंचा और देखते ही देखते 100 परिवारों की छतें छीन। लेकिन तमाशा तब शुरू हुआ जब सूरत नगर निगम ने यह कह दिया कि हमने घरों को तोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया। ऐसी कोई भी कार्रवाई में नगर निगम का कोई रोल नहीं है।
12: डिमोलिशन तो हमने नहीं किया है, सूरत महानगर पालिका के लोगों ने फक्त इतना बताया कि नगर पालिका के जो लोग थे वो जगह हमारा कलम 205 के अंडर में जो रास्ता है वो माप लेने के लिए गए थे हमारे कर्मचारी।
11: निगम जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहा है मगर जिनके घर टूटे हैं वो बता रहे हैं कि जिस समय बुलडोजर एक्शन हुआ निगम के अधिकारी और कर्मचारी एसओजी के साथ यहीं थे।
13: पुलिस एसओजी के जो मेन थे वो हमारे को टाइम देने से मना कर रहे थे, भाई तुम्हें कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, तुम अब भी निकलो। इन लोग पूरी टीम सामान भरने वाली भी लेकर आए थे साथ में।
14: मोनिक गड़िया को हमने बोला कि सर आप हमारे को कुछ टाइम दो, तो बोले कोई टाइम नहीं, इतने बरसों से रह लिया, बहुत टाइम दे दिया आपको, अब चलो निकलो।
15: 2 घंटे का भी समय नहीं दिया, बस फटाफट उन लोग ने बुलडोजर से चालू कर दिया, तोड़ना ही चालू कर दिया।
11: सूत्रों के मुताबिक ये पूरी कवायद नासिर नगर के ठीक पीछे बन रहे एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रास्ता देने के लिए की गई थी। आरोप है कि बिल्डर के फायदे के लिए रातों रात सड़क चौड़ी करने का प्लान बनाया गया और सालों से रह रहे लोगों के आशियाने उजाड़ दिए गए। हैरानी की बात यह है कि बिना किसी आधिकारिक नोटिस या कानूनी प्रक्रिया के इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली पुलिस मूक दर्शक बनी रही।
16: मामले के तूल पकड़ता देख अब नगर निगम ने 6 सदस्यों की जांच समिति बनाई है, जो जिस अधिकारियों ने ये डिमोलिशन किया उनकी भूमिका को लेकर जांच करेगी। किसके कहने पर ये डिमोलिशन किया गया, किन अधिकारियों ने किया और क्यों किया, इसके सारे वीडियो तो सामने हैं, पर किस वजह से किया गया, किसके कहने पर किया गया, ये कोई बोलने को तैयार नहीं है।
11: जांच कमेटी तो बन गई है मगर अब सवाल उठता है कि अगर नगर निगम ने आदेश नहीं दिया तो पुलिस की मौजूदगी में किसकी शह पर 100 घर गिरा दिए गए। संजय सिंह राठौर के साथ ब्रजेश दोषी, सूरत आज तक।
5: और बात शेयर बाजार की। कारोबार के दौरान मिले जुले माहौल के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में तेजी और निफ्टी में गिरावट रही। इस दौरान सेंसेक्स 64 अंक मजबूत होकर 73,983 पर बंद हुआ। निफ्टी 27 अंक टूटकर 23,215 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं रुपए में आज भी बढ़त देखने को मिली और डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे मजबूत होकर 95.27 रुपए पर बंद हुआ। जबकि सराफा बाजार में आज गिरावट का रुख देखा गया। सोना 4,155 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 1,48,429 रुपए के स्तर पर आ गया है और चांदी 9,327 रुपए टूटकर 2,26,280 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई है। इस बुलेटिन के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
1: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: आगे आगे,
7: करेक्ट करेक्ट।
8: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
10: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
11: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
10: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
12: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
0: हिंट, बड़े आराम से
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
0: विमल, बोलो जुबा केसरी।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: शेयर बाजार, जहां कुछ लोग सीखते रह जाते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं। आखिर बड़ा पैसा बनता कैसे है, कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिस्तक की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव दिए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है। जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच। मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख, सिर्फ बिस्तक पर।
4: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
5: यू स्नैच्ड एवरीथिंग फ्रॉम मी बट यू कैनॉट सॉर्ट स्नैच्ड माई मॉरल्स। I will never bow down my head।
6: तो क्या ममता बनर्जी दिल्ली में बैठकर अपना राजनीतिक वजूद बचाने की जद्दोजहद कर रही हैं? क्या दिल्ली में कोई नई खिचड़ी पक रही है? ये सवाल फिलहाल दूर की कौड़ी लग सकता है, लेकिन ममता का हर कदम ये संकेत दे रहा है कि वो डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में लगी है और डैमेज है कि रुक ही नहीं रहा। पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, आज सुष्मिता देव पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता दोनों छोड़ गई।
7: देखिए, कारण कुछ व्यक्तिगत है, कुछ राजनीतिक है, बिना कारण के तो कोई कुछ करता नहीं है। मैं किस तरह की राजनीति करूंगी, कहां से करूंगी, ये मेरा निर्णय है और मेरा हक है। क्योंकि राज्यसभा मुझे एक पार्टी से मिला था
8: जी।
7: हाँ, जहां विधायकों ने वोट दिया था, बंगाल के लोगों ने इनडायरेक्टली दिया था। तो अगर पार्टी से इस्तीफा दिया तो फिर राज्यसभा सीट भी छोड़ना चाहिए।
6: आज सुबह सुबह सुष्मिता देव की असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात की तस्वीरें आई। दोनों असम से हैं, तो लग यही रहा है कि सुष्मिता के इस्तीफे के पीछे हिमंता बिस्वा सरमा की बड़ी भूमिका है। ये भी तय लग रहा है कि इस्तीफे से खाली सीट पर उपचुनाव में बीजेपी सुष्मिता को उम्मीदवार बनाएगी।
7: सच्चाई तो ये है कि मेरी राजनीति बंगाल में नहीं है, मेरी राजनीति आसाम में है और मुझे आसाम में ही राजनीति करना है। तो आसाम में जो राजनीतिक परिस्थिति है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मैं आसाम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा से मिलके आई हूँ और देखिए, अगर मैं किसी पार्टी में जाना चाहती हूँ वो तो पार्टी का डिसीजन होता है, मेरा डिसीजन तो नहीं होता।
6: लेकिन ममता के सामने बड़ा सवाल ये है कि अब उनका क्या होगा, शायद वो आगे का रास्ता तलाश रही है। खुद ममता बनर्जी की सोनिया गांधी से मुलाकात हो चुकी है, राहुल गांधी से अभिषेक बनर्जी मिल चुके हैं, लेकिन टीएमसी के भीतर बगावत की आग ठंडी करने में ममता बनर्जी अब तक नाकाम रही हैं।
9: दो साल नहीं, काकुली घोष रिश्तेदार 40 साल से है, मैं 17 साल से हूँ। जो लोग अभी इस बार पहली बार जीत कर आए हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, उसके लिए 1-2 साल होगा, हम लोग के लिए इतना दिन। जीतने के बाद भी बोले थे, बोलने की कोशिश किए थे, वहाँ पे सिस्टम नहीं है बोलने का, बोलने से सब रोकते हैं, जो नहीं बोलना है नहीं बोलना है। तो और अगर बोले भी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलते, आप 7 दिन 10 दिन इंतजार करो।
6: तो अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने दिल्ली आई ममता बनर्जी यहां से क्या हासिल कर लौटती हैं, क्योंकि कोलकाता में तो उनके लिए हर दिन भारी साबित हो रहा है। आज तक ब्यूरो।
10: सर, एक पार्टी 15 साल सत्ता में रहती है, लेकिन 15 हफ्तों के अंदर ही उसके जो 20 सांसद हैं वो बताया जा रहा है वो बागी हो गए हैं, उन्होंने अपना गुट बना लिया है, वो बीजेपी के नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। आपको अंदेशा था कि ऐसा कुछ होगा?
8: ये हम लोग तो जब सत्ता पे रहे थे ये टीएमसी पार्टी, उस समय हम लोग बराबर ये कहते आ रहे हैं सालों से कि जिस दिन ये सत्ता से बाहर होगी उस दिन टूट जाएगी, खलबली मच जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। आज से नहीं, सालों से कहते आ रहे हैं। ये हमारा पूर्वाभास, ये बहुत पहले हम कर चुके हैं कि सत्ता है तो टीएमसी पार्टी है, सत्ता नहीं है तो टीएमसी पार्टी उब जाएगी, हवा में मिल जाएगी, वैसे हो रहे हैं।
10: आपने भी एक अपील जारी करी कि तमाम जो सेकुलर फोर्सेस हैं, तमाम जो लोग हैं वो साथ में आए।
8: मैंने ये कहा कि बंगाल में इतने सारे लोग टीएमसी को तो वोट डाले हैं, कोई अच्छा इनकी सोच थी, और वो देखे आप क्या हो रहे हैं, तो इसको मद्देनजर जो ईमानदार बचे कुचे जो टीएमसी पार्टी की कार्यकर्ता है ये समर्थक है, उसके सामने कांग्रेस पार्टी है, वो अगर चाहे कि राजनीति कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन हम कोई मंत्री पद देंगे, कोई मेयर पद देंगे ये नहीं कह सकते, कि नोट की बंडिल देंगे ये मैं नहीं कह सकते। ऐसे खुले मन अगर आए तो कांग्रेस पार्टी में जगह मिलेगा, लेकिन वो चोर चकोरे के लिए नहीं, ये ईमानदार जो बचे कुछ समर्थकों है कार्यकर्ता उनके लिए।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: मोदी ने बतौर निर्वाचित पीएम सबसे लंबे कार्यकाल का बनाया रिकॉर्ड। एनडीए की बैठक में चंद्रबाबू नायडू ने अभिनंदन प्रस्ताव में बताया सदी का नेता। अमित शाह ने की तारीफ, शुभेंदु ने खिलाई झालमुड़ी। ममता को फिर लगा बड़ा झटका, बागी गुट के 19 लोकसभा सांसदों ने जारी की लिस्ट। शत्रुघ्न सिन्हा और सायुनी घोष का भी नाम। ऋतव्रत का दावा, 64 एमएलए हमारे साथ। दोहरी चोट, झारखंड में एनडीए समर्थित राज्यसभा प्रत्याशी परिमल नथवानी का पर्चा वैध साबित। एमपी में मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर आयोग जल्द करेगा फैसला। दिल्ली दौरे पर तमिलनाडु के सीएम विजय, 10 जनपद पर राहुल और सोनिया गांधी से मुलाकात, राष्ट्रपति से भी मिले। ईरान में फिर बारूद बरसा सकते हैं ट्रंप, कहा फैसला लेने के बेहद करीब। निशाने पर पावर प्लांट और पुल, तेहरान पर लगाया डील में देरी का आरोप।
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर। In association with
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand now in India.
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज विशेष में बात खाड़ी देशों में बढ़े तनाव की, जो एक बार फिर बढ़ रहा है। शांति के तमाम दावों के बीच ईरान और अमेरिका का एक बार फिर सीधा युद्ध शुरू हो चुका है, जहां अमेरिका ने ईरान के शहरों पर जोरदार हमला किया तो वह ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों पर जमकर तबाही मचाई। अब सवाल यही कि क्या एक बार फिर यह तनाव बड़े युद्ध की ओर दुनिया को झोंकने वाला है।
3: आसमान में गरजती मिसाइल और जमीन पर बरसती तबाही, ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों ने एक बार फिर युद्ध विराम की उम्मीदों को झटका दिया है। आधी रात के बाद अमेरिका ने ईरान के 5 शहरों को निशाना बनाया। ईरान के शहरों में अमेरिकी युद्ध पोतों और लड़ाकू विमानों से मिसाइलों और बमों की मानो बारिश होने लगी। बंदर अब्बास से लेकर बंदर जस्क, सिरिक, कोह मुबारक और केशव द्वीप पर अमेरिका का कहर टूटने लगा। ईरान की सेना पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, उसकी ज्यादातर सेना जैसे कि नौसेना और वायुसेना अब बची ही नहीं है, वो पूरी तरह से हार चुके हैं। ईरान सिर्फ बातें करता है, कोई काम नहीं करता। मिडिल ईस्ट का दादागिरी करने वाला अब खत्म हो चुका है। उन्होंने एक ऐसी डील पर बातचीत करने में बहुत ज्यादा समय लगा दिया जो उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती थी, अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन कमांड कंट्रोल सेंटर सब अमेरिका के निशाने पर थे।
4: और जब हम आपको बता रहे हैं कि कहां कहां पर हमला हुआ, तो ये आप देखिए, बंदर अब्बास, केशम, सिरिक की बात की जा रही है, ये बंदर अब्बास के थोड़ा और आगे, वहां पर सिरिक, बंदर ए जश्क, ये आप देखिए सिरिक के आगे, और कुह ए मुबारक इलाके को निशाना बनाया गया अमेरिका की तरफ से, ये वो क्षेत्र है। अब ये तमाम इलाके ईरान के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ईरान का दक्षिणी क्षेत्र है। इन इलाकों में जबरदस्त धमाके सुने गए, अमेरिका ने धमाके किए, और बंदर अब्बास से लेकर जश्क और केशम द्वीप, बंदर अब्बास में एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब सक्रिय हो।
3: अमेरिका के हमलों के बाद ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं था। कुछ ही देर में उसने बारूदी गोदाम खोला और मध्य पूर्व के 3 देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों से तबाही मचानी शुरू कर दी। ईरान ने दावा किया कि उसके हमले में अमेरिका का F-35 हैंगर तबाह हो गया। IRGC का कहना है कि 21 ठिकानों को निशाना बनाया गया। दरअसल तनाव की इस किश्त की शुरुआत इन तस्वीरों से हुई, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाचे क्रैश हो गया। पहले अमेरिका ने इसे दुर्घटना बताया जिसमें दोनों पायलट के सुरक्षित होने का दावा किया गया, लेकिन बाद में अमेरिका ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया और हमले शुरू कर दिए। हालांकि ईरान की ओर से साफ किया गया कि उसने अपाचे को निशाना नहीं बनाया है।
5: अमेरिका ने इस पूरे ऑपरेशन को डिफेंसिव ऑपरेशन का नाम भी दिया है। हालांकि इसके बाद अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने बहुत जल्दी ऑपरेशन बंद करने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन इसके बाद स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर और बहुत ज्यादा चिंताजनक बन गई है, क्योंकि ईरान भी अब अमेरिका के कई बेसिस पर मिडिल ईस्ट पर अटैक कर रहा है, जिसे माना यह जा रहा है कि युद्ध आने वाले वक्त में एक और बड़े संघर्ष, एक और बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है।
3: गौर करने वाली बात तो ये है कि ईरान ने इस बार किसी अन्य देश को नहीं बल्कि सिर्फ उन तीन मुल्कों को निशाना बनाया है जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। पहला टारगेट बहरीन, जहां ईरान ने अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। दूसरा टारगेट कुवैत, जहां अमेरिकी सेना के अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान की मिसाइलें और ड्रोन काल बनकर टूटे हैं, जिसमें कुवैत एयरपोर्ट तक खर्रा उठा है। तीसरा टारगेट जॉर्डन, जहां ईरान ने अल अजराक एयरबेस पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। IRGC के मुताबिक जॉर्डन में चार बड़े सैन्य ठिकानों पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला किया गया। ईरान ने दावा किया कि जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर मौजूद F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर नष्ट कर दिए गए हैं। इस बीच जॉर्डन की सेना ने दावा किया कि उन्होंने ईरान से जॉर्डन के अल अजराक इलाके की तरफ दागी गई 5 मिसाइलों को बीच में ही रोक कर मार गिराया, जिसके बाद ईरानी मीडिया ने वीडियो में जॉर्डन में मौजूद अमेरिका के अल अजराक बेस का गूगल अर्थ एनिमेशन दिखाया, जहां भारी नुकसान की बात कही जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि उनकी सेना ने ईरान के हौसले पस्त कर दिए हैं, उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन ईरान ने एक बार फिर आज अपनी ताकत दिखाकर अमेरिका को गलत साबित कर दिया।
6: ईरान के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई एक ऐसे दुष्चक्र में फंसती हुई नजर आ रही है, जहां से निकलना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए लगातार मुश्किल होता चला जा रहा है। जहां एक तरफ बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिशें हो रही हैं और बातें की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार अब मिसाइलें, बंदूकें और ड्रोन लगातार चलने लगे हैं।
3: साफ है अमेरिका और ईरान की सीधी तकरार ने एक बार फिर खाड़ी में तनाव पैदा कर दिया है, वो भी उस वक्त जब ट्रंप जल्द ही बड़ी डील के ऐलान का दावा कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: खाड़ी युद्ध में शांति का ढोंग रचने वाले पाकिस्तान की एक बार फिर POJK की तस्वीरों ने पोल खोल दिया, जहां पाकिस्तान ने 14,000 सैनिकों को अपने हक की मांग कर रहे कश्मीरियों की लाशें बिछा दी।
3: POK में बगावत की ये ताजा तस्वीरें हैं, जहां साहसी जनता ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हुक्मरानों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। पुंछ के थोरार सब डिवीजन में आज समंदर की तरह जन सैलाब सड़कों पर उतरा है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले POJK की जनता ने पाकिस्तानी फौज की छाती पर चढ़कर वो नारे लगाए हैं, जिससे पाकिस्तान का वजूद कांप उठा है। दरअसल ये गुस्सा पाकिस्तान के उन अत्याचारों के खिलाफ है, जहां मुरीद की सेना आम जनता की आवाज को गोलियों के बल पर दबाने की कोशिश कर रही है। आज तक के पास पाकिस्तानी हुकूमत के नरसंहार का पूरा डॉसियर है। 5 जून से 9 जून के बीच मुरीद के सैनिकों ने POJK में बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। प्रदर्शनों को दबाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में करीब 14,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। प्रदर्शनकारियों पर बिना सोचे समझे गोलियां दागी गईं। प्रदर्शनकारियों पर गोली, 19 बच्चों की मौत, 7 गर्भवती महिलाओं को मारा। हद तो तब हो गई जब शोक सभा में शामिल लोगों पर जल्लाद बने पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलियां चलाई। स्थानीय नेताओं को भी नहीं छोड़ा गया, उन्हें या तो हिरासत में ले लिया गया या घरों में नजरबंद कर दिया गया, जिसने सड़कों पर आने की हिमाकत की उसे जेल में ठूस दिया गया। सवाल उठाया गया कि क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी मशीनरी ने अपने ही लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। कहानी शुरू होती है POJK में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों से। रावलकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली, भिम्बर, कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि महंगी बिजली से राहत, आटा चावल और दालों की कीमतों में कमी और राजनीतिक अधिकार। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जवाब बातचीत नहीं बल्कि बंदूक से दिया गया। पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। POJK में इंटरनेट बंद कर दिया गया, आवाजाही रोक दी गई।
0: तस्वीरों में जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा भयावह है वो सच जो आज तक को मिले गोपनीय डॉजियर में दर्ज है। इस डॉजियर में साफ पता चल रहा है कि किस तरह पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से पीओके के भीतर नरसंहार मचा रहा है। पीओके में रोटी रोजगार और अधिकारों की मांग कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं और बेगुनाह महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा।
3: पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों का घड़ा अब भर चुका है, यही वजह है कि अब आवाम सड़कों पर उतर आई है और इस्लामाबाद में बैठे तानाशाहों को जमीन पर पटकने का मन बना लिया है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
7: उधर पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान में रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है, जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी सेना के लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान पर हमला किया, जिसमें कई बच्चे और महिलाओं के मारे जाने की खबर है। अब अफगानिस्तान ने साफ किया कि पाकिस्तान को इसका करारा जवाब मिलेगा।

दुनिया को अमन और शांति का फर्जी ज्ञान बांटने वाले कंगाल पाकिस्तान का असली और वैश्य चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान की कायराना फौज ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का सरेआम उल्लंघन किया और आधी रात के अंधेरे में घोस्ट, कुनात और पक्तिका प्रांत के रिहायशी इलाकों पर बारूद की बरसात हुई।

मां भारती की सेवा का सौभाग्य मिलना ये ईश्वर की विशेष कृपा से ही संभव हो सकता है। और मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही ईश्वर का रूप है और इसलिए मैंने सेवा कार्य को हमेशा एक साधना के रूप में ही देखा है और ये साधना भी एकाकी नहीं रही है, ये एक सामूहिक यज्ञ है जिसमें आप सब ने और अनेकों साथियों ने कर्तव्य भाव से अपना योगदान दिया है। मैं आज इस यात्रा के ऐसे सभी साथियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं। साथियों, इस अवसर पर एनडीए परिवार के सदस्यों ने एक रिजोल्यूशन भी पेश किया है। ये आप सबकी आत्मीयता और उदारता है, क्योंकि मैं इस यात्रा को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं मानता हूं, ये हर दृष्टिकोण से हम सबकी सामूहिक उपलब्धि है। ये एनडीए के हर घटक दल की एक समान उपलब्धि है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव को आप सभी को भाजपा समेत हमारे एनडीए परिवार के सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं। साथियों, भारत की जनता का निरक्षीर विवेक हमेशा अद्भुत रहा है। देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता का महत्व समझा है। ये जनता जनार्दन की परिपक्वता ही है कि उसने लंबे समय तक मुझे इस तरह जनता की सेवा का अवसर दिया। 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे, इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं। जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, साल 2014 में जब एनडीए की जीत हुई थी तब मैंने कहा था कि आज देश के सामान्य मानवीय में एक नई आशा का उदय हुआ है। इस आशा का, इस उम्मीद का संरक्षण हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व था। देश के लोगों ने कांग्रेस के विश्वासघात के बाद अपना भरोसा हमें सौंपा था। मुझे आज संतोष है, गर्व है कि एनडीए परिवार के तौर पर हमने देश के विश्वास को हमेशा और मजबूत किया है। दो हजार 2014 में

आशा का उदय होता सूरज आज नए आत्मविश्वास के प्रकाश पुंज में बदल गया है। भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नीयत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे। और मैं मानता हूं कल जो गरीब था आज जो न्यू मिडिल क्लास बना है उसे अब हमें पीछे नहीं होने देना है। इसलिए सरकार के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते हमें दिन रात काम करना है, परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। और इस संकल्प के साथ कि 140 करोड़ का ये देश हमसे जो उम्मीदें लगाए बैठा है वो जरूर पूरी हो। भारत का युवा, भारत की नारी शक्ति, भारत का मध्यम वर्ग, भारत के किसान, सबकी आकांक्षाएं, उनकी एस्पिरेशंस हमें पूरी करनी है। आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। साथियों, एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता यह भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। और बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट, यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया, जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय। साथियों, पहली बार अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई तब जाकर हमें एक झलक दिखी कि विकास में गति कैसे आती है। लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में देश फिर से अस्थिरता के बवंडर में और कांग्रेस के सिकंजे में फंस गया। विकास तो दूर की बात है, देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया।
साथियों, देश का भाग्य फिर तब बदला जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी। देश ने देखा कि जब नियत, नीति और निर्णय तीनों एक साथ काम करते हैं तो विकास की गति कैसी होती है। देश ने देखा कि जो काम दशकों में होते थे वो काम महीनों में होने लगे। 2014 में 74 एयरपोर्ट से 2026 में 160 से अधिक एयरपोर्ट तक, 2014 में 1000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे से 2026 में 6700 किलोमीटर एक्सप्रेसवे तक, 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो से 2026 में 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो तक, 2014 में 700 करोड़ रुपए डिफेंस एक्सपोर्ट से 2026 में 23,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट तक। देश ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। साथियों, 2014 में देश में केवल 25 करोड़ इंटरनेट यूजर थे, आज 100 करोड़ से अधिक यूजर इंटरनेट से जुड़े हैं। 2014 में डिजिटल पेमेंट्स ना के बराबर थे, आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर वन देश है। 2014 में भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर मोबाइल बाहर से मंगाता था, आज भारत 33 करोड़ से अधिक मोबाइल हैंडसेट खुद बनाता है। 2014 में सोलर क्षमता केवल 2.5 गीगावाट थी, आज यह 150 गीगावाट से अधिक है। 2014 में एथेनॉल ब्लेंडिंग केवल 1.5% था, आज यह 20% तक पहुंच चुकी है। 2014 में देश की एक भी सेमीकंडक्टर यूनिट नहीं थी, आज देश में बन रही 10 से ज्यादा सेमीकंडक्टर यूनिट भारत को आधुनिकता की तरफ ले जा रही है। साथियों, हमने देश की जरूरतों को अपनी नीतियों और निर्णयों का आधार बनाया, नई सोच से नए फैसले लिए। हमने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई, सहकारी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए अलग कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई, हमारे मछुआरे भाई बहनों के लिए अलग फिशरीज मिनिस्ट्री बनाई। हमारा फोकस क्लियर था, विकास की इस दौड़ में कोई पीछे न छूटे। साथियों, हमने दिव्यांगजनों के लिए कानून बनाया, आदिवासियों के लिए जनमन जैसी योजनाएं शुरू की, पशुपालकों और मछुआरों को पहले किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिलता था, हमने उन्हें भी सुविधा से जोड़ा। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। साथियों, सवाल यह है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ। ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा। और इसलिए साथियों, 2014 से 2026 की कहानी केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जिसने पहली बार
अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ना शुरू किया है। वो भारत जो बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। साथियों, एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। एक स्थिर सरकार होने का लाभ क्या होता है, ये बार बार इस दौर ने साबित किया है। कोरोना के समय को हम कभी नहीं भूल सकते, जब हर तरफ हाहाकार मचा था, लेकिन भारत उस हालात को मुकाबला करते हुए भी सफलता से आगे बढ़ा। साथियों, दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। यह सफलता इतनी आसान नहीं है दोस्तों। हम फ्रेजाइल 5 के कटघरे से बाहर निकलकर आज दुनिया की तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। साथियों, कल के विस्तृत भारत की गारंटी है आज का आकांक्षी भारत। आकांक्षी भारत के गर्भ में विकसित भारत पल रहा है। आज के भारत की आकांक्षाएं बड़ी हैं, सपने बड़े हैं, इसलिए उसके संकल्प और लक्ष्य भी उतने ही बड़े हैं। देश की आकांक्षाओं का वाहक हमारा मिडिल क्लास है, नियो मिडिल क्लास है। इसलिए हमारी सरकार मध्यम वर्ग के एस्पिरेशंस को पूरा करने में लगी है। मिडिल क्लास की ईज ऑफ लिविंग, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके लिए नए अवसर और नई संभावनाएं, हमने हर फ्रंट पर काम किया। साथियों, 2014 से पहले मिडिल क्लास कानून की उलझनों का सबसे बड़ा शिकार हुआ करता था। जटिल टैक्स सिस्टम, आमदनी के सीमित स्रोत और टैक्स का बड़ा बोझ, खराब गवर्नेंस की मार, ये सब सामान्य मानवीय के लिए डेली लाइफ की चुनौती होती। लेकिन हमने मिडिल क्लास की परेशानियों को समझा, हमने मिडिल क्लास की आकांक्षाओं को समझा, और इसलिए आज 12 लाख रुपए तक की आमदनी पूरी तरह से टैक्स फ्री है। आज देश में सरल और फेसलेस टैक्स सिस्टम है। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से उनका जीवन आसान हुआ है। साथियों, बीते 12 वर्षों में मिडिल क्लास परिवार के बच्चों के लिए हर क्षेत्र में नए अवसर बने हैं। मध्यम वर्ग के घर का सपना पूरा हो सके, सरकार इसमें भी मदद कर रही है। घर में इलाज के खर्च का बोझ कम हो, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना में बिना आय सीमा के बुजुर्गों को भी शामिल किया गया है। जीएसटी रिफॉर्म का भी बहुत बड़ा लाभ देश के मध्यम वर्ग को हुआ है। उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता हुआ है, उसके सपनों से जुड़ी चीजें सस्ती हुई है। इन प्रयासों का परिणाम है कि आज देश का मिडिल क्लास अनिश्चितताओं से मुक्त हो रहा, वो भरपूर आत्मविश्वास के साथ देश की विकास यात्रा को गति दे रहा है। साथियों, हमारे लिए दल से हमेशा
अगर बड़ा कुछ है तो हमारा देश है, दल से बड़ा देश है। और जब नेशन फर्स्ट, देश प्रथम की भावना से काम होता है तो कोई भी निर्णय कठिन नहीं होता। इसलिए ऐसे फैसले जिन्हें पहले असंभव समझा जाता था, जो देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अनिवार्य थे, हमने बहुत ही सधे हुए तरीके से उन फैसलों को भी लिया। पहले सरकारें आर्टिकल 370 की बात करने से डरती थी, हमने उसे खत्म करके पूरे देश में एक संविधान लागू किया। पहले नॉर्थ ईस्ट से बम बंदूक और ब्लॉकेट जाने का नाम नहीं लेते थे, हमने नॉर्थ ईस्ट में शांति भी लौटाई और स्थिरता भी लेकर आई। पहले भारत आतंकी हमलों के बाद चुपचाप दर्द सहता रहता था, हमने आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा। साथियों, पहले मान लिया गया था कि नक्सलवाद, माओवाद अब कभी नहीं खत्म होने वाले हैं, कभी खत्म हो ही नहीं सकते। हमने देश को नक्सलवाद, माओवाद के उस जहर से मुक्त करके दिखाया है। साथियों, महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, NDA सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही। और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा, तेज गति से आगे बढ़ेगा। साथियों, बीते 12 वर्षों में देश ने जो कुछ हासिल किया वो दुनिया देख रही है, लेकिन अब हमें अपनी दृष्टि आगे की ओर रखनी है। हमें 2047 के लक्ष्य को देखते हुए उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी स्पीड को और बढ़ानी होगी। हमारा बेंचमार्क अब यह होना चाहिए कि बीते 12 वर्षों में जो स्पीड और स्केल हमारी रही है उसको हम और अधिक बड़ा और व्यापक कैसे बना सके। आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है, दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है, और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतरकर दिखाना है। हमें यह समय गंवाना नहीं है, और मैं बार बार कहता हूं यही समय है, सही समय है। साथियों, हमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है। हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है। अब जैसे एनर्जी सिक्योरिटी है, बीते 12 वर्षों में हमने ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के लिए अभूतपूर्व काम किया। मैंने लाल किले से समुद्र मंथन अभियान की घोषणा की थी, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है। बीते दिनों में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन को लेकर काफी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, यानी आने वाला समय अनेक संभावनाओं से भरा हुआ है।
और हमें हर संभावना का पूरा फायदा उठाना है। साथियों, अब हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करना है। सोलर एनर्जी को लेकर तो काम तेजी से चल रहा है, लेकिन अब हमें न्यूक्लियर एनर्जी के लक्ष्यों को भी तेजी से हासिल करना है। अभी हमने दुनिया को दिखाया है कि भारत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में कितना आगे पहुंच गया है। ये टेक्नोलॉजी हमें न्यूक्लियर एनर्जी में आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएगी। इसी तरह ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के मामले में भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मैप में सबसे प्रमुख बना पाएगी और ये नाम बनना पक्का है। साथियों, आज बड़े एक्सपर्ट्स का भी अनुभव है कि जिन देशों ने मैन्युफैक्चरिंग के पूरे इकोसिस्टम पर 80-90 के दशक में काम किया, उन्हें उसका फायदा इस सदी में मिलना शुरू हुआ। भारत ने 10-12 वर्ष पहले जिस इकोसिस्टम पर काम करना शुरू किया, उसका लाभ अब देश को मिलना शुरू हो गया। 2014-15-16 के कालखंड में जो बात नींव डाली गई, उसके फल अब दिखाई देने लगे हैं। भारत तेजी से दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। साथियों, एनर्जी, मिनरल्स, चीप बैटरी स्टोरेज, स्पेस, ड्रोन, डेटा सेंटर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे हर सेक्टर, हर टेक्नोलॉजी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये एक दूसरे की पूरक है। भारत दिन के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि ये भारत की आर्थिक और स्ट्रेटेजिक हर प्रकार के सिक्योरिटी से जुड़े विषय है। और तभी भारत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर इतना फोकस कर रहा है, तभी क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर मिशन बोर्ड पर काम चल रहा है। साथियों, शिपिंग सेक्टर में भारत आत्मनिर्भरता के नए लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम मेड इन इंडिया शिप पर ट्रेड करेंगे और कंटेनर भी मेड इन इंडिया होंगे। शिप मेंटेनेंस और रिपेयर से लेकर स्क्रैपिंग तक की सर्विसेज भी भारत देगा। यही विजन हमारे एविएशन सेक्टर के लिए है। आज हम मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाएगा। देशवासी मेड इन इंडिया विमान में ही यात्रा करेंगे, वो दिन मैं देख रहा हूं दोस्त। साथियों, ये सदी टेक्नोलॉजी की है, डेटा की है। आज विश्व के सबसे बड़े और आधुनिक डेटा सेंटर्स भारत में बन रहे हैं। यही भारत की ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन का मजबूत पिलर बनाएगी। हमने यूपीआई के माध्यम से दुनिया को दिखाया है कि भारत कम से कम समय में टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार कर सकता है। हमने दिखाया है कि हमारे युवाओं का सामर्थ्य क्या है। अब एआई, डीप टेक और एडवांस टेक्नोलॉजी में हमारे युवा नया दमखम दिखाने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आने वाले समय में दो और सेक्टर्स में भारत का सामर्थ्य पूरी दुनिया देखेगी। ये सेक्टर है टूरिज्म और स्पोर्ट्स। ये दोनों भारत की इकोनॉमी के मजबूत पिलर बनेंगे। विशेष रूप से कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन और कॉन्सर्ट के मामले में भारत
एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनने के लिए अब पूरी तरह सज रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से सेक्टर को बहुत पुश मिलेगा और स्पोर्ट्स में तो भारत के युवा कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं और हर दिन उनकी परफॉर्मेंस निखरती जा रही है। भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये ख्याति और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं, हमने प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है। साथियों, आज भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए रिफॉर्म कोई कंपल्सन नहीं है, रिफॉर्म हमारा कन्विक्शन है। और देश भी निरंतर रिफॉर्म्स को सपोर्ट कर रहा है। साथियों, देशवासियों की सहभागिता की हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे हैं। बीते 12 वर्षों में मैंने जो भी सहयोग देश से मांगा, देशवासियों ने दिल खोल करके साथ दिया है। मैंने स्वच्छता का आग्रह किया तो पूरा देश निकल पड़ा। मैंने देश से डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए आह्वान किया तो भारत रियल टाइम ट्रांजैक्शन में दुनिया में सबसे आगे निकल गया। मैंने कोरोना महामारी के दौरान एकजुटता का संयम का आग्रह किया तो देश ने एकजुट होकर उस महामारी का सामना किया। जनता ने कभी हमें निराश नहीं किया। साथियों, आने वाले समय में भी इसी जनविश्वास और जन भागीदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा मंत्र रहा है। सबका प्रयास ही विकसित भारत के निर्माण की असली ऊर्जा है। हमें हर राज्य, हर शहर, हर गांव को जोड़ना है। अब समय आ गया है कि राज्यों के बीच नई प्रकार की तंदुरुस्त स्पर्धा, स्वस्थ स्पर्धा हो। स्पर्धा इस बात की हो कि कौन सा राज्य सबसे तेजी से ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनता है। स्पर्धा इस बात की हो कि कौन सा शहर इनोवेशन का सबसे बड़ा केंद्र बनता है। स्पर्धा इस बात की हो कि कौन सा क्षेत्र रोजगार सृजन में सबसे आगे निकलता है। भारत की प्रगति राज्यों की ऐसी प्रगति से ही होने वाली है। आइए अगले दशक को उपलब्धियों के साथ साथ श्रेष्ठता का भी दशक बनाएं। आइए राजनीति की स्पर्धा से ऊपर उठकर विकास की स्पर्धा को राष्ट्रीय संस्कार बनाए। 12 वर्षों की यात्रा उपलब्धियों की रही है। आने वाले वर्ष और भी नई सिद्धियों के होंगे, और भी बड़ी सिद्धियों के होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का मैं फिर से अंतःकरण पूर्वक आपके साथ सहयोग समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं सर झुका करके देश के कोटि कोटि नागरिकों को नमन करता हूं। उनके आशीर्वाद ने हमें एक ऊर्जा दी है, शक्ति दी है, प्रेरणा दी है, प्रोत्साहन दिया है। ये जनता जनार्दन के चरणों में सर झुका करके प्रणाम करते हुए आइए एक नए विश्वास के साथ हर संकल्प को पूरा करने के सामर्थ्य को जुटाते हुए हम चल पड़े। देशवासियों के सपनों को हमारे संकल्प बनाए। हमारा पल पल देशवासियों के संकल्पों की साकार करने की यात्रा का अहम पड़ाव बनता चले। इसी भावना के साथ
देशवासियों के ऊपर पूरा भरोसा करते हुए आओ निकल पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं आज। और पीएम मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज भारत मंडपम में एनडीए के सभी घटक दलों ने नरेंद्र मोदी का सम्मान किया और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश हित में बड़े निर्णय तेजी से लिए जा रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 के बाद भारत के लोगों ने देखा कि सही नीयत से सरकार चलती है तो देश का विकास होता है। मोदी बोले, 12 वर्ष में देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस ने देश को यह एहसास कराया था कि भारत में विकास धीरे धीरे होता है और इसे हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दिया गया था।
1: एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता यह भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। और बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट, यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया, जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय। सवाल यह है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा। साथियों, पहली बार अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई तब जाकर हमें एक झलक दिखी कि विकास में गति कैसे आती है। लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में देश फिर से अस्थिरता के बवंडर में और कांग्रेस के सिकंजे में फंस गया। विकास तो दूर की बात है, देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया। साथियों, देश का भाग्य फिर तब बदला जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी। देश ने देखा कि जब नियत, नीति और निर्णय तीनों एक साथ काम करते हैं तो विकास की गति कैसी होती है। देश ने देखा कि जो काम दशकों में होते थे वो काम महीनों में होने लगे। 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, 2026 में 160 से अधिक एयरपोर्ट तक, 2014 में 1000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे से 2026 में 6700 किलोमीटर एक्सप्रेसवे तक, 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो से 2026 में 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो तक, 2014 में 700 करोड़ रुपया डिफेंस एक्सपोर्ट से 2026 में 23,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट तक, देश ने बहुत लंबी यात्रा तय की है।
0: एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भारत मंडपम में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की तारीफ करते हुए एक अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने रखा, जबकि नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इसका समर्थन किया। इसी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कह दिया कि विपक्ष भले ही ये सोचता रहे कि मोदी रुकेंगे, लेकिन देश हित के निर्णय लेने का काम नरेंद्र मोदी जारी रखेंगे।
1: हमारे लिए दल से हमेशा अगर बड़ा कुछ है तो हमारा देश है, दल से बड़ा देश है। और जब नेशन फर्स्ट, देश प्रथम की भावना से काम होता है तो कोई भी निर्णय कठिन नहीं होता। इसलिए ऐसे फैसले जिन्हें पहले असंभव समझा जाता था, जो देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अनिवार्य थे, हमने बहुत ही सधे हुए तरीके से उन फैसलों को भी लिया।
0: 10 जून यानी इतिहास के पन्नों में दर्ज नए कीर्तिमान की तिथि। लगातार सबसे लंबे समय तक जनता की वोट के दम पर मिली जीत से प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड अब नरेंद्र मोदी के नाम। नरेंद्र मोदी ने आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन तोड़ने से अधिक यह तारीख जोड़ने के लिए याद रहेगी, जो बताती है कि जनता से जुड़ने वाला लीडर ही जनता का उस दौर में भी सबसे प्रिय बन जाता है जब लगातार 3 बार सत्ता हासिल करना दुनिया के विभिन्न लोकतांत्रिक देशों के लिए लगभग लगभग असंभव होता है। लेकिन जनता को भगवान मानने वाले नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी तो जनता का सत्ता प्रसाद सौंपकर सब संभव कर चुके हैं, और ये संभव जनता ने किया।
1: जैसे यहां बताया गया कि मैं पहली बार यहां आया हूं, शायद मेरे जीवन में हर बार ऐसा ही हुआ है। मुख्यमंत्री बना उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री की चैम्बर देखी थी, मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने विधानसभा गृह देखा था। आज भी ऐसा ही एक अवसर आया है, लेकिन हम इस ऐतिहासिक स्थान पर बैठे हैं। तब मैंने प्रारंभ में कहा यह लोकतंत्र का मंदिर है, 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं इस पवित्र मंदिर पर टिकी हुई है।
2: लोकतंत्र के उसी मंदिर में अब 140 करोड़ लोगों की आकांक्षा की पूर्ति के लिए प्रधान सेवक के पद पर नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के विश्वास को ऐतिहासिक 12 साल हो चुके हैं। जब नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो कैबिनेट ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, प्रधानमंत्री को बधाई दी, मंत्रियों ने उनकी उपलब्धि पर खड़े होकर तालियां बजाई, मेज थपथपाई। 12 साल कहना शायद पूरी तरह सही ना हो, सही होगा कहना कि 4,399 दिन से नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। जिस दौर में सत्ता से हाथ छूटने पर गठबंधन का साथ छोड़ने में पल भर सियासत नहीं लगाती, राजनीति के उस युग में भी 35 दल, 75 नेता, 22 मुख्यमंत्री को साथ लेकर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, आज से नहीं, लगातार, अनवरत, निरंतर।
1: मैं अभिभूत हूं, कृतज्ञ हूं। चरैवेति चरैवेति के मंत्र का जाप करते हुए इस राजनीतिक यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए एक दिन ये पड़ाव भी आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था।
2: 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई, संसदीय दल ने नेहरू को अपना नेता चुना। पंडित नेहरू 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक लगातार निर्वाचित पीएम रहे। नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल 4,398 दिन का रहा। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री 4,399 दिन अब पूरे कर चुके हैं, इसीलिए निर्वाचित पीएम के तौर पर मोदी ने कीर्तिमान रचा है। उसी कीर्तिमान को रचने वाले ऐतिहासिक मौके पर भारत मंडपम में पूरा एनडीए एकजुट होता है। रिकॉर्डधारी प्रधानमंत्री का लगातार जनता के बीच चुना जाना क्यों ऐतिहासिक है, ये गृह मंत्री बताते हैं। एनडीए की इसी बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पीएम मोदी के सम्मान में एक विशेष प्रस्ताव पेश करते हैं। प्रस्ताव में पीएम मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री बनने का उल्लेख किया जाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और बताते हैं कि मोदी केवल 12 साल के नहीं बल्कि इस सदी के लीडर हैं।
3: 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू नरेंद्र मोदी जी, ऑलवेज इज एनर्जेटिक, नॉट ओनली एनर्जेटिक, ही विल गिव एनर्जी फॉर अदर्स, दैट इज हाउ ही इज मेंटेनिंग हिमसेल्फ। फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी जी इज इक्वल टू एनी लीडर इन द वर्ल्ड, I can say very clearly, all surveys are indicating who is very popular leader globally, that is our Honorable Prime Minister, that is our pride for the nation, and we are very happy for that.
4: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल, सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व में आज हमारा भारत विकास और समृद्धि के नए क्षितिज को छू रहा है। मोदी जी के इसी मजबूत नेतृत्व के बदौलत आज देश विकसित भारत बनने की राह पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज भारत सिर्फ प्रगति ही नहीं कर रहा है बल्कि प्रगति की नई परिभाषा लिख रहा है।
5: हम लोग इस गठबंधन का हिस्सा बने और पिछले 12 सालों से निरंतरता से न सिर्फ हमारा ये रिश्ता मजबूत रहा बल्कि एनडीए गठबंधन का दायरा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कई और राजनीतिक दल इस गठबंधन का हिस्सा बने, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सबको एक साथ लेकर चलने की उनकी सोच, सबको परिवार की तरह उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े होने की सोच ने ही उनको आज देश के सर्वोच्च नेता की श्रेणी में सबसे आगे उनको खड़ा करने का काम किया।
0: हमारे भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है, जहां एक नेता पर विश्वास होना अपने आप में अभूतपूर्व बात है। हमारे देश की जनता का नरेंद्र मोदी को पिछले 12 वर्षों से दिए जाने वाला समर्थन उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनाता है। जहां एक तरफ दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों की सरकारें कमजोर हो रही हैं, नेताओं को अपने पद से हाथ धोना पड़ रहा है, वहीं नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री पद पर रिकॉर्ड बनाकर एक मिसाल कायम कर रहे हैं।
6: प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस।
7: आई डोंट नीड टू टेल एनीवन हियर, ही इज द मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर फॉर अ रीजन।
8: I think you are an inspiration for the rest of the world.
9: I think it's that the most loved one of all around the world.
10: Prime Minister Sri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude.
11: I am a fan of Modi. So.
12: His vision for digital India, was ahead of its time.
2: नरेंद्र मोदी भारत में सबसे लंबे वक्त तक सत्ता के शिखर पर रहने वाले नेता ही नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुनिया के भी सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं।
1: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
3: ए हिस्टोरिक ट्रिब्यूट टू इंडिया, हिस्टोरिक ट्रिब्यूट टू इंडिया लॉन्गेस्ट सर्विंग कंटिन्यूअसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर శ్రీ నరేంద్ర మోడీజీ.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 32 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सर्वोच्च या नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुकी हैं, जिसमें फ्रांस, रूस, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं। जब दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में जनता सरकारें बदल रही हैं, तब भारत में 12 वर्षों से नेतृत्व और नीतियों में निरंतरता है। यही बात दुनिया को नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान से भर देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जो मोदी की तारीफ का कोई मौका नहीं छोड़ते। आज तक से बातचीत में पुतिन ने मोदी को लेकर जो कुछ कहा था वो आपको सुनना जरूरी है।
13: He's a very reliable person. In that sense, I'm speaking very sincerely. India got lucky. He lives India. I'm talking to him and I know him.
2: व्लादिमीर पुतिन हो या फिर दुनिया का दूसरा कोई बड़ा नेता, सबकी एक राय है कि दबाव डालकर नरेंद्र मोदी को झुकाना नामुमकिन है। मोदी की यही बात दोस्तों को भाती है, जिनके लिए भारत किसी प्रेरणा से कम नहीं है। ये बात दुनिया भर के नेताओं की तरफ से भेजी गई शुभकामनाओं में भी दिखती है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने बधाई संदेश में लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने कई वर्षों तक भारत के विकास और प्रगति का नेतृत्व किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि न केवल आपके कार्यकाल की अवधि को दर्शाती है, बल्कि उस भरोसे और विश्वास का भी प्रमाण है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता ने बार बार आपके नेतृत्व में जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने भारत की सीमाओं से परे श्रीलंका सहित कई देश के लोगों को प्रेरित किया है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक निजी वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को एक रोल मॉडल और लीडरशिप की मिसाल बताया है।
14: Congratulations on reaching a historic milestone, the longest continuous prime minister of the great country of India. You have now surpassed the record as the longest serving prime minister of India.
2: प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री पद पर रहने के 4,398 दिन के रिकॉर्ड को ही पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि वो 9,013 दिन से सत्ता के शिखर पर रहने वाले एकमात्र नेता हैं, जो लगातार सीएम और पीएम पद पर रहते हुए 25 साल पूरे कर चुके हैं।
1: मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
2: प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने वालों में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पिछले दिनों रोम में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके और एक विशेष रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत करके खुशी हुई, जो भविष्य में हमारे देशों और लोगों के लिए नए अवसर बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगी। दुनिया भर के करीब 20 देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को 146 करोड़ लोगों का नेतृत्व करते हुए 12 साल पूरे होने पर बधाई दी। दुनिया के लिए हैरानी की बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी इतनी लंबी पारी खेलने के बावजूद भारत की तरह पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कैसे हैं? ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट ने अप्रैल 2026 में बताया कि मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा 70% अप्रूवल रेटिंग वाले नेता हैं। उनके बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग 63% अंकों के साथ हैं। ईरान संघ युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे नीचे से 10वें नंबर पर हैं।
1: इन वन डेकेड इंडिया हैज सीन अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, देन वी वेयर द 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, नाउ we are knocking on the doors of the top 3.
2: बड़ी बात यह है कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले दूसरे देशों के नेताओं की छवि लगातार वहां की जनता की नजरों में कमजोर हो रही है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज सर्वे में दुनिया के सबसे अलोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। करीब 76% उत्तरदाताओं ने उनके कामकाज से असंतुष्टि दिखाई, जबकि वो पिछले साल मई महीने में जर्मन चांसलर बने। सर्वे में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन दूसरे सबसे अलोकप्रिय नेता हैं, उनके काम से 75% उत्तरदाता असंतुष्ट रहे। लोकतांत्रिक देशों में नेताओं की इस अलोकप्रियता की वजह जंग के कारण महंगे तेल से बढ़ती महंगाई और कमजोर होती उनके देश की अर्थव्यवस्था है, खतरनाक होती दुनिया नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, जिसके असर से जनता को बचाने में मोदी सरकार अब तक खुद को कामयाब बताती है।
0: चुनावी समीकरण अब बदलते जा रहे हैं। अब एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी को अपनी शक्ति बीजेपी बना रही है। गवाही पहले गुजरात मध्य प्रदेश दिया करते थे, अब हरियाणा असम महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश बिहार समेत विभिन्न राज्य दे रहे हैं। जहां लगातार दो बार ही नहीं बल्कि लगातार तीन बार चुनावी विजय हासिल करने में बीजेपी सबसे आगे रही है, कांग्रेस तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती।
15: मोदी है तो मुमकिन है,
16: देश की आस्था और विश्वास प्रधानमंत्री जी के साथ है।
17: वो अतिमानव सुपर ह्यूमन है।
2: 4,399 दिन का कार्यकाल और लगातार बनते रिकॉर्ड के साथ नरेंद्र मोदी पर बीजेपी की विजय विस्तार और मजबूत आधार का भरोसा हर नेता कार्यकर्ता को है, तो इसकी वजह क्या है समझना है तो 46 साल पहले चलिए। भारत के पश्चिमी छोर पर मौजूद मुंबई, अरब सागर के किनारे मौजूद भारत की आर्थिक राजधानी, अब से 46 साल पहले साल 1980 अरब सागर के तट पर मुंबई में बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में एक भविष्यवाणी होती है।
18: भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा।
2: अब देश के 22 राज्यों और 72% क्षेत्रफल के साथ 78% आबादी वाले राज्यों में बीजेपी या एनडीए का कमल खिल चुका है, और यहां कमल खिलाने के साथ ही नरेंद्र मोदी अब 2029 के लक्ष्य में जुट चुके हैं। बड़ी खबर ये कि 2024 में बीजेपी को लगातार तीसरी बार अपने दम पर बहुमत पाने से रोक लेने में जिस विपक्ष को सबसे बड़ी जीत लगने लगी थी,
19: कांग्रेस पार्टी, आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी।
2: लगातार तीन बार देश का चुनाव जीतने वाले नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 के नतीजे से एक खिड़की खुलने से उत्साहित विपक्ष को अंदाजा नहीं है कि दो साल के भीतर बीजेपी वापस अपनी पकड़ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मजबूत करने लगी है।
1: हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम मेड इन इंडिया शिप पर ट्रेड करेंगे और कंटेनर भी मेड इन इंडिया होंगे, शिप मेंटेनेंस और रिपेयर से लेकर स्क्रैपिंग तक की सर्विसेज भी भारत देगा। यही विजन हमारे एविएशन सेक्टर के लिए है। आज हम मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब भारत मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाएगा। देशवासी मेड इन इंडिया विमान में ही यात्रा करेंगे, वो दिन मैं देख रहा हूं। दोस्त,
0: सबसे लंबे समय तक भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल पूरा करने का कीर्तिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बना लिया है। आज उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ दिया और अभी भी वो प्रधानमंत्री है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
1: मिल गया।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
4: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
3: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
5: वेयर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर मीट्स द कूल UI UX डिजाइनर meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
5: ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
6: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
7: लाइन डेसर्ट किंग डेट्स, ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाई टेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेसर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
8: लाइन डेसर्ट किंग डेट्स,
7: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
9: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
10: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
9: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
11: आगे आगे,
12: अरे उधर उधर,
11: करेक्ट करेक्ट,
13: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
15: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
16: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
14: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
17: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
15: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
14: जहां खबर वहां खबरदार।
18: इन एसोसिएशन विद
19: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
20: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
21: पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में जुल्म की इंतहा हो रही है, बेगुनाह लोगों पर गोलियों की बौछार की जा रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। POK में लोग काफी वक्त से बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हैं। वहां लोगों ने तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन की तैयारी की। JAAC यानी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट

0: अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले 9 जून को बंद का ऐलान किया गया, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने 5 जून को ही JAAC पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही पूरे POJK में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गयी। अगले ही दिन बड़े पैमाने पर नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसे एक्शन के विरोध में 7 जून से उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए। पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी सेना को इन लोगों पर खुलेआम गोलियां बरसाने को कहा। फायरिंग में 27 लोगों की मौत हो गई। POJK में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ऐसी कार्रवाई को लेकर भारत ने गंभीर चिंता जताई है। साथ ही यूरोप स्थित मानवाधिकार संगठन ECHRD ने भी सवाल उठाए हैं और
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
1: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
2: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: Where the software engineer meets the cool UI/UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
4: रिकॉर्ड से आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई। सबसे लंबे समय तक भारत का निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का पंडित नेहरू का रिकॉर्ड मोदी ने आज तोड़ दिया। मोदी लगातार 4,399 दिनों से प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं। मोदी की इस उपलब्धि पर कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया। पीएमओ के अधिकारियों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है, जबकि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर बीजेपी मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने देश के अलग अलग मंदिरों में पूजा की। प्रधानमंत्री मोदी का ये रिकॉर्ड ऐसे समय में बना है जब विपक्ष बीजेपी के मुकाबले चुनावी प्रदर्शनों में तो फिसड्डी है, लेकिन पश्चिम एशिया संकट से बने आर्थिक हालात और टीएमसी में मची उठापटक जैसे मसलों पर सरकार को घेर रहा है। नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के दावे पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्योंकि नेहरू पहले आम चुनाव के बाद पीएम बनने के पहले भी भारत के प्रधानमंत्री थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पोस्ट में लिखा, भारत 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में नहीं आया था। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारी राष्ट्रीय यात्रा 15 अगस्त 1947 को शुरू हुई थी। जयराम रमेश का बयान है, जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक ऐसी असाधारण कैबिनेट का नेतृत्व किया जैसी मिसालें दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती हैं। अगले 5 वर्षों में आधुनिक भारत आकार लेने लगा। इस बीच मंगलवार को मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा उम्मीदवारी का पर्चा खारिज होने को लेकर भी कांग्रेस लोकतंत्र का सवाल उठा रही है। ऐसे हमलों के बावजूद विपक्ष के कैंप में भगदड़ है। टीएमसी की एक और राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया है। वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मिलने भी गयी। सुष्मिता देव जैसे टीएमसी के बागियों के दांव से विपक्ष बेहद कमजोर नजर आ रहा है। उधर बीजेपी एनडीए नेताओं की बैठक से गठबंधन की मजबूती का संदेश दे रही है। आज तक ब्यूरो।
5: एक तरफ योगी राज में यूपी की तरक्की की गाथाएं और दूसरी तरफ अखिलेश के सियासी दांव। योगी राज में मंत्री नंद गोपाल नंदी से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का एक विभाग सुचारू प्रशासनिक व्यवस्था बनाए जाने के लिहाज से वापस क्या लिया गया। अखिलेश यादव ने पूरा ख्याली महल तैयार कर लिया। यूपी में मौजूद एक्सप्रेसवे को समाजवादी बनाम योगी राज की एक्सप्रेसवे में बांटने वाले अखिलेश का आरोप है कि नंदी से यूपीडा का विभाग इसलिए छीना गया क्योंकि एक्सप्रेसवे का काम ठीक नहीं हुआ। दरअसल अखिलेश का आरोप है कि चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी का इलाज करने के चक्कर में बीजेपी के मौजूदा 225 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। दरअसल अखिलेश यादव अपने अनुमानों से बीजेपी के 225 विधायकों के टिकट काटे जाने का शगुफा बीजेपी में बगावत सुलझाने की उम्मीद में छोड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी की नजर ऐसे नाराज नेताओं पर भी है जिसमें बीजेपी से लेकर आरएलडी तक के विधायक हो सकते हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के टिकट तय करने के लिए अखिलेश की रोजाना स्तर पर बैठकें हो रही हैं। 10 जून को बुलंदशहर और हापुड़ जिले की विधानसभाओं के लिए बैठक है। उससे पहले पश्चिमी यूपी के नेताओं से अखिलेश की मुलाकात हो चुकी है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिडिल ईस्ट से एक बार फिर से सुलग उठा है। दो महीने के सो कॉल्ड सीज फायर के बाद अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से जंग शुरू हो गई है। देर रात अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के घातक लड़ाकू विमानों ने ईरान की घेराबंदी की। 4 घंटे तक 20 से ज्यादा ठिकानों पर भीषण बमबारी की। अमेरिका ने स्टेल्थ फाइटर जेट्स और AGM-158 जैसी आधुनिक मिसाइलों से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। ईरान भी शांत नहीं बैठा, पलटवार करते हुए उसने फिर से मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला कर दिया है। ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और शाहिद ड्रोन्स की ऐसी बरसात कर दी है जिसने पेंटागन को हिलाकर रख दिया। असल में ये युद्ध अमेरिका के लिए डॉलर छापने की मशीन बन चुका है। आज आपको बताएंगे कि कैसे पूरी दुनिया को तेल संकट में डालकर अमेरिका खुद रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहा है तेल बेचकर। इसके बाद आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड ब्रेकिंग कार्यकाल के बारे में बताएंगे। वो निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले नेता बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ दिया है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि देश में अब अधिकारियों को बुलडोजर एक्शन की सुपारी मिलने लगी है। क्या सरकारी मशीनरी प्राइवेट बिल्डर्स के लिए कब्जा हटाओ गैंग की तरह काम कर रही है? हैरान करने वाला ये मामला गुजरात के सूरत का है, जहां बुलडोजर एक्शन की वजह से भीषण गर्मी में 100 से ज्यादा परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए। लेकिन विवाद इस बात पर है कि इस एक्शन से पहले नोटिस नहीं दिया गया, कोई सूचना नहीं दी गई। किसका था ये बुलडोजर एक्शन? किसके इशारे पर उछाड़े गए ये तमाम घर? सामने आकर कोई बोलने को तयार नहीं है और कोई नहीं स्वीकार रहा कि यह हमारी कार्रवाई है। आखिर किस डिपार्टमेंट की कार्रवाई थी ये? और आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की वजह से स्मगलर्स की चांदी हो रही है। सोने की विदेशी खरीद कम करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी, लेकिन अब इसकी वजह से सोने की तस्करी बढ़ने की आशंका है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को खत्म नहीं करना चाहते। किसी भी युद्ध में डिसेप्शन की रणनीति को सबसे खतरनाक माना जाता है, जो छल पर आधारित होती है। और ये छल दुश्मन से नहीं किया जाता, ये छल उन लोगों से किया जाता है जो इस युद्ध से प्रभावित हो रहे होते हैं। यानी इस रणनीति का सिद्धांत कहता है कि लोगों का ध्यान उस चीज पर केंद्रित कर दो जो वो देखना चाहते हैं, ताकि वो उस चीज पर ध्यान ना दें जिसे आप छिपाना चाहते हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप ईरान युद्ध में दुनिया के साथ यही कर रहे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान इस बात पर केंद्रित कर दिया है कि वो ईरान युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहते हैं। सीज फायर ईरान के साथ डील करने के लिए सीरियस है, गंभीर है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने लोगों का ध्यान इस बात से हटा दिया कि ये युद्ध इस वक्त अमेरिका के लिए डॉलर छापने की मशीन बना हुआ है। और जब कोई युद्ध अमेरिका को डॉलर छाप कर दे रहा है, तो उस युद्ध को राष्ट्रपति ट्रंप भला खत्म क्यों करना चाहेंगे? और ये तस्वीरें उसका प्रमाण है। जब राष्ट्रपति ट्रंप इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर इसलिए भड़के हुए थे कि उन्होंने ईरान पर हमले करके सीज फायर का उल्लंघन क्यों कर दिया, तब इसी के 36 घंटे बाद खुद अमेरिका ने ईरान पर हमले कर दिए। और इन हमलों के कारण ये युद्ध फिर से शुरू हो गया है। और जवाब में ईरान ने भी बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें बरसा दी। यह घटनाक्रम बताता है कि अमेरिका की मंशा इस युद्ध को खत्म करने की बिल्कुल नहीं है। और क्यों नहीं है, आज उसकी वजह जानकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। वजह यह है कि ईरान युद्ध से पूरी दुनिया में तेल का संकट पैदा करने वाला अमेरिका खुद रिकॉर्ड तेल बेचकर मालामाल हो रहा है। वो हकीकत में चाहता ही नहीं कि युद्ध पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये आंकड़े हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि आज इस युद्ध में क्या हुआ है। सबसे पहले कल देर रात अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक्स की। 4 घंटे तक ये एयर स्ट्राइक चली है। ईरान के हॉर्मोजगान प्रांत के पूर्वी हिस्सों में 20 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बना दिया गया। बंदर अब्बास, केशम द्वीप, सिरिक, बंदर जस्क और कुहे मुबारक इलाके में हवाई हमले भी किए गए। बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी दागा गया। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो इनमें आपको कई इलाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास के नजर आएंगे। अमेरिका की सेंट्रल कमांड का दावा है
कि उसने सिर्फ ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस और रडार साइट्स शामिल। हालांकि ईरान का दावा है कि अमेरिका इन हमलों को लेकर कोरा झूठ बोल रहा है। कि अमेरिका ने सिरिक शहर में एक टेली कम्युनिकेशन टावर और दो वाटर टैंक्स को नष्ट किया है जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा थे। जारी की गई है, आप इनको देखिए।

0: हमें स्थिति से बाहर निकलना होगा, युद्ध निश्चित।
1: अमेरिकी मीडिया का दावा है कि हमले योजना बनाकर किए गए थे और ईरान में कुछ भी अचानक से नहीं हुआ। इसके लिए पहले अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान की 3 मोर्चों पर घेराबंदी की। इससे पहले मोर्चे पर फारस की खाड़ी और अरब सागर में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से F/A-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों ने हुंकार भरी। दूसरे मोर्चे पर कतर के अल उदेद एयरबेस से अमेरिकी बम वर्षक विमान उड़े और तीसरे मोर्चे पर ईरान के सबसे नजदीक UAE के अल धफरा एयरबेस से स्टेल्थ फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। इसके बाद क्या हुआ? ईरान में 4 घंटे तक 20 से ज्यादा ठिकानों पर बारूद बरसाया गया और ये हमले भी तब किए गए जब अमेरिका का एक भी लड़ाकू विमान उसके हवाई क्षेत्र में दाखिल नहीं हुआ। अल जजीरा का दावा है कि इस हमले में अमेरिका ने अपनी सबसे आधुनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, जिनमें एक है AGM-158, जिसे जॉइंट एयर टू सर्फेस स्टैंड ऑफ मिसाइल भी कहा जाता है। इन मिसाइलों को हॉर्मूज के पास बंदर अब्बास और सिरिक शहर के ऊपर दागा गया, जबकि दूसरी क्रूज मिसाइल है स्लैमर। इसे स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल एक्सपैंडेड रिस्पॉन्स भी कहा जाता है और ये मिसाइलें तब इस्तेमाल होती हैं जब लड़ाकू विमानों को एयर डिफेंस सिस्टम से बचाया जाता है। देखिए,

जब अमेरिका की तरफ से इतना बड़ा हमला हुआ तो ईरान ने भी बदला लेने के लिए कहां हमला किया? मिडल ईस्ट के देशों पर, बहरेन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने हमले कर दिए। इनमें भी सबसे पहले बहरेन को निशाना बनाया गया, जहां अमेरिका का फिफ्थ फ्लीट का मुख्यालय है और ये वही मुख्यालय है जिससे अमेरिकी एयर स्ट्राइक्स को गाइड किया गया था। दूसरा बड़ा हमला कुवैत पर हुआ, जहां अमेरिकी सेना के अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और शाहिद ड्रोन्स दाग दिए। और तीसरा हमला जॉर्डन में हुआ, जहां ईरान ने अल अजराक एयरबेस पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। हालांकि जॉर्डन की सेना ने कुछ मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन कुवैत और बहरीन से भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। इनमें भी बहरीन में जो हमला हुआ उसे डायरेक्ट हिट माना जा रहा है। डायरेक्ट हिट का मतलब यह है कि ईरान का शाहिद ड्रोन बहरीन के सभी एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर सीधे अमेरिकी ठिकानों पर पहुंच गया और वहां इसमें जोरदार धमाका होने से अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए,

अब ईरान ये भी दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है जिसकी कीमत है 285 करोड़ रुपए, और ईरान ने उसका एक वीडियो भी जारी किया है, ये वाला देखिए।

0: यहाँ सबसे अजीब बात यह है कि इस बार ईरान ने यूएई और सऊदी अरब पर एक भी हमला नहीं किया है। इससे पहले आपने देखा था जब जब अमेरिका ईरान पर हमला करता था वो सबसे पहले सऊदी अरब यूएई पर करता था, लेकिन इस बार ईरान पर हमले करने के लिए कुछ घंटे पहले यूएई के एयरबेस का इस्तेमाल भी किया था अमेरिका ने। ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि मार्च और अप्रैल के युद्ध में ईरान ने सबसे ज्यादा 60% हमले अकेले यूएई पर किए थे, 60%। लेकिन इस बार ईरान ने ऐसा कुछ नहीं किया और इसके पीछे बड़ा कारण माना जा रहा है यूएई अमेरिका के रिश्ते। ईरान युद्ध के कारण इन दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव आ गया है, जिसके कारण ईरान नहीं चाहता कि उसके हमलों से इन दोनों देशों को वापस एक होने का मौका मिले। और शायद इसी वजह से इस बार ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर तो हमले किए लेकिन यूएई, सऊदी अरब इनको कुछ नहीं कहा।
1: खातम अल अंबिया हेडक्वार्टर ने घोषणा की है कि दक्षिणी ईरान के कुछ हिस्सों पर हेलीकॉप्टर दुर्घटना का बहाना बनाकर अमेरिका ने जो ये आतंकवादी हमला किया है उसके जवाब में क्षेत्र में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को एक शक्तिशाली अभियान के तहत निशाना बनाया गया है। ये कार्रवाई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी और IRGC के जवानों ने मिलकर की है। अमेरिका को ये जान लेना चाहिए कि अगर उसने इस्लामी गणराज्य ईरान के खिलाफ कोई और आक्रामक कार्रवाई की तो इस इलाके में टारगेटेड ठिकानों पर इससे भी कहीं अधिक घातक और कड़े हमले किए जाएंगे।
0: अब ये देखिए कि कैसे एक अपाचे हेलीकॉप्टर ने इस युद्ध में चिंगारी लगाने का काम किया। अमेरिका का दावा है कि जब उसका एक अपाचे हेलीकॉप्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में गश्त कर रहा था तब उस पर ईरान की तरफ से हमला हुआ। ईरान ने अपने 40 लाख रुपए के शाहिद ड्रोन से लगभग 400 करोड़ रुपए के अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया और उसे नष्ट कर दिया। अब इस हमले में अमेरिका के दो पायलट बाल बाल बचे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो इस हमले का जवाब देंगे और इसी के बाद अमेरिका ने यह बदला लिया और ईरान के 20 से ज्यादा ठिकानों पर बारूद बरसा दिया। सुनिए।
2: Report that an army helicopter went down in the strait. Can you give us an update on that? Are the soldiers okay?
3: The pilots are fine, yeah.
2: And what,
3: nobody injured? We are going to issue a report tomorrow, but the pilots are fine, yeah.
0: और अब आप अमेरिका के इस विरोधाभास को भी देखिए, जिसमें वो एक तरफ ये चाहता है कि उसके जहाजों, उनके विमानों पर कोई हमला ना हो, और अगर ईरान ऐसा करता है तो अमेरिका उसका बदला लेता है। लेकिन इसी दौरान यही अमेरिका जब दूसरे देशों के जहाजों पर बिना वजह के हमला करता है तो यही बात उसे याद नहीं रहती। जब अमेरिका ने अपने एक अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए ईरान पर रात भर बम और मिसाइल बरसाए, तब इसी अमेरिका ने इससे सिर्फ कुछ घंटे पहले ओमान के पास एक बड़े जहाज पर हमला किया था जिसमें 24 भारतीय नाविक सवार थे। इस जहाज पर पलाऊ देश का झंडा लगा था, लेकिन अमेरिका ने बिना कोई चेतावनी, बिना कोई स्पष्ट कारण बताए इस पर मिसाइल दाग दी और जिसके बाद से जहाज किस तरह राख हो गया आप तस्वीरें देखिए।

आज बात सिर्फ इन दोहरे मापदंडों की नहीं है, बल्कि आज बड़ा मुद्दा यह भी है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप ईरान युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये युद्ध अमेरिका को खूब मालामाल कर रहा है और ये उसके लिए असल में डॉलर छापने की एक वॉर मशीन जैसा बन गया है। आप आंकड़े देखिए, जिस वक्त अमेरिका युद्ध लड़ रहा है और दुनिया ये सोच रही है कि युद्ध अमेरिका का नुकसान करा रहा होगा, तब पहली बार अमेरिका का व्यापार घाटा कम हो गया है। ट्रेड डेफिसिट फरवरी महीने में ये 57.8 बिलियन डॉलर था और मार्च में ये कम होकर 56.6 डॉलर हो गया है और फिर अप्रैल के महीने में और नीचे घटकर 55.9 बिलियन डॉलर पर आ गया है। यानी युद्ध के दौरान अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ने के बजाय 1.9 बिलियन डॉलर यानी 18,116 करोड़ रुपए कम हो गया। और जानते हैं ये कम कैसे हुआ? ये कम हुआ तेल के रिकॉर्ड निर्यात से। ईरान युद्ध से दुनिया में तो तेल का भयानक संकट पैदा हुआ, लेकिन इसी दौरान अमेरिका के कच्चे तेल का जैकपॉट लग गया। युद्ध से पहले फरवरी महीने में अमेरिका ने 12.7 करोड़ बैरल कच्चे तेल का निर्यात किया, जिससे उसे 7.9 बिलियन डॉलर की कमाई हुई। ये आंकड़े भी तब थे जब एक बैरल तेल लगभग $65 का था, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद जब यही तेल $85 का हुआ तो अमेरिका ने तेल बेचकर 10.7 बिलियन डॉलर कमाए और अप्रैल में तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अप्रैल में एक बैरल कच्चा तेल $102 का होने के बावजूद अमेरिका ने 72 लाख बैरल तेल का निर्यात किया एक्सपोर्ट, जिससे उसे 17.1 बिलियन डॉलर की कमाई हुई। यानी सिर्फ युद्ध की वजह से फरवरी के मुकाबले अप्रैल महीने में अमेरिका का तेल निर्यात 4.65 करोड़ बैरल बढ़ गया है और इससे अमेरिका ने लगभग 10 बिलियन डॉलर ज्यादा पैसा कमा लिया, जो भारतीय रुपयों में अगर आप देखें तो 1,00,000 करोड़ रुपए के आसपास होता है। सिर्फ महीनों की बात है। कच्चे तेल के अलावा पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से भी अमेरिका की आमदनी नए नए रिकॉर्ड छू रही है। युद्ध से पहले फरवरी महीने में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से अमेरिका में 20.5 बिलियन डॉलर कमाए थे, लेकिन अप्रैल महीने में इन्हीं पेट्रोलियम उत्पादों से अमेरिका ने 36.7 बिलियन डॉलर कमाए। उसका रेवेन्यू 16 बिलियन डॉलर पहले से ज्यादा हो गया। और यही नहीं, इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो रहा है। युद्ध के दौरान पिछली तिमाही से उसका जो GDP ग्रोथ रेट है वो 1.6% रहा, जबकि उससे पहले ये सिर्फ 0.5% था और रॉयटर्स का अनुमान है कि नई तिमाही में ये ग्रोथ रेट और भी आगे जा सकता है। अब सोचिए, जो युद्ध अमेरिका को इतना मालामाल कर रहा हो, उस युद्ध को राष्ट्रपति ट्रंप क्यों रोकना चाहेंगे? यानी आते हुए पैसे को वो ना क्यों कहेंगे? और यही कारण है, जैसे ही लगता है कि अब ये युद्ध शायद खत्म हो जाए, सीज फायर लंबा टिक गया, तभी इसमें एक नया हमला हो जाता है और नतीजा होता है ढाक के 3 पात। इस युद्ध को लेकर पूरी दुनिया में लोगों की आम धारणा यही है कि युद्ध अमेरिका के लिए दलदल बन गया है जिससे वो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन इसकी जगह वो धंसता जा रहा है। और ईरान को लेकर यह धारणा है कि उसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को झुका दिया है। अब ये बातें अपनी अपनी जगह है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि अमेरिका इस युद्ध से खूब पैसा पीट रहा है, जबकि ईरान इस युद्ध से भुखमरी की तरफ जा रहा है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है, वहां लोग EMI यानी इंस्टॉलमेंट्स पर अपना गुजारा कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ईरान में एक साल पहले की तुलना में महंगाई 73% से ऊपर पहुंच गई है, यानी जो चीज पिछले साल 100 रुपए की थी वही लगभग 173 रुपए से ज्यादा की हो गई। रिपोर्ट ही कहती है कि युद्ध से पहले ईरान के लोग बाकी देशों की तरह फ्रिज, वॉशिंग मशीन, TV, फर्नीचर, मोबाइल फोन जैसी चीजें लोन और EMI पर खरीदते थे, लेकिन अब ईरान का यह हाल हो गया है कि वहां जो रोजमर्रा की चीजें हैं, राशन, आटा, साबुन, शैंपू, घरेलू जो सामान है, वो EMI पर खरीद रहे हैं। ईरान के लोग सिर्फ युद्ध के कारण सोचे किस स्थिति में पहुंच गए हैं। महंगाई की वजह से वहां पर लोगों को जो तमाम मुश्किलें हो रही हैं और वो पुरानी सेकेंड हैंड चीजें अब खरीद रहे हैं। पुरानी चीजों की मांग में 40-60% की वृद्धि हो गई है। इस आर्थिक संकट के ही कारण ईरान ने 10 मिलियन रियाल है यानी लगभग 1 करोड़ रियाल का नोट जारी किया था,
लेकिन इससे भी हालात नहीं सुधरे और अभी ईरान आर्थिक मोर्चों पर बहुत बुरी मार खा रहा है। लेकिन नैरेटिव यही है कि ईरान इस युद्ध में टिका रहा, अमेरिका इस युद्ध में फंस गया, जबकि पैसा अमेरिका कमा रहा है। खैर, इस युद्ध ने कच्चे तेल और गैस के संकट से जूझ रहे भारत की चिंताएं बढ़ाई है, क्योंकि अगर नए सिरे से ये युद्ध छिड़ रहा है तो हमारी आपकी जेब पर तेल गैस की कीमतों पर किस तरह का असर होगा, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में कैसी चोट पहुंचेगी। भारत के सामने सवाल यह है कि हम इस युद्ध के रुकने का इंतजार करके बैठे रहें या हम तेल और गैस की आपूर्ति के लिए नए नए विकल्पों पर काम करें। इन्हीं सवालों पर मंथन के बीच अब भारत एक ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश में है जो हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिए गेम चेंजर बन सकता है। ये रास्ता है गुजरात के पोरबंदर से ओमान के बीच अरब सागर में एक गैस पाइपलाइन बनाने का, जिसे डीप वाटर पाइपलाइन भी कहा जा रहा है। भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने कुछ सरकारी कंपनियों को यह निर्देश दिए हैं कि वो इस पाइपलाइन पर नए सिरे से अध्ययन करें। इन कंपनीज में गेल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन शामिल है, जो उस रिपोर्ट पर काम करेंगी जिसे साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज नाम की कंपनी ने तैयार किया है। ये वही कंपनी है जो कई सालों से इस गैस पाइपलाइन को बनाने का प्रस्ताव दे रही है। भारत भी इसे अहम मानता आया है। अगर सब कुछ सही रहता है तो यह पाइपलाइन समुद्र की सतह से 3000 मीटर नीचे बनाई जाएगी और यह कोई मामूली गहराई नहीं है। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है, जिसका मतलब यह हुआ कि यह पाइपलाइन बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से लगभग 4 गुना ज्यादा गहराई पर बनाई जाएगी। इस पर $4 बिलियन यानी 38,119 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और इस पाइपलाइन से भारत को दो फायदे होंगे। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, सीधा ये रास्ता बन जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आप देख रहे हैं ईरान और यूएई के बीच में, जो वो सकरी सी जगह है वहां पर है, तो ये सीधा रास्ता ओमान से गुजरात के पोरबंदर का बनेगा। बिना रुकावट भारत को सीधे गैस की आपूर्ति कर पाएगा ओमान। अगर आंकड़ों में देखें तो हमें हर दिन 1.1 बिलियन क्यूबिक फीट गैस इस पाइपलाइन से मिल सकती है और अगर हम चाहें तो इस पाइपलाइन को गुजरात के साथ मुंबई से भी जोड़ सकते हैं। दूसरा फायदा यह होगा कि इससे हम समय पैसे की बचत करेंगे। भारत अभी नेचुरल गैस को बड़े बड़े जहाजों टैंकर्स में लाता है, ये काम आसान नहीं होता। आपने देखा होगा कि जब गुब्बारे में गैस भरी तो बहुत आकार बड़ा ले लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस को जमा करने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है। अगर इस गैस को जहाजों में भरकर लाया जाए तो ये संभव ही नहीं है, इसीलिए इस गैस को पहले लिक्विड फॉर्म में बदला जाता है और फिर इस लिक्विड गैस को जहाजों में भरकर लाया जाता है और यहां यह प्रक्रिया खत्म नहीं होती। भारत लाने के बाद इस लिक्विड को फिर से गैस के फॉर्म में बदला जाता है और इसमें पैसा खूब लगता है, लागत भी ज्यादा आती है। लेकिन अगर यह पाइपलाइन बन गई तो इस गैस को लिक्विड में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह सारा काम बहुत आसान हो जाएगा, समय पैसा सब बचेगा। हालांकि इतने सारे फायदे होने के बाद भी भारत पिछले 31 सालों से इस पाइपलाइन को बनाने की कोशिश हकीकत में नहीं बदल पाया है। साल 1995 में हमने पहली बार सोचा था कि भारत समुद्र के नीचे एक गैस पाइपलाइन बनाएगा। यह आइडिया तब आया जब पहले हम पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक एक ग्राउंड ऑपरेटिव पाइपलाइन बनाना चाहते थे। फिर हमें लगा कि पाकिस्तान का तो कोई भरोसा नहीं, इसलिए हमने ये योजना बदली। ये तय किया कि हम समुद्र में ओमान और ईरान तक एक नई पाइपलाइन बिछाएंगे। साल 2015 में इस पर सारे अध्ययन भी हो चुके थे लेकिन तब पाकिस्तान ने इसमें अड़ंगा डाला। पाकिस्तान कहता है कि अरब सागर में जिस जगह से ये पाइपलाइन गुजरेगी उसका कुछ हिस्सा उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। संयुक्त राष्ट्र के कानूनों के मुताबिक अगर इस क्षेत्र में पाइपलाइन ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पाकिस्तान की मंजूरी चाहिए होगी और आप तो जानते हैं पाकिस्तान कैसा देश है। हालांकि इस बार भारत एक ऐसा रूट बनाना चाहता है जिससे पाकिस्तान इसमें कोई अड़ंगा ना डाल पाए। हम मुंबई, हम गुजरात, इनको सीधा ओमान से गैस पाइपलाइन के जरिए जोड़ पाए। खैर, आगे बढ़ते और आपको ये बताते हैं कि अगर गाजा में मरने वाले मुस्लिम बच्चों की तस्वीरें दुनिया भर के लोगों की अंतरात्मा को झकझोर सकती हैं तो फिर अफगानिस्तान, पीओके, यहां पे मरने वाले मुस्लिम बच्चों की तस्वीरें किसी को विचलित क्यों नहीं करती। एक दिन पहले पीओके में पाकिस्तान ने 19 मासूम बच्चों को गोलियों से भुना। आज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 11 मुस्लिम बच्चों की हत्या कर दी। ये तस्वीरें अफगानिस्तान के कुनार, पक्तिका और खोस्त प्रांत से आई हैं, जहां पाकिस्तान की वायुसेना ने हवाई हमले किए, 19 आम लोगों की जान ले ली, जिनमें 11 बच्चे, एक महिला, एक बुजुर्ग शामिल है। ये हमले आधी रात को हुए।
जिसके बाद बड़ी संख्या में अफगानिस्तान के लोग मलबे के नीचे से अपने बच्चों की लाशें निकालते हुए नजर आए और उन्होंने ये पूछा कि क्या ये दुनिया इस अपराध पर पाकिस्तान से कोई सवाल नहीं पूछेगी। इस क्रूरता पर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और तालिबान प्रशासन काफी आक्रोशित है। उनका कहना है कि पाकिस्तान हर बार सिर्फ टीटीपी का नाम लेकर उसके आम जनता को जान से नहीं मार सकता, लेकिन सोचिए दुनिया में अफगानिस्तान का ये दर्द सुनेगा कौन, और गाजा पर शोर मचाने वाले क्या इन मुस्लिम बच्चों की हत्या से आहत होंगे। देखिए

0: पाकिस्तान का दावा है कि उसने इस हमले में 26 आतंकवादियों को मारा है। ये बच्चे आतंकवादी हैं। सच ये है कि इस हमले में ज्यादातर बच्चे, महिलाएं मारी गई हैं। ये अफगानिस्तान के वो गरीब लोग थे जो मिट्टी के घरों में रहते थे, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने इन्हें टीटीपी का आतंकवादी बताते हुए मौत के घाट उतार दिया। और ये सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं हुआ है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी असीम मुनीर की सेना ने शोक सभा में शामिल हुए 19 बच्चों, 7 गर्भवती महिलाओं की हत्या कर दी। 7 बच्चे जो इस दुनिया में कभी आ ही नहीं पाएंगे। और इस नरसंहार के बाद पीओके में ऐसी आग लगी है कि अब आतंक परस पाकिस्तान को जनता के विद्रोह से बेचैनी होने लगी है। आज पीओके के कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। इन लोगों ने पाकिस्तान सेना की गोलीबारी में मारे गए लोगों के खून का हिसाब मांगा और ये कहा कि इस बार वो दहशतगर्द असीम मुनीर से बदला लेकर रहेंगे। इन रैलियों में जो नारा सबसे ज्यादा गूंजा वो था, जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो, और जब तक जनता तंग रहेगी तब तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। देखिए, इस सबके बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि पीओके में पाकिस्तानी सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। दावा है कि इस हेलीकॉप्टर में टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खामी आई, इसके बाद उड़ान के दौरान ही यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि यहां सवाल यह है कि जब पीओके में सेना वापस जाओ के नारे लग रहे हैं तो इतना बड़ा विद्रोह हो रहा है, तभी यह हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ? पहले यह देखिए, खैर आगे बढ़ते और आपको ये बताते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक स्थिरता का क्या मतलब होता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री बने रहने का पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक लगातार 4,398 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल ने आज 10 जून को 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में अब तक हमें 15 प्रधानमंत्री मिल चुके हैं और इनमें नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। और ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये प्रमाण है कि भारत के लोकतंत्र ने 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के रूप में राजनीतिक स्थिरता को चुना और ये वो राजनीतिक स्थिरता है जो कई लोकतांत्रिक देशों को आज भी नसीब नहीं। आधुनिक युग में जब अमेरिका ने पहली बार लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया तो इसका मकसद यही था कि लोगों को अपनी शासन व्यवस्था चुनने का अधिकार मिले और इस शासन व्यवस्था में समय समय पर चुनाव कराए जाए ताकि चुने हुए लोगों को जनता की कसौटी पर परखा जा सके। जब यह व्यवस्था बनी तो उस वक्त सबसे बड़ी बहस यही थी कि इससे हर कुछ सालों में सरकारें बदलती रहेंगी, इससे राजनीतिक स्थिरता नहीं आएगी, एक व्यक्ति शासन में ज्यादा दिन नहीं रहेगा। लेकिन इस बहस के बाद भी हर कुछ सालों में चुनाव की शर्त को कायम रखा गया और यह माना गया कि चुनाव में वही जनप्रतिनिधि टिकेगा जो जनता के भरोसे को जीतेगा, जो जनता के भरोसे को नहीं जीतेगा उसे जनता बदल देगी। आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रिकॉर्ड को स्थापित किया है तो वे ये उपलब्धि चुनाव में जनता के विश्वास से ही हासिल कर पाए हैं। और ये रिकॉर्ड भारत के लिहाज से इसलिए भी अहम है क्योंकि हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 2024 में जब आखिरी लोकसभा चुनाव हुए तब हमारे देश में 97,79,00,000 वोटर्स थे जिनमें से 64,21,00,000 लोगों ने अपना वोट डाला। इतने बड़े लोकतंत्र में लगातार तीसरी बार चुनकर आना प्रधानमंत्री मोदी के लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इस लोकतांत्रिक परीक्षा को जनता के भरोसे के साथ पास किया। 23,60,00,000 लोगों के वोट से वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया के 196 देशों में से 71 देशों में पूर्ण और आंशिक लोकतंत्र है, लेकिन इन 71 लोकतांत्रिक देशों में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां मौजूदा वक्त में कोई नेता इतने सालों से लगातार चुनाव जीतकर सरकार चला रहा। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान 2012 से 2026 के बीच लगातार 14 सालों से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने हुए थे, लेकिन इस साल वो चुनावों में हार गए। एंजेला मर्केल का भी हम आपको बताएंगे जो कि जर्मन चांसलर हैं, लेकिन उससे पहले इमैनुअल मैक्रों को देखिए, वो भी 2017 से चुनाव जीतकर फ्रांस के राष्ट्रपति बने हुए हैं। उनके कार्यकाल को 9 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन जिस मुकाम पर अभी प्रधानमंत्री मोदी हैं उतने वक्त तक लोकतंत्र में उस पद पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले इस सदी के पहले 25 सालों में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल लगातार 16 साल 16 दिन जर्मन चांसलर रही। नीदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रट चुनाव जीतकर लगातार 13 साल 262 दिनों तक सत्ता में रहे, लेकिन बाकी लोकतांत्रिक देशों में सरकारें बदलती रहीं, गिरती रहीं, और यह भी तब हुआ जब हमारे पड़ोसी देशों में लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। श्रीलंका में दंगों के कारण राजनीतिक अस्थिरता हुई, म्यांमार में सेना का शासन आ गया, बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो गया, नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता आई, पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी लोकतंत्र का महत्व लगभग ना के बराबर है, लेकिन भारत में लोगों ने अपने लिए राजनीतिक स्थिरता को चुना और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ये रिकॉर्ड बना पाए। ये भी देखना जरूरी है कि जब पंडित नेहरू ने लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीते थे तब भारतीय राजनीति में ज्यादा पार्टियां नहीं होती थी। हम आपको बताते हैं 51 से 52 जो आपके लोकसभा चुनाव थे उन चुनाव में कांग्रेस को मिलाकर कुल 53 राजनीतिक पार्टियां थी। 1957 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 15 पार्टियां थी। 1962 के लोकसभा चुनाव में 27 राजनीतिक पार्टियां, और कांग्रेस के पास ये एडवांटेज था कि वो इनमें भी सबसे बड़ी पार्टी थी और उसके बराबर किसी और पार्टी का ना कद था ना संगठन। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब लोकसभा चुनाव में 464 पार्टियों ने चुनाव लड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में 673 पार्टियों ने चुनाव लड़ा। 2024 में रिकॉर्ड 743 पार्टियों ने चुनाव लड़ा था, और इससे यह पता चलता है कि मौजूदा वक्त में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ज्यादा बढ़ी, जिसके कारण 1984 के बाद हमारे देश में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। लेकिन अगर इस प्रतिस्पर्धा में भी जनता ने भारत की राजनीति को उस गठबंधन युग से बाहर निकाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में प्रचंड बहुमत मिला, लगातार उन पर भरोसा दिखाया, तो उसका मतलब यह है कि भारत के लोग हमारे देश में राजनीतिक स्थिरता चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि यह किसी लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ 2014 के बाद 2019 भी आया जब प्रचंड जनादेश बीजेपी के पक्ष में गया। दोनों ही बार 14 और 19 में उनको अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जनता ने चुना, लेकिन 2024 आते आते यहां भी गठबंधन से ही सरकार बनी। जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी के सहयोग से ही इस वक्त बीजेपी की केंद्र में सरकार है। देखिए, जब जब किसी देश में ऐसी राजनीतिक स्थिरता आई है उस देश पर पूरी दुनिया का ध्यान गया है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका की जनता को इतना भरोसा था कि उन्होंने 33 से 45 के बीच 4 बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। ऑस्ट्रेलिया के रॉबर्ट मेंजिस लगातार 16 साल 38 दिनों तक अपने देश के पीएम बने रहे थे। जर्मनी के पूर्व चांसलर हेलमुट कोल ने भी कई चुनाव जीते और वो 16 साल 26 दिनों तक इस पद पर रहे। ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर 3 चुनाव जीती, 11 साल 209 दिनों तक उन्होंने ब्रिटेन की सरकार का नेतृत्व किया, और ये वही ब्रिटेन है जिसने भारत को आजाद करते वक्त कहा था कि यहां के लोग इस देश को चला नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद लगातार 3 चुनाव जीता, भारत को राजनीतिक स्थिरता उस वक्त मिली, और आज प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़कर यह बताया है कि भारत का लोकतंत्र उस ब्रिटेन से तो काफी मजबूत है जहां पिछले 4 साल में 4 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। आज जब इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई तब उसमें सर्वसम्मति से बधाई प्रस्ताव पारित किया गया और सभी मंत्रियों ने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया। पीएम के लिए तालियां बजाई, जबकि भारत मंडपम में आयोजित एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि वो 2047 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और एक दिन भारत के लोग मेड इन इंडिया प्लेन में जरूर सफर करेंगे। सुनिए,
1: देशवासियों के सपनों को हमारे संकल्प बनाए, हमारा पल पल देशवासियों के संकल्पों की साकार करने की यात्रा का अहम पड़ाव बनता चले, इसी इस भावना के साथ देशवासियों के ऊपर पूरा भरोसा करते हुए आओ निकल पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: देश ने जो कुछ हासिल किया वो दुनिया देख रही है, लेकिन अब हमें अपनी दृष्टि आगे की ओर रखनी है। हमें 2047 के लक्ष्य को देखते हुए उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी स्पीड को और बढ़ानी होगी। महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही, और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा, तेज गति से आगे बढ़ेगा। सवाल यह है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा।
1: और अब हम सूरत से आई एक खबर की बात करेंगे, जहां पिछले 10 दिनों से 100 से ज्यादा परिवार भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे तपने को मजबूर हैं। वजह यह है कि जिस घर में वो पिछले 40 वर्षों से रह रहे थे उसे अवैध बताकर तोड़ दिया गया। लेकिन यह मामला केवल इतना सा नहीं है, डेमोलिशन की इस कार्रवाई में सरकारी मशीनरी का तो इस्तेमाल हुआ लेकिन सरकारी नियमों का पालन नहीं किया गया। जो लोग पिछले 40 साल से रह रहे थे उन्हें 30 मई को अचानक सुबह सुबह उठाया गया, कहा गया कि घर बुलडोजर चलाया जाएगा उनके। जब तक उनको समझ में आता कुछ तब तक JCB की पोकलेन मशीन ने दीवारों में छेद करना शुरू कर दिया। कार्रवाई का विरोध जब तक होता तब तक 100 से ज्यादा घर गिराए जा चुके थे। ना कोई नोटिस, ना कोई चेतावनी, सीधा कार्रवाई। इस कार्रवाई पर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन हंगामा इस बात पर नहीं है कि मकान क्यों गिराए गए, हंगामा इस बात पर है कि मकान गिराए किसने। तो सुनिए, आमतौर पर जब अवैध मकानों को गिराने की कार्रवाई होती है तो स्थानीय प्रशासन की सहमति होती है, फिर नोटिस दिया जाता है, इसके बाद एक्शन होता है। लेकिन नासिर नगर में किसके आदेश पर मकान गिराए गए ये कोई जानता ही नहीं, नोटिस की तो बात ही मत कीजिए। लोगों का कहना है कि कार्रवाई के वक्त सूरत नगर निगम के 25 से 30 अधिकारी मौजूद थे, उनके बुलडोजर, पोकलेन मशीन्स और ट्रक भी थे। कोई हंगामा ना हो इसके लिए सूरत पुलिस की SOG टीम को भी वहां बुलाया गया, लेकिन इसके बावजूद सूरत नगर निगम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि एक्शन उनके आदेश पर हुआ। अब ये कितनी हैरानी की बात है, 100 से ज्यादा मकानों को बिना नोटिस के तोड़ दिया गया और अब पता नहीं चल रहा है कि ये काम किया किसने। आप सोचिए, किसी दिन एक बड़ी सी टीम आपके दरवाजे के सामने बुलडोजर लेकर आए, घर तोड़ दे, ये भी ना पता चले कि वो कौन है या किस डिपार्टमेंट से है। सूरत में यही हुआ और अब इसी को लेकर राजनीतिक बवाल मचा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सूरत के सरकारी अधिकारियों को बुलडोजर एक्शन की सुपारी दी गई थी।
2: सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर के घर के बाहर हंगामा हो रहा है। हंगामा करने वालों का एक ही सवाल है कि उनके घर किसने तोड़े, और अगर तोड़े तो नोटिस क्यों नहीं दिया गया। घर अवैध थे या वैध, इस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले मकान पर बुलडोजर एक्शन देखिए। सूरत प्रशासन ने नोटिस देने में तत्परता नहीं दिखाई, लेकिन मकान गिराने का एक्शन पूरी कर्मठता से किया। सूरत प्रशासन ने लोगों को पता ही नहीं चलने दिया कि वो उनके मकान तोड़ने आए हैं। लोगों से कहा गया कि बस्ती से रास्ता बनाने के लिए मार्चिंग होनी है और जैसे ही लोग निश्चिंत हुए वैसे ही मकान गिरा दिए गए।
3: 8:30 बजे आए थे हम लोग, तो घर में सोए हुए थे, ये लोग आए दरवाजे ढोके बोले चलो तुम बाहर निकलो। तो हमने पूछे कि भाई किस चीज़ के लिए आए, तो बोले ये बोल रहे थे कि हमको घर डेमोलेट करना है। तो हमने बोले भाई हमारे को कुछ टाइम दो, ये वो पुलिस एस ओ जी के जो मेन थे वो हमारे को टाइम देने से मना कर रहे थे, भाई तुम्हें कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, तुम अब भी निकलो।
4: सुबह में आए शनिवार के दिन 30 मई के दिन सुबह में आए, ऐसे बुलडोजर लेके सब पुलिस कर्मचारी बोल रहे हैं, हम पुलिस मतलब म्युनिसिपैलिटी वाले पुलिस कर्मचारी सब आ गए,
3: डायरेक्ट को टाइम देने से मना कर रहे थे, भाई तुम्हें कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, तुम अब भी निकलो।
4: सुबह में आए शनिवार के दिन 30 मई के दिन सुबह में आए ऐसे बुलडोजर लेके सब पुलिस कर्मचारी बोल रहे हैं, हम पुलिस मतलब म्युनिसिपैलिटी वाले पुलिस कर्मचारी सब आ गए डायरेक्ट, ये सब सोए हुए थे, किसी को कुछ पता नहीं भाई क्या हो रहा है, बस खटखटाए दरवाजा बोले बस खाली करो, सामान खाली करो, चलो घर खाली करो।
2: वैसे 40 वर्षों से यहाँ रह रहे लोगों की शिकायत उनके मकानों को गिरा दिया जाना नहीं है, शिकायत ये है कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया, और नोटिस क्यों नहीं दिया गया इस सवाल का जवाब नगर निगम के पास भी नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक जब उन्होंने एक्शन ही नहीं लिया है तो नोटिस किस बात का।
5: इतना बड़ा मेगा डिमोलिशन है तो ऐसे तो नहीं होता, कोई सामान्य एक आदमी भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं जान रहा हूँ, पूछताछ कर रहा हूँ, और मैं आगे की भी पूछताछ करूँगा कि किसने और कैसे हुआ, लीगल हुआ है या अनलीगल हुआ है, ये जानकारी लेनी चाहिए मुझे और मैं ले रहा हूँ।
1: नियति कितनी क्रूर हो सकती है और वक्त का पहिया किसी हंसते खेलते परिवार को किस कदर मटियामेट कर सकता है, इसकी एक खौफनाक और कलेजा चीर देने वाली दास्तान दिल्ली में देखने को मिली। एक बुजुर्ग पिता अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा था, वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता, अपने बेटे अपनी पत्नी अपनी पोतियों का इंतजार करता, डॉक्टर और देखरेख कर रहे जितने अस्पताल के लोग थे उनसे बार बार पूछता कि आज कोई मिलने आया मुझसे, आज परिवार का कोई मिलने आया, मेरा बेटा आया क्या। बार बार हॉस्पिटल वाले झूठ बोलते रहे, बहाने बनाते रहे, क्योंकि वो सच इतना भयानक इतना खौफनाक था जिसे सुनने की हिम्मत और ताकत शायद उस बुजुर्ग में थी ही नहीं। और अब वो बुजुर्ग भी इस दुनिया को अलविदा कह गए, वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन कभी ये नहीं जान पाए कि उनका परिवार जिसके आने का वो इंतजार कर रहे थे वो तो कई दिन पहले ही दिल्ली की एक भयानक आग में जलकर खाक हो चुका था। ये कहानी है गुरुग्राम के 76 साल के राधेश्याम अग्रवाल की, जो फेफड़ों के गंभीर संक्रमण के चलते दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती थे। पिता की हालत बिगड़ी, उनका पूरा परिवार उन्हें सहारा देने उनके पास रहने दौड़ा चला आया। बेटा विवेक, पत्नी प्रेमलता, बहू तर्जनी, पोतियां जीविशा और वार्या। जीविशा तो दादा का हाल जानने के लिए महज कुछ घंटे पहले ही बेंगलुरु से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली आई थी। इसके अलावा 3 और रिश्तेदार उनके साथ आए। अस्पताल के करीब रहने के लिए इस परिवार ने मालवीय नगर के एक होटल में कमरा लिया। 3 जून की वो मनहूस सुबह जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, तभी होटल की 5 मंजिली इमारत में आग लग गई। देखते ही देखते धुएं और लपटों ने सबको अपने आगोश में ले लिया। इस दर्दनाक अग्निकांड ने राधेश्याम अग्रवाल के परिवार के 8 लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला। 3 पीढ़ियां एक झटके में खत्म हो गई। लेकिन इस खौफनाक हकीकत से बेखबर राधेश्याम अस्पताल के बेड पर बस एक ही जिद लगाए बैठे थे, मेरा बेटा विवेक कहां है, मेरी पत्नी नहीं आई। अस्पताल का स्टाफ हर रोज उनसे नया झूठ बोलते थे, कहते थे कि विवेक किसी काम से जयपुर चले गए हैं, वो जल्द आएंगे आपके बेटे। आखिर ऐसी हिम्मत जुटा पाना मुश्किल था कि कैसे सच बताया जाए, सच बताते तो वो शायद उसी वक्त सदमे से ही दम तोड़ देते। दिन बीतते गए, अपनों की एक भी सूरत नजर ना आने पर शायद बुजुर्ग पिता का दल किसी अनहोनी को भांप चुका था। सोमवार को वो बेहोश हुए, मंगलवार सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। अपने बेटे पत्नी बहू पोतियों की राह देखते देखते राधेश्याम अग्रवाल इस दुनिया से चले गए। लेकिन जीते जी वो ये कभी जान नहीं पाए कि जिस बेटे का वो इंतजार कर रहे थे वो कब का खाक हो चुका था, जिस परिवार को वो पीछे छोड़ जाने से डर रहे थे वो परिवार तो उनसे पहले ही शमशान घाट पहुंच चुका था। मौत जिंदगी का सत्य है, लेकिन नियति का ये क्रूर मजाक रूह कपा देने वाला है। एक पूरा हंसता खेलता परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहा। राधेश्याम अग्रवाल चले गए, लेकिन शायद उनका ना जानना ही उनके लिए आखिरी सुकून रहा होगा, क्योंकि यह एक ऐसा सच था जिसे बर्दाश्त कर पाना किसी भी इंसान के लिए मुश्किल था। इस दर्दनाक घटना ने पूरी दिल्ली देश को चकचोर दिया है। और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा। देखते रहिए आज तक।

0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, you're killing me.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: ये थर्ड नहीं 13 डिग्री का केस है।
3: माल मैंने चुराया, शौचालय के पीछे पीपल के नीचे दबाया।
2: हवालात की हवा अच्छे अच्छों को सुधार देती है शुक्ला।
4: समर कूल कूलर,
2: हवा अच्छी है ठंडक सच्ची है समर कूल।

0: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
1: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
2: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
1: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
3: You're listening to MSNBC.
1: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
4: ये थर्ड नहीं 13 डिग्री का केस है।
5: माल मैंने चुराया, शौचालय के पीछे पीपल के नीचे दबाया।
4: हवालात की हवा अच्छे अच्छों को सुधार देती है शुक्ला।
6: समर कूल कूलर,
4: हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।
7: मैं करता हूँ ना,
8: मैं करूँगा।
9: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
10: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
9: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
10: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
9: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
11: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
12: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
11: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
13: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
14: ये मजबूर हैं पर आप नहीं, बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
15: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
4: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
3: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
5: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
6: इन एसोसिएशन विद
7: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
6: हिंट, बड़े आराम से
7: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
6: विमल बोलो जुबां केसरी।
8: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: ये थर्ड नहीं 13 डिग्री का केस है।
3: माल मैंने चुराया, शौचालय के पीछे पीपल के नीचे दबाया।
2: हवालात की हवा अच्छे अच्छों को सुधार देती है शुक्ला।
4: समर कूल कूलर,
2: हवा अच्छी है ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ राम कथा से 2027 के सियासी महाभारत का संदेश सुनाते हैं। जिस अयोध्या का राम मंदिर बनवाकर भी 24 में जाति में वोट बटने से अयोध्या से जुड़ी लोकसभा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, वहां राम के नाम पर अस्त्र शस्त्र सत्ता और विपक्ष में चलने लगा। पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, लिखा राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज किया। जब लखनऊ में बीजेपी विधायक की तरफ से कराई जाती राम कथा में मुख्यमंत्री पहुंचे, तो नया सियासी संदेश सुनाई दिया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं निगेटिव ताकतें रावण काल की तरह से उठाएंगी तो उजाड़ करेंगी। क्या योगी का निशाना विपक्ष है, जहां पर वो खर दूषण मारीच ताड़का तक की बात करके एक ऐसी राम कथा का जिक्र करते हैं जिसमें चाचा मामा का नाम आते ही तंजुनुमा हंसी आती है। इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में लग जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं, जब दावा हो रहा है कि हिंदू लड़कियों ही नहीं हिंदू लड़के तक को लग जिहाद में फंसाया जा रहा है, तब मुख्यमंत्री योगी लग जिहाद के खिलाफ श्री राम से सीख लेने को कहते हैं। लव जिहाद ही नहीं बल्कि त्रेता युग में खर दूषण मारीच के जरिए कलयुग में लैंड जिहाद तक का जिक्र योगी आदित्यनाथ करते हैं। योगी लव जिहाद के खिलाफ श्री राम से सीख लेने को कहते हैं। लव जिहाद ही नहीं बल्कि त्रेता युग में खर दूषण मारीच के जरिए कलयुग में लैंड जिहाद तक का जिक्र योगी आदित्यनाथ करते हैं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और शातिर लोग कभी पूरी बात नहीं बताते, वो उतनी ही बात बताते हैं जितनी में वो सही होते हैं। नमस्कार।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने पर बोले पीएम मोदी, 12 वर्ष में कांग्रेस की कुचक्र से आजाद हुआ देश। इन्होंने धीमे विकास को कहा हिंदू ग्रोथ रेट, बोले 2047 तक विकसित भारत हमारा संकल्प। एनडीए की बैठक में चंद्रबाबू नायडू ने अभिनंदन प्रस्ताव में पीएम मोदी को बताया सदी का नेता, अमित शाह ने भी की तारीफ, शुभेंदु ने खिलाई झालमुड़ी।

0: ममता को फिर लगा झटका। बागी गुट के 19 लोकसभा सांसदों ने जारी की लिस्ट। शत्रुघ्न सिन्हा, सयानी घोष के भी नाम। ऋतुव्रत का दावा, 64 एमएलए भी हमारे साथ। कांग्रेस को लगी दोहरी चोट। झारखंड में एनडीए समर्थित राज्यसभा प्रत्याशी परिमल नाथवानी का पर्चा वैध। मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर आयोग जल्द करेगा निर्णय। और ईरान पर फिर से बारूद बरसाएंगे ट्रंप, कहा निशाने पर पावर प्लांट्स और पुल। तेहरान पर लगाया डील में देरी करने का आरोप।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं, आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक की शुरुआत ईरान पर अमेरिका के उस हमले की खबर से जिसमें एटमी युद्ध की घंटी बजा दी। युद्ध विराम के 2 महीने के बाद एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हवाई हमला किया है। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भीषण पलटवार किया है। मतलब यही है कि एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। अगले कुछ घंटे बहुत भारी हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि अब ईरान के पास पीस डील के लिए कोई मौका नहीं है, बल्कि अब होगा प्रचंड युद्ध। अब ट्रंप क्या करने वाले हैं यह हम आगे आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले युद्ध से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें आइए दिखाते हैं।
3: खबर नंबर 1, अमेरिका और ईरान के बीच फिर युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका ने ईरान पर अपने हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए बीती रात ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर ईरान पर हवाई हमले किए गए जो आत्मरक्षा के लिए जरूरी थे। अमेरिकी सेना ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, सैन्य ठिकानों के साथ साथ कई शहरों पर मिसाइलों से हमला किया है। इन हमलों के साथ 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच हुआ युद्ध विराम पूरी तरह टूट चुका है। खबर नंबर 2, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान पर अमेरिकी हमले मजबूत और शक्तिशाली जवाबी कार्रवाई है। ये हमले अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर हुए हमले का बदला है। शांति वार्ता के बीच ईरान की तरफ से अमेरिकी सेना पर हमले का जवाब देना बहुत जरूरी था। हालांकि ट्रंप ने हमलों के बाद दावा किया कि ईरान के साथ पीस डील को लेकर चर्चा बंद नहीं हुई है। खबर नंबर 3, अमेरिकी सेना ने ईरान के केशम आइलैंड, ईरान के सिरेक और जास्त नौसैनिक अड्डों, बंदर अब्बास में एक हवाई रक्षा चौकी, मिनाब और केशम में ईरान के मिसाइल अड्डों पर बड़े हवाई हमले किए हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमले में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरानी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कई शहरों में धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने जल भंडारण जलाशयों पर भी मिसाइल से हमला किया जिसकी वजह से वो पूरी तरह तबाह हो गए। हमले की वजह से 20,000 ईरानियों को पीने के पानी की सप्लाई ठप हो गई है। खबर नंबर 4, अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। ईरान का दावा है कि खाड़ी के देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर 21 हवाई हमले किए गए। IRGC के मुताबिक ये हमले अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में किए गए हैं और हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक अमेरिका हमले नहीं रोकता। खबर नंबर 5, IRGC ने दावा किया है कि बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर ड्रोन हमला किया गया जहां से अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले किए थे। ईरान की सरकारी मीडिया तस्नीम में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सुबह करीब 2:30 बजे बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया। ईरानी सेना ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमले नहीं रोके तो मिडिल ईस्ट के हर अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया जाएगा। खबर नंबर 6, अमेरिकी हमले से बौखलाए ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा हमला किया। दावा यही है कि अमेरिकी सेना के F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर और कमांड सेंटर समेत चार अहम ठिकानों को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया गया। वहीं ईरान ने हुर्मुज इलाके में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया है। बड़ी बात यह है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए जॉर्डन के अजराक, कुवैत के अली अल सलेम और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के अड्डे पर हवाई हमले किए। खबर नंबर 7, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ने अमेरिका के ताजा हमलों को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रंप को सीधी धमकी दी है। अराकची ने कहा है कि लड़ाई में हार के बावजूद अमेरिका ने हमारी दृढ़ता को परखने की कोशिश की। हमारी ताकत पर सेना किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगी। अगर अमेरिकी सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारे क्षेत्र से चले जाएं। खबर नंबर 8, संयुक्त अरब अमीरात ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। ईरान पर आरोप लगाया है कि तीनों देशों की संप्रभुता का उल्लंघन और उनकी सुरक्षा को खतरे में डाला है। वहीं अमेरिका, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन ने ईरान के हवाई हमलों की सुरक्षा को। खबर नंबर 9, सुरक्षा को खतरे में डाला है। वहीं अमेरिका, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन ने ईरान के हवाई हमलों को पूरी तरह रोकने का दावा किया है। खबर नंबर 9, इसराइल ने एक बार फिर ईरान पर हमले की बड़ी चेतावनी दी है। इजरायली सेना चीफ एयाल जमीर ने चेतावनी देते हुए कहा है अगर जरूरत पड़ी तो इसराइल ईरान पर फिर हमला करेगा। इसराइल का दावा यही है कि ईरान पर हमले की तैयारी पूरी है, टारगेट लॉक है, बस प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आदेश का इंतजार है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के दौरान ईरान ने इसराइल पर कोई हमला नहीं किया है। अमेरिका के हमले से पहले ईरान ने लेबनान पर हमलों को लेकर इसराइल पर हवाई हमले किए थे। ईरान के हमलों के जवाब में इसराइल ने सैन्य कार्रवाई की थी। ट्रंप के दखल के बाद दोनों मुल्क हमले रोकने को तैयार हुए थे। खबर नंबर 10, हिजबुल्ला ने इजरायली सेना पर हमले का बड़ा दावा किया है। दावे के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के ठिकानों, बख्तरबंद वाहनों और कमांड सेंटरों पर 14 हमले किए। ये हमले दक्षिणी लेबनान के बियादा, राशफ, अल कब्जा और कंतारा इलाकों में इजरायली सेना को निशाना बनाते हुए किए गए। आज तक ब्यूरो।
4: ईरान पर हम बहुत बड़ा भीषण हमला करने वाले हैं। बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कह दिया है कि अब भीषण हमला होगा और मैं वो आदेश कभी भी दे सकता हूं जो आदेश तेहरान को तबाह बर्बाद कर देगा। बड़ा हमला, जोरदार हमला हम करने जा रहे हैं और ये ऑर्डर कभी भी मेरी तरफ से जारी किया जा सकता है। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दी है। रोहित शर्मा, सुमित चौधरी, प्रणय उपाध्याय हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ हैं और अमेरिका हम आपको सीधे लिए चलते हैं रोहित शर्मा के पास। रोहित, क्या हलचल है वहां इस ऑर्डर और इस धमकी को लेकर?
5: देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप काफी जो आई थिंक उनका जो पेशेंस है आई थिंक वो खत्म होते हुए दिख रहा है हमें। वो काफी समय से बात कह रहे थे कि एक डील हो जाएगी, एक डील हो सकती है। हर दिन, हर रोज, हर वीकेंड ऐसी बातें होती है कि शायद अगले हफ्ते डील हो जाए, इस हफ्ते डील हो जाए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जिस तरह से कल ईरान ने जब हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला किया और उसके जवाबी कार्रवाई की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद अब जो बयान दिया उन्होंने थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि हम फिर से हमला करेंगे, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनका पेशेंस खत्म हो रहा है। वो चाहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं समझने की ईरान सचमुच नेगोशिएट करना चाहता है या अमेरिका का समय बर्बाद कर रहा है। तो आई थिंक अब उन्होंने कहा है तो ऑब्वियसली वो फॉलो थ्रू जरूर करेंगे इस पे। सईद,
4: बिल्कुल ठीक है। रोहित, सुमित, क्या अब पीस डील खत्म, अब सिर्फ भीषण युद्ध दोनों तरफ से?
6: देखिए, अभी डील नहीं खत्म हुई है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी भी अमेरिका कोशिश ये कर रहा है, जैसा रोहित भी बता रहे थे, एक तरीके का साइकोलॉजिकल प्रेशर ईरान पे डालना। लगातार डोनाल्ड ट्रंप ऐसा पहले भी करते आए लेकिन हर बार फेल हुए हैं। सही, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या ईरान इन सब चीजों के बाद, इन धमकियों के बाद, इन चेतावनियों के बाद क्या मानने को तैयार है? असल में यहाँ ईरान की भी मजबूरी है। ईरान ये चाहता है कि देखिए कम से कम लेबनान पर युद्ध बंद किया जाए, जो जो इजराइल मानने को तैयार नहीं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ब्लॉकेट खोलने की बात जो ईरान की तरफ से की जाती है अमेरिका के लिए, वो भी अमेरिका मानने को तैयार नहीं। तो एक बहुत ज्यादा ऐसी परिस्थितियां बन गई है जहां पर ना तो अमेरिका पीछे हटने को तैयार और ना ही ईरान पीछे हटने को तैयार है।
4: बिल्कुल सुमित। प्रणय, दो छोटे छोटे से सवाल। ईरान मानता क्यों नहीं ट्रंप की बात, और क्या ट्रंप ईरान और इसराइल के बीच फंस गए हैं?
7: देखिए, ईरान के लिए ये वजूद की लड़ाई है, और इसका छोटा सा जवाब यही है कि ईरान अपने इस अस्तित्व की लड़ाई के अंदर किसी तरीके का समझौता अफोर्ड नहीं कर सकता है, ऐसा समझौता जो कि ईरान की सत्ता और ईरान के जो पूरा किरदार है उसको बदलने की कोशिशों को कामयाब कर सके। और इसीलिए ईरान चाहता है कि चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो, जहां उसकी संप्रभुता स्वीकार करने का के लिए वो दबाव बना रहा है, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो जो कि एनपीटी के तहत होना चाहिए, ये तमाम वो डिमांड्स हैं जिनके कारण ये पूरा जो समझौता है या जो कूटनीतिक समाधान की कवायद थी वो अटकी हुई है। जी
4: प्रणय, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन रोहित, सुमित और प्रणय हमारे तीनों संवाददाता हमारे साथ लगातार रहेंगे, आगे भी हम आपसे बात करेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कह दिया है कि ईरान पर हम बहुत भीषण हमला करने वाले हैं और मेरे आदेश का आप इंतजार कीजिए। और भाई, अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से युद्ध छिड़ गया। एक हेलीकॉप्टर पर हमले के चलते अमेरिका ने युद्ध विराम को धुआं धुआं कर दिया। पहले तो अमेरिका ने अपने एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने का दावा किया, और फिर उसके जवाब में ईरान पर भीषण हमले शुरू कर दिए। आधी रात के बाद ईरान के 5 बड़े शहरों में धमाके शुरू हो गए। अमेरिकी युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, बमों ने बरसात शुरू कर दी। ईरान के बंदर अब्बास से लेकर बंदर जस्क, सिरिक, कोह मुबारक और केशम द्वीप पर कहर टूटने लगा। अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन कमांड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया, तो बदले में ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर तबाही मचाना शुरू कर दिया। आइए हम आपको दिखाएं ये युद्ध कितना भीषण है।
3: ईरान पर अमेरिका की फिर से चढ़ाई, अब होगी सबसे भयंकर लड़ाई। एक हेलीकॉप्टर पर हमले का बदला, अमेरिकी हमलों से ईरान तहला। ईरान पर अमेरिका की फिर से चढ़ाई, अब आगे होगी एटमी लड़ाई। अमेरिका ने ईरान के 20 ठिकाने उड़ाए, ईरान ने 21 अमेरिकी बेस तहलाए। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान की चेतावनी, अब भीषण रण होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पीस डील करके जिस तरह से युद्ध विराम को धुआं धुआं किया है, ईरान ने भी अब जैसे नई जंग का प्रण ले लिया है। जिस तरह से अमेरिका ने ईरान में फिर से बारूदी तबाही मचाई है, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ईरान पर फिर से चढ़ाई के लिए एक बहाना ढूंढ रहा था। ईरान ने अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया था, बदले में अमेरिका ने ईरान के 5 शहरों में तबाही मचाकर रख दी। 8 जून की रात समंदर के बीचों बीच अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर पर ड्रोन से हमला होता है। हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट समंदर में कूद जाते हैं, लेकिन इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, और फिर न सिर्फ युद्ध विराम टूटता है बल्कि जंग जहां से शुरू होती है हालात घूमकर वहीं आ जाते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के आदेश पर आधी रात को मिडिल ईस्ट में वो महा एक्शन हुआ है जिसने ईरान के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका ने इन हमलों को सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स कहा है, लेकिन ये हमले कितने सुनियोजित और घातक थे इसको समझाते हैं। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान को 3 तरफ से घेर कर ऐसा शिकंजा कसा कि तेहरान को संभलने का मौका तक नहीं मिला। फारस की खाड़ी और अरब सागर में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से F/A-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों ने हुंकार भरी। कतर के अल उदैद एयरबेस से अमेरिकी बम वर्षक उड़े, तो ईरान के सबसे नजदीक मौजूद UAE के अल थफरा एयरबेस से स्टेल्थ फाइटर्स ने उड़ान भरी। वहीं बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर से इस पूरे हमले को गाइड किया गया। अमेरिकी जेट्स का मुख्य टारगेट था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान का दक्षिणी तट। अमेरिका ने ईरानी सीमा में कदम रखे बिना सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही स्टैंड ऑफ हथियारों से अचूक वार किया। इस हमले में ईरान के रडार सिस्टम, एयर डिफेंस मिसाइल बैटरियों और शाहिद ड्रोन के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों को नेस्त नाबूद कर दिया गया। अमेरिका ने इस ऑपरेशन में सबसे खतरनाक AGM-158 JASSM यानी जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल और SLAMER यानी स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल एक्सपैंडेड रिस्पांस जैसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया ताकि अमेरिकी जेट्स को ईरान के एयर डिफेंस के पास ही न जाना पड़े। इसके साथ ही आसमान से सटीक तबाही मचाने के लिए JDAM यानी GPS गाइडेड प्रिसीजन बम बरसाए गए जिन्होंने बादलों को चीरकर रडार और कमांड सेंटर्स को मलबे में तब्दील कर दिया और इस पूरी तबाही का जायजा लेने के लिए आसमान में मंडरा रहे थे अमेरिका के घातक MQ-9 रीपर ड्रोन। ईरान इन हमलों से हिल गया लेकिन इसके बाद ईरान का पलटवार शुरू होता है और पूरा मिडल ईस्ट थर्रा उठता है। अमेरिका ने ईरान में 20 ठिकानों को निशाना बनाया तो पलटवार में ईरान ने मिडल ईस्ट में 21 अमेरिकी बेस को टारगेट किया। सबसे बड़ा दावा जॉर्डन में F-35 हैंगर को तबाह करने का है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि उसने पश्चिम एशिया में अमेरिकी और सहयोगी देशों के कुल 21 हवाई और नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान ने दावा किया कि जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर मौजूद F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर नष्ट कर दिए गए हैं। ईरान ने यह भी दावा किया है कि जॉर्डन में मौजूद एक अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। इसके अलावा IRGC का कहना है कि उसने ईरान के जम शहर के ऊपर उड़ रहे एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराया है। ईरानी सेना ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका की ओर से कोई नई सैन्य कार्रवाई की जाती है तो उसका जवाब और अधिक ताकत से दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने अमेरिका के ताजा हमलों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि लड़ाई में हार के बावजूद अमेरिका ने हमारी दृढ़ता को परखने की कोशिश की। हमारी ताकत पर सेना किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगी। अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारे क्षेत्र से चले जाएं। ईरान ने दावा किया कि उसने बहरीन में अमेरिकी ठिकाने पर सीधा हमला किया है। IRIB न्यूज ने वीडियो जारी कर दावा किया कि ईरान की मिसाइल सीधे अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर जाकर गिरी है। ईरान ने बहरीन और जॉर्डन के साथ साथ कुवैत में भी हमले किए। यहाँ अमेरिकी सेना के अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान की मिसाइलें और ड्रोन काल बनकर टूटे जिससे कुवैत एयरपोर्ट तक थर्रा उठता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि उनकी सेना ने ईरान के हौसले पस्त कर दिए हैं, उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन ईरान ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखा दी। आपको बता दें कि ईरान पहले ही कह चुका है कि अभी तक उसने अपना ब्रह्मास्त्र नहीं निकाला है। ईरान ने बाकायदा वीडियो जारी कर मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया। ईरान ने इन हमलों के लिए बड़े पैमाने पर लंबी दूरी की मिसाइलें लॉन्च की। वीडियो में अमेरिकी ठिकानों की ओर लंबी दूरी की कद्र, इमाद और खैबर शेकन मिसाइलों को लॉन्च करते हुए दिखाया गया। ईरान ने चुन चुन कर अमेरिकी एयरबेस पर प्रहार किया। जैसे ही ईरान ने अमेरिकी हमलों पर पलटवार किया तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा कि फिलहाल अमेरिकी हमले खत्म हो चुके हैं लेकिन स्थिति अब भी सक्रिय बनी हुई है। जबकि IRGC ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर और भी ज्यादा बड़ा और तगड़ा हमला किया जाएगा। IRGC ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने ये हमले दक्षिणी ईरान में अमेरिकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना को झूठा बहाना बनाकर किए हैं और हमारे ये हमले अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में हैं। जबकि ट्रंप ने ईरान के हारने का दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरानी सेना पूरी तरह से बिखर चुकी है, नौसेना और वायुसेना लगभग खत्म हो चुके हैं। ईरान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। वो खुद को मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा दबंग समझता था लेकिन अब खत्म हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान ने उस समझौते पर बातचीत करने में बहुत ज्यादा देर कर दी जो उसके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता था। अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी ये क्लियर है कि जंग अब अंजाम तक पहुंचकर ही रहेगी। उधर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर रूस ने गहरी चिंता जताई है। रूस ने दोनों देशों से अपील की है कि वो संयम बरतें और तुरंत सैन्य हमले बंद करें। आज तक ब्यूरो।
4: ईरान के अड़ियल रवैये से परेशान होकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जबरदस्त खतरनाक धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा है कि अब इतना भीषण हमला होगा कि ईरान याद रखेगा और यह आदेश मैं कभी भी दे सकता हूं। सुनिए।
8: We'll see what happens, but we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We're really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers.
4: प्रणय उपाध्याय हमारे साथ हैं। प्रणय, क्या ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रहा है?
7: देखिए, अभी ये तो कहना बहुत मतलब थोड़ा जल्दबाजी भी होगी, और मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कितनी भी व्यग्रता में क्यों ना हो, लेकिन वो परमाणु हथियार के बटन पर को नहीं दबाना चाहेंगे, क्योंकि उसके परिणाम बहुत ही भयानक, बहुत ही व्यापक होंगे। और इसकी बजाय वो चाहेंगे कि ईरान के ऊपर जो भी उनका दबाव है, जो कि उनकी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी है, चरम दबाव की जो नीति है, उसके तहत वो ईरान के खिलाफ जो नेवल ब्लॉकेट है, वो ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए रखे हैं, वो उनके दबाव के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश करें। अब देखिए, ये दोनों तरफ से एक ब्रिंकमैनशिप का खेल है, यानी हु ब्लिंक्स फर्स्ट, कौन पहले झुकता है, कौन पहले टूटता है, किसके ऊपर दबाव ज्यादा काम करता है, क्योंकि अमेरिका पर भी दबाव है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 105 दिनों से लगातार बंद है, दुनिया भर के अंदर ऊर्जा संकट जो है वो गहरा रहा है, अंतरराष्ट्रीय दबाव जो है वो अमेरिका पर भी बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के लिए जो व्यापार कारोबार तेल निर्यात बेहद मुश्किल है मौजूदा हालात के अंदर, तो दबाव वहां भी महसूस किया जा रहा है। अब देखना है कि इस दबाव का नतीजा क्या हथियारों के चलने से किसी निर्णय के अंदर तब्दील होता है, या फिर कूटनीतिक समाधान की टेबल के ऊपर कोई फॉर्मूला निकलता है।
4: बिल्कुल ठीक प्रणय। प्रणय, हम आपसे ये भी जानना और समझना चाह रहे थे कि ईरान के नहीं झुकने का कारण क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान ने परमाणु बॉम्ब बना लिया हो, ये संभावना पर हम बात करना चाह रहे थे। समय थोड़ा सा कम है, बहुत धन्यवाद आपका प्रणय उपाध्याय, हमारी संवाददाता, हमारे साथ थे। लेकिन इस समय की जो बड़ी खबर है वो यही है कि अब बेहद भीषण युद्ध होने जा रहा है ईरान अमेरिका और इसराइल के बीच, क्योंकि ट्रंप परेशान हो चुके हैं ईरान से, और ट्रंप ने कहा है कि बहुत बड़ा आदेश भीषण हमले का मैं देने वाला हूं। क्या है वो आदेश, कब तक होगा ये हमला, कितना भीषण विध्वंसक खतरनाक होगा, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए दस्तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
9: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
10: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
8: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
11: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
9: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
8: जहां खबर वहां खबरदार।
12: इन एसोसिएशन विद
13: E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
8: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल।
15: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी।
8: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल।
15: CBSE के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
8: छात्रों को दिया मंच।
15: उज्मा हमारे साथ कोटा से और अदिति मुंगेर से हैं और तानिया कोटा से हैं और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
16: नहीं देखिए, इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
17: IIT मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
8: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर।
15: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक। और अब सरकार की तरफ से CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
8: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।
18: लगातार फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है जी।
19: लाओ एक एटम बम का गोला, हम पे मार दो, बात खत्म हो जाएगी।
20: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर, जहां पिछले कुछ दिनों से सड़क पर गुस्सा है, नारे हैं, प्रदर्शन है और सुरक्षा बलों के साथ टकराव की तस्वीरें। लेकिन सवाल है कि POJK में ये हालात बने कैसे? दरअसल बवाल तब शुरू हुआ जब POJK में लोग काफी वक्त से बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हैं। JACC यानी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले 9 जून को बंद का ऐलान किया गया और उससे पहले सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पाकिस्तान सरकार ने 5 जून को JASC पर प्रतिबंध लगा दिया, साथ ही पूरे POJK में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। अगले ही दिन बड़े पैमाने पर नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसे एक्शन के विरोध में 7 जून से उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए। रावलकोट के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर झड़पें हुई। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों और शोक सभा शामिल लोगों पर फायरिंग कर दी। पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी सेना को इन लोगों पर खुलेआम गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि रावलकोट में शोक सभा में शामिल 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों की नाराजगी की कई वजहें बताई जा रही हैं। पहला मुद्दा महंगाई। लोगों की मांग है कि आटा, चावल, दाल और बिजली जैसी जरूरी चीजें सस्ती हों। दूसरा बड़ा मुद्दा बिजली। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि POJK में बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को महंगी बिजली मिलती है। तीसरा मुद्दा राजनीतिक प्रतिनिधित्व। POJK विधानसभा की 12 रिजर्व सीटों को लेकर भी विवाद है। आरोप है कि इन सीटों पर ऐसे लोग प्रभाव रखते हैं जो POJK में रहते ही नहीं। प्रदर्शनकारी इसे स्थानीय लोगों के अधिकारों से जोड़ते हैं। प्रदर्शन हिंसक कैसे हुआ? रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगह प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। रावलकोट में भीड़ को रोकने के लिए पुलिस और रेंजर्स की तैनाती हुई। आंसू गैस, पैलेट गन और फायरिंग के आरोप लगे। सुरक्षा कार्रवाई के दौरान कई लोगों की मौत हुई। आम लोगों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के मारे जाने के भी आरोप लगाए गए। पाकिस्तानी फौज के जुल्म के खिलाफ रावलकोट में मस्जिदों से अपील की गई कि लोग लॉन्ग मार्च में शामिल हों।
1: जम्मू कश्मीर की धरती पर गुरानी फोर्सेज की तरफ से हमला किया गया है। तमाम रहते वतन कश्मीरियों से गुजारिश है कि मुकम्मल लॉकडाउन और लॉन्ग मार्च में शिरकत करके कौमी गैरत का सबूत।
20: पीओजेके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ऐसी कार्रवाई को लेकर भारत ने गंभीर चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने कहा है, हमें पाकिस्तान से लगातार फर्जी खबरें और वीडियो देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छुपाने और मानवाधिकारों के हनन से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पुलिस की बर्बरता की खबरें आ रही हैं, जिनमें कई प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। आशा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को इसके लिए जवाबदेह ठहराएगा। पीओजेके में हिंसा को लेकर यूरोप स्थित मानवाधिकार संगठन टीसीएचआरडी ने भी सवाल उठाए हैं। मांग है कि इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विशेष बैठक बुलाई जाए, संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत मामले की जांच करें, स्वतंत्र जांच कराई जाए, इंटरनेट पर लगी रोक तत्काल खत्म की जाए और ये भी कि गिरफ्तार जेएसी कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ महंगाई और बिजली का आंदोलन है या जुलाई में होने वाले चुनावों से पहले बड़ा राजनीतिक संकट? पीओजेके में चुनावी माहौल भी बन रहा है और ऐसे वक्त में सड़कों पर उतरा गुस्सा पाकिस्तान की सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
21: माता जानकी का अपहरण रावण ने किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा प्रयत्न किया, उत्तर और भारत को, उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा। नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। हमें आश्चर्य होता है, उच्च न्यायालय केरला ने 2009 और 2011 में इस पे चिंता व्यक्त की। रिलीजियस डेमोक्रेसी को चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन तब भी हम उस पर ध्यान नहीं दिए। हमने 2020 में उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए सख्त कानून बनाया, तब भी इसके लिए व्यापक जन जागरूकता किए जाने की आवश्यकता है। हमें सचेत रहना होगा। याद रखना, नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी, लेकिन समाज मिलकर के तैयार होना होगा और यही स्थिति हम सबको उस लैंड जिहाद से जुड़े हुए लोगों पड़ेगा, जो भगवान राम ने आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देगा, उसमें अपना तंबू गाड़ दिया,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: स्वागत एक बार फिर से आपका, आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा शुरू हुए युद्ध के बाद अली खामनेई का अंतिम संस्कार एक बार फिर से टल गया। चंद दिन पहले ईरानी मीडिया में छपी रिपोर्ट में 21 जून को आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारी का दावा किया गया था और करीब करीब पूरी तैयारियां हो गई थी। अली खामनेई के अंतिम संस्कार को अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील से जोड़कर भी देखा जा रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सारी की सारी उम्मीद पर पानी फिर चुका है।

0: अली खामिनई को अभी नहीं दफनाया जाएगा। फिर टला अली खामिनई का अंतिम संस्कार। क्या खामिनई के अंतिम संस्कार में युद्ध है रोड़ा? मुहर्रम में खामिनई का होना था अंतिम संस्कार। खामिनई की अंतिम विदाई पर लगा ग्रहण। अगर मुहर्रम के महीने में अली खामिनई का अंतिम संस्कार होता तो इसका मतलब यही था कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम बेहद करीब है, क्योंकि ट्रंप ने भी यही संकेत दिए थे कि 4 जुलाई से पहले पीस डील पर साइन हो सकते हैं। मुहर्रम का महीना ईरान के लिए खास है और 4 जुलाई ट्रंप के लिए, क्योंकि 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लेकिन ताजा हमलों की वजह से खामिनई का अंतिम संस्कार टल गया है, इसे यूं समझिए। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामिनई की मौत हुई। इसी हमले में अली खामिनई के बेटे मुज्तबा खामिनई भी बुरी तरह जख्मी हो गए थे। पिता के निधन के बाद सर्वसम्मति से मुज्तबा खामिनई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया, लेकिन मुज्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद भी अली खामिनई को सुपुर्दे खाक नहीं किया गया। बीते दिनों इस्लामी कैलेंडर के पहले और सबसे पवित्र महीने मुहर्रम में अली खामिनई की आखिरी विदाई, अंतिम संस्कार और दफन समारोह की खबरें आई थी। दावा किया गया था कि 21 जून को खामिनई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा, लेकिन अंतिम संस्कार से पहले एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस बीच अली खामिनई के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की देखरेख करने वाली आधिकारिक समिति ने ऐलान किया है कि मुहर्रम के बाद इसका आयोजन होगा। मतलब यही है कि युद्ध के चलते एक बार फिर अंतिम संस्कार के आयोजन को टाल दिया गया। आधिकारिक बयान में दावा किया गया है कि अब अली खामिनई के अंतिम संस्कार, जनाजे और दफनाने की रस्में मुहर्रम के पहले 10 दिनों के बाद आयोजित की जाएंगी। शहीद आयतुल्ला अली खामिनई का अनुसरण करते हुए इमाम हुसैन की शहादत की याद में और ईरान और दुनिया भर में इन दिनों शोक समारोह आयोजित करने के महत्व को देखते हुए अली खामिनई की अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार और दफन समारोह मुहर्रम के पहले 10 दिनों के बाद आयोजित किए जाएंगे। शोक और अंतिम संस्कार समारोहों में भाग लेने वाले लाखों लोगों को सुविधा देने के लिए संबंधित अधिकारियों और सार्वजनिक समूहों के बीच अंतिम समन्वय के बाद ये समारोह आयोजित किए जाएंगे। इन समारोहों के बारे में विस्तृत जानकारी उचित समय पर बाद में घोषित की जाएगी। बड़ी बात यह है कि अली खामिनई के शव को कहां रखा गया है, इसे लेकर अब तक ईरान सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक खामिनई के शव को किसी गुप्त लोकेशन पर रखा गया है। मार्च में अंतिम दर्शन के लिए तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स में रखने की तैयारी थी। अचानक अंतिम दर्शन के कार्यक्रम को सुरक्षा कारणों से टाल दिया गया। 28 फरवरी के बाद कई ऐसे मौके आए जब खामिनई को दफनाए जाने की खबरें आईं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खामिनई को दफनाने के फैसले में हो रही देरी की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और इसराइल के हमले का डर। IRGC को लगता है कि सार्वजनिक अंतिम संस्कार के आयोजन में कई तरह के सुरक्षा जोखिम शामिल हैं, खास तौर से अंतिम संस्कार के दौरान सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसा क्यों, इसे समझिए। खामिनई के अंतिम संस्कार में सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई शामिल होंगे। अंतिम संस्कार में ईरान की टॉप लीडरशिप मौजूद रहेगी। अंतिम संस्कार में IRGC और सेना के टॉप कमांडर मौजूद रहेंगे। ईरान को डर है कि सेना की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया जा सकता है। हमले को लेकर अमेरिका और इजराइल के लिए ये सबसे मुफीद वक्त होगा। ईरान के डर की वजह भी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति कई बार ईरान पर हमले की धमकी दे चुके हैं।
1: They're saying that he lost his leg, one leg, and he's, been hurt very badly. Other people are saying he's dead. Nobody's saying he's 100% healthy.
0: इससे पहले 21 जून को खामिनई को दफनाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक खामिनई की अंतिम इच्छा के मुताबिक उन्हें मशहद शहर में इमाम रजा की दरगाह के परिसर के पास दफनाया जाएगा। अंतिम संस्कार का पूरा आयोजन IRGC के सुरक्षा इंतजाम के बीच किया जाएगा। खामिनई के अंतिम दर्शनों के लिए करीब 2 करोड़ लोग जुट सकते हैं, लिहाजा अंतिम संस्कार पूरे 3 दिन तक चलेगा। जानकारी के मुताबिक अंतिम दर्शनों के लिए खामिनई के शव को तेहरान में रखा जाएगा, जो कम से कम 24 घंटे तक चलने की उम्मीद है। इसके बाद पार्थिव शरीर को धार्मिक शहर कुम ले जाया जाएगा और फिर मशहद पहुँचाया जाएगा, जहाँ इमाम रजा की दरगाह परिसर में उन्हें दफनाने की तैयारी है। कई बड़े शहरों में शोक जुलूस निकाले जाएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होते ही अंतिम संस्कार की व्यवस्था की देखरेख करने वाली समिति ने साफ कर दिया है कि 21 जून को अंतिम संस्कार नहीं होगा। अब ये कब होगा, इसका आधिकारिक ऐलान ईरान करेगा। आज तक ब्यूरो।
2: अशरफ वानी हमारे संवाददाता जो हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास लिए चलते हैं। अशरफ, क्या ये देरी और ये डिले युद्ध के कारण हो रहा है?
3: बिल्कुल नहीं सईद, दरअसल जो बयान दिया है ईरानी सरकार ने सुपुर्दी खाक करने को लेकर उनके सुप्रीम लीडर सईद अली खुमानी को लेकर, उसकी वजह ये हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मुहर्रम के पहले 10 दिन होते हैं, जिसको आशुरा भी कहा जाता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं शिया मुसलमानों के लिए। उन दिनों में शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन की याद में जो है मातम के जुलूस जगह जगह पर निकालते हैं, दुनिया भर में ये जुलूस निकलते हैं। तो उस जो धार्मिक जो एक परंपरा है शिया मुसलमानों की, उसमें खलल न डालने की वजह से ये जो है ये सुपुर्द खाक की रस्म जो है इसको जो है टाला गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें थोड़ा इतिहास भी परखना होगा। जब पहले इस्लामिक रिपब्लिक के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी को सुपुर्द खाक किया गया था, जब उनकी मौत हुई थी, उस में लाखों और करोड़ों लोग जुट गए थे और तब बहुत भीड़ जो है वहां पर भावुक हुई थी और सैकड़ों लोग, करीब 600 लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे। उस चीज को देखते हुए ईरानी प्रशासन और सरकार ये मानती है कि यहाँ पर भी जनसैलाब उमड़ सकता है, क्योंकि धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं सुप्रीम लीडर के साथ, वो इमाम है एक पूरे देश के। तो इसलिए जो है मुहर्रम के 10 दिनों के दौरान फिलहाल इस रस्म को जो है सुपुर्द खाक करने की रस्म को टाला गया है।
2: अशरफ, एक छोटा सा सवाल और आपसे, युद्ध तो फिर से भड़क गया, क्या ये भीषण होगा या पीस डील की कोई उम्मीद अभी बाकी?
3: दरअसल सही, जिस अंदाज से आज हमने देखा कि जो वार और पलटवार हुआ और उसमें जिस अंदाज से दायरा बढ़ाया है ईरान ने, तो कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ये समझ गए हैं कि बातचीत और प्रेशर की टैक्टिक्स जो है ईरान के साथ काम नहीं कर रही है। और उन्होंने जो ताजा बयान दिया है उसके अनुसार लगता है कि हो सकता है, यहां तक कि उन्होंने कहा कि आज रात के भीतर जो है ईरान पर फिर हमले होंगे, तो हो सकता है कि एक और स्ट्राइक जो है बड़ी स्ट्राइक अमेरिका की तरफ से ईरान पर हो सकती है, ताकि वो जो प्रस्तावित डील है उस पर आमादा हो जाए।
2: बहुत धन्यवाद अशरफ। अशरफ वानी हमारे संवाददाता। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि फिर से छिड़े इस युद्ध में आगे क्या होने वाला है। क्या अमेरिका और ईरान की तरफ से हमले यहीं पर रुक जाएंगे या फिर युद्ध और भीषण होने जा रहा है? तो आइए हम आपको दिखाएं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के दिमाग में आखिर इस समय चल क्या रहा है।
0: अब पीस डील नहीं, जंग अंजाम तक पहुंचेगी। अब परमाणु हथियारों पर आग पात की लड़ाई होगी। अब ईरान के यूरेनियम पर टक्कर जोरदार होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया। मुश्तबा खामनेई भी महायुद्ध के लिए तैयार हैं। दक्षिणी ईरान में अमेरिकी हमलों के बाद 20,000 लोगों की पीने के पानी की सप्लाई ठप हो गई है। बामानी जिले में पानी के 2 रिजर्वॉयर मिसाइल हमले में पूरी तरह तबाह हो गए हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान के पावर प्लांट और पुलों पर नए हमलों का ऑर्डर देने जा रहे हैं। ट्रंप ने कह दिया है कि अगर ईरान ने परमाणु प्रोग्राम पर जल्दी सरेंडर नहीं किया तो बड़ी तबाही होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान परमाणु समझौते पर जल्द फैसला नहीं करता है तो अमेरिका उसके बिजली संयंत्रों और पुलों पर नए हमले कर सकता है। मैं आगे भी कार्रवाई जारी रख सकता हूँ। उनके पास समझौते पर दस्तखत कर बचने का मौका था। इस बयान से ठीक पहले ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर ईरान को चेतावनी दी थी कि ईरान ने बहुत देर कर दी, अब उसको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जबकि अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने खास तौर से कुवैत को टारगेट किया है ताकि अपना सुरक्षा कवच तैयार कर सके, क्योंकि कुवैत में करीब 13,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और ये फारस की खाड़ी के बेहद रणनीतिक इलाके में स्थित है। ईरान को डर था कि अमेरिका उसके खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई में इन ठिकानों का इस्तेमाल कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान सिर्फ उन जगहों को नहीं देख रहा है जहां से उस पर हमला हुआ, बल्कि उन ठिकानों को भी निशाना बना रहा है जिनका भविष्य में उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि देश को ना युद्ध ना शांति की स्थिति से बाहर निकलना होगा। पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई भी चाहते थे कि बातचीत के जरिए इस समस्या का हल निकाला जाए और उन्होंने इसके लिए मंजूरी दी थी। युद्ध ईरान के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कोई देश उस पर हमला करता है तो ईरान जवाब देगा और किसी के सामने झुकेगा नहीं। मिडल ईस्ट मामलों के जानकारों का कहना है कि लगातार हमलों और जवाबी कार्रवाई के बावजूद अमेरिका और ईरान दोनों लंबे युद्ध से बचना चाहते हैं। उनके मुताबिक अमेरिका इन हमलों के जरिए अपनी ताकत दिखाना, अपने सैनिकों की सुरक्षा करना और समुद्री रास्तों पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। वहीं ईरान ये दिखाना चाहता है कि उस पर होने वाले हर हमले का जवाब दिया जाएगा। जानकारों के मुताबिक अगर लड़ाई लंबी चलती है तो इसका असर ईरान और अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र, तेल आपूर्ति और दुनिया के बाजारों पर पड़ेगा।

0: पाकिस्तान ना तो अपनी कायरता छिपा सकता है और ना ही आतंकी होने का दाग मिटा सकता है। सच यही है कि जनरल आसिम मुनीर के हाथ बेगुनाह बच्चों और महिलाओं के खून से रंगे हैं। आज तक ब्यूरो।
1: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffee house. And more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: Echo.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: रिकॉर्ड से आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई। सबसे लंबे समय तक भारत का निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का पंडित नेहरू का रिकॉर्ड मोदी ने आज तोड़ दिया। मोदी लगातार 4,399 दिनों से प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं। मोदी की इस उपलब्धि पर कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया। पीएमओ के अधिकारियों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है, जबकि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर बीजेपी मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने देश के अलग अलग मंदिरों में पूजा की। प्रधानमंत्री मोदी का ये रिकॉर्ड ऐसे समय में बना है जब विपक्ष बीजेपी के मुकाबले चुनावी प्रदर्शनों में तो फिसड्डी है, लेकिन पश्चिम एशिया संकट से बने आर्थिक हालात और टीएमसी में मची उठापटक जैसे मसलों पर सरकार को घेर रहा है। नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के दावे पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्योंकि नेहरू पहले आम चुनाव के बाद पीएम बनने के पहले भी भारत के प्रधानमंत्री थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पोस्ट में लिखा, भारत 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में नहीं आया था। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारी राष्ट्रीय यात्रा 15 अगस्त 1947 को शुरू हुई थी। जयराम रमेश का बयान है, जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक ऐसी असाधारण कैबिनेट का नेतृत्व किया जैसी मिसालें दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती हैं। अगले 5 वर्षों में आधुनिक भारत आकार लेने लगा। इस बीच मंगलवार को मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा उम्मीदवारी का पर्चा खारिज होने को लेकर भी कांग्रेस लोकतंत्र का सवाल उठा रही है। ऐसे हमलों के बावजूद विपक्ष के कैंप में भगदड़ है। टीएमसी की एक और राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया है। वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से मिलने भी गईं। सुष्मिता देव जैसे टीएमसी के बागियों के दांव से विपक्ष बेहद कमजोर नजर आ रहा है। उधर बीजेपी एनडीए नेताओं की बैठक से गठबंधन की मजबूती का संदेश दे रही है। आज तक ब्यूरो।
6: एक तरफ योगी राज में यूपी की तरक्की की गाथाएं और दूसरी तरफ अखिलेश के सियासी दाव। योगीराज में मंत्री नंद गोपाल नंदी से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का एक विभाग सुचारू प्रशासनिक व्यवस्था बनाए जाने के लिहाज से वापस किया लिया गया। अखिलेश यादव ने पूरा ख्याली महल तैयार कर लिया। यूपी में मौजूद एक्सप्रेसवे को समाजवादी बनाम योगीराज की एक्सप्रेसवे में बांटने वाले अखिलेश का आरोप है कि नंदी से यूपीडा का विभाग इसलिए छीना गया क्योंकि एक्सप्रेसवे का काम ठीक नहीं हुआ। दरअसल अखिलेश का आरोप है कि चुनाव से पहले एंटी इनकम

पेंसी के इलाज करने के चक्कर में बीजेपी के मौजूदा 225 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। दरअसल अखिलेश यादव अपने अनुमानों से बीजेपी के 225 विधायकों के टिकट काटे जाने का शिगुफा बीजेपी में बगावत सुलगाने की उम्मीद में छोड़ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की नजर ऐसे नाराज नेताओं पर भी है जिसमें बीजेपी से लेकर आरएलडी तक के विधायक हो सकते हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के टिकट तय करने के लिए अखिलेश की रोजाना स्तर पर बैठकें हो रही हैं। 10 जून को बुलंदशहर और हापुड़ जिले की विधानसभाओं के लिए बैठक है। उससे पहले पश्चिमी यूपी के नेताओं से अखिलेश की मुलाकात हो चुकी है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

आसमान का सिकंदर कहा जाने वाला अमेरिकी सेना का अपाचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर 8 जून की रात क्रैश हो गया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान के घातक शाहिद ड्रोन ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर को सीधी टक्कर मारी। हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट समुन्द्र में कूदे। पहली बार दोनों पायलटों को बचाने के लिए अमेरिका ने मानव रहित समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया। दोनों पायलट अपनी गर्दन के साथ मौजूद उपकरण की मदद से पानी में फ्लोट कर रहे थे। समुद्री ड्रोन के आते ही वो उस पर सवार हो गए और फिर उन्हें एक हेलीकॉप्टर से बेस तक सुरक्षित ले जाया गया। अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर हमला उस वक्त हुआ जब देर रात वो समंदर में ईरान के उन बोट्स को अमेरिकी मालवाहक जहाजों और युद्धपोतों के पास आने से रोकने के मिशन पर थे। ठीक उसी वक्त उस पर हमला हुआ। पायलट डूबते हेलीकॉप्टर से बाहर निकले और फिर सवेरा होने से पहले ही अमेरिका ने एक और हैरत अंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। हालांकि अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर हुए हमले ने मिडिल ईस्ट में नाजुक सीज फायर को तार तार कर दिया। हैरानी की बात यह है कि शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस भीषण घटना को पूरी तरह दबाने की कोशिश की। ट्रंप ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं थी, पायलट पूरी तरह ठीक है। ट्रंप इस हमले को कम करके आंक रहे थे और ईरान के खिलाफ तुरंत किसी भी एक्शन के मूड में नहीं थे। लेकिन व्हाइट हाउस के बंद कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने ट्रंप का पारा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। सुबह की एक हाई लेवल ब्रीफिंग में रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ और जनरल केन ने ट्रंप के सामने सेना की खुफिया रिपोर्ट रख दी। दोनों ने साफ कहा कि अमेरिकी सैनिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तुरंत सैन्य कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता है। बस फिर क्या था, ट्रंप ने अपना मन बदल लिया। ट्रंप ने हुंकार भरते हुए कहा, अब अमेरिका इस हमले का जबरदस्त जवाब देगा। सेंट्रल कमांड और पेंटागन ने कहा कि अमेरिका का हमला प्रोपोर्शनल यानी अनुपातिक है। लेकिन ट्रंप ने एक कदम आगे बढ़ते हुए एक वीडियो क्लिप पोस्ट की। वीडियो में दिखाया गया कि अगर अमेरिका पर हमला करोगे, अमेरिका को मारोगे, तो जवाब अनुपातिक नहीं तबाही लाने वाला होगा। इसी जज्बे से ट्रंप ने तबाही मचाने वाले हमलों का हुक्म दिया, जिसके बाद अमेरिकी मिसाइलें ईरान के सीने पर काल बनकर टूट पड़ी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक दक्षिणी शहर सिरिक में अमेरिकी मिसाइलों ने वहां के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पानी की सप्लाई की रीढ़ को तोड़ कर रख दिया। अमेरिकी अधिकारी इसे ईरान के लिए सिर्फ एक वार्निंग यानी चेतावनी बता रहे हैं, लेकिन ईरान अब पूरी तरह बौखला गया। पहले तो ईरान इस बात से मुकरता रहा कि उसने अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिराया, लेकिन अमेरिकी हमले के बाद ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने सीधे युद्ध का ऐलान कर दिया। ईरान ने अपनी वीर सेना और IRGC के लड़ाकों को खुला छोड़ दिया, जिन्होंने इलाके में मौजूद कई अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइल दाग दिए। तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर खुला चैलेंज देते हुए लिख दिया है कि ईरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। साफ है कि ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो युद्ध दोबारा शुरू हो जाएगा, और अब वो घड़ी आ चुकी है। क्या ईरान के खिलाफ इस महासंग्राम का न्यूक्लियर अंजाम होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: आशिक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स हो गया आपके साथ। देखते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, 12 साल में कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ देश। इन्होंने धीमे विकास को कहा हिंदू ग्रोथ रेट, बोले 2047 तक विकसित भारत हमारा संकल्प। एनडीए की बैठक में चंद्रबाबू नायडू ने अभिनंदन प्रस्ताव में प्रधानमंत्री मोदी को बताया सदी का नेता, अमित शाह ने भी की तारीफ, शुभेंदु ने खिलाई झालमुड़ी। ममता को फिर लगा बड़ा झटका, बागी गुट के 19 लोकसभा के सांसदों ने जारी की लिस्ट, शत्रुघ्न सिन्हा और सायोनी घोष का भी नाम, ऋतुव्रत का दावा 64 एमएलए भी हमारे साथ। कांग्रेस को लगी दोहरी चोट, झारखंड में एनडीए समर्थित राज्यसभा प्रत्याशी परिमल नाथवानी का पर्चा वैध, एमपी में मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर आयोग जल्द करेगा फैसला। और ईरान पर फिर बारूद बरसाएंगे ट्रंप, कहा निशाने पर पावर प्लांट और पुल, पिजिश्कियान ने बताया हताशा।

नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बात 100 रुपए की थी, सिर्फ 100 रुपए की, लेकिन इसी 100 रुपए ने दुश्मनी की एक ऐसी कहानी लिख दी जो लंबे 11 साल बाद 4 मौत पर जाकर खत्म हुई। ये कहानी यूपी के बड़ौत की है। कहानी 2 गैंगस्टर भाइयों की और 1 दुकानदार की। इस कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 2016 में और खत्म होती है 9 जून 2026 को। यूपी के बागपत जिले के सबसे बड़े शहर बड़ौत में मौजूद ये एक परचून की दुकान है। तारीख 9 जून और वक्त शाम के ठीक 5:50। एक शख्स दुकान के बाहर खड़ा है, शायद कुछ खरीदने आया है। तभी ठीक उसी वक्त गमछा डाले ये शख्स दुकान की तरफ बढ़ता है। इसके हाथ में पिस्टल है। दुकान के काउंटर के पास पहुंचते ही ये अचानक उस पिस्टल का रुख दुकान के अंदर की तरफ करता है और एक के बाद एक 2 गोली चलाता है। 2 राउंड फायर के बाद शायद पिस्टल जाम हो गया था। अब वो पिस्टल को ठीक करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो तीसरी गोली चलाता, अचानक दुकान के अंदर से एक शख्स उसके ऊपर झपट पड़ता है। लेकिन तभी गमछा डाले एक दूसरा शख्स जो पीछे खड़ा था अब आगे बढ़ता है। उसके हाथ में भी पिस्टल है। हमलावर और दुकान से निकले शख्स के बीच हाथापाई को देखते हुए शायद वो घबरा जाता है, लिहाजा अपने साथी को बचाने के लिए अब वो भी गोली चला देता है।

पहली गोली शायद दुकान के अंदर से बाहर आए शख्स को लगी, लेकिन दूसरी गोली खुद उसके अपने साथी को गलती से लग गई। इसके बाद दोनों मौके से भागने लगते हैं। सीसीटीवी का कैमरा यहीं पर खत्म हो जाता है।

0: सड़क पर एक शख्स लहूलुहान बैठा हुआ है, चारों तरफ भीड़ इकट्ठी है। तभी गोलियां चलने की आवाज आती है। कुल चार फायर की आवाज। ये गोली पहले से ही गोली खाए इसी घायल शख्स को मारी गई थी। सड़क पर भीड़ जमा है। पुलिस की एक मोटरसाइकिल खड़ी नजर आ रही है और इसी मोटरसाइकिल के करीब सड़क पर खून से लथपथ एक शख्स पड़ा है। भीड़ में मौजूद एक शख्स के हाथ में पिस्टल है। वो गुस्से में अब भी जमीन पर पड़े इस शख्स को गोली मारना चाहता है, पर बड़ी मुश्किल से पुलिस उससे पिस्टल छीनती है और उसे रोकती है। ये बड़ौत के आम लोग हैं। इनाम लोगों में ज्यादातर व्यापारी और दुकानदार हैं। ये तमाम लोग इस वक्त यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि इनके बाजार में एक साथ दो दो कत्ल हुआ है, इसीलिए ये गुस्से में भी है। अब जो कैमरे में नहीं दिखा वो आपको बताता हूँ। हाथ में पिस्टल लिए जिस वक्त ये हमलावर इस दुकान पर पहुंचा और दुकान के अंदर दो गोली चलाई, तब उस वक्त इस दुकान में दुकान के मालिक 50 साल के सोहन लाल अग्रवाल और उनका 30 साल का बेटा विकास मौजूद थे। हमलावर ने पहली बार में जो दो गोली चलाई वो दोनों गोली बेहद करीब से सोहन लाल को मारी गई थी। विशाल को तब तक गोली नहीं लगी थी, लेकिन अपने पिता को बचाने के लिए जब हमलावर का पिस्टल जाम हो गया तब वो तेजी से दुकान के बाहर आया और हमलावर पर झपट पड़ा। शायद विशाल को तब तक पता नहीं था कि हमलावर का एक साथी भी वही मौजूद है। विशाल हमलावर से उलझा हुआ था और तब तक हमलावर के साथी ने विशाल को गोली मार दी। हालांकि इसी दौरान गलती से उसकी एक गोली खुद उसके हमलावर साथी को भी लग चुकी थी। घायल हमलावर अब अपने साथी के साथ दुकान के बाईं तरफ भागता है। हालांकि तब तक फायरिंग की आवाज आसपास के दुकानदारों के कानों तक पहुंच चुकी थी। दोनों हमलावर शूटआउट के बाद करीब 20 से 25 मीटर दूर पहुंचे ही थे कि तभी आसपास के दुकानदारों ने उन्हें घेर लिया। एक शूटर तो भाग निकला, लेकिन मेन शूटर लोगों के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। फिर भीड़ में से ही किसी ने उसे चार गोली मारी।
1: इस वक्त हम बड़ौत बाजार में ही मौजूद है और ये पीछे जो आप दुकान देख रहे हैं, जो ये दुकान बंद है, इस समय ताला यहाँ पे लगा हुआ है, यहीं पर सोहन लाल और उनके बेटे विकास बैठे हुए थे। शाम के 5:50 हो रहा था। ये आप देखिए सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए। इन सीसीटीवी कैमरों से साफ पता चलता है कि तीन लोग यहाँ पर आते हैं। उन तीनों लोगों ने अपने चेहरे को ढका हुआ था और एकदम जब वो दुकान के पास ठीक यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो अंदर जो पिता पुत्र थे उनके उनके ऊपर बेहद करीब थे ताबड़तोड़ वो गोली चलाना शुरू करते हैं। बेहद करीब से वो गोली मारना शुरू करते हैं, कई गोलियां उनको लगती हैं और उसके बाद जो दो आरोपी थे वो इधर पैदल ही भागते हैं। हम आपको दिखाए तो ये तकरीबन यहाँ से 25 मीटर दूर जब वो पहुँचते हैं आगे की तरफ इधर से भागते हुए, क्योंकि जब गोली की आवाज़ सुनी तो जो आसपास की पूरी दुकानें हैं वो सोहन लाल उनके परिवार की है, तो वो तमाम लोग दौड़ते हुए आगे आए। तब तक जो आरोपी थे वो इस रास्ते पर जो ये हाईवे है इधर से भागते हुए आगे की तरफ आते हैं और ये आप देखिए यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है। इस पेट्रोल पंप तक जब वो मार के यहीं तक पहुँच पाते हैं तब तक जो पूरी बाजार है वो बाजार यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, भीड़ आ जाती है और आरोपी भाग नहीं पाते हैं और ठीक यहीं पर आरोपियों को घेर लिया जाता है, मारपीट होती है और आरोप है कि जो वरुण था जो मुख्य आरोपी था उसको गोली लगी है और यहीं पर वो गिर जाता है। बाकी जो दो आरोपी थे वो मौके से फरार हो जाते हैं। उन दोनों की तलाश की जा रही है और उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि वो कौन थे। तमाम जो पूरे बाजार का सीसीटीवी फुटेज है वो इकट्ठा किया गया ये जानने के लिए कि यहाँ तक तीनों आरोपी कैसे पहुंचे, ये जानने के लिए कि क्या सोहनलाल और उनके बेटे विकास पर हमला करने से पहले उन्होंने इस पूरे इलाके की रेकी की थी। सारी बातें समझने के लिए पुलिस ने एक टीम बनाई है जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट कर रही है।
0: इस शूटआउट में कुल 3 लोगों की जान गई, सोहनलाल और उनके बेटे विशाल की, जबकि इन दोनों को गोली मारने वाले शूटर और गैंगस्टर वरुण लोहारी की। दरअसल वरुण लोहारी मंगलवार 9 जून को पेशी के सिलसिले में कोर्ट आया था।
2: 9 जून 2026 को अभियुक्त वरुण पक्ष अपने तारीख पे की सुनवाई के लिए न्यायालय आया हुआ था और उसी के क्रम में यह घटना कारित की गई है। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। हमारी टीमें शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेंगी।
0: कोर्ट में पेश होने के बाद वो सीधे सोहनलाल की दुकान पर आया। वरुण लोहारी पर हत्या समेत लगभग 36 मुकदमे दर्ज हैं। वरुण 11 साल पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए सोहनलाल की दुकान पर पहुंचा था।
1: इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए दीपक अग्रवाल, जो कि सोहनलाल के छोटे भाई हैं, मौजूद हैं। दीपक जी, उस वक्त आप कहाँ थे, क्या कुछ हुआ था, पूरी बात?
3: उस टाइम मैं दुकान में बैठा था अपनी, थोड़ी 50 कदम दूरी पर दुकान है हमारी आगे भी, और वहाँ पर देखा कि एकदम वरुण आया भाग के और दरअसल गोली मारनी शुरू कर दी
1: दुकान पे
3: मेरे भाई के और भतीजे के।
1: जी जी,
3: जब तक मैं आता दोनों गोली मार के फरार हो चुका था ये।
1: जी, तो वरुण को कहाँ पकड़ा गया, किन लोगों ने पकड़ा?
3: वरुण को पब्लिक ने पकड़ा है, पेट्रोल पंप
1: पास में। कितनी दूरी पर यहाँ से पकड़ा?
3: लगभग 20-25 मीटर पे।
1: तो वरुण की पिटाई कर दी लोगों ने?
3: पब्लिक ने की है।
1: हाँ जी जी जी, पब्लिक ने वरुण की पिटाई कर दी।
3: जी,
1: ये पूरा मामला क्या है, क्या वरुण पहले से घात लगाए हुआ था? आप लोग क्या जब वरुण जेल से छूटा तो पुलिस के पास गए थे?
3: देखो 2015 की घटना है ये, फरौती का मामला था, फरौती मांगने आया था दुकान पे। जब इसका भाई एक वो वांटेड था, वो भी कपिल
1: जी,
3: वो उसमें मारा गया था, उसके बदला लेने के लिए इसने वारदात को अंजाम दिया है।
1: उसी का बदला लेने के लिए। तब वो कपिल और वरुण दोनों हफ्ता मांगने आते थे या पूरा क्या माजरा?
3: ये पूरा गैंग है जी, 8-10 लड़कों का।
1: जी जी,
3: ये सबसे फरौती मांगते थे आप,
1: ये पूरे बाजार से। तो उस दिन लड़ाई हो गई?
3: हाँ जी, उस दिन लड़ाई हो गई थी, उसमें बदला लेने के लिए
1: कपिल मारा गया था उस समय 2000।
3: हाँ, उसमें उसकी गोली लगी थी, उसकी गोली से मारा गया था।
1: जी जी जी, उसे किसकी गोली लगी थी?
3: आमने सामने गोली चली हो तो किसकी लगी, किसकी?
1: जी जी जी जी। तो अभी जब ये जेल से छूटा वरुण, तो आप लोगों को खबर लगी थी?
3: जिसकी खबर लगी थी हमने पुलिस की पुरानी बात है।
1: पुलिस ने कुछ किया था? कुछ भी नहीं,
3: कुछ नहीं,
1: किसी तरीके की कोई
3: कार्रवाई नहीं।
1: आई थी पुलिस आपके घर उसके पहले?
3: नहीं नहीं, हमारे पास।
1: तो क्या बोला था पुलिस?
3: हाँ, कहला ठीक है जी, आप जाइए, हम रुक सकते हैं आपको।
1: और कितने दिन पुरानी बात है ये?
3: 4-5 दिन पुरानी बात है।
1: पुलिस ने कुछ किया था? कुछ भी नहीं,
3: कुछ नहीं,
1: किसी तरीके की कोई
3: कार्रवाई नहीं।
1: आई थी पुलिस आपके घर उसके पहले?
3: नहीं नहीं, हमारे पास नहीं
1: कोई जान, कभी पुलिस पलट के आई नहीं। आप लोग गए, आप लोगों ने जानकारी दी, उसके बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं।
0: इस दुश्मनी की शुरुआत होती है 2016 में, तब सोहनलाल की इसी दुकान के बराबर में एक शराब की दुकान हुआ करती थी। सोहनलाल ने शराब की उसी दुकान के बराबर में नमकीन की दुकान खोली थी। इस मार्केट में सोहनलाल की कई दुकानें हैं, उनका अपना टेंट का भी कारोबार है। 2016 जुलाई के महीने में गैंगस्टर वरुण का भाई कपिल शराब खरीदने के बाद सोहनलाल की नमकीन की दुकान से कुछ नमकीन खरीदता है, करीब 100 रुपए के। लेकिन जब सोहनलाल उससे पैसे मांगते हैं तो कपिल 100 रुपए देने की बजाय उन्हें धमकाता है। इस पर दोनों में बहस होती है, लोग बीच बचाव करते हैं और फिर मामला खत्म हो जाता है।
4: इसी दुकान से पूरा विवाद शुरू हुआ। 2015 की अगर बात की जाए तो एक कोल्ड ड्रिंक और नमकीन को लेकर विवाद हुआ था, जब वरुण ने यहाँ पर आकर कोल्ड ड्रिंक और नमकीन मांगी थी, लेकिन जो सोहनलाल थे उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि इसमें कपिल की मौत हो गई, जो वरुण लोहारी का भाई था। वरुण पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और लगातार वरुण और इस परिवार के बीच रंजिश चली आ रही थी। फिलहाल अगर बात करें तो मैं वहाँ उसी घर में मौजूद हूँ जो वरुण का, माफ कीजिए, जो सोहनलाल का जो घर है, जहाँ पर 2 लोगों की मौत हुई है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग बैठे हुए हैं, परिवार के लोग हैं, गमजदा है, क्योंकि परिवार ने 2 लोगों को खोया है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि परिवार ने कहा था कि हमें वरुण से खतरा है, वरुण कोर्ट से आया था, जेल से आया था, तारीख पर उसको जाना था, लेकिन उसने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया।
0: मगर फिर कुछ वक्त के बाद कपिल कुछ लड़कों के साथ फिर से सोहनलाल की दुकान पर पहुंचता है उस 100 रुपए का बदला लेने। इस बार कपिल सोहनलाल पर गोली चलाता है। जवाब में कपिल के गैंग पर भी गोली चलाई जाती है। इस गोलीबारी में कपिल को भी गोली लगती है और कपिल मौत हो जाती है।
5: आज ये ताजी 2015 में हमारे दुकान में ठेका ताजी वो रंगदारी और उसका वो काम था बदमस्ती का, उसमें तो हमारी दुकान थी बराबर में, वो हमारे से भी रंगदारी फिरौती मांग रहा, हमने देने से मना कर दी, उसकी हमारी मारपीट होगी, वो जेल चला गया। फिर वो 17 जुलाई 2015 में अलविदा जुमा था, उस टाइम अगर उन्होंने 10-12 जनों ने फिर हमला करा दुकान में, भाई पे भाई थे, ताऊजी थे, चाचा थे, पापा थे,
4: तो भी इसमें किसी की मौत हुई थी आपके?
5: हाँ जी, उसके भाई की, वरुण की।
4: आपके परिवार से भी?
5: हमारे भाई का गोली लग रही थी, इसकी अब मृत्यु हुई और ताऊजी की गोली लग रही थी उस टाइम भी।
1: बताया जा रहा है कि ये जो पूरा जो दुश्मनी है ये करीब 11 साल पुरानी है। 15 साल पहले वरुण के भाई कपिल की गोली मारकर हत्या की गई थी। दरअसल आरोप है कि वरुण कपिल पूरा गैंग चलाते थे और फिरौती वसूलते थे, जबरन वसूली करते थे बाजार के लोगों से, और जब वो सोहनलाल के पास उस वक्त 2015 में पहुंचे थे तो झड़प हो गई थी, मारपीट हुई थी और उस दिनों कपिल को गोली लगी थी इसी बाजार में और कपिल की मौत हुई थी। इसके बाद वरुण उसका भाई है, ये जबरन उगाही के लिए जेल चला गया और ये जेल से छूटा तो आरोप है कि इसने पूरी तैयारी से, पूरी प्लानिंग से अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए पिता पुत्र की हत्या की है। बहरहाल वरुण तो मारा गया लेकिन वरुण के जो दो साथी हैं उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
0: भाई की मौत के बाद वरुण लगातार बदला लेने की फिराक में था, पर चूंकि उस पर कई मुकदमे थे और पुलिस पीछे, लिहाजा उसे मौका नहीं मिल रहा था। फिर इसी बीच दूसरे केस में वो पकड़ा गया और जेल पहुंच गया। जेल से आने के बाद वरुण ने बड़ौद छोड़ दिया और देहरादून पहुंच गया, लेकिन बदले वाली बात वो भूला नहीं था। अब भाई कपिल का गैंग वरुण चलाने लगा, वो लगातार सोहनलाल पर नजर रखता था।
6: वो हिस्ट्री शीटर है और हिस्ट्री शीटर होने के कारण लगातार निगरानी में था। अभी कुछ दिन पहले उस पर गैंगस्टर भी लगा था, वो अभी जेल से बाहर निकला था कुछ दिन पहले।
2: थैंक यू। वर्ष 2015 में पंजीकृत बड़ौद थाने में अभियोग के चलते इन दोनों पक्षों में रंजिश थी। इस क्रम में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त वरुण पक्ष के मकान की कुर्की की भी कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद अभियुक्त पक्ष बागपत छोड़ के देहरादून रहने लगा था।
0: 9 जून को एक पुराने मुकदमे के सिलसिले में वरुण बड़ौद आया। वरुण के साथ उसके कुछ साथी भी थे, सभी मोटरसाइकिल पर सोहनलाल की दुकान तक पहुंचे। वरुण और उसका एक साथी दुकान के करीब गए जबकि बाकी के साथी थोड़ी दूरी पर मोटरसाइकिल पर उनका इंतजार करने लगे। अमूमन दुकान पर सोहनलाल अकेले होते हैं, पर बदनसीबी से 9 जून की शाम उनका बेटा विशाल किसी काम के सिलसिले में अपने पिता से दुकान पर मिलने आया था। असल में वरुण के निशाने पर सिर्फ सोहनलाल थे, लेकिन विशाल ने जो हिम्मत दिखाई उसी के चलते उसे भी गोली लग गई। रिश्तेदारों और पड़ोसियों का कहना है कि वरुण गैंग से सुरक्षा के लिए सोहनलाल ने कई बार पुलिस को अर्जी दी थी। कपिल की मौत के बाद उन्हें सुरक्षा मिली भी थी पर फिर सुरक्षा वापस ले ली गई।
5: हमने एप्लीकेशन दी थी कि हमें सुरक्षा दी जाए, बदमाश बाहर है, गैंगस्टर आदमी 36 मुकदमे उस पे है,
4: खुला घूम रहा,
5: पहले भी उसने गेट में गोली निकली हुई है जी, वो कोई लगी हुई यहाँ पे गोली सब।
0: स्थानीय
5: सुरक्षा दी जाए, ऐसे बदमाश बाहर है, गैंगस्टर आदमी 36 मुकदमे उस पे है,
4: खुला घूम रहा,
5: पहले भी उसने गेट में गोली निकली हुई है जी, वो कोई लगी हुई यहाँ पे गोली सब।
0: स्थानीय लोगों की ये भी शिकायत है कि सोहनलाल की दुकान से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है, लेकिन पुलिस मौके पर तब पहुंची जब सब कुछ लुट चुका था।
7: मेरे चाचा रिया दुकान पे थे, वे 8 से 10 जने आए, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बजाई, वहां से 50 मीटर की दूरी पर चौकी है, उसी गली में चौकी वाले रहते हैं, जिस गली के कोने पे इसकी दुकान है, वहां कोई नहीं आया, आने के बाद मारी चेकिंग कर रहे, क्या ले रहे तुम?
8: घटना क्या हुई?
7: घटना गोली मार गया, अब से 9 साल पहले भी गोली मार गया था इसके, वो वरुण है लुआरी वाला, उसके 8-10 जने हो रहेंगे वे।
0: दिन दहाड़े हुए इस दोहरे कत्ल और पुलिस के रवैये के चलते पूरे इलाके के दुकानदारों में जबरदस्त गुस्सा है। इसी गुस्से का इजहार करने के लिए वो सड़क पर उतर आए और नेशनल हाईवे को काफी देर तक जाम रखा। बुधवार को व्यापारियों ने बड़ौत में अपनी दुकानें भी बंद रखी।
4: फिलहाल मेरी मौजूदगी है बागपत के बड़ौत इलाके के सबसे व्यस्तम इलाके दिल्ली अड्डे पर। जो रास्ता आप देख सकते हैं ये दिल्ली अड्डा है और यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर डबल मर्डर की वारदात हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि व्यापारियों में आक्रोश है। आपको लोगों की चहलकदमी तो यहाँ नजर आ रही होगी क्योंकि रोजमर्रा के ये लोग हैं, लेकिन आप बाजारों का रुख अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको दिखाना चाहूंगा कि सभी जो दुकानें हैं वो यहाँ बंद कर दी गई हैं व्यापारियों ने, क्योंकि इस घटना के बाद आक्रोश है। और आक्रोश अब से 18 साल पहले बागपत के ही टटीरी में हुए व्यापारियों के हत्याकांड से को जो एक बार दोहराने का काम कर दिया है। इसको लेकर व्यापारी अपनी सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी चिंतित हैं, जिसको लेकर आज बाजार बंद बुलाया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार ये दुकानें हैं ये बंद है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि वो एक बार आपको दिखाएं कि पूरी की पूरी मार्केट जो है ये भी बंद कर दी गई है, क्योंकि नाराज़गी इस बात से है कि कानून व्यवस्था पर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह लगा है, जिसका अक्सर योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो मजबूत है और अपराधियों का जो इकबाल है वो खत्म है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ौत का बाजार आज बंद कर दिया गया है। वजह एक ही है कि व्यापारियों की दिन दहाड़े हत्या की गई है, और जिसने हत्या की है वो एक कुख्यात अपराधी वरुण लोहारी है, जिसने पहले भी वारदात को अंजाम दिया लेकिन पुलिस नहीं चेती, और जैसे ही उस पर गैंगस्टर लगा था, गैंगस्टर के बाद वो बाग बड़ौत पहुंचता है और एक बड़ी वारदात को अंजाम दे देता है।
0: मनुदेव उपाध्याय के साथ हिमांशु मिश्रा, बड़ौत बागपत आज। सोहनलाल और उनके बेटे विशाल की जिस तरह भरे बाजार गोली मारकर हत्या कर दी गई, उससे पूरे बड़ौत के कारोबारी नाराज हैं। उनका इल्जाम है कि अर्जी देने के बावजूद पुलिस ने सोहनलाल और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। अब कारोबारियों की मांग है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, पर इंसाफ के नाम पर वो वही मांग रहे हैं जो हाथों हाथ इंसाफ करने के लिए आजकल यूपी पुलिस कर रही है, यानी इनकाउंटर। सोहनलाल के बेटे विशाल की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। विशाल की पत्नी 2 महीने की गर्भवती है। विशाल की एक बहन है जो मूक बधिर है। कायदे से परिवार में सिर्फ सास बहू ही बची।
7: दुकान के अंदर स्पॉट व्यापारी को गोली मार रहे, काउंटर पे बैठा था, दो लगा, दोनों मर गए। इसकी बहन गुंगी बेरी, इसकी बहन एक वह गुंगी बेरी है, इसकी घरवाली प्रेगनेंट, ये भी 6 महीने पहले ब्याह हुआ था। क्या जवाब दोगे मुझे? विकास अग्रवाल, इसके पापा का नाम सोहनलाल अग्रवाल। कोई कुछ नहीं,
9: कुछ नहीं है, कुछ नहीं।
7: नुकाय पुलिस प्रशासन, एप्लीकेशन लियो, एप्लीकेशन लियो, एप्लीकेशन लियो।
9: बाद में इनका तबादला हो जाए, फिर
7: एनकाउंटर चाहिए हमें, हमें योगी सरकार से एनकाउंटर चाहिए अभी।
0: पुलिस ने इस डबल मर्डर केस में बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 टीमें बनाई है। जगह जगह दबिश भी दी जा रही है, लेकिन लोगों की मांग है कि उन्हें गिरफ्तारी नहीं इंसाफ चाहिए। इंसाफ उसे इनकाउंटर की शक्ल में जो इस वक्त यूपी में आम हो चुका है। सोहनलाल और उनके बेटे विशाल अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर जिस वक्त इन दोनों को गोली मारी गई तब ये दुकान खुली हुई थी। इत्तेफाक से तब भी इस दुकान के बाहर इसी तरह नमकीन के पैकेट्स टंगे हुए थे। ठीक 11 साल पहले तब भी ऐसी ही दुकान थी और ऐसे ही नमकीन टंगे हुए थे। बात सिर्फ 100 रुपए की थी। वरुण के गैंगस्टर भाई कपिल से सोहनलाल ने नमकीन के बदले बस 100 रुपए मांगने की गलती की थी। ये 100 रुपए इतने महंगे पड़ गए कि इसकी वजह से कुल 4 जान चली गई, वरुण और कपिल यानी 2 कातिलों की, और सोहनलाल और विशाल यानी 2 बेगुनाहों की। सोच कर ही अजीब लगता है कि सिर्फ 100 रुपए ने 11 साल की दुश्मनी के बाद 4 जान दे दी। मनुदेव उपाध्याय के साथ हिमांशु मिश्रा, बड़ौत बागपत आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, 12 साल में कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ देश। इन्होंने धीमे विकास को कहा हिंदू ग्रोथ रेट, बोले 2047 तक विकसित भारत हमारा संकल्प। एनडीए की बैठक में चंद्रबाबू नायडू ने अभिनंदन प्रस्ताव में प्रधानमंत्री मोदी को बताया सदी का नेता, अमित शाह ने भी की तारीफ, शुभेंदु ने खिलाई झालमुड़ी। ममता को फिर लगा बड़ा झटका, बागी गुट के 19 लोकसभा के सांसदों ने जारी की लिस्ट, शत्रुघ्न सिन्हा और सायोनी घोष का भी नाम, ऋतुव्रत का दावा 64 एमएलए भी हमारे साथ। कांग्रेस को लगी दोहरी चोट, झारखंड में एनडीए समर्थित राज्यसभा प्रत्याशी परिमल नाथवानी का पर्चा वैध, एमपी में मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर आयोग जल्द करेगा फैसला। और ईरान पर फिर बारूद बरसाएंगे ट्रंप, कहा निशाने पर पावर प्लांट और पुल, पिजिश्कियान ने बताया हताशा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
0: नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा, मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्वाचित पीएम के तौर पर पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा, तो आज दिल्ली में भारत मंडपम में एनडीए के सभी घटक दलों ने नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान किया और बड़ा बयान देते हुए देश हित में बड़े फैसले तेजी से लिए जाने की भी बात कही। साथ ही ये भी कहा कि 2014 के बाद भारत के लोगों ने देखा है कि सही नीयत से सरकार चलती है तो देश का विकास होता है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 12 साल में देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। और अब आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो संबोधन भी सुनवा दें, लेकिन सबसे पहले बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आप देख लीजिए, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है, संदेश भेजा है और अपना मित्र उन्हें बताया है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को महान बताया, साथ ही कहा कि वो मजबूत और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अलग अलग देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों के मैसेजेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आ जाए हैं, उन्हें बधाई दी गई है। और आपको ये भी बता दें कि ट्रंप की तरफ से भी अपना संदेश भेजा गया है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जिसमें उन्हें बताया गया है महान और मजबूत बुद्धिमान व्यक्ति। तो आपने देखा कि कैसे ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, और अब आपको सुनवा देते हैं एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या बड़ी बातें कही।
2: साथियों, महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही। और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा, तेज गति से आगे बढ़ेगा। हमारे लिए दल से हमेशा अगर बड़ा कुछ है तो हमारा देश है, दल से बड़ा देश है। और जब नेशन फर्स्ट, देश प्रथम की भावना से काम होता है तो कोई भी निर्णय कठिन नहीं होता। इसलिए ऐसे फैसले जिन्हें पहले असंभव समझा जाता था, जो देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अनिवार्य थे, हमने बहुत ही सधे हुए तरीके से उन फैसलों को भी लिया। पहले सरकारें आर्टिकल 370 की बात करने से डरती थी, हमने उसे खत्म करके पूरे देश में एक संविधान लागू किया। पहले नॉर्थ ईस्ट से बम बंदूक और ब्लॉकेट जाने का नाम नहीं लेते थे। हमने नॉर्थ ईस्ट में शांति भी लौटाई और स्थिरता भी लेकर आई। पहले भारत आतंक के हमलों के बाद चुपचाप दर्द सहता रहता था। हमने आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा। साथियों, पहले मान लिया गया था कि नक्सलवाद, माओवाद अब कभी नहीं खत्म होने वाले हैं, कभी खत्म हो ही नहीं सकते। हमने देश को नक्सलवाद, माओवाद के उस जहर से मुक्त करके दिखाया है। साल 2014 में जब एनडीए की जीत हुई थी, तब मैंने कहा था कि आज देश के सामान्य मानवी में एक नई आशा का उदय हुआ है। इस आशा का, इस उम्मीद का संरक्षण हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व था। देश के लोगों ने कांग्रेस के विश्वासघात के बाद अपना भरोसा हमें सौंपा था। मुझे आज संतोष है, गर्व है कि एनडीए परिवार के तौर पर हमने देश के विश्वास को हमेशा और मजबूत किया है।
0: तो प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में भारत मंडपम में हुए एनडीए कॉन्क्लेव में सहयोगी दलों के सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री को लेकर अभिनंदन प्रस्ताव में कैबिनेट मिनिस्टर और एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम को लेकर अपने मन की भी बात की।
3: इस महान नेतृत्व की तपस्या के सफल होने का, तप पूर्ति का आज यह गौरवशाली दिन है, इसलिए हम सब लोग खुश हैं। एनडीए के सभी घटक पिछले 12 वर्ष केवल सत्ता के नहीं थे, बल्कि राष्ट्र सेवा की अखंड और अनवरत तपस्या के थे। 12 वर्षों का चमकदार, बेदाग और निष्कलंक कार्यकाल इतिहास में दुर्लभ ही देखने को मिलता है। एक भी दिन आराम नहीं, एक भी पल खुद के लिए नहीं, हर क्षण हर पल सिर्फ राष्ट्र के लिए समर्पित हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आप एनडीए के गठबंधन दलों के नेताओं के साथ सिर्फ औपचारिक और राजनीतिक संबंध नहीं रखते, आपका हमारे साथ एक आत्मीय और पारिवारिक रिश्ता भी है।
4: लंबा कार्यकाल जो है, लंबा कार्यकाल, उससे कोई देश को फायदा हुआ है क्या? पंडित नेहरू से ज्यादा मैंने एक दिन प्रधानमंत्री कुर्सी गर्म की, उससे क्या होता है? पंडित नेहरू ने देश के लिए जो कार्य किया है, कोई तो देश आज है ना, आपने क्या किया? 12 साल में नेहरू जी ने जो जो किया है वो आज देश देख रहा है। आप 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले सके। नेहरू ने इस देश के लिए जो कुर्बानियां दी है, जो त्याग किया है, अपनी संपत्ति भी दान की, सब कुछ किया नेहरू जी ने। तो आप सिर्फ 12 साल से ज्यादा, नेहरू 12 साल से, मैं 13 साल रहूंगा, मैं 14 साल रहूंगा, उम्र तो सबकी बढ़ती है।
5: देखिए, 12 साल तो हो गए हैं, तो एक नया रिकॉर्ड तो मोदी जी ने प्रस्थापित किया है, वो अपनी जगह है। लेकिन आज देश की क्या हालत है उस पर भी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, विदेश नीति किस तरह से तहस नहस हो गई है, मोदी जी ने जो चुनाव के पहले वादे किए थे उसमें से कितने वादे पूरे हुए, क्या उसके बारे में मोदी जी ने कुछ अफसोस जाहिर किया है या कोई माफी का इजहार किया है?
6: ये संपूर्ण विश्व में भारत के योगदान का विषय है। बिना स्वास्थ्य खराब किए, बिना किसी विवाद के और आक्षेप लगे बिना, देश का सर्वोच्च पद और फिर उस पे किरदार कैसे निभाया जाए, इसका उदाहरण है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी।
7: किसी भी लोकतंत्र में इतने लंबे समय तक जनता का समर्थन और विश्वास बनाए रखना आसान नहीं है। इसके लिए निरंतर मेहनत, स्पष्ट दृष्टि, कठिन निर्णय लेने का साहस और देश के प्रति अटूट समर्पण का प्रमाण होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा इस बात का उदाहरण है कि एक साधारण परिवार से निकला व्यक्ति अपने कर्म, परिश्रम और संकल्प के बल पर देश के सर्वोत्तम पद तक पहुंच सकता है।
0: आज मुंबई में एनसीपी का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया। शरद पवार ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की तुलना नेहरू के कार्यकाल से सही नहीं है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश बेहद मुश्किल चुनौतियों से गुजर रहा था। शरद पवार ने इंदिरा गांधी को भी याद किया। आज से 3 साल पहले एनसीपी 2 हिस्सों में बंट गई थी।

0: कई दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत का केंद्र रहे शरद पवार की मौजूदगी में एनसीपी का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में एनसीपी के स्थापना दिवस पर पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने नेहरू गांधी परिवार की विरासत का खुलकर बचाव करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। शरद पवार ने पहले प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल की तुलना पीएम मोदी के कार्यकाल से करने को गलत बताया।
1: नेहरू जिसके देश प्रधानमंत्री उससे जिसके देश अस्थायी प्रधानमंत्री है आनंद है
0: स्थापना दिवस के मौके पर शरद पवार की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा।
2: आज एनसीपी पार्टी का 27वां फाउंडेशन डे समारोह पूरा हुआ। मुंबई में सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता समेत खुद पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार उन्होंने सभी को संबोधित भी किया। हमारे साथ सांसद नीलेश लंके जी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कई सारे मुद्दों पर आज संबोधन हुआ, लेकिन सबसे अहम बात जो आज शरद पवार इन्होंने कही वो ये थी कि पीएम मोदी उनका सबसे ज्यादा कार्यकाल वो मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसकी तुलना सीधे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके कार्यकाल से की जा रही है, तो उस पर आपत्ति जताइए। क्या कहना है आपका? आप भी दिल्ली में संसद में काम करते हैं।
3: पवार साहब ने अभी बोला है नेहरू का और किसी का भी तुलना नहीं हो सकती। जो देश के लिए नेहरू गांधी परिवार ने किया है, गांधी परिवार ने तो देश के लिए बलिदान दिया है और नेहरू परिवार ने भी देश के लिए बहुत दिया है। आज की स्थिति और वो टाइम की स्थिति में बहुत बदलाव था, इसलिए नेहरू का काम सबसे ऊंचा ही है।
0: शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, पार्टी का कर्तव्य जनता की सेवा करना है, खासकर ऐसे समय में जब देश बढ़ती महंगाई और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जूझ रहा है।
2: आज जो संबोधन किया उससे क्या कुछ चीजें आप लेकर जा रहे हैं, क्योंकि संघर्ष का काल है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आंदोलन करने पड़ेंगे, सड़क पर उतरना पड़ेगा।
3: किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए आंदोलन करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे नेता ने ये सिखाया हमें सबको, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए आपने काम ही करना पड़ेगा। आज जो गवर्नमेंट में, राज्य में और सेंट्रल में काम करता है वो किसानों के खिलाफ में, खिलाफ का गवर्नमेंट है, बेरोजगारों के खिलाफ का गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट में कुछ एजेंडा नहीं, उसमें एक ही एजेंडा है, डेवलपमेंट का कोई एजेंडा नहीं, किसानों के लिए कोई एजेंडा नहीं। उनके पास यही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम राजनीति करने का और दंगल करने का काम करते हैं।
0: स्थापना दिवस के मौके पर इंदिरा गांधी के देशभक्ति को बताने के लिए शरद पवार ने मॉस्को की उनकी यात्रा का एक किस्सा भी सुनाया। वहीं एनसीपी शरद गुट के सांसद नीलेश लंके ने उनकी पार्टी में कथित बगावत की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया।
2: बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के पार्टी के भी सांसद अब एकनाथ शिंदे के गुट के संपर्क में हैं। क्या आपकी पार्टी पर भी ऐसा कुछ प्रयास किया जा रहा है किसी से?
3: नहीं, हमारी पार्टी और हमारे सांसद लोग, हम दिल्ली में सुप्रिया ताई के नेतृत्व में काम करते हैं। हमारे पार्टी में कोई भी ऐसा नहीं, बातचीत भी नहीं आने होने भी वाली नहीं। हम सब पवार साहब के साथ है और पवार साहब के साथ ही रहने वाले।
0: स्थापना दिवस के मौके पर शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले के साथ शरद पवार के पौत्र रोहित पवार भी मौजूद रहे।
4: आदरणीय पवार साहब ने हम सबसे मार्गदर्शन किया, हमको बताया कि लोगों की लड़ाई आप सबको रास्ते पे जाके लड़नी पड़ेगी। किसानों का विषय हो, विद्यार्थी का विषय हो, महिला सुरक्षा का विषय हो, या कोई भी जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसके लिए आप सबको रास्ते पे उतरना पड़ेगा। आज तक जो भी लड़ाई हमारे नेताओं ने वहां पे की है, जैसे प्यास का आंदोलन हो, विद्यार्थी का आंदोलन हो, उसी के साथ शिक्षकों का आंदोलन हो, ये और ज्यादा ताकती से लड़ने की जरूरत है। इसलिए 12 तारीख को किसानों के हित पे हम सब पंडरपुर, जो अतिशय पवित्र ठिकान है, वहां पे हम किसानों के लिए, कर्ज माफी के लिए वहां पे एक बहुत बड़ा अन्न त्याग आंदोलन वहां पे कर रहे हैं, और उसमें हमारा पक्ष हो, मित्र पक्ष हो, क्योंकि वो अपॉलिटिकल विषय है, बहुत सारे लोग वहां पे आएंगे ऐसे आप सबको लगता है, और ये आंदोलन के माध्यम से किसानों को न्याय देने की हम सब कोशिश करेंगे।
0: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर 10 जून 1999 को एनसीपी का गठन किया था, लेकिन जुलाई 2023 में एनसीपी उस समय विभाजित हो गई थी जब उनके भतीजे अजीत पवार शिवसेना बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार में शामिल हो गए थे, जिसके बाद ज्यादातर विधायक सांसद और बड़े नेता अजीत पवार के साथ चले गए थे। आखिर में चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी माना और शरद पवार की अगुवाई वाले गुट को एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम दिया गया। अपने संबोधन में शरद पवार ने महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन की उन टिप्पणियों की भी आलोचना की जिसमें उन्होंने सिख विरोधी दंगों के लिए कांग्रेस नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया था।
2: आज इस फाउंडेशन दिन के मौके पर हमने देखा कि सभी सांसद, सभी विधायक और सभी पदाधिकारी इकट्ठा यहाँ पर आए थे और उन्होंने शरद पवार ने किए हुए संबोधन को सुना और आगे जाकर इसी तरह संघर्ष करने का प्रण भी किया। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक बालेकर, मुंबई आज तक।
5: आज मुंबई में एनसीपी

0: जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सुषमा नायर से, कब होगी बारिश? हर मुंबईकर यही जानना चाहता है।
1: नहीं ठीक है, द नॉर्मल डेट जो जब मानसून दस्तक देता है दैट इज जून 11th। ये टाइम थोड़ा सा डिले होगा क्योंकि केरला में ऑनसेट हुआ, उसके बाद कंडीशंस फेवरेबल थे और हरनाई तक मानसून पहुंचा है, लेकिन अब थोड़ा कंडीशंस आर बिकमिंग फेवरेबल और 3-4 दिन के बाद हम बता सकते हैं आपको कि मुंबई तक कब वो दस्तक देगा।
0: अभी भी कमिट नहीं कर पा रहा है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बताइए।
1: नहीं, हम फॉल्स कमिटमेंट क्यों करेंगे, हम ये कहना चाहते हैं कि अप टू दिस वीकेंड देर इज नो वे दैट वी आई मीन कंडीशंस शुड बिकम फेवरेबल। देर आर सर्टेन कंडीशंस विच विल, देखो कभी कभी एक हो जाता है कि थंडर स्टॉर्म आएगा एंड दैट इज नॉट मानसून रेन, तो मानसून रेन दैट्स ए प्री मानसून एक्टिविटी, सो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द मानसून टू सेट प्रॉपरली, द विंड्स टू अलाइन एंड अदर कंडीशंस टू बिकम फेवरेबल, सो एज द मानसून विंड्स कम।
2: और एक और बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, ठाणे में एक 75 साल के बुजुर्ग से बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ है। एक गैर मराठी कैब ड्राइवर ने एक बुजुर्ग को बुरी तरह से पीटा है जिससे उनका पैर भी टूट गया। वीडियो वायरल हुआ तो डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने आरोपी को तुरंत ही गिरफ्तार करने के निर्देश जारी कर दिए। अब आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, सवाल यह है कि इतनी नफरत लोग लाते कहां से हैं।
3: पचहत्तर साल के बुजुर्ग को पीटते इस हैवान को देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो ठाणे का है। देखिए ये गैर मराठी कैब ड्राइवर कैसे इस बुजुर्ग को भत्ती भत्ती गालियां देकर उन्हें पीट रहा है। निशांत नाम का ये कैब ड्राइवर बुजुर्ग को पत्थर से सिर फोड़ने की धमकी दे रहा है। बुजुर्ग गिर पड़े। देखिए ये गैर मराठी कैब ड्राइवर कैसे इस बुजुर्ग को भत्ती भत्ती गालियां देकर उन्हें पीट रहा है। निशांत नाम का ये कैब ड्राइवर बुजुर्ग को पत्थर से सिर फोड़ने की धमकी दे रहा है। बुजुर्ग गिर पड़े, फिर भी आरोपी उन्हें पूरी तरह पीट रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो 9 जून की रात का है जब कैब ड्राइवर निशांत फुटपाथ पर कुल्ला कर रहा था। बुजुर्ग ने कुल्ला करने से मना किया जिसके बाद आरोपी निशांत भड़क गया और उन्हें बुरी तरह पीटने लगा। ये बुजुर्ग दंपत्ति पारसी धर्म से है और ठाणे वेस्ट में जुपिटर हॉस्पिटल के पास एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, जबकि आरोपी कैब ड्राइवर निशांत ठाणे वेस्ट में ही विवियाना मॉल के पास रहता है। इस दरिंदे ने बुजुर्ग को इतनी बुरी तरह पीटा कि उनका पैर तक टूट गया, लेकिन फिर भी ये उन्हें पीटता रहा और गालियां देता रहा।
4: Hey, sir, how are you?

0: और इस पूरे मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस शख्स को सलाखों के पीछे भेज दिया है। इसी के साथ मुंबई मेट्रो में यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
3: Jack, you're killing me.
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: मुंबई में मीठी नदी की सफाई पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। बीएमसी ने जिस कंपनी को नदी की सफाई का ठेका दिया था उसने 10 जून की डेडलाइन बीतने के बावजूद गंदगी निकालने का काम पूरा नहीं किया। अब कांग्रेस ने बीएमसी और बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए निशाना साधा है।
2: इस वक्त हम मीठी नदी के पास हैं, कुरला वेस्ट का ये इलाका है और यहाँ पर आज क्योंकि डेडलाइन थी मीठी नदी को साफ करने की, डिसिल्ट करने की, बारिश से पहले कितना काम हुआ है देखने के लिए आए हुए हैं कांग्रेस के कॉर्पोरेट ग्रुप लीडर अशरफ आजमी भी हमारे साथ हैं। सर, मेरी जितनी समझ है ये ग्रीन पोर्शन हटाना पड़ता है, इससे पानी का फ्लो रुकता है, ये भी हटा हुआ काम नहीं दिख रहे, तो बेसिक है मेरे हिसाब से।
3: बिल्कुल बेसिक ये होता है कि जलपरी जो होती है, ये जो पानी के जो पौधे होते हैं, ये इनको जो है वो समेट कर बाहर किया जाता है क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं पानी को आगे जाने के लिए।
2: करेक्ट।
3: तो बेसिकली जो है फ्लोटिंग मटेरियल और ये जो जलपरी का जो काम है जहाँ मशीनें चलती हैं वहाँ वो जरूर उसको एक्वायर करते हैं। आज 10 जून है और आपको
2: 1,32,000 मेट्रिक टन काम जो है कचरा जो है निकालने का काम जो है वो दो एजेंसी को दिया गया है 10 जून की डेडलाइन।
3: नहीं देखिए ऐसा है, आप मतलब मुझे बोलना उससे ज्यादा बेहतर जो है आपकी आंखें इस बात को साबित करेंगी कि ये क्या हो रहा है, मतलब किस तरह से। देखिए यहाँ अगर मशीन थोड़ा चल के भी आती तो ये सारे जो जलपरी है जो पौधे हैं ये पानी के अंदर जो लगे हुए वो इधर उधर हो जाते, लेकिन वो नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि यहाँ अभी तक कोई मशीन ही नहीं आई है। तो 10 तारीख हो गई है, देखिए सामने एक फ्लोटिंग का बड़ा आपको दिख रहा है, देखिए वो सामने जो पौधों के आगे वो थोड़ा सा देखिए आपको दिख रहा है
2: फ्लोर रोक के रखी हुई ऐसी चीज दिख रही है,
3: चीज़
2: दिख क्या है पता नहीं, लेकिन बड़ा सा कचरा है या जो मटेरियल है।
3: ये कहा जा सकता है कि बारिश के दिनों में सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे है कि वो बचा ले हमको, महानगर पालिका ने तो ये बोल करके हम करेंगे अपना हाथ उठा लिया।
2: बिल्कुल, तो आप कह सकते हैं कि जायजा अगर आप लें मीठी नदी का, मीठी नदी काफी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाती है 2005 में जो फ्लड आया था उसके बाद से मुंबई में, और इसीलिए हर साल डिसिल्टिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, लेकिन काम कितना हुआ है कुरला में आकर हमने देखा तो स्थिति इतनी अच्छी नहीं है साइप्रस पार्टी के साथ मुस्तफाशेख आज तक।
1: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
1: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
0: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
2: Williams keeps it. First down. Touchdown!
0: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtakviewers.com। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। Advertise करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी 12 साल में कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ देश। इन्होंने धीमे विकास को कहा था हिंदू ग्रोथ रेट। बोले 2047 तक विकसित भारत हमारा संकल्प। एनडीए की बैठक में नेताओं ने की प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। अभिनंदन प्रस्ताव पर शुभेंदु ने खिलाई झालमुरी। ट्रंप ने भी बधाई संदेश में बताया अपना दोस्त। ममता को फिर लगा बड़ा झटका। बागी गुट के 19 लोकसभा सांसदों ने जारी की है लिस्ट। शत्रुघ्न सिन्हा और सायोनी घोष का भी नाम। भूपेंद्र यादव के घर कुछ नेताओं की बैठक। कांग्रेस को लगी दोहरी चोट। झारखंड में एनडीए समर्थित राज्यसभा प्रत्याशी परिमल नाथवानी का पर्चा मंजूर। एमपी में मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर आयोग जल्द करेगा फैसला। और ईरान पर फिर बारूद बरसाएंगे ट्रंप। का निशाने पर है पावर प्लांट और पुल। पिजिश्कियान ने बताया हताशा भरा कदम।

प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे लंबे प्रधानमंत्री के कार्यकाल का बनाया रिकॉर्ड, एनडीए कॉन्क्लेव में पास हुआ अभिनंदन और सम्मान प्रस्ताव। पीएम मोदी ने किया कांग्रेस पर हमला, बोले 2014 में देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कांग्रेस ने रोका देश का विकास, बोले अपनी विफलताओं को हिंदुओं के ग्रोथ से जोड़ा था। कहा कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट में अंतर है। एनडीए कॉन्क्लेव में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया अपनी सरकार का फोकस विकास की दौड़ में कोई ना पीछे छूटे। पीएम ने कहा विकसित भारत एनडीए का संकल्प है, आज बड़े लक्ष्य तय कर रहा है देश। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में हुई एनडीए की बैठक, एनडीए के नेताओं ने की पीएम की जमकर तारीफ। एनडीए के सीएम ने प्रधानमंत्री के सम्मान समारोह में शामिल होकर प्रधानमंत्री को तोहफे दिए। बंगाल में बीजेपी की जीत का जश्न नजर आया, शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी को खिलाई झालमुड़ी। ऐतिहासिक दिन के मौके पर बीजेपी के मंत्रियों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की, प्रधानमंत्री के लिए दुआएं मांगी। बद्रीनाथ से लेकर वाराणसी तक मंदिरों में नजर आए प्रधानमंत्री मोदी के लिए विशेष पूजाएं, कई जगहों पर जश्न मनाया गया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका, सूत्रों से खबर 19 बागी लोकसभा के सांसदों की सूची आई है सामने। बागी सांसदों की सूची में शत्रुघ्न सिन्हा, सयानी घोष और यूसुफ पठान का नाम भी शामिल। ममता बनर्जी की पार्टी में नहीं रुक रही है बगावत, राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने दिया है इस्तीफा। लोकसभा में 20 सांसदों के बाद राज्यसभा से दूसरी बगावत। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव के बीजेपी में शामिल होने की संभावना है, हेमंत विश्व शर्मा से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। 10 जनपद में राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की 1.5 लगभग 1.5 घंटे तक लंबी बैठक चली, बंगाल की सियासत पर चर्चा की गई। मीनाक्षी नटराजन ने के नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, भोपाल में काली पट्टी बांध कर रखा गया एक दिन का उपवास। कांग्रेस ने किया चुनाव आयोग का रुख, कहा सीट चोरी कर रही है बीजेपी। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा घर के भेद जानबूझकर नटराजन का नामांकन रद्द करवाया गया है, कांग्रेस खुद इसके लिए जिम्मेदार। रांची से भी कांग्रेस को लगाया तगड़ा झटका, बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नामांकन वैध। कांग्रेस ने परिमल के नामांकन पत्र पर उठाए थे सवाल, नाम सही न लिखने का आरोप लगाया गया था। दिल्ली के दौरे पर तमिलनाडु के नए सीएम विजय राहुल और सोनिया गांधी से मुलाकात की। डीके शिवकुमार भी पहुंचे हैं दिल्ली, सोनिया गांधी राहुल गांधी से मुलाकात की। कसमंडी पासी किला विवाद गर्मा गया है, लाखन आर्मी ने मुखिया सूरज पासी 31 जिलों की यात्रा पर निकल गए हैं। लाखन आर्मी कर रही है किले की शिव मंदिर घोषित करने की मांग, 31 जिलों की यात्रा के खिलाफ एआईएमआईएम और धर्मगुरुओं ने सवाल उठाए। लखनऊ में लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने भी मार्च किया, किले तक जाने से पुलिस ने उन्हें रोका। वाराणसी में यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संगठन को सरकार से ऊपर बताया, कहा संगठन ही चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतने के बाद संगठन ही तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी। बंगाल में बीजेपी में शामिल होने पहुंचे कई तृणमूल नेता, बीजेपी नेताओं ने हरा गुला लगाकर लौटाया बाराबनी में, घटना की जबरदस्त चर्चाएं। राजस्थान में आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का किया बचाव, बोले भजनलाल शर्मा कर रही है टारगेट। कोचिंग टीचर खानसर और रोशन आनंद के विवाद पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा प्रशासन ने दिखाई जल्दबाजी, मानता हूं खानसर की गलती होगी, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के महावीर एनक्लेव में अतिक्रमण को पीडब्ल्यूडी के बुलडोजर ने हटाया, मालवीय नगर में आग की घटना के बाद सिविक एजेंसी अचानक से एक्टिव मोड में आ चुकी है। दयारा बुग्याल ट्रैक से लापता एमबीए छात्रा बबीता पांडे की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है, बबीता की तलाश में 120 जवान और 3 ड्रोन तैनात किए गए हैं, गोई से 200 मीटर नीचे मिली अंतिम लोकेशन। बागेश्वर के पिंडारी ट्रैक पर लापता पर्यटक की तलाश जारी, घटनास्थल पर पुलिस के द्वारा रिक्रिएशन कर साक्ष्य जुटाने की कोशिश। मालवीय नगर अग्निकांड में एक और घायल ने दम तोड़ दिया है, मृतकों का आंकड़ा हो गया है 23। बिहार के टेंडर घोटाले में बड़ा एक्शन, 3 बड़े ऑफिसर्स गिरफ्तार, ईडी के छापे में मिले थे करोड़ों रुपए। मुजफ्फराबाद के पास पाकिस्तानी सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसमें सवार सभी लोग मारे गए। उन्नाव के बांगरमऊ में राम मंदिर का निर्माण करवा रहे साधु की हत्या, पुलिस ने मुख्य संदिग्ध सभासद की अवैध झोपड़ी को बुलडोजर से हटाया। बांदा में तलाक के बाद भी पैसों की मांग का मामला गर्मा गया है, ससुराल पहुंचा युवक तो लाठी डंडों से पीटा गया, सिर में लगे हैं 14 टांके। गाजियाबाद के MMG अस्पताल में चाकू लेकर घुसी थी महिला, इमरजेंसी में मच गई थी अफरा तफरी, वीडियो वायरल हुआ।
यूपी के फरुखाबाद में एसबीआई के लॉकर से पूर्व सैन्यकर्मी के 1 करोड़ से ज्यादा के जेवरात गायब हुए, पुलिस जांच में जुटी। बलिया में हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रेमी को बुलाने की जिद में 24 घंटे से मोबाइल टावर पर चढ़ी बिहार की महिला। जयपुर में पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट के बाद सिस्टम जागा, 8 मौतों के बाद पुलिसकर्मी सस्पेंड हुआ, अवैध फैक्ट्रियों पर ताबड़तोड़ छापे। फरीदकोट में कैदी फरार हुआ, इलाज के दौरान सुरक्षा कर्मियों को दिया था चकमा। गुजरात के बनासकांठा की दांता तहसील में जीप की टक्कर हुई, 2 लोगों की मौत की खबर, 8 घायल हुए। दिल्ली के मूलचंद मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 17 मामलों में संलिप्त सोनू नाम का बदमाश भी गिरफ्तार। कर्नाटक के दावणगेरे में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बड़ा खुलासा, 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जांच जारी। सहारनपुर में गर्मी से बचने के लिए पानी की ऊंची टंकी पर चढ़कर सोया युवक, नींद में करवट लेते ही नीचे गिरा, जान गई। अमेठी में मिलावटी पेट्रोल बनाने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया गया, 4 की गिरफ्तारी। बिहार में अररिया में रफ्तार का कहर, सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हुई, 6 से ज्यादा घायल हुए। नागौर में 53 लाख रुपए के आभूषण और नकदी चोरी के मामले में 13 दिन में बड़ा खुलासा, 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत हुई। अमेरिकी ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी, कहा ईरान के ने बातचीत में देरी की, अब कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का जबरदस्त पलटवार, जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमेरिका के ठिकानों पर किया गया हमला, इससे पहले अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी ठिकानों को बनाया था निशाना। ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, इस्माइल वगाई ने कहा देश की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटेगी सेना, अमेरिका पर बार बार युद्ध विराम के आरोप लगाए। यूके नए प्रतिबंध पर, रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया का बड़ा बयान, नए प्रतिबंधों में कामयाब नहीं हो पाएगा यूरोपीय संघ, रूस देगा जवाब। रूस के चाबुकसारी में सैन्य प्लांट पर यूक्रेन का बड़ा हमला, धू धू कर जली इमारत, तेल ठिकाने के बाद सैन्य प्लांट पर हमला किया गया। रूस की राजधानी मॉस्को में कार में बम धमाका हुआ, कार में लगी थी भीषण आग, एक व्यक्ति की मौत हुई, रूस अधिकारियों ने विस्फोट मामले की जांच शुरू की। लेबनान में इसराइल का भीषण हमला, होमिन अल्फोका में उठा था धुएं का गुबार, सीज फायर के बावजूद लेबनान पर हमले कर रहा है इसराइल। लेबनान सीरिया में इसराइली हमले पर तुर्की की युद्ध राष्ट्रपति एर्दोगान का बड़ा बयान, का इसराइल के हमले में तुर्की के लोग भी खतरा, वैश्विक समुदाय तुरंत रोके इसराइल की आक्रामकता। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में अंधाधुंध फायरिंग हुई, 12 लोगों की मौत, 9 घायल, 10 से ज्यादा संदिग्ध हमलावरों ने गाड़ी से उतरकर नागरिकों पर फायरिंग की थी। इंडोनेशिया में ईरान जंग का असर, पेट्रोल की कीमत में 32% की बढ़ोतरी, गैर सब्सिडी वाली ईंधन के दाम 30% से ज्यादा बढ़े। कार्ट में बिना बताए प्रोडक्ट जोड़ने और छुपे चार्ज लगाने के साथ भ्रामक ट्रिक से ग्राहकों को सालाना 25 से 28 हजार करोड़ रुपए की चपत लगी, ऑनलाइन शॉपिंग में 88% लोग हुए डार्क पैटर्न का शिकार। ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाओं पर 5% अतिरिक्त जीएसटी लगाने से ड्राइवर्स की कमाई घटने और यात्रियों पर किराए का बोझ पड़ने की आशंका, कई ड्राइवर और ग्राहक महंगे किराए के बाद तलाशेंगे दूसरे विकल्प। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने तेल कंपनियों को 1.23 लाख करोड़ रुपए की मदद की। बीते कुछ दिनों में करीब 10 रुपए प्रति लीटर के इजाफे के बावजूद तेल कंपनियों को बिक्री पर रोजाना 650 करोड़ रुपए का घाटा। सोने के बढ़ते आयात को नियंत्रित करने के लिए कोशिशों के बीच सरकार ने बैंकों से गोल्ड लोन का पूरा डेटा मांगा, गोल्ड लोन ETF और आयात निर्यात नियमों में बदलाव की संभावना।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिडिल ईस्ट से एक बार फिर से सुलग उठा है। दो महीने के सो कॉल्ड सीज फायर के बाद अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से जंग शुरू हो गई है। देर रात अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के घातक लड़ाकू विमानों ने ईरान की घेराबंदी की। 4 घंटे तक 20 से ज्यादा ठिकानों पर भीषण बमबारी की। अमेरिका ने स्टेल्थ फाइटर जेट्स और AGM-158 जैसी आधुनिक मिसाइलों से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। ईरान भी शांत नहीं बैठा, पलटवार करते हुए उसने फिर से मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला कर दिया है। ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और शाहिद ड्रोन्स की ऐसी बरसात कर दी है जिसने पेंटागन को हिलाकर रख दिया। असल में ये युद्ध अमेरिका के लिए डॉलर छापने की मशीन बन चुका है। आज आपको बताएंगे कि कैसे पूरी दुनिया को तेल संकट में डालकर अमेरिका खुद रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहा है तेल बेचकर। इसके बाद आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड ब्रेकिंग कार्यकाल के बारे में बताएंगे। वो निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले नेता बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ दिया है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि देश में अब अधिकारियों को बुलडोजर एक्शन की सुपारी मिलने लगी है। क्या सरकारी मशीनरी प्राइवेट बिल्डर्स के लिए कब्जा हटाओ गैंग की तरह काम कर रही है? हैरान करने वाला ये मामला गुजरात के सूरत का है, जहां बुलडोजर एक्शन की वजह से भीषण गर्मी में 100 से ज्यादा परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए। लेकिन विवाद इस बात पर है कि इस एक्शन से पहले नोटिस नहीं दिया गया, कोई सूचना नहीं दी गई। किसका था ये बुलडोजर एक्शन? किसके इशारे पर उछाड़े गए ये तमाम घर? सामने आकर कोई बोलने को तैयार नहीं है और कोई नहीं स्वीकार रहा कि यह हमारी कार्रवाई है। आखिर किस डिपार्टमेंट की कार्रवाई थी ये? और आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की वजह से स्मगलर्स की चांदी हो रही है। सोने की विदेशी खरीद कम करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी, लेकिन अब इसकी वजह से सोने की तस्करी बढ़ने की आशंका है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को खत्म नहीं करना चाहते। किसी भी युद्ध में डिसेप्शन की रणनीति को सबसे खतरनाक माना जाता है, जो छल पर आधारित होती है। और ये छल दुश्मन से नहीं किया जाता, ये छल उन लोगों से किया जाता है जो इस युद्ध से प्रभावित हो रहे होते हैं। यानी इस रणनीति का सिद्धांत कहता है कि लोगों का ध्यान उस चीज पर केंद्रित कर दो जो वो देखना चाहते हैं, ताकि वो उस चीज पर ध्यान ना दें जिसे आप छिपाना चाहते हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप ईरान युद्ध में दुनिया के साथ यही कर रहे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान इस बात पर केंद्रित कर दिया है कि वो ईरान युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहते हैं। सीज फायर ईरान के साथ डील करने के लिए सीरियस है, गंभीर है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने लोगों का ध्यान इस बात से हटा दिया कि ये युद्ध इस वक्त अमेरिका के लिए डॉलर छापने की मशीन बना हुआ है। और जब कोई युद्ध अमेरिका को डॉलर छाप कर दे रहा है, तो उस युद्ध को राष्ट्रपति ट्रंप भला खत्म क्यों करना चाहेंगे? और ये तस्वीरें उसका प्रमाण है। जब राष्ट्रपति ट्रंप इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर इसलिए भड़के हुए थे कि उन्होंने ईरान पर हमले करके सीजफायर का उल्लंघन क्यों कर दिया, तब इसी के 36 घंटे बाद खुद अमेरिका ने ईरान पर हमले कर दिए। और इन हमलों के कारण ये युद्ध फिर से शुरू हो गया है। और जवाब में ईरान ने भी बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें बरसा दी। यह घटनाक्रम बताता है कि अमेरिका की मंशा इस युद्ध को खत्म करने की बिल्कुल नहीं है। और क्यों नहीं है, आज उसकी वजह जानकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। वजह यह है कि ईरान युद्ध से पूरी दुनिया में तेल का संकट पैदा करने वाला अमेरिका खुद रिकॉर्ड तेल बेचकर मालामाल हो रहा है। वो हकीकत में चाहता ही नहीं कि युद्ध पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये आंकड़े हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि आज इस युद्ध में क्या हुआ है। सबसे पहले कल देर रात अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक्स की। 4 घंटे तक ये एयर स्ट्राइक चली है। ईरान के हॉर्मोजगान प्रांत के पूर्वी हिस्सों में 20 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बना दिया गया। बंदर अब्बास, केशम द्वीप, सिरिक, बंदर जस्क और कुहे मुबारक इलाके में हवाई हमले भी किए गए। बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी दागा गया। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो इनमें आपको कई इलाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास के नजर आएंगे। अमेरिका की सेंट्रल कमांड का दावा है
कि उसने सिर्फ ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस और रडार साइट्स शामिल। हालांकि ईरान का दावा है कि अमेरिका इन हमलों को लेकर कोरा झूठ बोल रहा है। कि अमेरिका ने सिरिक शहर में एक टेली कम्युनिकेशन टावर और दो वाटर टैंक्स को नष्ट किया है जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा थे। जारी की गई है, आप इनको देखिए।

0: हमें स्थिति से बाहर निकलना होगा। युद्ध निश्चित रूप से देश के हित में नहीं है, लेकिन अगर वो ये सोचते हैं कि हमारी गरिमा, हमारी भूमि और हमारी सीमाओं का उल्लंघन करेंगे और हम झुक जाएंगे या पीछे हट जाएंगे, तो वो केवल सपने ही देख सकते हैं। ये ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर हम पीछे हटेंगे।
1: अमेरिकी मीडिया का दावा है कि हमले योजना बनाकर किए गए थे और ईरान में कुछ भी अचानक से नहीं हुआ। इसके लिए पहले अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान की 3 मोर्चों पर घेराबंदी की। इससे पहले मोर्चे पर फारस की खाड़ी और अरब सागर में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से F/A-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों ने हुंकार भरी। दूसरे मोर्चे पर कतर के अल उदेद एयरबेस से अमेरिकी बम वर्षक विमान उड़े और तीसरे मोर्चे पर ईरान के सबसे नजदीक UAE के अल धफरा एयरबेस से स्टेल्थ फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। इसके बाद क्या हुआ? ईरान में 4 घंटे तक 20 से ज्यादा ठिकानों पर बारूद बरसाया गया और ये हमले भी तब किए गए जब अमेरिका का एक भी लड़ाकू विमान उसके हवाई क्षेत्र में दाखिल नहीं हुआ। अल जजीरा का दावा है कि इस हमले में अमेरिका ने अपनी सबसे आधुनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, जिनमें एक है AGM-158, जिसे जॉइंट एयर टू सर्फेस स्टैंड ऑफ मिसाइल भी कहा जाता है। इन मिसाइलों को हॉर्मूज के पास बंदर अब्बास और सिरिक शहर के ऊपर दागा गया, जबकि दूसरी क्रूज मिसाइल है स्लैमर। इसे स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल एक्सपैंडेड रिस्पॉन्स भी कहा जाता है और ये मिसाइलें तब इस्तेमाल होती हैं जब लड़ाकू विमानों को एयर डिफेंस सिस्टम से बचाया जाता है। देखिए,

जब अमेरिका की तरफ से इतना बड़ा हमला हुआ तो ईरान ने भी बदला लेने के लिए कहां हमला किया? मिडल ईस्ट के देशों पर, बहरेन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने हमले कर दिए। इनमें भी सबसे पहले बहरेन को निशाना बनाया गया, जहां अमेरिका का फिफ्थ फ्लीट का मुख्यालय है, और ये वही मुख्यालय है जिससे अमेरिकी एयर स्ट्राइक्स को गाइड किया गया था। दूसरा बड़ा हमला कुवैत पर हुआ, जहां अमेरिकी सेना के अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और शाहिद ड्रोन्स दाग दिए। और तीसरा हमला जॉर्डन में हुआ, जहां ईरान ने अल अजराक एयरबेस पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। हालांकि जॉर्डन की सेना ने कुछ मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन कुवैत और बहरीन से भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। इनमें भी बहरीन में जो हमला हुआ उसे डायरेक्ट हिट माना जा रहा है। डायरेक्ट हिट का मतलब यह है कि ईरान का शाहिद ड्रोन बहरीन के सभी एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर सीधे अमेरिकी ठिकानों पर पहुंच गया, और वहां इसमें जोरदार धमाका होने से अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए,

अब ईरान ये भी दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है, जिसकी कीमत है 285 करोड़ रुपए। और ईरान ने उसका एक वीडियो भी जारी किया है, ये वाला देखिए।

0: यहाँ सबसे अजीब बात यह है कि इस बार ईरान ने यूएई और सऊदी अरब पर एक भी हमला नहीं किया है। इससे पहले आपने देखा था जब जब अमेरिका ईरान पर हमला करता था वो सबसे पहले सऊदी अरब यूएई पर करता था, लेकिन इस बार ईरान पर हमले करने के लिए कुछ घंटे पहले यूएई के एयरबेस का इस्तेमाल भी किया था अमेरिका ने। ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि मार्च और अप्रैल के युद्ध में ईरान ने सबसे ज्यादा 60% हमले अकेले यूएई पर किए थे, 60%। लेकिन इस बार ईरान ने ऐसा कुछ नहीं किया और इसके पीछे बड़ा कारण माना जा रहा है यूएई अमेरिका के रिश्ते। ईरान युद्ध के कारण इन दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव आ गया है, जिसके कारण ईरान नहीं चाहता कि उसके हमलों से इन दोनों देशों को वापस एक होने का मौका मिले। और शायद इसी वजह से इस बार ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर तो हमले किए, लेकिन यूएई, सऊदी अरब इनको कुछ नहीं कहा।
1: खातम अल अंबिया हेडक्वार्टर ने घोषणा की है कि दक्षिणी ईरान के कुछ हिस्सों पर हेलीकॉप्टर दुर्घटना का बहाना बनाकर अमेरिका ने जो ये आतंकवादी हमला किया है उसके जवाब में क्षेत्र में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को एक शक्तिशाली अभियान के तहत निशाना बनाया गया है। ये कार्रवाई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी और IRGC के जवानों ने मिलकर की है। अमेरिका को ये जान लेना चाहिए कि अगर उसने इस्लामी गणराज्य ईरान के खिलाफ कोई और आक्रामक कार्रवाई की तो इस इलाके में टारगेटेड ठिकानों पर इससे भी कहीं अधिक घातक और कड़े हमले किए जाएंगे।
0: अब ये देखिए कि कैसे एक अपाचे हेलीकॉप्टर ने इस युद्ध में चिंगारी लगाने का काम किया। अमेरिका का दावा है कि जब उसका एक अपाचे हेलीकॉप्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में गश्त कर रहा था तब उस पर ईरान की तरफ से हमला हुआ। ईरान ने अपने 40 लाख रुपए के शाहिद ड्रोन से लगभग 400 करोड़ रुपए के अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया और उसे नष्ट कर दिया। अब इस हमले में अमेरिका के दो पायलट बाल बाल बचे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो इस हमले का जवाब देंगे और इसी के बाद अमेरिका ने यह बदला लिया और ईरान के 20 से ज्यादा ठिकानों पर बारूद बरसा दिया। सुनिए। और अब आप अमेरिका के इस विरोधाभास को भी देखिए जिसमें वो एक तरफ ये चाहता है कि उसके जहाजों, उनके विमानों पर कोई हमला ना हो, और अगर ईरान ऐसा करता है तो अमेरिका उसका बदला लेता है। लेकिन इसी दौरान यही अमेरिका जब दूसरे देशों के जहाजों पर बिना वजह के हमला करता है तो यही बात उसे याद नहीं रहती। जब अमेरिका ने अपने एक अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए ईरान पर रात भर बम और मिसाइल बरसाए तब इसी अमेरिका ने इससे सिर्फ कुछ घंटे पहले ओमान के पास एक बड़े जहाज पर हमला किया था जिसमें 24 भारतीय नाविक सवार थे। इस जहाज पर पलाऊ देश का झंडा लगा था, लेकिन अमेरिका ने बिना कोई चेतावनी, बिना कोई स्पष्ट कारण बताए इस पर मिसाइल दाग दी और जिसके बाद से जहाज किस तरह राख हो गया आप तस्वीरें देखिए।
2: नीचे आओ,

आज बात सिर्फ इन दोहरे मापदंडों की नहीं है, बल्कि आज बड़ा मुद्दा यह भी है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप ईरान युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये युद्ध अमेरिका को खूब मालामाल कर रहा है और ये उसके लिए असल में डॉलर छापने की एक वॉर मशीन जैसा बन गया है। आप आंकड़े देखिए, जिस वक्त अमेरिका युद्ध लड़ रहा है और दुनिया ये सोच रही है कि युद्ध अमेरिका का नुकसान करा रहा होगा, तब पहली बार अमेरिका का व्यापार घाटा कम हो गया है। ट्रेड डेफिसिट फरवरी महीने में ये 57.8 बिलियन डॉलर था और मार्च में ये कम होकर 56.6 डॉलर हो गया है और फिर अप्रैल के महीने में और नीचे घटकर 55.9 बिलियन डॉलर पर आ गया है। यानी युद्ध के दौरान अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ने के बजाय 1.9 बिलियन डॉलर यानी 18,116 करोड़ रुपए कम हो गया। और जानते हैं ये कम कैसे हुआ? ये कम हुआ तेल के रिकॉर्ड निर्यात से। ईरान युद्ध से दुनिया में तो तेल का भयानक संकट पैदा हुआ, लेकिन इसी दौरान अमेरिका के कच्चे तेल का जैकपॉट लग गया। युद्ध से पहले फरवरी महीने में अमेरिका ने 12.7 करोड़ बैरल कच्चे तेल का निर्यात किया, जिससे उसे 7.9 बिलियन डॉलर की कमाई हुई थी। ये आंकड़े भी तब थे जब एक बैरल तेल लगभग $65 का था, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद जब यही तेल $85 का हुआ तो अमेरिका ने तेल बेचकर 10.7 बिलियन डॉलर कमाए और अप्रैल में तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अप्रैल में एक बैरल कच्चा तेल $102 का होने के बावजूद अमेरिका ने 72 लाख बैरल तेल का निर्यात किया एक्सपोर्ट, जिससे उसे 17.1 बिलियन डॉलर की कमाई हुई। यानी सिर्फ युद्ध की वजह से फरवरी के मुकाबले अप्रैल महीने में अमेरिका का तेल निर्यात 4.65 करोड़ बैरल बढ़ गया है और इससे अमेरिका ने लगभग $10 बिलियन ज्यादा पैसा कमा लिया, जो भारतीय रुपयों में अगर आप देखें तो 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास होता है। सिर्फ महीनों की बात है। कच्चे तेल के अलावा पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से भी अमेरिका की आमदनी नए नए रिकॉर्ड छू रही है। युद्ध से पहले फरवरी महीने में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से अमेरिका में 20.5 बिलियन डॉलर कमाए थे, लेकिन अप्रैल महीने में इन्हीं पेट्रोलियम उत्पादों से अमेरिका ने 36.7 बिलियन डॉलर कमाए। उसका रेवेन्यू $16 बिलियन पहले से ज्यादा हो गया। और यही नहीं, इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो रहा है। युद्ध के दौरान पिछली तिमाही से उसका जो GDP ग्रोथ रेट है वो 1.6% रहा, जबकि उससे पहले ये सिर्फ 0.5% था और रॉयटर्स का अनुमान है कि नई तिमाही में ये ग्रोथ रेट और भी आगे जा सकता है। अब सोचिए, जो युद्ध अमेरिका को इतना मालामाल कर रहा हो, उस युद्ध को राष्ट्रपति ट्रंप क्यों रोकना चाहेंगे? यानी आते हुए पैसे को वो ना क्यों कहेंगे? और यही कारण है, जैसे ही लगता है कि अब ये युद्ध शायद खत्म हो जाए, सीज फायर लंबा टिक गया, तभी इसमें एक नया हमला हो जाता है और नतीजा होता है ढाक के 3 पाक। इस युद्ध को लेकर पूरी दुनिया में लोगों की आम धारणा यही है कि युद्ध अमेरिका के लिए दलदल बन गया है जिससे वो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन इसकी जगह वो धसता जा रहा है। और ईरान को लेकर यह धारणा है कि उसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को झुका दिया है। अब ये बातें अपनी अपनी जगह है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि अमेरिका इस युद्ध से खूब पैसा पीट रहा है, जबकि ईरान इस युद्ध से भुखमरी की तरफ जा रहा है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है, वहां लोग EMI यानी इंस्टॉलमेंट्स पर अपना गुजारा कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ईरान में एक साल पहले की तुलना में महंगाई 73% से ऊपर पहुंच गई है, यानी जो चीज पिछले साल 100 रुपए की थी वही लगभग 173 रुपए से ज्यादा की हो गई। रिपोर्ट ही कहती है कि युद्ध से पहले ईरान के लोग बाकी देशों की तरह फ्रिज, वॉशिंग मशीन, TV, फर्नीचर, मोबाइल फोन जैसी चीजें लोन और EMI पर खरीदते थे, लेकिन अब ईरान का यह हाल हो गया है कि वहां जो रोजमर्रा की चीजें हैं, राशन, आटा, साबुन, शैंपू, घरेलू जो सामान है, वो EMI पर खरीद रहे हैं। ईरान के लोग सिर्फ युद्ध के कारण सोचिए किस स्थिति में पहुंच गए हैं। महंगाई की वजह से वहां पर लोगों को जो तमाम मुश्किलें हो रही हैं और वो पुरानी सेकेंड हैंड चीजें अब खरीद रहे हैं। पुरानी चीजों की मांग में 40-60% की वृद्धि हो गई है। इस आर्थिक संकट ने के ही कारण ईरान ने 10 मिलियन रियाल है यानी लगभग 1 करोड़ रियाल का नोट जारी किया था।
लेकिन इससे भी हालात नहीं सुधरे और अभी ईरान आर्थिक मोर्चों पर बहुत बुरी मार खा रहा है। लेकिन नैरेटिव यही है कि ईरान इस युद्ध में टिका रहा, अमेरिका इस युद्ध में फंस गया, जबकि पैसा अमेरिका कमा रहा है। खैर, इस युद्ध ने कच्चे तेल और गैस के संकट से जूझ रहे भारत की चिंताएं बढ़ाई हैं, क्योंकि अगर नए सिरे से ये युद्ध छिड़ रहा है तो हमारी आपकी जेब पर तेल गैस की कीमतों पर किस तरह का असर होगा, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में कैसी चोट पहुंचेगी। भारत के सामने सवाल यह है कि हम इस युद्ध के रुकने का इंतजार करके बैठे रहें या हम तेल और गैस की आपूर्ति के लिए नए नए विकल्पों पर काम करें। इन्हीं सवालों पर मंथन के बीच अब भारत एक ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश में है जो हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिए गेम चेंजर बन सकता है। ये रास्ता है गुजरात के पोरबंदर से ओमान के बीच अरब सागर में एक गैस पाइपलाइन बनाने का, जिसे डीप वाटर पाइपलाइन भी कहा जा रहा है। भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने कुछ सरकारी कंपनियों को यह निर्देश दिए हैं कि वो इस पाइपलाइन पर नए सिरे से अध्ययन करें। इन कंपनीज में गेल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन शामिल है, जो उस रिपोर्ट पर काम करेंगी जिसे साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज नाम की कंपनी ने तैयार किया है। ये वही कंपनी है जो कई सालों से इस गैस पाइपलाइन को बनाने का प्रस्ताव दे रही है। भारत भी इसे अहम मानता आया है। अगर सब कुछ सही रहता है तो ये पाइपलाइन समुद्र की सतह से 3000 मीटर नीचे बनाई जाएगी और ये कोई मामूली गहराई नहीं है। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये पाइपलाइन बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से लगभग 4 गुना ज्यादा गहराई पर बनाई जाएगी। इस पर $4 बिलियन यानी 38,119 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और इस पाइपलाइन से भारत को दो फायदे होंगे। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, सीधा यह रास्ता बन जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप देख रहे हैं ईरान और यूएई के बीच में, जो वो सकरी सी जगह है वहां पर है, तो ये सीधा रास्ता ओमान से गुजरात के पोरबंदर का बनेगा। बिना रुकावट भारत को सीधे गैस की आपूर्ति कर पाएगा ओमान। अगर आंकड़ों में देखें तो हमें हर दिन 1.1 बिलियन क्यूबिक फीट गैस इस पाइपलाइन से मिल सकती है और अगर हम चाहें तो इस पाइपलाइन को गुजरात के साथ मुंबई से भी जोड़ सकते हैं। दूसरा फायदा यह होगा कि इससे हम समय पैसे की बचत करेंगे। भारत अभी नेचुरल गैस को बड़े बड़े जहाजों टैंकर्स में लाता है, यह काम आसान नहीं होता। आपने देखा होगा कि जब गुब्बारे में गैस भरी तो बहुत आकार बड़ा ले लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस को जमा करने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है। अगर इस गैस को जहाजों में भरकर लाया जाए तो यह संभव ही नहीं है, इसीलिए इस गैस को पहले लिक्विड फॉर्म में बदला जाता है और फिर इस लिक्विड गैस को जहाजों में भरकर लाया जाता है और यहां यह प्रक्रिया खत्म नहीं होती। भारत लाने के बाद इस लिक्विड को फिर से गैस के फॉर्म में बदला जाता है और इसमें पैसा खूब लगता है, लागत भी ज्यादा आती है। लेकिन अगर यह पाइपलाइन बन गई तो इस गैस को लिक्विड में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह सारा काम बहुत आसान हो जाएगा, समय पैसा सब बचेगा। हालांकि इतने सारे फायदे होने के बाद भी भारत पिछले 31 सालों से इस पाइपलाइन को बनाने की कोशिश हकीकत में नहीं बदल पाया है। साल 1995 में हमने पहली बार सोचा था कि भारत समुद्र के नीचे एक गैस पाइपलाइन बनाएगा। यह आइडिया तब आया जब पहले हम पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक एक ग्राउंड ऑपरेटिव पाइपलाइन बनाना चाहते थे। फिर हमें लगा कि पाकिस्तान का तो कोई भरोसा नहीं, इसलिए हमने ये योजना बदली, ये तय किया कि हम समुद्र में ओमान और ईरान तक एक नई पाइपलाइन बिछाएंगे। साल 2015 में इस पर सारे अध्ययन भी हो चुके थे लेकिन तब पाकिस्तान ने इसमें अड़ंगा डाला। पाकिस्तान कहता है कि अरब सागर में जिस जगह से ये पाइपलाइन गुजरेगी उसका कुछ हिस्सा उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। संयुक्त राष्ट्र के कानूनों के मुताबिक अगर इस क्षेत्र में पाइपलाइन ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पाकिस्तान की मंजूरी चाहिए होगी और आप जानते हैं पाकिस्तान कैसा देश है। हालांकि इस बार भारत एक ऐसा रूट बनाना चाहता है जिससे पाकिस्तान इसमें कोई अड़ंगा ना डाल पाए। हम मुंबई, हम गुजरात, इनको सीधा ओमान से गैस पाइपलाइन के जरिए जोड़ पाए। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि अगर गाजा में मरने वाले मुस्लिम बच्चों की तस्वीरें दुनिया भर के लोगों की अंतरात्मा को झकझोर सकती हैं तो फिर अफगानिस्तान, पीओके, यहां पे मरने वाले मुस्लिम बच्चों की तस्वीरें किसी को विचलित क्यों नहीं करती। एक दिन पहले पीओके में पाकिस्तान ने 19 मासूम बच्चों को गोलियों से भुना। आज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 11 मुस्लिम बच्चों की हत्या कर दी। ये तस्वीरें अफगानिस्तान के कुनार, पक्तिका और खोस्त प्रांत से आई हैं, जहां पाकिस्तान की वायुसेना ने हवाई हमले किए, 19 आम लोगों की जान ले ली, जिनमें 11 बच्चे, एक महिला, एक बुजुर्ग शामिल है। ये हमले आधी रात को हुए
जिसके बाद बड़ी संख्या में अफगानिस्तान के लोग मलबे के नीचे से अपने बच्चों की लाशें निकालते हुए नजर आए और उन्होंने ये पूछा कि क्या ये दुनिया इस अपराध पर पाकिस्तान से कोई सवाल नहीं पूछेगी। इस क्रूरता पर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और तालिबान प्रशासन काफी आक्रोशित है। उनका कहना है कि पाकिस्तान हर बार सिर्फ टीटीपी का नाम लेकर उसके आम जनता को जान से नहीं मार सकता, लेकिन सोचिए दुनिया में अफगानिस्तान का ये दर्द सुनेगा कौन और गाजा पर शोर मचाने वाले क्या इन मुस्लिम बच्चों की हत्या से आहत होंगे। देखिए

पाकिस्तान का दावा है कि उसने इस हमले में 26 आतंकवादियों को मारा है। ये बच्चे आतंकवादी हैं। सच ये है कि इस हमले में ज्यादातर बच्चे, महिलाएं मारी गई हैं। ये अफगानिस्तान के वो गरीब लोग थे जो मिट्टी के घरों में रहते थे, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने इन्हें टीटीपी का आतंकवादी बताते हुए मौत के घाट उतार दिया। और ये सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं हुआ है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी असिम मुनीर की सेना ने शोक सभा में शामिल हुए 19 बच्चों, 7 गर्भवती महिलाओं की हत्या कर दी। 7 बच्चे जो इस दुनिया में कभी आ ही नहीं पाएंगे। और इस नरसंहार के बाद पीओके में ऐसी आग लगी है कि अब आतंक परस्त पाकिस्तान को जनता के विद्रोह से बेचैनी होने लगी है। आज पीओके के कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। इन लोगों ने पाकिस्तान सेना की गोलीबारी में मारे गए लोगों के खून का हिसाब मांगा और ये कहा कि इस बार वो दहशतगर्द असिम मुनीर से बदला लेकर रहेंगे। इन रैलियों में जो नारा सबसे ज्यादा गूंजा वो था, जालिमो जवाब दो, खून का हिसाब दो। और जब तक जनता तंग रहेगी तब तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। देखिए, इस सबके बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि पीओके में पाकिस्तानी सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। दावा है कि इस हेलीकॉप्टर में टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खामी आई, इसके बाद उड़ान के दौरान ही यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि यहां सवाल यह है कि जब पीओके में सेना वापस जाओ के नारे लग रहे हैं तो इतना बड़ा विद्रोह हो रहा है, तभी यह हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ? पहले यह देखिए, खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक स्थिरता का क्या मतलब होता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री बने रहने का पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक लगातार 4,398 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल ने आज 10 जून को 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में अब तक हमें 15 प्रधानमंत्री मिल चुके हैं और इनमें नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। और ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये प्रमाण है कि भारत के लोकतंत्र ने 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के रूप में राजनीतिक स्थिरता को चुना और ये वो राजनीतिक स्थिरता है जो कई लोकतांत्रिक देशों को आज भी नसीब नहीं। आधुनिक युग में जब अमेरिका ने पहली बार लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया तो इसका मकसद यही था कि लोगों को अपनी शासन व्यवस्था चुनने का अधिकार मिले और इस शासन व्यवस्था में समय समय पर चुनाव कराए जाए ताकि चुने हुए लोगों को जनता की कसौटी पर परखा जा सके। जब यह व्यवस्था बनी तो उस वक्त सबसे बड़ी बहस यही थी कि इससे हर कुछ सालों में सरकारें बदलती रहेंगी, इससे राजनीतिक स्थिरता नहीं आएगी, एक व्यक्ति शासन में ज्यादा दिन नहीं रहेगा। लेकिन इस बहस के बाद भी हर कुछ सालों में चुनाव की शर्त को कायम रखा गया और यह माना गया कि चुनाव में वही जनप्रतिनिधि टिकेगा जो जनता के भरोसे को जीतेगा, जो जनता के भरोसे को नहीं जीतेगा उसे जनता बदल देगी। आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रिकॉर्ड को स्थापित किया है तो वे ये उपलब्धि चुनाव में जनता के विश्वास से ही हासिल कर पाए हैं। और ये रिकॉर्ड भारत के लिहाज से इसलिए भी अहम है क्योंकि हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 2024 में जब आखिरी लोकसभा चुनाव हुए तब हमारे देश में 97,79,00,000 वोटर्स थे जिनमें से 64,21,00,000 लोगों ने अपना वोट डाला। इतने बड़े लोकतंत्र में लगातार तीसरी बार चुनकर आना प्रधानमंत्री मोदी के लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इस लोकतांत्रिक परीक्षा को जनता के भरोसे के साथ पास किया,
23,60,00,000 लोगों के वोट से वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया के 196 देशों में से 71 देशों में पूर्ण और आंशिक लोकतंत्र है, लेकिन इन 71 लोकतांत्रिक देशों में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां मौजूदा वक्त में कोई नेता इतने सालों से लगातार चुनाव जीतकर सरकार चला रहा। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान 2012 से 2026 के बीच लगातार 14 सालों से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने हुए थे, लेकिन इस साल वो चुनावों में हार गए। एंजेला मर्केल का भी हम आपको बताएंगे जो कि जर्मन चांसलर हैं, लेकिन उससे पहले इमैनुअल मैक्रों को देखिए, वो भी 2017 से चुनाव जीतकर फ्रांस के राष्ट्रपति बने हुए हैं। उनके कार्यकाल को 9 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन जिस मुकाम पर अभी प्रधानमंत्री मोदी हैं उतने वक्त तक लोकतंत्र में उस पद पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले इस सदी के पहले 25 सालों में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल लगातार 16 साल 16 दिन जर्मन चांसलर रही। नीदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रट चुनाव जीतकर लगातार 13 साल 262 दिनों तक सत्ता में रहे, लेकिन बाकी लोकतांत्रिक देशों में सरकारें बदलती रहीं, गिरती रहीं, और यह भी तब हुआ जब हमारे पड़ोसी देशों में लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। श्रीलंका में दंगों के कारण राजनीतिक अस्थिरता हुई, म्यांमार में सेना का शासन आ गया, बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो गया, नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता आई, पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी लोकतंत्र का महत्व लगभग ना के बराबर है, लेकिन भारत में लोगों ने अपने लिए राजनीतिक स्थिरता को चुना और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ये रिकॉर्ड बना पाए। ये भी देखना जरूरी है कि जब पंडित नेहरू ने लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीते थे तब भारतीय राजनीति में ज्यादा पार्टियां नहीं होती थी। हम आपको बताते हैं 51 से 52 जो आपके लोकसभा चुनाव थे उन चुनाव में कांग्रेस को मिलाकर कुल 53 राजनीतिक पार्टियां थी। 1957 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 15 पार्टियां थी। 1962 के लोकसभा चुनाव में 27 राजनीतिक पार्टियां, और कांग्रेस के पास ये एडवांटेज था कि वो इनमें भी सबसे बड़ी पार्टी थी और उसके बराबर किसी और पार्टी का ना कद था ना संगठन। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब लोकसभा चुनाव में 464 पार्टियों ने चुनाव लड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में 673 पार्टियों ने चुनाव लड़ा। 2024 में रिकॉर्ड 743 पार्टियों ने चुनाव लड़ा था, और इससे यह पता चलता है कि मौजूदा वक्त में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ज्यादा बढ़ी, जिसके कारण 1984 के बाद हमारे देश में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। लेकिन अगर इस प्रतिस्पर्धा में भी जनता ने भारत की राजनीति को उस गठबंधन युग से बाहर निकाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में प्रचंड बहुमत मिला, लगातार उन पर भरोसा दिखाया, तो उसका मतलब यह है कि भारत के लोग हमारे देश में राजनीतिक स्थिरता चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि यह किसी लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ 2014 के बाद 2019 भी आया जब प्रचंड जनादेश बीजेपी के पक्ष में गया। दोनों ही बार 14 और 19 में उनको अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जनता ने चुना, लेकिन 2024 आते आते यहां भी गठबंधन से ही सरकार बनी। जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी के सहयोग से ही इस वक्त बीजेपी की केंद्र में सरकार है। देखिए, जब जब किसी देश में ऐसी राजनीतिक स्थिरता आई है उस देश पर पूरी दुनिया का ध्यान गया है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका की जनता को इतना भरोसा था कि उन्होंने 33 से 45 के बीच 4 बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। ऑस्ट्रेलिया के रॉबर्ट मेंजिस लगातार 16 साल 38 दिनों तक अपने देश के पीएम बने रहे थे। जर्मनी के पूर्व चांसलर हेलमुट कोल ने भी कई चुनाव जीते और वो 16 साल 26 दिनों तक इस पद पर रहे। ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर 3 चुनाव जीती, 11 साल 209 दिनों तक उन्होंने ब्रिटेन की सरकार का नेतृत्व किया, और ये वही ब्रिटेन है जिसने भारत को आजाद करते वक्त कहा था कि यहां के लोग इस देश को चला नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने

0: देश ने जो कुछ हासिल किया वो दुनिया देख रही है, लेकिन अब हमें अपनी दृष्टि आगे की ओर रखनी है। हमें 2047 के लक्ष्य को देखते हुए उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी स्पीड को और बढ़ानी होगी। महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, NDA सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही। और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा, तेज गति से आगे बढ़ेगा। सवाल यह है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और NDA ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा।
1: और अब हम सूरत से आई एक खबर की बात करेंगे, जहां पिछले 10 दिनों से 100 से ज्यादा परिवार भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे तपने को मजबूर हैं। वजह यह है कि जिस घर में वो पिछले 40 वर्षों से रह रहे थे उसे अवैध बताकर तोड़ दिया गया। लेकिन यह मामला केवल इतना सा नहीं है, डेमोलिशन की इस कार्रवाई में सरकारी मशीनरी का तो इस्तेमाल हुआ लेकिन सरकारी नियमों का पालन नहीं किया गया। जो लोग पिछले 40 साल से रह रहे थे उन्हें 30 मई को अचानक सुबह सुबह उठाया गया, कहा गया कि घर बुलडोजर चलाया जाएगा उनके। जब तक उनको समझ में आता कुछ तब तक JCB की पोकलेन मशीन ने दीवारों में छेद करना शुरू कर दिया। कार्रवाई का विरोध जब तक होता तब तक 100 से ज्यादा घर गिराए जा चुके थे। ना कोई नोटिस, ना कोई चेतावनी, सीधा कार्रवाई। इस कार्रवाई पर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन हंगामा इस बात पर नहीं है कि मकान क्यों गिराए गए, हंगामा इस बात पर है कि मकान गिराए किसने। तो सुनिए, आमतौर पर जब अवैध मकानों को गिराने की कार्रवाई होती है तो स्थानीय प्रशासन की सहमति होती है, फिर नोटिस दिया जाता है, इसके बाद एक्शन होता है। लेकिन नासिर नगर में किसके आदेश पर मकान गिराए गए ये कोई जानता ही नहीं, नोटिस की तो बात ही मत कीजिए। लोगों का कहना है कि कार्रवाई के वक्त सूरत नगर निगम के 25 से 30 अधिकारी मौजूद थे, उनके बुलडोजर, पोकलेन मशीन्स और ट्रक भी थे। कोई हंगामा ना हो इसके लिए सूरत पुलिस की SOG टीम को भी वहां बुलाया गया, लेकिन इसके बावजूद सूरत नगर निगम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि एक्शन उनके आदेश पर हुआ। अब ये कितनी हैरानी की बात है, 100 से ज्यादा मकानों को बिना नोटिस के तोड़ दिया गया और अब पता नहीं चल रहा है कि ये काम किया किसने। आप सोचिए, किसी दिन एक बड़ी सी टीम आपके दरवाजे के सामने बुलडोजर लेकर आए, घर तोड़ दे, ये भी ना पता चले कि वो कौन है या किस डिपार्टमेंट से है। सूरत में यही हुआ और अब इसी को लेकर राजनीतिक बवाल मचा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सूरत के सरकारी अधिकारियों को बुलडोजर एक्शन की सुपारी दी गई थी।
2: सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर के घर के बाहर हंगामा हो रहा है। हंगामा करने वालों का एक ही सवाल है कि उनके घर किसने तोड़े और अगर तोड़े तो नोटिस क्यों नहीं दिया गया। घर अवैध थे या वैध, इस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले मकान पर बुलडोजर एक्शन देखिए। सूरत प्रशासन ने नोटिस देने में तत्परता नहीं दिखाई, लेकिन मकान गिराने का एक्शन पूरी कर्मठता से किया।

0: सूरत प्रशासन ने लोगों को पता ही नहीं चलने दिया कि वो उनके मकान तोड़ने आए हैं। लोगों से कहा गया कि बस्ती से रास्ता बनाने के लिए मार्चिंग होनी है और जैसे ही लोग निश्चिंत हुए वैसे ही मकान गिरा दिए गए।
1: 8:30 बजे आए थे हम लोग, तो घर में सोए हुए थे। ये लोग आए, दरवाजे ठोके, बोले चलो तुम बाहर निकलो। तो हमने पूछे कि भाई किस चीज के लिए आए, तो बोले ये बोल रहे थे कि हमको घर डेमोलेट करना है। तो हमने बोले भाई हमारे को कुछ टाइम दो, ये वो पुलिस एसओजी के जो मेन थे वो हमारे को टाइम देने से मना कर रहे थे, भाई तुम्हें कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, तुम अभी निकलो।
2: सुबह में आए शनिवार के दिन, 30 मई के दिन सुबह में आए, ऐसे बुलडोजर लेके सब पुलिस कर्मचारी बोल रहे हैं, हम पुलिस मतलब म्यूनसिपालिटी वाले पुलिस कर्मचारी सब आ गए डायरेक्ट। सब सोए हुए थे, किसी को कुछ पता नहीं भाई क्या हो रहा है, बस खटखटाए दरवाजा, बोले बस खाली करो, सामान खाली करो, चलो घर खाली करो।
0: वैसे 40 वर्षों से यहाँ रह रहे लोगों की शिकायत उनके मकानों को गिरा दिया जाना नहीं है, शिकायत ये है कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया। और नोटिस क्यों नहीं दिया गया, इस सवाल का जवाब नगर निगम के पास भी नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक जब उन्होंने एक्शन ही नहीं लिया है तो नोटिस किस बात का।
3: इतना बड़ा मेगा डिमोलिशन है तो ऐसे तो नहीं होता, कोई सामान्य एक आदमी भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं जान रहा हूँ, पूछताछ कर रहा हूँ और मैं आगे की भी पूछताछ करूंगा कि किसने और कैसे हुआ, लीगल हुआ है या अनलीगल हुआ है, ये जानकारी लेनी चाहिए मुझे और मैं ले रहा हूँ।
4: नियति कितनी क्रूर हो सकती है और वक्त का पहिया किसी हंसते खेलते परिवार को किस कदर मटियामेट कर सकता है, इसकी एक खौफनाक और कलेजा चीर देने वाली दास्तान दिल्ली में देखने को मिली। एक बुजुर्ग पिता अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता, अपने बेटे, अपनी पत्नी, अपनी पोतियों का इंतजार करता। डॉक्टर और देखरेख कर रहे जितने अस्पताल के लोग थे उनसे बार बार पूछता कि आज कोई मिलने आया, मुझसे आज परिवार का कोई मिलने आया, मेरा बेटा आया क्या। बार बार हॉस्पिटल वाले झूठ बोलते रहे, बहाने बनाते रहे, क्योंकि वो सच इतना भयानक, इतना खौफनाक था जिसे सुनने की हिम्मत और ताकत शायद उस बुजुर्ग में थी ही नहीं। और अब वो बुजुर्ग भी इस दुनिया को अलविदा कह गए, वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन कभी ये नहीं जान पाए कि उनका परिवार जिसके आने का वो इंतजार कर रहे थे वो तो कई दिन पहले ही दिल्ली की एक भयानक आग में जलकर खाक हो चुका था। ये कहानी है गुरुग्राम के 76 साल के राधेश्याम अग्रवाल की, जो फेफड़ों के गंभीर संक्रमण के चलते दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती थे। पिता की हालत बिगड़ी, उनका पूरा परिवार उन्हें सहारा देने उनके पास रहने दौड़ा चला आया। बेटा विवेक, पत्नी प्रेमलता, बहू तर्जनी, पोतियां जीविशा और वार्या। जीविशा तो दादा का हाल जानने के लिए महज कुछ घंटे पहले ही बेंगलुरु से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली आई थी। इसके अलावा 3 और रिश्तेदार उनके साथ आए। अस्पताल के करीब रहने के लिए इस परिवार ने मालवीय नगर के एक होटल में कमरा लिया। 3 जून की वो मनहूस सुबह जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, तभी होटल की 5 मंजिली इमारत में आग लग गई। देखते ही देखते धुएं और लपटों ने सबको अपने आगोश में ले लिया। इस दर्दनाक अग्निकांड ने राधेश्याम अग्रवाल के परिवार के 8 लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला। 3 पीढ़ियां एक झटके में खत्म हो गई। लेकिन इस खौफनाक हकीकत से बेखबर राधेश्याम अस्पताल के बेड पर बस एक ही जिद लगाए बैठे थे, मेरा बेटा विवेक कहां है, मेरी पत्नी नहीं आई। अस्पताल का स्टाफ हर रोज उनसे नया झूठ बोलते थे, कहते थे कि विवेक किसी काम से जयपुर चले गए हैं, वो जल्द आएंगे आपके बेटे। आखिर ऐसी हिम्मत जुटा पाना मुश्किल था कि कैसे सच बताया जाए, सच बताते तो वो शायद उसी वक्त सदमे से ही दम तोड़ देते। दिन बीतते गए, अपनों की एक भी सूरत नजर ना आने पर शायद बुजुर्ग पिता का दल किसी अनहोनी को भांप चुका था। सोमवार को वो बेहोश हुए, मंगलवार सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। अपने बेटे, पत्नी, बहू, पोतियों की राह देखते देखते राधेश्याम अग्रवाल इस दुनिया से चले गए। लेकिन जीते जी वो ये कभी जान नहीं पाए कि जिस बेटे का वो इंतजार कर रहे थे वो कब का खाक हो चुका था। जिस परिवार को वो पीछे छोड़ जाने से डर रहे थे वो परिवार तो उनसे पहले ही शमशान घाट पहुंच चुका था। मौत जिंदगी का सत्य है, लेकिन नियति का ये क्रूर मजाक रूह कपा देने वाला है। एक पूरा हंसता खेलता परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहा। राधेश्याम अग्रवाल चले गए, लेकिन शायद उनका ना जानना ही उनके लिए आखिरी सुकून रहा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा सच था जिसे बर्दाश्त कर पाना किसी भी इंसान के लिए मुश्किल था। इस दर्दनाक घटना ने पूरी दिल्ली देश को झकझोर दिया है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और शातिर लोग कभी पूरी बात नहीं बताते, वो उतनी ही बात बताते हैं जितनी में वो सही होते हैं। नमस्कार।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 10 जून यानी इतिहास के पन्नों में दर्ज नए कीर्तिमान की तारीख। लगातार सबसे लंबे समय तक जनता की वोट के दम पर मिली जीत से प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड अब नरेंद्र मोदी के नाम है। मोदी ने आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन तोड़ने से अधिक यह तारीख जोड़ने के लिए याद रहेगी, जो बताती है कि जनता से जुड़ने वाला लीडर ही जनता का उस दौर में सुप्रिय बन जाता है जब लगातार 3 बार सत्ता हासिल करना दुनिया के विभिन्न लोकतांत्रिक देशों में असंभव है। लेकिन जनता को भगवान मानने वाले नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को सत्ता का प्रसाद जनता सौंपकर सब संभव कर देती है।
1: जैसे यहां बताया गया कि मैं पहली बार यहां आया हूं, शायद मेरे जीवन में हर बार ऐसा ही हुआ है। मुख्यमंत्री बना उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री की चैम्बर देखी थी, मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने विधानसभा गृह देखा था। आज भी ऐसा ही एक अवसर आया है, लेकिन हम इस ऐतिहासिक स्थान पर बैठे हैं। तब मैंने प्रारंभ में कहा यह लोकतंत्र का मंदिर है, 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं इस पवित्र मंदिर पर टिकी हुई है।
2: लोकतंत्र के उसी मंदिर में अब 140 करोड़ लोगों की आकांक्षा की पूर्ति के लिए प्रधान सेवक के पद पर नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के विश्वास को ऐतिहासिक 12 साल हो चुके हैं। जब नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो कैबिनेट ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, प्रधानमंत्री को बधाई दी, मंत्रियों ने उनकी उपलब्धि पर खड़े होकर तालियां बजाई, मेज थपथपाई। 12 साल कहना शायद पूरी तरह सही ना हो, सही होगा कहना कि 4,399 दिन से नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। जिस दौर में सत्ता से हाथ छूटने पर गठबंधन का साथ छोड़ने में पल भर सियासत नहीं लगाती, राजनीति के उस युग में भी 35 दल 75 नेता 22 मुख्यमंत्री को साथ लेकर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, आज से नहीं लगातार अनवरत निरंतर।
3: मैं अभिभूत हूं, कृतज्ञ हूं। चरैवेति चरैवेति के मंत्र का जाप करते हुए इस राजनीतिक यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए एक दिन ये पड़ाव भी आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था।
2: 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई, संसदीय दल ने नेहरू को अपना नेता चुना। पंडित नेहरू 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक लगातार निर्वाचित पीएम रहे। नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल 4,398 दिन का रहा। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री 4,399 दिन अब पूरे कर चुके हैं, इसीलिए निर्वाचित पीएम के तौर पर मोदी ने कीर्तिमान रचा है। उसी कीर्तिमान को रचने वाले ऐतिहासिक मौके पर भारत मंडपम में पूरा एनडीए एकजुट होता है। रिकॉर्डधारी प्रधानमंत्री का लगातार जनता के बीच चुना जाना क्यों ऐतिहासिक है, ये गृह मंत्री बताते हैं। एनडीए की इसी बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पीएम मोदी के सम्मान में एक विशेष प्रस्ताव पेश करते हैं। प्रस्ताव में पीएम मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री बनने का उल्लेख किया जाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और बताते हैं कि मोदी केवल 12 साल के नहीं बल्कि इस सदी के लीडर हैं।
4: 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू नरेंद्र मोदी जी, ऑलवेज इज एनर्जेटिक, नॉट ओनली एनर्जेटिक, ही विल गिव एनर्जी फॉर अदर्स, दैट इज हाउ ही इज मेंटेनिंग हिमसेल्फ। फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी जी इज इक्वल टू एनी लीडर इन द वर्ल्ड, I can say very clearly, all surveys are indicating who is very popular leader globally, That is our honorable Prime Minister. That is our pride for the nation. We are very happy for that.
5: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल, सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व में आज हमारा भारत विकास और समृद्धि के नए क्षितिज को छू रहा है। मोदी जी के इसी मजबूत नेतृत्व के बदौलत आज देश विकसित भारत बनने की राह पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज भारत सिर्फ प्रगति ही नहीं कर रहा है बल्कि प्रगति की नई परिभाषा लिख रहा है।
6: हम लोग इस गठबंधन का हिस्सा बने और पिछले 12 सालों से निरंतरता से न सिर्फ हमारा ये रिश्ता मजबूत रहा बल्कि एनडीए गठबंधन का दायरा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कहीं और राजनीतिक दल इस गठबंधन का हिस्सा बने उसका कारण सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सबको एक साथ लेकर चलने की उनकी सोच, सबको परिवार की तरह उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े होने की सोच ने ही उनको आज देश के सर्वोच्च नेता की श्रेणी में सबसे आगे उनको खड़ा करने का काम किया।
2: जिस वक्त विपक्ष चुनावी हार के बाद बिखरा हुआ है तब सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए नए उच्चमान स्थापित करते नरेंद्र मोदी एनडीए की बैठक में कांग्रेस शासनकाल याद कराते हैं। बताते हैं कि पहले विफलता कांग्रेस की होती रही लेकिन कलंक हिंदू आबादी पर लगाया जाता रहा।
3: सवाल ये है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा।
0: हमारे भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है वहां पर नेता पर विश्वास होना अपने आप में अभूतपूर्व है। हमारे देश की जनता का मोदी को पिछले 12 वर्षों से दिया जाने वाला समर्थन मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनाता है। जहां एक तरफ दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों की सरकारें कमजोर हो रही हैं, नेताओं को अपने पद से हाथ धोना पड़ रहा है, वहीं नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री पद पर रिकॉर्ड बनाकर मिसाल कायम कर रहे हैं।
7: प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस।
8: आई डोंट नीड टू टेल एनीवन हियर, ही इज द मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर फॉर अ रीजन।
9: I think you are an inspiration for the rest of the world.
10: I think is that the most loved one of all around the world.
11: Prime Minister Sri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude.
12: I am a fan of Modi, so his vision for digital India, was ahead of its time.
2: नरेंद्र मोदी भारत में सबसे लंबे वक्त तक सत्ता के शिखर पर रहने वाले नेता ही नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुनिया के भी सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं।
3: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
4: ए हिस्टोरिक ट्रिब्यूट टू इंडिया लॉन्गेस्ट सर्विंग कंटिन्यूअसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 32 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सर्वोच्च या नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुकी हैं, जिसमें फ्रांस, रूस, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं। जब दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में जनता सरकारें बदल रही हैं, तब भारत में 12 वर्षों से नेतृत्व और नीतियों में निरंतरता है। यही बात दुनिया को नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान से भर देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जो मोदी की तारीफ का कोई मौका नहीं छोड़ते। आज तक से बातचीत में पुतिन ने मोदी को लेकर जो कुछ कहा था वो आपको सुनना जरूरी है।
13: He's a very reliable person. In that sense, I'm speaking very sincerely. India got lucky. He lives India. I'm talking to him and I know him.
2: Vladimir Putin ho ya fir duniya ka dusra koi bada neta, sab ki ek raay hai ki dabao dalkar Narendra Modi ko jhukana namumkin hai.
3: Aaj global growth mein Bharat ki hissedari lagatar badh rahi hai. Isliye Bharat ko ab global parameters, global competition और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है. दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है. दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतरकर दिखाना है. साथ में हमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है. हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है.
2: मोदी की यही बात दोस्तों को भाती है, जिनके लिए भारत किसी प्रेरणा से कम नहीं है. ये बात दुनिया भर के नेताओं की तरफ से भेजी गई शुभकामनाओं में भी दिखती है. दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने बधाई संदेश में लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने कई वर्षों तक भारत के विकास और प्रगति का नेतृत्व किया है. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि न केवल आपके कार्यकाल की अवधि को दर्शाती है, बल्कि उस भरोसे और विश्वास का भी प्रमाण है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता ने बार बार आपके नेतृत्व में जताया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने भारत की सीमाओं से परे श्रीलंका सहित कई देश के लोगों को प्रेरित किया है. पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक निजी वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को एक रोल मॉडल और लीडरशिप की मिसाल बताया है.
14: Congratulations on reaching a historic milestone, the longest continuous prime minister of the great country of India. You have now surpassed the record as the longest serving prime minister of India.
2: प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री पद पर रहने के 4,398 दिन के रिकॉर्ड को ही पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि वो 9,013 दिन से सत्ता के शिखर पर रहने वाले एकमात्र नेता है जो लगातार सीएम और पीएम पद पर रहते हुए 25 साल पूरे कर चुके हैं.
3: मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा.
2: प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने वालों में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पिछले दिनों रोम में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके और एक विशेष रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत करके खुशी हुई, जो भविष्य में हमारे देशों और लोगों के लिए नए अवसर बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगी. दुनिया भर के करीब 20 देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को 146 करोड़ लोगों का नेतृत्व करते हुए 12 साल पूरे होने पर बधाई दी. दुनिया के लिए हैरानी की बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी इतनी लंबी पारी खेलने के बावजूद भारत की तरह पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कैसे हैं? ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट ने अप्रैल 2026 में बताया कि मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा 70% अप्रूवल रेटिंग वाले नेता हैं. उनके बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग 63% अंकों के साथ हैं. ईरान संघ युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे नीचे से 10वें नंबर पर हैं.
3: इन वन डेकेड इंडिया हैज सीन अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन देन वी वेर द 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. नाउ we are knocking on the doors of the top three.
2: बड़ी बात यह है कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले दूसरे देशों के नेताओं की छवि लगातार वहां की जनता की नजरों में कमजोर हो रही है. जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज सर्वे में दुनिया के सबसे अलोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं. करीब 76% उत्तरदाताओं ने उनके कामकाज से असंतुष्टि दिखाई, जबकि वो पिछले साल मई महीने में जर्मन चांसलर बने. सर्वे में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके काम से 75% उत्तरदाता असंतुष्ट रहे। लोकतांत्रिक देशों में नेताओं की इस अलोकप्रियता की वजह जंग के कारण महंगे तेल से बढ़ती महंगाई और कमजोर होती उनके देश की अर्थव्यवस्था है। खतरनाक होती दुनिया नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, जिसके असर से जनता को बचाने में मोदी सरकार अब तक खुद को कामयाब बताती है।
0: चुनावी समीकरण अब बदलते जा रहे हैं। अब एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी को अपनी शक्ति बीजेपी बना रही है। गवाही पहले गुजरात मध्य प्रदेश दिया करते थे, अब हरियाणा असम महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश बिहार समेत विभिन्न राज्य दे रहे हैं। जहां लगातार दो बार नहीं बल्कि लगातार तीन बार चुनावी विजय हासिल करने में बीजेपी सबसे आगे है, कांग्रेस तो दूर दूर तक नहीं है। और क्या यही कारण है कि लगातार चौथी बार 2029 में भी जीत का चौका लगाने की जमीन नरेंद्र मोदी तैयार करने में लग गए हैं?
15: मोदी है तो मुमकिन है।
16: देश की आस्था और विश्वास प्रधानमंत्री जी के साथ,
17: वो अतिमानव सुपर ह्यूमन है।
2: 4,399 दिन का कार्यकाल और लगातार बनते रिकॉर्ड के साथ नरेंद्र मोदी पर बीजेपी की विजय विस्तार और मजबूत आधार का भरोसा हर नेता कार्यकर्ता को है। तो इसकी वजह क्या है, समझना है तो 46 साल पहले चलिए। भारत के पश्चिमी छोर पर मौजूद मुंबई, अरब सागर के किनारे मौजूद भारत की आर्थिक राजधानी, अब से 46 साल पहले साल 1980 अरब सागर के तट पर मुंबई में बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में एक भविष्यवाणी होती है।
18: भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा।
2: अब देश के 22 राज्यों और 72% क्षेत्रफल के साथ 78% आबादी वाले राज्यों में बीजेपी या एनडीए का कमल खिल चुका है। और यहां कमल खिलाने के साथ ही नरेंद्र मोदी अब 2029 के लक्ष्य में जुट चुके हैं। बड़ी खबर ये कि 2024 में बीजेपी को लगातार तीसरी बार अपने दम पर बहुमत पाने से रोक लेने में जिस विपक्ष को सबसे बड़ी जीत लगने लगी थी,
19: कांग्रेस पार्टी, आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ।
2: लगातार तीन बार देश का चुनाव जीतने वाले नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 के नतीजे से एक खिड़की खुलने से उत्साहित विपक्ष को अंदाजा नहीं है कि दो साल के भीतर बीजेपी वापस अपनी पकड़ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मजबूत करने लगी है।
3: हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम मेड इन इंडिया शिप पर ट्रेड करेंगे और कंटेनर भी मेड इन इंडिया होंगे। शिप मेंटेनेंस और रिपेयर से लेकर स्क्रैपिंग तक की सर्विसेज भी भारत देगा। यही विजन हमारे एविएशन सेक्टर के लिए है। आज हम मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाएगा। देशवासी मेड इन इंडिया विमान में ही यात्रा करेंगे, वो दिन मैं देख रहा हूं दोस्त।
2: 2024 के बाद अब तक देश के 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की इन राज्य में 497 असेंबली सीट पर बढ़त थी, जो अब बढ़कर 664 हो चुकी है, यानी 167 विधानसभा सीट के फायदे में बीजेपी आ चुकी है। इसे लोकसभा सीट के तौर पर बदले तो 21 लोकसभा सीट का फायदा बीजेपी को अब तक हो चुका है। इसी दौरान कांग्रेस की स्थिति पलटी है, वो 353 सीटों से घटकर 171 विधानसभा सीटों पर आ गई, जिससे उसे 182 विधानसभा सीटों का नुकसान होता दिखता है। 12 वर्षों में एक बार फिर जहां नरेंद्र मोदी वापस सत्ता की सियासत में वही मजबूती हासिल करने लगे, जिसके लिए उनकी पहचान नहीं, तो इसकी वजह विपक्ष की उन चालों से सावधान रहना भी है जिसे वाजपेयी युग में नरेंद्र मोदी देख चुके हैं।
20: हमने मेहनत की, हम लोगों में गए हैं, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, ये कोई चुनाव में कुकर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी।
2: पिछली सदी में 90 के दशक में सत्ता तक बीजेपी पहली बार पहुंचती है, लेकिन 96 से 1998 तक विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को रोकता रहा, बाधा बनता रहा।
20: इस सदन में एक एक व्यक्ति की पार्टियां, एक एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे साथ हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे।
2: अप्रैल 1999 जब एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी, विपक्ष की राजनीति के उन दांव पेच को नरेंद्र मोदी भूले नहीं।
3: खरीद फरोख्त तब भी हो सकती थी, बाजार में माल तब भी बिकता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार ने एक वोट से हारना पसंद किया, इस्तीफा दिया, लेकिन असंवैधानिक कोई कृत्य नहीं किया।
2: नरेंद्र मोदी जानते हैं कि विपक्ष बार बार अलग अलग तरह के गठजोड़ करके उन्हें भी रोकने में जुटा है, इसीलिए वो कोर्स करेक्शन वाली राजनीति बहुत तेज करते हैं, जिसका नतीजा है कि मोदी राज में बंगाल जीतने के बाद 9 राज्यों में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बन चुका है। 3 बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुमत के साथ सरकार बना चुकी बीजेपी एनडीए ने विधानसभा के चुनावों में भी नई लकीर खींची। 2014 से अब तक 72 बार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए, तो 32 बार राज्यों के सीएम बीजेपी के बने, 10 बार राज्यों में गठबंधन की सरकार बनी, 42 बार बीजेपी एनडीए को सत्ता मिली, 30 राज्यों में बीजेपी और एनडीए को हार का सामना करना पड़ा।
0: बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। एकमात्र झारखंड राज्य के अपवाद को हम छोड़ दें तो जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कमल खिला, वहां से फिर कभी कमल मुरझाया नहीं। रिपीट जीत से लेकर बीजेपी सरकारों की जीत की हैट्रिक से राजनीति शास्त्र के पन्ने भर दिए गए, जो मोदी की राजनीति पर जनता के विश्वास की मुहर लगाते हैं।
21: शुभेंद्र अधिकारी।
2: 9 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वें ऐसे राज्य में अपनी पार्टी का इकबाल बुलंद होते देख रहे थे जहां पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ ले रहा था। याद आया होगा वो वक्त भी जब पूरे देश में बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर थी, अब 22 राज्यों में, उसमें भी 9 राज्यों में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री।
3: दल से हमेशा अगर बड़ा कुछ है तो हमारा देश है, दल से बड़ा देश है। और जब नेशन फर्स्ट, देश प्रथम की भावना से काम होता है तो कोई भी निर्णय कठिन नहीं होता।
2: समर्थक इसे प्रधानमंत्री मोदी के शासन में बीजेपी का स्वर्णिम काल कहते हैं। गुजरात में 1995 से बीजेपी की निरंतर सरकार, 2003 से मध्य प्रदेश में, बीच के 15 महीने छोड़ दो तो 2 दशक से अधिक समय से बीजेपी ही सत्ता में है। गोवा में 2012 के बाद से बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के विचार पुरुषों ने सरकारों के स्थायित्व की जो परिपाटी डाली, नरेंद्र मोदी उसे बुलंदियों के छोर तक ले गए और न सिर्फ स्थायी सरकारों के रिकॉर्ड का विस्तार किया बल्कि असंभव राज्यों में भी सरकारें बनाकर राजनीति का स्थायी परिवर्तन संभव किया। जहां बीजेपी कभी थी ही नहीं, वहां भी उनके मुख्यमंत्री हुए। 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। अविभाजित शिवसेना के साथ पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। 2014 में ही हरियाणा की जीत के बाद पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल खट्टर ने शपथ ली। बीजेपी यहां जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। 2016 में पहली बार बीजेपी असम में जीती और पूर्वोत्तर में मोदी युग शुरू हुआ। सर्वानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने, यहां भी बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई। बीजेपी ने 2016 में पहली बार अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाई और पेमा खांडू मुख्यमंत्री बने। 2017 में बीजेपी ने मणिपुर में गठबंधन सरकार बनाई और पहली बार बीजेपी के एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। सीमावर्ती राज्य में ये बीजेपी की पहली सरकार थी।
1: 2018 में लेफ्ट दलों के सबसे मजबूत समझे जाने वाले गढ़ त्रिपुरा में बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की और अब तक लगातार दो बार वहां बीजेपी की सरकार है। 2024 में नवीन पटनायक के 24 वर्षों के शासन को खत्म करके पहली बार बीजेपी ने बहुमत से सरकार बनाई। 2026 में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ ली। 2026 में ही पश्चिम बंगाल में भी पहली बार बीजेपी का राज स्थापित हो चुका है और शिवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का विस्तार लगातार जारी है।
0: आतंकवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साल 2014 को बीजेपी की तरफ से बड़े बदलाव के तौर पर पेश किया गया। बीजेपी का दावा है कि मोदी सरकार आने के बाद हमारे देश ने पहली बार आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति और उसके परिणाम देखे, जो आतंकवाद के विरुद्ध किसी भी हद तक जा सकते हैं।
5: सेना का नुकसान करने के लिए थी तैयारी, हमने उनसे सीने पर चढ़ कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी।
22: वाह वाह,
23: भारत माता की जय। मैदान में भी गूंजती है और मिशन में।
1: साल 2014 के बाद आतंक से निपटने का तरीका भारत ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक से जंग में एक नई लकीर खींच दी। पाकिस्तान को पता चल गया कि धर्म के नाम पर भारतीयों का लहू बहाने का अंजाम क्या होता है।
3: हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया।
1: आतंकवाद पर नरेंद्र मोदी की इस कठोर नीति और नए दृष्टिकोण ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को नया रूप दे दिया, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है।
3: पहले भारत आतंक के हमलों के बाद चुपचाप दर्द सहता रहता था। हमने आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा। साथियों, पहले मान लिया गया था कि नक्सलवाद, माओवाद अब कभी नहीं खत्म होने वाले हैं, कभी खत्म हो ही नहीं सकते। हमने देश को नक्सलवाद, माओवाद के उस जहर से मुक्त करके दिखाया है।
1: ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के साथ उन्हें शरण देने वाली पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को ध्वस्त करके दुश्मन को चौंका दिया।
3: हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे।
1: भारत ने बता दिया कि जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। जो भी भारत की ओर आंख उठाएगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
3: मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। हड़प्पा मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है।
1: तो नरेंद्र मोदी के भारत में बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकता, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। यही वो बदलाव।
3: कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा।
2: मोदी सरकार ने सीमा पार आतंकवाद के जवाब में जवाबी कार्रवाई पर केंद्रित एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति अपनाई है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले आतंक पर अभूतपूर्व कार्रवाई की पहली मिसाल वाली नींव साल 2016 में उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स रखी गई। साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक ने इसे एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन आतंकवाद विरोधी रणनीति में ऑपरेशन सिंदूर मील का पत्थर साबित हुआ। जिसमें पहलगाम हमले के बाद 9 आतंकी शिविरों और 11 पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया। देश ने पहली बार जैश ए मोहम्मद के गढ़ बहावलपुर और लश्कर ए तैयबा के मुरीद के अड्डे को खंडहर होते हुए देखा। इस ऑपरेशन में यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद समेत 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए।
3: जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है।
2: मोदी सरकार अपनी इन्हीं कार्रवाइयों के आधार पर साल 2014 के बाद बदली नीति का सबूत बताती है। पिछली कांग्रेस सरकारों पर आरोप लगाती है कि 1947 में पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को हड़पने की नीति का अगर कारगर जवाब दिया गया होता तो भारत को लहूलुहान करने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं कर पाता। लेकिन मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से आतंक के खिलाफ एक निर्णायक लकीर खींच दी, जिसे पार करने का अंजाम पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ ही उसकी सेना को भी भुगतना पड़ता है।
0: सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य करने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम बन चुका है और वो अभी भी प्रधानमंत्री हैं। इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। 12 साल में कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ देश। इन्होंने धीमे विकास को कहा था हिंदू ग्रोथ रेट। बोले 2047 तक विकसित भारत हमारा संकल्प। एनडीए की बैठक में नेताओं ने की प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। अभिनंदन प्रस्ताव पास। शुभेंदु ने खिलाई झालमुरी। ट्रंप ने भी बधाई संदेश में बताया अपना दोस्त। ममता को फिर लगा बड़ा झटका। बागी गुट के 19 लोकसभा सांसदों ने जारी की है लिस्ट। शत्रुघ्न सिन्हा और सायोनी घोष का भी नाम। भूपेंद्र यादव के घर कुछ नेताओं की बैठक। कांग्रेस को लगी दोहरी चोट। झारखंड में एनडीए समर्थित राज्यसभा प्रत्याशी परिमल नाथवानी का पर्चा मंजूर। एमपी में मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर आयोग जल्द करेगा फैसला। और ईरान पर फिर बारूद बरसाएंगे ट्रंप। का निशाने पर है पावर प्लांट और पुल। पिजिश्कियान ने बताया हताशा भरा कदम। ममता बनर्जी को झटके पे झटका लग रहा है। राज्यसभा की सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ दी। राज्यसभा की सदस्यता भी छोड़ दी। उनसे पहले सुखेंदु रॉय ने साथ छोड़ा था। सत्ता जाने के बाद अब टीएमसी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है।

0: अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिल रहे हैं। ममता बनर्जी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और केजरीवाल से मिल रही हैं। और मुलाकात का मजमून ये है कि दिल्ली में बैठकर ममता अपना राजनीतिक वजूद बचाने की जद्दोजहद कर रही हैं, लेकिन वो वजूद बचता नहीं दिख रहा। पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, आज सुष्मिता देव पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता दोनों छोड़ गई।
1: मैं किस तरह की राजनीति करूंगी, कहां से करूंगी, ये मेरा निर्णय है और मेरा हक है, क्योंकि राज्यसभा मुझे एक पार्टी से मिला था
2: जी।
1: हाँ, जहां विधायकों ने वोट दिया था, बंगाल के लोगों ने इनडायरेक्टली दिया था, तो अगर पार्टी से इस्तीफा दिया तो फिर राज्यसभा सीट भी छोड़ना चाहिए।
0: आज सुबह सुबह सुष्मिता देव की असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। दोनों असम से हैं तो लग यही रहा है कि सुष्मिता के इस्तीफे के पीछे हिमंता बिस्वा सरमा की बड़ी भूमिका है। ये भी तय लग रहा है कि इस्तीफे से खाली सीट पर उपचुनाव में बीजेपी सुष्मिता को उम्मीदवार बनाएगी।
1: मेरी राजनीति बंगाल में नहीं है, मेरी राजनीति असम में है
2: जी।
1: और मुझे असम में ही राजनीति करना है।
0: लेकिन ममता के सामने बड़ा सवाल ये है कि अब उनका क्या होगा, शायद वो आगे का रास्ता तलाश रही हैं।
3: जीतने के बाद भी बोले थे, बोलने की कोशिश किए थे, वहाँ पे सिस्टम नहीं है बोलने का, बोलने से सब रोकते हैं, जो नहीं बोलना है नहीं बोलना है, तो और अगर बोले भी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलते, आप 7 दिन 10 दिन इंतजार करो।
0: तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने दिल्ली आई ममता बनर्जी यहाँ से क्या हासिल कर लौटती है, क्योंकि कोलकाता में तो उनके लिए हर दिन भारी साबित हो रहा है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
4: मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस ने बुधवार को एक दिन का उपवास रखा, चुनाव आयोग पर निशाना भी साधा। चुनाव आयोग को इस पर फैसला करना है। अब
5: प्रदर्शन उस फैसले के खिलाफ है जिसमें मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता एक दिन का उपवास करके इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा सीट के लिए प्रत्याशी नहीं रहे। बाह में काली पट्टी बांधकर उपवास पर बैठे हैं कांग्रेस के नेता।
6: कांग्रेस के तमाम दूसरे नेता जो है वो राजधानी भोपाल में इकट्ठा हुए हैं और इस उपवास के जरिए मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द हुआ है, न केवल उसका विरोध जता रहे हैं बल्कि साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने राजनीति से प्रेरित होकर के मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को जानबूझ करके रद्द किया है।
5: उधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इधर दिल्ली में कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन के मामले में चुनाव आयोग में लिखित शिकायत दर्ज की। अब कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग को भी निशाने पर ले रहे हैं।
7: मैं तो बहुत पहले एक बात कही थी कि एक कुर्सी इलेक्शन कमीशन में डाल दीजिए, जो पर्ची बीजेपी ऑफिस से आए उसको सर्टिफिकेट दे दे, तो चुनाव का पैसा तो बचेगा देश का।
8: उस पे कोई FIR नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई सजा नहीं, लेकिन नामांकन रद्द कर दिया क्योंकि वो कांग्रेस की प्रत्याशी थी।
5: लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर था, इसलिए उसने जानबूझकर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करा दिया।
9: जिस दिन दिग्विजय सिंह जी को टिकट नहीं मिला तो उनके नेताओं ने खुलेआम बोला था कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होगी, और कांग्रेस को मालूम था क्रॉस वोटिंग होगी, और इसीलिए मेरा स्पष्ट आरोप है, मेरा स्पष्ट मानना है कि ये फॉर्म कांग्रेस ने स्वयं ने रिजेक्ट करवाया है।
5: मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद अब MP में तीनों सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट निर्विरोध हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: मुंबई में NCP का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया। शरद पवार ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की तुलना नेहरू के कार्यकाल से नहीं है, नहीं करनी चाहिए, सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश बेहद ही मुश्किल चुनौतियों से गुजर रहा था। शरद पवार ने इंदिरा गांधी को भी याद किया, 3 साल पहले NCP दो हिस्सों में बंट गई थी।

0: कई दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत का केंद्र रहे शरद पवार की मौजूदगी में एनसीपी का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में एनसीपी के स्थापना दिवस पर पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने नेहरू गांधी परिवार की विरासत का खुलकर बचाव करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। शरद पवार ने पहले प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल की तुलना पीएम मोदी के कार्यकाल से करने को गलत बताया।
1: नेहरू जिसके देश प्रधानमंत्री उससे जिसके देश अस्थायी प्रधानमंत्री आनंद
0: स्थापना दिवस के मौके पर शरद पवार की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा।
2: आज एनसीपी पार्टी का 27वां फाउंडेशन डे समारोह पूरा हुआ। मुंबई में सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता समेत खुद पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार उन्होंने सभी को संबोधित भी किया। हमारे साथ सांसद नीलेश लंके जी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कई सारे मुद्दों पर आज संबोधन हुआ, लेकिन सबसे अहम बात जो आज शरद पवार इन्होंने कही वो ये थी कि पीएम मोदी उनका सबसे ज्यादा कार्यकाल वो मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसकी तुलना सीधे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके कार्यकाल से की जा रही है, तो उस पर आपत्ति जताइए। क्या कहना है आपका? आप भी दिल्ली में संसद में काम करते हैं।
3: पवार साहब ने अभी बोला है नेहरू का और किसी का भी तुलना नहीं हो सकती। जो देश के लिए नेहरू गांधी परिवार ने किया है, गांधी परिवार ने तो देश के लिए बलिदान दिया है और नेहरू परिवार ने भी देश के लिए बहुत दिया है। आज की स्थिति और वो टाइम की स्थिति में बहुत बदलाव था, इसलिए नेहरू का काम सबसे ऊंचा ही है।
0: शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, पार्टी का कर्तव्य जनता की सेवा करना है, खासकर ऐसे समय में जब देश बढ़ती महंगाई और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जूझ रहा है।
2: आज जो संबोधन किया उससे क्या कुछ चीजें आप लेकर जा रहे हैं, क्योंकि संघर्ष का काल है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आंदोलन करने पड़ेंगे, सड़क पर उतरना पड़ेगा।
3: किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए आंदोलन करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे नेता ने ये सिखाया हमें सबको, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए आपने काम ही करना पड़ेगा। आज जो गवर्नमेंट में, राज्य में और सेंट्रल में काम करता है वो किसानों के खिलाफ का गवर्नमेंट है, बेरोजगारों के खिलाफ का गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट में कुछ एजेंडा नहीं, उसमें एक ही एजेंडा है, डेवलपमेंट का कोई एजेंडा नहीं, किसानों के लिए कोई एजेंडा नहीं। उनके पास यही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम राजनीति करने का और दंगल करने का काम करते हैं।
0: स्थापना दिवस के मौके पर इंदिरा गांधी के देशभक्ति को बताने के लिए शरद पवार ने मॉस्को की उनकी यात्रा का एक किस्सा भी सुनाया। वहीं एनसीपी शरद गुट के सांसद नीलेश लंके ने उनकी पार्टी में कथित बगावत की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया।
2: बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के पार्टी के भी सांसद अब एकनाथ शिंदे के गुट के संपर्क में हैं। क्या आपकी पार्टी पर भी ऐसा कुछ प्रयास किया जा रहा है किसी से?
3: नहीं, हमारी पार्टी और हमारे सांसद लोग, हम दिल्ली में सुप्रिया ताई के नेतृत्व में काम करते हैं। हमारे पार्टी में कोई भी ऐसा नहीं, बातचीत भी नहीं आने होने भी वाली नहीं। हम सब पवार साहब के साथ है और पवार साहब के साथ ही रहने वाले।
0: स्थापना दिवस के मौके पर शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले के साथ शरद पवार के पौत्र रोहित पवार भी मौजूद रहे।
4: आदरणीय पवार साहब ने हम सबसे मार्गदर्शन किया, हमको बताया कि लोगों की लड़ाई आप सबको रास्ते पे जाके लड़नी पड़ेगी। किसानों का विषय हो, विद्यार्थी का विषय हो, महिला सुरक्षा का विषय हो, या कोई भी जो बेरोजगारी का मुद्दा है, उसके लिए आप सबको रास्ते पे उतरना पड़ेगा। आज तक जो भी लड़ाई हमारे नेताओं ने वहां पे की है, जैसे प्याज का आंदोलन हो, विद्यार्थी का आंदोलन हो, उसी के साथ शिक्षकों का आंदोलन हो, ये और ज्यादा ताकती से लड़ने की जरूरत है। इसलिए 12 तारीख को किसानों के हित पे हम सब पंढरपुर, जो अतिशय पवित्र ठिकान है, वहां पे हम किसानों के लिए, कर्ज माफी के लिए वहां पे एक बहुत बड़ा अन्न त्याग आंदोलन वहां पे कर रहे हैं, और उसमें हमारा पक्ष हो, मित्र पक्ष हो, क्योंकि वो अपॉलिटिकल विषय है, बहुत सारे लोग वहां पे आएंगे ऐसे आप सबको लगता है, और ये आंदोलन के माध्यम से किसानों को न्याय देने की हम सब कोशिश करेंगे।
0: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर 10 जून 1999 को एनसीपी का गठन किया था, लेकिन जुलाई 2023 में एनसीपी उस समय विभाजित हो गई थी जब उनके भतीजे अजीत पवार शिवसेना बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार में शामिल हो गए थे, जिसके बाद ज्यादातर विधायक सांसद और बड़े नेता अजीत पवार के साथ चले गए थे। आखिर में चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी माना और शरद पवार की अगुवाई वाले गुट को एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम दिया गया। अपने संबोधन में शरद पवार ने महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन की उन टिप्पणियों की भी आलोचना की जिसमें उन्होंने सिख विरोधी दंगों के लिए कांग्रेस नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया था।
2: आज इस फाउंडेशन दिन के मौके पर हमने देखा कि सभी सांसद, सभी विधायक और सभी पदाधिकारी इकट्ठा यहाँ पर आए थे और उन्होंने शरद पवार ने किए हुए संबोधन को सुना और आगे जाकर इसी तरह संघर्ष करने का प्रण भी किया। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक बालेकर, मुंबई आज तक।
5: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का कंसा पासी किला विवाद अब बड़ा राजनीतिक रूप ले चुका है, बड़ा मुद्दा बन चुका है। लखनऊ के मलिहाबाद स्थित कंसा पासी किला विवाद में अब पासी समाज का संगठन लाखन आर्मी सड़कों पर उतर आया है। लाखन आर्मी ने सूरज पासी के अगुवाई में हरदोई से एक यात्रा की शुरुआत की है।
6: पासी स्वाभिमान यात्रा लखनऊ के लिए निकली है, हरदोई में इस यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। देखिए फूल माला से लदे हैं लाखन आर्मी के मुखिया सूरज पासी। दरअसल लखनऊ के अंदर एक नया विवाद पैदा हुआ है जिसमें कंसा पासी किले पर कब्जे को लेकर दलितों और मुसलमानों के बीच सियासी मुद्दा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में अब मलिहाबाद के कंसा पासी किला विवाद को लेकर खुद को पासी समाज का प्रतिनिधि बताने वाले लाखन आर्मी ने 31 जिलों में यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। हरदोई जिले से शुरू हो रही ये पासी स्वाभिमान यात्रा किले में शिव मंदिर को वापस पाने की मांग के साथ की जा रही है।
7: तो हमारे किला था, हमारे किले के धार्मिक स्थान थे, वो भी तो हमको संरक्षित चाहिए, वहाँ भी मजारे बना दी जा रही है, तो चिंता का विषय है। इसलिए आज हम उनकी किले को बचाने के लिए, उनके अस्तित्व को बचाने के लिए, उनके इतिहास को बचाने के लिए 31 जिलों में भ्रमण कर रहे हैं।
6: सिर्फ लाखन आर्मी ही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता भी यही मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान के दल के नेता आज कंसा पासी किले तक जाना चाहते थे मगर पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया।
8: लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता आज कंसा पासी को किले को लेकर निकले हुए हैं और साफ तौर से वहां जाना चाहते थे पासी पर, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो पुलिस ने पूरी तरीके से वहां पर रोका हुआ है।
6: एलजेपी रामविलास भी कंसा पासी के सम्मान की बात कर रही है।
9: पासी राजा, राजा कंस जी का किला, यह मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, यह पासी पासवान समाज के गौरव और विरासत की का प्रश्न है, उनकी लड़ाई है।
6: अब ओवैसी का दल आरोप लगा रहा है कि 2027 के चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान वाली सियासत को धार दी जा रही है।
10: अयोध्या का मामला जो है ठंडा नहीं हुआ था, एक अयोध्या के लिए यात्रा निकली थी, राजा कंसा पासी के किले को लेकर के यात्रा निकाली जाएगी। तो ये जो लोग हैं, ये देश के अंदर 2027 के चुनाव को देखते हुए एक नैरेटिव सेट करने के लिए नए नए सबूत तैयार कर रहे हैं।
6: उत्तर प्रदेश में इस बार दलित वोट की राजनीति में कई नए दावेदार नजर आने लगे हैं और कंसा पासी का किला उसके केंद्र में है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
5: ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। एक हेलीकॉप्टर पर हमले के चलते अमेरिका ने युद्ध विराम को धुआं धुआं कर दिया। पहले तो अमेरिका ने अपने एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने का दावा किया और फिर उसके जवाब में ईरान पर भीषण हमले शुरू कर दिए गए। आधी रात के बाद ईरान के 5 बड़े शहरों में धमाके शुरू हुए, तो बदले में ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर तबाही मचाना शुरू कर दिया है।
6: ईरान पर अमेरिका की फिर से चढ़ाई, अब होगी सबसे भयंकर लड़ाई। एक हेलीकॉप्टर पर हमले का बदला, अमेरिकी हमलों से ईरान दहला। ईरान पर अमेरिका की फिर से चढ़ाई, अब आगे होगी एटमी लड़ाई। अमेरिका ने ईरान के 20 ठिकाने उड़ाए, ईरान ने 21 अमेरिकी बेस दहलाए।

डोनाल्ड ट्रंप ने पीस डील करके जिस तरह से युद्ध विराम को धुआं धुआं किया है, ईरान ने भी अब जैसे नई जंग का प्रण ले लिया है। जिस तरह से अमेरिका ने ईरान में फिर से बारूदी तबाही मचाई है, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ईरान पर फिर से चढ़ाई के लिए एक बहाना ढूंढ रहा था। ईरान ने अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया था, बदले में अमेरिका ने ईरान के 5 शहरों में तबाही मचा कर रख दी। 8 जून की रात समंदर के बीचों बीच अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर पर ड्रोन से हमला होता है। हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट समंदर में कूद जाते हैं, लेकिन इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और फिर न सिर्फ युद्ध विराम टूटता है बल्कि जंग जहां से शुरू होती है हालात घूमकर वहीं आ जाते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के आदेश पर आधी रात को मिडिल ईस्ट में वो महाएक्शन हुआ है जिसने ईरान के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका ने इन हमलों को सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स कहा है, लेकिन ये हमले कितने सुनियोजित और घातक थे इसको समझाते हैं। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान को 3 तरफ से घेर कर ऐसा शिकंजा कसा कि तेहरान को संभलने का मौका तक नहीं मिला। फारस की खाड़ी और अरब सागर में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से FPA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों ने हुंकार भरी। कतर के अल उदैद एयरबेस से अमेरिकी बम वर्षक उड़े तो ईरान के सबसे नजदीक मौजूद UAE के अल थफरा एयरबेस से स्टेल्थ फाइटर्स ने उड़ान भरी। वहीं बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर से इस पूरे हमले को गाइड किया गया। अमेरिकी जेट्स का मुख्य टारगेट था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान का दक्षिणी तट। अमेरिका ने ईरानी सीमा में कदम रखे बिना सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही स्टैंड ऑफ हथियारों से अचूक वार किया। इस हमले में ईरान के रडार सिस्टम, एयर डिफेंस मिसाइल बैटरियों और शाहिद ड्रोन के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों को नेस्त नाबूद कर दिया गया। अमेरिका ने इस ऑपरेशन में सबसे खतरनाक AGM-158 JASSM यानी जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल और SLAMER यानी स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल एक्सपैंडेड रिस्पांस जैसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया ताकि अमेरिकी जेट्स को ईरान के एयर डिफेंस के पास ही न जाना पड़े। इसके साथ ही आसमान से सटीक तबाही मचाने के लिए JDAM यानी GPS गाइडेड प्रिसीजन बम बरसाए गए जिन्होंने बादलों को चीरकर रडार और कमांड सेंटर्स को मलबे में तब्दील कर दिया और इस पूरी तबाही का जायजा लेने के लिए आसमान में मंडरा रहे थे अमेरिका के घातक MQ-9 रीपर ड्रोन। ईरान इन हमलों से हिल गया, लेकिन इसके बाद ईरान का पलटवार शुरू होता है और पूरा मिडल ईस्ट थर्रा उठता है। अमेरिका ने ईरान में 20 ठिकानों को निशाना बनाया तो पलटवार में ईरान ने मिडल ईस्ट में 21 अमेरिकी बेस को टारगेट किया। सबसे बड़ा दावा जॉर्डन में F-35 हैंगर को तबाह करने का है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि उसने पश्चिम एशिया में अमेरिकी और सहयोगी देशों के कुल 21 हवाई और नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान ने दावा किया कि जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर मौजूद F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर नष्ट कर दिए गए हैं। ईरान ने यह भी दावा किया है कि जॉर्डन में मौजूद एक अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। इसके अलावा IRGC का कहना है कि उसने ईरान के जम शहर के ऊपर उड़ रहे एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराया है। ईरानी सेना ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका की ओर से कोई नई सैन्य कार्रवाई की जाती है तो उसका जवाब और अधिक ताकत से दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने अमेरिका के ताजा हमलों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि लड़ाई में हार के बावजूद अमेरिका ने हमारी दृढ़ता को परखने की कोशिश की। हमारी ताकत पर सेना किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगी। अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारे क्षेत्र से चले जाएं। ईरान ने दावा किया कि उसने बहरीन में अमेरिकी ठिकाने पर सीधा हमला किया है। IRIB न्यूज ने वीडियो जारी कर दावा किया कि ईरान की मिसाइल सीधे अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर जाकर गिरी है। ईरान ने बहरीन और जॉर्डन के साथ साथ कुवैत में भी हमले किए। यहां अमेरिकी सेना के अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान की मिसाइलें और ड्रोन काल बनकर टूटे जिससे कुवैत एयरपोर्ट तक थर्रा उठता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि उनकी सेना ने ईरान के हौसले पस्त कर दिए हैं, उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन ईरान ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखा दी। आपको बता दें कि ईरान पहले ही कह चुका है कि अभी तक उसने अपना ब्रह्मास्त्र नहीं निकाला है। ईरान ने बाकायदा वीडियो जारी कर मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया। ईरान ने इन हमलों के लिए बड़े पैमाने पर लंबी दूरी की मिसाइलें लॉन्च की। वीडियो में अमेरिकी

0: ठिकानों की ओर लंबी दूरी की कद्र, इमाद और खैबर शेकन मिसाइलों को लॉन्च करते हुए दिखाया गया। ईरान ने चुन चुन कर अमेरिकी एयरबेस पर प्रहार किया। जैसे ही ईरान ने अमेरिकी हमलों पर पलटवार किया तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा कि फिलहाल अमेरिकी हमले खत्म हो चुके हैं, लेकिन स्थिति अब भी सक्रिय बनी हुई है। जबकि IRGC ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर और भी ज्यादा बड़ा और तगड़ा हमला किया जाएगा। IRGC ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने ये हमले दक्षिणी ईरान में अमेरिकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना को झूठा बहाना बनाकर किए हैं और हमारे ये हमले अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में हैं। जबकि ट्रंप ने ईरान के हारने का दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरानी सेना पूरी तरह से बिखर चुकी है, नौसेना और वायुसेना लगभग खत्म हो चुके हैं। ईरान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। वो खुद को मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा दबंग समझता था लेकिन अब खत्म हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान ने उस समझौते पर बातचीत करने में बहुत ज्यादा देर कर दी जो उसके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता था। अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी ये क्लियर है कि जंग अब अंजाम तक पहुंचकर ही रहेगी। उधर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर रूस ने गहरी चिंता जताई है। रूस ने दोनों देशों से अपील की है कि वो संयम बरतें और तुरंत सैन्य हमले बंद करें। आज तक ब्यूरो।
1: और अब आपको ट्रंप की नई धमकी सुनवा देते हैं जो उन्होंने ईरान को लेकर कही है, सुनिए जरा उनको।
2: But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today. In case you miss it, in case you don't turn on your television set, and we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers. You can't have a nuclear weapon. His was a path to a nuclear weapon. They were developing during his administration nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, they'd be. No Israel, there'd be no Middle East, and they would have absolutely shot at us. So we'll see what happens. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today.
1: पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुनार, पक्तिका और होस्त में नागरिक इलाकों में हमला किया है। एयर स्ट्राइक की गई है फिर से। इन हमलों में 19 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों में 11 बच्ची हैं, एक महिला है, एक बुजुर्ग शामिल है। 14 महिलाएं घायल हो गई हैं और इन हमलों से तालिबान सरकार बुरी तरह से भड़की हुई है।

0: कहां तो पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच अमन का पैगाम लेकर घूमता फिर रहा था और अब अफगानिस्तान के खिलाफ अपना घिनौना चेहरा दिखा दिया। जी हां, पाकिस्तान की फौज ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का सरेआम उल्लंघन किया और आधी रात के अंधेरे में कोस्ट, कुनार और पक्तिका प्रांत के रिहायशी इलाकों पर बारूदी एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तानी हवाई हमलों ने सोते हुए अफगानी नागरिकों के आशियानों को शमशान बना दिया। इस बर्बर हमले में अब तक कई बेगुनाह नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद मासूम बच्चों और महिलाओं की है। घोस्ट के स्पीड जिले के मीना गांव में हुए हमले की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक ही झटके में एक महिला और 7 से 10 साल की उम्र के 8 मासूम बच्चों को मौत की नींद सुला दिया गया। 10 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इस नापाक क्रूरता पर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और तालिबान प्रशासन भड़क उठा है। करजई ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि इस्लामाबाद अपनी गलत और शत्रुतापूर्ण नीतियों का नतीजा भुगत रहा है और अफगानिस्तान के प्रति युद्ध व विनाश की नीति उसे ले डूबेगी। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि बारूद बरसाने से उसके लक्ष्य हासिल नहीं होंगे। उसकी भलाई इसी में है कि वो युद्ध की नीति छोड़कर अच्छे पड़ोसी की तरह सभ्य संबंध बनाना सीखे। और ये है पाकिस्तान के उस पाखंड की तस्वीरें जो वो दुनिया के सामने पेश कर रहा है। खाड़ी के देशों में एक नकली चेहरा पेश कर रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो फिलिस्तीन और गाजा के नाम पर छाती पीटता है, दुनिया भर में इस्लामिक देशों की एकजुटता का ढकोसला पेश करता है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर कल ही रावलपिंडी में लेबनन के आर्मी चीफ को शांति और सुरक्षा का पाठ पढ़ा रहे थे और उसी रात मुनीर ने अपनी फौज को अफगानिस्तान के मासूम बच्चों पर बम गिराने का ऑर्डर दे दिया। यही नहीं, उसी दिन मुनीर की कातिल फौज पीओके में अंधाधुंध गोलियां बरसा रही थी, लाशें गिरा रही थी, वहीं रात में अफगानिस्तान में मासूमों का कत्ल करने का पाप कर रही थी। यानी एक तरफ शांति का ढोंग और दूसरी तरफ बेकसूरों और मासूमों का कत्लेआम। पाकिस्तानी सेना की इस दरिंदगी पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के मंच से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बुरी तरह बेनकाब कर दिया। भारत ने यूएनएससी में दहाड़ते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की लैंड लॉक यानी चारों तरफ से जमीन से घिरे होने की लाचारी का हथियार की तरह इस्तेमाल किया है और हवाई हमले करके सैकड़ों बेगुनाह नागरिकों की जान ली है।
1: Pakistan's campaign of military airstrikes against Afghanistan is causing huge civilian casualties and sufferings to the Afghan people. We reiterate Secretary General's deep concern at civilian casualties caused by airstrikes, cross-border firing and targeted killings as detailed in UNAMA reports.
0: इस्लामिक वर्ल्ड से लेकर दुनिया में थूथू होने के बाद अब बौखलाया पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ रोना रो रहा है। वो पाकिस्तान जिसने दुनिया भर में आतंक फैलाया अब अफगानिस्तान को आतंक का गढ़ बता रहा है। पाकिस्तान के राजदूत आसिफ इफ्तिखार उल्टा अफगानिस्तान पर टीटीपी और बीएलए को पनाह देने का बहाना बना रहे हैं। ऐसे झूठे आरोपों से पाकिस्तान ना तो अपनी कायरता छिपा सकता है और ना ही आतंकी होने का दाग मिटा सकता है। सच यही है कि जनरल आसिफ मुनीर के हाथ बेगुनाह बच्चों और महिलाओं के खून से रंगे हैं। आज तक ब्यूरो।
2: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी 12 साल में कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ देश। इन्होंने धीमे विकास को कहा था हिंदू ग्रोथ रेट। बोले 2047 तक विकसित भारत हमारा संकल्प। एनडीए की बैठक में नेताओं ने की प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। अभिनंदन प्रस्ताव पास। शुभेंदु ने खिलाई झालमुरी। ट्रंप ने भी बधाई संदेश में बताया अपना दोस्त। ममता को फिर लगा बड़ा झटका। बागी गुट के 19 लोकसभा सांसदों ने जारी की है लिस्ट। शत्रुघ्न सिन्हा और सायोनी घोष का भी नाम। भूपेंद्र यादव के घर कुछ नेताओं की बैठक। कांग्रेस को लगी दोहरी चोट। झारखंड में एनडीए समर्थित राज्यसभा प्रत्याशी परिमल नाथवानी का पर्चा मंजूर। एमपी में मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर आयोग जल्द करेगा फैसला। और ईरान पर फिर बारूद बरसाएंगे ट्रंप। का निशाने पर है पावर प्लांट और पुल। पिजिश्कियान ने बताया हताशा भरा कदम।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 10 जून यानी इतिहास के पन्नों में दर्ज नए कीर्तिमान की तारीख। लगातार सबसे लंबे समय तक जनता की वोट के दम पर मिली जीत से प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड अब नरेंद्र मोदी के नाम है। मोदी ने आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन तोड़ने से अधिक यह तारीख जोड़ने के लिए याद रहेगी, जो बताती है कि जनता से जुड़ने वाला लीडर ही जनता का उस दौर में सुप्रिय बन जाता है जब लगातार 3 बार सत्ता हासिल करना दुनिया के विभिन्न लोकतांत्रिक देशों में असंभव है। लेकिन जनता को भगवान मानने वाले नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को सत्ता का प्रसाद जनता सौंपकर सब संभव कर देती है।
2: जैसे यहां बताया गया कि मैं पहली बार यहां आया हूं, शायद मेरे जीवन में हर बार ऐसा ही हुआ है। मुख्यमंत्री बना उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री की चैम्बर देखी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने विधानसभा गृह देखा था। आज भी ऐसा ही एक अवसर आया है। लेकिन हम इस ऐतिहासिक स्थान पर बैठे हैं, तब मैंने प्रारंभ में कहा यह लोकतंत्र का मंदिर है। 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं इस पवित्र मंदिर पर टिकी हुई है।
3: लोकतंत्र के उसी मंदिर में अब 140 करोड़ लोगों की आकांक्षा की पूर्ति के लिए प्रधान सेवक के पद पर नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के विश्वास को ऐतिहासिक 12 साल हो चुके हैं। जब नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है तो कैबिनेट ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रधानमंत्री को बधाई दी। मंत्रियों ने उनकी उपलब्धि पर खड़े होकर तालियां बजाई। मेज थपथपाई। 12 साल कहना शायद पूरी तरह सही ना हो। सही होगा कहना कि 4,399 दिन से नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। जिस दौर में सत्ता से हाथ छूटने पर गठबंधन का साथ छोड़ने में पल भर सियासत नहीं लगाती, राजनीति के उस युग में भी 35 दल 75 नेता 22 मुख्यमंत्री को साथ लेकर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। आज से नहीं, लगातार, अनवरत, निरंतर।
4: मैं अभिभूत हूं, कृतज्ञ हूं। चरैवेति चरैवेति के मंत्र का जाप करते हुए इस राजनीतिक यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए एक दिन ये पड़ाव भी आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था।
3: 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ। कांग्रेस सत्ता में आई। संसदीय दल ने नेहरू को अपना नेता चुना। पंडित नेहरू 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक लगातार निर्वाचित पीएम रहे। नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल 4,398 दिन का रहा। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री 4,399 दिन अब पूरे कर चुके हैं। इसीलिए निर्वाचित पीएम के तौर पर मोदी ने कीर्तिमान रचा है। उसी कीर्तिमान को रचने वाले ऐतिहासिक मौके पर भारत मंडपम में पूरा एनडीए एकजुट होता है। रिकॉर्डधारी प्रधानमंत्री का लगातार जनता के बीच चुना जाना क्यों ऐतिहासिक है, ये गृह मंत्री बताते हैं। एनडीए की इसी बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पीएम मोदी के सम्मान में एक विशेष प्रस्ताव पेश करते हैं। प्रस्ताव में पीएम मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री बनने का उल्लेख किया जाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और बताते हैं कि मोदी केवल 12 साल के नहीं बल्कि सदी के लीडर हैं।
5: 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू नरेंद्र मोदी जी, ऑलवेज इज एनर्जेटिक, नॉट ओनली एनर्जेटिक, ही विल गिव एनर्जी फॉर अदर्स, दैट इज हाउ ही इज मेंटेनिंग हिमसेल्फ। फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी जी इज इक्वल टू एनी लीडर इन द वर्ल्ड, I can say very clearly, all surveys are indicating who is very popular leader globally, that is our Honorable Prime Minister, that is our pride for the nation. We are very happy for that.
6: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल, सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व में आज हमारा भारत विकास और समृद्धि के नए क्षितिज को छू रहा है। मोदी जी के इसी मजबूत नेतृत्व के बदौलत आज देश विकसित भारत बनने की राह पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज भारत सिर्फ प्रगति ही नहीं कर रहा है बल्कि प्रगति की नई परिभाषा लिख रहा है।
7: हम लोग इस गठबंधन का हिस्सा बने और पिछले 12 सालों से निरंतरता से न सिर्फ हमारा ये रिश्ता मजबूत रहा बल्कि एनडीए गठबंधन का दायरा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कहीं और राजनीतिक दल इस गठबंधन का हिस्सा बने उसका कारण सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सबको एक साथ लेकर चलने की उनकी सोच, सबको परिवार की तरह उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े होने की सोच ने ही उनको आज देश के सर्वोच्च नेता की श्रेणी में सबसे आगे उनको खड़ा करने का काम किया।
3: जिस वक्त विपक्ष चुनावी हार के बाद बिखरा हुआ है तब सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए नए उच्चमान स्थापित करते नरेंद्र मोदी एनडीए की बैठक में कांग्रेस शासनकाल याद कराते हैं। बताते हैं कि पहले विफलता कांग्रेस की होती रही लेकिन कलंक हिंदू आबादी पर लगाया जाता रहा।
8: सवाल ये है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा।
1: हमारे भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है वहां पर नेता पर विश्वास होना अपने आप में अभूतपूर्व है। हमारे देश की जनता का मोदी को पिछले 12 वर्षों से दिया जाने वाला समर्थन मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनाता है। जहां एक तरफ दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों की सरकारें कमजोर हो रही हैं, नेताओं को अपने पद से हाथ धोना पड़ रहा है, वहीं नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री पद पर रिकॉर्ड बनाकर मिसाल कायम कर रहे हैं।
9: प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस।
10: आई डोंट नीड टू टेल एनीवन हियर, ही इज द मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर फॉर अ रीजन।
11: I think you are an inspiration for the rest of the world.
12: I think is that the most loved one of all around the world.
13: Prime Minister Sri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude.
14: I am a fan of Modi, so
15: his vision for digital India, was ahead of its time.
3: नरेंद्र मोदी भारत में सबसे लंबे वक्त तक सत्ता के शिखर पर रहने वाले नेता ही नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुनिया के भी सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं।
16: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा.
5: A historic tribute to India, historic tribute to India's longest serving continuously elected Prime Minister Sri Narendra Modi ji.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 32 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सर्वोच्च या नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुकी हैं, जिसमें फ्रांस, रूस, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं. जब दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में जनता सरकारें बदल रही हैं, तब भारत में 12 वर्षों से नेतृत्व और नीतियों में निरंतरता है. यही बात दुनिया को नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान से भर देती है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जो मोदी की तारीफ का कोई मौका नहीं छोड़ते. आज तक से बातचीत में पुतिन ने मोदी को लेकर जो कुछ कहा था वो आपको सुनना जरूरी है.
17: He's a very reliable person. In that sense, I'm speaking very sincerely. India got lucky. He lives India. I'm talking to him and I know him.
3: व्लादिमीर पुतिन हो या फिर दुनिया का दूसरा कोई बड़ा नेता, सबकी एक राय है कि दबाव डालकर नरेंद्र मोदी को झुकाना नामुमकिन है.
8: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है. दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है. दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतर कर दिखाना है. साथ में हमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है. हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है.
3: मोदी की यही बात दोस्तों
8: करना है. हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है.
3: मोदी की यही बात दोस्तों को भाती है, जिनके लिए भारत किसी प्रेरणा से कम नहीं है. ये बात दुनिया भर के नेताओं की तरफ से भेजी गई शुभकामनाओं में भी दिखती है. दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने बधाई संदेश में लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने कई वर्षों तक भारत के विकास और प्रगति का नेतृत्व किया है. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि न केवल आपके कार्यकाल की अवधि को दर्शाती है, बल्कि उस भरोसे और विश्वास का भी प्रमाण है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता ने बार बार आपके नेतृत्व में जताया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने भारत की सीमाओं से परे श्रीलंका सहित कई देश के लोगों को प्रेरित किया है. पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक निजी वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को एक रोल मॉडल और लीडरशिप की मिसाल बताया है.
18: Congratulations on reaching a historic milestone, the longest continuous prime minister of the great country of India. You have now surpassed the record as the longest serving prime minister of India.
3: प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री पद पर रहने के 4,398 दिन के रिकॉर्ड को ही पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि वो 9,013 दिन से सत्ता के शिखर पर रहने वाले एकमात्र नेता है जो लगातार सीएम और पीएम पद पर रहते हुए 25 साल पूरे कर चुके हैं.
16: मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा.
3: प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने वालों में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पिछले दिनों रोम में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके और एक विशेष रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत करके खुशी हुई, जो भविष्य में हमारे देशों और लोगों के लिए नए अवसर बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगी. दुनिया भर के करीब 20 देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को 146 करोड़ लोगों का नेतृत्व करते हुए 12 साल पूरे होने पर बधाई दी। दुनिया के लिए हैरानी की बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी इतनी लंबी पारी खेलने के बावजूद भारत की तरह पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कैसे हैं? ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट ने अप्रैल 2026 में बताया कि मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा 70% अप्रूवल रेटिंग वाले नेता हैं। उनके बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग 63% अंकों के साथ हैं। ईरान संग युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे नीचे से 10वें नंबर पर हैं।
8: इन वन डेकेड इंडिया हैज सीन अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन देन वी वेयर द 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ we are knocking on the doors of the top 3.
3: बड़ी बात यह है कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले दूसरे देशों के नेताओं की छवि लगातार वहां की जनता की नजरों में कमजोर हो रही है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज सर्वे में दुनिया के सबसे अलोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। करीब 76% उत्तरदाताओं ने उनके कामकाज से असंतुष्टि दिखाई, जबकि वो पिछले साल मई महीने में जर्मन चांसलर बने। सर्वे में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन दूसरे सबसे अलोकप्रिय नेता हैं। उनके काम से 75% उत्तरदाता असंतुष्ट रहे। लोकतांत्रिक देशों में नेताओं की इस अलोकप्रियता की वजह जंग के कारण महंगे तेल से बढ़ती महंगाई और कमजोर होती उनके देश की अर्थव्यवस्था है। खतरनाक होती दुनिया नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, जिसके असर से जनता को बचाने में मोदी सरकार अब तक खुद को कामयाब बताती है।
1: चुनावी समीकरण अब बदलते जा रहे हैं। अब एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी को अपनी शक्ति बीजेपी बना रही है। गवाही पहले गुजरात मध्य प्रदेश दिया करते थे, अब हरियाणा असम महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश बिहार समेत विभिन्न राज्य दे रहे हैं। जहां लगातार दो बार नहीं बल्कि लगातार तीन बार चुनावी विजय हासिल करने में बीजेपी सबसे आगे है, कांग्रेस तो दूर दूर तक नहीं है। और क्या यही कारण है कि लगातार चौथी बार 2029 में भी जीत का चौका लगाने की जमीन नरेंद्र मोदी तैयार करने में लग गए हैं?
19: मोदी है तो मुमकिन है।
20: देश की आस्था और विश्वास प्रधानमंत्री जी के साथ,
21: वो अतिमानव सुपर ह्यूमन है।
3: 4,399 दिन का कार्यकाल और लगातार बनते रिकॉर्ड के साथ नरेंद्र मोदी पर बीजेपी की विजय विस्तार और मजबूत आधार का भरोसा हर नेता कार्यकर्ता को है। तो इसकी वजह क्या है, समझना है तो 46 साल पहले चलिए। भारत के पश्चिमी छोर पर मौजूद मुंबई, अरब सागर के किनारे मौजूद भारत की आर्थिक राजधानी, अब से 46 साल पहले साल 1980 अरब सागर के तट पर मुंबई में बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में एक भविष्यवाणी होती है।
22: भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा।
3: अब देश के 22 राज्यों और 72% क्षेत्रफल के साथ 78% आबादी वाले राज्यों में बीजेपी या एनडीए का कमल खिल चुका है। और यहां कमल खिलाने के साथ ही नरेंद्र मोदी अब 2029 के लक्ष्य में जुट चुके हैं। बड़ी खबर ये कि 2024 में बीजेपी को लगातार तीसरी बार अपने दम पर बहुमत पाने से रोक लेने में जिस विपक्ष को सबसे बड़ी जीत लगने लगी थी,
23: कांग्रेस पार्टी, आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ।
3: लगातार तीन बार देश का चुनाव जीतने वाले नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 के नतीजे से एक खिड़की खुलने से उत्साहित विपक्ष को अंदाजा नहीं है कि दो साल के भीतर बीजेपी वापस अपनी पकड़ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मजबूत करने लगी है।
8: हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम मेड इन इंडिया शिप पर ट्रेड करेंगे और कंटेनर भी मेड इन इंडिया होंगे। शिप मेंटेनेंस और रिपेयर से लेकर स्क्रैपिंग तक की सर्विसेज भी भारत देगा। यही विजन हमारे एविएशन सेक्टर के लिए है। आज हम मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब भारत मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाएगा। देशवासी मेड इन इंडिया विमान में ही यात्रा करेंगे, वो दिन मैं देख रहा हूं।
3: 2024 के बाद अब तक देश के 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की इन राज्य में 497 असेंबली सीट पर बढ़त थी, जो अब बढ़कर 664 हो चुकी है, यानी 167 विधानसभा सीट के फायदे में बीजेपी आ चुकी है। इसे लोकसभा सीट के तौर पर बदले तो 21 लोकसभा सीट का फायदा बीजेपी को अब तक हो चुका है। इसी दौरान कांग्रेस की स्थिति पलटी है, वो 353 सीटों से घटकर 171 विधानसभा सीटों पर आ गई, जिससे उसे 182 विधानसभा सीटों का नुकसान होता दिखता है। 12 वर्षों में एक बार फिर जहां नरेंद्र मोदी वापस सत्ता की सियासत में वही मजबूती हासिल करने लगे जिसके लिए उनकी पहचान रही, तो इसकी वजह विपक्ष की उन चालों से सावधान रहना भी है जिसे वाजपेयी युग में नरेंद्र मोदी देख चुके हैं।
0: हमने मेहनत की, हम लोगों में गए हैं, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, ये कोई चुनाव में कुकर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी।
3: पिछली सदी में 90 के दशक में सत्ता तक बीजेपी पहली बार पहुंचती है, लेकिन 96 से 1998 तक विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को रोकता रहा, बाधा बनता रहा।
0: इस सदन में एक एक व्यक्ति की पार्टियां, एक एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे साथ हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे।
3: अप्रैल 1999 जब एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी, विपक्ष की राजनीति के उन दांव पेच को नरेंद्र मोदी भूले नहीं।
8: खरीद फरोख्त तब भी हो सकती थी, बाजार में माल तब भी बिकता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक वोट से हारना पसंद किया, इस्तीफा दिया, लेकिन असंवैधानिक कोई कृत्य नहीं किया।
3: नरेंद्र मोदी जानते हैं कि विपक्ष बार बार अलग अलग तरह के गठजोड़ करके उन्हें भी रोकने में जुटा है, इसीलिए वो कोर्स करेक्शन वाली राजनीति बहुत तेज करते हैं, जिसका नतीजा है कि मोदी राज में बंगाल जीतने के बाद 9 राज्यों में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बन चुका है। 3 बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुमत के साथ सरकार बना चुकी बीजेपी एनडीए ने विधानसभा के चुनावों में भी नई लकीर खींची। 2014 से अब तक 72 बार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए, तो 32 बार राज्यों के सीएम बीजेपी के बने, 10 बार राज्यों में गठबंधन की सरकार बनी, 42 बार बीजेपी एनडीए को सत्ता मिली, 30 राज्यों में बीजेपी और एनडीए को हार का सामना करना पड़ा।
1: बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। एकमात्र झारखंड राज्य के अपवाद को हम छोड़ दें तो जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कमल खिला, वहां से फिर कभी कमल मुरझाया नहीं। रिपीट जीत से लेकर बीजेपी सरकारों की जीत की हैट्रिक से राजनीति शास्त्र के पन्ने भर दिए गए, जो मोदी की राजनीति पर जनता के विश्वास की मुहर लगाते हैं।
2: शुभेंदु अधिकारी,
3: 9 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वें ऐसे राज्य में अपनी पार्टी का इकबाल बुलंद होते देख रहे थे जहां पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ ले रहा था। याद आया होगा वो वक्त भी जब पूरे देश में बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर थी, अब 22 राज्यों में, उसमें भी 9 राज्यों में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री।
8: दल से हमेशा अगर बड़ा कुछ है तो हमारा देश है, दल से बड़ा देश है। और जब नेशन फर्स्ट, देश प्रथम की भावना से काम होता है, तो कोई भी निर्णय कठिन नहीं होता।
3: समर्थक इसे प्रधानमंत्री मोदी के शासन में बीजेपी का स्वर्णिम काल कहते हैं। गुजरात में 1995 से बीजेपी की निरंतर सरकार, 2003 से मध्य प्रदेश में, बीच के 15 महीने छोड़ दो तो दो दशक से अधिक समय से बीजेपी ही सत्ता में है। गोवा में 2012 के बाद से बीजेपी के मुख्यमंत्री। बीजेपी के विचार पुरुषों ने सरकारों के स्थायित्व की जो परिपाटी डाली, नरेंद्र मोदी उसे बुलंदियों के छोर तक ले गए और न सिर्फ स्थायी सरकारों के रिकॉर्ड का विस्तार किया बल्कि असंभव राज्यों में भी सरकारें बनाकर राजनीति का स्थायी परिवर्तन संभव किया। जहां बीजेपी कभी थी ही नहीं वहां भी उनके मुख्यमंत्री हुए। 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। अविभाजित शिवसेना के साथ पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। 2014 में ही हरियाणा की जीत के बाद पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल खट्टर ने शपथ ली। बीजेपी यहां जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। 2016 में पहली बार बीजेपी असम में जीती और पूर्वोत्तर में मोदी युग शुरू हुआ। सर्वानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने, यहां भी बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई। बीजेपी ने 2016 में पहली बार अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाई और पेमा खांडू मुख्यमंत्री बने। 2017 में बीजेपी ने मणिपुर में गठबंधन सरकार बनाई और पहली बार बीजेपी के एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। सीमावर्ती राज्य में ये बीजेपी की पहली सरकार थी। 2018 में लेफ्ट दलों के सबसे मजबूत समझे जाने वाले गढ़ त्रिपुरा में बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की और अब तक लगातार दो बार वहां बीजेपी की सरकार। 2024 में नवीन पटनायक के 24 वर्षों के शासन को खत्म करके पहली बार बीजेपी ने बहुमत से सरकार बनाई। 2026 में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ ली। 2026 में ही पश्चिम बंगाल में भी पहली बार बीजेपी का राज स्थापित हो चुका है और शिवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का विस्तार लगातार जारी है।
1: सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य करने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम बन चुका है और वो अभी भी प्रधानमंत्री हैं। इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। 12 साल में कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ देश। इन्होंने धीमे विकास को कहा था हिंदू ग्रोथ रेट। बोले 2047 तक विकसित भारत हमारा संकल्प। एनडीए की बैठक में नेताओं ने की प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। अभिनंदन प्रस्ताव पास। शुभेंदु ने खिलाई झालमुरी। ट्रंप ने भी बधाई। संदेश में बताया अपना दोस्त। ममता को फिर लगा बड़ा झटका। बागी गुट के 19 लोकसभा सांसदों ने जारी की है लिस्ट। शत्रुघ्न सिन्हा और सायोनी घोष का भी नाम। भूपेंद्र यादव के घर कुछ नेताओं की बैठक। कांग्रेस को लगी दोहरी चोट। झारखंड में एनडीए समर्थित राज्यसभा प्रत्याशी परिमल नाथवानी का पर्चा मंजूर। एमपी में मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर आयोग जल्द करेगा फैसला। और ईरान पर फिर बारूद बरसाएंगे ट्रंप। का निशाने पर है पावर प्लांट और पुल। पिजेश्कियान ने बताया हताशा भरा कदम। ममता बनर्जी को झटके पे झटका लग रहा है। राज्यसभा की सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ दी। राज्यसभा की सदस्यता भी छोड़ दी। उनसे पहले सुखेंदु रॉय ने साथ छोड़ा था। सत्ता जाने के बाद अब टीएमसी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है।

0: अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिल रहे हैं। ममता बनर्जी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और केजरीवाल से मिल रही हैं। और मुलाकात का मजमून ये है कि दिल्ली में बैठकर ममता अपना राजनीतिक वजूद बचाने की जद्दोजहद कर रही हैं, लेकिन वो वजूद बचता नहीं दिख रहा। पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, आज सुष्मिता देव पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता दोनों छोड़ गई।
1: मैं किस तरह की राजनीति करूंगी, कहां से करूंगी, ये मेरा निर्णय है और मेरा हक है, क्योंकि राज्यसभा मुझे एक पार्टी से मिला था
2: जी।
1: हाँ, जहां विधायकों ने वोट दिया था, बंगाल के लोगों ने इनडायरेक्टली दिया था। तो अगर पार्टी से इस्तीफा दिया तो फिर राज्यसभा सीट भी छोड़ना चाहिए।
0: आज सुबह सुबह सुष्मिता देव की असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। दोनों असम से हैं तो लग यही रहा है कि सुष्मिता के इस्तीफे के पीछे हिमंता बिस्वा सरमा की बड़ी भूमिका है। ये भी तय लग रहा है कि इस्तीफे से खाली सीट पर उपचुनाव में बीजेपी सुष्मिता को उम्मीदवार बनाएगी।
1: मेरी राजनीति बंगाल में नहीं है, मेरी राजनीति असम में है और मुझे असम में ही राजनीति करना है।
0: लेकिन ममता के सामने बड़ा सवाल ये है कि अब उनका क्या होगा, शायद वो आगे का रास्ता तलाश रही हैं।
3: जीतने के बाद भी बोले थे, बोलने की कोशिश किए थे, वहाँ पे सिस्टम नहीं है बोलने का, बोलने से सब रोकते हैं जो नहीं बोलना है नहीं बोलना है। तो और अगर बोले भी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलते, आप 7 दिन 10 दिन इंतजार करो।
0: तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने दिल्ली आई ममता बनर्जी यहाँ से क्या हासिल कर लौटती है, क्योंकि कोलकाता में तो उनके लिए हर दिन भारी साबित हो रहा है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
4: मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस ने बुधवार को एक दिन का उपवास रखा और चुनाव आयोग पर निशाना भी साधा। चुनाव आयोग को इस पर फैसला करना है। अब
5: प्रदर्शन उस फैसले के खिलाफ है जिसमें मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता एक दिन का उपवास करके इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा सीट के लिए प्रत्याशी नहीं रहे। बाह में काली पट्टी बांधकर उपवास पर बैठे हैं कांग्रेस के नेता।
6: कांग्रेस के तमाम दूसरे नेता जो है वो राजधानी भोपाल में इकट्ठा हुए हैं और इस उपवास के जरिए मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द हुआ है, न केवल उसका विरोध जता रहे हैं बल्कि साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने राजनीति से प्रेरित होकर के मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को जानबूझ करके रद्द किया है।
5: उधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इधर दिल्ली में कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन के मामले में चुनाव आयोग में लिखित शिकायत दर्ज की। अब कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग को भी निशाने पर ले रहे हैं।
7: मैं तो बहुत पहले एक बात कही थी कि एक कुर्सी इलेक्शन कमीशन में डाल दीजिए, जो पर्ची बीजेपी ऑफिस से आए उसको सर्टिफिकेट दे दे, तो चुनाव का पैसा तो बचेगा देश का।
8: उस पे कोई FIR नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई सजा नहीं, लेकिन नामांकन रद्द कर दिया क्योंकि वो कांग्रेस की प्रत्याशी थी।
5: लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर था, इसलिए उसने जानबूझकर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करा दिया।
9: जिस दिन दिग्विजय सिंह जी को टिकट नहीं मिला तो उनके नेताओं ने खुलेआम बोला था कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होगी और कांग्रेस को मालूम था क्रॉस वोटिंग होगी, और इसीलिए मेरा स्पष्ट आरोप है, मेरा स्पष्ट मानना है कि ये फॉर्म कांग्रेस ने स्वयं ने रिजेक्ट करवाया है।
5: मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद अब MP में तीनों सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट निर्विरोध हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का कंसा पासी किला विवाद अब बड़ा राजनीतिक रूप ले चुका है, बड़ा मुद्दा बन चुका है। लखनऊ के मलिहाबाद स्थित कंसा पासी किला विवाद में अब पासी समाज का संगठन लाखन आर्मी सड़कों पर उतर आया है। लाखन आर्मी ने सूरज पासी के अगुवाई में हरदोई से एक यात्रा की शुरुआत की है।
10: पासी स्वाभिमान यात्रा लखनऊ के लिए निकली है, हरदोई में इस यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। देखिए, फूल माला से लदे हैं लाखन आर्मी के मुखिया सूरज पासी। दरअसल लखनऊ के अंदर एक नया विवाद पैदा हुआ है जिसमें कंसा पासी किले पर कब्जे को लेकर दलितों और मुसलमानों के बीच सियासी मुद्दा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में अब मलिहाबाद के कंसा पासी किला विवाद को लेकर खुद को पासी समाज का प्रतिनिधि बताने वाले लाखन आर्मी ने 31 जिलों में यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। हरदोई जिले से शुरू हो रही ये पासी स्वाभिमान यात्रा किले में शिव मंदिर को वापस पाने की मांग के साथ की जा रही है।
2: तो हमारे किला था, हमारे किले के धार्मिक स्थान थे, वो भी तो हमको संरक्षित चाहिए, वहाँ भी मजारे बना दी जा रही है, तो चिंता का विषय है। इसलिए आज हम उनकी किले को बचाने के लिए, उनके अस्तित्व को बचाने के लिए, उनके इतिहास को बचाने के लिए 31 जिलों में भ्रमण कर रहे हैं।
10: सिर्फ लाखन आर्मी ही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता भी यही मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान के दल के नेता आज कंसा पासी किले तक जाना चाहते थे, मगर पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया।
11: लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता आज कंसा पासी को किले को लेकर निकले हुए हैं और साफ तौर से वहां जाना चाहते थे पासी पर, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो पुलिस ने पूरी तरीके से वहां पर रोका हुआ है।
10: LJP रामविलास भी कंसा पासी के सम्मान की बात कर रही है।
12: पासी राजा कंस जी का किला, यह मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, यह पासी पासवान समाज के गौरव और विरासत की का प्रश्न है, उनकी लड़ाई है।
10: अब ओवैसी का दल आरोप लगा रहा है कि 2027 के चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान वाली सियासत को धार दी जा रही है।
13: अयोध्या का मामला जो है ठंडा नहीं हुआ था, एक अयोध्या के लिए यात्रा निकली थी, राजा कंसा पासी के किले को लेकर के यात्रा निकाली जाएगी। तो ये जो लोग हैं, ये देश के अंदर 2027 के चुनाव को देखते हुए एक नैरेटिव सेट करने के लिए नए नए सबूफे तैयार कर रहे हैं।
10: उत्तर प्रदेश में इस बार दलित वोट की राजनीति में कई नए दावेदार नजर आने लगे हैं और कंसा पासी का किला उसके केंद्र में है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं और बिना सरकारी आदेश के शहर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन गुजरात के सूरत में एक ऐसा अजीबोगरीब वाक्य सामने आया है जिसने पूरे प्रशासन की नींद उड़ा कर रख दी है, क्योंकि 100 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, घरों को जमींदोज कर दिया गया, कोई नहीं जानता कि एक्शन किसके कहने पर लिया गया।
14: सूरत में बुलडोजर गरजा और देखते ही देखते 100 मकान ध्वस्त कर दिए गए। इन मकानों के मालिकों को इतना मौका भी नहीं मिला कि अपना सामान बाहर निकाल सके। तस्वीरें 3 जून की है, जब सूरत के कतारगाम इलाके के नासिर नगर में बुलडोजर पहुंचा और देखते ही देखते 100 परिवारों की छतें छीन। लेकिन तमाशा तब शुरू हुआ जब सूरत नगर निगम ने यह कह दिया कि हमने घरों को तोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया। ऐसी कोई भी कार्रवाई में नगर निगम का कोई रोल नहीं है।
15: डिमोलिशन तो हमने नहीं किया है सूरत महानगर पालिका के लोगों ने, फक्त इतना बताया कि नगर पालिका के जो लोग थे वो जगह हमारा कलम 205 के अंडर में जो रास्ता है वो माप लेने के लिए गए थे हमारे कर्मचारी।
14: निगम जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहा है, मगर जिनके घर टूटे हैं वो बता रहे हैं कि जिस समय बुलडोजर एक्शन हुआ निगम के अधिकारी और कर्मचारी SOG के साथ यहीं थे।
16: पुलिस SOG के जो मेन थे वो हमारे को टाइम देने से मना कर रहे थे, भाई तुम्हें कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, तुम अब भी निकलो। इन लोग पूरी टीम सामान भरने वाली भी लेकर आए थे साथ में।
17: मोनिक गड़िया को हमने बोला कि सर आप हमारे को कुछ टाइम दो, तो बोले कोई टाइम नहीं, इतने बरसों से रह लिया, बहुत टाइम दे दिया आपको, अब चलो निकलो।
18: 2 घंटे का भी समय नहीं दिया, बस फटाफट उन लोग ने बुलडोजर से चालू कर दिया, तोड़ना ही चालू कर दिया।
14: सूत्रों के मुताबिक ये पूरी कवायद नासिर नगर के ठीक पीछे बन रहे एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रास्ता देने के लिए की गई थी। आरोप है कि बिल्डर के फायदे के लिए रातों रात सड़क चौड़ी करने का प्लान बनाया गया और सालों से रह रहे लोगों के आशियाने उजाड़ दिए गए। हैरानी की बात यह है कि बिना किसी आधिकारिक नोटिस या कानूनी प्रक्रिया के इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली पुलिस मूक दर्शक बनी रही।
19: मामले के तूल पकड़ता देख अब नगर निगम ने 6 सदस्यों की जांच समिति बनाई है, जो जिस अधिकारियों ने ये डिमोलिशन किया उनकी भूमिका को लेकर जांच करेगी। किसके कहने पर ये डिमोलिशन किया गया, किन अधिकारियों ने किया और क्यों किया, इसके सारे वीडियो तो सामने हैं, पर किस वजह से किया गया, किसके कहने पर किया गया, ये कोई बोलने को तैयार नहीं है।
0: जांच कमेटी तो बन गई है, मगर अब सवाल उठता है कि अगर नगर निगम ने आदेश नहीं दिया तो पुलिस की मौजूदगी में किसकी शह पर 100 घर गिरा दिए गए। संजय सिंह राठौड़ के
19: ये कोई बोलने को तैयार नहीं है।
0: जांच कमेटी तो बन गई है, मगर अब सवाल उठता है कि अगर नगर निगम ने आदेश नहीं दिया तो पुलिस की मौजूदगी में किसकी शह पर 100 घर गिरा दिए गए। संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्रजेश दोषी, सूरत आज तक।
4: ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। एक हेलीकॉप्टर पर हमले के चलते अमेरिका ने युद्ध विराम को धुआं धुआं कर दिया। पहले तो अमेरिका ने अपने एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने का दावा किया और फिर उसके जवाब में ईरान पर भीषण हमले शुरू कर दिए गए। आधी रात के बाद ईरान के 5 बड़े शहरों में धमाके शुरू हुए, तो बदले में ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर तबाही मचाना शुरू कर दिया है।
10: ईरान पर अमेरिका की फिर से चढ़ाई, अब होगी सबसे भयंकर लड़ाई। एक हेलीकॉप्टर पर हमले का बदला, अमेरिकी हमलों से ईरान तहला। ईरान पर अमेरिका की फिर से चढ़ाई, अब आगे होगी एटमी लड़ाई। अमेरिका ने ईरान के 20 ठिकाने उड़ाए, ईरान ने 21 अमेरिकी बेस तहलाए। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान की चेतावनी, अब भीषण रण होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पीस डील करके जिस तरह से युद्ध विराम को धुआं धुआं किया है, ईरान ने भी अब जैसे नई जंग का प्रण ले लिया है। जिस तरह से अमेरिका ने ईरान में फिर से बारूदी तबाही मचाई है, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ईरान पर फिर से चढ़ाई के लिए एक बहाना ढूंढ रहा था। ईरान ने अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया था, बदले में अमेरिका ने ईरान के 5 शहरों में तबाही मचाकर रख दी। 8 जून की रात समंदर के बीचों बीच अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर पर ड्रोन से हमला होता है। हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट समंदर में कूद जाते हैं, लेकिन इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और फिर न सिर्फ युद्ध विराम टूटता है बल्कि जंग जहां से शुरू होती है हालात घूमकर वहीं आ जाते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के आदेश पर आधी रात को मिडिल ईस्ट में वो महा एक्शन हुआ है जिसने ईरान के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका ने इन हमलों को सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स कहा है, लेकिन ये हमले कितने सुनियोजित और घातक थे इसको समझाते हैं। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान को 3 तरफ से घेर कर ऐसा शिकंजा कसा कि तेहरान को संभलने का मौका तक नहीं मिला। फारस की खाड़ी और अरब सागर में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों ने हुंकार भरी। कतर के अल उदैद एयरबेस से अमेरिकी बम वर्षक उड़े, तो ईरान के सबसे नजदीक मौजूद UAE के अल थफरा एयरबेस से स्टेल्थ फाइटर्स ने उड़ान भरी। वहीं बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर से इस पूरे हमले को गाइड किया गया। अमेरिकी जेट्स का मुख्य टारगेट था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान का दक्षिणी तट। अमेरिका ने ईरानी सीमा में कदम रखे बिना सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही स्टैंड ऑफ हथियारों से अचूक वार किया। इस हमले में ईरान के रडार सिस्टम, एयर डिफेंस मिसाइल बैटरियों और शाहिद ड्रोन के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। अमेरिका ने इस ऑपरेशन में सबसे खतरनाक AGM-158 JASSM यानी जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल और SLAMER यानी स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल एक्सपैंडेड रिस्पांस जैसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया ताकि अमेरिकी जेट्स को ईरान के एयर डिफेंस के पास ही न जाना पड़े। इसके साथ ही आसमान से सटीक तबाही मचाने के लिए JDAM यानी GPS गाइडेड प्रिसीजन बम बरसाए गए, जिन्होंने बादलों को चीरकर रडार और कमांड सेंटर्स को मलबे में तब्दील कर दिया और इस पूरी तबाही का जायजा लेने के लिए आसमान में मंडरा रहे थे अमेरिका के घातक MQ-9 रीपर ड्रोन। ईरान इन हमलों से हिल गया, लेकिन इसके बाद ईरान का पलटवार शुरू होता है और पूरा मिडिल ईस्ट थर्रा उठता है। अमेरिका ने ईरान में 20 ठिकानों को निशाना बनाया, तो पलटवार में ईरान ने मिडिल ईस्ट में 21 अमेरिकी बेस को टारगेट किया। सबसे बड़ा दावा जॉर्डन में F-35 हैंगर को तबाह करने का है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि उसने पश्चिम एशिया में अमेरिकी और सहयोगी देशों के कुल 21 हवाई और नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान ने दावा किया कि जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर मौजूद F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर नष्ट कर दिए गए हैं। ईरान ने यह भी दावा किया है कि जॉर्डन में मौजूद एक अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। इसके अलावा IRGC का कहना है कि उसने ईरान के जम शहर के ऊपर उड़ रहे एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराया है। ईरानी सेना ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका की ओर से कोई नई सैन्य कार्रवाई की जाती है तो उसका जवाब और अधिक ताकत से दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने अमेरिका के ताजा हमलों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि लड़ाई में हार के बावजूद अमेरिका ने हमारी दृढ़ता को परखने की कोशिश की। हमारी ताकत पर सेना किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगी। अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारे क्षेत्र से चले जाएं। जवाब दिए बिना नहीं रहेगी अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारे क्षेत्र से चले जाएं। ईरान ने दावा किया कि उसने बहरीन में अमेरिकी ठिकाने पर सीधा हमला किया है। IRIB न्यूज ने वीडियो जारी कर दावा किया कि ईरान की मिसाइल सीधे अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय पर जाकर गिरी है। ईरान ने बहरीन और जॉर्डन के साथ साथ कुवैत में भी हमले किए। यहां अमेरिकी सेना के अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान की मिसाइलें और ड्रोन काल बनकर टूटे, जिससे कुवैत एयरपोर्ट तक थर्रा उठता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि उनकी सेना ने ईरान के हौसले पस्त कर दिए हैं, उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन ईरान ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखा दी। आपको बता दें कि ईरान पहले ही कह चुका है कि अभी तक उसने अपना ब्रह्मास्त्र नहीं निकाला है। ईरान ने बाकायदा वीडियो जारी कर मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया। ईरान ने इन हमलों के लिए बड़े पैमाने पर लंबी दूरी की मिसाइलें लॉन्च की। वीडियो में अमेरिकी ठिकानों की ओर लंबी दूरी की कद्र, इमाद और खैबर शेकन मिसाइलों को लॉन्च करते हुए दिखाया गया। ईरान ने चुन चुन कर अमेरिकी एयरबेस पर प्रहार किया। जैसे ही ईरान ने अमेरिकी हमलों पर पलटवार किया तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा कि फिलहाल अमेरिकी हमले खत्म हो चुके हैं, लेकिन स्थिति अब भी सक्रिय बनी हुई है। जबकि IRGC ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर और भी ज्यादा बड़ा और तगड़ा हमला किया जाएगा। IRGC ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने ये हमले दक्षिणी ईरान में अमेरिकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना को झूठा बहाना बनाकर किए हैं और हमारे ये हमले अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में हैं। जबकि ट्रंप ने ईरान के हारने का दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरानी सेना पूरी तरह से बिखर चुकी है, नौसेना और वायुसेना लगभग खत्म हो चुके हैं।

0: अली खामिनई को अभी नहीं दफनाया जाएगा। फिर टला अली खामिनई का अंतिम संस्कार। क्या खामिनई के अंतिम संस्कार में युद्ध है रोड़ा? मुहर्रम में खामिनई का होना था अंतिम संस्कार। खामिनई की अंतिम विदाई पर लगा ग्रहण। अगर मुहर्रम के महीने में अली खामिनई का अंतिम संस्कार होता तो इसका मतलब यही था कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम बेहद करीब है, क्योंकि ट्रंप ने भी यही संकेत दिए थे कि 4 जुलाई से पहले पीस डील पर साइन हो सकते हैं। मुहर्रम का महीना ईरान के लिए खास है और 4 जुलाई ट्रंप के लिए, क्योंकि 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लेकिन ताजा हमलों की वजह से खामिनई का अंतिम संस्कार टल गया है, इसे यूं समझिए। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामिनई की मौत हुई। इसी हमले में अली खामिनई के बेटे मुज्तबा खामिनई भी बुरी तरह जख्मी हो गए थे। पिता के निधन के बाद सर्वसम्मति से मुज्तबा खामिनई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया। लेकिन मुज्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद भी अली खामिनई को सुपुर्दे खाक नहीं किया गया। बीते दिनों इस्लामी कैलेंडर के पहले और सबसे पवित्र महीने मुहर्रम में अली खामिनई की आखिरी विदाई, अंतिम संस्कार और दफन समारोह की खबरें आई थी। दावा किया गया था कि 21 जून को खामिनई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा, लेकिन अंतिम संस्कार से पहले एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस बीच अली खामिनई के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की देखरेख करने वाली आधिकारिक समिति ने ऐलान किया है कि मुहर्रम के बाद इसका आयोजन होगा। मतलब यही है कि युद्ध के चलते एक बार फिर अंतिम संस्कार के आयोजन को टाल दिया गया। आधिकारिक बयान में दावा किया गया है कि अब अली खामिनई के अंतिम संस्कार, जनाजे और दफनाने की रस्में मुहर्रम के पहले 10 दिनों के बाद आयोजित की जाएंगी। शहीद आयतुल्लाह अली खामिनई का अनुसरण करते हुए इमाम हुसैन की शहादत की याद में और ईरान और दुनिया भर में इन दिनों शोक समारोह आयोजित करने के महत्व को देखते हुए अली खामिनई की अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार और दफन समारोह मुहर्रम के पहले 10 दिनों के बाद आयोजित किए जाएंगे। शोक और अंतिम संस्कार समारोहों में भाग लेने वाले लाखों लोगों को सुविधा देने के लिए संबंधित अधिकारियों और सार्वजनिक समूहों के बीच अंतिम समन्वय के बाद ये समारोह आयोजित किए जाएंगे। इन समारोहों के बारे में विस्तृत जानकारी उचित समय पर बाद में घोषित की जाएगी। बड़ी बात यह है कि अली खामिनई के शव को कहां रखा गया है, इसे लेकर अब तक ईरान सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक खामिनई के शव को किसी गुप्त लोकेशन पर रखा गया है। मार्च में अंतिम दर्शन के लिए तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स में रखने की तैयारी थी। अचानक अंतिम दर्शन के कार्यक्रम को सुरक्षा कारणों से टाल दिया गया। 28 फरवरी के बाद कई ऐसे मौके आए जब खामिनई को दफनाए जाने की खबरें आईं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खामिनई को दफनाने के फैसले में हो रही देरी की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और इसराइल के हमले का डर। IRGC को लगता है कि सार्वजनिक अंतिम संस्कार के आयोजन में कई तरह के सुरक्षा जोखिम शामिल हैं। खास तौर से अंतिम संस्कार के दौरान सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसा क्यों, इसे समझिए। खामिनई के अंतिम संस्कार में सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई शामिल होंगे। अंतिम संस्कार में ईरान की टॉप लीडरशिप मौजूद रहेगी। अंतिम संस्कार में IRGC और सेना के टॉप कमांडर मौजूद रहेंगे। ईरान को डर है कि सेना की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया जा सकता है। हमले को लेकर अमेरिका और इजराइल के लिए ये सबसे मुफीद वक्त होगा। ईरान के डर की वजह भी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति कई बार ईरान पर हमले की धमकी दे चुके हैं।
1: They're saying that he lost his leg, one leg, and he's, been hurt very badly. Other people are saying he's dead. Nobody's saying he's 100% healthy.
0: इससे पहले 21 जून को

0: खामिनई को दफनाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक खामिनई की अंतिम इच्छा के मुताबिक उन्हें मशहद शहर में इमाम रजा की दरगाह के परिसर के पास दफनाया जाएगा। अंतिम संस्कार का पूरा आयोजन IRGC के सुरक्षा इंतजाम के बीच किया जाएगा। खामिनई के अंतिम दर्शनों के लिए करीब 2 करोड़ लोग जुट सकते हैं, लिहाजा अंतिम संस्कार पूरे 3 दिन तक चलेगा। जानकारी के मुताबिक अंतिम दर्शनों के लिए खामिनई के शव को तेहरान में रखा जाएगा, जो कम से कम 24 घंटे तक चलने की उम्मीद है। इसके बाद पार्थिव शरीर को धार्मिक शहर कुम ले जाया जाएगा और फिर मशहद पहुंचाया जाएगा, जहां इमाम रजा की दरगाह परिसर में उन्हें दफनाने की तैयारी है। कई बड़े शहरों में शोक जुलूस निकाले जाएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होते ही अंतिम संस्कार की व्यवस्था की देखरेख करने वाली समिति ने साफ कर दिया है कि 21 जून को अंतिम संस्कार नहीं होगा। अब ये कब होगा, इसका आधिकारिक ऐलान ईरान करेगा। आज तक ब्यूरो।
1: क्या अमेरिका और ईरान की तरफ से हमले यही रुक जाएंगे या फिर जंग और ज्यादा भीषण होने जा रही है? तो आइए देखते हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के दिमाग में चल क्या रहा है।
0: अब पीस डील नहीं, जंग अंजाम तक पहुंचेगी। अब परमाणु हथियारों पर आग पार की लड़ाई होगी। अब ईरान के यूरेनियम पर टक्कर जोरदार होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया। मुज्तबा खामनेई भी महायुद्ध के लिए तैयार हैं। दक्षिणी ईरान में अमेरिकी हमलों के बाद 20,000 लोगों की पीने के पानी की सप्लाई ठप हो गई है। बामानी जिले में पानी के 2 रिजर्वॉयर मिसाइल हमले में पूरी तरह तबाह हो गए हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान के पावर प्लांट और पुलों पर नए हमलों का ऑर्डर देने जा रहे हैं। ट्रंप ने कह दिया है कि अगर ईरान ने परमाणु प्रोग्राम पर जल्दी सरेंडर नहीं किया तो बड़ी तबाही होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान परमाणु समझौते पर जल्द फैसला नहीं करता है तो अमेरिका उसके बिजली संयंत्रों और पुलों पर नए हमले कर सकता है। मैं आगे भी कार्रवाई जारी रख सकता हूँ। उनके पास समझौते पर दस्तखत कर बचने का मौका था। इस बयान से ठीक पहले ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर ईरान को चेतावनी दी थी कि ईरान ने बहुत देर कर दी, अब उसको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जबकि अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने खास तौर से कुवैत को टारगेट किया है ताकि अपना सुरक्षा कवच तैयार कर सके, क्योंकि कुवैत में करीब 13,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और ये फारस की खाड़ी के बेहद रणनीतिक इलाके में स्थित है। ईरान को डर था कि अमेरिका उसके खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई में इन ठिकानों का इस्तेमाल कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान सिर्फ उन जगहों को नहीं देख रहा है जहां से उस पर हमला हुआ, बल्कि उन ठिकानों को भी निशाना बना रहा है जिनका भविष्य में उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि देश को ना युद्ध ना शांति की स्थिति से बाहर निकलना होगा। पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई भी चाहते थे कि बातचीत के जरिए इस समस्या का हल निकाला जाए और उन्होंने इसके लिए मंजूरी दी थी। युद्ध ईरान के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कोई देश उस पर हमला करता है तो ईरान जवाब देगा और किसी के सामने झुकेगा नहीं। मिडल ईस्ट मामलों के जानकारों का कहना है कि लगातार हमलों और जवाबी कार्रवाई के बावजूद अमेरिका और ईरान दोनों लंबे युद्ध से बचना चाहते हैं। उनके मुताबिक अमेरिका इन हमलों के जरिए अपनी ताकत दिखाना, अपने सैनिकों की सुरक्षा करना और समुद्री रास्तों पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। वहीं ईरान ये दिखाना चाहता है कि उस पर होने वाले हर हमले का जवाब दिया जाएगा। जानकारों के मुताबिक अगर लड़ाई लंबी चलती है तो इसका असर ईरान और अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र, तेल आपूर्ति और दुनिया के बाजारों पर पड़ेगा। जानकार ये भी कह रहे हैं कि जिस अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर के गिराए जाने के बाद ये युद्ध फिर से भड़का है, ईरान शायद इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। उनके मुताबिक ऐसा करने से अमेरिका को और बड़े हमले करना या सीधे युद्ध शुरू करने का मौका मिल सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी 12 साल में कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ देश। इन्होंने धीमे विकास को कहा था हिंदू ग्रोथ रेट। बोले 2047 तक विकसित भारत हमारा संकल्प। एनडीए की बैठक में नेताओं ने की प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। अभिनंदन प्रस्ताव पास। शुभेंदु ने खिलाई झालमुरी। ट्रंप ने भी बधाई संदेश में बताया अपना दोस्त। ममता को फिर लगा बड़ा झटका। बागी गुट के 19 लोकसभा सांसदों ने जारी की है लिस्ट। शत्रुघ्न सिन्हा और सायोनी घोष का भी नाम। भूपेंद्र यादव के घर कुछ नेताओं की बैठक। कांग्रेस को लगी दोहरी चोट। झारखंड में एनडीए समर्थित राज्यसभा प्रत्याशी परिमल नाथवानी का पर्चा मंजूर। एमपी में मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर आयोग जल्द करेगा फैसला। और ईरान पर फिर बारूद बरसाएंगे ट्रंप। का निशाने पर हैं पावर प्लांट और पुल। पिजिश्कियान ने बताया हताशा भरा कदम।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 10 जून यानी इतिहास के पन्नों में दर्ज नए कीर्तिमान की तारीख। लगातार सबसे लंबे समय तक जनता की वोट के दम पर मिली जीत से प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड अब नरेंद्र मोदी के नाम है। मोदी ने आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन तोड़ने से अधिक यह तारीख जोड़ने के लिए याद रहेगी, जो बताती है कि जनता से जुड़ने वाला लीडर ही जनता का उस दौर में सुप्रिय बन जाता है जब लगातार 3 बार सत्ता हासिल करना दुनिया के विभिन्न लोकतांत्रिक देशों में असंभव है। लेकिन जनता को भगवान मानने वाले नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को सत्ता का प्रसाद जनता सौंपकर सब संभव कर देती है।
2: जैसे यहां बताया गया कि मैं पहली बार यहां आया हूं, शायद मेरे जीवन में हर बार ऐसा ही हुआ है। मुख्यमंत्री बना उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री की चैम्बर देखी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने विधानसभा गृह देखा था। आज भी ऐसा ही एक अवसर आया है, लेकिन हम इस ऐतिहासिक स्थान पर बैठे हैं। तब मैंने प्रारंभ में कहा यह लोकतंत्र का मंदिर है। 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं इस पवित्र मंदिर पर टिकी हुई है।
3: लोकतंत्र के उसी मंदिर में अब 140 करोड़ लोगों की आकांक्षा की पूर्ति के लिए प्रधान सेवक के पद पर नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के विश्वास को ऐतिहासिक 12 साल हो चुके हैं। जब नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो कैबिनेट ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रधानमंत्री को बधाई दी। मंत्रियों ने उनकी उपलब्धि पर खड़े होकर तालियां बजाई, मेज थपथपाई। 12 साल कहना शायद पूरी तरह सही ना हो, सही होगा कहना कि 4,399 दिन से नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। जिस दौर में सत्ता से हाथ छूटने पर गठबंधन का साथ छोड़ने में पल भर सियासत नहीं लगाती, राजनीति के उस युग में भी 35 दल 75 नेता 22 मुख्यमंत्री को साथ लेकर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। आज से नहीं, लगातार, अनवरत, निरंतर।
4: मैं अभिभूत हूं, कृतज्ञ हूं। चरैवेति चरैवेति के मंत्र का जाप करते हुए इस राजनीतिक यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए एक दिन ये पड़ाव भी आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था।
3: 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ। कांग्रेस सत्ता में आई। संसदीय दल ने नेहरू को अपना नेता चुना। पंडित नेहरू 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक लगातार निर्वाचित पीएम रहे। नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल 4,398 दिन का रहा। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री, जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री, 4,399 दिन अब पूरे कर चुके हैं। इसीलिए निर्वाचित पीएम के तौर पर मोदी ने कीर्तिमान रचा है। उसी कीर्तिमान को रचने वाले ऐतिहासिक मौके पर भारत मंडपम में पूरा एनडीए एकजुट होता है। रिकॉर्डधारी प्रधानमंत्री का लगातार जनता के बीच चुना जाना क्यों ऐतिहासिक है, ये गृहमंत्री बताते हैं। एनडीए की इसी बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पीएम मोदी के सम्मान में एक विशेष प्रस्ताव पेश करते हैं। प्रस्ताव में पीएम मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री बनने का उल्लेख किया जाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और बताते हैं कि मोदी केवल 12 साल के नहीं बल्कि इस सदी के लीडर हैं।
5: 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू नरेंद्र मोदी जी, ऑलवेज इज एनर्जेटिक, नॉट ओनली एनर्जेटिक, ही विल गिव एनर्जी फॉर अदर्स, दैट इज हाउ ही इज मेंटेनिंग हिमसेल्फ। फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी जी इज इक्वल टू एनी लीडर इन द वर्ल्ड, I can say very clearly, all surveys are indicating who is very popular leader globally, that is our Honorable Prime Minister, that is our pride for the nation, and we are very happy for that.
6: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल, सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व में आज हमारा भारत विकास और समृद्धि के नए क्षितिज को छू रहा है। मोदी जी के इसी मजबूत नेतृत्व के बदौलत आज देश विकसित भारत बनने की राह पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज भारत सिर्फ प्रगति ही नहीं कर रहा है बल्कि प्रगति की नई परिभाषा लिख रहा है।
7: हम लोग इस गठबंधन का हिस्सा बने और पिछले 12 सालों से निरंतरता से न सिर्फ हमारा ये रिश्ता मजबूत रहा बल्कि एनडीए गठबंधन का दायरा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कई और राजनीतिक दल इस गठबंधन का हिस्सा बने, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सबको एक साथ लेकर चलने की उनकी सोच, सबको परिवार की तरह उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े होने की सोच ने ही उनको आज देश के सर्वोच्च नेता की श्रेणी में सबसे आगे उनको खड़ा करने का काम किया।
3: जिस वक्त विपक्ष चुनावी हार के बाद बिखरा हुआ है, तब सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए नए उच्चमान स्थापित करते नरेंद्र मोदी एनडीए की बैठक में कांग्रेस शासनकाल याद कराते हैं। बताते हैं कि पहले विफलता कांग्रेस की होती रही लेकिन कलंक हिंदू आबादी पर लगाया जाता रहा।
8: सवाल ये है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा।
1: हमारे भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है, वहां पर नेता पर विश्वास होना अपने आप में अभूतपूर्व है। हमारे देश की जनता का मोदी को पिछले 12 वर्षों से दिया जाने वाला समर्थन मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनाता है। जहां एक तरफ दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों की सरकारें कमजोर हो रही हैं, नेताओं को अपने पद से हाथ धोना पड़ रहा है, वहीं नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री पद पर रिकॉर्ड बनाकर मिसाल कायम कर रहे हैं।
9: प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस।
10: आई डोंट नीड टू टेल एनीवन हियर, ही इज द मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर फॉर अ रीजन।
11: I think you are an inspiration for the rest of the world.
12: I think is that the most loved one of all around the world.
13: Prime Minister Sri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude.
14: I am a fan of Modi, so
15: his vision for digital India was ahead of its time.
3: नरेंद्र मोदी भारत में सबसे लंबे वक्त तक सत्ता के शिखर पर रहने वाले नेता ही नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुनिया के भी सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं।
16: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा.
5: ए हिस्टोरिक ट्रिब्यूट टू इंडिया, हिस्टोरिक ट्रिब्यूट टू इंडिया लॉन्गेस्ट सर्विंग कंटिन्यूअसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 32 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सर्वोच्च या नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुकी हैं, जिसमें फ्रांस, रूस, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं. जब दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में जनता सरकारें बदल रही हैं, तब भारत में 12 वर्षों से नेतृत्व और नीतियों में निरंतरता है. यही बात दुनिया को नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान से भर देती है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जो मोदी की तारीफ का कोई मौका नहीं छोड़ते. आज तक से बातचीत में पुतिन ने मोदी को लेकर जो कुछ कहा था वो आपको सुनना जरूरी है.
17: He's a very reliable person. In that sense, I'm speaking very sincerely. India got lucky. He lives India. I'm talking to him and I know him.
3: व्लादिमीर पुतिन हो या फिर दुनिया का दूसरा कोई बड़ा नेता, सबकी एक राय है कि दबाव डालकर नरेंद्र मोदी को झुकाना नामुमकिन है.
8: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है. दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है. दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतर कर दिखाना है. साथ ही हमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है. हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है.
3: मोदी की यही बात दोस्तों को भाती है, जिनके लिए भारत किसी प्रेरणा से कम नहीं है. ये बात दुनिया भर के नेताओं की तरफ से भेजी गई शुभकामनाओं में भी दिखती है. दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने बधाई संदेश में लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने कई वर्षों तक भारत के विकास और प्रगति का नेतृत्व किया है. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि न केवल आपके कार्यकाल की अवधि को दर्शाती है, बल्कि उस भरोसे और विश्वास का भी प्रमाण है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता ने बार बार आपके नेतृत्व में जताया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने भारत की सीमाओं से परे श्रीलंका सहित कई देश के लोगों को प्रेरित

0: समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि न केवल आपके कार्यकाल की अवधि को दर्शाती है बल्कि उस भरोसे और विश्वास का भी प्रमाण है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता ने बार बार आपके नेतृत्व में जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने भारत की सीमाओं से परे श्रीलंका सहित कई देश के लोगों को प्रेरित किया है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक निजी वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को एक रोल मॉडल और लीडर
1: मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने वालों में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पिछले दिनों रोम में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके और एक विशेष रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत करके खुशी हुई जो भविष्य में हमारे देशों और लोगों के लिए नए अवसर बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगी। दुनिया भर के करीब 20 देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को 146 करोड़ लोगों का नेतृत्व करते हुए 12 साल पूरे होने पर बधाई दी। दुनिया के लिए हैरानी की बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी इतनी लंबी पारी खेलने के बावजूद भारत की तरह पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कैसे हैं? ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट ने अप्रैल 2026 में बताया कि मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा 70% अप्रूवल रेटिंग वाले नेता हैं। उनके बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग 63% अंकों के साथ हैं। ईरान संघ युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे नीचे से 10वें नंबर पर हैं।
1: इन वन डेकेड इंडिया हैज सीन अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन देन वी वेयर द 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ वी आर नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ द टॉप 3।
0: बड़ी बात यह है कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले दूसरे देशों के नेताओं की छवि लगातार वहां की जनता की नजरों में कमजोर हो रही है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज सर्वे में दुनिया के सबसे अलोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। करीब 76% उत्तरदाताओं ने उनके कामकाज से असंतुष्टि दिखाई जबकि वो पिछले साल मई महीने में जर्मन चांसलर बने। सर्वे में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन दूसरे सबसे अलोकप्रिय नेता हैं। उनके काम से 75% उत्तरदाता असंतुष्ट रहे। लोकतांत्रिक देशों में नेताओं की इस अलोकप्रियता की वजह जंग के कारण महंगे तेल से बढ़ती महंगाई और कमजोर होती उनके देश की अर्थव्यवस्था है। खतरनाक होती दुनिया नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरी है जिसके असर से जनता को बचाने में मोदी सरकार अब तक खुद को कामयाब बताती है।
2: चुनावी समीकरण अब बदलते जा रहे हैं। अब एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी को अपनी शक्ति बीजेपी बना रही है। गवाही पहले गुजरात मध्य प्रदेश दिया करते थे, अब हरियाणा असम महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश बिहार समेत विभिन्न राज्य दे रहे हैं। जहां लगातार दो बार नहीं बल्कि लगातार तीन बार चुनावी विजय हासिल करने में बीजेपी सबसे आगे है, कांग्रेस तो दूर दूर तक नहीं है। और क्या यही कारण है कि लगातार चौथी बार 2029 में भी जीत का चौका लगाने की जमीन नरेंद्र मोदी तैयार करने में लग गए हैं?
3: मोदी है तो मुमकिन है।
4: देश की आस्था और विश्वास प्रधानमंत्री जी के साथ,
5: वो अतिमानव सुपर ह्यूमन है।
0: 4,399 दिन का कार्यकाल और लगातार बनते रिकॉर्ड के साथ नरेंद्र मोदी पर बीजेपी की विजय विस्तार और मजबूत आधार का भरोसा हर नेता कार्यकर्ता को है। तो इसकी वजह क्या है समझना है तो 46 साल पहले चलिए। भारत के पश्चिमी छोर पर मौजूद मुंबई, अरब सागर के किनारे मौजूद भारत की आर्थिक राजधानी, अब से 46 साल पहले साल 1980 अरब सागर के तट पर मुंबई में बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में एक भविष्यवाणी होती है।
6: भारत के पश्चिमी घाट को

0: मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा।
1: अब देश के 22 राज्यों और 72% क्षेत्रफल के साथ 78% आबादी वाले राज्यों में बीजेपी या एनडीए का कमल खिल चुका है और यहां कमल खिलाने के साथ ही नरेंद्र मोदी अब 2029 के लक्ष्य में जुट चुके हैं। बड़ी खबर ये कि 2024 में बीजेपी को लगातार तीसरी बार अपने दम पर बहुमत पाने से रोक लेने में जिस विपक्ष को सबसे बड़ी जीत लगने लगी थी।
2: कांग्रेस पार्टी आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ।
1: लगातार तीन बार देश का चुनाव जीतने वाले नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 के नतीजे से एक खिड़की खुलने से उत्साहित विपक्ष को अंदाजा नहीं है कि दो साल के भीतर बीजेपी वापस अपनी पकड़ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मजबूत करने लगी है।
3: हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम मेड इन इंडिया शिप पर ट्रेड करेंगे और कंटेनर भी मेड इन इंडिया होंगे। शिप मेंटेनेंस और रिपेयर से लेकर स्क्रैपिंग तक की सर्विसेज भी भारत देगा। यही विजन हमारे एविएशन सेक्टर के लिए है। आज हम मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाएगा। देशवासी मेड इन इंडिया विमान में ही यात्रा करेंगे, वो दिन मैं देख रहा हूं दोस्त।
1: 2024 के बाद अब तक देश के 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की इन राज्य में 497 असेंबली सीट पर बढ़त थी जो अब बढ़कर 664 हो चुकी है, यानी 167 विधानसभा सीट के फायदे में बीजेपी आ चुकी है। इसे लोकसभा सीट के तौर पर बदले तो 21 लोकसभा सीट का फायदा बीजेपी को अब तक हो चुका है। इसी दौरान कांग्रेस की स्थिति पलटी है, वो 353 सीटों से घटकर 171 विधानसभा सीटों पर आ गई, जिससे उसे 182 विधानसभा सीटों का नुकसान होता दिखता है। 12 वर्षों में एक बार फिर जहां नरेंद्र मोदी वापस सत्ता की सियासत में वही मजबूती हासिल करने लगे जिसके लिए उनकी पहचान नहीं, तो इसकी वजह विपक्ष की उन चालों से सावधान रहना भी है जिसे वाजपेयी युग में नरेंद्र मोदी देख चुके हैं।
4: हमने मेहनत की, हम लोगों में गए हैं, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, ये कोई चुनाव में कुकर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी है।
1: पिछली सदी में 90 के दशक में सत्ता तक बीजेपी पहली बार पहुंचती है, लेकिन 96 से 1998 तक विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को रोकता रहा, बाधा बनता रहा।
4: इस सदन में एक एक व्यक्ति की पार्टियां, एक एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे साथ हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे।
1: अप्रैल 1999 जब एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी, विपक्ष की राजनीति के उन दांव पेच को नरेंद्र मोदी भूले नहीं।
3: खरीद फरोख्त तब भी हो सकती थी, बाजार में माल तब भी बिकता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार ने एक वोट से हारना पसंद किया, इस्तीफा दिया, लेकिन असंवैधानिक कोई कृत्य नहीं किया।
1: नरेंद्र मोदी जानते हैं कि विपक्ष बार बार अलग अलग तरह के गठजोड़ करके उन्हें भी रोकने में जुटा है, इसीलिए वो कोर्स करेक्शन वाली राजनीति बहुत तेज करते हैं, जिसका नतीजा है कि मोदी राज में बंगाल जीतने के बाद 9 राज्यों में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बन चुका है। 3 बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुमत के साथ सरकार बना चुकी बीजेपी एनडीए ने विधानसभा के चुनावों में भी नई लकीर खींची। 2014 से अब तक 72 बार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए तो 32 बार राज्यों के सीएम बीजेपी के बने, 10 बार राज्यों में गठबंधन की सरकार बनी, 42 बार बीजेपी एनडीए को सत्ता मिली, 30 राज्यों में बीजेपी और एनडीए को हार का सामना करना पड़ा।
5: बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। एकमात्र झारखंड राज्य के अपवाद को हम छोड़ दें तो जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कमल खिला, वहां से फिर कभी कमल मुरझाया नहीं। रिपीट जीत से लेकर बीजेपी सरकारों की जीत की हैट्रिक से राजनीति शास्त्र के पन्ने भर दिए गए, जो मोदी की राजनीति पर जनता के विश्वास की मुहर लगाते हैं।
6: शुभेंदु अधिकारी।
1: 9 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वें ऐसे राज्य में अपनी पार्टी का इकबाल बुलंद होते देख रहे थे जहां पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ ले रहा था। याद आया होगा वो वक्त भी जब पूरे देश में बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर थी, अब 22 राज्यों में, उसमें भी 9 राज्यों में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री।
3: दल से हमेशा अगर बड़ा कुछ है तो हमारा देश है, दल से बड़ा देश है। और जब नेशन फर्स्ट, देश प्रथम की भावना से काम होता है तो कोई भी निर्णय कठिन नहीं होता।
1: समर्थक इसे प्रधानमंत्री मोदी के शासन में बीजेपी का स्वर्णिम काल कहते हैं। गुजरात में 1995 से बीजेपी की निरंतर सरकार, 2003 से मध्य प्रदेश में, बीच के 15 महीने छोड़ तो 2 दशक से अधिक समय से बीजेपी ही सत्ता में है। गोवा में 2012 के बाद से बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के विचार पुरुषों ने सरकारों के स्थायित्व की जो परिपाटी डाली, नरेंद्र मोदी उसे बुलंदियों के छोर तक ले गए और न सिर्फ स्थायी सरकारों के रिकॉर्ड का विस्तार किया बल्कि असंभव राज्यों में भी सरकारें बनाकर राजनीति का स्थायी परिवर्तन संभव किया। जहां बीजेपी कभी थी ही नहीं, वहां भी उनके मुख्यमंत्री हुए। 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। अविभाजित शिवसेना के साथ पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। 2014 में ही हरियाणा की जीत के बाद पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल खट्टर ने शपथ ली। बीजेपी यहां जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। 2016 में पहली बार बीजेपी असम में जीती और पूर्वोत्तर में मोदी युग शुरू हुआ। सर्वानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने, यहां भी बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई। बीजेपी ने 2016 में पहली बार अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाई और पेमा खांडू मुख्यमंत्री बने। 2017 में बीजेपी ने मणिपुर में गठबंधन सरकार बनाई और पहली बार बीजेपी के एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। सीमावर्ती राज्य में ये बीजेपी की पहली सरकार थी। 2018 में लेफ्ट दलों के सबसे मजबूत समझे जाने वाले गढ़ त्रिपुरा में बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की और अब तक लगातार 2 बार वहां बीजेपी की सरकार। 2024 में नवीन पटनायक के 24 वर्षों के शासन को खत्म करके पहली बार बीजेपी ने बहुमत से सरकार बनाई। 2026 में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ ली। 2026 में ही पश्चिम बंगाल में भी पहली बार बीजेपी का राज स्थापित हो चुका है और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का विस्तार लगातार जारी है।
5: सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य करने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम बन चुका है और वो अभी भी प्रधानमंत्री हैं। इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी 12 साल में कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ देश। इन्होंने धीमे विकास को कहा था हिंदू ग्रोथ रेट। बोले 2047 तक विकसित भारत हमारा संकल्प। एनडीए की बैठक में नेताओं ने की प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। अभिनंदन प्रस्ताव पर शुभेंदु ने खिलाई झालमुरी। ट्रंप ने भी बधाई संदेश में बताया अपना दोस्त। ममता को फिर लगा बड़ा झटका। भूपेंद्र यादव के घर कुछ नेताओं की बैठक। कांग्रेस को लगी दोहरी चोट। झारखंड में एनडीए समर्थित राज्यसभा प्रत्याशी परिमल नाथवानी का पर्चा मंजूर। एमपी में मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर आयोग जल्द करेगा फैसला। और ईरान पर फिर बारूद बरसाएंगे ट्रंप। का निशाने पर है पावर प्लांट और पुल। पिजिश्कियान ने बताया हताशा भरा कदम। ममता बनर्जी को झटके पे झटका लग रहा है। राज्यसभा की सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ दी, राज्यसभा की सदस्यता भी छोड़ दी। उनसे पहले सुखेंदु रॉय ने साथ छोड़ा था। सत्ता जाने के बाद अब टीएमसी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है।

0: अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिल रहे हैं। ममता बनर्जी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और केजरीवाल से मिल रही हैं। और मुलाकात का मजमून ये है कि दिल्ली में बैठकर ममता अपना राजनीतिक वजूद बचाने की जद्दोजहद कर रही हैं, लेकिन वो वजूद बचता नहीं दिख रहा। पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, आज सुष्मिता देव पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता दोनों छोड़ गई।
1: मैं किस तरह की राजनीति करूंगी, कहां से करूंगी, ये मेरा निर्णय है और मेरा हक है, क्योंकि राज्यसभा मुझे एक पार्टी से मिला था
2: जी।
1: हाँ, जहां विधायकों ने वोट दिया था, बंगाल के लोगों ने इनडायरेक्टली दिया था। तो अगर पार्टी से इस्तीफा दिया तो फिर राज्यसभा सीट भी छोड़ना चाहिए।
0: आज सुबह सुबह सुष्मिता देव की असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। दोनों असम से हैं तो लग यही रहा है कि सुष्मिता के इस्तीफे के पीछे हिमंता बिस्वा सरमा की बड़ी भूमिका है। ये भी तय लग रहा है कि इस्तीफे से खाली सीट पर उपचुनाव में बीजेपी सुष्मिता को उम्मीदवार बनाएगी।
1: मेरी राजनीति बंगाल में नहीं है, मेरी राजनीति असम में है
2: जी।
1: और मुझे असम में ही राजनीति करना है।
0: लेकिन ममता के सामने बड़ा सवाल ये है कि अब उनका क्या होगा, शायद वो आगे का रास्ता तलाश रही हैं।
3: जीतने के बाद भी बोले थे, बोलने की कोशिश किए थे, वहाँ पे सिस्टम नहीं है बोलने का, बोलने से सब रोकते हैं, जो नहीं बोलना है नहीं बोलना है। तो और अगर बोले भी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलते, आप 7 दिन 10 दिन इंतजार करो।
0: तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने दिल्ली आई ममता बनर्जी यहाँ से क्या हासिल कर लौटती है, क्योंकि कोलकाता में तो उनके लिए हर दिन भारी साबित हो रहा है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
4: मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस ने बुधवार को एक दिन का उपवास रखा, चुनाव आयोग पर निशाना भी साधा। चुनाव आयोग को इस पर फैसला करना है। अब
5: प्रदर्शन उस फैसले के खिलाफ है जिसमें मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता एक दिन का उपवास करके इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा सीट के लिए प्रत्याशी नहीं रहे। बाह में काली पट्टी बांधकर उपवास पर बैठे हैं कांग्रेस के नेता।
6: कांग्रेस के तमाम दूसरे नेता जो है वो राजधानी भोपाल में इकट्ठा हुए हैं और इस उपवास के जरिए मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द हुआ है, न केवल उसका विरोध जता रहे हैं बल्कि साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने राजनीति से प्रेरित होकर के मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को जानबूझ करके रद्द किया है।
5: उधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इधर दिल्ली में कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन के मामले में चुनाव आयोग में लिखित शिकायत दर्ज की। अब कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग को भी निशाने पर ले रहे हैं।
7: मैं तो बहुत पहले एक बात कही थी कि एक कुर्सी इलेक्शन कमीशन में डाल दीजिए, जो पर्ची बीजेपी ऑफिस से आए उसको सर्टिफिकेट दे दे, तो चुनाव का पैसा तो बचेगा देश का।
8: उस पे कोई FIR नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई सजा नहीं, लेकिन नामांकन रद्द कर दिया क्योंकि वो कांग्रेस की प्रत्याशी थी।
5: लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर था, इसीलिए उसने जानबूझकर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करा दिया।
9: जिस दिन दिग्विजय सिंह जी को टिकट नहीं मिला तो उनके नेताओं ने खुलेआम बोला था कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होगी और कांग्रेस को मालूम था क्रॉस वोटिंग होगी, और इसीलिए मेरा स्पष्ट आरोप है, मेरा स्पष्ट मानना है कि ये फॉर्म कांग्रेस ने स्वयं ने रिजेक्ट करवाया है।
5: मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद अब MP में तीनों सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट निर्विरोध है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: मुंबई में NCP का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया। शरद पवार ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की तुलना नेहरू के कार्यकाल से नहीं है, नहीं करनी चाहिए, सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश बेहद ही मुश्किल चुनौतियों से गुजर रहा था। शरद पवार ने इंदिरा गांधी को भी याद किया, 3 साल पहले NCP 2 हिस्सों में बंट गई थी।

0: कई दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत का केंद्र रहे शरद पवार की मौजूदगी में एनसीपी का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुंबई के वाई बी चौहान सेंटर में एनसीपी के स्थापना दिवस पर पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने नेहरू गांधी परिवार की विरासत का खुलकर बचाव करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। शरद पवार ने पहले प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल की तुलना पीएम मोदी के कार्यकाल से करने को गलत बताया।
1: नेहरू जिसके प्रधानमंत्री उससे जिसके प्रधानमंत्री आनंद
0: स्थापना दिवस के मौके पर शरद पवार की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा।
2: आज एनसीपी पार्टी का 27वां फाउंडेशन डे समारोह पूरा हुआ। मुंबई में सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता समेत खुद पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार उन्होंने सभी को संबोधित भी किया। हमारे साथ सांसद नीलेश लंके जी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कई सारे मुद्दों पर आज संबोधन हुआ, लेकिन सबसे अहम बात जो आज शरद पवार इन्होंने कही वो ये थी कि पीएम मोदी उनका सबसे ज्यादा कार्यकाल वो मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसकी तुलना सीधे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके कार्यकाल से की जा रही है, तो उस पर आपत्ति जताइए, क्या कहना है आपका? आप भी दिल्ली में संसद में काम करते हैं।
3: पवार साहब ने अभी बोला है नेहरू का और किसी का भी तुलना नहीं हो सकती। जो देश के लिए नेहरू गांधी परिवार ने किया है, गांधी परिवार ने तो देश के लिए बलिदान दिया है और नेहरू परिवार ने भी देश के लिए बहुत दिया है। आज की स्थिति और वो टाइम की स्थिति में बहुत बदलाव था, इसलिए नेहरू का काम सबसे ऊंचा ही।
0: शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, पार्टी का कर्तव्य जनता की सेवा करना है, खासकर ऐसे समय में जब देश बढ़ती महंगाई और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जूझ रहा है।
2: आज जो संबोधन किया उससे क्या कुछ चीजें आप लेकर जा रहे हैं, क्योंकि संघर्ष का काल है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आंदोलन करने पड़ेंगे, सड़क पर उतरना पड़ेगा।
3: किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए आंदोलन करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे नेता ने ये सिखाया हमें सबको, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए आपने काम ही करना पड़ेगा। आज जो गवर्नमेंट में, राज्य में और सेंट्रल में काम करता है वो किसानों के खिलाफ में, खिलाफ का गवर्नमेंट है, बेरोजगारों के खिलाफ का गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट में कुछ एजेंडा नहीं, उसमें एक ही एजेंडा है, डेवलपमेंट का कोई एजेंडा नहीं, किसानों के लिए कोई एजेंडा नहीं। उनके पास यही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम राजनीति करने का और दंगल करने का काम करते हैं।
0: स्थापना दिवस के मौके पर इंदिरा गांधी के देशभक्ति को बताने के लिए शरद पवार ने मॉस्को की उनकी यात्रा का एक किस्सा भी सुनाया। वहीं एनसीपी शरद गुट के सांसद नीलेश लंके ने उनकी पार्टी में कथित बगावत की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया।
2: बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के पार्टी के भी सांसद अब एकनाथ शिंदे के गुट के संपर्क में हैं। क्या आपकी पार्टी पर भी ऐसा कुछ प्रयास किया जा रहा है किसी से?
3: नहीं, हमारी पार्टी और हमारे सांसद लोग, हम दिल्ली में सुप्रिया ताई के नेतृत्व में काम करते हैं। हमारे पार्टी में कोई भी ऐसा नहीं, बातचीत भी नहीं आने होने भी वाली नहीं। हम सब पवार साहब के साथ है और पवार साहब के साथ ही रहने वाले।
0: स्थापना दिवस के मौके पर शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले के साथ शरद पवार के पौत्र रोहित पवार भी मौजूद रहे।
4: आदरणीय पवार साहब ने हम सबसे मार्गदर्शन किया, हमको बताया कि लोगों की लड़ाई आप सबको रास्ते पे जाके लड़नी पड़ेगी। किसानों का विषय हो, विद्यार्थी का विषय हो, महिला सुरक्षा का विषय हो, या कोई भी जो बेरोजगारी का मुद्दा है, उसके लिए आप सबको रास्ते पे उतरना पड़ेगा। आज तक जो भी लड़ाई हमारे नेताओं ने वहां पे की है, जैसे प्यास का आंदोलन हो, विद्यार्थी का आंदोलन हो, उसी के साथ शिक्षकों का आंदोलन हो, ये और ज्यादा ताकती से लड़ने की जरूरत है। इसलिए 12 तारीख को किसानों के हित पे हम सब पंडरपुर, जो अतिशय पवित्र ठिकान है, वहां पे हम किसानों के लिए, कर्ज माफी के लिए, वहां पे एक बहुत बड़ा अन्न त्याग आंदोलन वहां पे कर रहे हैं, और उसमें हमारा पक्ष हो, मित्र पक्ष हो, क्योंकि वो अपॉलिटिकल विषय है। बहुत सारे लोग वहां पे आएंगे ऐसे आप सबको लगता है, और ये आंदोलन के माध्यम से किसानों को न्याय देने की हम सब कोशिश करेंगे।
5: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर 10 जून 1999 को एनसीपी का गठन किया था, लेकिन जुलाई 2023 में एनसीपी उस समय विभाजित हो गई थी जब उनके भतीजे अजीत पवार शिवसेना बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार में शामिल हो गए थे, जिसके बाद ज्यादातर विधायक, सांसद और बड़े नेता अजीत पवार के साथ चले गए थे। आखिर में चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी माना और शरद पवार की अगुवाई वाले गुट को एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम दिया गया। अपने संबोधन में शरद पवार ने महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन की उन टिप्पणियों की भी आलोचना की जिसमें उन्होंने सिख विरोधी दंगों के लिए कांग्रेस नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया था।
2: आज इस फाउंडेशन दिन के मौके पर हमने देखा कि सभी सांसद, सभी विधायक और सभी पदाधिकारी इकट्ठा यहाँ पर आए थे और उन्होंने शरद पवार ने किए हुए संबोधन को सुना और आगे जाकर इसी तरह संघर्ष करने का प्रण भी किया। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक बालेकर, मुंबई आज तक।
6: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का कंसा पासी किला विवाद अब बड़ा राजनीतिक रूप ले चुका है, बड़ा मुद्दा बन चुका है। लखनऊ के मलिहाबाद स्थित कंसा पासी किला विवाद में अब पासी समाज का संगठन लाखन आर्मी सड़कों पर उतर आया है। लाखन आर्मी ने सूरज पासी की अगुवाई में हरदोई से एक यात्रा की शुरुआत की है।
7: पासी स्वाभिमान यात्रा लखनऊ के लिए निकली है। हरदोई में इस यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। देखिए, फूल माला से लदे हैं लाखन आर्मी के मुखिया सूरज पासी। दरअसल लखनऊ के अंदर एक नया विवाद पैदा हुआ है जिसमें कंसा पासी किले पर कब्जे को लेकर दलितों और मुसलमानों के बीच सियासी मुद्दा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में अब मलिहाबाद के कंसा पासी किला विवाद को लेकर खुद को पासी समाज का प्रतिनिधि बताने वाले लाखन आर्मी ने 31 जिलों में यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। हरदोई जिले से शुरू हो रही ये पासी स्वाभिमान यात्रा किले में शिव मंदिर को वापस पाने की मांग के साथ की जा रही है।
8: तो हमारे किला था, हमारे किले के धार्मिक स्थान थे, वो भी तो हमको संरक्षित चाहिए, तो वहाँ भी मजारे बना दी जा रही है, तो चिंता का विषय है। इसलिए आज हम उनके किले को बचाने के लिए, उनके अस्तित्व को बचाने के लिए, उनके इतिहास को बचाने के लिए 31 जिलों में भ्रमण कर रहे हैं।
7: सिर्फ लाखन आर्मी ही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता भी यही मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान के दल के नेता आज कंसा पासी किले तक जाना चाहते थे मगर पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया।
9: लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता आज कंसा पासी को किले को लेकर निकले हुए हैं और साफ तौर से वहां जाना चाहते थे पासी पर, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो पुलिस ने पूरी तरीके से वहां पर रोका हुआ है।
7: एलजेपी रामविलास भी कंसा पासी के सम्मान की बात कर रही है।
10: पासी राजा, राजा कंस जी का किला, यह मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, यह पासी पासवान समाज के गौरव और विरासत की का प्रश्न है, उनकी लड़ाई है।
7: अब ओवैसी का दल आरोप लगा रहा है कि 2027 के चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान वाली सियासत को धार दी जा रही है।
11: अयोध्या का मामला जो है ठंडा नहीं हुआ था, एक अयोध्या के लिए यात्रा निकली थी, राजा कंसा पासी के किले को लेकर के यात्रा निकाली जाएगी। तो ये जो लोग हैं, ये देश के अंदर 2027 के चुनाव को देखते हुए एक नैरेटिव सेट करने के लिए नए नए सबूत तैयार कर रहे हैं।
7: उत्तर प्रदेश में इस बार दलित वोट की राजनीति में कई नए दावेदार नजर आने लगे हैं और कंसा पासी का किला उसके केंद्र में है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
6: कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं और बिना सरकारी आदेश के शहर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन गुजरात के सूरत में एक ऐसा अजीबोगरीब वाक्य सामने आया है जिसने पूरे प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि 100 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, घरों को जमींदोज कर दिया गया, कोई नहीं जानता कि एक्शन किसके कहने पर लिया गया।
12: सूरत में बुलडोजर गरजा और देखते ही देखते 100 मकान ध्वस्त कर दिए गए। इन मकानों के मालिकों को इतना मौका भी नहीं मिला कि अपना सामान बाहर निकाल सके। तस्वीरें 3 जून की है जब सूरत के कतारगाम इलाके के नासिर नगर में बुलडोजर पहुंचा और देखते ही देखते 100 परिवारों की छतें छीन ली। लेकिन तमाशा तब शुरू हुआ जब सूरत नगर निगम ने ये कह दिया कि हमने घरों को तोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया। ऐसी कोई भी कार्रवाई में नगर निगम का कोई रोल नहीं है।
13: डिमोलिशन तो हमने नहीं किया है सूरत महानगर पालिका के लोगों ने, फक्त इतना बताया कि नगर पालिका के जो लोग थे वो जगह हमारा कलम 205 के अंडर में जो रास्ता है वो माप लेने के लिए गए थे हमारे कर्मचारी।
12: निगम जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहा है, मगर जिनके घर टूटे हैं वो बता रहे हैं कि जिस समय बुलडोजर एक्शन हुआ निगम के अधिकारी और कर्मचारी एसओजी के साथ यहीं थे।
14: पुलिस एसओजी के जो मेन थे वो हमारे को टाइम देने से मना कर रहे थे, भाई तुम्हें कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, तुम अब भी निकलो। इन लोग पूरी टीम सामान भरने वाली भी लेकर आए थे साथ में।
15: मोनिक गड़िया को हमने बोला कि सर आप हमारे को कुछ टाइम दो, तो बोले कोई टाइम नहीं, इतने बरसों से रह दिया, बहुत टाइम दे दिया आपको, अब चलो निकलो।
16: 2 घंटे का भी समय नहीं दिया, बस फटाफट उन लोग ने बुलडोजर से चालू कर दिया, तोड़ना ही चालू कर दिया।
12: सूत्रों के मुताबिक ये पूरी कवायद नासिर नगर के ठीक पीछे बन रहे एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रास्ता देने के लिए की गई थी। आरोप है कि बिल्डर के फायदे के लिए रातों रात सड़क चौड़ी करने का प्लान बनाया गया और सालों से रह रहे लोगों के आशियाने उजाड़ दिए गए। हैरानी की बात यह है कि बिना किसी आधिकारिक नोटिस या कानूनी प्रक्रिया के इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली पुलिस मूक दर्शक बनी रही।
17: मामले के तूल पकड़ता देख अब नगर निगम ने 6 सदस्यों की जांच समिति बनाई है, जो जिस अधिकारियों ने ये डिमोलिशन किया उनकी भूमिका को लेकर जांच करेगी। किसके कहने पर ये डिमोलिशन किया गया, किन अधिकारियों ने किया और क्यों किया, इसके सारे वीडियो तो सामने हैं, पर किस वजह से किया गया, किसके कहने पर किया गया, ये कोई बोलने को तैयार नहीं है।
12: जांच कमेटी तो बन गई है, मगर अब सवाल उठता है कि अगर नगर निगम ने आदेश नहीं दिया तो पुलिस की मौजूदगी में किसकी शह पर 100 घर गिरा दिए गए। संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्रजेश दोषी, सूरत आज तक।
6: ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। एक हेलीकॉप्टर पर हमले के चलते अमेरिका ने युद्ध विराम को धुआं धुआं कर दिया। पहले तो अमेरिका ने अपने एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने का दावा किया और फिर उसके जवाब में ईरान पर भीषण हमले शुरू कर दिए गए। आधी रात के बाद ईरान के 5 बड़े शहरों में धमाके शुरू हुए, तो बदले में ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर तबाही मचाना शुरू कर दिया है।
7: ईरान पर अमेरिका की फिर से चढ़ाई, अब होगी सबसे भयंकर लड़ाई। एक हेलीकॉप्टर पर हमले का बदला, अमेरिकी हमलों से ईरान तहला। ईरान पर अमेरिका की फिर से चढ़ाई, अब आगे होगी एटमी लड़ाई। अमेरिका ने ईरान के 20 ठिकाने उड़ाए, ईरान ने 21 अमेरिकी बेस तहलाए। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान की चेतावनी, अब भीषण रण होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पीस डील करके जिस तरह से युद्ध विराम को धुआं धुआं किया है, ईरान ने भी अब जैसे नई जंग का प्रण ले लिया है। जिस तरह से अमेरिका ने ईरान में फिर से बारूदी तबाही मचाई है, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ईरान पर फिर से चढ़ाई के लिए एक बहाना ढूंढ रहा था। ईरान ने अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया था, बदले में अमेरिका ने ईरान के 5 शहरों में तबाही मचाकर रख दी। 8 जून की रात समंदर के बीचों बीच अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर पर ड्रोन से हमला होता है। हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट समंदर में कूद जाते हैं, लेकिन इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और फिर न सिर्फ युद्ध विराम टूटता है बल्कि जंग जहां से शुरू होती है हालात घूमकर वहीं आ जाते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के आदेश पर आधी रात को मिडिल ईस्ट में वो महाएक्शन हुआ है जिसने ईरान के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका ने इन हमलों को सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स कहा है, लेकिन ये हमले कितने सुनियोजित और घातक थे इसको समझाते हैं। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान को 3 तरफ से घेर कर ऐसा शिकंजा कसा कि तेहरान को संभलने का मौका तक नहीं मिला। फारस की खाड़ी और अरब सागर में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों ने हुंकार भरी। कतर के अल उदैद एयरबेस से अमेरिकी बम वर्षक उड़े तो ईरान के सबसे नजदीक मौजूद UAE के अल थफरा एयरबेस से स्टेल्थ फाइटर्स ने उड़ान भरी। वहीं बहरीन में मौजूद अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर से इस पूरे हमले को गाइड किया गया। अमेरिकी जेट्स का मुख्य टारगेट था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान का दक्षिणी तट। अमेरिका ने ईरानी सीमा में कदम रखे बिना सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही स्टैंड ऑफ हथियारों से अचूक वार किया। इस हमले में ईरान के रडार सिस्टम, एयर डिफेंस मिसाइल बैटरियों और शाहिद ड्रोन के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। अमेरिका ने इस ऑपरेशन में सबसे खतरनाक AGM-158 JA

0: मिसाइलों का इस्तेमाल किया ताकि अमेरिकी जेट्स को ईरान के एयर डिफेंस के पास ही न जाना पड़े। इसके साथ ही आसमान से सटीक तबाही मचाने के लिए JDAM यानी GPS गाइडेड प्रिसीजन बम बरसाए गए, जिन्होंने बादलों को चीरकर रडार और कमांड सेंटर्स को मलबे में तब्दील कर दिया और इस पूरी तबाही का जायजा लेने के लिए आसमान में मंडरा रहे थे अमेरिका के घातक MQ-9 रीपर ड्रोन। ईरान इन हमलों से हिल गया, लेकिन इसके बाद ईरान का पलटवार शुरू होता है और पूरा मिडल ईस्ट थर्रा उठता है। अमेरिका ने ईरान में 20 ठिकानों को निशाना बनाया तो पलटवार में ईरान ने मिडल ईस्ट में 21 अमेरिकी बेस को टारगेट किया। सबसे बड़ा दावा जॉर्डन में F-35 हैंगर को तबाह करने का है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि उसने पश्चिम एशिया में अमेरिकी और सहयोगी देशों के कुल 21 हवाई और नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान ने दावा किया कि जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर मौजूद F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर नष्ट कर दिए गए हैं। ईरान ने यह भी दावा किया है कि जॉर्डन में मौजूद एक अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। इसके अलावा IRGC का कहना है कि उसने ईरान के जम शहर के ऊपर उड़ रहे एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराया है। ईरानी सेना ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका की ओर से कोई नई सैन्य कार्रवाई की जाती है तो उसका जवाब और अधिक ताकत से दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ने अमेरिका के ताजा हमलों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि लड़ाई में हार के बावजूद अमेरिका ने हमारी दृढ़ता को परखने की कोशिश की। हमारी ताकत पर सेना किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगी। अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारे क्षेत्र से चले जाएं। ईरान ने दावा किया कि उसने बहरीन में अमेरिकी ठिकाने पर सीधा हमला किया है। IRIB न्यूज ने वीडियो जारी कर दावा किया कि ईरान की मिसाइल सीधे अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय पर जाकर गिरी है। ईरान ने बहरीन और जॉर्डन के साथ साथ कुवैत में भी हमले किए। यहां अमेरिकी सेना के अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान की मिसाइलें और ड्रोन काल बनकर टूटे, जिससे कुवैत एयरपोर्ट तक थर्रा उठता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि उनकी सेना ने ईरान के हौसले पस्त कर दिए हैं, उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन ईरान ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखा दी। आपको बता दें कि ईरान पहले ही कह चुका है कि अभी तक उसने अपना ब्रह्मास्त्र नहीं निकाला है। ईरान ने बाकायदा वीडियो जारी कर मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया। ईरान ने इन हमलों के लिए बड़े पैमाने पर लंबी दूरी की मिसाइलें लॉन्च की। वीडियो में अमेरिकी ठिकानों की ओर लंबी दूरी की कद्र, इमाद और खैबर शेकन मिसाइलों को लॉन्च करते हुए दिखाया गया। ईरान ने चुन चुन कर अमेरिकी एयरबेस पर प्रहार किया। जैसे ही ईरान ने अमेरिकी हमलों पर पलटवार किया तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा कि फिलहाल अमेरिकी हमले खत्म हो चुके हैं, लेकिन स्थिति अब भी सक्रिय बनी हुई है। जबकि IRGC ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर और भी ज्यादा बड़ा और तगड़ा हमला किया जाएगा। IRGC ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने ये हमले दक्षिणी ईरान में अमेरिकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना को झूठा बहाना बनाकर किए हैं और हमारे ये हमले अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में हैं। जबकि ट्रंप ने ईरान के हारने का दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरानी सेना पूरी तरह से बिखर चुकी है, नौसेना और वायुसेना लगभग खत्म हो चुके हैं। ईरान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। वो खुद को मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा दबंग समझता था लेकिन अब खत्म हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान ने उस समझौते पर बातचीत करने में बहुत ज्यादा देर कर दी जो उसके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता था। अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी ये क्लियर है कि जंग अब अंजाम तक पहुंचकर ही रहेगी। उधर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर रूस ने गहरी चिंता जताई है। रूस ने दोनों देशों से अपील की है कि वो संयम बरतें और तुरंत सैन्य हमले बंद करें। आज तक ब्यूरो।
1: और अब आपको ट्रंप की नई धमकी सुनवा देते हैं जो उन्होंने ईरान को लेकर कही है, सुनिए जरा उनको।
2: But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers. You can't have a nuclear weapon. His was a path to a nuclear weapon. They were developing, during his administration, nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, they'd be... No Israel, there'd be no Middle East, and they would have absolutely shot at us. So we'll see what happens. but we hit them hard.

0: yesterday, and we're going to hit them again hard today.
1: अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा शुरू हुए युद्ध के बाद अली खामनेई का अंतिम संस्कार एक बार फिर से टल गया है। चंद दिन पहले ही ईरानी मीडिया में छपी रिपोर्ट में 21 जून को खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियों का दावा किया गया था। करीब करीब पूरी तैयारियां हो चुकी थी। अली खामनेई के अंतिम संस्कार को अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील से जोड़कर भी देखा जा रहा था, लेकिन अब सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है।

0: अली खामिनई को अभी नहीं दफनाया जाएगा। फिर टला अली खामिनई का अंतिम संस्कार। क्या खामिनई के अंतिम संस्कार में युद्ध है रोड़ा? मुहर्रम में खामिनई का होना था अंतिम संस्कार। खामिनई की अंतिम विदाई पर लगा ग्रहण। अगर मुहर्रम के महीने में अली खामिनई का अंतिम संस्कार होता तो इसका मतलब यही था कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम बेहद करीब है, क्योंकि ट्रंप ने भी यही संकेत दिए थे कि 4 जुलाई से पहले पीस डील पर साइन हो सकते हैं। मुहर्रम का महीना ईरान के लिए खास है और 4 जुलाई ट्रंप के लिए, क्योंकि 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लेकिन ताजा हमलों की वजह से खामिनई का अंतिम संस्कार टल गया है। इसे यूं समझिए, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामिनई की मौत हुई। इसी हमले में अली खामिनई के बेटे मुज्तबा खामिनई भी बुरी तरह जख्मी हो गए थे। पिता के निधन के बाद सर्वसम्मति से मुज्तबा खामिनई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया। लेकिन मुज्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद भी अली खामिनई को सुपुर्दे खाक नहीं किया गया। बीते दिनों इस्लामी कैलेंडर के पहले और सबसे पवित्र महीने मुहर्रम में अली खामिनई की आखिरी विदाई, अंतिम संस्कार और दफन समारोह की खबरें आई थी। दावा किया गया था कि 21 जून को खामिनई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा, लेकिन अंतिम संस्कार से पहले एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस बीच अली खामिनई के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की देखरेख करने वाली आधिकारिक समिति ने ऐलान किया है कि मुहर्रम के बाद इसका आयोजन होगा। मतलब यही है कि युद्ध के चलते एक बार फिर अंतिम संस्कार के आयोजन को टाल दिया गया। आधिकारिक बयान में दावा किया गया है कि अब अली खामिनई के अंतिम संस्कार, जनाजे और दफनाने की रस्में मुहर्रम के पहले 10 दिनों के बाद आयोजित की जाएंगी। शहीद आयतुल्लाह अली खामिनई का अनुसरण करते हुए इमाम हुसैन की शहादत की याद में और ईरान और दुनिया भर में इन दिनों शोक समारोह आयोजित करने के महत्व को देखते हुए अली खामिनई की अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार और दफन समारोह मुहर्रम के पहले 10 दिनों के बाद आयोजित किए जाएंगे। शोक और अंतिम संस्कार समारोहों में भाग लेने वाले लाखों लोगों को सुविधा देने के लिए संबंधित अधिकारियों और सार्वजनिक समूहों के बीच अंतिम समन्वय के बाद ये समारोह आयोजित किए जाएंगे। इन समारोहों के बारे में विस्तृत जानकारी उचित समय पर बाद में घोषित की जाएगी। बड़ी बात यह है कि अली खामिनई के शव को कहां रखा गया है, इसे लेकर अब तक ईरान सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक खामिनई के शव को किसी गुप्त लोकेशन पर रखा गया है। मार्च में अंतिम दर्शन के लिए तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स में रखने की तैयारी थी। अचानक अंतिम दर्शन के कार्यक्रम को सुरक्षा कारणों से टाल दिया गया। 28 फरवरी के बाद कई ऐसे मौके आए जब खामिनई को दफनाए जाने की खबरें आईं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खामिनई को दफनाने के फैसले में हो रही देरी की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और इजराइल के हमले का डर। IRGC को लगता है कि सार्वजनिक अंतिम संस्कार के आयोजन में कई तरह के सुरक्षा जोखिम शामिल हैं। खास तौर से अंतिम संस्कार के दौरान सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसा क्यों, इसे समझिए। खामिनई के अंतिम संस्कार में सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई शामिल होंगे। अंतिम संस्कार में ईरान की टॉप लीडरशिप मौजूद रहेगी। अंतिम संस्कार में IRGC और सेना के टॉप कमांडर मौजूद रहेंगे। ईरान को डर है कि सेना की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया जा सकता है। हमले को लेकर अमेरिका और इजराइल के लिए ये सबसे मुफीद वक्त होगा। ईरान के डर की वजह भी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति कई बार ईरान पर हमले की धमकी दे चुके हैं।
1: They're saying that he lost his leg, one leg, and he's, been hurt very badly. Other people are saying he's dead. Nobody's saying he's 100% healthy.
0: इससे पहले 21 जून
2: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी 12 साल में कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ देश। इन्होंने धीमे विकास को कहा था हिंदू ग्रोथ रेट। बोले 2047 तक विकसित भारत हमारा संकल्प। एनडीए की बैठक में नेताओं ने की प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। अभिनंदन प्रस्ताव पर शुभेंदु ने खिलाई झालमुरी। ट्रंप ने भी बधाई संदेश में बताया अपना दोस्त। ममता को फिर लगा बड़ा झटका। बागी गुट के 19 लोकसभा सांसदों ने जारी की है लिस्ट। शत्रुघ्न सिन्हा और सायोनी घोष का भी नाम। भूपेंद्र यादव के घर कुछ नेताओं की बैठक। कांग्रेस को लगी दोहरी चोट। झारखंड में एनडीए समर्थित राज्यसभा प्रत्याशी परिमल नाथवानी का पर्चा मंजूर। एमपी में मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर आयोग जल्द करेगा फैसला। और ईरान पर फिर बारूद बरसाएंगे ट्रंप। का निशाने पर है पावर प्लांट और पुल। पिजिश्कियान ने बताया हताशा भरा कदम।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 10 जून यानी इतिहास के पन्नों में दर्ज नए कीर्तिमान की तारीख। लगातार सबसे लंबे समय तक जनता की वोट के दम पर मिली जीत से प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड अब नरेंद्र मोदी के नाम है। मोदी ने आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन तोड़ने से अधिक यह तारीख जोड़ने के लिए याद रहेगी, जो बताती है कि जनता से जुड़ने वाला लीडर ही जनता का उस दौर में सुप्रिय बन जाता है जब लगातार 3 बार सत्ता हासिल करना दुनिया के विभिन्न लोकतांत्रिक देशों में असंभव है। लेकिन जनता को भगवान मानने वाले नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को सत्ता का प्रसाद जनता सौंपकर सब संभव कर देती है।
2: जैसे यहां बताया गया कि मैं पहली बार यहां आया हूं, शायद मेरे जीवन में हर बार ऐसा ही हुआ है। मुख्यमंत्री बना उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री की चैम्बर देखी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने विधानसभा गृह देखा था। आज भी ऐसा ही एक अवसर आया है। लेकिन हम इस ऐतिहासिक स्थान पर बैठे हैं, तब मैंने प्रारंभ में कहा यह लोकतंत्र का मंदिर है। 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं इस पवित्र मंदिर पर टिकी हुई है।
3: लोकतंत्र के उसी मंदिर में अब 140 करोड़ लोगों की आकांक्षा की पूर्ति के लिए प्रधान सेवक के पद पर नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के विश्वास को ऐतिहासिक 12 साल हो चुके हैं। जब नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है तो कैबिनेट ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रधानमंत्री को बधाई दी, मंत्रियों ने उनकी उपलब्धि पर खड़े होकर तालियां बजाई, मेज थपथपाई। 12 साल कहना शायद पूरी तरह सही ना हो, सही होगा कहना कि 4399 दिन से नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। जिस दौर में सत्ता से हाथ छूटने पर गठबंधन का साथ छोड़ने में पल भर सियासत नहीं लगाती, राजनीति के उस युग में भी 35 दल 75 नेता 22 मुख्यमंत्री को साथ लेकर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। आज से नहीं, लगातार, अनवरत, निरंतर।
4: मैं अभिभूत हूं, कृतज्ञ हूं। चरैवेति चरैवेति के मंत्र का जाप करते हुए इस राजनीतिक यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए एक दिन ये पड़ाव भी आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था।
3: 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई, संसदीय दल ने नेहरू को अपना नेता चुना। पंडित नेहरू 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक लगातार निर्वाचित पीएम रहे। नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल 4398 दिन का रहा। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री, जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री, 4399 दिन अब पूरे कर चुके हैं। इसीलिए निर्वाचित पीएम के तौर पर मोदी ने कीर्तिमान रचा है। उसी कीर्तिमान को रचने वाले ऐतिहासिक मौके पर भारत मंडपम में पूरा एनडीए एकजुट होता है। रिकॉर्डधारी प्रधानमंत्री का लगातार जनता के बीच चुना जाना क्यों ऐतिहासिक है, ये गृह मंत्री बताते हैं। एनडीए की इसी बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पीएम मोदी के सम्मान में एक विशेष प्रस्ताव पेश करते हैं। प्रस्ताव में पीएम मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री बनने का उल्लेख किया जाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और बताते हैं कि मोदी केवल 12 साल के नहीं बल्कि इस सदी के लीडर हैं।
5: 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू नरेंद्र मोदी जी, ऑलवेज इज एनर्जेटिक, नॉट ओनली एनर्जेटिक, ही विल गिव एनर्जी फॉर अदर्स, दैट इज हाउ ही इज मेंटेनिंग हिमसेल्फ। फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी जी इज इक्वल टू एनी लीडर इन द वर्ल्ड, I can say very clearly, all surveys are indicating who is very popular leader globally, that is our Honorable Prime Minister, that is our pride for the nation. We are very happy for that.
6: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल, सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व में आज हमारा भारत विकास और समृद्धि के नए क्षितिज को छू रहा है। मोदी जी के इसी मजबूत नेतृत्व के बदौलत आज देश विकसित भारत बनने की राह पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज भारत सिर्फ प्रगति ही नहीं कर रहा है बल्कि प्रगति की नई परिभाषा लिख रहा है।
7: हम लोग इस गठबंधन का हिस्सा बने और पिछले 12 सालों से निरंतरता से न सिर्फ हमारा ये रिश्ता मजबूत रहा बल्कि एनडीए गठबंधन का दायरा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कई और राजनीतिक दल इस गठबंधन का हिस्सा बने, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सबको एक साथ लेकर चलने की उनकी सोच, सबको परिवार की तरह उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े होने की सोच ने ही उनको आज देश के सर्वोच्च नेता की श्रेणी में सबसे आगे उनको खड़ा करने का काम किया।
3: जिस वक्त विपक्ष चुनावी हार के बाद बिखरा हुआ है, तब सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए नए उच्चमान स्थापित करते नरेंद्र मोदी एनडीए की बैठक में कांग्रेस शासनकाल याद कराते हैं। बताते हैं कि पहले विफलता कांग्रेस की होती रही लेकिन कलंक हिंदू आबादी पर लगाया जाता रहा।
8: सवाल ये है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा।
1: हमारे भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है, वहां पर नेता पर विश्वास होना अपने आप में अभूतपूर्व है। हमारे देश की जनता का मोदी को पिछले 12 वर्षों से दिया जाने वाला समर्थन मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनाता है। जहां एक तरफ दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों की सरकारें कमजोर हो रही हैं, नेताओं को अपने पद से हाथ धोना पड़ रहा है, वहीं नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री पद पर रिकॉर्ड बनाकर मिसाल कायम कर रहे हैं।
9: प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस।
10: आई डोंट नीड टू टेल एनीवन हियर, ही इज द मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर फॉर अ रीजन।
11: I think you are an inspiration for the rest of the world.
12: The thing is that the most loved one of all around the world.
13: Prime Minister Sri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude.
14: I am a fan of Modi, so.
15: His vision for digital India, was ahead of its time.
3: नरेंद्र मोदी भारत में सबसे लंबे वक्त तक सत्ता के शिखर पर रहने वाले नेता ही नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुनिया के भी सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं।
16: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा.
5: ए हिस्टोरिक ट्रिब्यूट टू इंडिया, हिस्टोरिक ट्रिब्यूट टू इंडिया लॉन्गेस्ट सर्विंग कंटिन्यूअसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 32 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सर्वोच्च या नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुकी हैं, जिसमें फ्रांस, रूस, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं. जब दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में जनता सरकारें बदल रही, तब भारत में 12 वर्षों से नेतृत्व और नीतियों में निरंतरता है. यही बात दुनिया को नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान से भर देती है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जो मोदी की तारीफ का कोई मौका नहीं छोड़ते. आज तक से बातचीत में पुतिन ने मोदी को लेकर जो कुछ कहा था वो आपको सुनना जरूरी है.
17: He's a very reliable person. In that sense, I'm speaking very sincerely. India got lucky. He lives India. I'm talking to him and I know him.
3: व्लादिमीर पुतिन हो या फिर दुनिया का दूसरा कोई बड़ा नेता, सबकी एक राय है कि दबाव डालकर नरेंद्र मोदी को झुकाना नामुमकिन है.
8: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है. दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है. दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतरकर दिखाना है. साथ ही हमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है. हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है.
3: मोदी की यही बात दोस्तों को भाती है, जिनके लिए भारत किसी प्रेरणा से कम नहीं है. ये बात दुनिया भर के नेताओं की तरफ से भेजी गई शुभकामनाओं में भी दिखती है. दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने बधाई संदेश में लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने कई वर्षों तक भारत के विकास और प्रगति का नेतृत्व किया है. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि न केवल आपके कार्यकाल की अवधि को दर्शाती है, बल्कि उस भरोसे और विश्वास का भी प्रमाण है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता ने बार बार आपके नेतृत्व में जताया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने भारत की सीमाओं से परे श्रीलंका सहित कई देश के लोगों को प्रेरित किया है. पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक निजी वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को एक रोल मॉडल और लीडरशिप की मिसाल बताया है.
18: Congratulations on reaching a historic milestone, the longest continuous prime minister of the great country of India. You have now surpassed the record as the longest serving prime minister of India.
3: प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री पद पर रहने के 4,398 दिन के रिकॉर्ड को ही पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि वो 9,013 दिन से सत्ता के शिखर पर रहने वाले एकमात्र नेता है जो लगातार सीएम और पीएम पद पर रहते हुए 25 साल पूरे कर चुके हैं.
16: मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा.
3: प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने वालों में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पिछले दिनों रोम में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके और एक विशेष रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत करके खुशी हुई, जो भविष्य में हमारे देशों और लोगों के लिए नए अवसर बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगी. दुनिया भर के करीब 20 देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को 146 करोड़ लोगों का नेतृत्व करते हुए 12 साल पूरे होने पर बधाई दी. दुनिया के लिए हैरानी की बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी इतनी लंबी पारी खेलने के बावजूद भारत की तरह पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कैसे हैं? ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट ने अप्रैल 2026 में बताया कि मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा 70% अप्रूवल रेटिंग वाले नेता हैं. उनके बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग 63% अंकों के साथ हैं। ईरान संघ युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे नीचे से 10वें नंबर पर हैं।
8: इन वन डेकेड इंडिया हैज सीन अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन देन वी वेयर द 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ we are knocking on the doors of the top 3.
3: बड़ी बात यह है कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले दूसरे देशों के नेताओं की छवि लगातार वहां की जनता की नजरों में कमजोर हो रही है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज सर्वे में दुनिया के सबसे अलोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। करीब 76% उत्तरदाताओं ने उनके कामकाज से असंतुष्टि दिखाई, जबकि वो पिछले साल मई महीने में जर्मन चांसलर बने। सर्वे में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन दूसरे सबसे अलोकप्रिय नेता हैं। उनके काम से 75% उत्तरदाता असंतुष्ट रहे। लोकतांत्रिक देशों में नेताओं की इस अलोकप्रियता की वजह जंग के कारण महंगे तेल से बढ़ती महंगाई और कमजोर होती उनके देश की अर्थव्यवस्था है, खतरनाक होती दुनिया नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, जिसके असर से जनता को बचाने में मोदी सरकार अब तक खुद को कामयाब बताती है।
1: बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। एकमात्र झारखंड राज्य के अपवाद को हम छोड़ दें तो जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कमल खिला, वहां से फिर कभी कमल मुरझाया नहीं। रिपीट जीत से लेकर बीजेपी सरकारों की जीत की हैट्रिक से राजनीति शास्त्र के पन्ने भर दिए गए, जो मोदी की राजनीति पर जनता के विश्वास की मुहर लगाते हैं।
19: शुभेंद्र अधिकारी
3: 9 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वें ऐसे राज्य में अपनी पार्टी का इकबाल बुलंद होते देख रहे थे जहां पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ ले रहा था। याद आया होगा वो वक्त भी जब पूरे देश में बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर थी, अब 22 राज्यों में, उसमें भी 9 राज्यों में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री।
8: दल से हमेशा अगर बड़ा कुछ है तो हमारा देश है, दल से बड़ा देश है। और जब नेशन फर्स्ट, देश प्रथम की भावना से काम होता है तो कोई भी निर्णय कठिन नहीं होता।
3: समर्थक इसे प्रधानमंत्री मोदी के शासन में बीजेपी का स्वर्णिम काल कहते हैं। गुजरात में 1995 से बीजेपी की निरंतर सरकार, 2003 से मध्य प्रदेश में, बीच के 15 महीने छोड़ दें तो 2 दशक से अधिक समय से बीजेपी ही सत्ता में है। गोवा में 2012 के बाद से बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के विचार पुरुषों ने सरकारों के स्थायित्व की जो परिपाटी डाली, नरेंद्र मोदी उसे बुलंदियों के छोर तक ले गए और न सिर्फ स्थायी सरकारों के रिकॉर्ड का विस्तार किया बल्कि असंभव राज्यों में भी सरकारें बनाकर राजनीति का स्थायी परिवर्तन संभव किया। जहां बीजेपी कभी थी ही नहीं, वहां भी उनके मुख्यमंत्री हुए। 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। अविभाजित शिवसेना के साथ पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। 2014 में ही हरियाणा की जीत के बाद पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल खट्टर ने शपथ ली। बीजेपी यहां जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। 2016 में पहली बार बीजेपी असम में जीती और पूर्वोत्तर में मोदी युग शुरू हुआ। सर्वानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने, यहां भी बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई। बीजेपी ने 2016 में पहली बार अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाई और पेमा खांडू मुख्यमंत्री बने। 2017 में बीजेपी ने मणिपुर में गठबंधन सरकार बनाई और पहली बार बीजेपी के एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। सीमावर्ती राज्य में ये बीजेपी की पहली सरकार थी। 2018 में लेफ्ट दलों के सबसे मजबूत समझे जाने वाले गढ़ त्रिपुरा में बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की और अब तक लगातार 2 बार वहां बीजेपी की सरकार है। 2024 में नवीन पटनायक के 24 वर्षों के शासन को खत्म करके पहली बार बीजेपी ने बहुमत से सरकार बनाई। 2026 में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ ली। 2026 में ही पश्चिम बंगाल में भी पहली बार बीजेपी का राज स्थापित हो चुका है और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का विस्तार लगातार जारी है।
1: आतंकवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साल 2014 को बीजेपी की तरफ से बड़े बदलाव के तौर पर पेश किया गया। बीजेपी का दावा है कि मोदी सरकार आने के बाद हमारे देश ने पहली बार आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति और उसके परिणाम देखे जो आतंकवाद के विरुद्ध किसी भी हद तक जा सकते हैं।
20: सेना का नुकसान करने के की थी तैयारी, हमने उनसे सीने पर चढ़कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी।
21: भारत माता की जय, मैदान में भी गूंजती है और मिशन में।
3: साल 2014 के बाद आतंक से निपटने का तरीका भारत ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक से जंग में एक नई लकीर खींच दी। पाकिस्तान को पता चल गया कि धर्म के नाम पर भारतीयों का लहू बहाने का अंजाम क्या होता है।
8: हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया।
3: आतंकवाद पर नरेंद्र मोदी की इस कठोर नीति और नए दृष्टिकोण ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को नया रूप दे दिया, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है।
8: पहले भारत आतंक के हमलों के बाद चुपचाप दर्द सहता रहता था। हमने आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा। साथियों, पहले मान लिया गया था कि नक्सलवाद, माओवाद अब कभी नहीं खत्म होने वाले हैं, कभी खत्म हो ही नहीं सकते। हमने देश को नक्सलवाद, माओवाद के उस जहर से मुक्त करके दिखाया है।
3: ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के साथ उन्हें शरण देने वाली पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को ध्वस्त करके दुश्मन को चौंका दिया।
8: हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे।
3: भारत ने बता दिया कि जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। जो भी भारत की ओर आंख उठाएगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
22: मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है।
3: तो नरेंद्र मोदी के भारत में बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकता, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। यही वो बदलाव।
8: कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा।
3: मोदी सरकार ने सीमा पार आतंकवाद के जवाब में जवाबी कार्रवाई पर केंद्रित एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति अपनाई है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले आतंक पर अभूतपूर्व कार्रवाई की पहली मिसाल वाली नींव साल 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक रखी गयी। साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक ने इसे एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन आतंकवाद विरोधी रणनीति में ऑपरेशन सिंदूर मील का पत्थर साबित हुआ। जिसमें पहलगाम हमले के बाद 9 आतंकी शिविरों और 11 पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया। देश ने पहली बार जैश ए मोहम्मद के गढ़ बहावलपुर और लश्कर ए तैयबा के मुरीद के अड्डे को खंडहर होते हुए देखा। इस ऑपरेशन में यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद समेत 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए।
22: जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है।
3: मोदी सरकार अपनी इन्हीं कार्रवाइयों के आधार पर साल 2014 के बाद बदली नीति का सबूत बताती है। पिछली कांग्रेस सरकारों पर आरोप लगाती है कि 1947 में पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को हड़पने की नीति का अगर कारगर जवाब दिया गया होता तो भारत को लहूलुहान करने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं कर पाता। लेकिन मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से आतंक के खिलाफ एक निर्णायक लकीर खींच दी, जिसे पार करने का अंजाम पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ ही उसकी सेना को भी भुगतना पड़ता है।
1: सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य करने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम बन चुका है और वो अभी भी प्रधानमंत्री हैं। इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। 12 साल में कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ देश। इन्होंने धीमे विकास को कहा था हिंदू ग्रोथ रेट। बोले 2047 तक विकसित भारत हमारा संकल्प। एनडीए की बैठक में नेताओं ने की प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। अभिनंदन प्रस्ताव पास। शुभेंदु ने खिलाई झालमुरी। ट्रंप ने भी बधाई संदेश में बताया अपना दोस्त। ममता को फिर लगा बड़ा झटका। बागी गुट के 19 लोकसभा सांसदों ने जारी की है लिस्ट। शत्रुघ्न सिन्हा और सायोनी घोष का भी नाम। भूपेंद्र यादव के घर कुछ नेताओं की बैठक। कांग्रेस को लगी दोहरी चोट। झारखंड में एनडीए समर्थित राज्यसभा प्रत्याशी परिमल नाथवानी का पर्चा मंजूर। एमपी में मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर आयोग जल्द करेगा फैसला। और ईरान पर फिर बारूद बरसाएंगे ट्रंप। का निशाने पर है पावर प्लांट और पुल। पिजिश्कियान ने बताया हताशा भरा कदम। ममता बनर्जी को झटके पे झटका लग रहा है। राज्यसभा की सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ दी। राज्यसभा की सदस्यता भी छोड़ दी। उनसे पहले सुखेंदु रॉय ने साथ छोड़ा था। सत्ता जाने के बाद अब टीएमसी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है।

0: अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिल रहे हैं। ममता बनर्जी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और केजरीवाल से मिल रही हैं। और मुलाकात का मजमून ये है कि दिल्ली में बैठकर ममता अपना राजनीतिक वजूद बचाने की जद्दोजहद कर रही हैं, लेकिन वो वजूद बचता नहीं दिख रहा। पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, आज सुष्मिता देव पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता दोनों छोड़ गई।
1: मैं किस तरह की राजनीति करूंगी, कहां से करूंगी, ये मेरा निर्णय है और मेरा हक है, क्योंकि राज्यसभा मुझे एक पार्टी से मिला था
2: जी।
1: हाँ, जहां विधायकों ने वोट दिया था, बंगाल के लोगों ने इनडायरेक्टली दिया था। तो अगर पार्टी से इस्तीफा दिया तो फिर राज्यसभा सीट भी छोड़ना चाहिए।
0: आज सुबह सुबह सुष्मिता देव की असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। दोनों असम से हैं तो लग यही रहा है कि सुष्मिता के इस्तीफे के पीछे हिमंता बिस्वा सरमा की बड़ी भूमिका है। ये भी तय लग रहा है कि इस्तीफे से खाली सीट पर उपचुनाव में बीजेपी सुष्मिता को उम्मीदवार बनाएगी।
1: मेरी राजनीति बंगाल में नहीं है, मेरी राजनीति असम में है और मुझे असम में ही राजनीति करना है।
0: लेकिन ममता के सामने बड़ा सवाल ये है कि अब उनका क्या होगा, शायद वो आगे का रास्ता तलाश रही हैं।
3: जीतने के बाद भी बोले थे, बोलने की कोशिश किए थे, वहाँ पे सिस्टम नहीं है बोलने का, बोलने से सब रोकते हैं जो नहीं बोलना है नहीं बोलना है। तो और अगर बोले भी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलते, आप 7 दिन 10 दिन इंतजार करो।
0: तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने दिल्ली आई ममता बनर्जी यहाँ से क्या हासिल कर लौटती है, क्योंकि कोलकाता में तो उनके लिए हर दिन भारी साबित हो रहा है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
4: मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस ने बुधवार को एक दिन का उपवास रखा, चुनाव आयोग पर निशाना भी साधा। चुनाव आयोग को इस पर फैसला करना है। अब
5: प्रदर्शन उस फैसले के खिलाफ है जिसमें मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता एक दिन का उपवास करके इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा सीट के लिए प्रत्याशी नहीं रहे। बाह में काली पट्टी बांधकर उपवास पर बैठे हैं कांग्रेस के नेता।
6: कांग्रेस के तमाम दूसरे नेता जो है वो राजधानी भोपाल में इकट्ठा हुए हैं और इस उपवास के जरिए मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द हुआ है, न केवल उसका विरोध जता रहे हैं बल्कि साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने राजनीति से प्रेरित होकर के मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को जानबूझ करके रद्द किया है।
5: उधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इधर दिल्ली में कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन के मामले में चुनाव आयोग में लिखित शिकायत दर्ज की। अब कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग को भी निशाने पर ले रहे हैं।
7: मैं तो बहुत पहले एक बात कही थी कि एक कुर्सी इलेक्शन कमीशन में डाल दीजिए, जो पर्ची बीजेपी ऑफिस से आए उसको सर्टिफिकेट दे दे, तो चुनाव का पैसा तो बचेगा देश का।
8: उस पे कोई FIR नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई सजा नहीं, लेकिन नामांकन रद्द कर दिया क्योंकि वो कांग्रेस की प्रत्याशी थी।
5: लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर था, इसीलिए उसने जानबूझकर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करा दिया।
9: जिस दिन दिग्विजय सिंह जी को टिकट नहीं मिला तो उनके नेताओं ने खुलेआम बोला था कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होगी और कांग्रेस को मालूम था क्रॉस वोटिंग होगी, और इसीलिए मेरा स्पष्ट आरोप है, मेरा स्पष्ट मानना है कि ये फॉर्म कांग्रेस ने स्वयं ने रिजेक्ट करवाया है।
5: मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद अब MP में तीनों सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट निर्विरोध है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: मुंबई में NCP का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया। शरद पवार ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की तुलना नेहरू के कार्यकाल से नहीं है, नहीं करनी चाहिए, सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश बेहद ही मुश्किल चुनौतियों से गुजर रहा था। शरद पवार ने इंदिरा गांधी को भी याद किया। 3 साल पहले NCP 2 हिस्सों में बंट गई थी।
10: महाराष्ट्राच्या जनता जनार्दनाची संवाद साधावा 27व्या वर्धापन।
0: कई दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत का केंद्र रहे शरद पवार की मौजूदगी में NCP का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुंबई के YB चौहान सेंटर में NCP के स्थापना दिवस पर पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने नेहरू गांधी परिवार की विरासत का खुलकर बचाव करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। शरद पवार ने पहले प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल की तुलना पीएम मोदी के कार्यकाल से करने को गलत बताया।
2: नेहरू जिसके प्रधानमंत्री उससे जिसके अस्थायी प्रधानमंत्री है आनंद है
0: स्थापना दिवस के मौके पर शरद पवार की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा।
11: आज एनसीपी पार्टी का 27वां फाउंडेशन डे समारोह पूरा हुआ। मुंबई में सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता समेत खुद पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार उन्होंने सभी को संबोधित भी किया। हमारे साथ सांसद नीलेश लंके जी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कई सारे मुद्दों पर आज संबोधन हुआ, लेकिन सबसे अहम बात जो आज शरद पवार इन्होंने कही वो ये थी कि पीएम मोदी उनका सबसे ज्यादा कार्यकाल वो मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसकी तुलना सीधे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके कार्यकाल से की जा रही है, तो उस पर आपत्ति जताइए। क्या कहना है आपका? आप भी दिल्ली में संसद में काम करते हैं।
12: पवार साहब ने अभी बोला है नेहरू का और किसी का भी तुलना नहीं हो सकती। जो देश के लिए नेहरू गांधी परिवार ने किया है, गांधी परिवार ने तो देश के लिए बलिदान दिया है और नेहरू परिवार ने भी देश के लिए बहुत दिया है। आज की स्थिति और वो टाइम की स्थिति में बहुत बदलाव था, इसलिए नेहरू का काम सबसे ऊंचा ही है।
0: शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, पार्टी का कर्तव्य जनता की सेवा करना है, खासकर ऐसे समय में जब देश बढ़ती महंगाई और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जूझ रहा है।
11: आज जो संबोधन किया उससे क्या कुछ चीजें आप लेकर जा रहे हैं, क्योंकि संघर्ष का काल है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आंदोलन करने पड़ेंगे, सड़क पर उतरना पड़ेगा।
12: किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए आंदोलन करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे नेता ने ये सिखाया हमें सबको, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए आपने काम ही करना पड़ेगा। आज जो गवर्नमेंट में, राज्य में और सेंट्रल में काम करता है वो किसानों के खिलाफ में, खिलाफ का गवर्नमेंट है, बेरोजगारों के खिलाफ का गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट में कुछ एजेंडा नहीं, उसमें एक ही एजेंडा है, डेवलपमेंट का कोई एजेंडा नहीं, किसानों के लिए कोई एजेंडा नहीं। उनके पास यही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम राजनीति करने का और दंगल करने का काम करते हैं।
0: स्थापना दिवस के मौके पर इंदिरा गांधी के देशभक्ति को बताने के लिए शरद पवार ने मॉस्को की उनकी यात्रा का एक किस्सा भी सुनाया। वहीं एनसीपी शरद गुट के सांसद नीलेश लंके ने उनकी पार्टी में कथित बगावत की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया।
11: बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के पार्टी के भी सांसद अब एकनाथ शिंदे के गुट के संपर्क में हैं। क्या आपकी पार्टी पर भी ऐसा कुछ प्रयास किया जा रहा है किसी से?
12: नहीं, हमारी पार्टी और हमारे सांसद लोग, हम दिल्ली में सुप्रिया ताई के नेतृत्व में काम करते हैं। हमारे पार्टी में कोई भी ऐसा नहीं, बातचीत भी नहीं आने होने भी वाली नहीं। हम सब पवार साहब के साथ है और पवार साहब के साथ ही रहने वाले।
0: स्थापना दिवस के मौके पर शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले के साथ शरद पवार के पौत्र रोहित पवार भी मौजूद रहे।
13: आदरणीय पवार साहब ने हम सबसे मार्गदर्शन किया, हमको बताया कि लोगों की लड़ाई आप सबको रास्ते पे जाके लड़नी पड़ेगी। किसानों का विषय हो, विद्यार्थी का विषय हो, महिला सुरक्षा का विषय हो, या कोई भी जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसके लिए आप सबको रास्ते पे उतरना पड़ेगा। आज तक जो भी लड़ाई हमारे नेताओं ने वहां पे की है, जैसे प्यास का आंदोलन हो, विद्यार्थी का आंदोलन हो, उसी के साथ शिक्षकों का आंदोलन हो, ये और ज्यादा ताकती से लड़ने की जरूरत है। इसलिए 12 तारीख को किसानों के हित पे हम सब पंडरपुर, जो अतिशय पवित्र ठिकान है, वहां पे हम किसानों के लिए, कर्ज माफी के लिए वहां पे एक बहुत बड़ा अन्न त्याग आंदोलन वहां पे कर रहे हैं, और उसमें हमारा पक्ष हो, मित्र पक्ष हो, क्योंकि वो अपॉलिटिकल विषय है। बहुत सारे लोग वहां पे आएंगे ऐसे आप सबको लगता है, और ये आंदोलन के माध्यम से किसानों को न्याय देने की हम सब कोशिश करेंगे।
0: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर 10 जून 1999 को एनसीपी का गठन किया था। लेकिन जुलाई 2023 में एनसीपी उस समय विभाजित हो गई थी जब उनके भतीजे अजीत पवार शिवसेना बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार में शामिल हो गए थे, जिसके बाद ज्यादातर विधायक, सांसद और बड़े नेता अजीत पवार के साथ चले गए थे। आखिर में चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी माना और शरद पवार की अगुवाई वाले गुट को एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम दिया गया। अपने संबोधन में शरद पवार ने महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन की उन टिप्पणियों की भी आलोचना की जिसमें उन्होंने सिख विरोधी दंगों के लिए कांग्रेस नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया था।
11: आज इस फाउंडेशन दिन के मौके पर हमने देखा कि सभी सांसद, सभी विधायक और सभी पदाधिकारी इकट्ठा यहाँ पर आए थे और उन्होंने शरद पवार ने किए हुए संबोधन को सुना और आगे जाकर इसी तरह संघर्ष करने का प्रण भी किया। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक बालेकर, मुंबई आज तक।
4: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का कंसा पासी किला विवाद अब बड़ा राजनीतिक रूप ले चुका है, बड़ा मुद्दा बन चुका है। लखनऊ के मलिहाबाद स्थित कंसा पासी किला विवाद में अब पासी समाज का संगठन लाखन आर्मी सड़कों पर उतर आया है। लाखन आर्मी ने सूरज पासी की अगुवाई में हरदोई से एक यात्रा की शुरुआत की है।
14: पासी स्वाभिमान यात्रा लखनऊ के लिए निकली है। हरदोई में इस यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। देखिए, फूल माला से लदे हैं लाखन आर्मी के मुखिया सूरज पासी। दरअसल लखनऊ के अंदर एक नया विवाद पैदा हुआ है जिसमें कंसा पासी किले पर कब्जे को लेकर दलितों और मुसलमानों के बीच सियासी मुद्दा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में अब मलिहाबाद के कंसा पासी किला विवाद को लेकर खुद को पासी समाज का प्रतिनिधि बताने वाले लाखन आर्मी ने 31 जिलों में यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। हरदोई जिले से शुरू हो रही ये पासी स्वाभिमान यात्रा किले में शिव मंदिर को वापस पाने की मांग के साथ की जा रही है।
15: तो हमारे किला था, हमारे किले के धार्मिक स्थान थे, वो भी तो हमको संरक्षित चाहिए, वहाँ भी मजारे बना दी जा रही है, तो चिंता का विषय है। इसलिए आज हम उनकी किले को बचाने के लिए, उनके अस्तित्व को बचाने के लिए, उनके इतिहास को बचाने के लिए 31 जिलों में भ्रमण कर रहे हैं।
14: सिर्फ लाखन आर्मी ही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता भी यही मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान के दल के नेता आज कंसा पासी किले तक जाना चाहते थे मगर पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया।
16: लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता आज कंसा पासी को किले को लेकर निकले हुए हैं और साफ तौर से वहां जाना चाहते थे पासी पर, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो पुलिस ने पूरी तरीके से वहां पर रोका हुआ है।
14: एलजेपी रामविलास भी कंसा पासी के सम्मान की बात कर रही है।
17: पासी राजा, राजा कंस जी का किला, यह मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, यह पासी पासवान समाज के गौरव और विरासत की का प्रश्न है, उनकी लड़ाई है।
14: अब ओवैसी का दल आरोप लगा रहा है कि 2027 के चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान वाली सियासत को धार दी जा रही है।
18: अयोध्या का मामला जो है ठंडा नहीं हुआ था, एक अयोध्या के लिए यात्रा निकली थी, राजा कंसा पासी के किले को लेकर के यात्रा निकाली जाएगी। तो ये जो लोग हैं, ये देश के अंदर 2027 के चुनाव को देखते हुए एक नैरेटिव सेट करने के लिए नए नए सबूफे तैयार कर रहे हैं।
14: उत्तर प्रदेश में इस बार दलित वोट की राजनीति में कई नए दावेदार नजर आने लगे हैं और कंसा पासी का किला उसके केंद्र में है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं और बिना सरकारी आदेश के शहर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन गुजरात के सूरत में एक ऐसा अजीबोगरीब वाक्य सामने आया है जिसने पूरे प्रशासन की नींद उड़ा कर रख दी है, क्योंकि 100 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, घरों को जमींदोज कर दिया गया और कोई नहीं जानता कि एक्शन किसके कहने पर लिया गया।
0: सूरत में बुलडोजर गरजा और देखते ही देखते 100 मकान ध्वस्त कर दिए गए। इन मकानों के मालिकों को इतना मौका भी नहीं मिला कि अपना सामान बाहर निकाल सके। तस्वीरें 3 जून की है जब सूरत के कतारगाम इलाके के नासिर नगर में बुलडोजर पहुंचा और देखते ही देखते 100 परिवारों की छतें छीन। लेकिन तमाशा तब शुरू हुआ जब सूरत नगर निगम ने यह कह दिया कि हमने घरों को तोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया, ऐसी कोई भी कार्रवाई में नगर निगम का कोई रोल नहीं है।
19: डिमोलिशन तो हमने नहीं किया, सूरत महानगर पालिका के लोगों ने, फक्त इतना बताया कि नगर पालिका के जो लोग थे वो जगह हमारा कलम 205 के अंडर में जो रास्ता है वो माप लेने के लिए गए थे हमारे कर्मचारी।
0: निगम जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहा है, मगर जिनके घर टूटे हैं वो बता रहे हैं कि जिस समय बुलडोजर एक्शन हुआ निगम के अधिकारी और कर्मचारी एसओजी के साथ यहीं थे।
20: पुलिस एसओजी के जो मेन थे वो हमारे को टाइम देने से मना कर रहे थे, भाई तुम्हें कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, तुम अब भी निकलो। इन लोग पूरी टीम सामान भरने वाली भी लेकर आए थे साथ में।
21: मोनिक गड़िया को हमने बोला कि सर आप हमारे को कुछ टाइम दो, तो बोले कोई टाइम नहीं, इतने बरसों से रह लिया, बहुत टाइम दे दिया आपको, अब चलो निकलो।
22: दो घंटे का भी समय नहीं दिया, बस फटाफट उन लोग ने बुलडोजर से चालू कर दिया, तोड़ना ही चालू कर दिया।
0: सूत्रों के मुताबिक ये पूरी कवायद नासिर नगर के ठीक पीछे बन रहे एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रास्ता देने के लिए की गई थी। आरोप है कि बिल्डर के फायदे के लिए रातों रात सड़क चौड़ी करने का प्लान बनाया गया और सालों से रह रहे लोगों के आशियाने उजाड़ दिए गए। हैरानी की बात यह है कि बिना किसी आधिकारिक नोटिस या कानूनी प्रक्रिया के इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली पुलिस मूक दर्शक बनी रही।
23: मामले के तूल पकड़ता देख अब नगर निगम ने 6 सदस्यों की जांच समिति बनाई है, जो जिस अधिकारियों ने ये डिमोलिशन किया उनकी भूमिका को लेकर जांच करेगी। किसके कहने पर ये डिमोलिशन किया गया, किन अधिकारियों ने किया और क्यों किया, इसके सारे वीडियो तो सामने हैं, पर किस वजह से किया गया, किसके कहने पर किया गया, ये कोई बोलने को तैयार नहीं है।
0: जांच कमेटी तो बन गई है, मगर अब सवाल उठता है कि अगर नगर निगम ने आदेश नहीं दिया तो पुलिस की मौजूदगी में किसकी शह पर 100 घर गिरा दिए गए। संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्रजेश दोषी, सूरत आज तक।
4: ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। एक हेलीकॉप्टर पर हमले के चलते अमेरिका ने युद्ध विराम को धुआं धुआं कर दिया। पहले तो अमेरिका ने अपने एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने का दावा किया और फिर उसके जवाब में ईरान पर भीषण हमले शुरू कर दिए गए। आधी रात के बाद ईरान के 5 बड़े शहरों में धमाके शुरू हुए, तो बदले में ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर तबाही मचाना शुरू कर दिया है।
14: ईरान पर अमेरिका की फिर से चढ़ाई, अब होगी सबसे भयंकर लड़ाई। एक हेलीकॉप्टर पर हमले का बदला, अमेरिकी हमलों से ईरान तहला। ईरान पर अमेरिका की फिर से चढ़ाई, अब आगे होगी एटमी लड़ाई। अमेरिका ने ईरान के 20 ठिकाने उड़ाए, ईरान ने 21 अमेरिकी बेस तहलाए। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान की चेतावनी, अब भीषण रण होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पीस डील करके जिस तरह से युद्ध विराम को धुआं धुआं किया है, ईरान ने भी अब जैसे नई जंग का प्रण ले लिया है। जिस तरह से अमेरिका ने ईरान में फिर से बारूदी तबाही मचाई है, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ईरान पर फिर से चढ़ाई के लिए एक बहाना ढूंढ रहा था। ईरान ने अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया था, बदले में अमेरिका ने ईरान के 5 शहरों में तबाही मचाकर रख दी। 8 जून की रात समंदर के बीचों बीच अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर पर ड्रोन से हमला होता है। हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट समंदर में कूद जाते हैं, लेकिन इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और फिर न सिर्फ युद्ध विराम टूटता है बल्कि जंग जहां से शुरू होती है हालात घूमकर वहीं आ जाते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के आदेश पर आधी रात को मिडिल ईस्ट में वो महा एक्शन हुआ है जिसने ईरान के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका ने इन हमलों को सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स कहा है, लेकिन ये हमले कितने सुनियोजित और घातक थे इसको समझाते हैं। अमेरिकी वायुसेना

0: अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से FPA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों ने हुंकार भरी। कतर के अल उदैद एयरबेस से अमेरिकी बम वर्षक उड़े तो ईरान के सबसे नजदीक मौजूद UAE के अल थफरा एयरबेस से स्टेल्थ फाइटर्स ने उड़ान भरी। वहीं बहरीन में मौजूद अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर से इस पूरे हमले को गाइड किया गया। अमेरिकी जेट्स का मुख्य टारगेट था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान का दक्षिणी तट। अमेरिका ने ईरानी सीमा में कदम रखे बिना सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही स्टैंड ऑफ हथियारों से अचूक वार किया। इस हमले में ईरान के रडार सिस्टम, एयर डिफेंस मिसाइल बैटरियों और शाहिद ड्रोन के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों को नेस्त नाबूद कर दिया गया। अमेरिका ने इस ऑपरेशन में सबसे खतरनाक AGM-158 JASSM यानी जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल और SLAMER यानी स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल एक्सपैंडेड रिस्पांस जैसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया ताकि अमेरिकी जेट्स को ईरान के एयर डिफेंस के पास ही न जाना पड़े। इसके साथ ही आसमान से सटीक तबाही मचाने के लिए JDAM यानी GPS गाइडेड प्रिसीजन बम बरसाए गए जिन्होंने बादलों को चीरकर रडार और कमांड सेंटर्स को मलबे में तब्दील कर दिया और इस पूरी तबाही का जायजा लेने के लिए आसमान में मंडरा रहे थे अमेरिका के घातक MQ-9 रीपर ड्रोन। ईरान इन हमलों से हिल गया लेकिन इसके बाद ईरान का पलटवार शुरू होता है और पूरा मिडल ईस्ट थर्रा उठता है। अमेरिका ने ईरान में 20 ठिकानों को निशाना बनाया तो पलटवार में ईरान ने मिडल ईस्ट में 21 अमेरिकी बेस को टारगेट किया। सबसे बड़ा दावा जॉर्डन में F-35 हैंगर को तबाह करने का है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि उसने पश्चिम एशिया में अमेरिकी और सहयोगी देशों के कुल 21 हवाई और नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान ने दावा किया कि जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर मौजूद F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर नष्ट कर दिए गए हैं। ईरान ने यह भी दावा किया है कि जॉर्डन में मौजूद एक अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। इसके अलावा IRGC का कहना है कि उसने ईरान के जम शहर के ऊपर उड़ रहे एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराया है। ईरानी सेना ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका की ओर से कोई नई सैन्य कार्रवाई की जाती है तो उसका जवाब और अधिक ताकत से दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने अमेरिका के ताजा हमलों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि लड़ाई में हार के बावजूद अमेरिका ने हमारी दृढ़ता को परखने की कोशिश की। हमारी ताकत पर सेना किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगी। अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारे क्षेत्र से चले जाएं। ईरान ने दावा किया कि उसने बहरीन में अमेरिकी ठिकाने पर सीधा हमला किया है। IRIB न्यूज ने वीडियो जारी कर दावा किया कि ईरान की मिसाइल सीधे अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय पर जाकर गिरी है। ईरान ने बहरीन और जॉर्डन के साथ साथ कुवैत में भी हमले किए। यहाँ अमेरिकी सेना के अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान की मिसाइलें और ड्रोन काल बनकर टूटे जिससे कुवैत एयरपोर्ट तक थर्रा उठता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि उनकी सेना ने ईरान के हौसले पस्त कर दिए हैं, उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन ईरान ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखा दी। आपको बता दें कि ईरान पहले ही कह चुका है कि अभी तक उसने अपना ब्रह्मास्त्र नहीं निकाला है। ईरान ने बाकायदा वीडियो जारी कर मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया। ईरान ने इन हमलों के लिए बड़े पैमाने पर लंबी दूरी की मिसाइलें लॉन्च की। वीडियो में अमेरिकी ठिकानों की ओर लंबी दूरी की कद्र, इमाद और खैबर शेकन मिसाइलों को लॉन्च करते हुए दिखाया गया। ईरान ने चुन चुन कर अमेरिकी एयरबेस पर प्रहार किया। जैसे ही ईरान ने अमेरिकी हमलों पर पलटवार किया तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा कि फिलहाल अमेरिकी हमले खत्म हो चुके हैं। लेकिन
1: और अब आपको ट्रंप की नई धमकी सुनवा देते हैं जो उन्होंने ईरान को लेकर कही है, सुनिए जरा उनको।
2: See what happens, but we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers. You can't have a nuclear weapon. His was a path to a nuclear weapon. They were developing during his administration nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, there'd be no Israel, there'd be no Middle East, and they would have absolutely shot at us. So we'll see what happens. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today.
1: पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुनार, पक्तिका और होस्त में नागरिक इलाकों में हमला किया है। एयर स्ट्राइक की गई है।

से। इन हमलों में 19 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों में 11 बच्ची हैं, एक महिला है, एक बुजुर्ग शामिल है, 14 महिलाएं घायल हो गई हैं और इन हमलों से तालिबान सरकार बुरी तरह से भड़की हुई है।

0: कहां तो पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच अमन का पैगाम लेकर घूमता फिर रहा था और अब अफगानिस्तान के खिलाफ अपना घिनौना चेहरा दिखा दिया। जी हां, पाकिस्तान की फौज ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का सरेआम उल्लंघन किया और आधी रात के अंधेरे में कोस्त, कुनार और पक्तिका प्रांत के रिहायशी इलाकों पर बारूदी एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तानी हवाई हमलों ने सोते हुए अफगानी नागरिकों के आशियानों को शमशान बना दिया। इस बर्बर हमले में अब तक कई बेगुनाह नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद मासूम बच्चों और महिलाओं की है। खोस्त के स्पीड जिले के मीना गांव में हुए हमले की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक ही झटके में एक महिला और 7 से 10 साल की उम्र के 8 मासूम बच्चों को मौत की नींद सुला दिया गया। 10 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इस नापाक क्रूरता पर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और तालिबान प्रशासन भड़क उठा है। करजई ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि इस्लामाबाद अपनी गलत और शत्रुतापूर्ण नीतियों का नतीजा भुगत रहा है और अफगानिस्तान के प्रति युद्ध व विनाश की नीति उसे ले डूबेगी। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि बारूद बरसाने से उसके लक्ष्य हासिल नहीं होंगे। उसकी भलाई इसी में है कि वो युद्ध की नीति छोड़कर अच्छे पड़ोसी की तरह सभ्य संबंध बनाना सीखे। और ये है पाकिस्तान के उस पाखंड की तस्वीरें जो वो दुनिया के सामने पेश कर रहा है। खाड़ी के देशों में एक नकली चेहरा पेश कर रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो फिलिस्तीन और गाजा के नाम पर छाती पीटता है, दुनिया भर में इस्लामिक देशों की एकजुटता का ढकोसला पेश करता है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर कल ही रावलपिंडी में लेबनन के आर्मी चीफ को शांति और सुरक्षा का पाठ पढ़ा रहे थे और उसी रात मुनीर ने अपनी फौज को अफगानिस्तान के मासूम बच्चों पर बम गिराने का ऑर्डर दे दिया। यही नहीं, उसी दिन मुनीर की कातिल फौज पीओके में अंधाधुंध गोलियां बरसा रही थी, लाशें गिरा रही थी, वहीं रात में अफगानिस्तान में मासूमों का कत्ल करने का पाठ कर रही थी। यानी एक तरफ शांति का ढोंग और दूसरी तरफ बेकसूरों और मासूमों का कत्लेआम। पाकिस्तानी सेना की इस दरिंदगी पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के मंच से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बुरी तरह बेनकाब कर दिया। भारत ने यूएनएससी में दहाड़ते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की लैंड लॉक यानी चारों तरफ से जमीन से घिरे होने की लाचारी का हथियार की तरह इस्तेमाल किया है और हवाई हमले करके सैकड़ों बेगुनाह नागरिकों की जान ली है।
1: Pakistan's campaign of military airstrikes against Afghanistan is causing huge civilian casualties and sufferings to the Afghan people. We reiterate Secretary General's deep concern at civilian casualties caused by airstrikes, cross-border firing and targeted killings as detailed in UNAMA reports.
0: इस्लामिक वर्ल्ड से लेकर दुनिया में थूथू होने के बाद अब बौखलाया पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ रोना रो रहा है। वो पाकिस्तान जिसने दुनिया भर में आतंक फैलाया अब अफगानिस्तान को आतंक का गढ़ बता रहा है। पाकिस्तान के राजदूत आसिफ इफ्तिखार उल्टा अफगानिस्तान पर TTP और BLA को पनाह देने का बहाना बना रहे हैं। ऐसे झूठे आरोपों से पाकिस्तान ना तो अपनी कायरता छिपा सकता है और ना ही आतंकी होने का दाग मिटा सकता है। सच यही है कि जनरल आसिफ मुनीर के हाथ बेगुनाह बच्चों और महिलाओं के खून से रंगे हैं। आज तक ब्यूरो।
2: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी 12 साल में कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ देश। इन्होंने धीमे विकास को कहा था हिंदू ग्रोथ रेट। बोले 2047 तक विकसित भारत हमारा संकल्प। एनडीए की बैठक में नेताओं ने की प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। अभिनंदन प्रस्ताव पर शुभेंदु ने खिलाई झालमुरी। ट्रंप ने भी बधाई संदेश में बताया अपना दोस्त। ममता को फिर लगा बड़ा झटका। बागी गुट के 19 लोकसभा सांसदों ने जारी की है लिस्ट। शत्रुघ्न सिन्हा और सायोनी घोष का भी नाम। भूपेंद्र यादव के घर कुछ नेताओं की बैठक। कांग्रेस को लगी दोहरी चोट। झारखंड में एनडीए समर्थित राज्यसभा प्रत्याशी परिमल नाथवानी का पर्चा मंजूर। एमपी में मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर आयोग जल्द करेगा फैसला। और ईरान पर फिर बारूद बरसाएंगे ट्रंप। का निशाने पर है पावर प्लांट और पुल। पिजिश्कियान ने बताया हताशा भरा कदम।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 10 जून यानी इतिहास के पन्नों में दर्ज नए कीर्तिमान की तारीख। लगातार सबसे लंबे समय तक जनता की वोट के दम पर मिली जीत से प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड अब नरेंद्र मोदी के नाम है। मोदी ने आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन तोड़ने से अधिक यह तारीख जोड़ने के लिए याद रहेगी, जो बताती है कि जनता से जुड़ने वाला लीडर ही जनता का उस दौर में सुप्रिय बन जाता है जब लगातार 3 बार सत्ता हासिल करना दुनिया के विभिन्न लोकतांत्रिक देशों में असंभव है। लेकिन जनता को भगवान मानने वाले नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को सत्ता का प्रसाद जनता सौंपकर सब संभव कर देती है।
2: जैसे यहां बताया गया कि मैं पहली बार यहां आया हूं, शायद मेरे जीवन में हर बार ऐसा ही हुआ है। मुख्यमंत्री बना उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री की चैम्बर देखी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने विधानसभा गृह देखा था। आज भी ऐसा ही एक अवसर आया है। लेकिन हम इस ऐतिहासिक स्थान पर बैठे हैं, तब मैंने प्रारंभ में कहा यह लोकतंत्र का मंदिर है। 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं इस पवित्र मंदिर पर टिकी हुई है।
3: लोकतंत्र के उसी मंदिर में अब 140 करोड़ लोगों की आकांक्षा की पूर्ति के लिए प्रधान सेवक के पद पर नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के विश्वास को ऐतिहासिक 12 साल हो चुके हैं। जब नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है तो कैबिनेट ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रधानमंत्री को बधाई दी, मंत्रियों ने उनकी उपलब्धि पर खड़े होकर तालियां बजाई, मेज थपथपाई। 12 साल कहना शायद पूरी तरह सही ना हो, सही होगा कहना कि 4399 दिन से नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। जिस दौर में सत्ता से हाथ छूटने पर गठबंधन का साथ छोड़ने में पल भर सियासत नहीं लगाती, राजनीति के उस युग में भी 35 दल 75 नेता 22 मुख्यमंत्री को साथ लेकर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। आज से नहीं, लगातार, अनवरत, निरंतर।
4: मैं अभिभूत हूं, कृतज्ञ हूं। चरैवेति चरैवेति के मंत्र का जाप करते हुए इस राजनीतिक यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए एक दिन ये पड़ाव भी आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था।
3: 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई, संसदीय दल ने नेहरू को अपना नेता चुना। पंडित नेहरू 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक लगातार निर्वाचित पीएम रहे। नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल 4398 दिन का रहा। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री, जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री, 4399 दिन अब पूरे कर चुके हैं। इसीलिए निर्वाचित पीएम के तौर पर मोदी ने कीर्तिमान रचा है। उसी कीर्तिमान को रचने वाले ऐतिहासिक मौके पर भारत मंडपम में पूरा एनडीए एकजुट होता है। रिकॉर्डधारी प्रधानमंत्री का लगातार जनता के बीच चुना जाना क्यों ऐतिहासिक है, ये गृह मंत्री बताते हैं। एनडीए की इसी बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पीएम मोदी के सम्मान में एक विशेष प्रस्ताव पेश करते हैं। प्रस्ताव में पीएम मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री बनने का उल्लेख किया जाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और बताते हैं कि मोदी केवल 12 साल के नहीं बल्कि इस सदी के लीडर हैं।
5: 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू नरेंद्र मोदी जी, ऑलवेज इज एनर्जेटिक, नॉट ओनली एनर्जेटिक, ही विल गिव एनर्जी फॉर अदर्स, दैट इज हाउ ही इज मेंटेनिंग हिमसेल्फ। फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी जी इज इक्वल टू एनी लीडर इन द वर्ल्ड, I can say very clearly, all surveys are indicating who is very popular leader globally, that is our Honorable Prime Minister, that is our pride for the nation. We are very happy for that.
6: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल, सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व में आज हमारा भारत विकास और समृद्धि के नए क्षितिज को छू रहा है। मोदी जी के इसी मजबूत नेतृत्व के बदौलत आज देश विकसित भारत बनने की राह पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज भारत सिर्फ प्रगति ही नहीं कर रहा है बल्कि प्रगति की नई परिभाषा लिख रहा है।
7: हम लोग इस गठबंधन का हिस्सा बने और पिछले 12 सालों से निरंतरता से न सिर्फ हमारा ये रिश्ता मजबूत रहा बल्कि एनडीए गठबंधन का दायरा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कई और राजनीतिक दल इस गठबंधन का हिस्सा बने, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सबको एक साथ लेकर चलने की उनकी सोच, सबको परिवार की तरह उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े होने की सोच ने ही उनको आज देश के सर्वोच्च नेता की श्रेणी में सबसे आगे उनको खड़ा करने का काम किया।
3: जिस वक्त विपक्ष चुनावी हार के बाद बिखरा हुआ है, तब सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए नए उच्चमान स्थापित करते नरेंद्र मोदी एनडीए की बैठक में कांग्रेस शासनकाल याद कराते हैं। बताते हैं कि पहले विफलता कांग्रेस की होती रही लेकिन कलंक हिंदू आबादी पर लगाया जाता रहा।
8: सवाल ये है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा।
1: हमारे भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है, वहां पर नेता पर विश्वास होना अपने आप में अभूतपूर्व है। हमारे देश की जनता का मोदी को पिछले 12 वर्षों से दिया जाने वाला समर्थन मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनाता है। जहां एक तरफ दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों की सरकारें कमजोर हो रही हैं, नेताओं को अपने पद से हाथ धोना पड़ रहा है, वहीं नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री पद पर रिकॉर्ड बनाकर मिसाल कायम कर रहे हैं।
9: प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस।
10: आई डोंट नीड टू टेल एनीवन हियर, ही इज द मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर फॉर अ रीजन।
11: I think you are an inspiration for the rest of the world.
12: The thing is that the most loved one of all around the world.
13: Prime Minister Sri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude.
14: I am a fan of Modi, so.
15: His vision for digital India, was ahead of its time.
3: नरेंद्र मोदी भारत में सबसे लंबे वक्त तक सत्ता के शिखर पर रहने वाले नेता ही नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुनिया के भी सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं।
16: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
8: सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा.
5: ए हिस्टोरिक ट्रिब्यूट टू इंडिया, हिस्टोरिक ट्रिब्यूट टू इंडियास लॉन्गेस्ट सर्विंग कंटिन्यूअसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 32 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सर्वोच्च या नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुकी हैं, जिसमें फ्रांस, रूस, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं. जब दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में जनता सरकारें बदल रही हैं, तब भारत में 12 वर्षों से नेतृत्व और नीतियों में निरंतरता है. यही बात दुनिया को नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान से भर देती है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जो मोदी की तारीफ का कोई मौका नहीं छोड़ते. आज तक से बातचीत में पुतिन ने मोदी को लेकर जो कुछ कहा था वो आपको सुनना जरूरी है.
17: He's a very reliable person. In that sense, I'm speaking very sincerely. India got lucky. He lives India. I'm talking to him and I know him.
3: व्लादिमीर पुतिन हो या फिर दुनिया का दूसरा कोई बड़ा नेता, सबकी एक राय है कि दबाव डालकर नरेंद्र मोदी को झुकाना नामुमकिन है.
8: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है. दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है. दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतरकर दिखाना है. साथ ही हमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है. हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है.
3: मोदी की यही बात दोस्तों को भाती है, जिनके लिए भारत किसी प्रेरणा से कम नहीं है. ये बात दुनिया भर के नेताओं की तरफ से भेजी गई शुभकामनाओं में भी दिखती है. दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने बधाई संदेश में लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने कई वर्षों तक भारत के विकास और प्रगति का नेतृत्व किया है. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि न केवल आपके कार्यकाल की अवधि को दर्शाती है, बल्कि उस भरोसे और विश्वास का भी प्रमाण है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता ने बार बार आपके नेतृत्व में जताया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने भारत की सीमाओं से परे श्रीलंका सहित कई देश के लोगों को प्रेरित किया है. पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक निजी वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को एक रोल मॉडल और लीडरशिप की मिसाल बताया है.
18: Congratulations on reaching a historic milestone, the longest continuous prime minister of the great country of India. You have now surpassed the record as the longest serving prime minister of India.
3: प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री पद पर रहने के 4,398 दिन के रिकॉर्ड को ही पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि वो 9,013 दिन से सत्ता के शिखर पर रहने वाले एकमात्र नेता है जो लगातार सीएम और पीएम पद पर रहते हुए 25 साल पूरे कर चुके हैं.
8: मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा.
3: प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने वालों में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पिछले दिनों रोम में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके और एक विशेष रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत करके खुशी हुई, जो भविष्य में हमारे देशों और लोगों के लिए नए अवसर बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगी. दुनिया भर के करीब 20 देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को 146 करोड़ लोगों का नेतृत्व करते हुए 12 साल पूरे होने पर बधाई दी. दुनिया के लिए हैरानी की बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी इतनी लंबी पारी खेलने के बावजूद भारत की तरह पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कैसे हैं? ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट ने अप्रैल 2026 में बताया कि मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा 70% अप्रूवल रेटिंग वाले नेता हैं. उनके बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग 63% अंकों के साथ हैं। ईरान संघ युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे नीचे से 10वें नंबर पर हैं।
8: इन वन डेकेड इंडिया हैज सीन अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। देन वी वेयर द 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। Now we are knocking on the doors of the top three.
3: बड़ी बात यह कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले दूसरे देशों के नेताओं की छवि लगातार वहां की जनता की नजरों में कमजोर हो रही है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज सर्वे में दुनिया के सबसे अलोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। करीब 76% उत्तरदाताओं ने उनके कामकाज से असंतुष्टि दिखाई, जबकि वो पिछले साल मई महीने में जर्मन चांसलर बने। सर्वे में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन दूसरे सबसे अलोकप्रिय नेता हैं। उनके काम से 75% उत्तरदाता असंतुष्ट रहे। लोकतांत्रिक देशों में नेताओं की इस अलोकप्रियता की वजह जंग के कारण महंगे तेल से बढ़ती महंगाई और कमजोर होती उनके देश की अर्थव्यवस्था है। खतरनाक होती दुनिया नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, जिसके असर से जनता को बचाने में मोदी सरकार अब तक खुद को कामयाब बताती है।
1: चुनावी समीकरण अब बदलते जा रहे हैं। अब एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी को अपनी शक्ति बीजेपी बना रही है। गवाही पहले गुजरात मध्य प्रदेश दिया करते थे, अब हरियाणा असम महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश बिहार समेत विभिन्न राज्य दे रहे हैं। जहां लगातार दो बार नहीं बल्कि लगातार तीन बार चुनावी विजय हासिल करने में बीजेपी सबसे आगे है, कांग्रेस तो दूर दूर तक नहीं है। और क्या यही कारण है कि लगातार चौथी बार 2029 में भी जीत का चौका लगाने की जमीन नरेंद्र मोदी तैयार करने में लग गए हैं?
19: मोदी है तो मुमकिन है।
20: देश की आस्था और विश्वास प्रधानमंत्री जी के साथ।
21: वो अतिमानव सुपर ह्यूमन है।
3: 4,399 दिन का कार्यकाल और लगातार बनते रिकॉर्ड के साथ नरेंद्र मोदी पर बीजेपी की विजय विस्तार और मजबूत आधार का भरोसा हर नेता कार्यकर्ता को है। तो इसकी वजह क्या है, समझना है तो 46 साल पहले चलिए। भारत के पश्चिमी छोर पर मौजूद मुंबई, अरब सागर के किनारे मौजूद भारत की आर्थिक राजधानी, अब से 46 साल पहले साल 1980 अरब सागर के तट पर मुंबई में बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में एक भविष्यवाणी होती है।
22: भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा।
3: अब देश के 22 राज्यों और 72% क्षेत्रफल के साथ 78% आबादी वाले राज्यों में बीजेपी या एनडीए का कमल खिल चुका है। और यहां कमल खिलाने के साथ ही नरेंद्र मोदी अब 2029 के लक्ष्य में जुट चुके हैं। बड़ी खबर ये कि 2024 में बीजेपी को लगातार तीसरी बार अपने दम पर बहुमत पाने से रोक लेने में जिस विपक्ष को सबसे बड़ी जीत लगने लगी थी,
23: कांग्रेस पार्टी, आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ।
3: लगातार तीन बार देश का चुनाव जीतने वाले नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 के नतीजे से एक खिड़की खुलने से उत्साहित विपक्ष को अंदाजा नहीं कि दो साल के भीतर बीजेपी वापस अपनी पकड़ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मजबूत करने लगी है।
8: हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम मेड इन इंडिया शिप पर ट्रेड करेंगे और कंटेनर भी मेड इन इंडिया होंगे। शिप मेंटेनेंस और रिपेयर से लेकर स्क्रैपिंग तक की सर्विसेज भी भारत देगा। यही विजन हमारे एविएशन सेक्टर के लिए है। आज हम मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाएगा। देशवासी मेड इन इंडिया विमान में ही यात्रा करेंगे, वो दिन मैं देख रहा हूं दोस्त।
3: 2024 के बाद अब तक देश के 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की इन राज्य में 497 असेंबली सीट पर बढ़त थी, जो अब बढ़कर 664 हो चुकी है, यानी 167 विधानसभा सीट के फायदे में बीजेपी आ चुकी है। इसे लोकसभा सीट के तौर पर बदले तो 21 लोकसभा सीट का फायदा बीजेपी को अब तक हो चुका है। इसी दौरान कांग्रेस की स्थिति पलटी है, वो 353 सीटों से घटकर 171 विधानसभा सीटों पर आ गई, जिससे उसे 182 विधानसभा सीटों का नुकसान होता दिखता है। 12 वर्षों में एक बार फिर जहां नरेंद्र मोदी वापस सत्ता की सियासत में वही मजबूती हासिल करने लगे जिसके लिए उनकी पहचान रही, तो इसकी वजह विपक्ष की उन चालों से सावधान रहना भी है जिसे वाजपेयी युग में नरेंद्र मोदी देख चुके हैं।
0: हमने मेहनत की, हम लोगों में गए हैं, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, ये कोई चुनाव में कुकर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी।
3: पिछली सदी में 90 के दशक में सत्ता तक बीजेपी पहली बार पहुंचती है, लेकिन 96 से 1998 तक विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को रोकता रहा, बाधा बनता रहा।
0: इस सदन में एक एक व्यक्ति की पार्टियां, एक एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे साथ हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे।
3: अप्रैल 1999 जब एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी, विपक्ष की राजनीति के उन दांव पेच को नरेंद्र मोदी भूले नहीं।
8: खरीद फरोख तब भी हो सकती थी, बाजार में माल तब भी बिकता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार ने एक वोट से हारना पसंद किया, इस्तीफा दिया, लेकिन असंवैधानिक कोई कृत्य नहीं किया।
3: नरेंद्र मोदी जानते हैं कि विपक्ष बार बार अलग अलग तरह के गठजोड़ करके उन्हें भी रोकने में जुटा है, इसीलिए वो कोर्स करेक्शन वाली राजनीति बहुत तेज करते हैं, जिसका नतीजा है कि मोदी राज में बंगाल जीतने के बाद 9 राज्यों में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बन चुका है। 3 बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुमत के साथ सरकार बना चुकी बीजेपी एनडीए ने विधानसभा के चुनावों में भी नई लकीर खींची। 2014 से अब तक 72 बार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए, तो 32 बार राज्यों के सीएम बीजेपी के बने, 10 बार राज्यों में गठबंधन की सरकार बनी, 42 बार बीजेपी एनडीए को सत्ता मिली, 30 राज्यों में बीजेपी और एनडीए को हार का सामना करना पड़ा।
1: सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य करने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम बन चुका है, और वो अभी भी प्रधानमंत्री हैं। इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
2: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
4: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
6: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover,
24: this must be just, 'cause we all just wanna be big rock stars.
6: interested in what's going on around the world.
7: I have no idea how this election is going to play out.
6: Or want to catch up on your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
9: रत्न एक साथ तीन तीन ग्रहों को बेहतर कर देता है? कौन सा रत्न छोटे बच्चों के बोलने की समस्या को सुधार देता है? और कौन सा रत्न दुर्घटनाओं से, डर से, भय से मुक्ति देता है? कौन से हैं चमत्कार के रत्न? जानिए मेरे साथ.
2: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
10: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
11: I think we still can win the World Cup with this squad.
10: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
9: Bhagya Chakra.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी 12 साल में कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ देश। इन्होंने धीमे विकास को कहा था हिंदू ग्रोथ रेट। बोले 2047 तक विकसित भारत हमारा संकल्प। एनडीए की बैठक में नेताओं ने की प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। अभिनंदन प्रस्ताव पर शुभेंदु ने खिलाई झालमुरी। ट्रंप ने भी बधाई संदेश में बताया अपना दोस्त। ममता को फिर लगा बड़ा झटका। बागी गुट के 19 लोकसभा सांसदों ने जारी की है लिस्ट। शत्रुघ्न सिन्हा और सायोनी घोष का भी नाम। भूपेंद्र यादव के घर कुछ नेताओं की बैठक। कांग्रेस को लगी दोहरी चोट। झारखंड में एनडीए समर्थित राज्यसभा प्रत्याशी परिमल नाथवानी का पर्चा मंजूर। एमपी में मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर आयोग जल्द करेगा फैसला। और ईरान पर फिर बारूद बरसाएंगे ट्रंप का निशाने पर है पावर प्लांट और पुल। पिजिश्कियान ने बताया हताशा भरा कदम। ममता बनर्जी को झटके पे झटका लग रहा है। राज्यसभा की सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ दी, राज्यसभा की सदस्यता भी छोड़ दी। उनसे पहले सुखेंदु रॉय ने साथ छोड़ा था। सत्ता जाने के बाद अब टीएमसी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है।

0: अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिल रहे हैं। ममता बनर्जी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और केजरीवाल से मिल रही हैं। और मुलाकात का मजमून ये है कि दिल्ली में बैठकर ममता अपना राजनीतिक वजूद बचाने की जद्दोजहद कर रही हैं, लेकिन वो वजूद बचता नहीं दिख रहा। पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, आज सुष्मिता देव पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता दोनों छोड़ गई।
1: मैं किस तरह की राजनीति करूंगी, कहां से करूंगी, ये मेरा निर्णय है और मेरा हक है, क्योंकि राज्यसभा मुझे एक पार्टी से मिला था
2: जी।
1: हाँ, जहां विधायकों ने वोट दिया था, बंगाल के लोगों ने इनडायरेक्टली दिया था। तो अगर पार्टी से इस्तीफा दिया तो फिर राज्यसभा सीट भी छोड़ना चाहिए।
0: आज सुबह सुबह सुष्मिता देव की असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। दोनों असम से हैं तो लग यही रहा है कि सुष्मिता के इस्तीफे के पीछे हिमंता बिस्वा सरमा की बड़ी भूमिका है। ये भी तय लग रहा है कि इस्तीफे से खाली सीट पर उपचुनाव में बीजेपी सुष्मिता को उम्मीदवार बनाएगी।
1: मेरी राजनीति बंगाल में नहीं है, मेरी राजनीति असम में है
2: जी।
1: और मुझे असम में ही राजनीति करना है।
0: लेकिन ममता के सामने बड़ा सवाल ये है कि अब उनका क्या होगा, शायद वो आगे का रास्ता तलाश रही हैं।
3: जीतने के बाद भी बोले थे, बोलने की कोशिश किए थे, वहाँ पे सिस्टम नहीं है बोलने का, बोलने से सब रोकते हैं जो नहीं बोलना है नहीं बोलना है। तो और अगर बोले भी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलते, आप 7 दिन 10 दिन इंतजार करो।
0: तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने दिल्ली आई ममता बनर्जी यहाँ से क्या हासिल कर लौटती है, क्योंकि कोलकाता में तो उनके लिए हर दिन भारी साबित हो रहा है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
4: मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस ने बुधवार को एक दिन का उपवास रखा, चुनाव आयोग पर निशाना भी साधा। चुनाव आयोग को इस पर फैसला करना है। अब
5: प्रदर्शन उस फैसले के खिलाफ है जिसमें मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता एक दिन का उपवास करके इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा सीट के लिए प्रत्याशी नहीं रहे। बाह में काली पट्टी बांधकर उपवास पर बैठे हैं कांग्रेस के नेता।
6: कांग्रेस के तमाम दूसरे नेता जो है वो राजधानी भोपाल में इकट्ठा हुए हैं और इस उपवास के जरिए मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द हुआ है, न केवल उसका विरोध जता रहे हैं बल्कि साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने राजनीति से प्रेरित होकर के मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को जानबूझ करके रद्द किया है।
5: उधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इधर दिल्ली में कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन के मामले में चुनाव आयोग में लिखित शिकायत दर्ज की। अब कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग को भी निशाने पर ले रहे हैं।
7: मैं तो बहुत पहले एक बात कही थी कि एक कुर्सी इलेक्शन कमीशन में डाल दीजिए, जो पर्ची बीजेपी ऑफिस से आए उसको सर्टिफिकेट।